ओम शांति। भगवान के बच्चों को संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्टता संपूर्णता की पहचान है। बाबा सबको संतुष्ट करते थे और स्वयं तो ईश्वरीय प्राप्तियों से सदा ही संतुष्ट थे। हम फॉलो फादर करें, हमारे चेहरे पर संतुष्टता की झलक होनी चाहिए। संतुष्टता और प्रसन्नता हमारी बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। अगर हम भगवान को पाकर भी संतुष्ट नहीं रहते तो सोचो भला और क्या पाकर हम संतुष्ट रहेंगे। और ये भी याद रखना चाहिए, जो मनुष्य भगवान को पाकर संतुष्ट न हुआ वो कोई पदार्थ वस्तु वैभव धन संपदा पाकर कभी संतुष्ट

नहीं होगा। और अब की असंतुष्टता द्वापर युग से भी असंतुष्टता का अनुभव कराएगी। चाहे कुछ भी हमारे पास होगा, हम सदा असंतुष्टता की अग्नि में जलते रहेंगे, दूसरों को देखकर असंतुष्ट होते रहेंगे। इसलिए अपनी नेचर बनाएं, जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना, पहली चीज यही है। भले ही हम आगे बढ़ें, इसका अर्थ ये नहीं होता संतुष्ट रहना माना प्रोग्रेस न करना, प्रमोशन न लेना, बिजनेस को न बढ़ाना, पढ़ाई न करना। नहीं, हम सब कुछ करें, जीवन में जो जरूरी है वो सब करते रहें और आगे बढ़ते रहें, लेकिन हमारी नेचर पूर्णतया संतुष्ट रहने की हो। जो हमारे पास है उसमें भी हम संतुष्ट, और जो हमें मिल गया है उसमें भी हम संतुष्ट। कभी कभी क्या होता है, एक मनुष्य बहुत ऊंचा टारगेट बनाता है, लेकिन अगर वो प्राप्त नहीं होता तो वो बहुत निराश हो जाता है, संपूर्ण रूप से जीवन से ही असंतुष्ट हो जाता है, निराश हो जाता है। ये गलत बात है। जीवन एक बहुत लंबी यात्रा है, इसमें यदि हम छोटी बातों में असंतुष्ट होते रहेंगे तो हमारी शक्तियां नष्ट होती रहेंगी। याद रखना है, हमारी संतुष्टता का प्रकाश सारे संसार में फैलता है, और संतुष्ट मणियां प्रभु को बहुत प्रिय हैं। अब हम वस्तुएं लेकर खुश होना चाहते हैं या भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, उसके प्रिय बन जाएं तो वो हमें भरपूर कर देता है। इसलिए आज सारा दिन हम संतुष्ट रहेंगे, दूसरों के व्यवहार से भी संतुष्ट, कर्मों से भी संतुष्ट, अपनी मेहनत से भी संतुष्ट, जहां हम रहते हैं उससे भी संतुष्ट, जो कुछ भोजन हमें खाने को मिलता है उससे भी संतुष्ट, जो पहनने को मिलता है उसमें भी संतुष्ट। कभी कभी कंपैरिजन करने की नेचर मनुष्य को असंतुष्ट कर देती है, लेकिन हमें कंपैरिजन नहीं करना है। आज ये धारणा हम बहुत पक्की करें, हमें किसी से तुलना नहीं करनी है। हमारे पास जो कुछ है वो बहुत अच्छा है, हमारा पार्ट जो है वो बहुत बहुत सुंदर है। अपने पार्ट को एंजॉय करें, अपनी प्राप्तियों को एंजॉय करें, अपनी सूखी रोटी को एंजॉय करें, दूसरे की घी लगी रोटी को देखकर अपनी सूखी रोटी का आनंद गंवा न दें। तो आज सारा दिन बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे, पहुंचेंगे सूक्ष्म लोक में, बाबा के साथ, बाप दादा के साथ डांस करेंगे, हाथ मिलाएंगे, गले लगेंगे, दृष्टि लेंगे, और फिर देखो बाबा कहता है, बच्चे परम धाम में चलो, वो तुम्हारे परम पिता ज्ञान सूर्य उसकी किरणों के नीचे बैठ जाओ, और हम पहुंच जाते हैं वहां। फिर वहां से वापिस बुलाता है बाबा और कहता है, जाओ नीचे, वो तुम्हारा शरीर, उसमें प्रवेश करो, और मैं आत्मा उड़कर उसमें प्रवेश कर लेती हूँ, भ्रकुटी सिंहासन पर चमक रही हूँ। फिर वापिस, और इस तरह है, फिर बाबा कहता है, जाओ परम धाम सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे। फिर मैं वहां चली जाती हूँ। कुछ देर बैठने के बाद बाबा कहता है, वापिस, और मैं वापिस सूक्ष्म लोक में। फिर कहता है, जाओ वो तुम्हारा शरीर नीचे, उसमें प्रवेश करो, मैं फिर उसमें प्रवेश कर लेती हूँ, और फिर वापिस। ये बहुत अच्छा खेल हो जाएगा। योग को इस तरह हम मनोरंजन बनाएंगे, खेल बनाएंगे, और सारे दिन का आनंद लेंगे। ओम शांति।

மதுவன் 107.8 FM. சுன்தே ரஹோ முஸ்குராதே ரஹோ ரேடியோ மதுவன் 107.

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, अमृत धारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम। दोस्तों, सुबह के सुंदर समय पर हमेशा के जैसे आप बड़े उत्सुक होंगे कुछ न कुछ अच्छा सुविचार सुनने के लिए। जी हाँ, आपके लिए आज एक बहुत सुंदर विचार लेकर आए हैं। आजकल हम सब मोबाइल पर स्टेटस रखते नहीं, ये सुविचार भी इसी से जुड़ा हुआ है। किसी ने बहुत खूब कहा है, स्टेटस चाहे मोबाइल का हो या व्यक्तित्व का, हमेशा ऐसा रखे। कैसा? हमेशा ऐसा रखे कि लोग कॉपी करने को विवश हो जाए। बहुत बड़ा शब्द है हमारी जिंदगी में स्टेटस। और आजकल तो जमाना भी मोबाइल का होने के कारण हर कोई चाहता है कि लोग मुझे लाइक करें, लोग मेरा स्टेटस देखें। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समय भी जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या हम अपना स्टेटस अर्थात व्यक्तित्व का स्टेटस ऐसा रखें कि एक बार तो कम से कम लोग ज़रूर कहे कि इनके जैसा होना चाहिए? और इन सब बातों के लिए हमें अच्छे विचारों की, अच्छे संकल्पों की बहुत आवश्यकता होती है। और इन्हीं संकल्पों को कैसे अच्छा बनाना है, उसके लिए ही हम अमृत धारा में आपके साथ अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, चाहे वो शास्त्रों की बात हो, चाहे वो नित्य व्यवहार की बात हो, चर्चा करते आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज भी हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में उपस्थित है ज्ञानेश्वर जी, तो हम सब उनका स्वागत करेंगे। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति जी, आपने सुबह सुबह जो सुविचार सुनाया स्टेटस, मुझे लगता है कि ये सुविचार सुनने के बाद हमारे श्रोताओं का स्टेटस भी काफी ऊंचा हो गया होगा। क्योंकि स्टेटस का मतलब ये है कि मेरे मन की स्थिति जो है वो ऊंची है या नीचे है। अगर मन की स्थिति नीचे है तो हम कहते हैं कि मेरा स्टेटस डाउन हो गया। मन की स्थिति अगर ऊंचाई पे है तो हम कहते हैं कि मेरा स्टेटस अप हो गया। बहुत बार हम ये समझते हैं कि मेरा स्टेटस जो है वो दूसरे मेरे प्रति क्या विचार करते हैं इसके ऊपर निर्भर होता है। और इसलिए अगर कहीं अप्रतिष्ठा हो गई तो हमें लगता है कि हमारा स्टेटस डाउन हो गया। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि हमारे मन में अपने प्रति क्या स्टेटस है, अपने प्रति मेरे विचार क्या है? अगर वो विचार अच्छे हैं तो फिर क्या होगा, मेरा स्टेटस हमेशा अप होगा। फिर लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इसके ऊपर मेरा स्टेटस निर्भर नहीं होगा, लेकिन मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूँ उसके ऊपर मेरा स्टेटस होगा। जैसे आपने कहा कि हमारे महान हस्तियाँ, उनके स्टेटस के बारे में अगर हम विचार करें तो बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, भले वो जब जिंदा थे तब लोगों ने उनके ऊपर काफ़ी टीका टिप्पणी की, लेकिन उन्होंने उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया। अपने प्रति उनके विचार जो थे, समाज के प्रति उनके उच्च विचार थे, और उसको उन्होंने महत्व दिया, और इसलिए उनका स्टेटस जो है हमेशा अच्छा रहा। लेकिन दूसरी पंक्ति जो आपने बताई वो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हमारा स्टेटस ऐसा हो कि लोग कॉपी करने के लिए उत्सुक होंगे। अभी कॉपी करना क्या है? आजकल देखिए तो बहुत सारे फिल्मी हीरो होते हैं, उनकी हेयर स्टाइल कैसे है, उनका पहराव कैसा है, उनके कपड़े कैसे हैं, उसके ऊपर कॉपी करने के लिए लोग तरसते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन उनके विचार क्या है, उनका स्वभाव कैसा है, उनके कर्म कैसे है, इसकी अगर हम कॉपी करें तो हमारा स्टेटस बहुत ही ऊंचा होगा और वो सही तरीके से कॉपी होगा, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, कितनी सच्ची बात है। हम सचमुच हीरो बनना चाहते हैं अंदर बाहर से, या फिर अंदर जीरो है और बनना चाहते हीरो? कई बातों का आज विचार बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्सनालिटी जो है वो आज हम केवल इंटरनल पर्सनालिटी न देखते हुए आउटर पर्सनालिटी की तरफ देखते हैं, खुद अपने अंदर भी जाके और सद्गुणों को बढ़ाते चले। दोस्तों, इन्हीं बातों को बहुत अच्छी तरह से बताने वाली है आज की कहानी। किसी के पास धन बहुत है तो यह कोई विशेष भगवत कृपा की बात नहीं है, ये धन आदि वस्तुएं पापी को मिल जाती है। और इसीलिए कहते हैं सूत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, इनके मिलने में कोई विलक्षण बात नहीं है। एक थे राजा। अब उस राजा की साधु वेश में, साधु वृत्ति में बहुत बड़ी निष्ठा थी। ये निष्ठा किसी किसी में ही होती है। वो राजा बहुत अच्छे थे, साधु संतों को देखकर हमेशा ही बहुत सम्मान करते थे, राजी होते थे। उनके दरबार में साधु वेश में कोई भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, लेकिन राजा का एक बहुत ही सुंदर तरीका था, बहुत बड़ा आदर करना, उनकी सेवा करना, उनसे कुछ सुन लेना, और अगर किसी ने उनको बात बताए कि ऐसे ऐसे कोई संत आ रहे हैं, इस तरफ से आ रहे हैं, तो फिर क्या बात मत पूछो। राजा तो उनको लाने के लिए पैदल जाते, उनको लेकर आते, महलों में रखते और खूब सेवा करते। अंत में जब वो जाने लगते तो जो वो मांगे वही दे देते। राजा की तो ऐसी बहुत प्रसिद्धि हो गई थी। दोस्तों, आगे कहानी क्या रंग लाती है और सचमुच हमें किन बातों पर अटेंशन रखने को बताती है, आप सब सुनने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। लेकिन अब समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, चलिए लेते हैं एक ब्रेक। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रुको। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: ओ मेरे भाई, पर जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई? हैं? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो मुस्कुराते रहो। तो दोस्तों, आगे कहानी बहुत ही सुंदर बोध देने वाली है। पड़ोस देश में एक दूसरा राजा था, उसने ये बात सुन रखी थी। कौन सी बात? कि इस राजा की जो साधु के प्रति प्रेम भावना थी, आदर भाव था, ये बात उसने सुन रखी थी। अब उसके मन में ऐसा विचार आया कि यह राजा बड़ा मूर्ख है, इसको साधु बनकर अगर कोई ठग ले तो फिर क्या। उसने क्या किया, एक बहुरूपिये को बुलाया। उसको कहा कि तुम उस राजा के पास साधु बनकर जाओ, वह तुम्हारे साथ जो जो बर्ताव करे वो सारी बातें मेरे से आकर कहना। बहुरूपिया भी बहुत चतुर था, राजा की आज्ञा तो साधु बन गया और उस राजा के पास चला गया। वहां के राजा ने जब ये सुना कि अमुक रास्ते से एक साधु आ रहा है तो वह उनके सामने उनको लाने के लिए गया। बहुत आदर सत्कार से अपने महल में उनको ले आया, अपनी हाथों से उसकी बहुत सेवा भी की। एक दिन क्या हुआ कि राजा ने उस साधु से कहा कि महाराज कुछ सुनाओ। साधु ने कहा, राजन आप तो बड़े भाग्यशाली हो, आपको इतना बड़ा राज्य मिला है, धन मिला है, आपके पास इतनी बड़ी फौज है, आपकी स्त्री, आपके पुत्र, आपके नौकर सब आपके अनुकूल है, इसलिए सचमुच आप पर तो भगवान की बड़ी कृपा है। इस प्रकार की बातें साधु ने उसको बताई। राजा ने तो चुप करके सुन ली। दो तीन दिन बाद साधु ने कहा, अर्थात उस बहुरूपिये ने कहा कि राजन अब तो हम चले जाएंगे। राजा ने बोला, अच्छा महाराज, जैसी आपकी मर्जी। राजा ने उसके आगे खजाना खोल दिया हमेशा की तरह और कहा कि इसमें से आपको जो सोना चांदी माणिक मोती पैसे रुपये जो चाहिए खूब लेके जाओ। उस साधु ने वहां से अच्छा अच्छा माल ले लिया और ऊंट पर लाद दिया। जब रवाना होने लगा तब राजा ने कहा, महाराज आपने अपनी तरफ से तो सब कुछ ले लिया है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं मेरी तरफ से देना चाहता हूँ। ये एक चांदी का बक्सा है, वो आप स्वीकार करें जो मैं आपको देना चाहता हूँ। राजा ने एक चांदी के बक्से को रेशमी जरीदार कपड़े में लपेटा और साधु को दे दिया। कहा, ये मेरी तरफ से आपको भेंट है। तो साधु ने वो बक्सा भी ले लिया और वहां से चल लिया। अब ये साधु अर्थात बहुरूपिया अपने राजा के पास पहुंच गया। राजा ने पूछा, क्या क्या लाए हो? उसने सब कुछ बताया, राजन लाखों करोड़ों का धन ले आया हूँ, सचमुच आप जो कहते हो ना वो सच है। ये जो पड़ोस का राजा है ना, महान मूर्ख ही है, क्योंकि उसको साधु की पहचान ही नहीं है कि किस प्रकार का साधु है, यह तो बड़ा बेसमझ है। फिर बहुरूपिया बोला, राजन

0: बक्सा भी उसने मुझे खुद की तरफ से दिया है। राजा ने कहा, ठीक है, बक्सा लाओ, उसको मैं देखना चाहूंगा। और उसने वो बक्सा राजा के पास रख दिया, उसकी चाबी भी दे दी। दोस्तों, अब ये कहानी का सच्चा जो अर्थ है बहुत सुंदर है। राजा ने उस चांदी के बक्से को खोला तो भीतर और एक बक्सा मिला, फिर खोला तो और एक बक्सा मिला, छोटा सा। और तीनों बक्सों को खोलकर देखा तो भीतर के एक छोटे से बक्से में एक फूटी कौड़ी पड़ी थी। राजा ने सोचा, इसका क्या मतलब है? तो वह समझ गया कि यह राजा मूर्ख नहीं, सचमुच बहुत बड़ा बुद्धिमान है। साधु वेश में इसकी निष्ठा आदरणीय है। राजा ने बहुरूपिये से पूछा, तुमसे क्या क्या बात हुई, सारी बात तो बताओ। तो उसने कहा कि एक दिन क्या हुआ, राजा ने मेरे से कहा कि महाराज कुछ सुनाओ। तो मैंने कहा, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास राज्य है, धन संपत्ति है, स्त्री पुत्र है, तुम्हारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। ये बात सुनकर राजा सारी बात समझ गया। दोस्तों, पता है, आप समझ गए, इसका मतलब ये कि तीन बक्से होने का मतलब था स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, लेकिन उसके भीतर क्या है? दोस्तों, हम सब जानते हैं, भीतर तो फूटी कौड़ी और कुछ है? कुछ नहीं। बाहर से वेशभूषा अच्छी है, बाहर से बड़े अच्छे लगते हैं, भीतर कुछ है सचमुच। भगवान की आप पर बड़ी कृपा है, यह जो बात कही ना, ये है फूटी कौड़ी। यह कृपा क्या करती है? कृपा तो आपको सब कुछ देती है जो भौतिक संपत्ति है, लेकिन अगर आपके पास बुद्धि वाली संपत्ति है, आपके व्यवहार अच्छे हैं, तो सचमुच आप महान हो। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है, अंदर की जो विचारों का जो धन है वो सबसे बड़ा मूल्यवान है। ज्ञानेश्वर जी, आपको क्या लगता है?
1: भक्ति जी, बहुत ही सुंदर कथा है, और कथा सुनते सुनते हम उसमें खो जाते हैं और उत्सुकता भी रहती है कि राजा कैसे पहचान लेता है। जैसे मैं कथा सुन रहा था, वैसे हमारे श्रोतागण भी सुन रहे थे, और उन्होंने शायद पहचान लिया होगा कि साधु वेश में जो बहुरूपिया था, उसे राजा ने पूछा, कुछ सुनाओ। तो क्या सुनाना है और क्या सुनना है, ये भी किसके ऊपर निर्भर होता है कि हमारे अंदर ये विचार क्या है, हमारा मकसद क्या है। बहुरूपिया का मकसद था सिर्फ पैसा लेके आना, धन लेके आना, और इसलिए राजा ने उन्हें धन दे दिया, लेकिन उसने पहचान लिया कि उसके अंदर कुछ नहीं, अंदर फूटी कौड़ी है। लेकिन जब सच्चा साधु होता है तब उसे आत्मज्ञान होता है, और आत्मा में इतनी शक्ति होती है कि फूटी कौड़ी के बजाय वो हीरे या माणिक जैसे चमकते रहता है और मूल्यवान होता है। हम ऊपर के रंग पे, ऊपर के पहराव पे जाते हैं और बहुत सारे लोगों की कीमत करते हैं, मूल्य करते हैं, लेकिन जब हम अंदर झांकते हैं तब उसके मूल्य कुछ अधिक होते हैं, अमूल्य होते हैं। वैसे हमारे भी शरीर की तरफ हमारा ध्यान जाए, कपड़ों के तरफ ध्यान जाए, उसके बजाय हमारे मन में पवित्रता कितनी है, शुद्धता कितनी है, आत्मा में शक्ति कितनी है, इसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो फूटी कौड़ी के बजाय हमें अनेक रत्न भी मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल सचमुच दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है, ये तो हड्डी मांस का पुतला है, लेकिन इसमें चमकता हुआ जो आत्मा मणि है, या कहो सिंपल भाषा में मन और बुद्धि जो है, उसकी कितनी वैल्यू है। और हम उसकी वैल्यू को दिनों ब दिन बढ़ाते चले तो सचमुच ही हमारी भी जो स्टेटस होगी ना, वो राजा जैसी हो। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ समय को देखते हुए लेते एक छोटा सा ब्रेक। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा ज्ञान का विस्तार है जितना जितना हम पढ़ते जाए, सुनते जाए, और अधिक अधिक इंटरेस्ट भी बढ़ता है। और कभी कभी तो मुझे लगता है, ज्ञानेश्वर जी, हमने इतनी बार सुना था, पढ़ा था, लेकिन समझा तो नहीं था। इस बार हम बहुत अच्छी तरह से उसको समझ भी रहे हैं और खुद समझते हुए हमारे दोस्तों के साथ भी वार्तालाप कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
0: तो ज्ञानेश्वर जी, आगे भागवत कथा बताती है अघासुर का उद्धार, और ये बहुत ही रोचक कथा है, तो थोड़ा सा हम उसका भी परामर्श लेते हैं। शुकदेव जी और राजा परीक्षित दोनों की बातें चल रही है, और दोनों की बातें जो चलती है उसमें कई बार ऐसे भी कुछ वर्णन आता है जो हमें भी कई ना कई संदेश देके जाता है। तो दोस्तों, यहाँ बताया है कि अघासुर नाम का एक महान दैत्य था, और वो आकर श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की जो क्रीड़ा चल रही थी वहाँ आकर उसने जैसे कि उसमें कुछ न कुछ व्यत्यय लाना चाहा। उसके हृदय में ये सारी श्री कृष्ण की लीलाएं देखकर जलन होने लगी थी, और कहते हैं कि अघासुर इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवताएं भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे, और इस बात की राह देखते रहते थे कि किस प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। दोस्तों, कैसा लगता है ये कि देवताएं जिन्होंने अमृत पान किया है वो अमर कहलाते हैं, और ऐसी देवताएं फिर भी वो अपने जीवन की रक्षा के लिए चिंतित है। देवताएं और चिंतित होना, ज्ञानेश्वर जी, ये शब्द तो जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो मन में अनेकानेक आशंकाएं उत्पन्न करता है। आज का मनुष्य जो हमेशा कुछ न कुछ चिंता लेके घूम रहा है, वो तो हम बहुत ही नेचुरल मानने लगे हैं, लेकिन देवताएं और ऐसी देवताएं कि जिन्होंने अमृत पान किया हुआ है, उनको तो किसी बात का डर ही नहीं है, चिंता ही नहीं है। और ऐसी देवताएं अपने जीवन की रक्षा उस अघासुर से करने के लिए चिंतित रहते थे, और वो भी राह देखते थे कि इसका मृत्यु कैसे जल्दी से जल्दी हो जाए। तो ये बातें क्या सिद्ध करती है
1: भक्ति जी? भागवत पुराण, महापुराण, और उसमें ऐसी विस्मयकारक कथाएं जब कोई भी सुनेगा, तब आपने जैसे प्रश्न पूछा, ये प्रश्न हर एक के मन में आ सकता है। जैसे हम भी पहले भागवत कथा सुनते थे, और उस समय हम ये जब सुनते थे कि देवताएं चिंतित है, देवताएं भयभीत है, देवताएं परास्त हो गए, तो मन में विचार आता था कि ये देवताओं के पास हम जाते हैं हमारी रक्षा करने के लिए, और वो खुद देवताएं अगर परतंत्र है, देवताएं बंदी बन जाती है, तो फिर हम जाए तो जाए किसके पास? लेकिन जैसे जैसे हम उसके गहराइयों में चले गए, चिंतन करने लगे, तब मुझे लगता है कि उसके कुछ तार्किक विचार, तार्किक जवाब हमें मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहां जैसे कहा गया है कि देवताएं अमर हो गए थे अमृत पान करने के बाद, लेकिन देवताएं थे, परमात्मा नहीं थे, परमेश्वर नहीं, और इसलिए हमेशा जब भी देवताओं को कोई प्रॉब्लम आता था, तब वो ब्रह्मा जी के पास जाते थे या विष्णु जी के पास जाते थे, और भागवत कथा में विष्णु जी का जो वर्णन है वो परमात्मा जैसा है, वो सर्वोच्च है, उनके ऊपर कोई नहीं है। लेकिन हर एक के समाप्ति के लिए, हर एक राक्षस कहिए, लेकिन कोई भी असुर कहिए, लेकिन उसका निर्दालन करने के लिए सही वक्त आना चाहिए, और इसलिए जब तक सही

0: वक्त नहीं आता तब तक उसका निर्दालन नहीं होता। ऐसे अगर बहुत सारी कथाएं हम पढ़े तो उसमें यह दिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि दो चीजें हैं उसमें। एक, समाज में असंतोष बढ़ता है, समाज में अपप्रवृत्ति बढ़ती है, समाज में दुष्टों का बोलचाला होता है, और फिर कभी कभी हमारे मन में विचार आता है कि ऐसे ही चलेगा। लेकिन उसका भी सही वक्त जब आता है तब कोई ना कोई निमित्त बन जाता है और उनका निर्दालन करता है। ये ठीक, ये संदेश हमें मिलता है। और दूसरी चीज, अगर हम आध्यात्मिक रीति से देखें तो मन में, अगर हमारे मन में देवत्व है, हमारे मन में अच्छे विचार है, हमारे मन में सकारात्मक विचार है, लेकिन एक नकारात्मक विचार हमें भयभीत कर सकता है। ऐसे बहुत सारी मिसाल हम देख सकते हैं कि बहुत सारे सत्पुरुष है, महान व्यक्ति है, लेकिन छोटा एक नकारात्मक संकल्प आ गया और उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। ऐसे भी मिसाल हम देखते हैं। तो देवताएं जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, आध्यात्मिक रीति से देखे तो देवताएं हमारे अंदर ही है। भले ज्ञान का अमृत पीने के बाद वो मजबूत हो गई है, लेकिन एक विष जो है नकारात्मक संकल्प का, वो उन्हें कमजोर कर सकता है, और यही डर देवताओं के मन में है, ऐसा मुझे लगता है।
1: ज्ञानेश्वर जी, मुझे लगता है ये बहुत ही विचार करने जैसी बात है। और आपने जैसे कहा, मैं भी वही सोच रही थी कि देवत्व और असुरत्व, या देवत्व या दानवत्व, इन दोनों के बीच का ये जो फासला है वो कोई बड़ा नहीं है। हमारे अंदर देवत्व है, हम उन बातों को जानते भी हैं। जब हमारे अंदर देवत्व है तो हमारा व्यवहार बहुत सुंदर होता है, सद्गुण होते हैं। लेकिन ऐसी कुछ बातें जिंदगी में होती है, या हम किसी के संपर्क में आते हैं जिसको आध्यात्मिक भाषा में माया शब्द कहा है, तो जब हम ऐसे माया के अधीन होते हैं तो ये जो अधिकारीपन की जो हमारी बहुत अच्छी देवत्व की बात है वो अधीन होने लगती है। और शायद जैसे कई बार कोड लैंग्वेज होती है, वैसे राजा परीक्षित को शुकदेव जी भी यही बता रहे हैं कि आपके अंदर देवत्व है, लेकिन आप एक मृत्यु के भय से कितने भयभीत हो गए हो। और इन बातों को समझाने के लिए कुछ ऐसे मिसाल दिए गए हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है? आप भी इस बात में जरूर अपना ख्याल हम तक पहुंचाना, ताकि ऐसी कई बातें जो है हमारे विचारों को प्रगल्भ करते हैं, हमारे विचारों को, हमारी सोच को एक बहुत सुंदर विस्तार देकर अपने अंदर ही अंदर हमें सुधारने की कोशिश करती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, तो अघासुर कौन था? ये अघासुर था पुतना और बकासुर का छोटा भाई। और सबसे बड़ी बात तो ये है, उसको खास कंस ने भेजा हुआ था। वह श्री कृष्ण, सुदामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन में सोचने लगा, अरे यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है, इसलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे तो जरूर मार डालूंगा। जब ये सब मरकर मेरे दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे ना, तब व्रजवासी अपने आप मरे जैसे हो जाएंगे। देखो दोस्तों, हरेक के विचार कैसे हैं, हरेक के संकल्प कैसे हैं, ये एक बहुत सुंदर बात भागवत कथाकार हमें बताना यहाँ चाहते हैं, लेकिन शायद ही हमने इन बातों को ध्यान दिया होगा। आगे फिर कथा बहुत सुंदर रीति से भागवतकारों ने वर्णन की है कि देखा जाए तो संतान ही प्राणियों के प्राण है। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो शरीर कैसे रहेगा? इसीलिए अघासुर सोचने लगा कि श्री कृष्ण की मृत्यु से व्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। अब आगे क्या होता है? वो निश्चय करता है और ये दुष्ट दैत्य एक बहुत बड़े विशाल अजगर का रूप धारण करता है और मार्ग में लेट जाता है। उसका वह अजगर जैसा शरीर भागवतकार वर्णन करते हैं, एक योजन लंबे बड़े पर्वत के समान था। बहुत विशाल, बहुत मोटा, बहुत अद्भुत। उसकी नियत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने क्या किया कि गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह पाड़ कर रखा। उसका नीचे का होठ पृथ्वी से और ऊपर का होठ बादलों से लग रहा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और उसकी जो दाढ़ें थी वो पर्वत के शिखर जैसी मालूम होती थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था, जैसे कि एक बड़ी गुफा। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क सी दिखती थी। उसके सांस आंधी के समान थे और उसकी आंखें दावा नल के समान दहक रही थी। दोस्तों, कितने फैंटेसी जैसा ये वर्णन है। छोटे छोटे बच्चे, या कहो हम सब ने भी बचपन में ऐसी बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, जिसमें कुछ बड़ा राक्षस होता है, फिर एक राजकन्या होती है या एक राजपुत्र होता है, और किस प्रकार से वो करता है। यहाँ भी भागवतकार उसी टेक्निक का प्रयोग करते हैं ताकि कथा बड़ी सुरीली हो। और ज्ञानेश्वर जी, मुझे लगता है कि यहाँ तो सारे भागवत का राजपुत्र है, हीरो है श्री कृष्ण भगवान, जिनको भगवान का रूप सब मानते हैं, लेकिन उसको इतना रोचक क्यों बनाया है? क्या है इसके पीछे?
3: भक्ति जी, ये कथा जैसे आगे बढ़ेगी वैसे रोचकता और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है ये कथा है, और कथा जितनी रोचक बनाएंगे उतने पाठक जो है, वाचक जो है, वो भी रुचि से सुनेंगे। आजकल हम बहुत सारी गिफ्ट आइटम देते हैं, गिफ्ट में कीमती वस्तु ये होती है, लेकिन अगर कीमती वस्तु जो है ऐसे ही किसी के हाथ में दे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर हम उसे रैप करके देते हैं, अच्छा अच्छे कागज में लपेट के देते हैं, तो फिर क्या होता है, गिफ्ट की कीमत भी बढ़ती है और शोभा भी बढ़ती है और दूसरों को अच्छा लगता है। तो ये कथाएं जो है वो गिफ्ट जैसी है, ऐसे लगता है मुझे। गिफ्ट बड़ी कीमती है, गिफ्ट बड़ी अमूल्य है, क्योंकि हर कथा के पीछे भागवतकार कुछ संदेश तो जरूर देंगे, लेकिन फिर भी ये देते समय आपका मनोरंजन भी हो, आपके सामने वो दृश्य प्रत्यक्ष हो, ये भी ख्याल उनके मन में है। और कथा पेश करते समय जैसे आजकल हम कथावाचक होते हैं, वो कथा बड़ी रुचि से सुनाते हैं, कथा सुनने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। आजकल भागवत कथा देखिए, भागवत कथा का सप्ताह होता है, जो भी वाचक है, जो भी भागवत कथा कथन करने वाले हैं, बड़ी रुचि से सुनाते हैं, क्योंकि अगर उसमें रुचि से नहीं सुनाएंगे तो लोग नहीं है। लेकिन रुचि से सुनाते समय हमें ये ध्यान रखना है, हम कथा में बहे न जाए, लेकिन कथा का भावार्थ क्या है इसके तरफ अगर हमारा ध्यान जाए तो फिर भागवत कथा का महत्व और भी बढ़ता है। सिर्फ कथा तो है ही अच्छी, लेकिन कथा का भावार्थ जब समझ में आएगा और उसे हम जिंदगी में धारण करने की कोशिश करेंगे तो भागवत कथा का पुण्य कई गुना बढ़ता है, ऐसा मुझे लगता है।
2: बिल्कुल दोस्तों, कितनी सही बात है। आज हमें बाहर के रैप, जैसे ज्ञानेश्वर जी आपने कहा कि कोई भी कीमती वस्तु जो है वो बहुत अच्छी तरह डेकोरेट करके रैप की जाती है, आज हमारा ध्यान जो है ना उसी चीज पर है। उत्सुकता तो बहुत बनी रहती है, लेकिन रुचि हमारी किस में है, रुचि हमारी कथा क्या रंग ले रही है, क्या हमें संदेश दे रही है, इन बातों पर है, या उन कथाओं का वर्णन कितना सुंदर किया है, उन बातों पर है। ये ही बात सचमुच भागवतकार भी देखना चाहते हैं, और मुझे लगता है शुकदेव जैसे महान तपस्वी ऋषि जो राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, वो भी टेस्ट करना चाहते हैं कि राजा का ध्यान किस पर है। और दोस्तों, हम तो सब जानते हैं राजा का ध्यान एक ही जगह पर था, उसको आत्मा का ज्ञान मालूम कराना था, वो आत्मा का ज्ञान सुनना भी चाहता था, लेकिन अगर डायरेक्ट किसी को वो कहे तो वो रुचि नहीं आएगी। और इसीलिए ज्ञानेश्वर जी आपने बिल्कुल सही कहा कि कथा जो है इसका इतना बड़ा विस्तार है। दोस्तों, आपने भी इस कथा को बहुत एंजॉय किया होगा, चलिए ऐसे ही एंजॉयमेंट लेते रहेंगे। लेकिन अब समय की घड़ी दिखा रही है कि हमें अपने वाणी को विराम देना चाहिए। और दोस्तों, आपसे मिलने के लिए हमेशा की तरह हम उत्सुक जरूर है, तो मिलते हैं फिर से एक बार। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: प्रिय किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

0: नारायण, क्यों बैठी हो खोई खोई? मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भरे नहीं अभी खाओ पुराने, फिर आए हो आग लगाने।
0: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
1: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
0: अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी?
1: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचा। निस दिन देखूं जिनके सपने खो बैठूं वो प्रीतम अपने।
0: तुम नहीं समझी, कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
1: बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीते रुक्मिणी हारी।
0: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना?
1: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं।
0: नारायण नारायण।

0: कुछ धोखा है राम दुहाई, इतने भारी नहीं तन्हाई।
1: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
0: मेरे पास जो था ले आई, दे दू मुझको कृष्ण कन्हाई।
1: दे दू लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचू, दासों के बाजार में बेचू। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया।
2: भामा
0: स्वामी।
1: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।
0: नीलामी?

0: अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए।
1: भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहां बिरहा की मारी।
0: रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो।
1: रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है।

0: नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एकाग्रता की चर्चा विद्यार्थियों के लिए हो रही थी और जिसमें मेडिटेशन की बहुत सुंदर सुंदर बातें हम लोगों ने सुनी, सीखी, इनका अभ्यास आपने अवश्य किया होगा। जब एकाग्रता की हम बात करते हैं तो इसके साथ एक जुड़ी हुई और बात सामने आती है जो विद्यार्थी वर्ग की आज विशेष समस्या बनती जा रही है, और वो है स्मरण शक्ति की कमी। पढ़ते तो बहुत अच्छा है बच्चे, मेहनत बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन कई बच्चे साथ साथ पढ़ते पढ़ते भी भूलते जाते हैं। पाठ पढ़ा और पीछे का सपाट होता जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि वो पढ़ते पूरे साल हैं लेकिन जब अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहां जाकर के भूल जाते हैं। तो स्मरण शक्ति का ह्रास या स्मरण शक्ति का कम होना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है विद्यार्थी वर्ग के सामने, और जहां कहीं भी आप जाते हैं तो एक बात अवश्य उठ करके सामने आती है टीचर्स के द्वारा या प्रिंसिपल के द्वारा, कि आप विद्यार्थियों को जरूर स्मरण शक्ति का विकास कैसे हो ये बताएं। तो हमारे साथ भ्राता जी हैं, आदरणीय सूर्य भाई जी, हम उन्हीं से इसके समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए मिलकर के स्वागत करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: विद्यार्थी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं आपकी बातों को सुन के, विशेष करके पिछली बार जो मेडिटेशन की बातें आपने बताई और प्रैक्टिकल कराया भी, वो करके वो बहुत आनंदित हो रहे हैं। बहुत अच्छे फीडबैक न केवल स्टूडेंट्स के बल्कि उनके पेरेंट्स के भी आ रहे हैं। भ्राता जी, एक और विशेष चर्चा जो समस्या है विद्यार्थियों की, वो है स्मरण शक्ति की कमी। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि एकाग्रता और स्मरण शक्ति, इन दोनों का भी क्या आपस में कनेक्शन है?
1: हाँ, देखिए, है ही। कोई भी बात जब बहुत ध्यान से सुनी जाती है
0: जी,
1: तो वो अंदर चली जाती है। और ऐसी ऐसी बातें हैं कि 10 साल पहले कोई चीज बहुत ध्यान से सुन ली गई थी, वो भूल ही नहीं रही है।
0: बिल्कुल,
1: लोगों को सब कुछ भूलता है, लेकिन वो एक बात याद करने की जरूरत नहीं, वो बार बार याद आ रही है। तो जितनी अच्छी कंसंट्रेशन किसी चीज में हम देते हैं, उतनी ही अच्छी वो चीज हमारी मेमोरी में समा जाती है। दोनों का बहुत गहरा संबंध है। परंतु हमें ध्यान ये रखना है कि ये जो हमारी मेमोरी पावर है, ये हमारी बुद्धि का विषय है। देखिए, पहले दिन से हमने थोड़ा थोड़ा इस पर प्रकाश डाला। तीन चीजें हमारे पास हैं, मन, बुद्धि और ब्रेन, मस्तिष्क।
0: जी,
1: बुद्धि को डिफाइन करना मनोवैज्ञानिकों के लिए बहुत कठिन काम रहा है। मैंने पढ़ा था, 10 डेफिनेशन दी थी, स्टिल दे वर नॉट सेटिस्फाइड। इसलिए सेटिस्फाई नहीं हुए कि मन और बुद्धि हैं हमारी आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां, और वो काम करती हैं ब्रेन के द्वारा। ब्रेन है हमारी एक इंजन, एक मशीन, एक कंप्यूटर। तो तीनों का ठीक होना जरूरी है।
0: मतलब मन और बुद्धि सूक्ष्म है, ये स्थूल रूप नहीं है, जैसे फिजिकल फॉर्म इनका नहीं है, ब्रेन का एक फिजिकल फॉर्म है। जी,
1: तो मेडिकल साइंस या मनोवैज्ञानिक ब्रेन के बारे में सब कुछ देखते हैं, सोचते हैं, मन और ब्रेन एक ही है, बुद्धि और ब्रेन एक ही है, लेकिन देखो शब्द अलग अलग हैं। इंग्लिश में भी मन को माइंड, बुद्धि को इंटेलेक्ट और मस्तिष्क को ब्रेन कहते हैं। तो तीनों अलग अलग चीज हो गई। कार्य का स्थूल रूप हमारा ब्रेन है, तो वो भी बहुत हेल्दी होना चाहिए। और हमारी बुद्धि जो सूक्ष्म शक्ति है, जिसमें विवेक समाता है, हम जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं, वो उसमें समाता है, तो वो भी बहुत क्लीन होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखेंगे, ब्रेन बहुत हेल्दी, बुद्धि इंटेलेक्ट बहुत क्लीन और मन बहुत पॉजिटिव, यानी व्यर्थ विचारों से मुक्त, बहुत एकाग्र। तो अगर ये तीनों हमारे पास ठीक हैं, तो सच तो ये होगा कि एक बार जो हम पढ़ लेंगे वो हमें याद ही रहेगा। और फिर भी अगर मान लो एक बार पढ़ने से याद नहीं होता, तो 2-4 बार पढ़ने से याद होने लगेगा। तो मूल चीज हमें इन तीनों को ठीक रखने पे ध्यान देना चाहिए।
0: जी, अपने ब्रेन को हम हेल्दी रखें, साथ ही मन को व्यर्थ विचारों से मुक्त रखा जाए, और बुद्धि में भी गंदगी ना डाली जाए, उसे क्लीन रूटीन रखा जाए, एक बहुत सुंदर बेसिक बातें आपने बताई भ्राता जी, और क्या क्या कारण आप देखते हैं? जैसे आपने देखा और आप अपने जमाने में आपने देखा होगा कि बच्चों में ऐसी समस्या शायद कम रही होगी, लेकिन आज के दौर में ज्यादातर बच्चों में ये समस्या देखने में आती है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट, सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, स्कूल में भी, ट्यूशन में भी, आके होमवर्क भी करते हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी यदि जब वो टेस्ट देते हैं या एग्जाम देते हैं या कल जो उन्होंने पढ़ा है उसे याद करने की कोशिश करते हैं या कुछ पूछा जाता है तो वो कहीं ना कहीं मिस हो गया होता है, तो ये क्या कारण है ऐसे जिसके कारण स्मृति शक्ति का ह्रास होता है?
1: देखिए, ये बुद्धि और ब्रेन
0: जी
1: दोनों ही हर मनुष्य के पास बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन सबके पास अलग अलग भी हैं
0: जी।
1: किसी की बुद्धि की क्षमता कुछ है तो किसी की बुद्धि की क्षमता कुछ,
0: ब्रेन हम आईक्यू कह सकते हैं,
1: इसको आईक्यू कहते हैं, इसको ही आईक्यू कहते हैं, और किसी का ब्रेन, अब देखो ब्रेन का निर्माण माँ बाप के द्वारा भी हुआ है
0: जी।
1: तो इसके पीछे और भी फैक्टर्स होते हैं पूर्व जन्मों के, तो ब्रेन किसका कैसा गर्भ से ही बना है, उसमें कितनी एफिशिएंसी या डेफिशिएंसी रह गई है, कौन सी चीजें कम रह गई हैं, कुछ चीजें 5 साल के बाद दिखाई देती हैं कि बच्चे में ये कम है, कुछ 10 साल के बाद कमी दिखाई देती है, तो कुछ 30-40 साल के बाद भी कोई कमी उभर कर सामने आ जाती है। तो ये ब्रेन तो ऐसी एक चीज है जिसको सारे संसार की मेडिकल साइंस भी केवल 10% ही जान सकी है। ये एक अपने में बहुत वंडरफुल बात है। हमारे यहाँ सर्जन्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी ऊपर ज्ञान सरोवर में, माउंट आबू में
0: जी।
1: तो सभी एक मत से ये बात बोल रहे थे कि ब्रेन की नॉलेज तो बहुत ही कम है, हर एक के ब्रेन की रचना अलग अलग, हर एक के ब्रेन में भिन्न भिन्न जो फ्लूइड्स हैं, केमिकल्स हैं, उनका सीक्रेशन अलग अलग, तो वो सोच ही नहीं पा रहे थे कि एक मिनट में कोई कह रहा था 800, कोई 400 केमिकल्स का सीक्रेशन होता है, चर्चा कर रहे थे, हम उसमें नहीं जाएंगे, पर कहने का अर्थ ये है कि हर एक का ब्रेन अलग अलग, हर एक की बुद्धि अलग अलग, हर एक के मन के सोचने का तरीका अलग
0: अलग, अलग, अलग।
1: अब इनको हमें अपने ब्रेन की क्षमता के अनुसार ही अपनी मेमोरी पावर को भी बढ़ाना है, लेकिन हम ये अवश्य कहेंगे, देखिए एक सूक्ष्म बात मुझे कहनी है सबको कि ब्रेन में, सबके ही ब्रेन में बहुत शक्ति है, लेकिन ब्रेन के कुछ हिस्से ब्लॉक्ड हो जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं
0: जी,
1: कुछ लेयर्स आ गई हैं। अगर मनुष्य अपने ब्रेन को भी एनर्जेटिक कर दे, जैसे हम मेडिटेशन के राजयोग की चर्चा कर रहे थे
0: जी,
1: तो वो लेयर्स भी हट जाती हैं, वो ब्लॉकेज भी खुल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल शहरों में लाफिंग क्लब खुल गए हैं
0: जी, जी,
1: तो
0: जी,
1: बहुत जोर जोर से हंसाया जाता है, होती तो बनावटी हंसी है, अगर मनुष्य नेचुरल रूप से खुले दिल से हटे हंसे तो उसके ब्रेन के अनेक ब्लॉकेजेज खुल जाएंगे। और भी बच्चों को ये विशेष रूप से जानना चाहिए कि टेंशन ब्रेन को ब्लॉक करती है, ब्रेन के कई केंद्र उससे बंद हो जाते हैं, इसे सभी बच्चे जो बहुत खुश रहेंगे, टेंशन कम से कम रखेंगे, उनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होगी
0: जी। मतलब एक स्ट्रेस की बात जो हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि किसी प्रकार का तनाव ना लें, यदि तनाव होगा तो कहीं ना कहीं उनकी स्मरण शक्ति पे इसका प्रभाव दिखाई देगा, और साथ ही आपने मेडिटेशन के बारे में कहा, मेडिटेशन यदि करते रहेंगे तो जो ब्लॉकेजेस ब्रेन में आ गए हैं कहीं ना कहीं वो तो सूक्ष्म है, दिखाई तो देंगी नहीं, लेकिन यदि ऐसा लगता है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस दूर होंगे और उन्हें पढ़ने में भी मन लगेगा और साथ ही उनकी स्मरण शक्ति।
1: मैंने पहले भी जोड़ा था
0: जी
1: कि एक तो लाफिंग की बात है
0: जी,
1: तो लाफिंग तो एक स्थूल चीज है, पर खुश रहने से ऑटोमेटिकली वो खुलते रहते हैं, फिर भी बच्चे हंसे भी जरा खुल के, खेल कूद में भी और डांस करने से भी और अच्छा गीत गाने से भी, अच्छे म्यूजिक सुनने से, इन सब से भी ब्रेन के ब्लॉकेज खुलते हैं। लेकिन मैं बहुत अच्छे जो मुझे इसके लोगों के साथ अनुभव हुए, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है, जो हमारे देश में बहुत आजकल प्रचलित हो गए हैं, उससे हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन जाने लगती है, उससे भी ब्रेन के ब्लॉकेज बहुत खुलते हैं। और जैसे हम पहले चर्चा करी आए हैं, एक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर नींद, इससे भी हमारा ब्रेन बहुत हेल्दी रहता है
0: जी।
1: इन पे सभी माँ बाप ध्यान दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा कोई कारण आपको लगता है ब्रदर जी कि जो हमारी जो ब्रेन की शक्तियां हैं वो तो हैं ही जैसा आपने कहा, लेकिन फिर भी जो स्मृति शक्ति कम होती चली जा रही है और उसके कारण हमें एक बहुत बड़ी क्षति हो रही है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी याद नहीं कर पा रहे हैं, तो उन चीजों पर अवश्य ध्यान दिलाएं।
1: बुद्धि जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है
0: जी,
1: अब बुद्धि में जितनी निगेटिविटी किसी बच्चे ने भर ली, गंदगी जो हम चर्चा कर आए आज, गंदगी डालने वाली चीजें हमारे घरों में, पत्र पत्रिकाओं में, पुस्तकों में, बहुत सारी चीजें हैं, तो ब्रेन में तो एक मैप बनता रहता है ना, एक पिक्चराइज होती रहती हैं चीजें उसमें और वो फिर हमारी बुद्धि को इतना भरपूर कर देती हैं कि और जो अच्छी चीजें हम उसमें डालेंगे वो साथ साथ बाहर निकलती रहती हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को व्यर्थ चीजों से मुक्त रखना, व्यर्थ सीन न देखना, व्यर्थ दृश्यों की कल्पना न करना, व्यर्थ विजुअलाइजेशन न करना, इसकी भी बहुत आवश्यकता है, इससे मेमोरी पावर बहुत शार्प हो जाएगी।
0: आप एग्जांपल भी दिया करते हैं राता जी कि जैसे यदि हमारे हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 40 GB है और ऑलरेडी हमने 40 GB का मटेरियल उसमें डाल दिया है, या अपने कार्ड में हमने यदि उस 4 GB का है या जो भी है कार्ड भरपूर कर दिया है, तो फिर से उसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। तो ये बहुत सुंदर और गहरी बात सूक्ष्म आपने कही, यदि व्यर्थ की चीजें देख के हमने अपनी बुद्धि को ऑलरेडी भर दिया है तो अब नई चीज अंदर नहीं जाएगी और फिर स्मरण शक्ति की तो बात ही नहीं रह जाती है। एक बहुत सुंदर बात ब्राता जी आपने कही। इसके अलावा कोई और चीज जो स्मरण शक्ति को ह्रास कर रही है?
1: अब देखें मन पर
0: जी,
1: अब तीसरी जो हमारी शक्ति हो गई वो है मन। तो मन के विचार जितने ज्यादा चलते होंगे तो मन की शक्तियों का ह्रास होता रहता है। और देखिए मेमोरी भी जो आएगी, मेमोरी पावर जो है वो माइंड के रूप में ही तो काम करेगी
0: जी।
1: ब्रेन उसका स्थूल रूप, बुद्धि उसकी बड़ी सूक्ष्म चीज जिसमें वो भर जाता है सार रूप में
0: जी।
1: और स्थूल उसको जो कार्यरत करेगा, जो रिफ्लेक्ट करेगा वो है मनुष्य का मन
0: जी।
1: तो मन को भी बहुत अच्छा रखे, उसके विचार अच्छे रखे, जैसे मेडिटेशन की हमने बातें की, उससे विचार सुंदर होंगे, विचार शुद्ध होंगे, तो ये तीनों चीजें मिलकर हमारी मेमोरी पावर को बहुत बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ चीजें और भी इम्पोर्टेंट हैं जिन पे ध्यान देना पड़ेगा बच्चों।
0: जी जी, बहुत सुंदर प्रता जी। क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं, अब कारण तो ये आपने बहुत सुंदर बताया जिन पे ध्यान जरूर देंगे विद्यार्थी, लेकिन क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाया जा सकता है? मान लीजिए मैं हूँ क्लासरूम में, हूँ पूरी तरह से जो पढ़ाया गया उसे क्या मैं इनकोड कर सकता हूँ? क्योंकि ये तीनों चीजें हैं स्मरण शक्ति में रहता जी, एक तो इनकोडिंग जो चीजें इंफॉर्मेशन आ रही है हम अपने अंदर डाल रहे हैं, दूसरा स्टोरेज हम कितना स्टोर कर पाते हैं, और फिर रिट्राइवल अर्थात हम भविष्य में कितना उसे समय आने पे याद कर सकते हैं, बात यही है इन तीनों चीजों पे। तो क्या ऐसी युक्तियां हो सकती हैं कि जब हमें जिस चीज की जरूरत पड़े हम उसे रिकॉल कर सके?
1: हाँ देखिए, उसकी विधि तो है ही, वो मैं मेडिटेशन की एक बात और सभी बच्चों के सामने रखूंगा, बहुत सिंपल है, बच्चे आराम से उसको ग्रहण करेंगे। लेकिन मैं एक चीज पहले और देना चाहता हूँ कि पहले बच्चों को अपने सब्जेक्ट में फुल इंटरेस्ट होना चाहिए।
0: बहुत सुंदर
1: जी। इंटरेस्ट अगर कम होता है और या उनकी बुद्धि थोड़ी रिजेक्ट कर रही है उस सब्जेक्ट को और उन्होंने पहले से ही अपने सब कॉन्शियस माइंड में भर दिया है मैथमेटिक्स, बड़ी मुसीबत है, तो ये तो मेरे से होता ही नहीं, बड़ा हार्ड सब्जेक्ट है ये तो इससे क्या होता है, उनका इंटरेस्ट लूज होता रहता है। लेकिन वो अपने अंदर इंटरेस्ट क्रिएट भी करें कि नहीं, ये मेरा सब्जेक्ट है, मुझे इसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना है और मुझे इसमें होशियार होना है, मैं बहुत ध्यान से पढ़ूंगा। तो एक हुआ पहले इंटरेस्ट, दूसरा हम बहुत अटेंशन देंगे उन चीजों पर, अटेंशन का ही संबंध कंसंट्रेशन से है। सिलेक्शन भी हमारा बहुत अच्छा हो, सिलेक्शन माना भाई ये हमने मान लो मैथमेटिक्स है या इंग्लिश है जो भी हार्ड लग रहा है, फिजिक्स है, नहीं ये मेरा अपना सिलेक्शन है और मुझे इसमें परफेक्ट होना ही है, मेरी सब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इसमें। तो एक इंटरेस्ट भी क्रिएट करें, इंटरेस्ट क्रिएट होने से अटेंशन बढ़ता है
0: जी।
1: तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। आज बच्चों में क्या हो गया है कि वो रटना चाहते हैं हर चीज को। मैंने देखा एमए कर लिया इंग्लिश से
2: जी,
1: लेकिन इंग्लिश ही गलत लिख रहे हैं, बोलनी तो जरा भी नहीं आती
2: जी।
1: तो इसमें क्या है कि उन्हें ये है कि हमें रट रटा के अच्छे मार्क्स ले आने हैं, लेकिन बच्चे ये सीखें, एक अटेंशन दे दें कि हमें अंडरस्टैंडिंग से अपनी नॉलेज बढ़ानी है।
2: बिल्कुल।
1: तो कोई भी चीज चाहे वहां वो क्वेश्चन आंसर करें अपने टीचर से, ये क्यों,
2: बिल्कुल जी, क्यों? होता यही है। हाँ। कई बार बच्चे डर की वजह से या फिर संकोच की वजह से कि भाई मेरे साथी विद्यार्थी क्या सोचेंगे कि इसे इतना भी नहीं आता, ये तो बुद्धू है, या टीचर की डर से कि इतनी देर से तुमको समझा रहा हूँ, पूरी रामायण हो गई और सीता कौन है ये पूछ रहे हो, तो ये एक भय कहीं ना कहीं उन्हें ये अंडरस्टैंडिंग वाली जो आपने पहलू कही सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ नहीं पाते हैं इसलिए शायद वो उसको याद भी नहीं कर
1: भूल जाते हैं, क्योंकि जिस चीज को समझ लेता है उसको महत्व देता है, उसमें भी उसका इंटरेस्ट जाएगा और वो उसकी मेमोरी में छप जाएगी। मैं इसमें एक छोटी सी विधि और जो मैं बहुतों को कराता हूँ अपने यहाँ भी
2: जी,
1: कि जो चीज उन्हें याद करनी है ना, मान लो कोई अच्छी चीज है और उन्हें भूल रही है, वो उसे 7 बार लिखें।
2: ये कोई भी अच्छी चीज
1: जो उन्हें याद करनी है,
2: याद करनी है जी,
1: मान लो एक लेसन ही है या कोई सिद्धांत है
2: जी,
1: उसके सब थोड़े ऐसे हैं बच्चों को रटने पड़ रहे हैं, रटे नहीं जा रहे हैं या बार बार भूल रहे हैं
2: जी,
1: तो किसी भी टाइम या सवेरे उसको 7 बार लिखें,
2: अच्छा
1: तो याद रहने लगेगा
2: जी।
1: या दूसरा तरीका अपनाएं, उसको 7 बार बोलें, थोड़ी आवाज से बोलें
2: जी,
1: तो वो मेमोरी में छप जाएगा। ये चीजें छपती हैं और बचपन काल में बोलने से बहुत अच्छी तरह छपती हैं
2: जी,
1: लिखने से भी कई बार लिखने से वो बहुत अच्छी तरह छप जाती हैं
2: जी,
1: इससे भी उनको याद रखने में बहुत मदद मिलेगी।
2: बिल्कुल, तो या तो बोल करके इस चीज को याद करने की कोशिश करें या फिर लिखें, तो लिखने का भी प्रभाव ज्यादा उनकी स्मरण शक्ति पे पड़ेगा। प्रता जी, इंटरेस्ट की जो बात आप कर रहे थे, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें करनी भी है लेकिन उसमें इंटरेस्ट भी पैदा नहीं हो रहा होता है। अब देखिए, मूवी हम बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, तो शुरुआत कहाँ से हुई, कौन एक्टर था, कौन एक्ट्रेस थी, कौन विलेन था, आदि आदि, चूंकि मेरा इंटरेस्ट है। या स्पोर्ट्स की बात है, मान लीजिए आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट मैच है, वर्ल्ड कप चल रहा है, कौन सी टीम का कैप्टन कौन है मैं, या पूरे 11 मेंबर्स की टीम मैं बता सकता हूँ, चूंकि मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन पढ़ाई में कुछ सब्जेक्ट्स की बात यदि करें, उसमें मेरा इंटरेस्ट पैदा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण मैं उसे स्टोर नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ विद्यार्थी क्या करे?
1: हाँ, देखिए वही बात जो मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सत्य है
2: जी,
1: कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें हर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता।
2: बिल्कुल।
1: तो कुछ देशों में ऐसा एजुकेशन का सिस्टम है और हमारे देश में भी ये होना चाहिए कि बच्चों की चॉइस क्या है। बहुत जगह तो ऐसा होता है कि एक टेबल पे ही बहुत सारी चीजें रख दी जाती हैं और बच्चों को छोड़ दिया जाता है और देखा जाता है
2: उनके इंटरेस्ट
1: की चीज में, वो बंदूक उठाते हैं, तलवार उठाते हैं, किताब उठाते हैं, खिलौने उठा रहे हैं, खाने पीने की चीज उठा रहे, अच्छे कपड़े उठा रहे, बहुत सारी चीजें उसमें जो उनकी जो एक मेंटेलिटी है उसको पहचानने में उन्हें बहुत अच्छी मदद करती है। तो ये तो समस्या रहेगी कि हर बच्चे का इंटरेस्ट हर सब्जेक्ट में नहीं होगा। मान लो एक बच्चे का इंटरेस्ट हिस्ट्री में बहुत है और हम उसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स दिला रहे हैं तो वो उसको हार्ड तो पड़ेगा
2: ही। जी, दो पक्ष आते हैं, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। एक समय होता है, एक समय तक, जबकि सारे ही कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, वहां भी ये प्रॉब्लम आती है कि भाई मैथ मुझे नहीं बन रहा है। जब मुझे चूज करने की बात आती है तब तो ठीक है कि मुझे मैथ में प्रॉब्लम है या बायो में प्रॉब्लम है तो मैं आर्ट्स ले लेता हूँ या मुझे कुछ और चीजें सेलेक्ट कर, तो वहां तो एक चॉइस की बात है। लेकिन इस दरमियान जबकि मेरे पास और दूसरी कोई चॉइस नहीं है, वहां क्या करें?
1: देखिए, वहां यही करना पड़ेगा कि जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट हो उसमें तो हमें बहुत ध्यान देना है, लेकिन पास तो सभी सब्जेक्ट में होना ही पड़ेगा।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और ये प्रॉब्लम आएगी कि मान लो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, उसमें इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन वो सब्जेक्ट है, उसके कम मार्क्स हमें बिल्कुल असफल कर देंगे, तो उसपे भी इतना ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट उसमें नहीं क्रिएट हो रहा तो उसको याद कर लें, कुछ चीजों को रट लें।
2: लेकिन फिर तो वही बात आ जाती है कि हम रट रहे हैं, तो क्या यहाँ भी कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली बात को शामिल नहीं किया जा सकता कि वो अपने टीचर के साथ बैठ करके थोड़ा सा उस विषय को समझने की कोशिश करे, या अपने फ्रेंड सर्कल में बैठ के, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके, मतलब उस विषय को हवा ना बना करके उसे समझने की कोशिश करे, तो क्या वो सफलता
1: प्राप्त कर सकते? अच्छी बात है जी। अगर टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप ऐसे हो जाएं कि बिल्कुल वो आपस में बहुत अच्छी उस पर लेन देन कर सकें, डिस्कस कर सकें, तो एक नीरस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो क्या इस ढंग से पढ़ाना जानते हैं कि वो हर चीज के लिए इंटरेस्ट क्रिएट कर दें बच्चों में? अगर हमारे शिक्षकों को इस तरह की ट्रेनिंग दे दी जाए, जो है नहीं
2: जी,
1: उनका तो काम है सिलेबस में जो है वो सुना दिया, आगे पढ़ा दिया, लेकिन अगर सचमुच टीचर्स को ऐसी ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो एक नीरस सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं बच्चों को, और बच्चों को उसमें होशियार बना सकते हैं। ये ठीक है कि कोई एक चीज ऐसी हो सकती है जो बच्चे का संस्कार ही ना हो, उस पे तो उसको जबरदस्ती लाया नहीं जा सकेगा, पर ये समस्या किसी हद तक हल की जा सकेगी।
2: जी जी जी, मतलब थोड़ा सा विद्यार्थी भी अपनी तरफ से प्रयास करे उस चीज को समझ का, टीचर्स भी उस विषय को थोड़ा सा हल्का करके, मनोरंजक बना करके विद्यार्थी को देने का प्रयास करें, ताकि ताकि उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। जैसे भ्राता जी, मैं कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो बहुत ही बुद्धू से बुद्धू विद्यार्थी को भी 100 तक का पहाड़ा सिखाने वाले भी ऐसे टीचर्स हैं, ऐसा मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि वो थोड़े समय में ही कैसे वो 100 तक का पहाड़ा पढ़ा सकते। फिर आप उस विद्यार्थी से कहीं से भी पूछ लो, तो ये बात तो आपकी बहुत सही है कि यदि टीचर्स को भी यदि कुछ ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो विद्यार्थियों की इस समस्या को सॉल्व कर दे, क्योंकि शायद विद्यार्थी उस लेवल का भी ना हो उसकी बौद्धिक स्थिति, लेकिन टीचर्स इसमें काफी अच्छी उनकी मदद हमें कर
1: अभी
2: सकते
1: हैं। अभी एक टीचर मिले जो चैलेंज कर रहे थे कि मैं 3 घंटे में बच्चों को इंग्लिश सिखानी प्रारंभ कर देता हूँ, और बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है कि वो इंग्लिश से लव करने लगते हैं और उन्हें फीलिंग होने लगती है नाउ इंग्लिश इज इजी सब्जेक्ट फॉर मी, आई कैन लर्न एवरीथिंग। तो बच्चों की बात तो देखो, वो छोटे हैं, वो खुलते भी नहीं है, कई बच्चे शर्मीले होते, कईयों को तो पता भी नहीं ना कि हमें टीचर से पूछना भी चाहिए क्या। तो ये काम ऊपर की ओर से अगर होगा तो हर चीज के लिए स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकेगा।
2: जी जी जी। और बात रही भरत जी अटेंशन की भी, तो अटेंशन अर्थात एकाग्रता की बात तो हम काफी कर ही चुके हैं कि वो अपने आप को एकाग्र करें बाहरी बातों से निकाल के। बात रही सिलेक्शन की, तो एक सिलेक्शन का जो दौर है, एक सिलेक्ट तो करते हैं, लेकिन भरत जी क्या ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए 1 घंटे तक कोई लेक्चरर हमें स्पीच दे रहे हैं या अपने विषय के बारे में बता रहे हैं, और मे बी वो बोरिंग भी हो सकता है लेकिन मुझे करना भी है, तो ऐसे में जो सिलेक्शन है कि कुछ विशेष बिंदुओं को यदि वो सिलेक्ट कर लें तो शायद मेमोरी उनकी अच्छी हो सकती है।
1: जी, के लंबी चौड़ी बातों को न लेकर तो 5 बातें चुन लें उनमें से
2: जी,
1: और उन 5 बातों को याद करें, सिलेक्ट कर लें, तो वो उनकी मेमोरी में छप जाएगी।
2: भ्राता जी, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने स्मरण शक्ति के लिए एक बहुत सुंदर सा एक स्वरूप बनाया था विद्यार्थियों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, और मेरी हार्दिक इच्छा है कि उस पे आप भी प्रकाश डालें कि स्पिरिचुअल फील्ड से किस प्रकार से मदद की जा सकती है बच्चों को, और वो है आंसर। उन्होंने कहा था कि विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति के कैसे बढ़ाया जाए, उसके आंसर में ही आंसर है, और इसकी बहुत सुंदर डिटेल उन्होंने दी थी। आज वक्त की कमी है, मैं चाहूंगा कि कल विस्तार से इस पर हम चर्चा करें और इस पे आपके जो व्यू है वो भी बच्चों को मिले, ताकि विद्यार्थियों की एकाग्रता बहुत अच्छी हो। भ्राता जी, आज बहुत सुंदर बातें आपने स्मरण शक्ति के विषय में कही है, निश्चित रूप से विद्यार्थी वर्ग इसे लाभान्वित होगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विद्यार्थियों, आपने देखा कि किस प्रकार से एकाग्रता का कनेक्शन हमारी स्मरण शक्ति से है, और आज जो एक बड़ी समस्या बनती जा रही है कि हमारी स्मरण शक्ति कम होती जा रही है, कारण कई हो सकते हैं जिनकी चर्चा भ्राता जी ने भी आज की है, लेकिन निवारण स्वरूप हम ये देखें, इंटरेस्ट हमें अवश्य पैदा करना है, हमें अपने अटेंशन को बनाए रखना है अपनी स्टडी में, साथ ही कुछ सुंदर पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लेना है जिसके माध्यम से हम उन चीजों को स्टोर कर सकें, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि हम उन बातों को समझने की कोशिश करें, न कि रट्टा लगाएं, अन्यथा आपकी भी स्थिति थ्री इडियट्स के चतुर के जैसी हो जाएगी। आप सबने वो मूवी देखी होगी। रट्टा ना लगाएं लेकिन समझने की कोशिश करें। तो आज यही मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। आप सब हमारे साथ समाधान में बने रहें। नमस्कार।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू। आप सच बोलेंगे, देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना है, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना है, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं,

0: सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। गुड मॉर्निंग गाबू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज विशेष शनिवार का दिन है और शनिवार को आप गुड मॉर्निंग गाबू कार्यक्रम को सुनते हैं। और गुड मॉर्निंग गाबू में आप सभी को कुछ खास बातें हम शेयर करते हैं और निश्चित तौर पर आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो आइए आज के दिन विशेष को समझने की कोशिश करते हैं। और आज तारीख हो गया 6 जून। साथियों 6 जून 2026 आज का तारीख है और देखा जाए तो शनिवार का दिन है। और शनिवार वैसे छुट्टी का दिन होता है, बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है अभी तो छुट्टियां चल रही हैं लेकिन स्कूल चालू होते समय भी सैटरडे सबको अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हाफ डे होता था, 4-5 लेसन्स के बदले 3-4 ही लेसन्स हो जाते थे और उसके बाद आधे समय में छुट्टी हो जाती थी। तो घर पे जाके या बच्चों के साथ या हमें अपने खेलने के ग्रुप के साथ मिलकर हम खेला करते थे, तो इसीलिए भी खुशी होती थी। लेकिन घर वाले टेंशन में हो जाते थे क्योंकि खेल कर कपड़े गंदे करके जब हम घर में जाते थे तो मम्मी अपनी छड़ी लेकर जो है हमारा इंतज़ार कर रही होती है। और खाने पर हम टाइम पर नहीं पहुँच पाते क्योंकि खेलने में इतने मगन हो जाते थे। एक तो कपड़े गंदे हो जाते थे, देखते ही वो बस कपड़ों को देखती थी, और ऊपर से लेट आ गए हम खाने के समय के बाद आ गए तो और ज़्यादा गुस्सा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने अनुभव किया है। लेकिन उस समय हमें बहुत डर भी लगता था और अच्छा भी नहीं लगता था। लेकिन आज उन बातों को सोचकर, माँ का प्यार को देखकर, माँ के प्रति और सम्मान और प्यार बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पे आप भी अपने बचपन के कुछ ऐसी चीज़ों को जब याद करते हैं तो माँ के प्रति जो प्यार है वो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा लगता होगा। तो चलिए, मैं चाहूँगा कि आप भी अपना अनुभव साझा कीजिए फ़ोन करके 94-1415-1415 इस नंबर पर, और अपने बचपन की कुछ सुंदर यादें हमारे साथ ताज़ा कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि हम सभी आज जो है ऐसे बचपन की कुछ सुंदर यादें ताज़ा करेंगे ताकि हमारे इस समय के गम भूल जाए और खुशियों से हम अपने समय को व्यतीत करेंगे। तो चलिए आप सभी पहला देखते हैं कौन कॉल करके अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। और आज सुनील दत्त जी का जन्मदिन है तो उनकी कुछ खूबसूरत गाने और उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें ज़रूर हम आपको शेयर करने वाले हैं। तो आइए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाते हैं जो हमेशा ही हम सभी को मोटिवेट करता रहा है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है ना। तो आइए आज की बात करते हैं, आज के समय की बातें करते हैं, लेकिन पुरानी यादों को छोड़ेंगे नहीं, पुरानी अच्छी यादों को शेयरिंग करते रहेंगे ताकि हमारा आज का दिन भी अच्छा बन जाए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। बड़ा प्यारा सा गीत आपने सुना, आशा करूंगा आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। और जैसे हमने कहा था कि आज सुनील दत्त जी का विशेष जन्मदिन है और उनके खूबसूरत गाने आपको सुनाने वाला हूं मैं, और साथ ही साथ हम अपने बचपन की कुछ यादें ज़रूर ताज़ा करेंगे। तो चलिए, गुड मॉर्निंग गाबू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और छोड़ो कल की बातें, ये गीत सुनकर कहीं ना कहीं आपके मन को आज भी सुकून तो मिलता ही है और अच्छा भी लगता है। तो ऐसे खूबसूरत गाने ज़रूर हमें जो है याद रखने चाहिए, कलेक्शन बना के, ताकि हम जब भी मायूसी हो या कभी हम लो फील करें, एनर्जी लेस फील करें, थकावट फील करें, तो ऐसे सुंदर गीतों को सुनकर हम फिर से रिचार्ज हो सकते हैं, है ना, कमाल की बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी देखते हैं आज कौन पहला फ़ोन करके अपनी बचपन की बातें सुनाते हैं। तो चलिए, मैं आपको सीधे 6 जून के बारे में बताना चाहूँगा। और आज का दिन विशेष के बारे में अगर बता दूँ तो आज धनिष्ठा नक्षत्र है और इस्लामी हिजरी 1447 जिलहध बुला आज है। इसके साथ ही विशेष राष्ट्रीय शके 1948 16 गते 23 अधिक ज्येष्ठा शनिवार आज है। तो चलिए, आज जैसे कि विशेष सुनील दत्त जी के बारे में बात करने वाला हूँ। सुनील दत्त जी एक विशेष व्यक्ति रहे हैं। भारतीय सिनेमा में एक ऐसे अभिनेता थे जिनको पर्दे पर देख एक आम हिंदुस्तानी अपनी ज़िंदगी की झलक देखता था। सुनील दत्त 2004 और 5 के दशक के दौरान भारत सरकार में युवा मामलों और खेल विभाग के कैबिनेट मंत्री भी बने रहे। सुनील दत्त का वास्तविक नाम बलराज रघुनाथ दत्त था, लेकिन बाद में उन्होंने इस नाम को चेंज कर लिया था और सुनील दत्त इसी नाम से वो फेमस भी हुए। तो आइए बात करते हैं उनके जीवन की और खूबसूरत बातें। हिंदी सिनेमा जगत में सुनील दत्त को एक ऐसी शख्सियत के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने फिल्म निर्माण, निर्देशन और अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उनके किरदार वास्तविक जीवन के बहुत करीब होते थे और उनका व्यक्तित्व भी उनके किरदार की तरह उज्जवल और प्रभावशाली भी रहा। सुनील दत्त का जन्म आज के दिन 1929 में पंजाब, जो अब पाकिस्तान के झेलम जिले के खुर्दी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। सुनील दत्त बचपन से ही अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते थे। बलराज सहानी की फिल्में देखकर, उनकी अभिनय को देखकर उनके अंदर जो है उनके जैसा बनने का एक ख्याल आया और फिर अभिनेता बलराज सहानी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी खासी स्थापित हो चुके थे उस समय, और उन्हें देखते हुए अपना नाम बलराज दत्त से बदलकर उन्होंने सुनील दत्त रख लिया। और उनका बचपन यमुना नदी के किनारे मंदली गांव में बीता, जो हरियाणा प्रदेश में आता है। सुनील दत्त इसके बाद लखनऊ चले गए और वहां पर वो अख्तार नाम से अमीनाबाद गली में एक मुसलमान औरत के घर पर रहे। कुछ समय बाद अपने सपनों को पूरा करने के लिए फिर वहां से वो सीधे मुंबई आ गए। अब मुंबई में क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं और कैसे इन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, सारी बातें कुछ ही पल में आपको सुनाऊंगा। लेकिन अभी आपको सीधे ले चलता हूं एक बहुत ही खूबसूरत, और ये गीत आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुनील दत्त और बच्चों पर फिल्माया गया और मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, इन सभी पर ये पिक्चराइज किया गया था। तो आइए ये खूबसूरत गीत आपके लिए अभी करते हैं। और इस बीच हमारे साथ सुरेश जी जोटाना से जुड़ रहे हैं। सुरेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
1: जी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया है। गुड मॉर्निंग आबू में आपका स्वागत है।
1: जी जी, आपका भी स्वागत है स्टूडियो में, लेकिन वहाँ का जो नंबर है वो आउट गोइंग बंद है बोल रहे हैं।
0: अरे यार, अभी आपको ही रिचार्ज करना पड़ेगा आउट गोइंग के लिए।
1: आपके वहाँ पैसा कूट गया तो हम भेज देंगे।
0: हमारे यहाँ पैसा कूट नहीं गया, कोई देख नहीं रहा, इसलिए आप कर दीजिए। आपका भाग्य बनाना है ना हमें, इसीलिए
1: हमारा भाग्य हम बना देंगे।
0: जी जी। और सुरेश जी बताइए, आप बचपन की कुछ यादें ताजा कराइए जहाँ पर।
1: बचपन तो सर बचपन ही होता है, ना कोई टेंशन, ना कमाने की टेंशन, ना कोई लाने की टेंशन, चलो घूमना फिरना, बस खाना पीना और फिरना, यही तो बात थी इस वक्त।
0: जी,
1: कोई नहीं टेंशन था, कुछ लाना नहीं है, कुछ कमाना नहीं है, बस आनंद से तो हमारा जीवन जाता था, स्कूल में जाए आए थैला फेंक दिया
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: एक जगह पे कोने में और चले पैसे घूमने के लिए, कहीं खेत में कहीं तालाब में, कहीं तालाब के पेड़ पर चढ़ जाना, तालाब में कुत्ता मारना, तैरना, सर ये तो कई सारी बातें हैं हमारे पास।
0: क्या बात है,
1: हम क्या कहते हैं सर, हम दोपहर को नहाने के लिए तो तालाब में ही जाते थे।
0: हाँ।
1: क्योंकि हमारा गांव छोटा सा गांव था, पहले हम यहाँ जोटाना में नहीं रहते थे, और गांव था हमारा, तो हमें रहता थे वो।
0: अच्छा।
1: तो छोटा से गांव में तालाब, बहुत बड़ा तालाब था सर। तो तालाब में क्या कहते हैं, कई सारी भैंसों की तालाब में नहाती थी, तो हम भैंस पे चढ़ जाते थे, और भैंस पे चढ़ते हम भैंस आगे आगे चली जाए, ऊपर बैठे बैठे हम
0: मनाते थे। बहुत बढ़िया।
1: तो ऐसी कई सारी बातें हैं सर। नाना मुझे तैरना भी आता है, उल्टा भी आता है, सोल्टा भी आता है।
0: क्या बात, अद्भुत।
1: तैर के और डुबकी लगा के कहीं से कहीं चले जाते थे अंदर अंदर।
0: अच्छा।
1: तो हमारे क्या था सर, हमारे तालाब में बीचों बीच एक पेड़ था।
0: अरे क्या बात है, क्या
1: जामुन का पेड़ था, तो पेड़ से हम आगे जाके पेड़ पे चढ़ जाते थे, पेड़ पे चढ़ के नीचे गुटका लगाते थे।
0: अच्छा।
1: ऐसे हम शर्ट लगाते थे, और ऐसे भी शर्ट लगाते थे कि नीचे जाके मिट्टी ले आए,
0: बिल्कुल
1: नीचे जाके तालाब के नीचे, तो
0: बिल्कुल
1: लेके नीचे से आते थे।
0: क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत अद्भुत।
1: कई सारी ताजे याद ताजा है सर। स्कूल में तो जाते थे, लेकिन कहते ना कि इस वक्त स्कूल में पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। टीचर बताते थे, हमको पता ही नहीं चलता क्या
0: पढ़ा रहे, क्या बोल रहे।
1: पीछे बैठे बैठे एक दूसरे सप्पा मारते थे, इस वक्त टीचर भी ऐसे थे, कुछ बोलते भी नहीं थे। पढ़ना तो पढ़ो, नहीं कोई बात नहीं। और लगा देते थे काम पे, सभी पेड़ के जो पत्ते पड़े हैं नीचे उसको साफ कर दो, तो कचरा इसके साथ जो पोटली में भर के फेंक दो बार, ऐसे काम करवाते थे, हम करते थे आराम से। तो सही बात है, अच्छी
0: सही बात
1: है, सफाई का काम तो अच्छा ही
0: सर। जी जी जी।
1: तो बस ऐसा ही गाना आज मैं भी सुनना चाहूँगा, बचपन हर गम से बेगाना होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो हमारी तरफ से आपको और हमारे सभी मित्रों को नमस्ते सर, आज के दिन की शुभकामनाएं। शनिवार है,
0: जी जी,
1: लेकिन फिर भी आप हमारे साथ आए, बात होने अच्छा लगे आपको।
0: बिल्कुल।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। चलिए, ये थे सुरेश जी जोटाना से, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं और अपनी बात हमारे साथ साझा कर रहे थे, और बचपन की सुंदर बातें जो है, बचपन हमारा बेगम। गम से दूर रहता है बचपन से, जो है बहुत सारी बातें हमारी जुड़ी हुई हैं। और निश्चित तौर पे आप सभी को भी अपना बचपन अगर याद करेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है और खुशी होती है, और ना कोई गम होता है, ना कोई बात होती है, ना कोई जिम्मेवारी होती है, बस खेलो कूदो और मौज मनाओ। तो इसीलिए बचपन हमारा सबको याद रहता है। तो आइए, मैं बात कर रहा था सुनील दत्त के बारे में। मुंबई आकर सुनील दत्त ने मुंबई परिवहन सेवा में बस डिपो में चेकिंग क्लर्क के रूप में काम करना शुरू कर दिया, जहां उनको 120 रुपये महीने वेतन मिलता था। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए 1955 से लेकर 1957 यानी 3 साल तक वो काफ़ी मेहनत करते रहे, संघर्ष करते रहे, और हिंदी सिनेमा में जगत में अपने पैर जमाने के लिए वो ज़मीन की तलाश के लिए एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो पटकते रहे। सुबह अपना बस डिपो में काम करते रहे और शाम को जो समय मिलता था वो सुनील दत्त अलग अलग स्टूडियो में जाकर अपना जो है इंटरव्यू दिया करते थे। और जय हिंद कॉलेज में जब पढ़कर पूरा उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की तो रेडियो सिलोन की हिंदी सेवा के उद्घोषक के तौर पे उनको अपना करियर शुरू करने का भी मौका मिला, और वहाँ पर भी उन्होंने काम किया, और फिर जहाँ वो फिल्मी कलाकारों का इंटरव्यू लिया करते थे। अब एक इंटरव्यू के लिए उन्हें 25 रुपये मिलते थे, ये दक्षिण एशिया की 50 के दशक में सबसे लोकप्रिय रेडियो सेवा उनके ज़रिए मना उन्होंने की। तो चलिए, ये रहा इंटरव्यू तक बातें, अब आते हैं उनकी एक और पहलू जीवन की, उस पर बातें करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ गुणीलाल जी भी आ गए हैं, वो भी राम राम सा, नमस्ते, ओम शांति। जी बहुत बहुत बढ़िया, कैसे हैं? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, रेडियो पे लोग भी सुन रहे हैं।
1: मेरा दर्द में जाने को, इसको गाना भी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा।
0: हाँ,
1: फोन बंद हो गया।
0: शायद कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार जी, जी जी जी, धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको सीधे जो है चलता हूँ, ले चलता हूँ खास इस जगह पे जहाँ पर एक गीत आपको सुनाने वाला हूँ मैं। बहुत ही प्यारा सा गीत है ये और बड़ा अच्छा सा गीत है आपके लिए, सुनील दत्त का, सुनते रहो मस्कराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

नमस्कार, मैं हूँ श्वेता पंडित, आपकी साथी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है खुशियों की खान, बेटी है तो दुनिया है, बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और बड़ा प्यारा सा गीत आपने सुना। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सुनील दत्त की कहानी को आगे सुनाते हैं। साथियों, रेडियो सिलोन में काम करते हुए सुनील दत्त ने उस समय इनको एक मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दुर्घटना हुई और जहाँ पर नरगिस जो है वो आग में फंस गई थी। उस समय सुनील दत्त जो है नरगिस को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना वो आग में कूद गए और नरगिस को बचा लिया। इस हादसे से सुनील दत्त काफ़ी जल भी गए थे और तथा नरगिस पर भी आग की लपटें का असर हुआ था। दोनों ही थोड़े थोड़े जल गए और इलाज के लिए दोनों जब हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया, उनके स्वास्थ्य होकर बाहर निकलने के बाद दोनों ने शादी का फैसला कर लिया और इस तरह से नरगिस और सुनील दत्त 11 मार्च 1958 को शादी के बंधन में बंध गए और यहाँ से उनकी फिल्मी सफ़र की जीवन कहानी भी शुरू हो जाती है। सुनील दत्त की पहली फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म 1955 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने अभिनेता के रूप में कार्य किया। अपनी पहली फिल्म से उन्हें कुछ खास पहचान तो मिली नहीं। इस फिल्म के बाद कुंदन, राजधानी, किस्मत और खेल और पायल जैसी छोटी फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इससे भी उनको कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन 1957 में जब मदर इंडिया रिलीज हुई, तभी सुनील दत्त को अभिनेता के रूप में खास पहचान और लोकप्रियता मिली। सुनील दत्त को क्या, उसमें पूरे ही जितने लोग थे काम करने वाले, सारे लोग नरगिस, सुनील दत्त और सभी राजेंद्र कुमार, इन सभी की जो है पॉपुलैरिटी इस फिल्म से बढ़ी और वहाँ पर बिरजू की भूमिका सुनील दत्त ने निभाई थी। गांव में सामाजिक व्यवस्था से काफ़ी नाराज और इसी की वजह से वे विद्रोह कर डाकू बन जाते हैं। साहूकार से बदला लेने के लिए वह उसकी पुत्री का अपहरण कर लेता है, लेकिन इस कोशिश में अंत में वह अपनी माँ के हाथों मारा जाता है। इस फिल्म में एक नकारात्मक हीरो का किरदार निभाकर वह दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाने में बिल्कुल सफल हुए। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलता हूँ बचपन की यादें ताज़ा कराने वाला एक और सुंदर गीत। सुनते रहो मस्कर।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। बचपन हर गम से बेगाना होता है। नमस्कार, 39 मिनट हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ। चलिए, गुड मॉर्निंग गाबू में आप सभी का स्वागत है। सुनील दत्त जी के बारे में बातें हो रही थी और आखिरी में जब वो मदर इंडिया सफल हो गया उनके फिल्म और ये अच्छे अपनी पहचान बनाने में सफल हुए तो धीरे धीरे इनको अच्छी फिल्में भी मिलने लगी। और एक जो धमाकेदार एंट्री हुई 1965 में सुनील दत्त की सुपरहिट फिल्म बनी वक्त। जी हाँ, उनके सामने इस फिल्म में बलराज सहानी भी थे, राजकुमार, शशि कपूर और रहमान जैसे नामी सितारे थे। इसके बावजूद सुनील दत्त अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। सुनील दत्त के सिने करियर का 1967 में सबसे महत्वपूर्ण साल साबित हुआ। उस साल उनकी मिलन, मेहरबान और हमराज जैसे सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुई जिनमें उनके अभिनय के नए रूप देखने को मिले। इस फिल्म की सफलता के बाद वो अभिनेता के रूप में शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। फिर सुनील दत्त भारतीय सिनेमा के उन अभिनेताओं में से एक बने जहां पर 50 और 60 के दशक में दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। मदर इंडिया की सफलता के बाद साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, खानदान, पड़ोसन जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों में भारतीय दर्शकों के बीच एक सफल अभिनेता के रूप में इनको अच्छी पहचान मिली। और निर्देशक बीआर चोपड़ा के साथ गुमराह, वक्त और हमराज जैसी खूबसूरत फिल्में इन्होंने काम किया, अपनी यादगार भूमिकाएं निभाए और लोगों को काफ़ी पसंद किया। मल्टी स्टारर फिल्मों में अहम हिस्सा इनको मिलने लगा। तो इस तरह से मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी इन्होंने अपनी जो है आखिरी में अच्छा काम किया। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूं। और जैसे हमने कहा कि एक बहुत ही प्यारा सा जो गीत है सुनील दत्त का वो मैं आपको सुनाने वाला हूं। और ये टुसौ जो टॉप मोस्ट उनके सुपर गाने में से एक गाना है जो सुनकर आपके मन को बेहद खुशी होगी। तो चलिए ये गीत अभी आपको सुनाते हैं और ये गीत आपको भी बहुत पसंद आएगा। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: एंगेजमेंट देयर।
1: चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं सोमवार को। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, और चलिए जाते जाते आप सभी को ले चलूँगा अब सीधे दिल्ली, जहाँ पर आप सुनेंगे आज का समाचार। सुनते रहो मस्कर।
2: नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
4: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है, और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है, और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
3: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
4: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
3: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
5: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूप से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा, क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
3: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
0: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
6: With Nepal, we have an expansive agenda.
7: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
6: Partnership that we have with Nepal.
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
8: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
9: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
3: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
10: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
3: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
11: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमरीका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे एफआईआर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल, सहयोग की ईंटों से सफलता बना।

0: समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। हमेशा विश्वास बनाए रखो, हर एक व्यक्ति को सदैव उस परम पिता परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। यह आज का सुंदर सा विचार है, इसका विश्लेषण एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। एक व्यक्ति का नया विवाह हुआ और वो अपनी पत्नी के साथ वापिस आ रहे थे। मार्ग में वो दोनों एक बड़ी झील को नाव के द्वारा पार कर रहे थे। तभी अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। वह व्यक्ति वीर था किंतु महिला बहुत डरी हुई थी क्योंकि हालात बिल्कुल ही खराब थे। नाव बड़ी छोटी थी और तूफान वास्तव में भयंकर था और दोनों किसी भी समय डूब सकते थे, किंतु वे व्यक्ति चुपचाप निश्चल और शांत बैठा था जैसे कि कुछ नहीं होने वाला है। महिला डर के मारे कांप रही थी और वो बोली, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? यह हमारे जीवन का आखिरी क्षण हो सकता है। ऐसा नहीं लगता कि हम दूसरे किनारे पर कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे? अब तो कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है, वरना हमारी मौत निश्चित है। क्या तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा है क्या? कहीं तुम पागल वागल या पत्थर वत्थर तो नहीं हो गए? वह व्यक्ति खूब हंसा और एकाएक उसने म्यान से तलवार निकाल ली। औरत अब और भी परेशान हो गई कि वह क्या कर रहा है, ये बेवकूफी जैसी हरकत। तब वो उस नंगी तलवार को उस महिला की गर्दन के पास ले आया, इतना पास कि उसकी गर्दन और तलवार के बीच बिल्कुल कम फर्क था क्योंकि तलवार लगभग उसकी गर्दन को छू रही थी। वो अपनी पत्नी से बोला, क्या तुम्हें डर लग रहा है? पत्नी खूब हंसी और बोली, जब तलवार तुम्हारे हाथ में है तो मुझे क्या डर? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। उसने तलवार वापस म्यान में डाल दी और बोला कि यही मेरा उत्तर है। मैं जानता हूँ कि भगवान मुझे बहुत प्यार करते हैं और ये तूफान उनके हाथ में है, इसलिए जो भी होगा अच्छा ही होगा। अगर हम बच गए तो भी अच्छा और अगर नहीं बचे तो भी अच्छा, क्योंकि सब कुछ उस परमात्मा के हाथ में है और वो कभी कुछ भी गलत नहीं कर सकते। वो जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। हमेशा विश्वास बनाए रखो मेरे प्यारे श्रोता बंधु। व्यक्ति को सदैव उस परम पिता परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए हर एक को, जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे फिर से एक बहुत ही सुंदर गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा न करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट्स का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं गीता चिकारा करनाल से। आप सभी को आज के शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते

0: गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का घरेलू जो नुस्खे देने जा रही हूँ बहुत ही सुंदर है। जैसा कि आपको बताया था कि आज का स्वास्थ्य मंत्र, रोज थोड़ा व्यायाम, जीवन भर आराम। कैसे पाएंगे आप, ठीक है, कि कैसे आप व्यायाम के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं, कौन सी बीमारी में कौन सा व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, जानेंगे आप। तो प्यारे श्रोताओं, जिस तरह गाड़ी को चलाने, मतलब चलाते रहने से अच्छी रहती है, ठीक उसी तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम भी बहुत जरूरी है। व्यायाम के बहुत सारे फायदे हैं। शरीर में स्फूर्ति और ऊर्जा बढ़ती है। दूसरा, हृदय स्वस्थ रहता है। तीसरा, वजन नियंत्रित रहता है। चौथा, तनाव, चिंता और अवसाद कम होते हैं। पांचवा है, नींद अच्छी आती है। छठा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। तो कौन सी परेशानी में कौन सा व्यायाम करेंगे, जानेंगे। मधुमेह, जिसको डायबिटीज कहते हैं, तो मधुमेह की बीमारी में, शुगर भी कहते हैं इसको, तो इस बीमारी में रोगियों के लिए रोज 30 मिनट तेज चाल से चलना और हल्की साइकिलिंग लाभदायक है। क्या करेंगे, आधा घंटा आप तेज चाल से वॉकिंग करेंगे, ठीक है, और हल्की हल्की साइकिलिंग करेंगे, ये डायबिटीज के लिए बहुत ही लाभप्रद है। उच्च रक्तचाप वालों के लिए, हाई बीपी वालों के लिए, सुबह शाम टहलना, गहरी श्वास के अभ्यास और हल्के योगासन फायदेमंद रहते हैं। तो क्या करेंगे हाई बीपी वाले, सुबह शाम टहलेंगे, गहरी श्वास के अभ्यास करेंगे और हल्के योगासन करेंगे, फायदा रहेगा। मोटापे में क्या करना है, तेज चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना और हल्के एरोबिक एक्सरसाइज वजन कम करने में मदद करती है। तो मोटापे में तेज चलेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और हल्के एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे, जिससे वजन कम करने में ये एक्सरसाइज मदद करेगी, ठीक है। कमर दर्द में क्या करेंगे भाई, कमर की भी तकलीफ लोगों के बढ़ती जा रही है, तो हल्की स्ट्रेचिंग और विशेषज्ञ की सलाह से पीठ को मजबूत करने वाले व्यायाम कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हल्की स्ट्रेचिंग करिएगा और कोई अगर आपके नज़र में, क्योंकि हमें भी आता है लेकिन हम रेडियो में तो सिखा नहीं सकते हैं ना, तो आप विशेषज्ञ की सलाह से पीठ को मजबूत करने वाले व्यायाम कर सकते हैं। तनाव और अगर चिंता है तो क्या करेंगे, प्राणायाम करिए, ध्यान और सुबह की सैर मन को शांति प्रदान करेगी। तनाव और चिंता है तो प्राणायाम करिए, ध्यान करिए और सुबह की सैर करिए, मन को शांति मिलेगी। सावधानी, यदि किसी को गंभीर हृदय रोग, पुराना दर्द, सावधानी बरतेंगे आप कौन सी बीमारी में, यदि किसी को गंभीर हृदय रोग, पुराना दर्द या अन्य चिकित्सीय समस्या हो तो व्यायाम शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लीजिएगा, ठीक है। तो कहना यही चाहेंगे हम, संदेश यही देना चाहेंगे, दवा से पहले दिनचर्या सुधारें और दिनचर्या में व्यायाम को जरूर शामिल करें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, इसलिए कहा गया है, रोज चलो कुछ कदम, सेहत का होगा साथ, व्यायाम को अपनाओ, खुशियों से भर जाए जीवन का हर पथ। तो ये हुआ सुंदर सा घरेलू नुस्खे और आइए अब अंताक्षरी कार्यक्रम आरंभ करेंगे। हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं, हेलो,
1: हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, सुरेश भाई बोलता हूँ जटाना से।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
1: जी जी, आपका भी स्वागत है, हमारा मित्रों का भी स्वागत है, क्योंकि आज अच्छा दिन है, शनिवार है
0: जी,
1: तो अंताक्षरी का तो सबको एक इंतजार रहता ही है मेरे के लिए
0: जी, और इस बार तो बहुत समय के बाद हो रही है
1: जी, बहुत दिनों के बाद हो रही है, तो सभी जरूर आनंद लेंगे
0: जी,
1: और ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा अंताक्षरी में
0: जी।
1: तो चलो मैं भजन से शुरुआत कर दूं कि
0: आज आप जो भजन सुनाएंगे उसके लास्ट वाला जो अक्षर आएगा वो दूसरों को देंगे, ठीक है, क्योंकि सरल अंताक्षरी है इसलिए
1: जी। चलो मैं भजन तो सुना दूँ।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: अक्षर नहीं है मैं,
0: हाँ जी सुना दीजिए,
1: अभी तो कोई
0: नहीं, अभी कोई नहीं है, आप शुरू करिए फिर आप छोड़ेंगे वो देंगे।
1: अच्छा चले मैं सुना दूंगी।
0: हाँ जी।
1: एक बार एक बार एक बार मोहन मारी छुपड़िए आवो ने मारी छुपड़िए आवो मारा वाला आवी ने आगड़ा सुभावो रे। एक बार एक बार एक बार मोहन मारी झूपड़िए आवो ने जिगरिना
0: आवो ने। जी बहुत बहुत आभार आपका। साथ ही साथ हम एक प्रश्न भी पूछेंगे, एक प्रश्न भी पूछने जा रहे हैं। नमक हमारा दोस्त भी है तो दुश्मन भी, कैसे? तो साथ ही साथ आप प्रश्न का जवाब भी जरूर दीजिएगा और अंताक्षर में जरूर भाग लीजिएगा। आज भजन की थीम है, भजन जिसको हम आध्यात्मिक गीत कहते हैं, तो आप हिंदी राजस्थानी गुजराती भाषा में भजन सुना सकते हैं, लेकिन अक्षर हम देंगे उसी पर। तो सुरेश भाई ने छोड़ा है न, न पर आपको सुनाना है। तो अभी तो हम एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः आपसे रूबरू होंगे अंताक्षर में। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नजर तो है लग जाएगी काना, नजर तो है लग जाएगी मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल। तू इतना ना करियो गुमान, नजर तो है लग जाएगी काना, नजर तो है लग जाएगी काना, नजर तो है लग जाएगी। हेलो, हाँ जी नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते दीदी, सुरेश भाई बोलता हूँ जटाना से।
0: हाँ जी सुरेश भाई, आपको न पर बोल के सुनाना है, मैंने तो ऐसे ही सुनाया।
1: जी कोई बात नहीं।

0: जी दीदी
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका।
0: आपने जो सवाल पूछा था मैं बताऊँ या?
1: हाँ जी, प्रश्न का जवाब भी दे दीजिए। नमक हमारा दोस्त है और दुश्मन भी है, कैसे?
0: दोस्त इसीलिए है दीदी कि दोस्त इसीलिए है कि हम जो खाना खाते हैं तो दीदी इसमें नमक नहीं होता तो खाने में कुछ ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि नमक के बिना खाना बनता ही नहीं, और जो नमक नहीं डालेंगे तो खाना अच्छा लगता भी नहीं। तो खाने के लिए तो हमारा दोस्त है, और दुश्मन इसीलिए है कि हम जो दीदी कोई बीपी का कोई बीमार है और ज्यादातर जो नमक अंदर डाल देते हैं तो भी हमारे लिए दुश्मन है, और बीपी के लिए कोई अपने मरीज के लिए दुश्मन है दीदी। इसीलिए ज्यादा नहीं डालना है, हिसाब से डालना है तो ही तो हम दोस्त बनाते हैं, वरना तो दुश्मन ही है ज्यादा डालोगे तो।
1: जी चलिए देखते हैं सही गलत, हम लास्ट में जवाब देंगे, ठीक है? हाँ जी, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, अब आप भी जुड़ सकते हैं और अंताक्षर में भाग ले सकते हैं। आप हिंदी राजस्थानी गुजराती भाषा में सुना सकते हैं भजन, र पर आपको सुनाना है भरतरी, र पर। हेलो
2: हेलो
1: हाँ जी कंचन भाई नमस्ते, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
2: बस
1: जी
2: प्रोग्राम।
1: तो कंचन भाई आपको र पर बोल के सुनाना है, और आज का प्रश्न भी है नमक हमारा दोस्त भी है तो दुश्मन भी, कैसे?
2: सवाल का जवाब तो मैं बीच में दूंगा।
1: अच्छा ठीक है,
2: वो भूल जाऊंगा जो।
1: हाँ आपने जो सोच रखा है वो बोल दीजिए, पहले वो बोल दीजिए। हाँ जी,
2: राम नाम ना प्याची रे मारा, हरि भजन ना प्याची भमरा, भले ने आव्यो रे हे मारा, राम नाम ना प्याची स्वर्ग भुवन ती आव्यो भमरो सतलोक प्रेम नो प्यालो मारा गुरु जी ए पायो, छोड़ी देने चोरी आसी भमरा, भले ने आव्यो रे हे मारा, राम नाम ना प्यासी।
1: जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका। हाँ जी, और प्रश्न का जवाब भी जब आप देना चाहो दे सकते हो।
2: हाँ जी
1: स पर है जी। तो अब आपको स पर बोल के सुनाना है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, आशियाना में अंताक्षरी कार्यक्रम चल रहा है और थीम है आध्यात्मिक गीत भजन। हेलो नमस्ते। तो थीम बहुत ही अच्छी है, आप हिंदी राजस्थानी गुजराती भाषा में बोल के सुना सकते हैं, स पर आपको सुनाना है आज।

0: को अक्षर दिया है। क्या बात है, अक्षर दिया तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए अंताक्षरी इतनी सरल है तो थोड़े तो शब्दों का होना ही चाहिए, नहीं तो थोड़े से इसको कठिन नहीं बनाएंगे तो हमेशा एक की तरह चलते रहेंगे। बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं तो क्या होता है, पहले टेस्ट होता है, उसके बाद हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है, उसके बाद वार्षिक एग्ज़ाम होता है, फाइनल एग्ज़ाम होता है, तो थोड़ा थोड़ा सरल से फिर कठिन की तरफ चढ़ते हैं ना, तो ऐसा ही है। हेलो,
1: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ, ओम शांति।
0: हाँ जी ओम शांति फिरोज भाई, नमस्ते। आपको सर पर बोल के सुनाना है। हाँ जी सर, अरे आपके पास तो खजाना है, निकालिए निकालिए। जी
1: श्री कृष्ण शरणम मम,
0: हाँ सुना दीजिए, वैसे तो स है पर चलिए।
1: शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम, आंबा डाले कोयल बोले श्री कृष्ण शरणम मम, कदम केरी डाली बोले श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। जी
0: आज के प्रश्न का जवाब देंगे,
1: बोलिए।
0: आज का प्रश्न है, नमक हमारा दोस्त भी है तो दुश्मन भी, कैसे?
1: बराबर, जैसे कि समझो कि मैंने आपके वहाँ नौकरी किया, आपके वहाँ हमने खाना भी खाया, लेकिन हम आपका अच्छे काम में रहेंगे और आप, क्योंकि हमने आपका नमक खाया है, आपकी कोई किसी भी जगह पे हम जाएंगे तो भाई फला जगह पे हम नौकरी करते हैं, इनका हमने नमक खाया है, इनका हम खराब नहीं सोचते।
0: अच्छा ठीक है, देखते हैं फिरोज भाई, कार्यक्रम के अंत में जवाब सुनिएगा, ठीक है?
1: जी जी,
0: हाँ जी, थैंक यू। तो श्री कृष्ण शरणम मम, मैं पर आपको बोल के सुनाना है। अब माँ पर सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। हेलो,
2: हाँ जी नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ जताना से।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई,
2: कौन से शब्द पे बोलना है?
0: माँ,
2: माँ

0: जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, आपने म पर छोड़ा है, अब देखते हैं म पर कौन सुनाते हैं फिर से म। तो म पर सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं, आप दोहे सुना सकते हैं, छंद सुना सकते हैं, भजन सुना सकते हैं हिंदी राजस्थानी गुजराती भाषा में। प्रथम आने वाले को यथा योग्य पारितोषिक भी दिया जाएगा। 15 दिन के अंदर अंदर आपको रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आना होगा। हेलो,
1: ओम शांति दीदी।
0: हाँ जी ज्ञानेंद्र जी नमस्कार, ओम शांति, कैसे हो आप?
1: बढ़िया हैं, आप तो बढ़िया हैं दीदी।
0: हाँ जी हम भी अच्छे हैं, आप सभी की दुआ से। तो
1: जी
0: हाँ जी, तो आज अंताक्षरी कार्यक्रम है, भजन की थीम है, आपको म पर बोल के सुनाना है। और आज का प्रश्न भी रखा है, नमक हमारा दोस्त भी है तो दुश्मन भी, कैसे?
1: जी तो पहले सवाल का जवाब दूं या
0: जैसे भी आप जो चाहे, पहले अगर गीत भूल जाए तो गीत सुना दीजिए पहले, भजन।
1: जी

0: गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।
1: ओके, अब आप जवाब दे सकते हैं प्रश्न का।
0: जी, नमक एक हमारे पानी की मात्रा को संतुलित रखता है हमारे शरीर में, और गहंगा रोग को जो है वो नहीं होने देता है आयोडीन की कमी, और नुकसान करता है, एक तो ये बीपी बढ़ा देता है, दूसरा ये हार्ट अटैक को जो है, ज्यादा नमक यूज करेंगे तो हार्ट अटैक को बढ़ावा मिलता है,
1: अच्छा,
0: तीसरा किडनी को, किडनी पर भी असर करता है ज्यादा नमक खाने से।
1: अच्छा ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार ज्ञानेंद्र जी। कार्यक्रम सुनिएगा, कार्यक्रम के अंत में जवाब सुनेंगे, ठीक है?
0: ठीक है
1: और
0: दीदी,
1: बीच बीच में
0: कॉल
1: झूठते
0: करना।
1: रहिए अंताक्षरी में। जी,
0: जी
1: तो ये थे ज्ञानेंद्र जी उत्तर प्रदेश से, आपने भी भजन बहुत अच्छा सुनाया है। अब देखते हैं कौन झूठते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। ई पर आपको बोल के सुनाना है। हेलो हेलो, नमस्ते। चलिए, जो भी जुड़ते हैं बात जरूर करिएगा, है ना, क्योंकि समय बहुत कीमती है, समय की कदर करना हम सभी का फर्ज है। हेलो,
0: नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। और
1: हाँ जी, नमस्ते फिरोज
0: साथ
1: भाई, नमस्ते। ई पर सुनाइए, ई पर,
0: ही
1: ई।
0: ई
1: हाँ जी,
0: हाँ हाँ हाँ हाँ

0: रघुपति राघव राजा राम पीत पावन सीताराम जी।
1: बहुत बहुत आभार आपका फिरोज भाई, शुक्रिया
0: जी।
1: तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, अंताक्षरी कार्यक्रम। आप हमारे जो भी श्रोता बंधु इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं और भाग ले सकते हैं।
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते आस्था जी।
2: नमस्ते दीदी।
1: हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन में। आपको माँ पर बोल के सुनाना है।
2: अच्छा भजन ना।
1: हाँ जी
2: अच्छा, मैं गा रही हूँ।

0: मेरे। थैंक यू।
1: जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे आस्था जी आबूरोड से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। र र पर बोल के सुनाना है। हेलो हेलो, नमस्ते। हाँ
2: हेलो, शालिनी
1: जी नमस्ते, कौन बोल रहे? ओहो,
2: शर्मा।
1: शालिनी जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: नमस्ते। और ठीक है, बढ़िया है।
1: चलिए, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में। आपको र पर बोल के सुनाना है।
2: रहते हैं।
1: हाँ जी।
2: हाँ,

0: करो।
1: चलिए
0: थैंक यू
1: जी। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे। आज का प्रश्न है, नमक हमारा दोस्त भी है तो दुश्मन भी, कैसे?
0: जी, तो अपन किसी के यहाँ नौकरी करते हैं है? तो वो है ना, नौकरी से अगर निकाल देते हैं तो हम है ना क्या बोलते हैं, हम है ना आपको है ना दगा नहीं देंगे है? आपका है ना नमक हमने खाया है, इसलिए नमक है ना हराम नहीं है हम।
1: अच्छा क्या बात है। ठीक है, आप कार्यक्रम सुनिए, कार्यक्रम के अंत में जवाब सुनेंगे आप। ठीक है, हाँ जी, बहुत बहुत आभार। तो ये थे आस्था जी, इनके मम्मी शालिनी जी। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो,
2: नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा
1: हूँ। हाँ जी, नमस्कार फिरोज भाई, र पर आपको सुनाना है बोल के। हाँ जी, हाँ जी,

0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई, आपने झ पर छोड़ा है, तो अब आपको झ पर बोल के सुनाना है। झ पर बोलकर सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, नमक हमारा दोस्त भी है तो दुश्मन भी कैसे। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी आस्था जी,
1: नमस्ते दीदी।
0: हाँ नमस्ते, झ पर सुनाइएगा।
1: किससे?
0: झ
1: वह
0: नहीं नहीं झ झ जहाज का झ।
1: अच्छा झ,
0: हाँ जी। मारो हेलो सांभड़ो जी, ठीक है, झ पर आप सुनाइए।
1: जी

0: दे, थैंक यू।
1: ठीक है, बहुत बहुत आभार। शालिनी जी जुड़ेंगे। हेलो, चलिए तो आपको राधे ध पर बोल के सुनाना है। हेलो, ध पर बोलकर सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आपको फोन कॉल्स करना है और राधे ध पर आपको भजन बोल के सुनाना है। आप चाहे तो छंद भी सुना सकते हैं, दोहा भी सुना सकते हैं। हेलो, देखिए रेडियो चालू है, आप जो भी डिस्कस करते हैं ऑफलाइन करिएगा। अभी आप जुड़िए, जुड़ चुके हैं तो बोलिए। हाँ जी, तो आइए यहाँ पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे। आपको ध पर बोल के सुनाना है, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रुको, ओए त्रिदेव, त्रिमूर्ति, ओ एक बाइक पे तीन हैं, ओए तुम लोगों को शर्म नहीं आती, ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, और तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको, ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी, तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में आस्था जी जुड़े हुए हैं। नमस्ते आस्था जी।
1: नमस्ते दीदी।
0: हाँ जी, आपको जय पर बोल के सुनाना है।
1: ठीक है।
0: हाँ जी।
1: जय राधे जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय।
0: ये अभी आपने सुनाया है, ये अभी आपने सुना दिया। हाँ जी
1: ठीक है। हाँ तो मैं दूसरा गाती हूँ।
0: और

0: है। थैंक
1: बहुत सुंदर।
0: यू।
1: हाँ जी बहुत सुंदर। शालिनी जी जुड़ेंगे,
2: किसका आया?
1: आपने ही छोड़ा है। हाँ
2: देखा नहीं है,
0: नहीं है।
1: हाँ हाँ पर सुनाइए। नहीं तो फिर से जुड़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है? हाँ जी हाँ पर बोल के सुनाना है। तो हाँ पर सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, और रेडियो मधुबन में अंताक्षरी कार्यक्रम चल रहा है। हेलो, जो भी जुड़ते हैं पहले आप जवाब जरूर दीजिएगा। जुड़ते ही सोच लीजिए पहले, नहीं मिलता है तो रख दीजिए, है ना, ताकि दूसरे श्रोता बंधु भी जुड़ सके। तो देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। भाई हाँ पर, हाँ पर मुश्किल लग रहा है क्या? हेलो।
3: हाँ जी नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ।
1: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई।
3: हाँ तो मैं हाँ पर चुना दूँ।
1: हाँ जी

0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। आपने र छोड़ा है, र पर बोल के सुनाना है। र पर बोलने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। हेलो,
1: हाँ भूरा राम बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी भूरा राम जी, राम राम, कैसे हो?
1: बस बैठे हो, प्रोग्राम आपका सुन रहा हूँ। फोन जब से लगा रहा लग रहा ही नहीं था।
0: अच्छा चलिए, फिर भी आपने कोशिश की, लग गया।
1: आपको मैं बोला राम राम तो सुबह सुबह कर दू
0: जी, बहुत अच्छा किया।
1: और सब भाइयों को मेरा राम राम, मधुबन भाइयों को सबको। और आज क्या थी, मैं कुछ मेरे को तो वो फोन लगाने में सोया आधा तो टन गया।
0: अच्छा, आज की थीम है भजन और आज हमने अक्षर दिया है, इसलिए र पर बोल के सुनाना है।
1: र पर सुनाने का?
0: हाँ जी हाँ जी।
1: मैं मारवाड़ी में सुना सकता हूँ मैं तो?
0: हाँ हाँ सुनाइए, आराम से सुनाइए आप मारवाड़ी में।
1: राधा मरिया रे रुक्मण मरिया, ए मरिया घना राजी रे सोवरिया, ए मरिया घना राजी रे सोवलिया, एक मारिया वो मरा तो मरा रे राजी की।
0: हाँ, किस पे छोड़ा आपने लास्ट में, क्या बोला? हाँ
1: राधा मरिया रुक्मण मरिया,
0: यह पर ठीक है, यशोदा का यह जी। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे भूरा राम जी?
1: कौन सा है
0: आज का प्रश्न? है नमक हमारा दोस्त भी है तो दुश्मन भी, कैसे?
1: बहुत ये तो अच्छा प्रोग्राम है। ये बोले तो नमक ज्यादा खाने से जिसको शुगर पीती हुई होता है उसको तो कम खाना चाहिए, और बिगर नमक से तो कोई खाना भी नहीं पाता। लेकिन जो घर पे जो सब्जी बनाते हैं ये सब पे डाल दिया वही खाना चाहिए। फिर आने के बाद में थोड़ा नमक है तो अपन अपना मुंह का स्वाद देखने के लिए और डालते हैं तो बहुत नुकसान करता है। तो नुकसान भी है फायदा भी है
0: जी। ठीक है भूरा राम जी, आप कार्यक्रम सुनिए, कार्यक्रम के अंत में जवाब जरूर सुनाएंगे। ठीक है,
1: ओके ओके
0: जी, और जुड़ते रहिए अंताक्षरी में। तो ये थे भूरा राम जी ओर से, आपने यशोदा का यह छोड़ा है। तो यह पर आपको बोल के सुनाना है, नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
2: नमस्ते दीदी।
0: हाँ, आपको यह पर सुनाना है यशोदा का यह।
2: अच्छा, यह
0: हाँ जी
2: यशो।

0: बहुत गड़बड़ है, शब्दों की बहुत गड़बड़ हुई है। फिर से सुनाइए। हाँ फिर से सुनाइए तो शायद शब्द आप सही बोल सको। हाँ जी
1: अच्छा ठीक है। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है।

0: थैंक यू।
1: जी, फिर भी शब्दों के गड़बड़ तो हुई है, फिर भी ठीक है, चलिए अच्छी कोशिश की है, शब्द तो बहुत स्लिप हुए हैं इधर उधर।
0: किस पे आए? किस
1: जी, जू जू जू जू जू जय पर बोल के सुनाना है। शालिनी जी सुनाएंगे?
0: ठीक है, मैं बात करवाती हूँ।
1: ठीक है, जल्दी से करवाना है ना, गेप नहीं डालना है। तो चलिए फिर से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि इतना इंतजार नहीं हो सकता रेडियो में। और जू जू जू जू जू तो जय पर बोल के सुनाना है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, अंताक्षरी कार्यक्रम, और आपको बोलना है जय पर। हेलो,
2: नमस्कार जी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी नमस्ते फिरोज भाई, नमस्ते। आपको बोल के सुनाना है जय पर, जू जू जू जू जू।
2: जुना राम जाऊ के दमो कुण बनाओ, हाल तने हाल सौराष्ट्र बसाओ, हाल तने हाल सौराष्ट्र बसाओ।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। सौराष्ट्र बताऊ ऊपर बोल के सुनाना है, ठीक है। ऊ से किसका नाम शुरू होता है? मेरा, उषा। उषा का ऊ, उसे आपको बोल के सुनाना है। देखते हैं कौन सुनाते हैं। आप चाहे तो दोहे भी सुना सकते हैं, आप छंद सुना सकते हैं, आप भजन सुना सकते हैं, गजल सुना सकते हैं, बस आध्यात्मिक होना चाहिए, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं, ऊ की जगह आप अ भी ले सकते हैं, है ना। ऊ थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, तो हम इतना मुश्किल में भी आपको नहीं डालेंगे, वैसे तो थोड़ी अच्छी एक्सरसाइज होनी ही चाहिए, फिर भी। हेलो
0: हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्ते दीदी, किस पे आया दीदी?
1: हाँ जी, ऊपर आया है, ऊपर सुना सकते हैं?
0: ओ अच्छा
1: अच्छा, और ऊपर नहीं आता है तो फिर अ पर सुनाइए।
0: आते अच्छा

0: हर पल तेरा ध्यान करूं, हर पल तेरा ध्यान करूं। थैंक यू
1: चलिए, बहुत बहुत आभार। शालिनी जी जुड़ेंगे
0: जी, मैं बात करती हूँ।
1: तो उनको पास में ही खड़ा रखिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो, है ना। तो फिर से जोड़ सकते हैं आप। र पर आपको बोल के सुनाना है। र पर सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। हेलो,
2: नमस्कार दीदी, पालमपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
1: हाँ जी, ओम शांति, नमस्ते फिरोज भाई। र पर आपको सुनाना है।
2: रह?
1: हाँ जी,

0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। कुलेर फिर से रह पर सुनाना है। रह पर सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415। हेलो, तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अंताक्षरी कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा है। हमारे श्रोता बंधु बहुत ही उमंग उत्साह से जुड़ रहे हैं। हेलो।
1: हाँ दीदी नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ थाना से।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, रह पर आपको सुनाना है।
1: जी जी। रमता जो भी आया नगर में, रमता जो भी आया हो, सुहावी ने अलख जगाया नगर में, रमता जो भी
0: आया हो। आया और लास्ट में क्या छोड़ा आपने शब्द?
1: जी जी।
0: अच्छा ठीक है,
1: जो भी आया जी।
0: ओके ठीक है
1: जी।
0: बहुत सुंदर, तो सुरेश भाई ने बहुत ही सुंदर भजन सुनाया है, रमता जोगी आया जी। फिर से आपको जय पर बोलना है, देखते हैं जय पर कौन सुनाते हैं। हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो।
2: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी नमस्कार नमस्कार, आपको झ पर बोल के सुनाना है।
2: अच्छा
0: नहीं झ, फिरोज भाई झ। हाँ जी रमता जोगी आया जी झ पर। हाँ जी झ झ झ। हाँ जी
2: जादने जादवा कृष्ण गोवाड़िया
0: बहुत सुंदर, शुक्रिया फिरोज भाई। कौन जा से, सह पर आपको बोल के सुनाना है, देखते हैं सह पर सुनाने के लिए कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। हेलो
3: हेलो।
0: हाँ जी सह पर सुनाना है आस्था
3: से।
0: सर हाँ जी सर पर आपको सुनाना है, अगर आपके मम्मी को आ रहा हो शालिनी जी को तो वो भी सुना सकते हैं, लेकिन जल्दी सुनाना है नहीं तो फिर से आप कोशिश कर सकते हैं। चले फिर से आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है याद आ जाए तो।
3: ठीक है दीदी, याद आ गया मम्मी को।
0: हाँ सुनाइए।
3: ये लगा दो।
4: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते
4: नमस्ते।
0: हाँ जी सर पर सुनाइए।
4: सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सामने।
0: बहुत सुंदर। हाँ जी रह पर सांवरे। हाँ जी चलिए फिर से आप कोशिश करिएगा, ठीक है। रह पर आपको सुनाना है, रह पर सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के हैं 9414151415। आप हिंदी राजस्थानी गुजराती भाषा में सुना सकते हैं, आप छंद सुना सकते हैं, दोहे सुना सकते हैं, बस आध्यात्मिक होने चाहिए, बाकी आप भजन किसी भी भाषा में, मतलब ये तीनों ही भाषा में आप सुना सकते हैं, और कहीं आप आउट ऑफ स्टेट के हैं तो वहाँ की लोकल भाषा में भी सुना सकते हैं, बाकी आपकी जो भी मातृभाषा है। हाँ जी नमस्ते आस्था जी।
3: गादिया दीदी किसी ने
0: रात से नहीं सुनाया।
3: अच्छा गादी।

0: ये कौन सा भजन है?
1: ये ना भजन है, वृंदावन का कोई भजन है तो वो वाला गाया मैंने।
0: दो लाइन नहीं है इसमें?
1: अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा अंतरा चेंज हुआ है।
0: क्या हुआ बोल के सुना दीजिए।
1: ठीक है, मैं दूसरा ही गा देती हूँ, अंतरा थोड़ा याद नहीं आ रहा रास्ते।
0: अच्छा सुनाइए। चलिए कोई बात नहीं।
1: रास्ते कोई आता है?
0: फोन पर कोई भी डिस्कस नहीं करेंगे, जो भी जुड़े आपको याद आ जाए तुरंत जुड़िए, ठीक है? बाकी आप फोन चालू करके फिर सोचेंगे कौन सा बोले, तो ऐसा नहीं करना है। ये समय जाया होता है और हमारे जो भी श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ नहीं पाते। हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी।
2: हाँ।
0: आपने आपने बोल के सुनाया है और वो अक्सर ही इनको आस्था को बोल के सुनाना है, ये बोल ले तो फिर। हाँ जी,
1: किससे?
0: कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करिएगा। हम यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? सभी को मुश्किल लग रहा है, अरे भाई रह पर याद करिए, रामायण भूल गए क्या? हिंट दे दिया मैंने, बहुत सारे भजन है। हेलो, राम रमे सोगटे रे, रामा सोगटे रे, सबरी जप।

0: रामनी। अब आपको न दिया, ठीक है। हेलो,
1: हाँ जी, नमस्ते सुरेश भाई।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई।
1: चलो न दिया तो अच्छा है, अंधा पर बोल दे।
0: हाँ जी सुना दीजिए।
1: नागर नंदा जी ना लाल, नागर नंदा जी ना लाल, रासे रमन का मारी न थेड़ी खुवाणी ना, तेंदा का ना जड़ी हो तो आप, का ना जड़ी हो तो आप, रासे रमन का मारी न थेड़ी खुवाणी।
0: बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई जी।
1: और आस्था, और आस्था जी को मुझे जल्दी बात करें फटाफट, तो ही तो
0: जी
1: टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है
0: जी।
1: नमस्ते दीदी
0: जी। नमस्ते। तो नथनी खोवाणी, अब खोवाणी अण पर तो कोई गीत है नहीं, इसलिए फिर से आपको न पर ही सुनाना है, ठीक है। तो आइए, यहाँ पर हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं, तो बात कर लेते हैं। हेलो,
2: कौन से वर्ड पे आया दीदी?
0: न पर।
2: न से।
0: हाँ जी।
2: और कोई वर्ड दे दो
0: ना के। नहीं नहीं, ना पर है बहुत सारे भजन, वो तो कोई कोई ऐसे शब्द है जिन पर कम होते हैं तो चेंज करते हैं, बाकी जैसे।
2: हाँ, याद आ गया दीदी,
0: सुना दीजिए।
2: नारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण।
0: नहीं नहीं, ये लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण श्रीवन।
2: ये जो सीरियल में आता है भजन,
0: नहीं लेकिन भजन की दो लाइन तो सुनानी है आस्था जी। ये तो लक्ष्मी नारायण हर कोई भी फिर राम सीता बोल के छोड़ देगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप दो लाइन सुनाइए, दो लाइन सुनाइए, फिर से आप जुड़ सकते हैं। चालू फोन पर डिस्कस करना नहीं है। चलिए यहाँ पर हम एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटते हैं, बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में मदन भाई मेहसाना से जुड़े हुए हैं। नमस्ते मदन भाई।
1: नमस्ते नमस्ते दीदी जी, कैसे हैं? और आपको नमस्कार है।
0: हाँ जी,
1: और आशियाना को नमस्कार। हमारे सभी दोस्त गाना भजन गा रहे हैं, इन सभी को और आज के इस दिन को नमस्कार करते हैं। दीदी बोलिए, भजन की लाइन ही चल रही है ना?
0: हाँ जी, सुना दीजिए आप।
1: जी जी, अब 9 करोड़ देवता जगह होते हैं और बोलते भाई, वो बोले मैं बड़ा और वो बोले मैं बड़ा, फिर बोले बड़ा कौन है? कभी चलते हैं राजा इंद्र राजे के पास, तो इंद्र राजा देख के खुश होते हैं सभी की, और इंद्र राजा को बोलते हैं कि भाई हमारे में झगड़ा पड़ता है सभी देवतों में, और उसमें से बड़ा कौन और छोटा कौन आपको बताना पड़ेगा। तो इंद्र राजा ने बोला कि आज रे भलाई दिन तू भी और मारे दिल पधारा रे, दिल पधारा रे, आज रे भलाई दिन तू भी और मारो बाग जलायो रे, तनी दिल पधारा रे। तो राजा इंद्रदेव बोले कि आप सभी बड़ा हो और आप चाले जाओ उज्जैन नगरी, और उज्जैन नगरी राजा विक्रम सिंह बता देगा। तो फिर वहाँ जाते हैं, तो फिर वहाँ क्या बात होती है वो फिर आपको फिर सुनाएंगे। नमस्कार, ओम शांति।
0: जी बहुत बहुत आभार। तो फिर से रह पर सुनाना है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, आशियाना में अंताक्षरी कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है। देखिए समय भी तीव्रता से आगे बढ़ता जा रहा है और आपके पास समय बहुत ही कम है, तो आप जुड़ सकते हैं। जितना समय है उसमें भी आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। रह पर आपको सुनाना है। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
2: नमस्कार,
0: हाँ जी फिरोज भाई, रह पर सुनाइए। रह पर हाँ जी।
2: राजा बोलावे प्रधान आव जो रे, आव जो राजा ने दरबार, आव जो राजा ने दरबार, राजा बोलावे प्रधान आव जो रे।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। फिर से आपने रह पर छोड़ा है, देखते हैं रह पर कौन सुनाते हैं। र पर सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के हैं 9414-1415-1415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंता

0: में भाग ले सकते हैं। देखते हैं कौन जुड़ते हैं। हेलो,
1: जय माता जी, जय श्री हरि।
0: जय श्री हरि, नमस्कार। क्या बात है, कैसे हो आप?
1: सभी रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले मेरे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन की ढेर शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और कैसे हो?
0: जी, हम अच्छे हैं। आप सुनाइए, सब बढ़िया?
1: हाँ, सब बढ़िया है।
0: अच्छा, तो
1: मैंने
0: अंताक्षरी,
1: कहा आई तो अंताक्षरी चल रही होगी।
0: हाँ जी, तो आज का प्रश्न है अंताक्षरी कार्यक्रम में, नमक हमारा दोस्त भी है तो दुश्मन भी कैसे? और अंताक्षरी कार्यक्रम में र पर बोल के सुनाना है आपको।
1: देखिए, नमक मतलब टेस्ट बढ़ाने के लिए नमक दोस्त भी है, ठीक है, और मतलब दुश्मन भी है किसी तरह। कोई कोई शरीर को गलाने के लिए नमक उसमें भी काम में आता है ना। शरीर को नुकसान भी करता है और फायदा भी करता है, ऐसे दोस्त भी और दुश्मन भी है।
0: अच्छा, और र पर आपको भजन या दोहा, छंद जो भी सुनाना चाहते, र पर सुनाइएगा।
1: रफ पर
0: हाँ जी,

0: रतने राम मिले तो कहिए रे। थैंक यू।
1: चलिए बहुत बहुत आभार आपका। तो राम मिले तो कहिए रे, फिर से रह पर आपको बोल के सुनाना है। देखते हैं रह पर सुनाने के लिए कौन आगे आते हैं और अपने पसंद का भजन सुनाते हैं, क्योंकि आज अक्षर दे रहे हैं तो मेरे को लग रहा है कि हमारे श्रोता बंधुओं को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन रह पर बहुत सारे भजन है, याद करेंगे तो आ जाएगा। और समय भी तीव्रता से आगे बढ़ता जा रहा है, तो जिनको भी फायदा लेना है, अंताक्षरी का लाभ लेना है, लीजिएगा जल्दी जल्दी। जो अभी नहीं जुड़ पाए हैं और सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, तो वो भी जरूर जुड़े। हेलो, हाँ जी, नमस्ते।
2: नमस्ते दीदी जी।
1: हाँ, रह पर सुनाना है जी। आप कोशिश करिए और फिर आप फोन लगाइए, ठीक है। तो ये थे आस्था जी। जो भी जुड़ते हैं पहले सोचिए, और या फिर जुड़ने के बाद भी आपको अक्सर बता देते हैं तो तुरंत ही बोलिएगा, क्योंकि नहीं तुरंत सुना सकते तो फिर आप रख दीजिए, ताकि हमारे दूसरे श्रोता बंधुओं को इंतजार न करना पड़े। हेलो,
0: जय माता दी, जय श्री हरि।
1: हाँ जी, जय श्री हरि। आपके जुड़ने के बाद अभी कोई जुड़े नहीं है, तो एक भजन अच्छा। किसी को बोलने दीजिए, फिर आप जुड़िए, ठीक है।
0: ठीक है।
1: हाँ जी, बहुत बहुत आभार। देखिए सुरेश भाई फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी रह पर आपको मुश्किल लग रहा है, क्या बात है। हेलो,
3: हाँ नमस्कार, मुझे पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
1: हाँ ओम शांति, नमस्ते फिरोज भाई, रह पर सुनाइए।

0: बहुत सुंदर। तो ये तो फिरोज भाई आपने छोड़ा है नहीं, हाँ पर अब आपको बोल के सुनाना है। हाँ पर सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम अंतिम चरण पर चल रहा है। हाँ जी नमस्ते।
1: ओम शांति दीदी।
0: हाँ जी, हाँ पर सुनाना है आस्था। हाँ
1: पहले तो दीदी रात को आया था ना अभी,
0: तो रैपर किसी ने सुना दिया।
1: अच्छा
0: अक्सर देते हैं तो ऐसा ही होता है, कोई सोचता है तब तक कोई जुड़ जाता है।
1: अच्छा हाँ
0: तो ठीक है, कोशिश करिएगा।
1: गा रही हूँ दीदी,
0: हाँ
1: दीदी गा रही हूँ है ना।
0: हाँ
1: हरी का नाम लिया करो, उसके सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम का लिया करो। श्री हरी श्री हरी श्री हरी।
0: ओके शालिनी जी बोलेंगे रह पर फिर से। चलिए तो रह पर आपको सुनाना है फिर से। आपको मुश्किल लग रहा है तो फिर मैं सुना दूं क्या? हम तो चाहते कि आप जुड़े, नहीं तो फिर हम तो भेटे ही हैं। हेलो।
2: हाँ जी नमस्ते, सुरेश भाई बोल रहा हूँ थाना से।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, रह पर सुनाना है।
2: रह पर।
0: हाँ जी
2: जी जी। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली,
0: कोई
2: प्याला
0: शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।
2: दीदी हमारे एक मेहमान आया है, उसको एक भजन जरूर मैं लेता हूँ उसको।
0: हाँ जी हाँ जी जरूर। हाँ जी
2: हाँ जी जी। हमारा नाम बोलो भजन।
3: हेलो।
0: हाँ नमस्ते, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में। आपका शुभ नाम बताएंगे?
3: मेरा नाम त्रिभुवन परमार
0: जी,
3: गांव पालेज।
0: अच्छा।
3: गुरुद्वार नागरी सत शिवराम साहिब।
0: अच्छा बोलो आपके पसंद का सुना दीजिए।
3: हाँ मैं मेरा गुरु का ही सुनाऊँ।
0: ठीक है
3: ठीक है।
0: हाँ जी जरूर।
3: हेलो कर दूँ?
0: जी सुना दीजिए।
3: प्रथम समरो सद्गुरु ने अखंड हो ये यजवाला रे,

0: પ્રથમ સમરો સદગુરુને સતસિમરન સાહેબની જય.
1: जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत ही सुंदर भजन आपने सुनाया है. लेकिन सुरेश भाई ने जो ल पर छोड़ा है उस पर आपको बोल के सुनाना है, ल पर. तो ल पर सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15. हेलो.
2: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ. ओम शांति.
1: हाँ जी ओम शांति. नमस्ते फिरोज भाई, ल पर सुनाइए.
2: ल.
1: हाँ जी.

0: रे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से फिरोज भाई ने र छोड़ा है, र पर आपको बोल के सुनाना है। र पर सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षर में भाग ले सकते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते, र पर सुनाना है आपको।
1: जय माता दी, जय श्री
0: जी, जय माता दी।
1: वापस र पर?
0: हाँ जी।
1: आज मेरे जीवन में क्या राम ही है क्या?
0: अच्छा है ना,
1: ठीक है। रामा थारे नाम रे, अरे मोरी पड़ी रे पहचान, कुछ दिन निकलिया जानने, अरे कुछ दिन निकलिया जान ना पर।
0: हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। हाँ जी, तो अब आपको न पर बोल के सुनाना है। यहाँ पर फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेकर के पुनः लौट रही हूँ, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ये ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी, और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही हो, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू। बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए। मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता।

0: में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? नहीं ना,

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अंताक्षरी कार्यक्रम चल रहा है जिसमें ह पर आपको बोल के सुनाना है। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: ओम शांति दीदी।
0: हाँ जी ओम शांति। आस्था ह पर सुनाइए। हाँ जी।
1: हरी हरी हरी हरी कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकेगे, कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकेगे, अगर कृष्ण कृपा हो सके हरि का नाम ले सके तो समझो कृष्ण कृपा है। थैंक यू।
0: ठीक है, बहुत बहुत आभार। शालिनी जी सुनाएंगे फिर से हाँ पर।
1: आता है ना दीदी।
0: हाँ छोड़ा है आस्था ने, ह पर ही सुनाना है। हाँ चलिए, तो फिर से याद करिएगा, और जो भी जुड़ना चाहते हैं, अब यह कार्यक्रम अंतिम चरण पर है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अंताक्षरी कार्यक्रम चल रहा है जो अंतिम चरण पर चल रहा है। जो भी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और उनको अगर जुड़ना है तो अंताक्षरी कार्यक्रम में जुड़ करके अपने पसंद का गीत सुना सकते हैं। चलिए 5 मिनट आपको छूट दे देते हैं, जिस पर भी सुनाना चाहो सुना सकते हैं। ठीक है। हेलो।
2: हाँ दीदी नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ जटाना से।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई। अब ये क्या 5 मिनट है लास्ट के, हम छूट दे रहे हैं जिस पर
2: अच्छा है आपने छूट दी है तो अच्छा भजन सुना देंगे। चलो
0: जी।
2: राम नाम, कोई शब्द नहीं है दीदी?
0: नहीं, आप अपने पसंद का सुना सकते हैं। वैसे है छोड़ा था लेकिन चलेगा।
2: नाचे सदा श्री आगे भेरो, नाचे कुड़े ताने नाचे हनुमान, नाचे नाचे कुड़े ताने नाचे हनुमान, पार्वती ना प्राण नाथ घोड़ा भगवान। अकड़ बम अकड़ बम।
0: जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। वैसे तो आस्था ने छोड़ा था है, तो चलो मैं सुना देती हूँ। हाँ पर हमरी सुनोरी यशोदा मैया घटकी, थारो कबदी कानूड़ो फोड़े मटकी। हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते तो हम विलंब किए बिना फोन उठा लेते। हेलो।
3: ओम शांति, फिरोज भाई पालनपुर से बोल रहा
0: है। हाँ जी फिरोज भाई, अब आप अपने पसंद का गीत सुना सकते हैं। 3-4 मिनट रहे हैं तो सभी को छूट है।
3: अमे मैया रा कंस राजा नाम नाथ होइने

0: बहुत सुंदर।
1: जमना हेली को रे गंगा बचवा के गोप युगम आहावला मोत मात गोप युगम रे मार गड़ो मारो हेली दियो ने सुंदर शाम जी।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने सुनाया फुल एनर्जी के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से। अब देखते हैं, आपके पास 2 मिनट है, जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले करके अपने पसंद का भजन सुना सकते हैं। हेलो, तो 2 मिनट है, जो भी कभी का इंतजार कर रहे है, जुड़ नहीं पा रहे है तो जुड़ सकते है। हेलो जी, जय श्री हरि। अब आप अपने पसंद का गीत सुना सकते हैं, मतलब भजन।
2: ऐसा क्यों?
0: हाँ जी, लास्ट के हमने 5 मिनट सभी को छूट दी है कि 5 मिनट के लिए कोई अक्षर नहीं, अपने पसंद का सुनाइए।
2: गरीबी ने घना दुख दीना रे सवरिया, दुनिया का ताना सुगबराया रे सवरिया। थैंक यू बहना
0: जी, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 और इस पर देखते हैं, कार्यक्रम अंतिम चरण पर है, आपके पास समय बहुत कम है। हेलो,
3: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ, ओम शांति।
0: हाँ जी नमस्ते फिरोज भाई, सुना दीजिए।
1: गोकुल सांभले।
0: तुरंत ही दूसरा सुना दीजिए अगर नहीं याद आ रहा है तो।
1: गोकुल सांभले,
0: भूल गए, दूसरा सुना दीजिए। चलिए फिरोज भाई, इतना समय लगाएंगे तब तक तो बस ही निकल जाएगी। तो देखते हैं अब कौन जुड़ते हैं लास्ट, आपके पास सिर्फ लास्ट कॉल का समय है। हेलो,
4: हेलो,
0: हाँ जी आस्था, नमस्ते।
4: नमस्ते दीदी,
0: हाँ अभी अपने पसंद का सुना दो, ये लास्ट गीत है, बस कार्यक्रम समाप्ति की तरफ है। हाँ जो भी इच्छा हो सुना सकते हो। आप करोगे तो गाड़ी निकल जाएगी, इसलिए जिसके हाथ में आया सुना दो, दोनों का नंबर लेंगे, चिंता मत करिए।
4: हाँ
0: जी
4: हेलो, चोरी चुपके चुपके माखन चुरा के चल दी, हम तरसते रह गए वो मुस्कुरा के चल दी, भूल भरी सखियों के संग में गंगा नानी जाती थी, गंगा नानी जाती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चीर चुरा के चल दी, हम तड़पते रह गए वो मुस्कुरा के चल दी। थैंक यू
0: जी, बहुत सुंदर। हाँ आस्था सुना दो।
4: राम कसम रंगिया करो, उसके सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है ना उसी का लिया करो, मेरे राम श्री राम श्री राम श्री राम, मेरे राम श्री राम श्री राम श्री राम। थैंक यू
0: जी, आभार। तो चलिए कार्यक्रम यहीं समाप्त, अब कोई भी फोन कॉल्स नहीं करेंगे। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा है, सभी ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और थोड़ा आप लोगों के लिए मुश्किल भी पड़ा, लेकिन अक्षर देना भी ज़रूरी था, है ना, क्योंकि टेस्ट तो होना ही चाहिए, बाकी तो अनलिमिटेड गीत हो जाते हैं। लेकिन मुश्किल लगा, लेकिन फिर भी आपने अच्छी तरह भाग लिया और बहुत ही अच्छे अच्छे गीत आपने सुनाए हैं, भजन, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और आज का सुंदर सा विचार जो दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और नुस्खे भी आपको सुनाए हैं कि जीवन में व्यायाम करना कितना ज़रूरी है, कौन सी बीमारी में कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है वो आपने जाना है। तो अपने हेल्थ को अच्छा रखिएगा। और अंताक्षरी में भाग लिया है सुरेश भाई जोटाना से, आप जुड़े हैं 9 बार। कंचन भाई मंडाली से आप 2 बार जुड़े हैं। ज्ञानेंद्र जी उत्तर प्रदेश से आपने दो बार बोल के सुनाया है, आस्था जी तरतोली से आप 9 बार जुड़े हैं, सुरेश भाई चौटाना से और आस्था जी तरतोली से आप दोनों बरोबर पॉइंट पर हैं 9-9 पर, शालिनी जी आप 4 बार जुड़े हैं, भूरा राम जी ओर से आप 2 बार जुड़े हैं, मदन भाई मेसाना से आप भी 2 बार जुड़े हैं, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से आपने 4 बार गा करके सुनाया है, और सुरेश भाई झोटाना वाले के गेस्ट है भालेस से आप 1 बार जुड़े हैं। आज के विनर है फिरोज भाई पालनपुर से, आप जुड़े हैं 16 बार, तो आपके लिए ढेर सारी तालियां। और आप सभी जुड़े, आपने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया और बहुत ही सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी, इसके लिए ढेर सारी तालियां। तो आज का कार्यक्रम काफी अच्छा लगा, आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था कि नमक हमारा दोस्त भी है तो दुश्मन भी, कैसे? तो सबसे सटीक जवाब दिया है भूरा राम जी ओर से, आपका एकदम सही जवाब, बाकी आप सभी ने भी अच्छी तरह दिया है लेकिन सबसे सटीक जवाब भूरा राम जी ने दिया है। आपने कहा है कि देखिए नमक अगर हम सब्जी में सब्जी पकाते समय डालते हैं तो वो हमें नुकसान नहीं करता है, वो हमारा दोस्त बन जाता है, लेकिन जब हम अलग से नमक डालते हैं, ठीक है, अलग से नमक डाल करके खाते हैं, वो नमक हमारा दुश्मन बन जाता है, उससे हमारे लिबरेट एसिड की कमी हो जाती है, घुटनों का दर्द बढ़ जाता है, बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है। तो भूरा राम जी के लिए ढेर सारी तालियां। और आज का मीठा मोती है, अपने दिल को साफ और सच्चा रखने से ही जीवन में खुशी आती है, क्योंकि दुख के कीड़े गंदगी में ही पनपते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
5: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल 0 आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, फिर एक एक करके सबका बिजली बिल 0 आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

बंगला बेटा घर सुना सुना है। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सुना सुना है। मन में झूम कहूँगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा, कैसे हैं? सब ठीक ठाक तो हैं? घर में बाल बच्चे? बहुत अच्छी बात है, बस कुशल मंगल रहे। चलिए, आपकी प्रभा पंडिताइन आपका प्रोग्राम पंडिताइन में पेश कर रहे हैं आज का प्रोग्राम, और शुरू करते हैं सकारात्मकता से। सकारात्मक सोच न केवल सबसे

अच्छा होने की उम्मीद रखता है लेकिन ये स्वीकार करने के बारे में भी है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। विश्व नाटक कल्याणकारी है। तो हमेशा का सोचिएगा, गुजर जाएगा ये दौर भी दोस्त, गुजर जाएगा ये दौर भी दोस्त, जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ही न ठहरी तो गम की क्या औकात है। चिड़िया जब जीवित रहती है तब वो कीड़े मकोड़े को खाती है, लेकिन वही चिड़िया जब मर जाती है तब कीड़े मकोड़े उसको खा जाते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं। कभी किसी का अपमान मत करो, कभी किसी को कम मत आंको। तुम शक्तिशाली हो सकते हो लेकिन समय तुमसे भी शक्तिशाली है। एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनाई जा सकती है पर माचिस की एक तीली लाखों पेड़ जला सकती है। कोई चाहे कितना भी महान काहे ना हो जाए पर कुदरत कभी भी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। वर्तमान का कटु सत्य आपके समय का, जरा इस पर आप गौर जरूर करना और ऐसी स्थिति से जरूर बचना जिस घर में बड़ों को छोटों से डर लगने लग जाए, उस घर में समझ लेना कि कलयुग प्रवेश कर चुका है। आपसे करबद्ध प्रभा पंडिताएं निवेदन करती है कि कभी भी अपने घर में ऐसी छवि मत बनाना जिससे कि तुम्हारे ही घर का पूज्य पुरुष तुमसे ही डरने लगे और वो तुमसे अपने मन की बात न कह सके। यदि ऐसी छवि तुमने बना ली है तो खुद का ही विश्लेषण कर समझ लेना कि तुम कितना ही धर्म करना, एक दिन तुम्हारा पता निश्चित है। ईश्वर न्यायाधीश है खुद का विश्लेषण करने का तरीका। अगर आपकी ओर एक उंगली उठे तो समझना कि आपका अपमान, अगर अंगूठा का इजहार हो तो समझना आप कामयाबी की ओर है, अंगूठे से उंगली मिले तो समझना आपके कार्य लाजवाब है। यही तो हमारी जिंदगी का हिसाब है कि नहीं। अगर वाकई में आप अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, बेशक पांव फिसल जाए पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। कहे कि ठोकर खाकर जो इंसान गिर जाए वो उठ जाता है लेकिन नजरों से गिरा हुआ इंसान कभी नहीं उठ पाता। चिंता कभी ना करो, चाहे सारा जमाना आपके खिलाफ हो लेकिन चलो उही मार्ग पर जो सत्य और मानवता का मार्ग हो। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं, और तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है, हमारी सोच को नहीं। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं खुद है। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, है कि नहीं। और एक बात जरूर याद रखें, माफ करें, दिल साफ करें। हम सभी से जाने अनजाने में न जाना कितना गलतियां होती है किंतु गलती का एहसास होना अर्थात अपने गलत कर्म का भान होना और गलती के लिए माफी मांग लेना उस गलती के बोझ को समाप्त कर देता है। गलती होना वास्तव में गलती तो है पर इतनी बड़ी नहीं, परंतु अपनी गलती को महसूस न करना ये उससे भी भारी गलती है। महसूस नहीं किया तो स्वयं के बदलने के द्वार बंद हो जाते हैं और वही गलती बार बार दोहराई जाती है। तो क्या करिएगा, समझ गए तो? सच्चे दिल से माफी मांगने का अर्थ है कि हम उस गलती को इतनी गहराई से महसूस करें कि दोबारा कभी भी किसी के भी साथ वो गलती ना दोहराए। अगर एक व्यक्ति बदला लेकर दूसरे को नीचे दिखाना चाहता है तो इस प्रयास में वो खुद भी नीचे उतर जाता है और दूसरी ओर क्षमा करके व्यक्ति स्वयं भी ऊंचा उठता है और सामने वाले को भी ऊंचा उठने की प्रेरणा देता है। यदि चित्त में ईर्ष्या घृणा द्वेष की अग्नि धधक रही है तो चित्त को भारी कर देती है। तो सदा याद रखिएगा, ऐसा बोझिल मन भगवान के किस काम का जो पहले से ही भरा है, भगवान उसमें और क्या भरेंगे। इसलिए प्रतिदिन अपनी गलती के लिए क्षमा मांगकर और दूसरों की गलती के लिए क्षमा देकर मन को खाली अवश्य कर लीजिए, तभी शांति के सागर परमात्मा की शांति की किरणें अंदर प्रवेश करेगी। अपने शरणागत जीव को प्रभु हर प्रकार के अनिष्ट से बचा लेते हैं।
ऐसी बात भी नहीं है कि प्रभु आश्रित जीव के जीवन में कभी कौरव कष्ट ही नहीं आता हो। सच बात तो यह है कि प्रभु आश्रित जीव धर्म पथ का अनुगमन करता है और जो धर्म पथ का अनुगमन करता है उसकी राह कभी भी आसान नहीं होती। ये प्रभु शरणागति की महिमा ही तो है कि दुर्गम परिस्थितियों में भी शरणागत के मन में एक विश्वास और एक सकारात्मकता सदैव बनी रहती है और वो ये कि मेरे प्रभु मेरे साथ ही हैं, फिर मैं चिंता काहे करूं। और उनका ये विश्वास ही उन्हें पांडवों की तरफ बड़े से बड़े विघ्न से भी लड़ने का आत्मबल प्रदान कर देता है। जौन प्रकार एक अबोध बालक निर्भय होकर सर्प के संग खेलने लग जाता, सांप के संग, और अग्नि में भी हाथ डालने लग जाता है, वो नहीं जानता कि इसमें मेरा तनिक भी अहित होने वाला है। मगर उसके माता पिता अच्छे से जानते हैं कि किसमें उनके बालक का हित है और किसमें अहित। यही प्रकार हम जीव को भले ही नहीं पता हो कि किसमें उसका हित है और किसमें अहित, फिर भी वो प्रभु को सब कुछ पता है। और माता पिता की भांति ही माँ जानकी और प्रभु राम अपने शरणागत की रक्षा करते हैं और उसको हर प्रकार के अनिष्ट से भी बचा लेते हैं। प्रभु शरणागति अथवा धर्म के मार्ग पर आपको कष्ट जरूर हो सकता है मगर आपका अहित कभी नहीं हो सकता। ये बात गांठ में बांध लीजिए। आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य है लेकिन ये असंभव को भी संभव कर देते हैं। एक तस्वीर देखी हम, बहुत बूढ़ा व्यक्ति है और एक छोटा सा बच्चा उसको माथे पे चूम रहा है। एक अपने आने वाले कल को और एक अपने गुजरे हुए कल को, यही जीवन का चक्र है तो का समझे। ये आसमान में उड़ने वाले परिंदो, ए आसमान में उड़ने वाली परिंदो, कुछ तो दुआ करो खुले आसमान की, कुछ तो दुआ करो खुले आसमान की। इस पिंजरे का दर्द का होता है अब समझ चुका है आज का इंसान भी। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। बुरे में अच्छा ढूंढो तो कोई बात बने, अच्छे में बुराई ढूंढना तो ये दुनिया का रिवाज है। कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरे की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं, दूरी हो जाती है। ध्यान रहे कि चुभ जाती हैं बातें कभी कभी, चुभ जाती हैं बातें कभी कभी और लहजे मार जाते हैं। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ गैरों से ज़्यादा हम अपनों से ही हार जाते हैं। आप सब तो दुनिया में रहते हैं, बहुत कटु अनुभव से जिंदगी के इस पड़ाव तक पहुँचे होंगे, फिर भी कई बार मन में आता है कि बात भी कह दें तो कहीं लगी हो चोट तो उस पर थोड़ा सा मरहम का काम हो जाएगा। कई बार आप अपने जीवन से असंतुष्ट होते हैं पर दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपके जैसा जीवन जीने की चाह रखते हैं। तो आज से क्या करिएगा, अपने जीवन से संतुष्ट रहें। हमारे पास परमात्मा जी ने जो दिया है लाखों करोड़ों लोगों से बहुत अच्छा दिया है। ये दुनिया नहीं चलती अगर 5 स्त्रियां हर पुरुष के जीवन में नहीं होती। कौन कौन सी? माँ, बहन, बहू, बेटी या पत्नी। चालाक बनकर तो किसी को केवल कुछ देर तक ही मोहित किया जा सकता है परंतु जहाँ दिल जीतने की बात आती है वहाँ तो केवल सरल और सहज होना ही जरूरी होता है। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। कई बार एक चुप्पी कई भ्रमित दूषित वातावरण को सुगम कर सही दिशा प्रदान कर देती है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास किसी दूसरे की चुगली करता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी भी किसी और के सामने चुगली करता होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान अपनी भूल में से भी बहुत कुछ सीख सकता है। सबको शुभ भावना शुभकामना के गिफ्ट देने वाली अपने आप को भाग्य विधाता मास्टर भाग्य विधाता समझे, देखिए आपका जीवन कितना खुश मिजाज होगा। माटी का संसार है खेल सके तो खेल, माटी का संसार है खेल सके तो खेल, बाजी रब के हाथ में है पूरा विज्ञान उसके आगे है फेल।
भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और उसका सिमरन दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। तो आज से क्या करिएगा, समझ गए होंगे ना? अरे कहा नहीं समझेंगे, परमा पंडित आइन के साथ 12 साल सुन सुन सुन के तो अब हमसे भी ज्यादा समझदार हो गए हैं। चलिए यही बात पर एक गीत व सुन लेते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनिएगा मीठा सा गीत। ओके बाद फिर आपसे बतियाते हैं।

भाई एक पते की बात बताए रहे हैं। हमेशा दूसरे से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखें। काहे कि दूसरों से उम्मीदें बहुत दुख देती है, जबकि स्वयं से उम्मीद बहुत कुछ प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर रहें और स्वयं पर विश्वास रखें तो आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे। जीवन का सती ही है, मनुष्य जैसे सोचता है वैसे ही गुण कर्म स्वभाव वाला बनता जाता है। यदि मनुष्य श्वास श्वास परमात्मा का गुण, उनका दिव्य कर्म तथा उनकी संपत्ति की याद में रहे तो वो भी दिव्य मन दिव्य बुद्धि वाला बन जाता है। एक राजपूत कोई निश्चय और याद होने के कारण कि वो राजकुमार है, स्वभावतः खुशी साहस धन खुमारी रहती ही है। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्यात्मा निश्चय पूर्वक मनन करती है, मैं तो सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं तो त्रिलोकीनाथ परमात्मा का बच्चा हूँ, सारा ब्रह्मांड का स्वामी का बालक हूँ, तो ऊकी मस्ती आनंद अतीन्द्रिय सुख और शक्ति के अनुभव का पारावार नहीं रहता। परमात्मा हर वक्त आपके साथ है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो आपको कब कहाँ और कैसे कैसे बचाता है, लेकिन आप फिर भी उसको कोई मौका मिलता है तो गिला शिकवा करने से नहीं चूकते। एक बात मन में बैठा लीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है और जिसमें निश्चित आपकी ही कोई भलाई छिपी हुई है। इसलिए हर तरह का अभिमान और जिद छोड़कर जो भी कुछ हो रहा है उसे खुशी खुशी से स्वीकार करें। दया और कृपा इका सागर होने के नाते वो कभी भी आपको दुख नहीं देता। कौन? परमात्मा जी, गॉड जी। अभी तो दुखों से छुटकारा पाने का राह जरूर दिखाता है। प्रभु ही हमारे सच्चे हितैषी हैं। प्रभु को पाने का एक ही लक्ष्य बनाए, जीवन की सार्थकता यही में है। आप बरसों से अपने आप को कोसते आ रहे हैं पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब आप खुद का समर्थन करने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। अब केवल समाधान होंगे, समस्या नहीं। सदा स्मृति रहे कि आप कौन हैं, एक शांत स्वरूप और वरदानी आत्मा है। जीवन का सत्य ये भी है कि मिनट घंटे दिन माह वर्ष बदल सकते हैं, लेकिन हमारे किए अच्छे बुरे नहीं बदलते। का कर्म बुरे काम पीछा करते ही रहते हैं, अच्छे काम बचाते ही रहते हैं। आज मनुष्य जीवन के बुनियादी व नैतिक सत्यों से अवगत है परंतु इन पर अमल नहीं ना करता। इनमें जीवन में सरलता नहीं आ पाती और जो सरल नहीं होगा उसमें परमात्मा की साधना नहीं कर सकता। राजयोग सहज राजयोग की साधना के लिए मन बुद्धि का सरल और सहज होना जरूरी है, जो कि सत्य आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति व इसका मनन करने से ही संभव है। तो क्या करिएगा, संतुष्टता दिलाता है योग, जो कि कई जन्मों तक संस्कारों में समाई रहती है। मानव जीवन पुण्य और पाप का मिश्रण है। अज्ञान और दुर्ज्ञान से पाप उत्पन्न होता है और सद्ज्ञान से पुण्य उत्पन्न होता है। कर्मों से संस्कार बनते हैं, संस्कार ही से ही गुण बनते हैं, गुण से प्रकृति बनती है, प्रकृति से सृष्टि बनती है और सृष्टि ही शरीर है। भला या बुरा, रुग्ण या स्वस्थ, सुंदर या कुरूप, स्पष्ट है कि मनुष्य का जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका शरीर बनता है। जन्मों जन्मों से संचित कर्मों का प्रतिफल ही शरीर है। शरीर ही वो फल है जो प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। सत्कर्म से सुफल और दुष्कर्म से कुफल प्राप्त होता है। वर्तमान शरीर पुराने सांस्कृतिक परिवेश का फल है। कर्मों के फल भोग सुनिश्चित होते हैं, उनसे कोई बच नहीं ना सकता। कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है देव मानव दैत्य सभी को। जीवन में सब कुछ एक निवेश की तरह ही होता है। प्रेम, समय, साथ, खुशी, सम्मान और अपमान, जितना जितना हम दूसरों को देते जाएंगे, समय आने पर एक दिन वो ब्याज सहित हमें अवश्य वापस मिलने वाला है। कभी दुख के क्षणों में अपने को अलग थलग पाओ तो एक बार आत्मनिरीक्षण अवश्य कर लीजिएगा कि क्या जब अब
जब मेरे अपनों को अथवा समाज को मेरी जरूरत थी तो मैं उन्हें अपना समय दे पाया था। कहा है कि हम दूसरे से तो बहुत अपेक्षा रखते हैं, लेकिन कहा हम दूसरों को कुछ दे पाए थे? कहा किसी के दुख में मैं कभी सहभागी बन पाया था? आपको अपने प्रति दूसरों के उदासीन व्यवहार का कारण स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। कभी जीवन में अकेलापन महसूस होए लगे और आपको अपने आसपास कोई दिखाई न दे जिससे मन की दो चार बात करके मन को हल्का किया जा सके, तो आपको एक बार पुनः आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। क्या आपकी उपस्थिति कभी किसी के अकेलेपन को दूर करने का कारण बन पाई थी अथवा नहीं? अपने आप चिंतन कीजिएगा, आपको अपने एकाकी जीवन का कारण स्वयं समझ आ जाएगा। श्रीमद् भागवत जी की कथा में हम लोग गाते हैं कि देवी द्रौपदी ने वासुदेव श्री कृष्ण को एक बार एक छोटे से चीड़ का दान किया था और समय आए पर आवश्यकता पड़ने पर विधि द्वारा वही चीर देवी द्रौपदी को साड़ियों के भंडार के रूप में लौटाया गया। सुना है ना आप सबने? तो अच्छा बुरा, मान अपमान, समय साथ, दुख सुख के जो कुछ भी आपके द्वारा बांटा जाएगा देर से सही, मगर एक दिन आपको दोगुना होकर मिलेगा जरूर, ये तय है। तो आपको डिसाइड करे का है, का दे का है, वही लौट के आने वाला है। सूर्योदय के लिए सूर्य को अंधेरे से, हरियाली के लिए वसंत को पतझड़ से, और गंगा स्वरूप होने के लिए एक नाले को कंकर पत्थरों से टकराना अथवा लड़ना ही होता है। ठीक इसी प्रकार बेहतरीन व अच्छे दिनों के लिए मनुष्य को बुरे दिनों से अवश्य लड़ना पड़ता है, अथवा तो बुरे दिनों का सामना करना ही पड़ता है। प्रभु श्री राम ने लंका को जीता, मगर जीतने से पहले कितनी कितनी विषमताओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आप सब तो जानते हैं ना। पांडवों ने महाभारत युद्ध जीता अवश्य, मगर उसके मूल में भी अनगिनत कठिनाइयां और विपत्तियां ही छुपी हुई हैं। निसंदेह जीवन यात्रा ऐसी ही है। यहाँ पर किसी चीज को वृक्ष बनने के लिए एक लंबी अवधि तक सर्वप्रथम जमीन में मिट्टी के नीचे दबना होता है। समय आने पर वो बीज अंकुरित तो हो जाता है, मगर उसके बाद भी कभी तीखी धूप तो कभी कड़ाके की सर्दी का सामना करते हुए न जाने काका विषमताएं अपने ऊपर झेलनी पड़ती है। यही तो जीवन है, यही तो प्रकृति है। धीरे धीरे वो बढ़ने जरूर लगता है, मगर यहाँ भी पग पग पर उसकी डगर आसान नहीं होती है। कभी आंधे, कभी तूफान, कभी ओलावृष्टि, तो कभी अतिवृष्टि का सामना करते हुए वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष का रूप ले चुका होता है। अब कभी अपने पत्तों द्वारा, कभी अपनी टहनियों द्वारा, कभी अपनी लकड़ियों द्वारा, कभी अपनी शीतल छांव द्वारा, तो कभी अपने मधुर फलों द्वारा परोपकार और परमार्थ करके एक वंदनीय और सम्मानित जीवन जी पाता है। याद रखिएगा, दिन बुरे हो सकते हैं मगर जीवन नहीं। धैर्य, साहस, सावधानी और प्रसन्नता का कवच परिस्थितियों को भी आपका दास बना सकता है। जो डटेगा वही टिकेगा और वही बढ़ेगा। समझ गए? तुम सिर्फ अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। हमारा पहला मंदिर ये कोई और नहीं बल्कि हमारा शरीर है। हम इंसानों को भगवान की अवधारणा सिखाई जाती है, सही या गलत। हम गायों के घर आने तक बहस कर सकते हैं, ये हमारी दुनिया का एक सच है। कुछ लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, दूसरों को विश्वास करना सिखाया गया है और वे इसका धार्मिक रूप से पालन करते हैं। इस मुद्दे पर हमारा मत अलग है। हमारा पहला मंदिर हमारा शरीर है, हमारी आत्मा हमारा देवता है, ईश्वर का अंश है। हम प्रार्थना करने के लिए अपनी आत्मा के साथ संरेखित करते हैं। जो लोग इस प्रक्रिया से, कर्मकांड से गुजरते हैं, वो मुझसे सहमत नहीं हो सकते। हमें पृथ्वी पर अपनी यात्रा के दौरान अपनी आत्मा को अपने शरीर में रखना है। इस मंदिर के रख रखाव के लिए केवल श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे महान आकार में बनाए रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता है। रोजाना व्यायाम से हमारा शरीर चमकता है और आलस्य से सुस्त हो जाता है। हमें ईंट और पत्थर के मंदिर को भी बनाए रखना चाहिए, लेकिन हमें पहले अपना
पहला मंदिर बनाए रखना चाहिए। काहे कि मंदिर के माध्यम से हम सर्वशक्तिवान की प्रार्थना करते हैं। तो का समझे आज से का करिएगा, समझ गए ना। खुद को बदलने का आसान तरीका है स्वीकारना। जौन समय हम गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं उही समय परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। माना कि फूल की सुंदरता पंखुड़ियों से होती है, परंतु यदि फूल की धुरी ही खराब हो जाए तो पंखुड़ियां टिक नहीं पाएगी। इसी प्रकार हमारा जीवन का विभिन्न संबंध संपर्क जीवन रूपी पुष्प की सुंदर

सुंदर पंखुड़ियां हैं, परंतु ये सब आपके जुड़ी है। यदि आप संपूर्ण संतुष्ट व स्वस्थ नहीं तो ये सब भी मुरझा जाएगी। अतः जीवन से सब अंगों को संवारने से पहले स्वयं का वास्तविक रूप संवारना बहुत आवश्यक है। ये सही है कि जरूरतें इंसान को एक दूसरे से जोड़ के रखती है, लेकिन जब तक आपस में व्यवहारिक सरलता सहजता नहीं होती, जरूरतें भी संबंध की पकड़ को ढीली कर देती है। लाइफ में हर समस्या के अंदर उपहार अवश्य होता है, इसलिए कभी समस्या का सामना भी करना पड़े तो निराश नहीं होना चाहिए। का पता जो अंत हम अपेक्षित कर रहे हो अंत उससे भी अधिक सुंदर हो। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने के गुण का अनुभव करें और सदैव आशावादी रहें। हमें नेकी करने के बदले में कुछ पाने की आस नहीं रखना चाहिए, इससे आपका किया पुण्य घट जाता है। नेकी कर दरिया में डाल, अर्थात नेक कर्म करके दरिया में बहा देना, उसे किसी को पता ना चले। एक हाथ से दे तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। कहे कि जितना चुपचाप दिया जाए उतना ही अच्छा है, जिसे पता चलना होगा उसे खुद ही पता चल जाएगा। ऐसा दान ही वास्तव में शुद्ध होता है, इससे ही दानी व्यक्ति प्रसन्नचित होता है। उसके अंदर एक फैलाव आता है, प्रेम से भरपूर हो जाता है, वास्तविक आनंद की महसूसता होती है। जबकि अधिकांशतः लोग कुछ देते हैं तो उसके पीछे सोचते हैं कि हमें प्रशंसा मिलेगी, नाम मनसान बढ़ेगा, प्रसिद्ध होंगे, लेकिन ये दान नहीं ना है। ये भाव हमें बोझ उत्पन्न करता है, अहंकार बढ़ाता है। परमात्मा पर पूर्ण भरोसा, अपने कर्मों पर विश्वास, सकारात्मक सोच के साथ सदैव खुश रहना, ये सारी बातें आपकी आंतरिक ऊर्जा को निरंतर गतिशील और बढ़ावा देती है। तो क्या करिएगा, जान गए ना। चलिए ही बात पर एक गीत और सुन लेते हैं, के बाद फिर आपसे बताती है। सुनिएगा एक गीत, छोटा सा विराम ले रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं।

0: जल शक्ति है, जल जीवन है, जल है तो कल है। आइए सुनते हैं रेडियो मधुबन पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी क्या कहते हैं।
1: सामान्यतः हमारे परिवारों में क्या होता है, कोई बच्चा अगर एक्सट्रावेगेंट हो जाता है तो बहुत सारा खर्चा करने लगता है, तो क्या कहते हैं कि जो है पैसे को पानी की तरह बाहर है, मतलब पानी को हमने ऐसा मान लिया है कि इसका कोई मोल नहीं है। अब हमको इस मिथक को तोड़ करके समाज के मन में इस बात को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि पानी को पैसे की तरह बचा करके काम में लेना है। और अगर हम इसके लिए कामयाब हो जाएंगे तो हमारे देश में जितने प्रकृति ने संसाधन दिए हैं आने वाले कई शताब्दियों तक हम देश को जल समृद्ध बनाए रख सके।
0: रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे थे जल है तो जीवन है, जल बचाएं जीवन बचाएं।
2: देखिए भाई, जिंदगी के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो, चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो, दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो, कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। और जब ऐसा आप करिएगा तो देखिएगा अपने आप रास्ते खुलते हैं कि नहीं। ये एक ऐसा युग चल रहा है जिसमें धर्म के नाम पर लड़ने को सभी तैयार हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोनो तैयार नहीं है। हमें ये बात पर ध्यान देकर पड़ेगा। हसरत पूरी ना हो तो ना सही, ख्वाहिश करना कोई गुनाह तो नहीं है। चिंता ने चिता से मुस्कुराते हुए ये कहा, तू मुर्दों को जलाती है, मैं जिंदों को। कितनी अच्छी बात है ना, चिंता इंसान को जीते जी जलाती है और चिता तो कहती है कि मैं मुर्दों को जलाती हूँ और तू जिंदों को। किरदार शिद्दत से निभाइए जिंदगी में। कहानी तो एक दिन सभी को बनना ही है, जब चले जाएंगे तो कहानी ही ना बन जाएगी, और कहाँ याद करेंगे लोग। जैसे कहानी में कोई पात्र को याद करते हैं, ऐसे कभी कभार आपको याद करेंगे। आपका कद नहीं, आपकी विनम्रता आपको बड़ा बनाती है। बड़ा हुआ तो का हुआ, जैसे पेन खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा पर काहे में है, आपकी वो लंबाई चौड़ाई में नहीं, विनम्रता में। समय बहरा है, कभी किसी को नहीं सुनता, समय बहरा है कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। ये बात को भी ध्यान रखिएगा। दिल से साफ रहोगे तो बहुत लोगों के खास रहोगे, ये बात भी बहुत पते की है। मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियाँ भी जरूरी है। कई बार बहुत सच्चाई से भी का हो जाता है, मन उदास हो जाता। कभी कभी गलत फहमी भी जी लिया करिएगा भाई, वो भी बहुत सुख देती है। सूर्योदय की हर्षित बेला पर आपको सभी को हम बहुत याद करते हैं और कहते हैं, गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। बस जीवन में कुछ ऐसा ही है, समझ गए ना। एक उम्र होती है जब सिर्फ रूप रंग महत्वपूर्ण होता है, एक उम्र होती है जब

संभव है ना तो प्रार्थना। हमेशा खुश रहा करिए। कहे कि खुशियों का संबंध दौलत से नहीं, दिल से होता है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं जीवन का दस्तूर है और हर कोई इसका मुक्त भोगी है। बात करूं तो बहस, चुप रहूं तो घमंड। बात करूं तो बहस, चुप रहूं तो घमंड। आजकल हमारी जिंदगी कुछ ऐसी ही चल रही है। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके हर तकलीफों का ब्रह्मास्त्र है। जीवन एक विद्यालय है, इसमें कठिनाइयां, परीक्षा और समय शिक्षक का काम करते हैं। तो भैया परीक्षा में पास होए का है तो वो तो समझ के जीना होगा। अच्छे जरूर बनिए, लेकिन साबित करने में अपना समय मत गवाइए। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए कि नहीं? कहे कि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाए के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग पूछ ही लेते हैं, है कि नहीं? दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो। कहा है कि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। अभी उत्तम लोग संकट आए तो भी शुरू किया हुआ काम नहीं छोड़ते। आपका जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए परीक्षाएं आएगी, लेकिन आप उन परीक्षाओं को देखकर अपना काम, अपना लक्ष्य मत छोड़िए। और हमेशा याद रखिए, क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर समाप्त होता है। इससे बचिएगा और जितना बचिएगा उतना अच्छा रहेगा। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या फिर रिश्ता। ये कौन कह रहा है पता है? अब्दुल कलाम जी कह रहे। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। आपको तय करना है क्या करे का है। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। ये उन वजहों को पकड़ पकड़ के लाता है जो बेवजह है। खुपरिया में कोनो बात हो गई होगी छोटी मोटी, लेकिन बार बार वही याद कर करके आपका सामने समस्या बना लेता है। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है, बाकी जिंदगी बिल्कुल हल्की फुल्की है। इच्छाओं को कम कर दीजिए, जिंदगी वैसे ही हल्की है। इच्छा ही तो इंसान को अच्छा नहीं बनने देता। और ही चाहिए, और ही चाहिए, और ही चाहिए। अरे चुपचाप बैठ जाइए ना, भगवान जौन दिया उसमें संतुष्ट रहिए, अपने आप जीवन में शांति रहेगी। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा आसान कोई काम नहीं। स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, देखिएगा भाई अपने आप आपकी जिंदगी में हर कुछ वैसा ही घटित होगा जैसे आप चाहते हैं। लेकिन उसके लिए फिर जो कहा कि इन बातों को जरूर याद रखिएगा। छोटी छोटी बात कहते हैं लेकिन आप सब तो समझते हैं ना इन छोटी बातों में कितना गहरा अर्थ होता है। और जो इस बात को समझ ले तो उसने सब कुछ समझ लिया, और जिसने सब कुछ समझ लिया तो अपने आप जीवन उसका तो बेहतर हुई भी करेगा ना। और यही तो पर्व पंडितान आप सबके लिए दुआएं करती है। तो देखिए भाई, जब भी कोई समस्या आए तो ये तीन काम करें। समस्या का सामना करें, उससे लड़ो और समस्या को समाप्त करो। आत्मशक्ति पर विश्वास करें और आप ये कर सकते हैं। मन कमजोर तो परिस्थिति समस्या, मन स्थिर तो परिस्थिति चुनौती, और मन मजबूत तो परिस्थिति अवसर। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोनो बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से।
इस तरह मुस्कुराने की आदत डालिए कि परिस्थिति भी आपको परेशान कर करके थक जाए और जाते जाते जिंदगी भी मुस्कुराकर बोले आपसे मिलकर खुशी हुई है कि नहीं।

0: यदि फूल को भगवान के गले की माला बनना है तो उसे अपने पेट में सुई की नोक से छेद करवाना ही पड़ेगा। सोने के टुकड़े को यदि भगवान के गले का हार बनना है तो उसे भट्टी में गलना ही पड़ेगा। और चंदन को भगवान के माथे पर लगना है तो उसे पत्थर पर घिसना ही पड़ेगा। उसी प्रकार यदि मनुष्य को धर्म पर चलना है तो उसे कठिनाइयां सहते हुए त्याग के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। अर्थात हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना या सहन भी करना पड़ेगा। ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हर पल उनको याद करें, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये वही कमाई है बंदे जो काम तेरे आएगी, जन्म जन्म की भटकन से तुमको मुक्त कराएगी। मुश्किल हो हालात तो याद तुम आते हो, मुश्किल हो हालात तो याद तुम आते हो, मन हो उदास तो याद तुम आते हो। यूं तो जिंदगी में अपनों की बहुत भीड़ है बाबा, पर जब जरूरत पड़ती है तो साथ तुम ही निभाते हो। ऐसा परमात्मा जी को बोलिए मन की बात, जब कहीं अब ऐसी बात आए तो, भावना आए तो प्रकट करिए, परमात्मा को अच्छा लगता है। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है ऐसा अनुभव कहता है। अच्छे जीवन का आकलन ना ही अंग्रेजी बोलने से, ना ही अच्छे कपड़े पहनने से और ना ही ठाट बाट वाली जीवन शैली से होता है, बल्कि अच्छे जीवन का आकलन तो ये है कि कितने लोगों के चेहरे खिलते हैं जब वो आपका नाम सुनते हैं। तो देखिए, छोटी छोटी बात है लेकिन ही जीवन को हमारे श्रेष्ठ बनाती है। त्याग और नाश ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्वयं की इच्छा से किसी वस्तु अथवा पदार्थ को छोड़ना त्याग, तथा स्वयं की इच्छा ना होते हुए किसी वस्तु अथवा पदार्थ का छूट जाना नाश कहलाता है। प्रकृति का अपना एक शाश्वत नियम है और वो यही कि मान पद प्रतिष्ठा वैभव कुछ भी और कहीं भी यहाँ शाश्वत नहीं रहता। ये दुनिया प्रकृति का नियम है, हर चीज परिवर्तन होती है। सूर्य सुबह अपने पूर्ण प्रकाश के साथ उदय होता है और शाम होते होते उसका प्रकाश क्षीण होने लगता है, और दिन में प्रचंड प्रकाश फैलाने वाला वही सूर्य अस्तांचल में कहीं अपनी रश्मियों को छुपा लेता है। रात्रि को चंद्रमा अपनी शीतलता बिखेरता है, मगर वो भी सुबह होते होते कहीं प्रकृति के उस विराट आंचल में छुप सा जाता है, सदा कुछ भी नहीं रहने वाला। इसलिए बांटना सीखिए, चाहे प्रेम हो, सम्मान हो, समय हो, खुशी हो, धन हो अथवा कोई अन्य वस्तु। जिन फलों को वृक्ष मारा बांटा नहीं जाता, जिन फलों को वृक्ष द्वारा बांटा नहीं जाता, एक समय उन फलों में अपने आप सड़न आने लगती है और उस सड़कर वृक्ष को भी दुर्गंध युक्त कर देते हैं। यही प्रकार समय आने पर प्रकृति द्वारा सब कुछ स्वतः ले लिया जाएगा। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप बांटकर अपने यश और कीर्ति की सुगंधी को बिखेरना चाहते हैं या संभाल कर संग्रह और आसक्ति की दुर्गंध को रखना चाहता है। आपकी अपनी इच्छा है, आप जैसा चाहे। दो हाथ से हम 10 लोगों को भी नहीं हरा सकते, परंतु दो हाथ जोड़कर करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। शांति एवं स्थिर दिमाग जीवन की प्रत्येक लड़ाई का ब्रह्मास्त्र है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है दिल। अगर उस आप नहीं तो चमकता चेहरा कौन काम का। होड़ करनी है तो संस्कारों की करो, फैशन का कहा है वो तो आती है जाती है। जो स्नेह हमें दूसरों से मिलता है वो हमारे चरित्र का ही एक तोहफा है। ज्ञान का मनन, चिंतन और ईश्वरीय सेवाएं ही हमारे पुण्य का खाता बढ़ाती हैं, जिससे संस्कारों में परिवर्तन के लिए हमें हिम्मत और उल्लास मिल जाता है और परिवर्तन संभव हो जाता है। कहते हैं कि जीवन में जो कुछ करो, जितना मर्जी धन खर्च करो, सबसे सहयोग लो वो, पर जीवन से मुसीबतें तब तक समाप्त नहीं होती जब तक हमारा स्वयं का अंदर व्यवस्थित नहीं है। काहे कि ध्यान रहे कि हमारे अंदर का अस्त व्यस्त होना ही इस जीवन की हर समस्या का मूल कारण है। इसलिए हमें सर्वप्रथम स्वयं को ही भीतर से व्यवस्थित करने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। पीड़ा सारी मिट गई, लिया जो प्रभु का नाम, गजब कृपा है आपकी परम परमेश्वर भगवान। हर नई सुबह नए जीवन के समान होती है, इसलिए बच्चा बनकर हर सुबह का मजा ले, दिन में एक ईमानदार नौजवान की तरह पूरी मेहनत से काम करें और सायंकाल में एक समझदार बुजुर्ग और शांत चित संत की भांति पूरे दिन में किए कर्मों का मनन करें। कहते हैं कि जन्म के समय मात्र सांसें होती हैं, नाम नहीं, और मृत्यु के समय केवल नाम होता है, सांसें नहीं। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ध्यान रहे कि अपनी सोच को ऊंचा करने मात्र से ही हर बड़ी चीज छोटी दिखने लग जाती है। काहे कि ऊंचाई से हर चीज छोटी लगती है। तो आइए हम अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाए, यही बात पर चलिए गीत सुन लेते, फिर और समय बचा तो बतियाएंगे।
1: धर्म का मूल पाप मूल है अभिमान, तुलसी दे आमत सोड़िए रे जब लग घट में प्राण।

कितना मजबूत होगा वो इंसान जो अंदर से टूटकर भी दुनिया के सामने हंसता है ना बात। फिर से कहते हैं, मेहनत उसकी लाठी है, मजबूत उसकी काठी है। मेहनत उसकी लाठी है, मजबूती उसकी काठी है, विकास की वो नींव है, उसका जीवन सीख है। जिनकी गैर मौजूदगी में हर मंजिल दूर है, जो आपके ख्वाबों को पूरा करता वो मजदूर है। क्यों ना आज से हम भी कड़ी मेहनत कर अपने और दूसरों के ख्वाबों को पूरा करें। भाषा मानव का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। त्याग और प्रेम के पथ पर चलकर मूल न कोई हारी, हिम्मत से पतवार संभालो, फिर कैसे रहेगा दूर किनारा। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसा, हम रोए ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। कहते हैं कि हर कोशिश में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन ये भी सत्य है कि हर सफलता का कारण भी निर्विघ्न कोशिश ही होती है। ध्यान रहे कि दूसरों पर भरोसा करते समय होशियार रहिएगा, क्योंकि देखने में फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसको महत्व आप दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोनो महत्व ही ना हो। कैसा है जिंदगी का तेरा ये फलसफा, एक इंसान के इस दुनिया में आने की खबर तो सबको पहले से ही हो जाती है, मगर जाने की खबर उसके चले जाने के बाद ही पता चलती है। इसलिए धन्यवाद करें उस सृष्टि रूपी रचनाकार परमात्मा का, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना ऐसे अद्भुत तरीके से की है कि हर इंसान अंतिम समय तक जीने की राह पर अग्रसर रहता है। कहते हैं कि एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले ही आ जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। ध्यान रहे कि बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है ये जिंदगी, ध्यान रहे कि बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है ये जिंदगी भी। पता नहीं अगले ही पल कौन सा पैगाम ले आए, इसलिए हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। चिंता संत के जीवन में भी होती है और चिंता संसारी के जीवन में भी होती है, मगर दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क भी होता है, और वो ये कि संत परमार्थ के लिए चिंतित रहता है और संसारी स्वार्थ के लिए। संसारी स्वयं के लिए चिंतित रहता है तो संत समष्टि के लिए चिंतित रहता है। संत और संसारी के बीच का जो भेद होता है वो कर्मगत नहीं अपितु भावगत होता है। दोनों में बाह्य स्थिति का नहीं अपितु अंतः स्थिति का भेद होता है। संसारी भी क्रोध करता है और संत भी क्रोध करता है। संसारी लोभ करता है और संत में भी लोभ देखने को मिल जाता है। संसारी भी अर्जन करता है और संत भी अर्जन करता है, और तो और संसारी अगर संग्रह करता है तो संत भी संग्रह करता है, मगर दोनों में क्रिया भेद शून्य होने के बावजूद भी भावों में जमीन और आसमान जैसा अंतर निहित होता है। प्रकृति का नियम है कि खाना जो हम खाते हैं एक आध दिन के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं 2-4 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा जो हम सांस लेते हैं कुछ सेकंड में ही बाहर वापस निकल जानी चाहिए, वरना हम मर ही जाएंगे। लेकिन कुछ नकारात्मक बातें जैसे कि घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या आदि आदि, जिनको हम अपने अंदर दिनों, हफ्तों, महीने और सालों तक रखे रहते हैं, यदि इन नकारात्मक विचारों को समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तो एक दिन निश्चित ही हम मानसिक रोगी बन जाएंगे। मनमानियां तो बचपन में होती थी जनाब, अब तो हर बात पर मन को ही मारना पड़ता है कि नहीं। अब अंत में यही कहेंगे, मीठा झूठ बोलने से लाख गुना बेहतर है कि कड़वा सच बोल दिया जाए। ऐसा करने पर हमें सच्चे दुश्मन भले ही मिल जाएंगे, परंतु झूठे दोस्तों से मुक्ति मिल जाएगी। पुरानी कहावत है कि जाहिल के साथ तख्त पर बैठने से बेहतर है किसी ज्ञानी के साथ फर्श पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि क्रोध, पछतावे, चिंता और कुरन में अपना समय बर्बाद ना करें। ये जीवन दुखी होने के लिए बहुत छोटा है, परंतु यदि
खुश और मस्त रहें तो इस जीवन में सुख भी अपार मिलते हैं। ये कड़वा सत्य है लेकिन सही भी है, जीवन में आजमा कर देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जीवन की यात्रा आरामदायक हो तो अपेक्षाओं के सामान को कम करें, संतुष्ट मणि बन संतुष्टता का अनुभव करें। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं न ही उधार लिए जा सकते हैं, इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दे जो आपको महत्व देते हैं। इतनी इस बात याद रख लीजिए, बाकी तो सब कुछ ठीक है। रिश्ता चाहे कोई हो, एक बात पक्की है, जिनसे हम आशा करते हैं वही जिंदगी का तमाशा करते हैं। और जब ये बात समझ आ जाएगी तो आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई चाहकर भी आपको आपके लक्ष्य से दूर ना कर पाए। दवा सिर्फ दवा की बोतलों और गोलियों में नहीं होती। व्यायाम दवा है, सुबह की सैर दवा है, उपवास दवा है, चिकित्सा दवा है, परिवार के साथ भोजन करना दवा है, हंसी और हास्य भी दवा है, गहरी नींद भी एक दवा है, एक दोस्त का साथ मिल जाना दवा है, हमेशा खुश रहना ही दवा है, सकारात्मकता ही दवा है, नियमित योग करना भी दवा है, कुछ मामलों में मौन और एकांत दवा है, और एक अच्छा दोस्त एक अचूक दवा की दुकान है। चलिए ही के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, मैंने आज क्या सीखा, मैंने किसे खुश किया, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल। सहयोग की ईंटों से सफलता बना।

0: राम राम भाई रतन राम राम।
1: अरे राम राम भाई कंचन आओ राम राम
0: भाई। और भाई घना दिन में मिला आपा।
1: और एक घना दिन वे गया कंचन मने तो थारी याद आ रही ने एक गर्मी अतरी लाग रही आज लाइटा देखे तो बंद।
0: हाँ जा रही है आंखी में चोनी चल रही है।
1: बिल्कुल सही क्यों कंचन लाइटा बंद है और मैं देखे हो भाई कहीं नहीं तो गीत तो सुनो गर्मी लाग रही और जेठ महीना को गीत चल रहे हो।
0: जेठ महीना को गीत चल रहे हो भाई जेठ भी देख कतरी गर्मी पड़े।
1: अरे भाई वो कहे सियाला में ठंड नहीं लागे तो सियालो कसो
0: सियालो कसो
1: और उनाड़ा में गर्मी नहीं लागे तो उनाड़ो कसो। तो उनाड़ा में तो गर्मी लागे भले आप गर्मी गर्मी करता जावा खेर सियाला की बात ही अलग है कंचन। सियाला में तो आप ठंड ठंड करता ही कतरो ही तो काम कर ला।
0: हाँ और सुहा भी जावे।
1: हाँ वो कहे कतरो ही खाला।

0: कतरोई पैर ला कतरोई ओढ़ लान कतरोई काम कर ला
1: सब चीज जच है।
0: हाँ सब चीज जच है। पर उनाड़ा में तो भाई कई करो, अब कपड़ा तो पहनना ही पड़े कई, आप पहनना वे सियाला में आप दो दो तीन तीन स्वेटर पहन ला साल ओढ़ ला काम हो जावे। पर उनाड़ा में तो देखो पतला पतला कॉटन का कपड़ा पहना तो ही गर्मी पसीना और टपक तो ही रहे।
1: जतरा घिसा और जतरा पुराना हुए और जतरो हड़को हुए सस्तो हुए वो ही जब है गर्मी में तो।
0: हाँ और पुराना देखा आपा नया हाँ, कपड़ा भी नहीं पहरा पर आपा दो ही सहेलियां मिली नहीं ना आपा आपस में बात करा अपना श्रोता बंधु तो लड़ ही गए बस कंचन और रतन का ही मल जावे माने भूल जावे।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं
0: तो अपना सगला श्रोता बंधु रो स्वागत करा हा गावरी बातें कार्यक्रम में। आप सुन रहे रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM
0: सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो।
0: तो देख भाई कंचन नव तपो बनुज खत्म हुआ 25 मई नव तपो लागो तो 3 तारीख ने खत्म हुआ।
1: सही बात
0: मतलब नव तपो यानी कि अति गर्मी
1: अति गर्मी
0: अति गर्मी जो आपनों सहनी नहीं वे
1: सहनी नहीं हुए
0: तो अति गर्मी तो एकदम तो ठीक नहीं वे एकदम तो ठंडक नहीं होवे
1: एकदम ठंडक नहीं हुए। और देख भी नव तपो को भी काई महिमा है कतरो बाको वर्णन करा आपा वतरो ही कम है।
0: सही बात है,
1: नव तपो नहीं हो तो काई है कि संस्कृत में मैंने एक श्लोक याद आ रहा है कि नव तपो नहीं होता तो उंदरा ही उंदरा हो जाता।
0: अच्छा
1: हाँ क्योंकि भाई नव तपा का ये है कि यान का जो बैक्टीरिया है यान का जो छोटा मोटा जीव जंतु है जो पर्यावरण की दृष्टि से चोखा कोनी वह सबने खत्म कर दे।
0: हाँ, हाँ, बिल्कुल
1: है? जो अच्छा नहीं है तो भाई वाने खत्म कर दे। और यान भी मान ले कि भी नव तपा नहीं हुए तो मैंने तो कही है बैठी बैठी ने घड़ा ही एक दार्शनिक भी विचार आई जावे मारे दिमाग में।
0: हाँ।
1: मैं सोचू कि यहाँ बात तो अपने जीवन में आएड़ी समस्या और परिस्थिति पे भी तो लागू होवे कि अगर परिस्थिति और समस्या नहीं आवे तो कही है कि खुरापात घनी सूझ जावे कही परिस्थिति में आप वापस सावधान हो जावे।
0: सही बात है,
1: है?
0: बिल्कुल
1: तो
0: मौसम मौसम को काम तो करे ही है
1: काम तो करे ही
0: है। बस मैं तो क्यों जो भी मौसम आवे भी को स्वागत करो
1: स्वागत करो। सही बात
0: और घबराना नहीं हिम्मत काम लेना।
1: हाँ फसल नहीं पकड़ना तो पानी हो तो
0: हाँ
1: फसल पकवा की दृष्टि से भी बहुत महत्व
0: सियाला में ठंड पड़नी जरूरी है नहीं तो गेहूं नहीं पाके
1: गेहूं नहीं पाके
0: तो उनाड़ा में गर्मी लागो जरूरी है कहीं कहीं तो फसल पाकती भाई
1: वही तो भाई प्रकृति में जो तरह तरह का फूल है बाकी ग्रोथ नहीं हो तो नव तपा को भी अपनी एक महिमा तो है भाई।
0: सही बात है। थोड़क मने यू याद आयो नो तपा देखो भयंकर गर्मी तो लागे ही है पर ये रोहिणी नक्षत्र का दौरान या रचना जेठ की आग उगले।
1: सही बात है।
0: हाँ।
1: जेठ तो, यान तो पूरे गर्मी महीनों है पण कही है कि ए नव तपा यानी विशेष दिन हुआ।
0: हाँ हाँ
1: हाँ
0: बिल्कुल जिमे भीषण गर्मी लागे
1: भीषण गर्मी लागे। हाँ। और बाहर निकलनो भी आपनो मुश्किल हो जावे क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जावे।
0: सही है
1: क्योंकि सीधी सीधी जो है सूर्य की किरण पड़े तो भाई स्किन डिजीज और कई तरह की दिमागी बीमारियां स्ट्रेस बढ़ जावे
0: कतरी समस्या हो जावे अगर आप ध्यान नहीं रखा तो हेजा की बीमारियां हो जावे।
1: हाँ।
0: और जैसे सियाला में घना ठंड लागे तो कतरा जानवर खत्म हो जावे इंसान भी खत्म हो जावे जाके रेवा को मकान नहीं होवे तो गर्मी में भी यही हाल है
1: गर्मी में भी यही हाल है।
0: पर यूं कहवे भाई 12-4 बजे तक तो वेवती कोशिश आप बचन रहो सूर्य की किरणों कि भाई घर में या ठंडक में बैठनी काम करो
1: बस बस
0: पचे 4 बजे बाद थोड़े थोड़े 4 बजे बाद भी एकदम तो कम नहीं हुए पर थोड़े हल्के हल्के कम हो जावे गर्मी तो एक समय जरूरी है तो 4 बजे बाद निकलो। अरे मने याद आवे एक बार दादी सा हा जो पहले तो कटे अतरी गर्मी लागती तो ही कहता अरे भर दोपहर में कटे जा रही है भर दोपहर में आराम करो घर में
1: भई और आपा होता टाबर।
0: हाँ
1: और तो कटे टिकोनो बहुत मुश्किल होते
0: टिकता ही नहीं आपा एक दूसरा काटे छुट्टी वेती नहीं कहते तुम्हारा अटे मैं थारा अटा जाती
1: थारा अटा जाऊं। और मने भी याद आ रही है मारे नाना सा कही होता कि पहले तो आपा घर क्या होता एक दो कमरा पाछे फिर आगे यान और जो बारे बार को बैठक होती वो नाना जी की।
0: हाँ।
1: नाना जी बीच दरवाजे के माचो डाल लेता।
0: अरे कंचन यह बात तो तुमने वास्तव में याद दिला दीदी कि पहले का बड़ा बुजुर्ग कई वेता कहतो वे पोल के बरांडा में वटे इस वहां को आसन वे तो वहां का तख्तो वहां को माचो वटी डुलोड़ो हो तो कौन आ रहा कौन जा रहा हैंग ठा पड़ जाती वाने
1: ठा पड़ जाती और मैं कहा ये कि गर्मी की छुट्टियां ही होती है और सब 15-20 टावर में सब सगड़ा इकट्ठा हो। नाना जी तो सोचता कि भी सब चलो टावर अंदर है और मैं बीच में माचो डाल रखी हूँ तो कोई भी टावर बाहर नहीं जा सी, पर नीचे रेंगन रेंगे
0: याद आवे मने बिल्कुल असे चुपके हो जाता कर ठाई नहीं पड़वा देता
1: काई बचपन हो बोलो
0: वो कहे बड़ा बुजुर्ग भले कतरो भी ध्यान रखे टाबर भी टाबर गिरी तो करे ही करे
1: टाबर गिरी तो करे
0: ही करे बच्चा किन्ने कहे एक जगह पे वे अगर स्थिर वैन बैठ जावे तो बच्चा कहवा भी नहीं
1: बस बस
0: चंचली होवे बच्चा
1: तो फिर थोड़ी दूरी आम का पेड़ होता बठे चढ़नो और जामन तोड़ना सेतू तोड़ना ये सब में लागे रहता बस
0: सही है। पहला तो देखो डाला आप खींच खींचन डालिया के लटक जाता केरी तोड़वा का वास्ते डालिया के लटक लटक कर दूसरा हाथ कोशिश करता केरी अपना टूट जावे हाथ पहुंच जावे
1: सही बात
0: पड़ता ही हाथ डरता ही हाथ घर में आन कहता ही नहीं
1: हाँ पहले देखो आजकल तो थोड़ा सा गिरा है कि फ्रैक्चर हो जावे
0: हाँ
1: पहले तो अच्छो खान पान हो अच्छी एक्सरसाइज होती शरीर की मजबूत बन ही जाता
0: मजबूत बनता। देखो पहले को कही है खान पान आज तो फल फ्रूट ड्राई फ्रूट घना ही मिल रहा जो महंगाई बढ़ रही जो लोगा के खावा की कमी नहीं पहले कटे हाथ ड्राई फ्रूट और फल फ्रूट पर जो खाता शुद्ध खाता
1: सात्विक होता
0: शुद्ध होता हमें कोई केमिकल नहीं कहीं नहीं और छोरा छोरी तो हाँ और कटी पग में चप्पल पेरी नहीं पेरी दौड़ता रहता तो एक्यूप्रेशर तो वैसा नहीं
1: तो ब्लड सर्कुलेशन या नहीं होता तो वो सब कही है अरे जठे रहो वो भी गोबर से लिपेड़ो घर होता ठंडा
0: हाँ, वो ठंडा करे
1: इम्यूनिटी भी बढ़ाता
0: हाँ,
1: जब नंगे पैर आप चलना तो कही है कि कई बार इम्यूनिटी भी बढ़े
0: हाँ बिल्कुल तो, आज भी आप देखा पहाड़ी क्षेत्र में बच्चा बच्ची जो रहता वे बिना चप्पल चलता हुए यदि आपने कतरो आश्चर्य होवे को हो यानी पहाड़ी क्षेत्र में कसान चल रहा
1: हाँ।
0: जबकि आप तो बिल्कुल जूता वगैरह चाल ही नहीं सका अपनो बचपन भी याद आवे आपने कि बचपन में आपने भी चप्पल का ठिकाना नहीं रहता घर में चिल्लाता रहता रे चप्पला पेरो और आपा चप्पल वगैरह ही भाग जाता
1: वे भी समय एक अलग ही टाइप का
0: बिल्कुल आज आपा भी अपना टाबर ने लड़ा अरे चप्पल तो पेरो पर कदी कदी अपनो बचपन याद आवत मने लागे एक नहीं नहीं थोड़ा रेवा दो बिना चप्पल भी चालवा दो
1: सही बात है सही
0: हर
1: बात
0: तरह
1: है।
0: को अनुभव जरूरी
1: हर
0: है
1: हर तरह को अनुभव जरूरी है और प्रकृति से जुड़ा ना तो प्रकृति भी आपने सपोर्ट करे
0: बिल्कुल आज आपने माउंट आबू की बात करा ठीक है सियाड़ा में कतरी ठंड पड़े ऊपर पर तो रोज रेवा वाला तो रेवे ही है
1: रवैये चार चार बजे उठन कई जना तपस्या भी करे
0: हाँ तपस्या ही करे काम भी करे और अत्र पेरे ओढ़े भी कोनी
1: हाँ।
0: तो वाने देखन मने आश्चर्य लागे याने ठंडी लागे
1: हाँ, तो वही है कि आदत हो जावे
0: आदत होगी और आपा रेवा नीचे
1: तो देख माउंट में और आबू रोड में कोई बहुत दूरी तो है कोनी
0: हाँ।
1: पर जब माउंट आबू वाला आबू रोड में आवे नी मारे तो कई रिश्तेदार है तो वाने कही है कि आप आते ही घबराहट हो जाओ
0: हाँ, बेचैनी लागे अगर बाप रे गर्मी में आ गया
1: बेचैनी हो जावे
0: तो वे आश्चर्य करे ये गर्मी में क्या रहे आपने आश्चर्य ये ठंड में क्या रहे

0: होता है?
1: अरे देखो नहीं पता क्या, इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है? बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

0: बहुत अच्छा गीत लागो मने ओ मौसम है सुहावनो और बस गर्मी में तो नदी पे नावा की चाहे तू मने ले जा या नहीं ले जा वो बात दूसरी है पर बात भी मैंने चौकी लागी
1: सही बात है बिल्कुल नदी में नावा एक बार तो गर्मी खत्म हो जावे
0: खत्म हो ही जावे।
1: तो अपना सगला श्रोता बंधुरो पाछो स्वागत करा है घावरी बातें कार्यक्रम में आप सुन रहे रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM
1: सुनता रहो
0: मुस्कुराता रहो।
1: तो कंचन देखो एक तो जेठ महीनो उपरू पुरुषोत्तम महीनो चाल रहो जेने आप अदक मास भी कहवा तो अदक मास को तो एक अपनो ही महत्व है।
0: हाँ, बिल्कुल
1: पूजा पाठ भक्ति सब बढ़ जावे
0: तो अपने समय में पुराना लोग तो और भी ज्यादा करता।
1: हाँ है? बिल्कुल और आज की नई जनरेशन भी घणो कर रही है कंचन।
0: अच्छा
1: जिग्या जिग्या पे तू मंदिर में चालन देख ओहो मंदिर में तो भीड़ ही भीड़ आखो महीनो हो गयो यो एंड आ रहे हो तो।
0: अच्छा
1: हाँ ये तो पांचवा दिन चल रहा है अदक मास का 8-10 दिन और रहा बस
0: 8-10 दिन।
1: हाँ पुष्कर झान देख तू द्वारका जी में झान देख तू तीर्थ स्थान में नदी जटे है बटे झान देख तू भक्ता की भीड़ है और अपना आबू सेहरा माई ने कही जटे मंदिर बनियोड़ा है बटे भी भक्त लोग रोज जावे।
0: बिल्कुल
1: भले यूं जावे एक नहीं जावे पर अदक मास में रोज जाई घंटो घंटो सेवा पूजा करी जल चढ़ाई महादेव जी के और खूब भक्ति करी तो यो एक पुरुषोत्तम महीनो भी वही गजब ही है। यू उतरी गर्मी है लेकिन लोग बाग गर्मी ने भी भूल गया।
0: हाँ देखो भी लगन लाग जावे नहीं
1: लगन लाग जावे
0: अच्छा कहिए वे सब चीजा साइड की चीजा
1: बिल्कुल
0: भक्ति में भी एक रस है।
1: हाँ।
0: तो आनंद जब मिल जावे झरझर करके पानी बहवे तो अपनी गर्मी स्वतः ही
1: गायब हो जावे। अबे देख कंचन मारे कालीज फोन आयो कि भैया अदक मास चाल रहे हो जो चुंदड़ी मनोरथ कर रहा।
0: अच्छा।
1: तो आप क्या आनो है मैंने कहा चुंदड़ी मनोरथ में कई करो या बता दो मैंने तो।
0: सही है
1: तो बोले कि देखो पुरुषोत्तम महीनो कीधो वहा तो 13 जोड़ा जिमावा 13 जोड़ा तो 7 जोड़िया मलन एक लारे काम कर रही।
0: अच्छा।
1: तो 100 जोड़ा जी मारे दो तीन जैसे बेन बेटिया ने नी टाले पचे एक लुम्बिया को भी अलग करे असान करन 100 जोड़ा जी मारे तो पुरुष लोगा ने तो नारियल और 101 रुपया दी और महिलाओं के लिए सबके लिए चुंदड़ी लेना आया। हाँ और घर की बेन बेटिया ने भी बुलाई और बाकी घर वाला तो है ही है घर परिवार वाला तो बाकी 100 जोड़ा 7 जना महलन। हाँ भेड़ा में तो मैं क्यों तो बहुत बढ़िया कर रहे थे कि नहीं आनी मस्त थोड़ा माखन दान पुण्य निकले
0: बस ज्ञान को बहाना सो आपासो दान पुण्य हो जाए।
1: हाँ तो मैं क्यों और कई करो तो बोले कि अभिषेक करा हवन करा और 7 ब्राह्मणा ने भी जिमावा और वाने भी मतलब यू दक्षिणा देवा और बाकी तो जोड़ा वाने भी गणया अब 100 जोड़ा है तो 100 जोड़ा में थोड़ा 7 ब्राह्मण भी गण लीदा। हाँ बाकी एक जने 13 जोड़ा के वे तो वो तो रिश्तेदारी में पग ही भेजा वे।
0: हाँ
1: पर वे कह रहा है थोड़ा पचे जो माँ का व्यवहार वाला वे वाने जोड़ा में गणा नहीं तो थोड़ा माँ जी माँ
0: वाणी
1: वास्ते आओ थाने भी यो ठाट देखनो है तो भजन कीर्तन सब है। तो या पूनम घी जदि पूनम पे वे किदो हो तो बुलाया है तो मैं पूनम पे ही कटे हटे। तो आसान भी को महत्म है पुरुषोत्तम महीना को आसानी दान पुण्य बढ़ जावे और देख कंचन अगर कोई जोड़ा जिमा दीदा ठीक है भाई एक बार हर साल तो नहीं जिमाई तो एक जनी कह रही मैं तो हर साल थोड़ी ना जिमाऊ अब गए साल जोड़ा जिमाया आनी साल में 35 मालपा दे तो मंदिर में रखू।
0: हाँ तो सही है अपनी अपनी श्रद्धा भावना की मैंने भी याद आ रहा है कि भाई हाँ जैसे पंडित लोगों ने आपा मटका देता।
1: हाँ।
0: तरबूज दे रहता फल फ्रूट है मटका के अंदर डाल।
1: हाँ।
0: तो साथ में साड़ी वगैरह।
1: हाँ।
0: ये सब अपनी अपनी श्रद्धा और भावना के साथ।
1: हाँ अबे वे जोड़ा जिमारिया। हाँ। सब आप आपकी इच्छा वे जिसान करे कोई मंदिर में पुजारी और पुजारी जी की वाइफ ने वाने साड़ी पहरा दे पुजारी जी ने कपड़ा दे दे
0: कपड़ा दे दे।
1: हाँ और वे क्या भाई मुझे 35 मालपा एक तपेली चढ़ा दू तपेली में 35 मालपा रह कर 101 रुपया रह कर मैं तो मंदिर में ही चढ़ा रही
0: हूँ
1: तो मतलब खूब आपने चीजा जानवा मिले देखो कई कई करा है।
0: बस बस बस और भी दान पुण्य का ये भी एक तरीका हो सका।
1: हाँ ये भी तरीका हो बाकी तो जेठ महीनो है तो कोरा कल से जल का भरन तो मंदिर में रखे ही रखे हर एक ही एकादशी का दिन विशेष।
0: बस मैं तो ज्ञान कहूँ कि भाई और वो बहुत बड़ा पुण्य है।
1: हाँ ये तो पुण्य है ही है,
0: वो बहुत बड़ो पुण्य है, क्योंकि देख भाई गर्मी में तपता आदमी ने काई चाहिए, पानी, पक्षी ने काई चाहिए, परिंदा।
1: हाँ तो आजकल पक्षी के लिए परिंदा घना लटका रहे लोग बाग। हाँ कटी झावा को काम पड़ो समाज में, समाज में क्रिकेट को गेम हो, ठीक है मैच हो, क्रिकेट का मैच सब खेल खेलन जो पब्लिक का कि आजकल तो क्रिकेट को मैच हुए, कई भी आपको समाज भेलो हुए, खानो पीनो सब बटी वे, तो खानो पीनो खादा बाद पाचा जो गेट उबाने निकलवा लग गया, तो एक एक कुंड हरेक ने दी दो। हरेक ने एक एक कुंड,
0: एक एक कुंड,
1: हाँ
0: ताकि याद रहे।
1: हाँ,
0: वो लगावे ही लगावे,
1: लगावे ही लगावे, क्योंकि
0: कई बार कई हुए कि भी देख पीसा तो घना हुआ है घर में।
1: हाँ,
0: कुण जावे कुण लावे, जिसके मन में भावना है, मान लो कि तू और मैं हूँ, आपा घर में बैठा है, आपा सोचता ही रह जावा।
1: हाँ, और
0: लावनो है लावनो है,
1: और समय निकल जावे,
0: और समय निकल जावे, और यान जब हाथ में ही आ जावे तो भाई कोई शायद ही यान को।
1: हाँ, पचे तो लटका भी रहो
0: मन को कि भी नहीं लगा।
1: हाँ, पचे तो जैसी व्यवस्था है वही अनुसार आप आपके रखी जाए, और परेवड़ा के पानी देवी जाए।
0: अब देख थारी बात में से मने भी बात याद आ गई, आबू रोड के मायने एक व्यापारी है जो 2,000-2,500 टंकिया बनवाई सीमेंट की ऑर्डर देन, और जगह पे वे लोगों ने कह दिया दुकान पे जाए, जिन्हें भी भाई गाय के वास्ते टंकी चाहिए वो वठे से उठा लो, जिन्हें भी गाय की टंकी चाहिए वे वठे से ले लो, और बीच में ही मार्केट की रख दी। तो दिक्कत रो पुण्य कमा।
1: हाँ बिल्कुल, आज देखो इंसान तो मुंडो मांगन ले ले, भूख लागी प्यास लागी, पर ये जानवर है जो बेचारा अबोलिया जानवर है, अब ये की कापू मांगे,
0: बस बस बस,
1: तो बहुत अच्छो पुण्य को काम की दो। तो एड़ा भी घना लोग है जो कहीं कहीं पुण्य करता रहे, पर कंचन अब जावा को भी टाइम हो गया है आपने। तो भाई यार गर्मी तो लागती रही, मौसम को काम करी, पर आपने तो अपनो काम करना ही पड़ी।
0: सही बात।
1: तो भाई चला और आपा मिला अगली बार, आव जे भाई राम राम।
0: राम राम भाई राम राम।
1: आप सुन रहे रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM,
1: सुनता रहो
0: मुस्कुराता रहो।

बाल संसार सुनिए हर शनिवार दोपहर 12:30 पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चे, शिक्षक और माता पिता एक साथ जुड़कर सीखें और खेलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बाल संसार की। तो फिर इंतजार किस बात का? हर शनिवार दोपहर 12:30 पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार सुने और अपने परिवार के साथ एक यादगार पल बिताएं। सुनिए, मुस्कुराइए और सीखिए बाल संसार।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज हम लोग बात करेंगे विशेष बाल मन पर, यानी बाल संसार पर। जी हाँ, बच्चों का एक यूनिक संसार होता है और हम सभी भी बच्चों के संसार को देखकर खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, और कभी हम भी इसी तरह थे ये हमें याद करके बेहद सुकून महसूस होता है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है बाल संसार, इस कार्यक्रम के हमारे विशेष मेहमान जिन्होंने इस कार्यक्रम की कल्पना की है, अजय शुक्ला जी, एजुकेशनिस्ट शिक्षाविद हमारे साथ हैं और काफ़ी किताबें भी लिखे हैं और लोगों को जो है अपने मन की संवेदनाओं को समझने में मदद करते हैं। तो आज उनका मन हुआ कि हम बाल मन के बारे में समझते हैं, ताकि शिक्षाविद होने के नाते बच्चों के साथ जुड़कर, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूली एजुकेशन उनको मिल रहा है, चाहे पहली क्लास में हो, दूसरी क्लास में हो, या इवन आजकल तो किंडर केजी है ना, ये सारी चीज़ें भी चलती हैं। तो बच्चों को जो है शिक्षित करने के लिए, जैसे ही पैदा होता है बच्चा सीखना शुरू कर देता है, हम सिखाना शुरू कर देते हैं और उसके हर एक बदलाव को हम एंजॉय करते हैं और खुशी फील करते हैं। तो आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए अजय जी से मैं स्वागत करना चाहूँगा। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय भाई जी।
0: कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल कुशल मंगल, आनंद पूर्वक हूँ।
0: बाल संसार इस प्रोग्राम में आप बच्चों के मन के बारे में बात करने वाले हैं, तो ऐसा क्यों आपने सोचा, बाल मनोविज्ञान के बारे में आप क्यों सोच रहे हैं? बड़ों का मनोविज्ञान भी तो सोचना पड़ेगा आपको।
1: बहुत अच्छी विषय वस्तु है, और चूंकि आपसे कई बार विभिन्न विषयों पर चर्चा होती रहती है और मानवीय संवेदनाओं को लेके आपकी मनस्थिति काफ़ी संजीदगी भरी होती है, संचेतना से युक्त होती है, चिंतनशील होती है, तो ये सब बातें भी कई बार एक अच्छे वातावरण को जन्म देती हैं। और जैसा भी आपने कहा भी कि क्यों हम बाल मन की ही शुरुआत करना चाहते हैं, क्यों नहीं हम बड़ों के ऊपर बात करते हैं, तो देखिए बड़ों के साथ में एक मैच्योरिटी वाला पॉइंट होता है भाई जी, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बड़े तो अपने समाधान के लिए थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके समाधान की स्थिति में चले जाते हैं, लेकिन बच्चे होते हैं वो हेजिटेट करते हैं, थोड़ा सा उनको संकोच होता है, और जो इनिशिएटिव पावर होती है वो उतनी नहीं होने के कारण वो कई बार अपने प्रश्नों के साथ में मन महसूस के रह जाते हैं। और मनोविज्ञान ये कहता है कि केवल देखने में या ऑब्जर्वेशन करने में या परीक्षण करने में हमको लगता है कि हम बाल मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, जबकि एक सामान्य मनुष्य को हम अगर संपूर्ण उसकी परिकल्पना को देखने का प्रयास करें तो एक सामान्य इंसान के अंदर बाल मन हमेशा मौजूद रहता है। वो मैच्योरिटी के लेवल पर या ईगो स्टेट के लेवल पर हम देखें तो चाइल्ड ईगो हो सकता है, एडल्ट ईगो हो सकता है, तो ये चाइल्ड ईगो और एडल्ट ईगो दोनों ही मिलके जीवन को गतिशील करने का प्रयास करते हैं, और ऐसे में हम केवल बाल मन की बात नहीं कर रहे बल्कि बाल मन के माध्यम से बड़ों के अंदर भी खुशियों को समेटने का एक माध्यम हम देने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम कहें कि बच्चे अगर प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं या सुबह सुबह बड़े अगर घूमने जा रहे हैं और उस समय यूनिफॉर्म में बच्चों को जब देखते हैं वो और उनकी खुशी को देखते हैं, स्कूल चलने के उनके जो एक आनंद के परिवेश को देखते हैं, बिल्कुल, तो खुश होते हैं कि काश ये हमारा जीवन होता और हमारा था भी पहले जीवन। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताया, और आशा करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस पर हम बात कर रहे हैं बाल संसार के बारे में, बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में बातें करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जितना हम बच्चों के मनोविज्ञान को समझेंगे उतना हम अपने मनोविज्ञान को या अपने मन को भी हम ठीक कर सकते हैं, या अपने मन को भी बेहद सुंदर और सुखद अनुभूति करा सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि बच्चों का मन जो है, ऐसे कहा जाता है कि भाई बच्चे तो भगवान के रूप है, मासूमियत है उनमें, कोमलता है उनमें, शीतलता है, लेकिन आजकल देखा गया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे उधम भी हो जाते हैं, तो ये इसको कैसे हम लोग समझें?
1: बहुत अच्छी बात आपने कहा, और ये बिल्कुल सही है कि पहले ज़माने में जब आप लोगों के स्वरूप को हम देखते थे या समझते थे तो बड़े बच्चों को बड़े अच्छे ढंग से आकर्षित कर लेते थे, और बच्चों को वो चेष्टा करते थे कि हम गोद में ले लें, उनको स्नेह प्यार दें, और बच्चे बड़े सरल तरीके से उनके पास में आ भी जाते थे। अभी जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है उसमें देखने में आ रहा है कि वो बालमन तो कहीं गुम हो गया है, कुछ मैच्योरिटी जल्दी डेवलप हो गई है, और वो मैच्योरिटी डेवलपमेंट होने के कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक बात कहूँ कि एक प्लेग्राउंड में मैं मूव कर रहा हूँ और एक बच्चा है जो अपने पिता के साथ जाड़े के समय में क्रिकेट खेलने का प्रयास कर रहा है, कई बार वो वॉलीबॉल खेलने में अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो उस स्थिति में ये पूरी प्लेइंग मोड एक साथ नहीं होता है। तो बच्चे ने क्या प्रयास किया कि अपने पिता के पास में वो एक बॉल है और वो गोल करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पिता ने हर बार उस बॉल को रोक लिया। लेकिन पिता ने उस बच्चे की तरफ जब बॉल लेके गया तो उस समय पिता सफल हो गए गोल करने में। तो बच्चे ने एकदम झुंझलाते हुए कहा कि पिताजी ये बॉल है, अब कल से मैं ग्राउंड में नहीं आने वाला हूँ। तो वहां पर उनके अंदर एक विद्रोह पैदा हुआ कि मेरा बच्चा है, इसको मैं तैयार करके लेके आता हूँ, उसको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं। तो बच्चे के पिता से मैंने सहज रूप से कहा, चूंकि मैं इस विषय पर कार्य करता हूँ, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि एक दो गोल इस बच्चे के द्वारा जब

0: लेकिन वो बच्चा तो शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम ही नहीं है कि उस गोल को रोक पाए आप जब उसको गोल करने जाएंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि आपके और बच्चे के बीच में जो संवाद है, जो स्नेह है, प्यार है, उसमें कठोरता व्याप्त नहीं हो।
1: जी, तो बच्चों के साथ जब भी जुड़े तो कोमलता से, सरलता से जुड़े, ताकि बच्चा जो है अपने आप को अच्छा महसूस करे और वो आगे बढ़ने का जो खुशी है उसको मिले और उस खुशी से वो और आगे बढ़ सकेगा और उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा आपने ये भाव बताया और मुझे लगता है कि इस तरह के भावनाओं को अगर हम लोग समझे तो जीवन का जो गहरा असर है वो हम लोग एक संवेदनाओं के साथ जुड़ने के लिए हमें कोमलता की ज़रूरत है, मासूमियत की ज़रूरत है और उस अबोधपन में कुछ सीखने सिखाने का जो भाव है वो शायद आपको बहुत जल्दी जो है महसूस होगा और आप उसे डांट डपाट के अगर सिखाना शुरू करेंगे हो सकता है कि बच्चा कर भी ले लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी जो सीखने की जो मासूमियत था जो जिज्ञासा थी वो शायद मर ना जाए। ये बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हम सभी को इस बात का ध्यान रखना है। और आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत की तरफ। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, बच्चे मन के सच्चे हैं। तो आइए इस गीत के साथ ही मुझे लगता है कि आप बाल संसार के आगे की कहानी को सुनने के लिए आप बिल्कुल जिज्ञासा आपके अंदर बनी होगी, क्योंकि हम भी कभी बच्चे थे, है ना। तो बच्चों के संसार को देखकर या उनकी भावनाओं को सोचकर हमें भी खुशी होती है और उनके साथ खेलना, उनके साथ बातें करना भी अच्छा लगता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं बाल संसार इस कार्यक्रम में और अजय जी से फिर से बात करते हैं। अजय जी को आपके साथ जोड़ना चाहूँगा। अजय जी, फिर से एक बार स्वागत है और बताइए कि किस तरह से बच्चों के साथ हम लोग का जो एक कनेक्टिविटी है वो बड़ा ही यूनिक है। तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे बच्चों में लोग भगवान को देखते हैं या बच्चे मन के सच्चे हैं, इस तरह की चीज़ें जो है बच्चों के साथ जुड़ी गई है, तो ये इसकी भावनाएं क्या है, ये कैसे संभव है और उन चीज़ों को क्यों भगवान के साथ जोड़ा गया।
1: बहुत अच्छी बात आपने कहा और निश्चित तौर पर जब ये गीत सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा जीवन बचपन के सानिध्य में हो गया है और वही फीलिंग्स, वही भावनाओं के साथ में खेलना, अपने भावों को सहज करना, सरल करना आसान हो जाता है, क्योंकि मन और या अंतर मन से जब ये बात निकलती है कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, तो ये ईश्वर के साथ में जुड़ने का जो भाव है गीत में वो इस बात का संकेत है कि बच्चों के पास में एक सहज मन और सच्चाई से युक्त हुआ क्रिएशन होता है। और वो जब निष्पक्षता के फ्रेमवर्क में होते हैं तो कई बार बड़े भी जब किसी उलझन में हो जाते हैं तो उस स्थिति में बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा बेटा ये बताओ कि इस समस्या का हल क्या है, और बच्चे जब निष्पक्षता से उस बात के समाधान के लिए कोशिश करते हैं तो कई बार हमारा मन खिल उठता है, हमें लगता है कि नहीं, जो आज बात निकल के आई है वो निष्पक्ष है। तो ये जो निष्पक्षता है, सच्चाई से युक्त जो बात है, यही बड़ों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। और बड़ों को जब अपनी इथिकल वैल्यूज में स्वयं को कन्वर्ट करना होता है तो फिर उन्हें याद आता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, थी भी, है भी और भविष्य में भी रहेगी। तो वो जो ईमानदारीपूर्ण व्यवहार है या छल कपट रहित जो बिहेवियर है, निस्वार्थता की जो फीलिंग है, उनके प्रति जो अटैचमेंट क्रिएट करता है या हमें लगता है कि उनके साथ जुड़ जाना चाहिए, घुल मिल जाना चाहिए, खेलना चाहिए, या वो कि अगर प्ले मोड में हैं तो हम भले ही बड़े हो गए हैं लेकिन मन से तो एक बार हम उनके साथ में जुड़ ही जाते हैं और ये फील करते हैं कि वाकई में जो बच्चों का संसार है, बच्चों का जीवन है, ये जो नवजीवन है और नव जो कलियां हमारे साथ में खिल रही हैं या बाल हृदय की गहराइयों में समाज की भावी और श्रेष्ठतम कल्पनाएँ छिपी हुई हैं, तो उन्हें भी हम पुनः जीने का प्रयास करते हैं या जीना चाहते हैं। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि कोई बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती है तो उनको समझाने के लिए बच्चों को कई बार माता पिता जो है डांट डपाट करते हैं, नहीं सुनता है तो मार भी देते हैं, तो ऐसे बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करें, आप क्या सोचते हैं?
1: बड़ी अच्छी पहल आप करते हैं कि नहीं प्रश्नों के माध्यम से। और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि आपने एक बात रखी कि कई बच्चे थोड़ा सा शरारती हैं, उधम करते हैं, मेरे सामने भी ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। तो मैं बड़ों से ही कहता हूँ कि अगर इनको हम मैच्योरिटी की चिप इनके अंदर स्थापित कर देते हैं तो ये सदा अगर गंभीर रहते हैं तो जो आपके घर का वातावरण है, जो चहलकदमी है या थोड़ा सा हल्ला बोल होता है तो उसका जब अभाव होगा तो उसको ढूंढने के लिए आप कहाँ जाएंगे। तो जब ये बात मैं के सामने रखता हूं तो कहते हैं नहीं, हमारे बच्चों को आप चंचल ही रहने दो या थोड़ी इनकी शरारत हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा को लेके जब हम काम करेंगे तो उनके सारे विचारों को लेके, भावनाओं को लेके, और ये बताने का प्रयास होगा कि भाई इन इन एक्टिविटीज से आपके माता पिता को कष्ट होता है, और जब उनको रियलाइज हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएंगे, और जब चेंज हो जाएंगे और स्कूल से आएंगे और जब वो हल्ला नहीं मचाएंगे, शोरगुल नहीं करेंगे तो आपको लगेगा हमारे बच्चे हमने जन्म दिया और वो सुख उठा नहीं पा रहे हैं। तो एक बार हम इस बात का भी मूल्यांकन करें कि जब हम बच्चे थे तो क्या बिल्कुल बचपन से लेकर और बड़े होने तक हम गंभीर ही रहे, या गंभीरता का आवरण अगर हम ओढ़ के चलते हैं तो उनका बचपन नहीं छिन जाएगा। तो बच्चों को बच्चों की शरारतों के साथ में रहने दें। हाँ, उसमें यह है कि उन्हें यह समझाने का प्रयास करें कि कैसे और किस समय वो किसी बिहेवियर को अंजाम देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, इस पर जरूर उनसे चर्चा हो सकती है और इट मे बी पॉसिबल कि वो थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन भी करें, लेकिन पूरा का पूरा बचपन हम छीन के और उनको एक गंभीर मनुष्य बनाने की अगर चेष्टा करते हैं तो ये हो सकता है कि कुछ मेंटल डिसऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उनको जब इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारे खेल कूद से या हमारे उद्यम से माता पिता या पड़ोसी को बहुत पीड़ा हो रही है, तो वो अपने आप में गंभीर होने का प्रयास करेंगे। लेकिन उस समय जो मनोभाव होंगे और उस मनोभाव का जो वेग होगा, उसको हम अगर रोकते हैं तो उनके अंदर जो एक आनंद की क्रिया उमड़ रही है, क्योंकि उस समय जब वो खेल कूद रहे हैं तो उस समय उनको नहीं लगता है कि समाज को कोई क्षति पहुंचा रहे हैं। हम ये है कि कुछ वातावरण में परिवर्तन कर सकते हैं, उनको एक ग्राउंड की उपलब्धता करा सकते हैं, उनके साथ खेलने जा सकते हैं, उनको कुछ गेम्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें उनको दिलवा सकते हैं, उनके मन को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन उनकी मन स्थिति में जो आनंद या भाव विभोर क्रिएट हो रहा है, उसको रोकने का या उसको दमन करने का प्रयास करते हैं, तो ये हो सकता है कि वो अपने बचपन से तो पलायन कर जाएं, वो माता पिता के प्रति भी अपना एक नया दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं और अपने आप को उनसे अलग करने की चेष्टा भी कर सकते हैं। जी
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया है, लेकिन अब ऐसे सिचुएशन में हमें उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट रह जाता है, और कई बार ये चीज़ें जो है संभव नहीं हो पाता, तो क्या किया जाए, क्या टेक्निक है?
1: बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे पास में जो विकल्प हैं, क्योंकि दुनिया में कहा गया है कि मैनेजमेंट के सिद्धांत का जब हम अवलोकन करते हैं तो उसमें एक बात निकल के आती है कि हमारे पास में संकल्प क्या क्या है और विकल्प क्या क्या है। लेकिन इसको अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमको लगता है कि हमारे पास में संकल्प भी श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र होना चाहिए और विकल्प भी हमारे पास में श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र होना चाहिए। तो अगर इन तीन मानदंडों को लेके हम चलते हैं तो बाल मन इस बात को स्वीकार कर लेता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में न्याय किया जा रहा है, क्योंकि न्याय की अपेक्षा तो वो करता है, क्योंकि न्याय को अपने शब्दों में वो देखे तो निष्पक्षता की श्रेणी में रखता है और वो सोचता है कि हमारे माता पिता हमारे प्रति एक संवेदनशील दृष्टिकोण को अपना रहे हैं और जब वो बातचीत करते हैं तो फिर वो तय करता है कि कोई बात नहीं, हम इन एक्टिविटीज़ को करेंगे और इसको हम नहीं करेंगे। अर्थात वो धीरे धीरे उसका मन जो है वो बालमन है और वो बालमन डूज और डोंट डूज, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बीच में एक समानांतर रूप से मूल्यांकन भी करता है और एक विभाजन भी करता है। और धीरे धीरे जब वो मेच्योरिटी की ओर बढ़ता है तो माता पिता को ये कहना पड़ता है कि बहुत कम समय में बेटा आपने इन सब चीज़ों को मैनेज कर लिया और अब आपकी एक्टिविटीज़ से हमको दुख नहीं होता है बल्कि सुख पहुंचता है। तो बच्चे ने कहा कि आपने हमको एक खुला आसमान दिया, हमें उड़ने के लिए आकाश दिया और हमारे माता पिता आप हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ही हमारे माता पिता होना चाहिए, क्योंकि आपने एक स्पेस दिया हमको अपनी बात रखने का, अपनी भावनाओं को साझा करने का, और अब हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम आपके साथ में घुल मिल के और बड़े आनंद पूर्वक जीवन जी सकते हैं। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें जो है थोड़ा सा संवेदनशील होकर हमें भी समझना पड़ेगा, और कई बार जो है वेट एंड सी वाला काम कर जाता है, थोड़ा सा रुक के अगर आप बच्चों को अलग सा समझाते हैं तब भी हो सकता है कि बातें ठीक हो जाए, और कभी कभी बच्चा जो है एक्स्ट्रा केयर भी चाहता है, तो उसको एक्स्ट्रा केयर करके अगर आप उसको अकेले में इस बात का एहसास कराएंगे, जब उसका मन सुनने के काबिल हो, वो शांत हो, रिसीवर के रूप में आपके सामने है, तो मुझे लगता है कि यह ज़्यादा बेटर होगा। बहुत अच्छी बात आपने बताया। तो चलिए, जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश क्या देना चाहेंगे आखिरी में।
1: हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये जो भी बातचीत हो रही है निश्चित तौर पर बच्चों के लिए हितकारी है और बड़ों को भी उन्हें मैनेज करना या उनके साथ में संबंध दीर्घकालीन तक बनाए रखना बड़ा आसान होगा। और उसके लिए जैसा आपने कहा कि एक्स्ट्रा केयरिंग, जैसे बच्चों को जब पढ़ाई में कमजोरी होती है तो हम लोग एक्स्ट्रा कोचिंग लगाते हैं, तो ऐसे ही स्नेह और प्यार का संबल बढ़ाना होगा। और जो आपने एक शब्द कहा केयरिंग, तो केयरिंग के साथ में हमें अच्छी नर्चरिंग भी करना पड़ेगा, अच्छी पेरेंटिंग भी करना पड़ेगा, और अच्छी नर्चरिंग और पेरेंटिंग जब होगी तो नेचुरली हमारे और उनके बीच में एक लविंग सिचुएशन क्रिएट होगी, स्नेह और प्यार का स्तर हमारा बढ़ता जाएगा और यही हमारे और बच्चों के बीच में संवाद स्थापित करने में, या जिसे हम एडजस्टमेंट कह सकते हैं, और वो भी क्रिएटिव एडजस्टमेंट वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस संवाद के माध्यम से बच्चों और बड़ों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा और वो हमारे जीवन में बाधक नहीं बल्कि साधक होंगे और हमारी पूरी यात्रा में कहीं ना कहीं वो सहभागी बन जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।
0: अजय जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। बच्चों का इस जो मन है उस पर हमने बातें की और बच्चों का मनोविज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस एपिसोड के माध्यम से। आगे और भी एपिसोड इस तरह के सीरीज में हम लोग सुनेंगे जहां पर बच्चों का पूरा संसार पूरा जगत को हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सामने रखें और बच्चों की बातों के साथ साथ बच्चों के मनोविज्ञान को ठीक से समझना और उसको सुलझे और सुलझाने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी अपने बच्चों के साथ बड़े मासूमियत के साथ प्रेम से और पूरे हृदय से आप जुड़े रहें। तो कहा जाता है कि भाई जो चीज़ें आप दिल से करते हैं और बच्चों की एक सेवा समझ के उनको अगर आप करते हैं तो आपको भी उसका जो है तनाव नहीं रहेगा। अगर आप करना ही है मजबूरी से करते हैं तो तनाव रहता है, तो वो तनाव रहित अगर आप करेंगे तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा बच्चों की सेवा के लिए मुझे भगवान ने इस बच्चे को मेरे पास भेजा है। तो सीधी सीधी आपकी जो मनस्थिति बहुत ही बदल जाएगी और आप अच्छा कर पाएंगे बच्चों के साथ और बच्चे भी आपके साथ बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार कर पाएंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम है इतना इंटरेस्टिंग कि आप भी सुनेंगे तो अपने बचपन में चले जाएंगे, और जो बच्चे हैं उन्हें तो बहुत ही मजा आएगा क्योंकि आपके फ्रेंड्स ही आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम का नाम ही है बच्चों की दुनिया। सबसे पहले पूछ लेते हैं कि स्टूडियो में कौन कौन है, तो आप लोग एक एक करके आपका नाम और आपकी क्लास बता दीजिए हमारे सुनने वाले दोस्तों को।
1: मेरा नाम दीपक है, मैं प्लस वन क्लास में पढ़ता हूँ।
2: मेरा नाम अनमोल है, मैं सेवन्थ क्लास में पढ़ता हूँ।
3: मेरा नाम विवेक है, मैं नाइन्थ क्लास में पढ़ता हूँ।
4: मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास फाइव में पढ़ता
5: हूँ। मेरा नाम राघव है, मैं क्लास सिक्स में पढ़ता हूँ।
6: मेरा नाम अमीक्षा है, मैं क्लास सेवन्थ में पढ़ती हूँ।
7: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास टेंथ में हूँ।
8: मेरा नाम रोहानी है, मैं क्लास एट में हूँ।
0: ओके, तो हमारे साथ में छोटे बच्चे भी हैं और थोड़े बड़े बच्चे भी हैं, लेकिन हैं तो सभी बच्चे। अब बहुत सारी बातें अलग अलग टॉपिक्स पे हम करते हैं, तो आज कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है जिसपे हम बात करेंगे। अच्छा, आप लोगों का फेवरेट कलर कौन सा है?
5: रेड।
0: ओके।
5: ब्लू।
9: ब्लैक।
0: ओके।
10: पिंक।
7: पिंक।
0: पिंक। ओके।
8: ब्लू और पिंक।
0: ओके, अच्छा लड़कों को पिंक कलर नहीं पसंद होता क्या? नहीं पसंद होता?
9: नहीं।
0: किसी को भी नहीं होता?
9: नहीं।
0: क्यों? पिंक अच्छा नहीं होता?
9: गर्लिश लगता है हल्का सा।
0: थोड़ा सा गर्लिश लगता है ना? राघव को क्या लगता है? राघव तो पिंक भी पहने आज।
9: नहीं, वो पिंक नहीं है।
0: पिंक नहीं है?
8: मजेंटा है ना?
0: कौन सा कलर है फिर? अच्छा,
9: थोड़ा तो पिंक ना,
0: पर्पल जैसा
9: है।
0: पिंक नहीं है? पिंक नहीं पहन सकते क्या लड़के?
9: नहीं।
0: नहीं, क्यों? पहनते हैं?
9: हम पहनते हैं ना?
3: पहनते हैं, लेकिन
5: हम नहीं पहनते।
0: आप नहीं पहनते?
8: दीदी, मेरी क्लास में एक लड़का है, उसको पसंद है पिंक कलर।

0: को मतलब हो सकता है पसंद, पर ज्यादातर लड़कों को नहीं होता. ओके अगर पिंक पहनेंगे तो क्या चिढ़ाएंगे सब लोग?
1: यस.
0: कौन चिढ़ाएगा?
2: दोस्त.
0: क्या बोलते हैं?
1: सबसे पहले दोस्त ही चिढ़ाएंगे, लड़कियां जैसे कपड़े पहने लड़की हो गया.
2: छपरी बोलेंगे.
0: अच्छा ओके और क्या बोलते हैं, मतलब चिढ़ाते हैं किसी को आपकी क्लास में जो लड़का पिंक?
1: नहीं तो चिढ़ाएंगे
0: पहनता ही नहीं हूँ. ओके आपकी क्लास में जो लड़का पिंक पसंद है उसे कोई कुछ बोलता है?
1: नहीं कोई नहीं बोलता, सब इक्वली है हमारी क्लास में.
0: कोई नहीं बोलता?
1: नहीं, लड़कियों को भी ब्लू पसंद होता है, लड़कों को भी पिंक पसंद होता है.
0: ओके तो लड़कियां ब्लू पहन सकती हैं क्या?
1: पहन सकती हैं.
0: मतलब लड़कियां सब कलर पहन सकती हैं बट लड़के नहीं पहन सकते सारे कलर?
2: लड़की को तो अच्छा लगता है सब.
0: हाँ लेकिन लड़कों पे क्यों नहीं अच्छा लगता फिर सब कुछ?
1: अच्छा तो लगता है लेकिन
2: दोस्त मजाक नहीं उड़ाते.
0: अच्छा दोस्त मजाक उड़ाते, अगर दोस्त मजाक ना उड़ाए तो
1: फिर पहनेंगे.
2: फिर पहन सकते
1: हैं.
0: फिर पहन सकते हैं ना. डिफरेंस तो नहीं है ना, कलर तो सबके ही होते हैं. ओके ठीक है. तो अच्छा आप लोग को क्या लगता है कि जब बाहर के काम करने होते हैं ज्यादातर, जैसे बैंक का काम, अच्छा बैंक के बारे में किसी को पता है, किसी को नॉलेज है बैंक के काम कैसे करते हैं?
1: मुझे
0: है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा, आपको पता है कुछ? नहीं भी पता है तो बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अभी तो बच्चे हो आप लोग, है
1: थोड़ा ना बहुत पता है.
0: थोड़ा बहुत पता है आप लोगों को?
1: बैंक में पैसे निकलते
0: ये पता है. हाँ ठीक है बिल्कुल. लॉकर्स होते हैं,
2: लॉकर्स होते हैं, उनमें वैसे देखा जाओ तो जनरल होते हैं और क्लर्क होते हैं, जिसमें हम उनके पास जाते हैं और लॉकर्स के वैसे जैसे हम पैसे निकालने हो उनके पास जाते हैं. फिर उसमें काफी तरह के चेक्स होते हैं, 7 तरह के चेक्स होते हैं ज्यादातर.
0: ओके
1: अगर हमको कैश एक्सचेंज कराना हो वो भी बैंक में होता है, कैश एक्सचेंज हो जाता है.
2: कैश वो फटे नोट होते हैं उनको हम एक्सचेंज करा सकते हैं उनसे पास.
0: ओके ठीक है. और आप लोगों को कुछ पता है बैंक के बारे में कुछ?
1: दीदी मुझे एटीएम से पैसे निकालने आते हैं और दूसरों को भी निकाल के देती हूँ जिनको जरूरत होती है.
0: वेरी गुड.
1: तो मुझे भी आते हैं.
0: आपको भी आते हैं?
1: जब समर वेकेशन और विंटर वेकेशन होती है मैं तो चंडीगढ़ जाता हूँ अपने मामू के पास, मामू मेरे बैंक में जॉब करते हैं इसलिए उनके साथ जाता हूँ मैं बैंक में कभी कभी.
0: ओके अच्छा तो आपको क्या लगता है बैंक के काम करना लड़कों का काम होता है कि लड़कियों का काम होता है?
1: नहीं जैसे वहाँ पे तो दोनों होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं लड़के भी होते हैं,
0: दोनों कर सकते
1: हैं, दोनों का होता है,
0: कोई डिफरेंस नहीं है. क्या लगता है आप लोगों को?
1: दोनों दोनों कर सकते,
2: दोनों ही कर
1: दोनों
2: सकते
1: कर
2: हैं.
0: पर दोनों करते हैं क्या? बराबर है.
3: पहले के टाइम पे होता था कि हाँ लड़कियाँ बाहर काम करने नहीं जाएंगे, पर अब तो सारी इक्वल है.
1: अब तो लड़कियाँ क्रिकेट भी खेलते हैं.
0: लड़कियां क्रिकेट भी खेलती हैं अभी तो.
1: पहले सोचा जाता था क्रिकेट सिर्फ लड़कों का गेम है, अगर इनके चोट लग जाएगी लड़कियों के तो ज्यादा लगेगी, ज्यादा चोट लगेगी.
0: आपको क्या लगता है?
4: दोनों ही बराबर है,
1: जबकि आरसीबी को सबसे पहले गर्ल्स टीम ने वर्ल्ड आईपीएल ट्रॉफी जिताई है,
0: लड़कियों की टीम पहले जीती है.
2: और जो कि हमारी इंडियन टीम है लड़कियों की, उन्होंने भी हमारे देश के लिए पहले ट्रॉफी खेली है.
0: पहले खेली है, बात तो सही है. आप लोग को क्या लगता है भाई, आप लोग सीखोगे बैंक के काम करना कि नहीं सीखोगे? बड़े होके सीखोगे? हाँ. करोगे? बोरिंग तो नहीं लगेगा वहाँ जाके
1: नहीं,
0: सब ऐसे
1: मुझे तो खुद कमर्स करनी है, मुझे आई एम इंटरेस्टेड.
0: और आप लोग लड़कियों को क्या लगता है? इंटरेस्टेड है. बोरिंग तो नहीं लगता?
1: नहीं.
0: ओके अच्छा खाना बनाना किस किस को आता है यहाँ पे?
1: मुझे आता है.
0: सबको आता है?
1: सबको आता है.
0: अरे बाप रे,
2: कुछ भी करा सकती हूँ.
3: दीदी मेरे को बनाना तो आता है पर खाना पसंद है ज्यादा.
0: खाना ज्यादा पसंद है. अच्छा ओके.
1: खाना खाना और बनाना दोनों ही पसंद है.
0: अच्छा सबसे अच्छा आप लोग क्या बनाते हो, एक एक चीज बताओ.
4: मैगी.
0: ओके
1: सबसे अच्छा पास्ता या फिर सैंडविच.
0: ओके वाह.
2: मैं सबसे अच्छा पनीर.
0: अच्छा ये तो ओके. मैगी पास्ता और
1: सब्जी, कोई भी तरह की सब्जी.
0: कोई भी सब्जी.
3: सैंडविच.
0: ओके अच्छा जैसे आप लोग बड़े हो के क्या बनना चाहते हो?
4: बैंक मैनेजर.
0: बैंक मैनेजर. ओके
4: क्रिकेटर.
0: क्रिकेटर दैट्स ग्रेट. बैंक मैनेजर भी बहुत अच्छा है.
1: मैं भी बैंक में जॉब करना चाहता हूँ.
0: क्यों बैंक में करना चाहते हो?
1: क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बैंक में जाना. मैं अपने मामू के साथ जाता हूँ, उनकी जॉब देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है.
0: ग्रेट.
4: बड़े होके सोचूंगा अभी टेंशन क्यों लेनी है.
0: ओके ठीक है.
3: आईपीएस ऑफिसर.
1: आईएएस.
0: ओके तो आपको लगता है ऐसा कोई काम है जैसे बॉक्सिंग या ऐसा कोई काम लगता है जो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं?
1: नहीं, नहीं. लड़कियां भी बॉक्सिंग करती है, हरियाणा की काफी लड़कियां जो बॉक्सर हैं
0: करती है ना.
1: रेसलिंग करती है. विनेश फोगाट. गोल्ड मेडल दिया उन्होंने अपने देश को
3: हमारे रनिंग की
4: भी। और दीदी अगर बॉक्सिंग के मैदान में नहीं जाना हो तो घर पे भी वो तकियों से बॉक्सिंग कर सकते
1: तकियों से या फिर अपने छोटे भाई से बॉक्सिंग कर सकती है।
3: तो दीदी भाई बहनों के साथ होती है,
0: भाई बहनों बॉक्सिंग करते हैं एक दूसरे के साथ।
1: मेरी छोटी बहन है वो मुझे मारती है।
0: छोटी बहन मारती है?
1: मेरी छोटी बहन है वो मुझे मारती है, अभी तक वो सिर्फ 5 साल की होगी।
0: हाँ
1: मेरे को मारती है वो बहुत।
4: मेरी बहन जब पिटाई करती है मारती है, बहुत फिटती है मुझे।
0: आपको मारती है? वो भी छोटी है?
4: हाँ जी।
0: अच्छा,
3: राघव और मेरी बहुत अजीब तरीके से लड़ाई होती है, मतलब कोई बात नहीं होगी तो भी हाँ आजा लड़ ले आजा।
1: जब होती है ना इतनी वाहियात लड़ाई होती है ना फिर जो उसके हाथ में पिल्लो आ गया वो पिल्लो मार देगी, मेरे मुक्का मार देगी, कुछ भी कर देगी।
0: फिर आप नहीं करते कुछ?
1: वो छोटी है उसको मैं इसलिए नहीं कुछ कहता ना।
0: छोटी 5 साल की है ना, बहुत छोटी बहन।
1: अभी तो बहुत छोटी है, मैं तो वेट कर रहा हूँ थोड़ा बड़ी हो जाए फिर देखेंगे।
0: अच्छा, फिर बराबरी से मुकाबला होगा?
3: मेरे तो बस चांटी पड़ती है।
0: चांटी पड़ती है?
1: ये अपनी बहन को पीटता चांटी चांटी।
0: बहन बड़ी है कि छोटी है?
1: बड़ी है।
0: अच्छा,
3: ये कि मैंने हमारे
1: हर घर में ऐसा होता है अगर कोई छोटा हो तो वो अपने से बड़ों को पीटता है। अब मेरी छोटी बहन है वो मुझे पीटती है, हम उसको यही सोच के छोड़ते हैं कि अभी वो छोटी है। ये छोटा है ये अपनी बहन को मारेगा तो वो भी यही सोचती है कि अभी
0: ये छोटा है अभी। और राघव, राघव तो छोटा है घर में।
4: दीदी मेरे को तो कोई नहीं सोचता।
3: दीदी हमारे घर में सब इक्वालिटी, उसको मार पड़ेगी तो मेरे को भी पड़ेगी, उसको डांट पड़ेगी तो मुझे।
1: हाँ ये बात सही है, शरारत चाहे कोई भी करे लेकिन मार दोनों को पड़ेगी।
0: दोनों को पड़ती है?
3: थोड़ी सी ज्यादा मन बराबर
4: है मेरे घर में। दीदी शरारत करती है, मैं आराम से ऐसे लेटा होता हूँ मुझे मम्मी आकर डांट जाए क्या कर रहा था इतनी देर से।
1: जब कभी कभी मेरी बहन मुझको मारती है तो मेरे को ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मैं उसको कुछ बोल देता हूँ फिर भी मम्मा से मुझे ही मार पड़ती है, क्योंकि तू तो बड़ा था।
4: मेरी बहन तो भी छोटी है, अगर मम्मा ने मेरी बहन को मारा तो पापा यही ट्राई करेंगे कि मेरी मम्मा मुझे भी मारे।
0: मतलब एक जना नहीं पिटना चाहिए,
1: आग लगा देते हैं दोनों के।
0: आप कुछ बोल रहे हो?
5: मेरा भाई भी मुझसे झगड़ा करता है, वो कुछ ज्यादा ही करता है।
0: ज्यादा करता है?
5: मुझसे बड़ा है 13 साल का,
0: तब भी लड़ाई करता है। फिर आप कुछ नहीं कहते?
5: मैं भी मारती हूँ, वो और जोर से मारता है।
0: और रूहानी?
6: दीदी मैं तो मेरे भैया को मारती हूँ तो बोलते हिंसा कर रही है। तो क्या बार बार ऐसा क्यों बोलते? हाँ मेरे को पसंद है हिंसा, आई लव हिंसा।
4: दीदी मैं 3 बार WWE जीता हूँ
0: शिवांशी से। वाह,
3: ये तो पूछा दीदी कितनी बार हारा है।
1: हाँ हारा कितनी बार?
4: 2 बार।
1: दो बार आपको पूरी लाइफ टाइम याद रहेगा ना, ऐसा बुरा हारा है।
0: बहुत लड़ाई होती है भाई बहनों में तो। ठीक है चलो। अच्छा तो आप लोगों को लगता है कि इक्वालिटी तो होती है ना, जैसे आप लोग बड़े हो जाओगे तो बाहर के तो आप लोग करोगे जो करोगे है ना, घर पे भी, लेकिन रोज खाना बनना होता है, रोज सब कुछ होना होता है। रोज खाना कौन बनाएगा क्या लगता है?
1: मैं।
4: दीदी मैं।
0: ओके
1: मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी बना लूंगा, मेरी मम्मा भी बना लेंगे क्या?
0: बना दोगे?
1: वैसे मेरी मम्मा मुझे ऐसे बनाने नहीं देंगे।
0: और मान लो मम्मा के लिए आपको बनाना हो तो
1: फिर मैं बना दूंगा, मुझे नो प्रॉब्लम।
0: रोज?
1: यस।
4: मैं तो बाहर से ही ऑर्डर करूंगा।
0: बाहर से ऑर्डर करोगे?
3: के लिए बाहर जो बने होते हैं वो भी मांग देते हैं। बर्तन?
0: बर्तन भी करते हो?
1: हम तो कर देते हैं, हमारे मम्मा कभी बीमार होते हैं हम फिर भी घर का काम कर देते हैं।
0: सफाई झाड़ू सब?
1: सब झाड़ू सफाई डस्टिंग सब।
4: मम्मा अगर कहीं वॉकिंग करने भी गए हो ना फिर भी जब मैं घर पे होता हूँ तब सफाई सफाई कर देता हूँ।
0: अरे वाह। और आप लोग?
3: दीदी ये बात राघव को भी सीखनी चाहिए, कुछ भी नहीं करता।
0: कुछ नहीं करता? कुछ तो करता
4: हूँ, करता हूँ, देखते नहीं है तो मेरी क्या
0: गलती? चुपके से कर देता है राघव है ना। घर का काम करते हो?
5: हाँ अभी भी करते हो और आगे भी जाके करेंगे।
0: रोज करोगे?
5: हाँ।
0: ओके।
6: दीदी मैं भी रोज घर का काम करूंगी और खाना भी बनाऊंगी अलग अलग।
4: दीदी ये बात शिवांशी को सिखा दो। दीदी जब भी बर्तन धोने जाएगी टीवी इधर से गाने सुनूंगी, फिर वह सिर पे ऐसे खड़ी रहेगी अगर मैं नहीं दूं, फिर छीन के अंदर चली जाएगी, फिर अंदर से गेट भी बंद कर देगी, मैं अंदर आके ले भी नहीं सकता।
3: 5 मिनट तक रुकते होते हैं, अगर सामने वाला दे रहा है तो ले लेंगे, नहीं तो
4: दीदी मेरे को 5 मिनट का नाम बोल के 1 घंटा पूरा गाना सुनती है।
0: अच्छा चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये लड़ाइयां भी आपको ना बड़ी याद आएंगी पता है, बड़े हो जाओगे तो। अभी अच्छा ये बताओ, कभी किसी ने आपको ऐसा कहा है या आपने किसी को कहा है या सुना है कि क्या लड़कियों की तरह रो रहे हैं?
1: हाँ जी। नहीं हम ऐसे करते ही नहीं है, रोते ही नहीं कभी।
0: कभी नहीं रोते?
4: नहीं।
0: क्या बात कर रहे हो? किसी
4: आपको बात बताता हूँ।
1: <ना? laughs> इसकी बात बहुत इंटरेस्टिंग है।
4: डायमंड हॉल के पीछे गेम चल रही थी तो उधर बड़े बच्चे भी थे छोटे बच्चे भी थे, तो उधर मैं जब हम गए तब कोई भी नहीं था, 5 बजे बुलाया था और 5 बजे पहुंच गए थे, कोई नहीं था, ये दोनों मेरे साथ थे। फिर इन्होंने मुझे छोड़ दिया, तो फिर एक्चुअली मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही थी तो वो रनिंग करवा रहे थे। फिर मैंने उनको बोला मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, फिर मैंने इनको ढूंढा, फिर ये नहीं मिले, फिर मैं उधर मोहिनी वन में चले गया रूम में, उधर देखा उधर भी कोई नहीं, फिर मैं फिर से आया इधर, फिर देखा तो फिर वो गेम खिला रहे थे, फिर मैं चले गया, फिर मैं गेम खेला, 8 बजे आया, फिर पता क्या हुआ, फिर मैंने रोते रोते पूरा घूमा, कोई दिखाई नहीं मुझे। फिर बच्चों ने बोला कि जहाँ पर आपका रूम है उधर चले जाओ, उधर वो अपने आप आ जाएंगे, और ये लोग बॉलीवुड स्टूडियो में गए घूम रहे थे। और फिर
1: ये बेचारा रो रहा था घर पे।
0: हाँ, आप लोग मिल नहीं रहे थे ना उसको कितनी देर तक,
1: इसने हमको बताया मैं 3 बार अपने रूम में गया रोता रहता।
4: मुझे ना 2 नंबर याद थे, मम्मा का और पापा का, जो पापा का नंबर था वो 2-3 पहले ही चेंज हो गया था, और मम्मा का तो फोन टूट गया था, जिसकी वजह से मुझे कोई अब चांस भी नहीं था जिससे मैं फोन कर सकूं।
0: तब तो बड़ी मुश्किल हो गई, काफी देर लग गई ना। फिर कैसे मिले, ये लोग मिल गए थे?
4: फिर मैं रूम में चले, फिर मैं नीचे रिसेप्शन पे बैठ गया, फिर थोड़ी देर बाद, फिर पहले तो मैंने बहुत देखा नहीं आया, फिर मैंने बोला शिव बाबा आप ही मिला दो मुझे, 5-6 मिनट के बाद मासी आ गए।
0: अरे वाह, चलो फिर आप चुप हो गए ना।
1: हम तो वहाँ पे बाबा की मूवी भी आधी छोड़ के आए, इसी के चक्कर में कहीं रो ना रहा हो घर पे। हमें दीदी ने बोला कि देख लेते हैं मूवी, नहीं रोएगा वो बड़ा है। घर आके पता चला ये तो फूट फूट के रो रहा था।
0: हाँ, वो मिल नहीं रहा था ना, नंबर भी नहीं था उसके पास।
3: नंबर पर उसको जाते हैं,
1: रूम तो हमारा खुला था सारा।
4: मुझे ये टेंशन पड़ी हुई थी कि फिर ये लोग इतनी लेट आएंगे तब तक।
0: होता है कभी कभी, होता है भाई, अकेले छूट जाते हैं तो होता है।
4: घूमते रहेंगे उधर, ढूंढते रहेंगे, आएंगे नहीं रूम में, फिर
0: हो जाता है भाई, अकेले हो जाते हैं तब तो होता है। तो अच्छा, कौन कौन यहाँ पे रोता है कभी कभी, जैसे तो उसने तो अपना बताया,
1: मैं कौन कौन जब जाता था छोटा होता बहुत रोया।
0: अभी नहीं रोते?
1: अभी नहीं रोते।
0: आप लोग?
5: मेरा भाई मुझे अगर मारता है तब मैं रोती भी हूँ और उसको मारती भी हूँ। मेरा भाई मेरे को जोर से मारता है, अगर मैं रो जाती हूँ तो फिर बाद में इतना गुस्सा आता है उसको भी रुला देती हूँ मैं।
4: मुझे अगर कोई भी मारता है मैं रोता नहीं हूँ, मतलब रोना आता ही नहीं है
1: इसको। मारने पर रोना नहीं आता, वैसे ही रो पड़ता है बिना बात के।
0: मारने पर नहीं आता, किसी और बात पे, सबको अलग अलग बात पे आता है ना।
1: सबका अलग नहीं।
0: राघव रोता है कि नहीं रोता राघव? कभी बताओ, सच सच बताओ।
4: कभी
0: कभी कभी कभी है ना, किस बात पे रोते हो?
4: दीदी इसने मेरी इधर नीड की हड्डी पे इतनी जोर से लांग मारी, अब बोलो मेरे को इतना दर्द हुआ, मेरी कमर पूरी एक दिन के लिए ऐसे हो गई थी।
0: ओहो, और शिवांशी को रोना आता है?
3: दीदी वैसे तो लगभग लड़ाई होती सब, तो रोने के बजाय हंसना।
4: दीदी झूठ बोल रही है, बाथरूम में जाके रोती है, आधे घंटे बाद आती है।
0: अच्छा, वो बता रही, कोई बात नहीं।
3: कई बार जैसे कई ज्यादा ही चोट लग जाए कि हाँ खेलते खेलते तब तब थोड़ा रोना।
6: दीदी ये तो बात बात पर भी रोने की एक्टिंग करती है
0: आपको।
6: और दीदी मैं तो भैया के साथ खेलती हूँ तो भैया ही एक्टिंग करते है रोने की।
3: एक बार हुआ
0: रोए थे
3: 2023 में, इंडिया का मैच था, वर्ल्ड कप था,
0: हार गया था ना फाइनल में। बहुत लोग रोए थे उस दिन तो।
1: मैं ऐसे गेम के पीछे कभी नहीं रोया,
0: गेम के पीछे नहीं।
1: वो हमारे देश का लक है,
0: मतलब
1: बैड लक होता है कभी गुड।
3: पता क्या चक्कर है इसको, उसको मालूम है जिसने कुछ ऐसा करना हो तो उसके तो दिल में बीतती है ना
0: पता चलता है। लेकिन मतलब किसी ने कभी ऐसे नहीं बोला ना कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, या ऐसा लगता है आपको लड़कों को रोना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता लड़के रोते हैं? नहीं, ऐसा है कि रो सकते हैं,
3: रो सकते हैं, रो सकते, दर्द होता है वो।
4: अब ये लोग भी मुझे से चढ़ा रहे हैं, रो रहा था इतना बड़ा हो गया, रो रहा था
0: तो क्या हुआ, रो सकते हैं ना बड़े भी, बड़े लोग नहीं रो सकते
1: भाई, तो अभी रो ले चाहे कोई बात नहीं,
0: है नहीं, बड़े लोग रो सकते कि नहीं रो सकते?
5: दीदी मम्मी पापा रो सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं रो सकते?
0: कोई भी रो सकता
3: है,
5: रोते हैं ना,
4: कब रोते हैं,
0: कभी कभी बुरा लगता है तो
1: रोते हैं,
3: झगड़ा हो जाता है तब,
0: कभी कभी उनको बुरा लग सकता
1: है। दादी की डेथ हुई थी, फिर मैंने अपने पापा को फर्स्ट टाइम रोते देखा था।
3: हाँ।
1: उसके बाद कभी
5: रोते ना।
0: अच्छा, पापा को किस किसने?
4: मम्मा तो जब हमसे गुस्सा होते हैं ना, मतलब जब हम बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे मम्मा तब रोते हैं, और पापा को भी जब दादी की डेथ हुई थी तभी रोते हुए देखा था।
0: पापा को कभी और उसके अलावा रोते नहीं देखा?
1: नहीं,
0: कभी भी नहीं। आप लोगों ने, आपने
3: देखा भैया की डेथ हुई
0: तब? जब बहुत कोई बड़ी घटना ऐसे होती है,
1: ऐसे होते
0: पापा को रोते हुए देखा है किसी ने?
3: नहीं दीदी,
0: कभी भी नहीं?
6: नहीं
0: कभी भी नहीं,
4: तो हाथ को उठा लिया जब नहीं देखा।
5: मुझे कुछ
0: तो नहीं देखा भी बोल सकते है ना कि नहीं देखा।
3: मेरे पापा को तो मैंने हमेशा हंसते हुए देखा है, कोई कैसी बात भी हंसते रहेंगे।
0: ओके
1: मेरी मम्मी मेरे पापा भी पूरे दिन घर में अगर शाम को आते हैं ड्यूटी से तो सबको हंसाते हैं,
0: हंसते रहते हैं। आप क्या बोल रहे हो?
5: मेरी मम्मी रोती नहीं है पर एक लगा देती है, शांत हो जाते हैं।
0: शांत हो जाते हैं मम्मी। अच्छा पापा की बात कर रहे हैं, पापा को रोते देखा है?
5: नहीं पापा तो नहीं, पापा तो और ही प्यार करते हैं।
0: कभी रोते नहीं है पापा ना?
5: दीदी पापा रोने की एक्टिंग करते ताकि हम लोग उनको परेशान ना करें।
0: ओके
5: असलियत में नहीं रोते,
0: असलियत में नहीं रोते। राघव
4: नहीं रोता।
0: तो क्या लगता है पापा लोग क्यों नहीं रोते? कभी उनको बुरा नहीं लगता किसी चीज का? क्यों नहीं रोते कभी?
2: नहीं लगता है, बुरा स्ट्रांग होता है, दिल स्ट्रांग होता है,
0: दिल स्ट्रांग होता है। ओके
1: क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कई ऐसी मुसीबतें जो होती है छोटी मोटी एक्सपीरियंस करी होती है बचपन से लेके, जब ऐसे कभी अपने माँ बाप के साथ उन्होंने ऐसी मुसीबतें जो एक्सपीरियंस करी होती है, जब माँ बाप की डेथ होती है फिर तो वो रोते हैं ना,
2: उनका इमोशनल उनका एक्सपीरियंस बन जाता है।
0: ओके तो आप लोगों को क्या लगता है पापा लोग क्यों नहीं रोते?
5: मेरी मम्मी तो बहुत नाटक करती है रोने का,
0: एक्टिंग करते हैं रोने का, रोती थी लेकिन रियल में।
3: दीदी पिछले जन्म में एक्टर होंगे।
0: अच्छा मम्मी को रोते देखा है किसी ने?
5: हाँ जी मम्मी तो ऐसे नाटक करती है, असलियत में नहीं रोती।
3: नहीं मम्मी को तो नहीं देखा,
6: मम्मी तो कभी नहीं रोती।
5: मेरी मम्मी रोती तो है नाटक में, मेरे को पता चल जाता है क्योंकि आंसू तो नहीं निकलते।
0: अच्छा बिना आंसू के तो रो सकते हैं?
5: नहीं दीदी पानी लगा देते हैं यहाँ पे और बोलते हैं मैं तो रो रही हूँ।
0: ऐसा ऐसा क्यों? लेकिन
5: हम चुप होने के।
0: हाँ ये चक्कर
6: दीदी बताया ना शिवांशी ने पिछले जन्म में एक्टर होंगे।
0: और आप लोगों ने देखा है मम्मी को रोते हुए?
1: नहीं मैंने नहीं देखा।
2: कभी कभी झगड़ा हो जाए तो थोड़े रो लेते हैं,
0: रो लेते हैं।
2: पापा तो खुशी रहते हैं, मम्मी है बस।
0: मम्मी कभी कभी कभी
2: कभी कभी वो भी साल में एक दो बार रोते थे,
0: ज्यादा नहीं ना। अच्छा मम्मी को रोते हुए देखना ज्यादा अजीब लगता है कि पापा को रोते हुए?
1: पापा को,
2: मम्मा को, मम्मा अलग अलग स्टाइल से
1: रोते
0: हैं। मतलब किसको देख के ज्यादा बुरा लगता है? मम्मी को,
1: पापा को, पापा को,
2: मम्मा को?
0: किसको रोता देख ज्यादा बुरा लगेगा अगर मान लो मम्मी या पापा?
2: पापा तो रोएंगे ही नहीं तो फिर
0: बुरा कैसे लगे?
1: ऐसा लगता है जब हम रोते हैं हमें पापा चुप कराते हैं, पापा रोएंगे तो उनको हम ही चुप कराएंगे।
2: पापा रोते नहीं है, चुप कब करवाओगे?
0: हाँ रोते ही नहीं है ना, लेकिन रोएंगे अगर अगर
1: कुछ ज्यादा
0: चुप करा सकते हैं हम बच्चे को। नहीं रोए तो भी अच्छा है, रोए तो भी कोई बुरी बात नहीं है रोने से, तो है ना। आप लोगों को किसको देख के ज्यादा बुरा लगेगा, मम्मी को या पापा को रोते हुए देख?
5: कोई रोता ही नहीं है,
2: गाली।
0: ये भी अच्छी बात है, रोना भी अच्छी बात है, नहीं रोना भी अच्छी बात है, है ना। कभी हर्ट तो सबको होता है, कभी ना कभी कुछ बुरा सबको लग सकता है।
4: दीदी मैं रोता फिर भी नहीं हूँ।
0: रोते फिर भी नहीं हूँ, क्यों नहीं रोते?
4: पता नहीं,
0: पता नहीं। चलो ठीक है, तो मतलब हमेशा खुश रहता है राघव, है ना? लग रहा है। ओके अच्छा तो आप लोगों ने बताया कि सब इक्वालिटी है अभी तो, है ना। तो कोई मतलब लड़कों को रोने के लिए या किसी भी चीज के लिए चिढ़ाया तो नहीं जाता ना?
5: नहीं, नहीं
0: कभी नहीं है,
1: कभी चिढ़ाया जाता है। जैसे अब ये रोने लग गया था इसको हम से चिढ़ा रहे हैं कि एक बार फिर से रो दे चिढ़के,
0: वो तो दोस्तों को थोड़ा थोड़ा ऐसे मस्ती करते हैं ना। हाँ कभी कभी सच में रोते हैं, कभी कभी कुछ बुरा लग जाता है तो होता है, बड़े लोगों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता।
5: पर हमारे सामने तो आज तक सच में नहीं रोते।
0: कभी कभी बच्चों के सामने नहीं रोते हैं और कभी कभी नहीं भी रोते हैं ना, अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं सब लोग अपने दुख, कोई हर कोई रो के नहीं करता, हर कोई बिना रोए नहीं करता, सबके अपने अपने तरीके हैं। अच्छा आप लोगों को क्या लगता है, लड़के ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि लड़कियां ज्यादा स्ट्रांग होती हैं?
2: तो आप मम्मा पापा को ही देख के देख लो, पापा नहीं रोते मम्मा रोते, इधर से ही देख लो कौन स्ट्रांग होता है ज्यादा।
0: ओके और आप लोग क्या लगते हैं?
1: उनके हार्ट स्ट्रांग होते हैं पापा के, लेकिन लड़कियां भी किसी से कम थोड़े हैं आज।
0: लेकिन हार्ट ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ना पापा लोग के। ओके गर्ल्स ज्यादा स्ट्रांग होती हैं?
1: नहीं बॉयज,
0: बॉयज ज्यादा स्ट्रांग होते हैं।
5: नहीं दीदी गर्ल्स, दीदी गर्ल्स ही होते स्ट्रांग,
6: गर्ल्स होती है।
0: क्यों लगता है आपको कि लड़के ज्यादा स्ट्रांग होते हैं?
2: क्योंकि जब भी कोई बात होती है लड़के जल्दी रोने लग पड़ती है, इसीलिए
0: लड़कियां जल्दी रोने लगती हैं।
1: मुझे ऐसा नहीं है कि लगता है कि लड़कियां ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, जैसे उन्होंने बोला पहले कि लड़कियां ज्यादा स्ट्रांग होती है इसलिए मैं नहीं बोला, क्योंकि मैं तो एक लड़का हूँ ऑब्वियसली लड़का
0: इसलिए बोलना पड़ेगा। दोनों भी बोल सकते हो,
1: लड़कों को नीचे थोड़ा गिनने देंगे।
0: दोनों भी बोल सकते हो, आपकी दोनों इक्वल होते हैं ऐसा भी बोल सकते हो।
2: लड़के रोने लग पड़ती है,
0: लड़कियां जल्दी रोने लगती हैं,
3: ऐसा कुछ नहीं होता, लड़कियां हमेशा नहीं रोती,
0: हमेशा नहीं रोती ना,
3: जब लड़ने का टाइम आता ना तब लड़ती भी है,
0: लड़ती भी है,
2: कोई भी बात हो जाए तो जल्दी
4: रोने लग पड़ेगी।
1: लड़कियों में एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा होता है,
0: एटीट्यूड ज्यादा होता है।
1: हमारे स्कूल में एक लड़की थी, उसका नाम नंदिनी था, तो वो मेरे से एक क्लास आगे पढ़ती थी। जब भी उसको टीचर्स ने कुछ बोल देना तो टीचर से गुस्से हो जाती थी, अगर उनकी क्लास लग रही वो साइड वाले रूम में जाके बैठ जाती थी, उनकी क्लास में नहीं आती थी,
0: टीचर से ही नाराज,
1: टीचर से ही नाराज।
3: दीदी कुछ कुछ लड़कियां होती हैं ऐसी जो बात बात पे अपना
1: कुछ कुछ होती हैं, कुछ कुछ के लिए हम सभी को तो नहीं बोल सकते।
0: नन्नी के अलावा और कितनी सारी लड़कियां भी तो थी है ना,
3: पर हमारे जैसे
5: दीदी लड़के थोड़ी कोई कम होते हैं, वो भी तो ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं। दीदी मैं तो नाटक करती हूँ, फिर मेरे को इतना गुस्सा आता है, मैं सच में डरती हूँ, रोते हैं। जैसे मैंने मेरे भाई के भी दोस्तों को रुलाया है, बहुत
0: भाई के दोस्तों को भी रुला दिया है। अरे बाप रे
4: दीदी, हम टीचर्स के सामने एटीट्यूड नहीं दिखाते हैं।
1: हाँ ये बस,
2: ये बस
1: टीचर्स ने अगर कुछ बोल दिया तो चुप रहते हैं।
0: एक एक करके
1: टीचर्स ने कुछ बोल दिया तो अपना चुप रहते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, बड़े हैं ना,
0: बड़े हैं
1: हमारे सही।
4: दीदी दीदी लड़कियां है ना, मैम को प्लीज प्लीज बोल के माफ करवा देती है गलतियां।
2: अक्सर ज्यादा देखा जाओ तो जो टीचर होते हैं ना, वो अक्सर ना ज्यादा जो लड़के उनको पीटते हैं।
1: लड़कियों को इसी वक्त माफ कर देते हैं,
3: दीदी लड़कियां सारा काम करती हैं, कई बार कुछ छूट जाए काम तो माफ कर देती है फिर।
4: दीदी
5: दीदी लड़के तो ऐसे ही बैठे रहते हैं बेंचों पे।
4: दीदी
1: नहीं, कुछ लड़के होते हैं जो पढ़ते भी हैं,
4: मैम इनकी तरह टाइम वेस्ट करके स्टिकर थोड़ी बनाएंगे।
0: क्यों स्टिकर नहीं लगाते लड़के?
4: नोटबुक पे पेपर पे ड्रॉ करते रहते हैं और फिर उस पर टेप चिपका के कलर कुलर भर के करते रहते हैं, नोटबुक में लगाते रहते हैं।
0: ओ लड़के नहीं करते ऐसा? नहीं। बिल्कुल नहीं,
1: नहीं करते हैं, कुछ लड़के होते हैं जो करते हैं,
0: बहुत कम
1: होता है।
4: नोटबुक में कौन लगाते
1: हैं? क्यों नहीं लगाते भाई, कुछ ऑयल पेस्ट करते भी है।
0: हाँ बोलो बोलो रूहानी बोलो।
6: दीदी जो शाही लड़कियाँ होती है वो बहुत ज्यादा होती है और ब्रेव लड़कियाँ बहुत कम होती है, इसलिए लड़कों को सिर्फ शाही लड़कियाँ ही दिखाई देती है। और हम आर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा पैशन है, उसमें हम गुड है इसलिए हम करते हैं, क्योंकि लड़कों को आता नहीं है वो करना।
4: मैं आर्ट की बात नहीं कर रहा, मतलब पेंटिंग पुंटिंग की बात नहीं कर रहा, पर जो टाइम वेस्ट करते हैं वो चीज अलग है।
0: ओके
1: तो बहुत अच्छी चीज है। सौरभ जोशी जो आज के समय में ब्लॉगर है, वो भी पहले आर्टिस्ट ही थे, आर्ट करते थे, पोर्ट्रेट्स बनाते थे वो।
0: समीक्षा
5: पंडित, हम लोग तो स्टिकर्स बनाते, इन लोगों की तरह थोड़ी हम पीछे मुड़ के बातें करेंगे हर लोगों से।
4: आज सही है, टाइम पास होता है,
1: उनके क्या बातें
4: मजा आता है, याद दिलाती। दीदी मैं बातें नहीं करता पीछे मुड़ के।
0: ओके
2: हमारे आगे बैठे होते
5: हमारे हमारे क्लास में कोई सर आते हैं, वो चमन जी सर है, वो हिंदी पढ़ाते हैं, तो वो क्या है किसी लड़की और लड़की दोनों साथ में झगड़ा हो गया तो वो सीधा लड़कों को ही मारेंगे जाके।
1: गर्ल्स को छुएंगे भी नहीं, गर्ल्स को छोड़ देते हैं,
4: मैम ही मारती है लड़कियों को।
2: ऐसा क्यों? बराबर है ना, दोनों दोनों को पीट।
0: लड़कों को ज्यादा पिटाई होती है?
2: बहुत ज्यादा।
4: मैम ही मारती है लड़कियों को, सर तो जब मार हल्का सा एक थप्पड़ मार दिया लड़कियां रोने लग पड़ेंगी, फिर सर उनको मनाने में। दीदी
0: तो लड़के क्यों नहीं रोते फिर? सर उनको भी वो कर देंगे,
2: आपको बता के,
0: जैसे मान लो सर मार रहे हैं और लड़कियां रोने लगी तो चुप हो जाते हैं, तो लड़के भी रोने लगे अगर सर मार रहे हैं तो?
4: उनको तो मारो भी ना फिर भी पहले ही रोने लग पड़ती है।
0: अच्छा तो फिर माफ कर देते हैं
4: दीदी।
0: एक मिनट पहले लड़कियों की साइड भी सुन लो, बोलो।
3: दीदी ऐसा नहीं है कि टीचर के सामने रोने लग जाते हैं? कोई रोते ही नहीं, वो टीचर को पता है कि हाँ ये लड़की काम करने वाली है, नेक्स्ट टाइम पूरा करेगी, इसलिए छोड़ देते हैं।
0: हाँ मतलब उसकी इमेज इमेज अच्छी है,
3: इमेज अच्छी बना रहे हैं।
1: कई लड़कियां ऐसी होती है वो बिल्कुल ही नहीं करती, इतनी वो ढीठ हो जाती है, उनको रोज मार पड़ेगी वो फिर भी काम नहीं करेंगी,
0: फिर भी रोएंगी।
1: अगर उन्होंने हम अभी नहीं करेंगे काम, जैसे अभी अप्रैल मई का सिलेबस चल रहा है तो उनका अप्रैल का कंप्लीट है, मई का कंप्लीट नहीं है, तो वो अगर उन्होंने ठान लिया कि हम मई में अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, जून में ही करेंगे समर वेकेशन में, तो वो ऐसे ही करती हैं,
0: जो ठान लिया वही करती हैं। एक बार अमीक्षा, अमीक्षा बोलो।
5: पर एक बार दीदी ये लोग बोल रहे हैं ना कि वो अभी इन लोगों ने बोला कि है ना लड़कियां लास्ट तक वो नहीं करती, तो हम लोग अगर पहले भी ना करें तो भी लास्ट तक हमारा सब कंप्लीट
0: हो जाता है। राघव
4: दीदी पहली बात, मुझे आज तक किसी भी टीचर ने मारा नहीं है। दूसरी बात, एक बार ना हमारी क्लास में मतलब दो लड़कियां थी, वो लिख रहे थे ये मैम पागल हैं, और वो मैम क्लास में बैठे थे और ना किसी ने जाके उनको वो दिखा दिया, फिर उन दोनों का ऐसे थप्पड़ मारे वो पूरा दिन रोती रहे।
0: लड़कियों की पिटाई हो गई यानी?
4: मैम मेरे पुराने स्कूल में दो लड़कियां थी, एक सर थे, वो उनको इतना सुनाते थे, जब भी क्लास में आते थे डांटते ही रहते थे, अगर कुछ भी हो तो उन पे बात

0: लेके जाते थे, कितने मतलब बहुत बेइज्जती करते थे उनकी। और लड़कियों ने उन्होंने क्या किया, जब सर की ट्रांसफर हो रही थी वो इतना फूट फूट के रो रही थी।
1: अच्छा, तब भी?
0: हाँ, बहुत रो रही थी,
1: जबकि उनको एक डांटते रहते थे।
0: हाँ।
1: ओह
2: दीदी, मैं तो सोचती हूँ दोनों ही कमजोर है और दोनों ही स्ट्रांग है।
1: ओके, ऐसा क्यों?
3: हाँ, मैं भी इस बात के साथ एग्री हूँ,
2: क्योंकि कुछ लड़कियाँ होती है जो शाय होती है, उनकी ये कमी होती है। कुछ लड़के होते हैं जो जैसे क्लास में होते हैं कुछ बोलते नहीं है, काम करते नहीं है, इसलिए उनको डांट पड़ती है। वैसे दोनों भी वीक है और दोनों भी स्ट्रांग है, क्योंकि लड़के भी बहुत काम करते हैं क्रिकेट में भी। और एक लड़की थी जिसने एवरेस्ट पर उसका पैर नहीं था तब भी वो चढ़ी थी।
1: बात तो सही है। हाँ, कौन बोलना चाह रहा?
4: दीदी, हमारे तो सर और मैम दोनों ही गर्ल्स को नहीं मारती। मैम तो है ना, सीधा दोनों की गलती होगी तो बॉयज को ही मारेगी। मैम गर्ल्स को नहीं मारेगी, क्योंकि मैं और मेरी तीन दोस्त है वो एक मैम की फेवरेट है, तो अच्छा। वो सीधा बॉयज को मारती है।
1: सीधे
5: तो ये तो ना इंसाफी हो ना, कोई काम भी हो ना तो तब भी वो लड़कियों को ही कहते हैं।
1: जैसे
6: क्योंकि दीदी टीचर्स को पता होता है ना, लड़कियां काम पूरा कर देंगे, लड़के
5: नहीं। अक्सर कोई भी स्कूल का काम हो वो लड़कियों को ही कहते हैं,
1: स्कूल
5: का कहते नहीं।
1: काम जैसे
5: कोई भी काम,
0: काम
5: हो,
0: जैसे अगर कुछ डेकोरेट करना हो, क्योंकि लड़कियों से ज्यादा घुमा फिरा नहीं जाता ना, बैठी बैठी के काम करना होता है ना उनको।
3: ऐसी बात नहीं है, वो घूम लेती हैं,
6: घुमा फिरा नहीं जाता, लड़के ही बाजार के काम करती हैं,
1: करते हैं।
3: नहीं, सही बात है, ऐसा तो नहीं है लड़कियों से घुमा फिरा नहीं जाता, लेकिन लड़कियाँ जैसे
5: हो या लड़के हो
3: भाई, अगर मैं लड़का हूँ लेकिन ऐसा थोड़ा है कि लड़कियों के साइड
6: लेता हूँ, लड़कियों की तरफ ले रहता हूँ।
3: मेरी भी तो बहन है,
5: जाओ फिर उधर बैठ जाओ।
3: मतलब मैं अपनी बहन को ही बुरा बोलूंगा? नहीं बोलूंगा मैं।
1: बोलो बोलो, आप जो बोलना चाह रहे
3: हैं। लड़के होते हैं कि कोई जैसे गेम्स खेलते रहते हैं ज्यादातर, लड़कियाँ होती है वो घर पे बैठ के कोई डेकोरेशन के आर्ट वगैरह करती है घर में लगाने के लिए, तो वो ऐसा नहीं है कि घूमती नहीं है, घूमती भी है, क्योंकि मेरी बहन बहुत घूमती है। अगर एक बार जिद पे अड़ जाए कि मुझे नीचे लेके चलो तो उसको लेके ही जाना पड़ता है,
1: लेके ही जाना पड़ता है।
4: दीदी नहीं, सुबह रोज 5 बजे से उठ के 6 बजे तक वॉकिंग भी तो करती है, जॉगिंग भी करती है।
5: हर लड़कियां नहीं करती,
4: कोई तो करता है ना, हर लड़कियों की बात नहीं,
1: सब एक जैसे तो नहीं हो सकते ना।
3: आजकल तो लड़कियां बॉयज से ज्यादा अपनी फिटनेस का ध्यान रख रही है। कई बॉयज होते हैं जो बॉडी बिल्डर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, लेकिन जो लड़कियां वो ऐसे घर में भी करती है, ग्रीन टी पीती है, कॉफी पीती है सुबह ब्लैक, वॉकिंग करती है, योगा करती है, बहुत
1: बड़ी सारी चीजें करती है ना,
3: फिटनेस का ध्यान रखती है।
4: मेरी मैम तो हमसे काम करवाती है, बोतल भी भरवाती है, बोतल के पानी भरवा देती है।
1: हाँ, मतलब बाहर जाके भी काम करती
0: है, फ्री होती है ना।
1: जो भी कर सकते हैं। ओके,
5: दोनों इक्वल ही होते हैं,
1: दोनों इक्वल होते हैं।
5: हाँ, बस कईयों को लगता है कि ये बाहर वाला काम लड़के ही कर सकते हैं और ये अंदर वाला काम लड़कियां ही कर सकती है, बल्कि लड़कियां बाहर वाला काम भी कर सकते हैं।
1: ओके,
0: पर कम करती हैं। अब पापा को अगर कोई भी सामान लेने को बोलता है दुकान से तो लड़कियों को ही बोलता, कोई लड़कियों को नहीं बोलता।
1: अच्छा, ज्यादा बात किसकी सुनी जाती है
3: घर में?
0: लड़कियों की।
1: ओके,
3: या फिर छोटे की,
5: छोटे
3: जो छोटा होगा,
1: जो छोटा होगा उसकी,
3: जो बड़ा होगा उसकी पिटाई होगी।
6: छोटे भाई बहन की सुनी जाती है,
1: छोटे भाई बहनों को लगता है छोटे भाई बहनों की नहीं सुनी जाती, बड़ों को लगता है बड़ों की नहीं सुनी जाती।
3: अगर मानो दो भाई है,
5: जब घर में
3: दो भाई है तो उनमें छोटे की सुनी जाएगी, अगर भाई बहन है तो उसमें चाहे बहन बड़ी हो चाहे छोटी हो उसी की सुनी जाती है।
1: अच्छा, अगर बहन है तो बहन की सुनी जाती है।
3: हाँ।
1: क्या बोलना रूहानी को?
2: दीदी, मेरे घर में तो बुआ के लड़के जो मेरे भैया है ना, वो घर में आते हैं तो मेरे प्रति सब बदल ही जाते। दादी जी आती है, आ बेटा क्या खाएगा, क्या खाएगा तू, हट यहाँ से।
1: आपको साइड कर दिया जाता है, कभी कभी आते होंगे ना वो।
4: फिर दीदी उस टाइम हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रहती
5: दीदी, ऐसे रास्ते से आप हट जाते हैं फिर। मैं वैसे इनकी कौन सी वैल्यू होती है?
6: होती है,
4: हमारी बहुत सारी वैल्यू
3: होती है भाई, मैं तो मानता हूँ लड़कियाँ और लड़के सेम है,
6: लड़की
3: कोई फर्क नहीं।
1: दोनों इक्वल है आपको ऐसा लगता है?
6: ये दोनों इक्वल है, लड़का और लड़की दोनों ही समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए।
5: दीदी दीदी, अपन जूस की बोतल को भगवान मान सकते हैं, भगवान ने मतलब आधा इसमें भरा है आधा इसमें भरा है, तो दोनों इक्वल है,
1: दोनों इक्वल है।
4: अगर है ना, अगर लड़कियां नहीं होती ना तो मम्मी भी नहीं होती।
1: हाँ, ओके, मम्मी भी तो लड़की है।
5: लड़की बिना संसार नहीं चल सकता, लड़कियों बिना चलती,
1: तो मतलब दोनों ही दोनों इम्पोर्टेंट है जगह, दोनों इम्पोर्टेंट है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि हम इस कंक्लूजन पे तो पहुंचे हैं जो आप सबको लगता है कि दोनों ही स्ट्रांग है, किसी को तो वीक नहीं बोल सकते है ना, क्योंकि लड़कियां भी सब कुछ बन सकती हैं, लड़के भी सब कुछ बन सकते हैं. आप लोगों ने खुद ही बताया है ना कि सारे प्रोफेशन में दोनों ही जा सकते हैं.
7: हाँ जी.
1: है ना, कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें नहीं जा सकते हैं? कोई
7: नहीं.
1: कोई भी नहीं है.
3: हम अगर लड़कियों को बुरा बोले तो ऐसा नहीं हो सकता. हमारे होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के DC है जो, वो एक लड़की है, आशिका जैन.
6: आशिका जैन
1: बिल्कुल.
3: अब हमारे राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू एक लड़की है. बहुत
7: मेरे मन में भी है.
1: बिल्कुल
6: दीदी, जब अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, विंग कमांडर भी लेडी थी और जो कर्नल थी वो भी लेडी थी.
7: यस यस,
3: सही बात है. सिंदूर मिशन
1: ये भी सही बात है. मतलब लड़कियां आर्मी में भी हैं.
3: लड़कियों को इसीलिए भेजा कि वो सिर्फ और सिर्फ मसला निपटा के, लड़कों को भेजते तो पाकिस्तान को ही निपटा देते.
6: लड़कियां भी निपटा सकते.
3: लड़कियाँ तरस खा जाती है, लड़के नहीं खाते ना.
7: उन्होंने भी ऐसा
1: अच्छा लगता है आपको कि लड़कियाँ थोड़ी ज्यादा तरस खाती हैं या थोड़ा सा ज्यादा यू नो दया कर देती
3: हैं? वो होता है, लड़कियाँ
7: छोटे नहीं करते, पर अगर कोई बड़ा हो ना फिर बड़े करते हैं, छोटे नहीं करते.
1: छोटे नहीं,
7: लड़कियाँ नहीं करती, जैसे मम्मा हो गए, दादी हो गए, वो करते.
3: हाँ, वो ऐसे दया कर जाते.
7: अच्छा, बहुत जल्दी हो जाते.
1: ओके, तो आपको क्या लगता है दया ज्यादा कौन करता है, लड़के ज्यादा करते हैं या लड़कियां ज्यादा करती हैं?
6: ये लड़कियां करती है, बट देख के करते हैं कि सामने वाला कैसा है. अगर कैसा? सामने वाला की मतलब इमेज अच्छी होगी हमारे सामने तो थोड़ी बहुत दया खा लेंगे, पर
5: अगर बस इमेज अच्छी होगी, अगर उसकी रियलिटी
1: धीरे रुक जाओ तो, रुक जाओ उसको पूरा बोलने दो.
6: अगर सामने वाला अनजान है, हमें उसकी रियलिटी पता नहीं है कैसे, तो थोड़ा दया खाने में सोचेंगे,
1: सोचना पड़ेगा. ओके.
2: हाँ दीदी, लड़कियां भी दया खाती है, लड़के भी खाते हैं कभी कभी, दोनों ही इक्वल है, सब कुछ ज्यादा नहीं है.
1: ओके, तो और लड़के नहीं दया करते हैं?
7: करते हैं,
3: कर लेते हैं पर बहुत कम.
1: कम करते हैं थोड़ा सा. सो मतलब लड़के भी करते हैं पर थोड़ा कम करते हैं, जैसा आप बोल.
7: यस.
1: अच्छा, दया करना सॉफ्ट होना होता है या स्ट्रॉन्ग होना होता है?
7: स्ट्रॉन्ग होना होता है.
3: स्ट्रॉन्ग होना होता है.
1: क्या लगता
3: है? जिनके हार्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं वही दया कर सकते हैं.
1: स्ट्रॉन्ग.
3: स्ट्रॉन्ग.
1: ओके चलो, मतलब ये तो हमको समझ में आ गया. जो भी आपने क्वालिटीज बताई वो भी स्ट्रॉन्ग बनाती है हमको, है ना, वीक नहीं बनाती है, मतलब दया करना ये सब करना. चलो ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, जाते जाते हम यहाँ पे हम अपने एपिसोड को करेंगे क्लोज, क्योंकि बातें हो गई हैं बहुत सारी. तो बस जाते जाते आपको एक एक गुड क्वालिटी बतानी है जो लड़के और लड़कियों में दोनों में होती है, एक गुड क्वालिटी जो दोनों में होती है. क्या होता है दोनों में?
7: जैसे कि लड़के हैं वो भी लड़के के बराबर काम करती है. अब जैसे कोई भी काम हो, जैसे अब आपने बताया है कि क्रिकेट है, उसमें भी कोई लड़कियां आगे है और लड़के भी आगे.
1: दोनों
3: तो एक यही गुण अच्छा लगता है लड़कियों का, क्योंकि RCB को फर्स्ट टाइम जो ट्रॉफी IPL ट्रॉफी जिताई है वो लड़कियों ने जिताई है,
1: वुमेन टीम ने जिताई है, तो खेलना अच्छा लगता है आपको?
3: अच्छा लगता है.
1: ओके, दोनों में क्या अच्छाई होती है या सेम क्या होता है दोनों में?
6: दोनों पैसे कमाने की क्षमता रखते हैं, मतलब अपने ऊपर मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, खुद के ऊपर डिपेंडेंट,
1: इंडिपेंडेंट रह सकते हैं दोनों. ओके okay?
2: दीदी, दोनों में सेम एटीट्यूड होता है.
1: ओके okay. क्या सेम होता है?
4: दीदी, अगर लड़के खेल सकते हैं तो उतना ही लड़कियां भी खेल सकती हैं.
1: बिल्कुल
4: दीदी, जैसे लड़के और लड़के एक ही होते, क्योंकि लड़कियां अगर भागते भागते थक सकती है तो लड़के भी थक सकते हैं.
1: हाँ ये भी सही बात है, लड़के भी थक सकते हैं, लड़कों को भी चोट लग सकती है.
7: थक सकते हैं
1: पर थकते नहीं है.
7: नहीं
1: लड़के थकते नहीं है कभी.
3: हाँ, बस
1: थकते
3: वो
1: थकते
3: हैं. शो नहीं करते.
1: बस शो नहीं करते. क्यों शो नहीं करते?
4: इमेज के लिए.
7: इमेज
3: उनको हमेशा ऐसा ही लगता रहता है, अगर हमने शो किया तो लड़कियां हमें चिढ़ाएंगी कि तुम थक गए, हम नहीं थके, लड़कियां हमसे स्ट्रांग रह जाएंगी ऐसे.
1: अच्छा ऐसा, लड़कियां चिढ़ाती हैं फिर?
3: चिढ़ाती हैं बस, थक गए यही तक था दम. आजा और चलो फिर.
1: और फिर लड़कियां थक जाती हैं तो आप नहीं चिढ़ाते?
3: फिर हम कहते हैं रोलो, बैठ के रोलो. और क्या भी कह सकते हो.
1: ओके लेकिन सच में अच्छा ठीक है, दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हैं. मतलब अगर नहीं चिढ़ाए कोई किसी को, मान लो कि ऐसी दुनिया हो जिसमें कोई किसी को नहीं चिढ़ाएगा, तो फिर थकना शो कर सकते हैं या नहीं?
7: कर सकते हैं
1: ये तब भी नहीं करना.
7: उसके लिए थकना भी होना चाहिए.
3: हाँ उसके लिए थकना भी चाहिए. लड़के इतना थकते नहीं है क्योंकि ज्यादा उनको रोज की वो प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि उनको हर वक्त खेलना है, हर वक्त बैठे भी रहना है, उनको पढ़ाई करनी है एक जगह बैठ कर.
1: लड़के इतना थकते नहीं है.
3: हाँ घूमते फिरते रहते हैं.
1: आपको क्या लगता है?
6: दीदी वो दिखा सकते नहीं, दिखाएंगे कि हम थके हैं, कोई चिढ़ाने वाला तो है नहीं.
4: और दीदी
1: अगर कोई चिढ़ाने वाला नहीं है तो थकते हैं या नहीं थकते हैं?
4: थकते हैं।
6: थकते हैं दीदी, काम करेंगे तो थकेंगे।
3: थकेंगे तो सभी,
1: थकेंगे तो
4: सभी। दीदी ऐसे भी
6: अगर शो करने की बात है बस,
4: अगर शो भी ना करे

0: आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ ग्लोबल सबमीट में आए हुए कुछ मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते हैं। अभी हमारे साथ नेपाल से आए हुए कुछ मेहमान हैं, उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका। क्या नाम है सर जी?
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। जी
1: नेपाल से मैं सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक दिस मधुबन एफएम 107.8 मेगाहर्ट्ज। एंड फर्स्टली आई वांट टू थैंक्स ब्रह्मकुमारी यूनिवर्सिटी फॉर गिविंग मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल समिट 2025। थैंक यू वेरी मच।
0: जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने धन्यवाद ज्ञापित किया यहाँ पहुँचाने के लिए ब्रह्मा कुमारी का। और मैं चाहूँगा कि ग्लोबल सबमिट में जो अनुभव हुआ है उसको बताइए, क्या अनुभव हुआ है, साझा कीजिए।
1: इट वॉज वेरी, आई माई सेल्फ फील वेरी लकी, वेरी ऑनर्ड, वेरी ब्लेस्ड। आई हैव नेवर बीन टू दिस प्लेस, सच ए गुड मैनेजमेंट, सच ए गुड हॉस्पिटैलिटी, सच ए स्वीट पर्संस। I listen the different dialogues of the sister, BK sister, who are deported in these organizations for long decades. It was very nice, the hospitality, the hostel where you staying, and the food was very good. Food was very vegetarian, food was very good. And I found itself the spiritual

0: peas
1: inside
0: and inside peas from the inside. When I just enter from the outside to enter, it is actually, I think it is a heaven. For me, it is a heaven. I have not reached at my in my life this heavenly place. For the last 5 days, I am feeling very much happy, very much enjoying. I came with my family members, one my son and my wife. They are also enjoying this place. Thank you, Brahma Pita, for giving me opportunity.
1: It is
0: my past karma to come in this place.
1: Yeah.
0: I am truly blessed. I am very much thankful for the Brahma Kumari family, Madhuban team.
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही सुंदर अनुभव आपने साझा किया। यहाँ पर आकर आपको अंदर से शांति मिल रही थी और आपने पूरा एंजॉय किया, पूरे लेक्चर्स हो और यहाँ का खाना वगैरह जो सात्विक भोजन आपने प्राप्त किया है जिससे आपका मन शुद्ध और पवित्र हो गया है। तो आप पूरे अपने जीवन काल में इस तरह का कभी भी अनुभव आपको नहीं हुआ था जो आप पहली बार कर रहे हैं। पूरे फैमिली के साथ आए हैं तो बहुत लकी है। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आप सभी से मुलाकात हो रही है ग्लोबल सबमिट में जाए हुए मेहमानों से। तो अभी महेश ढाल हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग बातें करेंगे। आप नेपाल से हैं, स्वागत है महेश जी, कैसे हैं आप?
1: धन्यवाद
0: जी। जी जी, थोड़ा बताइए आप नेपाल में करते क्या हैं?
1: मैं फॉरवर्ड एम्बेसडर।
0: अच्छा,
1: नेपाल से ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं फॉरवर्ड एम्बेसडर
0: था। अरे वाह,
1: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी एंड पापुआ न्यू गिनी, चार कंट्री में रहकर मैंने अपना नेपाल से वो डिप्लोमेटिक पोजीशन में रहकर एम्बेसडर की भूमिका निभागी।
0: अरे वाह।
1: उसके बाद मैं नेपाल टेलीविजन, उसका नेशनल टेलीविजन, उसका भी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन था चार वर्ष।
0: अच्छा।
1: जिसे नेपाल का नेशनल प्रेसिडेंट था और अदर्स स्टेटवे मैनेजमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ है, मैं उसी में काम करता हूँ और कॉलेज भी पढ़ा था।
0: तो अभी वर्तमान में कॉलेज में पढ़ा रहे हैं? कौन सा स्कूल है, किस टाइप का कॉलेज है?
1: मैनेजमेंट कॉलेज।
0: अच्छा, मैनेजमेंट
1: कॉलेज, लेकिन मेरा सब्जेक्ट तो सोशियोलॉजी है।
0: अच्छा।
1: मैंने वो एमफिल और पीएचडी मेरा सोशियोलॉजी में।
0: अरे वाह,
1: उसके बाद मैंने कॉलेज में भी पढ़ा रहा हूँ।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको अपने बारे में बताने के लिए। और ग्लोबल सबमिट से क्या मैसेज लेके जा रहे हैं
1: आप? तो इस ग्लोबल सबमिट का जो थीम था, जिसका उस थीम का एकता, विश्वास और भावी भविष्य के लिए एक मैसेज था, वो उसका जो स्लोगन था वो तो बहुत अच्छी था। इस जो सब प्रोग्राम हो रहा था उसी के अंडर में जो प्रोग्राम हो रहा था, इसे वर्ल्ड पीस के लिए, समृद्धि भविष्य के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए, एक असल नागरिक कैसे निर्माण होना चाहिए, उससे उसका कृषि कैसे परिवर्तन कर सकती है, इसका बहुत ही स्पिरिचुअल मैसेज इसलिए दे दिया है। इसलिए हर क्षेत्र के आदमी का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट फॉर द न्यू जनरेशन के लिए क्या करना चाहिए, उसका बहुत अच्छी मैसेज है।
0: चलिए महेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि नए जनरेशन के लिए एक अच्छा मैसेज यहाँ पर है, एकता और विश्वास, इस बात को आपने रिपीट किया है। तो मैं चाहूँगा कि आपको यहाँ आकर जो कुछ आपको अच्छी चीज़ें लग रही है, उसे जाकर नेपाल में आप अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।
1: डेफिनेटली, डेफिनेटली, ये मेरा ड्यूटी है।
0: जी जी, जरूर।
1: ओनली नॉट परिवार, मेरा दोस्त और कंट्री के लिए भी कुछ करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया महेश जी, थैंक यू।
1: थैंक यू।

0: नमस्कार। आप बहुत ही सुंदर अनुभव सुनते जा रहे हैं सभी के द्वारा, जो है बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है आपको। अभी नेपाल से लक्ष्मण गिरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। लक्ष्मण गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: नमस्ते, धन्यवाद, हम ठीक हैं, एकदम खुश हैं यहाँ के।
0: अरे वाह, और ग्लोबल सबमिट के बारे में कुछ बातें बताइए जो आपके अंतर आत्मा को छू गया हो।
1: यहाँ के मुझे दो फीलिंग हुई, एक खुद को परिवर्तन करना है अब।
0: जी जी जी,
1: इसके लिए खुद को व्यवस्थित करना है। दूसरा, दूसरों को कैसे हम अच्छी संस्कार दे सकते हैं, अच्छा बिहेव कैसे कर सकते हैं, ये हमने करना चाहिए। ये दो चीजें मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: चलिए लक्ष्मण गिरी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया है। और वैसे आप क्या करते हैं नेपाल?
1: मैं अंडर सेक्रेटरी हूँ वहाँ का, नेपाली में उपसचिव बोलते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: मैं गवर्नमेंट ऑफ नेपाल का
0: प्रतिनिधि है,
1: कर्मचारी है,
0: अच्छा।
1: वहाँ काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो आप किस तरह का कार्य करते हैं वहाँ पर?
1: मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करता हूँ।
0: अच्छा,
1: डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एड हूँ मैं, कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: नेपाल के सुदूर पश्चिम साइड पे पड़ता है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ से क्या संकल्प लेके जा रहे हैं आप?
1: यहाँ से जाके मैं दो तीन बातें, सबसे पहले तो खुद को परिवर्तन करूंगा मैं। जो मुझे, मैंने यहाँ किसी का जो मुझे अनुभव हुआ, जो मेरी अंतरात्मा ने करना है करके मुझे सिखाया, यहाँ आके वो मैं कार्यान्वयन करने की प्रयास करूंगा। लगता है मैं कार्यान्वयन करूंगा।
0: जी जी जी, बहुत बढ़िया लक्ष्मण गिरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़कर इतना अच्छा अनुभव।
1: धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया, अपने दोस्तों का समय दिया, थैंक यू वेरी मच।
0: जी शुक्रिया, शांति।

0: आए हम।
1: रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: दोस्तों ये तो अक्सर होता है कि जब हम कोई बहुत अच्छा म्यूजिक सुनते हैं या कोई गीत सुनते हैं, हमारे पांव अपने आप ताल देने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई गीत नहीं सुन रहे हैं लेकिन मन खुश है और पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक खुशी में नाचता है। और ये जो कहावत है, खुशी में मन नाच रहा है, नाचने की जब बात आती है, नृत्य की जब बात आती है, तो ये कोई कोई व्यक्ति ही कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये हर एक कर सकता है, हर एक करता भी है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, हम हर कोई अंदर ही अंदर कई बार नृत्य करते हैं, लेकिन हम में से कई ऐसे हैं जो इस नृत्य को बाहर भी करते हैं और लोगों के अंदर खुशियों का एक ऐसा संचार करते हैं जिससे कि वो जो एक अनुभव है हमारे लिए एक जिंदगी का एक बहुत बड़ा अनुभव बन के रह जाता है। हम आज यशस्वी भारत कार्यक्रम में एक ऐसे ही मेहमान को लेकर के आए हैं जिन्होंने अपने जीवन में नृत्य के द्वारा कईयों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। उनको जीवन के कई नए रसों से उनको अवगत कराया है, किसी के जीवन में उसे रोजगार के रूप में या व्यवसाय के रूप में अनुभव कराया है। तो नृत्य को केवल नृत्य ही ना बना करके उन्होंने एक शिक्षा के रूप में पूरे भारत में फैलाया है। रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम, और आज के हमारे मेहमान हैं पद्मश्री सम्मान से सम्मानित आदरणीय मीनाक्षी चित्रंजन जी। मीनाक्षी चित्रंजन जी भरतनाट्यम कला की एक प्रख्यात गुरु है। वो नृत्यांगना तो है ही लेकिन साथ में गुरु है, क्योंकि वो स्वयं तो नृत्य करते हैं लेकिन सैकड़ों बच्चों को वो इस शैली से शिक्षित कर रहे हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए दोस्तों आइए स्वागत करते हैं मीनाक्षी जी का हमारे स्टूडियो में। मीनाक्षी चित्रंजन जी, आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: पहले तो हमारे सभी श्रोता साथियों की तरफ से और रेडियो मधुबन के टीम की तरफ से आपको आज हमारे साथ समय बिताने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं हम। आप एक शिक्षिका हैं और एक शिक्षक का जीवन कितना व्यस्त होता है ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतनी व्यस्तता में भी आपने हमारे लिए समय निकाला, विच इज रियली वेरी वेरी ग्रेट फॉर अस। वी आर वेरी वेरी ऑनर्ड एंड इसलिए आपका दिल से हम बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहेंगे। मैं ये सोच रहा था श्रोता साथियों कि कभी भी जब कोई कलाकार आता है हमारे बीच में तो मैं उनसे क्या सवाल पूछूं, कहां से शुरुआत करूं। सबसे पहले तो जब मैं उन्हें देखता हूं तब मुझे लगता है कि आई एम वेरी इल ड्रेस्ड, बिकॉज मीनाक्षी जी यू लुक सो ब्यूटिफुल। आप इतने मतलब भारतीयता की एकदम एपिटोम है, एकदम शिखर पे है, एंड मैं एक बहुत कैजुअल टी शर्ट में हूँ और मुझे लग रहा है मैंने आज गलत ड्रेस का चुनाव किया। लेकिन यहाँ से ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ, आप खुद को कैसे तैयार करते हैं, इन द सेंस आप जब किसी से मिलने जा रहे हैं तो इंटरनली आप क्या बुद्धि में रखते हैं। जैसे आज आप हमारे श्रोताओं से मिलना चाह रहे थे तो आपने क्या खुद को सेल्फ डायलॉग दिया या खुद से क्या बातें की कि आज आपने खुद को प्रिपेयर किया है?
3: पहले मेरे धन्यवाद कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दिए हैं कि आप लोगों से हमारे नृत्य की करियर के बारे में बताऊं। और जब कृष्णा जी ने मुझे फोन किया और कहा कि आपकी इंटरव्यू लेंगे तो आप पूछ रहे हैं कि कैसे मैंने तैयारी की, बस मेरे मन में यही सोच आई थी कि जब मैं कृष्णा जी और ब्रह्मा कुमारी इसको देखती हूँ ना, तो एक बहुत प्योर, वेरी सिंपल और कितना नोबल कॉज में वो लोग अपना लाइफ बिता रहे हैं। तो मेरे मन में यही सोचा कि अगर मैं उनके साथ बात करने वाली हूँ तो जो कुछ भी मेरे अंदर, जो उनके लिए इतना एडमिरेशन है, और मैं भी उसी तरह बहुत सिंपल से, बहुत ऑनेस्टी से, बहुत प्योरिटी से, जो मैं इतना बड़ा कला को सीखा है उसको मैं अच्छी तरह आप लोगों से बांटना चाहती हूँ। और इसीलिए मैंने किया कि आपने कहा कि हमारा देश का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं वेल्थ, संपत्ति है हमारा म्यूजिक और डांस, सो इसे हमें शेयर करने में मुझे बहुत खुशी है।
2: मीनाक्षी जी, मैं आपको बिल्कुल गारंटी देना चाहूंगा कि ये केवल आप ही नहीं सोचते, हम भी सोचते हैं आपके प्रति ऐसे कि भारत की एक ऐसी बेटी जिसने भारत की कला सभ्यता को इतने शिखर तक पहुंचाया कि भारत ने उसे अपना एक यशस्वी रतन समझा, आपके प्रति भी हमारे दिल में इतना ही आदर है, इतना ही सम्मान है, और मैं विश्वास करता हूं कि आप भी इसको अनुभव कर पा रहे होंगे।
3: जरूर जरूर।
2: तो मीनाक्षी जी, हम शुरुआत करना चाहेंगे आज के कार्यक्रम की, पहले हम जानना चाहेंगे नन्ही मीनाक्षी की कहानी से, जो कि आज मीनाक्षी चित्रंजन एक बहुत ही विख्यात भरतनाट्यम की ना केवल नृत्यांगना है लेकिन शिक्षिका भी है। आप हमें बताइए आपकी जुबानी, आपकी कहानी कैसे शुरुआत हुई, कैसे कैसे क्या क्या उतार चढ़ाव हुआ है आपके जीवन में और आज आप यहाँ पर हैं।
3: तो आपने मेरे अभी तक मेरे लाइफ की कहानी सुनाने के लिए कह रहे हैं तो मैं जरूर कहूंगी, मगर ये बात भी बताना है कि मैं थोड़ा बहुत हिंदी में बात कर सकती हूँ, मगर कई टाइम होगा कि मुझे अपने कुछ विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी मिल जाएगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो हमें थोड़ा फ्रीडम दे दीजिए कि हम
2: जी,
3: दोनों
2: जी, बिल्कुल आप दोनों भाषा मिक्स कर सकते हैं। बिल्कुल
3: मिक्स करके बताएंगे। अच्छा
2: जी,
3: ओके। तो मेरा शुरुआत इस बात से करना है कि हम लोग अर्ली 60s में पैदा हुए थे, हाँ, और उस टाइम की व्यवस्था ऐसी थी कि उसी टाइम हमारे कला जैसा नृत्य कला आप लोग जानते हैं तो ये ब्रिटिश रिजीम में वो सब दबाई गई थी। तो उस टाइम अच्छे घरों की लड़कियां नृत्य नहीं सीखते थे, बहुत गाने में सीखते थे, मगर नृत्य को ऐसा लग गया कि वो उतना उचित नहीं है कि लड़कियां नाचना, ऐसा टाइम था। इसीलिए मेरे माता जी जो जिसको डांस और म्यूजिक में बहुत शौक था वो उसे नहीं सीख सकती थी क्योंकि उसे वहां नहीं भेजते थे। वो थोड़ा वीणा सिखाया, थोड़ा गाना सिखाया, मगर नृत्य को नहीं सिखाया। तो उनको लगा कि अगर उसको एक लड़की की ब्लेसिंग मिल जाए तो जरूर वो लड़की को मैं नाचना सिखाऊंगी। तो इसीलिए मेरे माताजी के इंटरेस्ट के कारण मुझे 4 साल में एक बहुत बहुत महान गुरु जो ट्रेडिशनल मास्टर हैं, वो उनको बोलते हैं कि पंदनल्लूर अचोक्कलिंगम पिल्ले सुब्राय पिल्ले, ये सब वो पंतति से आए हैं, जेनरेशन से अपने दादाजी अपने पिताजी के साथ जो सीखे हैं वो गुरु जी के पास हमें ले गए थे। वो बहुत महान गुरु थे और मैंने सीखना शुरू किया। उस उम्र में ऐसा है जैसे हम स्कूल जाते हैं ना रेगुलर पढ़ाई की तरह, इसी तरह हफ्ते में 3 बार हमें डांस स्कूल भेजते थे और वहां मैं इन बड़े गुरुओं से सीखना शुरू किया। तो ऐसा हुआ कि ये नृत्य सीखना और उससे एक लेवल तक आने के लिए देर लगता है, एटलीस्ट मिनिमम 5 to 6 years जरूर लग जाता है जब तक हमारा फाउंडेशन को अच्छी तरह सीखे और जितना चाहे एक प्रोग्राम करने के लिए जो आइटम्स चाहे वो सीखने के लिए डेफिनेटली 6 years हो जाता है। इसीलिए उस उम्र में चार साल में शुरू किया और 9 साल में मेरा वो बोलते हैं ना अरंगेट्रम का मतलब है जब हम पहले मंच पर चढ़ते हैं और अकेले करते हैं। हो सकता है पहले बच्चों के साथ कुछ ग्रुप एक्टिविटीज किया, मगर वो जब गुरुजी समझते हैं कि ये मिनिमम जिसके कारण उसको प्रेजेंट कर सकते हैं उसे अरंगेट्रम कहते हैं, जो पहले बार हम मंच पे खड़ा होकर सभी को बुलाकर हम एटलीस्ट मिनिमम 1.5 hours तक हम डांस करके दिखा सकते हैं, वही तो अरंगेट्रम है। ओके, तो यही था हमारा शिक्षा डांस क्लास में। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी जो गवर्नमेंट सर्विस में थे वो एक IAS ऑफिसर थे, तो उनको बदली हुआ और वो दिल्ली में पोस्टिंग हुआ था, तो मैं भी इसी कारण अरंगेट्रम के बाद दिल्ली जाना पड़ा। मगर मेरा माताजी को ऐसा था कि अगर दिल्ली में हो या कहीं भी हो वो नाचने को नहीं छोड़ना है, तो उन्होंने ढूंढा और अच्छा लगा कि हमारे गुरुजी के कोई रिश्तेदार वो थे दिल्ली में, तो उनको पकड़ा और वो घर आते थे और हमें सिखाते थे। और इस तरफ मैंने शैली को बदलना नहीं किया, तो वही शैली पंदनल्लूर शैली से ही मैं थोड़ा और बहुत सीखने लगा। मगर हर साल 2 बार जब भी छुट्टी होता था समर में, मई जून को चेन्नई आते थे और खूब प्रैक्टिस होता था और जरूर एक दो प्रोग्राम करते थे, उसके बाद वापस पढ़ाई के लिए दिल्ली जाते थे। मगर अगर दिसंबर में भी हॉलीडेज होता है तो चेन्नई आ जाते थे इसी के कारण। तो जो हमने दिल्ली में रहा, पर वहाँ तब नैनीताल या शिमला या हिमाचल प्रदेश कहीं भी नहीं गए, बस यही था उनके मन में कि चेन्नई आए, वो छुट्टी के दिन यूज करे और सीखे। हाँ, तो ऐसा चल रहा था, नो प्रॉब्लम। उसके बाद फिर बदली हुआ, दिल्ली से वे वापस चेन्नई आ गए। वो टाइम था जब मैं भी थोड़ा बड़ी हो गई, मुझे और भी समझ आ गई कि ये डांस क्या होता है। क्योंकि पहले ऐसा है कि जैसे स्पोर्ट्स जाते हैं या पढ़ाई करते हैं, इसी तरह एक नाचना भी सीख लिया और वो बहुत खुशी से नाचते थे। मगर उसके नेक्स्ट लेवल को जाना पड़ता है, तो वो एज के साथ ही आता है ना। तो एज के साथ आया वो, जब हम वापस आए तब मेरा उम्र होगा 16 हो गया। तो हमारे मन में ये भी लग गया कि मुझे ये करना बहुत पसंद है, तो मैं इसके बारे में और कुछ सीखना चाहती हूँ, उसके बारे में, उसका हिस्ट्री, इसका ओरिजिन, इसका थियोरी, इसका कितने हम्स है ना, वो सब सीखना चाहती हूँ। इसलिए उस टाइम मैं समझती हूँ कि बहुत सारा मैंने सीखा। हमारे वही गुरुजी, हमारे गुरुजी के पास गए, वो भी देखा कि अभी ये लड़की को बहुत पसंद है। जो भी वो जानते थे वो हमें सिखाए थे। उन वो गुरुजी को बहुत मैं धन्यवाद और प्रणाम हर वक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ना ही वो डांस सिखाए मगर उसके बारे में कितना हमें श्रद्धा से करना है, कितना डिसिप्लिन से करना है, कितना मन लगा के करना है, कितना फोकस से करना है। ऐसा नहीं कि एक आइटम सीख लिया, थोड़ा नाच लिया और उसके बाद छोड़ दिया। उसके बारे में उतना उन्होंने, वो पीरियड फ्रॉम 16 टू अबाउट 22, 6 साल हमने उनके साथ काम किया और जो भी वो सिखाए वो सब सीख लिया। और हम हमें पता लग गया कि बस डांस करना ही नहीं है, मगर वो अभिनय जो कहते हैं ना, एक्सप्रेशन, मुख अभिनय, और उसके साथ जो भी जेस्चर है उनके साथ अच्छी तरह वो अभिनय प्रेजेंट करे, तभी वो दो दर्शकों को समझ आएगा कि क्या हम क्या करते हैं। बिना बोले, बिना एक शब्द बोले हमें करना है, पूरा रामायण दिखाना है, पूरा महाभारत दिखाना है, तो उसके लिए कितना उसकी वो क्या बोलते हैं कि कितना अंदर से इमोशन आना चाहिए, वो शार्पनेस से मुखम में दिखाना चाहिए, हर मसल, मुंह का सर मसल, आईब्रो, नाक, एवरीथिंग हैज टू बी मूविंग। तो ये सब इतना एक्सपर्ट बनने के लिए, एक्सपर्ट कभी नहीं हो सकते हैं, फिर भी एक्सपर्ट बनने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये ट्रेनिंग उस वक्त बहुत सख्त था, और हम भी वो उस उम्र में हैं जो हमें और कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस पिताजी माताजी सब कुछ तैयार कर रहे हैं, हमें गाड़ी भेज रहे हैं, ड्राइवर देता है जाता है, हमें कोई वो सब की प्रॉब्लम नहीं है ना, तो हम पूरा मन इसमें लगा सकते हैं। आज जब मैं शिक्षक हूँ, मैं वही बोलती हूँ लड़कियों से, अगर आप अभी बोलते हैं मुझे टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, वो बहुत गलत बात है, क्योंकि आपके लाइफ में वो दिन आएगा जब तुमको करना मुश्किल हो जाएगा। अभी जब मुश्किल नहीं है, सब कुछ तुम्हारे लिए सब लोग कर रहे हैं, तुम बस फिजिकली यहाँ आकर थोड़ा दिमाग लगाकर सीखना है। अगर आप इस टाइम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सो उस टाइम हमने, और हमारा माताजी और पिताजी इसका बहुत सपोर्ट थे, क्योंकि उसमें उनके लिए ये उन्होंने ही मुझे चुना कि नाट्य सिखाने के सीखने के लिए। तो वो जो कर सकते हैं, लोगों से मिलना या परफॉर्मेंस अरेंज करना हमारे लिए, वो ऑर्केस्ट्रा को रेडीमेड बनाना, ये सब सपोर्ट सिस्टम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है नाट्य के लिए। क्योंकि गाना भी ऐसा है कि हम जाकर बैठ कर गाना कहीं भी गा सकते हैं, डांस ऐसा नहीं, बहुत सारी तैयारी है, उनका एक ऑर्केस्ट्रा होता है, उनके साथ हम प्रैक्टिस रिहर्सल करना पड़ता है, उसके लिए इतना सा मेकअप और ज्वेलरी और डांस ड्रेस और कॉस्ट्यूम, लाइटिंग, ऑडियो, ये सब अच्छी तरह से आता है, तब ये प्रोग्राम और भी जमता है। सो इसके लिए बहुत, अगर हमारे लिए वो फैमिली सपोर्ट हो तो जरूर वो लड़कियां और भी अच्छी कर सकती हैं। और आजकल ये भी है कि खर्चा भी बहुत करना पड़ता है वो भी एक बात है ना। सो इस तरह सो वी हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई वाज अलोन, माय इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट इन डांस वाज गोइंग अहेड। फिर क्या हुआ, मेरी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद 1981 then 82 85 में दो बच्चे थे, एक लड़का और लड़की। सो वो टाइम है जब हमारा प्रायोरिटी थोड़ा बदल जाता है, हम अपने बारे में ही नहीं सोच सकते हैं, थोड़ा सा सब कुछ को मैनेज करना पड़ता है। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि मुझे वो नाट्य में उतना जितना फोकस पहले था उतना नहीं हो सका, तो मैंने थोड़ा बैक सीट लिया। मैंने सोच लिया कि अभी हमारा काम है कि बच्चों को पहले देखना, घर को देखना, हस्बैंड को देखना, सब कुछ। मगर क्लास जाती थी और उनके साथ मास्टर के साथ मैं सिखाती भी थी। ऐसा चल गया और 5 साल ऐसा हो गया जब तक बच्चे स्कूल में भर्ती नहीं हुए ना, हो गया। तो मैं उस टाइम समझती हूँ कि डांस मुझे वापस चुन लिया। मुझे बहुत आश्चर्य है कि सब कुछ कैसा अच्छी तरह बन गया। हमारा घर शिफ्ट हो गया, घर के पास एक अच्छा मास्टर थे जो आकर क्लास कर सकते थे, और मैं एक एरिया मैलापुर में थी जहां और इजी है डांस सीखना और परफॉर्मेंस करना। तो उसके बाद 5-6 साल के बाद फिर मेरा करियर शुरू किया और फिर यही होता था कि परफॉर्मेंस करे। 1991 में मैंने सोचा कि क्या, उस टाइम हमारे गुरुजी सब बहुत बड़े हो गए, बहुत बूढ़े हो गए और अपना स्कूल सब बंद कर दिया, और उस शैली में बहुत लोग नहीं थे जो इतना प्योर और ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डांस पंदनल्लूर स्टाइल, उनमें बहुत लोग नहीं सीखे थे। तो मैंने सोचा कि 1991 को मैं एक स्कूल शुरू करूं और जो इतना ब्यूटीफुल डांस जिसने मैंने सीखा उसको कैसे बांटूं, कैसे नेक्स्ट जेनरेशन को देना है ना, तभी ये जाता रहेगा। इसीलिए मैंने 1991 को स्कूल भी शुरू किया। और मैं बहुत दृढ़ से कह सकती हूँ कि जब हम सिखाना शुरू करते हैं वो हमारे लिए एक दूसरा लर्निंग है। जो जो हमको दिमाग में अपने आप करने में नहीं समझ आई वो सब समझ जाते हैं जब हम देखते हैं और सिखाते हैं, तो वो सेकंड लर्निंग होता है। तो वो शुरू किया और 1991 मतलब अभी 35 इयर्स हो गया डांस स्कूल में। और बहुत बहुत सैटिस्फाइंग प्रोफेशन है मेरे लिए कि मैंने ना ही मैंने डांस किया ना ही मैंने इसकी आनंद पूरा लिया, अभी मैं वो आनंद को बहुत बच्चों से मैं बांट रही हूँ। और जब देखती हूँ जो बच्चे 5 साल में आते हैं कैसे आते हैं और कैसे वो एक एक एक एक करके जब वो बड़ी होती हैं ये डांस के वजह से वो कितना बदल देते हैं, कितना उनमें ग्रेस आ जाता है, उनमें एक पर्सनालिटी आता है, उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। ना ही डांस सीखते हैं मगर ये सब भी हो जाता है, उनकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट भी हो जाता है और वो हमारे ट्रेडिशंस को जान जाते हैं। आजकल कहाँ जानते हैं, कोई उनको बताते नहीं है और वो पढ़ते नहीं है या देखते नहीं है। अभी ऐसा डांस और म्यूजिक में उन्हें डालते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें कहानी आता है और गणेशा ने कैसा वो आम को लिया या महाभारत की स्टोरी, रामायण की स्टोरी, हर वक्त यही उनको दिमाग में आता है कि अल्टीमेट है कि अच्छाई बुराई से विन कर जाएगी, अच्छा रहना इज द बेस्ट थिंग। और इसके अलावा उनका कितना वेलबींग होता है ना, फिजिकली वेलबींग, उनको एक्सरसाइज हो जाता है, सर से पांव तक एक्सरसाइज है इसमें। आजकल अगर आप किसी के पास डॉक्टर के पास जाएंगे कि स्पॉन्डिलोसिस है, वो जो एक्सरसाइज बताते हैं जैसा वो सब करते हैं ये सब करते हैं, हाथ को हिलाते हैं, सब कुछ डांस में आ जाता है। और अगर आप आई डॉक्टर को जाते हैं वो कहते हैं थोड़ा एक्सरसाइज करो, ये आंख के साथ हम कितना करते हैं, पूरा फेशियल मसल्स के साथ हंसना रोना सब कुछ करते हैं। तो इसमें से हमारा टोनिंग ऑफ द मसल्स हेड टू टो, हमारा फिजिकल हेल्थ भी अच्छा है, मेंटल हेल्थ अच्छा है और अल्टीमेट है स्पिरिचुअल। हमारा कला भक्ति से इतना जुड़ा है, भक्ति के बिना कला नहीं है। तो ऑटोमेटिकली वो भक्ति, वो कोई भी देवता हो, वो जीसस हो, मोहम्मद हो, हमारा हिंदू हो, जो भी हो, कहते हैं एक ही है, सुप्रीम गॉड, वन ब्रह्मन, ब्रह्मन। सो ये सब शिक्षा कहाँ मिलेगी एक ही कला में? फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस, सब कुछ जुड़कर आता है। इसीलिए मैं कहीं जब भी मुझे ऐसा मौका मिलता है बात करने के लिए, मैं इसकी महत्वपूर्ण को बोलती।
2: मीनाक्षी जी, आपने अपने कला को आपने इस तरीके से इतना डिटेल में हमको समझाया, अभी मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं सीखा, क्योंकि अगर मैंने सीख लिया होता तो शायद मैं भी, जैसा आप कह रहे हैं, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, हर प्रकार से एक सक्षम अनुभव करता। क्योंकि जैसा आपने एक्सप्लेन किया कि ये केवल फिजिकल फिटनेस ही नहीं, इसमें आपको अपनी सभ्यता, संस्कृति के बारे में भी सीखने को मिल रहा है, ये भक्ति से जुड़ा हुआ, आप ईश्वर के भी नजदीक रहते हैं, और चूंकि आप एक्टिव हैं, आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है, आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके अंदर कोई शिथिलता नहीं आएगी, यू विल बी ऑलवेज वेरी एक्टिव, आपको अच्छा फ्रेश महसूस होगा। पर मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं सीखा। लेकिन क्या भरतनाट्यम कभी भी कोई भी सीख सकता है, या इसका कोई एक पर्टिकुलर एज होता है जिसमें सीखना बेटर होता है?
3: देयर इज नो डाउट, वो जो बोलते हैं चाइल्डहुड एंड यूथ इज द बेस्ट टाइम टू लर्न, उसमें कोई क्या बोलते हैं, देयर इज नो डाउट, उसमें शंक कुछ नहीं है। ओके
2: जी,
3: अगर मैं बोलना चाहती हूँ, कई लोग मुझसे, जब मैं स्कूल सब कर रही थी ना, चले मेरे दोस्त या कई लोग लड़कियां आकर बोलते थे कि हमने बचपन से, मुझे ये बहुत शौक था, मगर हमको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला सीखने के लिए, क्या हमें सिखाएंगे? या वो लोग बोले कि हम बहुत अच्छा करते थे, मगर उसके बाद कोई पढ़ाई के लिए, या मैं मैरिज के बाद हमारा घर में वो सपोर्ट नहीं था, हम नहीं कर पाए, मगर अभी बच्चे बड़े हो गए, हम अभी थोड़ा इंडिपेंडेंट है, आप हमें सिखाएंगे, पूछेंगे? तो मैंने सोच लिया, मैंने बोला कि नहीं, जो एज भी आप लोग हो, आप आ सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आप सोच लीजिए कि ये फिजिकल एक्सरसाइज है, तो आपका फिटनेस लेवल भी अच्छा होना चाहिए। मगर एक बात मैं कहती कि आप लोग इसे ऐसा मत देखिए कि मैं सीख कर स्टेज में जाकर परफॉर्म करूंगी, नहीं चाहिए, वो एक बात है, कर सकते हैं, मगर वही है, वही गोल नहीं है,
2: गोल आंतरिक खुशी होना चाहिए, कि मैं अपनी खुशी के लिए कर,
3: खुशी के लिए, तुम्हारे पास ये डिजायर होता है ना,
2: इच्छा,
3: वो इच्छा, एक ही लाइफ हम रहते हैं, तो वो इच्छा को पूरी करनी चाहिए। थोड़ा देर, 3 महीने करिए, 1 साल करिए, 2 साल करिए, उसके बाद छोड़ जाइए, वो भी ठीक है, मगर आपका इच्छा पूरा हुआ। और वो लोग जब आए, और वो लोग आज भी आ रहे हैं, मैंने एक अभी रिसेंटली एक डॉक्टर, वो आई डॉक्टर थी, और उसके वो स्टार्ट किया 35 में, 41 में मैंने उसको स्टेज में डाला, वो अरंगेत्रम किया, उसके आंख में पानी थी, और उनके माता पिता के आंख में पानी थी, मैंने, हमने नहीं सोचा कि ये हो सकता है, मगर अगर वो सेल्फ पावर, सेल्फ में कॉन्फिडेंस लेकर उसको मेहनत करने के लिए तैयार थी, हम कुछ भी कर सकते हैं, एज इज नो बार।
2: तो उम्र की कोई बाधा नहीं होती दोस्तों, जैसे कि मीनाक्षी चित्रंजन जी ने हमें बताया, लेकिन बाधा होता है अपने खुद के मन का। अगर आपके मन ने ठान लिया कि मुझे ये करना ही है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपके मन को संभालना, उसको समझाना, उसको अपना साथी बनाना, ये बहुत बड़ी कला है, और इस कला को सीखने के लिए हमें अध्यात्म बहुत मदद करता है। कभी कभी हमारे आसपास जो हमारे लोग होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, या हमारे शिक्षक होते हैं, या हमारे दोस्त होते हैं, ये वो रोल बड़ा अच्छा निभाते हैं। जैसे मीनाक्षी जी की कहानी में हमने सुना कि उनकी माता जी ने अपने 5 बच्चों में से जो इकलौती बेटी थी, उसको उन्होंने नृत्य में डाला, क्योंकि उनके दिल की ये तमन्ना थी कि जो मैं नहीं कर पाई, शायद मेरी बेटी कर सके। अभी हम चलते हैं वापस मीनाक्षी जी की कहानी में, जहां से हम कुछ कुछ सवाल चुनेंगे, और उम्मीद करते हैं मीनाक्षी जी उन सवालों के साथ हमें और भी कई बातों को सिखाएंगी।
3: मेरे पास एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई है।
2: सो यू आर द मिडिल वन?
3: मिडिल वन।
2: अच्छा, तो मतलब एक बहन है आप, इकलौती बहन है, और एकमात्र बेटी के प्रति आपकी माँ ने एक विजन सोचा। जब छोटे होते हैं तब तो मम्मी पापा जो कहते हैं वो हम करते हैं इजीली, उसमें हमें कोई शंका नहीं होता, बोला है ये करो तो हम कर लेते हैं, लेकिन बचपन में ही खेलने कूदने का भी समय होता है, थोड़ा शैतानी शरारत करने का समय होता है। उस समय अगर कोई आपको एक ऐसी विधा में डाल दे जहाँ एक्सट्रीम डिसिप्लिन है, क्योंकि मैं समझता हूँ कोई भी भारतीय शास्त्रीय संगीत हो या कला हो उसमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है, बहुत अनुशासन है, तो क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये कहाँ मम्मी भेज रही है रोज, जहाँ पर मेरे को टीचर रोज स्ट्रिक्टली कुछ फॉलो करने कहता है, आपके मन ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि भाग जाओ इससे?
3: नहीं नहीं, वो मुझे नहीं लगा, क्योंकि हमारा वो उतना कठिन नहीं था, वो थोड़ा बैलेंस था, स्कूल जाते थे और हफ्ते मैंने बोला ना 3 बार क्लास जाते थे और वो ग्रुप क्लास थी और बच्चे वहाँ आते थे, और मैं सोचती हूँ कि मैं उसे पसंद करती थी कि जाकर वो 3 बार डांस करें, और मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी खेलती थी, आई वॉज अ वेरी गुड एथलीट, बास्केटबॉल खेलती थी, सब कुछ करते थे, क्योंकि हमें और कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं था ना उस टाइम, कहाँ था उतना डिस्ट्रैक्शन
2: उस टाइम पे व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ नहीं था,
3: कुछ भी वो नहीं था, और बस खेलने के लिए माता जी पिताजी, मैं कहती हूँ कि अच्छा बैलेंस करते थे, और उसने ऐसा नहीं कि वो स्ट्रिक्ट करके सब कुछ बताते जो हमें पसंद नहीं है, वैसा नहीं है। और ये बात मैं कहना चाहती हूँ, मेरे स्कूल में आजकल के बच्चे ना डिफरेंट होते हैं, हमें ये मानना जरूर है कि आज के बच्चे जैसा उनका लाइफस्टाइल है उसका बहुत डिफरेंट है, उनको कई कई एक्सपोजर्स हैं, उनको कई कई इंटरेस्ट हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, उस सबको हम हर वक्त ऐसा नहीं बोल सकते हैं नहीं करो नहीं करो नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये पेरेंट्स की रोल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जब वो बच्चे ग्रोथ की टाइम ना, कई माता जी हमसे आकर बोलते हैं पता नहीं आजकल वो रेगुलर नहीं आ रही है, हम उसे प्रेशर नहीं करना चाहते हैं, हम उसे फोर्स नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए तो मैं कहती आप लोग क्यों समझते हैं कि ये प्रेशर है, ये आप ही लोग ऐसा बोल के प्रेशर है, थोड़ा सा उसको प्रेशर नहीं समझना नहीं है, उसको ऐसे कहना है कि थोड़ा सपोर्ट सिस्टम, मैं ले जाऊंगी तुम्हें क्लास, मैं आपके साथ आऊंगी, तुम्हें छोड़ूंगी, और वापस जाने के टाइम कुछ ना ऑन द वे बैक उसको एक आइसक्रीम देकर ले जाएगी, स्मॉल स्मॉल थिंग। और जो लोग आज आप सोचिए, जो लोग कुछ ना कुछ पाए हैं, वेदर इट इज क्रिकेटर, वेदर इट इज चेस प्लेइंग, म्यूजिक, डांस, सभी बोलेंगे कि हमारा माता पिता जी का सैक्रिफाइस, उन्होंने क्या क्या किया हमें बढ़ाने के लिए, तो ये दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। ऐसा नहीं सोचना के लिए ना मेरा टाइम, अब मेरे पास टाइम नहीं है उसे ले आने के लिए, ऐसा बोलेंगे तो क्या कर सकते हैं,
2: और शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है इसमें, जरूर जो समय भी देना पड़ेगा और दिल से उस पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
3: और उसको अभी आजकल हमारे स्कूल में बच्चे हफ्ते में 2 बार आते हैं, 1 घंटा के लिए रहते हैं, सो होल मंथ में 8 घंटा, वो बहुत आसानी है, मगर उनका वो फोकस होना चाहिए, और उसमें माता पिता की रोल बहुत जरूरी है।
2: ये चीज मैंने गौर किया आपकी कहानी में भी, कि आपके मम्मी पापा ने एक चीज आपको बहुत मदद किया, और वो ये था कि उन्होंने इमोशनल सपोर्ट आपको बहुत दिया, जैसे भी अभी आप चेन्नई से दिल्ली शिफ्ट हो गए या कहीं दूर चले गए, लेकिन उन्होंने आपको इमोशनली ये चीज को फील करने दिया कि ये तो बड़ा आसान है, ये दूरी कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है, हम सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, आप बस इसमें लगे रहो। तो ये जो एक इमोशनल सपोर्ट है, जैसा कि आप अभी भी कह रहे थे, इससे क्या है बच्चे को ये फील हो जाता है कि अच्छा मुझे तो बस इतना ही करना, बाकी तो मम्मी पापा देख लेंगे, तो वो जो एक इत्मीनान आता है दिल में, एक जो सुकून आता है कि भाई मेरा इतना ही करना है, मैं उतने पे ही फोकस करूं, ये आगे बढ़ने में मदद करता है। जहां सामने वाले की बुद्धि इसमें फंस जाए कि इसको कैसे ट्रबल शूट करें, कैसे इसका हम सोल्यूशन निकाल के लाएं, वहां फिर धीरे धीरे सीखने से दिल हट जाता है, क्योंकि कोई चीज कठिन लग रही हो तो उसको सीखने में मन नहीं करेगा, लेकिन कोई चीज अगर सरल लगती हो और मनोरंजन लगता हो तो उसको करने में दिल करेगा, और उसकी वजह से व्यक्ति और भी उसको सीखना चाहेगा।
3: जैसे मैं कहती हूँ ना, जब बच्चे मेरे क्लास में आते हैं, मेरा फर्स्ट गोल यही है कि वो खुशी से मेरे क्लास को आना है, क्योंकि उसको टाइम है, अगर कुछ नहीं आया ये बात नहीं है कि उसको डंडा से मारो और बोलो करना ही है, क्यों, उसके पास टाइम है, वो सीखेगी। कई लोग जल्दी सीखेंगे, कई लोग लेट सीखेंगे, तो क्या हुआ। तो अगर हम वो बैलेंस, स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए मगर वो बच्चों को एक कंफर्ट देना चाहिए कि वो क्लास में आएगी तो खुशी से आएगी। अगर वह खुशी से क्लास आएगी हम उसे बहुत कुछ सिखा सकते हैं, मगर अगर उस टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है चाइल्ड में प्रॉब्लम हो या टीचर में प्रॉब्लम हो या पेरेंट में प्रॉब्लम हो और वो रुक जाता है, तब मुश्किल होता है।
2: यहाँ पर मुझे एक और चीज, जैसे आपने बताया कि बच्चों को ये चीज समझना जरूरी है कि मेरा एक समय है जब मैं पक जाऊंगा, और दो फल आपस में कंपटीशन नहीं कर सकते कि कौन पहले पकता है, हर एक का एक समय निर्धारित है। लेकिन आपने भी देखा है कई पिछले 10-15 वर्षों से हमारे समाज में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, चाहे वो किसी भी विधा में हो, लेकिन कला के विधा में ये कॉम्पिटिशन चमक दमक और ग्लैमर के साथ आता है। आपने जब सीखा तब आपके गुरु के कहने पे 5-6 साल जब आपके गुरु ने बोला कि मुझे लगता है अब ये तैयार है, तो इनका डेब्यूट कराया गया, अरंगेटम कराया गया, राइट। लेकिन आज क्या है, पेरेंट्स आते ही हैं टीचर के पास ये सोच करके कि कब ये रेडी हो जाएंगे, कब हम फलाने टीवी शो में जाएंगे या फलाने टैलेंट शो में जाएंगे। तो ये जो एक दौड़ने की जो एक भावना है, किसी से आगे बढ़ने की जो भावना है, आपको लगता है ये सीखने में कहीं ना कहीं हमें कमजोर कर देता है?
3: बहुत सही बात, ये बहुत बड़ी बात आपने पूछा है, क्योंकि हम समझते हैं, मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, कॉम्पिटिशन अच्छा है, मगर ये जेलसी जो होता है ना, वो आ जाता है, तभी क्या हो जाता है कि बच्चों को फ्रस्ट्रेशन हो जाता है ना,
2: ईर्ष्या,
3: ईर्ष्या, फ्रस्ट्रेशन। उस टाइम हमारे जैसे हमारे बड़े लोग के वैल्यूज को बच्चों को सिखाना चाहिए छोटे में ही। आजकल प्रॉब्लम ये है, बच्चों को ये बात नो सुनना ही पसंद नहीं है उनको कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो जाए, वो नहीं आया तो वो उसको दे नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट। और पेरेंट्स भी बच्चों को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मैं एक बात बताती हूँ, बहुत साल पहले मेरे लड़का ने कुछ मेरे पिताजी के साथ कुछ खा रहे थे, तो कुछ लकार कुछ खाने में रखा था, और मैंने बोला अपा आदित्य, मैं सन्स नेम इज आदित्य, आदित्य को ये पसंद नहीं है, आदित्य डजंट लाइक इट समथिंग। तभी उन्होंने बताया, आप लोग अगर बच्चों को इतना इम्पोर्टेंस करके आप ही बोलते हैं कि इसको ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, यही पसंद है, यही देना है उसको, उसमें एक एटीट्यूड आप ही बढ़ाते हैं। यहाँ रखा है, खाना रखा है, वो जो कुछ भी रखा है वो खाएगा, यानी थोड़ा खाएगा या नहीं खाएगा, ओके, मगर आप लोग उसको बिल्ड करेंगे और बोलेंगे मेरे लड़के को यही चाहिए, वो ही पसंद है, वो यहाँ नहीं आएगा, वो वहां नहीं बैठेगा, उसी टाइम वो बच्चों को वो एक ईगो पैदा कर देते हैं। ये नहीं करना है, वो छोटे में सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे और अच्छी तरह हर टाइम उनको बताना है कि आप यू बी द बेस्ट यू कैन बी, तुम हाउ डू से दैट,
2: आप अपना बेहतरीन बनने का प्रयास, किसी और से नहीं, बिल्कुल
3: आप में कुछ होगा जो उसके पास नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करो और उसको बढ़ाओ
2: जी।
3: कई बच्चे हमारे स्कूल में आए हैं और मुझे मालूम है उनको डांस के बारे में उनका फिजिकलिटी या उनका मेथड ऑफ डूइंग वो ठीक नहीं आ रहा है, तो मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ कि उसमें कोई कमी नहीं है, मगर ये शैली इसकी सूटेबल नहीं है, पूछ लो कि अगर उसका इंटरेस्ट गाने में हो, पेंटिंग में हो या स्पोर्ट्स में हो, उसको बदली कर दो। वो भी हमारा एज अ गुरु आई मस्ट टेल देम द फैक्ट्स, क्योंकि आपने जो बोला था ना, इसमें बहुत सारा ग्लैमर है, इसमें स्टेज में चढ़ाकर सब लोगों को आकर्षण करना है, अगर वो सब कुछ भी नहीं है तो उसको फ्रस्ट्रेशन ही होगा ना। तो तब हमें ही बताना चाहिए कि रूट को थोड़ा घुमा लो या कुछ कर लो
2: जी।
3: ये बहुत साइकोलॉजिकली आजकल बहुत बच्चों के साथ साइकोलॉजिकली उनको डील करना पड़ता है
2: जी। मैं समझता हूँ आपके पेरेंट्स ने एक चीज पक्की कर ली थी कि जैसा आप चाहेंगे आपको वो मदद करेंगे, लेकिन आपके पीछे वो एज अ बैकबोन रहेंगे। मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। आजकल थोड़ा सा ऐसा हो जा रहा है कि पेरेंट्स बच्चों का थोड़ा सा उतरा हुआ चेहरा देखते तो वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि

0: तो अभी मुझे एक और सवाल पूछना था। जैसे आपने बताया कि तरुणावस्था में आपको नृत्य के प्रति अंदर से एक आंतरिक रुचि आने लगी, आप उसकी और गहराई में जानना चाहते थे, क्या आप मुझे एक कोई ऐसा किस्सा या कोई एक ऐसी कहानी बता सकते हैं जिसको सुनते हुए, क्योंकि जैसे आपने बताया भरतनाट्यम या कोई भी जो शास्त्रीय कला है उस विधा में हम कहानियां ज्यादा सुनते हैं, कहानियों को ही हम नाट्य रूपांतरण करते हैं या उनको ही हम गाते हैं या उनको ही हम चित्रण करते हैं। कोई एक ऐसा प्रसंग जो आपको लगा कि इसने मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट का काम किया, वो कौन सा प्रसंग था?
1: एक याद आती है, मैंने एक ये बहुत रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन नेहरू सेंटर कहते हैं, लंदन में है।
0: जी
1: और लंदन में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, नेहरू सेंटर में मैं जाकर वो हमारा नृत्य किया। और वहाँ के ऑडियंस बहुत सारे लोकल ब्रिटिश लोग थे और फॉरेनर्स थे। और उसके बाद हम सब मिलकर एक रिसेप्शन की तरह रखा, डिनर रखा। तब मैं कई लोग बोल रहे थे कि हमारा इंडियन डांस को कितना वो पसंद कर रहे हैं। तो मैंने बोला उनसे कि उसी एक दिन पहले मैंने जाकर वो प्ले लायन किंग,
0: जी
1: लायन किंग को मैंने लंदन में वो देखा। और मैं टोटली आई वाज अमेज्ड, क्या क्या कोऑर्डिनेशन, क्या परफेक्शन, एक-एक रोल, एक-एक एनिमल को कैसा उन लोगों ने स्टेज में लेकर हमारे आंखें के आगे रखा, कैसा लाइटिंग, व्हाट इज कॉस्ट्यूम, कितना म्यूजिक, ये सब मुझे बहुत लेफ्ट मी टोटली अमेज्ड। सो मैं उसके बारे में उनसे बोल रही थी, तब मालूम है उन्होंने क्या कहा मुझे? हाँ, यस यस, वी आर वेरी गुड एट दैट, मगर यू नो व्हाट वाज फॉर अस वेरी वेरी वेरी अमेजिंग, वी सॉ वन डांसर, शी वाज स्टैंडिंग ऑन द डांस एंड शी बिकेम सो मेनी कैरेक्टर्स, शी बिकेम कृष्णा, शी बिकेम अ माउंटेन, शी बिकेम द रिवर, शी बिकेम द डियर, शी बिकेम द हीरो, शी बिकेम द नायिका। वन पर्सन इज स्टैंडिंग देयर एंड शोइंग अस सो मच। देर इज नो टेक्नोलॉजिकल ब्रिलियंस, देर इज नो लाइटिंग, देर इज नो ऑल दिस अमेजिंग थिंग्स। सो दैट इज आर्ट, व्हाट यू आर डूइंग इज वेरी ब्यूटिफुल, इट इज आर्टिस्टिक। तभी मुझे भी याद आया कि हमारा कला कितना महत्व है। तो
0: जी
1: हम इसके वी मस्ट वर्क, वी मस्ट डू मोर एंड मोर परफेक्शन,
0: जी
1: क्योंकि ये। और सिमिलरली नो, एक कहीं पर मैंने किया, वो ब्यूटीफुल सॉन्ग है जिसको कहते हैं जगदो धारण आदि शीतल यशोदा, व्हाट अ ग्रेट सोल यशोदा वुड हैव बीन दैट द सुप्रीम लॉर्ड वाज जस्ट अ बॉय बेबी इन हर हैंड एंड शी डिडंट नो इट, शी स्कोल्डेड हिम, शी बेट हिम, he begged to her for forgiveness. What sort of a great lady that Yashoda must have been. And when I was doing it, that lady doesn't understand our word, only the action. And she said, I'm missing my child so much. The child was not there with her. So I don't know, our music and dance has this power of
0: connection.
1: moving people. It is moving their soul. It's moving their emotions. So these are all things which make you realize how lucky I have been. What a lot of grace of God I have got to be able to be exposed. Like how you are saying, you are feeling so bad that you were not having this opportunity. I am feeling so blessed that I was given this opportunity.
0: जी
1: एक बात है, हमारे गुरु जी बोलते थे, बहुत बड़े गुरु होंगे उनको अच्छा शिक्षक नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा करने वाला शिक्षक होगा उसको एक अच्छा गुरु नहीं मिलेगा। तो अच्छा
0: जी
1: गुरु और अच्छा शिक्षक कनेक्शन होता है तो वो भगवान की कृपा है।
0: जी जहाँ आपने अपना अनुभव शेयर किया कि जब आप लंदन आए और आपने यहाँ का जो शो होता है वो देखा और आपको लगा कि भाई इतना अच्छा तो हम क्या ही करेंगे, लेकिन जब आपने किया और तब लोगों ने बोला कि भाई वो तो लाइटिंग टेक्निक, तकनीकी जो भी चीजें हैं, इनोवेशन, और इतने सारे लोग मिलकर के एक प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ एक ही व्यक्ति है जो हर प्रकार के चरित्र को अकेले ही निभा ले रहा है। वो कृष्ण भी बन जाते हैं, वो राधा भी बन जाते हैं, वो पहाड़ भी बन जाते हैं, पेड़ भी बन जाते हैं, जानवर भी बन जाते हैं, सब

0: कुछ एक ही व्यक्ति कर रहा है, ना इसमें कोई चकाचौंध है, ना कोई इसमें एक्स्ट्रा एडेड वैल्यू है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति के द्वारा ही ये सारा चित्रण कर पाना, ये अपने आप में एक कला है। तो ये समझ में आता है कि कई बार हम जैसे दिया तले अंधेरा होता है, हम खुद रोशनी के नीचे है और हमें पता ही नहीं कि हम किस चीज के अंदर है। भारत में कई बार ऐसा देखा गया है कि जो हमारी सभ्यता है, हम उसके रिचनेस को, उसके शक्ति को पहचान नहीं पाते, और जो हमारे सामने ज्यादा घूम रहा होता है मीडिया की वजह से, उसे हम बहुत ज्यादा तवज्जो दे देते हैं और हम उसको पहले सीखने के लिए या उसके पीछे हम पहले भागते हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि जो हमारा खुद का है वो पीछे रह जाता है, अकेला पड़ जाता है और उसे आगे बढ़ाने वाला कोई होता नहीं। ऐसे में जब आपके पास नए बच्चे आते हैं सीखने के लिए, या पुराने भी आते हैं जब सीखने के लिए, आप उनको क्या वैक्सीनेशन देते हैं ताकि वो चकाचौंध में फंस ना जाए और जिस चीज के लिए वो आए हैं उस चीज को और गहराई से समझे? किस तरीके से आप उनको एक अंदरूनी गुरु की तरह परामर्श, एक दोस्त की तरह सलाह देते हैं, जिससे उनको समझ में आए कि ठीक है वेस्टर्न चीजें भी मुझे सीखना है, लेकिन पहले मैं अपने देश के परंपरा को, उसकी सभ्यता को आत्मसात करूं, फिर मैं आगे बढ़ूं। तो आप क्या वैक्सीनेशन या इम्यून सिस्टम उनका कैसे तैयार करते हैं?
1: करेक्ट करेक्ट, ये एक बहुत इट्स अ चैलेंज, क्योंकि जैसे आपने ठीक कहा कि आज की टाइम इज चेंजिंग और ये बच्चे डिफरेंट एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। मैंने क्या देखा कि इनिशियली जैसे मैं बोला बच्चे खुशी से डांस क्लास आना चाहिए और उसको हम थोड़ा सा बहुत अच्छा स्ट्रिक्ट भी होते हैं मगर जोकिंग भी करते हैं और उनको सिखाते हैं थोड़ा थोड़ा। ये बहुत लॉन्ग जर्नी है, ये नहीं है कि इसका समाप्त दो दो दो वर्ष लिए सीख लिया तो मालूम है या 10 वर्ष सीख लिया मालूम है, 50 वर्ष के बाद भी मुझे कितना मालूम नहीं है। हा? तो ये समझना चाहिए कि ये थोड़ा टाइम टेस्ट के लिए नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, जब वो 3-4 साल हो गया और थोड़ा आइटम्स को शुरू कर दिया ना, तो मैं क्या करती हूँ उन लोगों को कुछ ना कुछ एटलीस्ट 2 times इन द ईयर, यार 1 time डेफिनेटली उनको मिला के उन्हें स्टेज में प्रेजेंट करती हूँ। तो क्या होता है जब वो बोलती हूँ कि मैंने एक प्रोग्राम कर दिया है आप लोगों यू विल टेक पार्ट, उसी दिन नेक्स्ट क्लास में ही उनका चेंज हो जाता है। जब वो मालूम होता है कि हाँ मैं भी डांस जाऊंगी, मैं मेकअप करूंगी, ड्रेस पहनूंगी और मैं डांस करने वाली हूँ, उनका और पेरेंट्स का सबका थोड़ा आपने बोला ना वो इंजेक्शन विटामिन अंदर जाएगा और वो 1 साल तक रहेगा। अगले साल जो और भी उन्होंने सीख लिया उसको भी एक इकट्ठा करके उसे थोड़ा सा यू नो मेक इट लिटिल फन एंड उसको प्रेजेंट करते जाते हैं, ताकि जब उनका टाइम आता है, जब मैं समझती हूँ कि वो अपना सोलो अपने आप डेब्यू परफॉर्मेंस 1 hour 20 minutes के लिए कर सकते हैं, वो थोड़ा थोड़ा से तैयार हो गए हैं। और जब वो दिन आता है, वो दिन बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, सभी के लिए इतना खुशी का दिन है और जो याद वो कभी भी उसे भूलेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रिपेयर कर अच्छी तरह जब वो करती है। उसके बाद उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, वो एक बार ही होती है, ऐसा नहीं कि हम आरंगेट्रम करते रहेंगे उनके लिए। उसके बाद उनको सस्टेन करने के लिए ही हमें बहुत बहुत
0: बैलेंस
1: मेहनत बैलेंस कभी कभी थोड़ा सा प्रोग्राम दे सकते हैं, मगर एक टाइम आ जाता है, हो सकता है ये 15-16 टीनेज में एक दो बच्चे छोड़ जाएंगे, बस 10th हो गया, 12th हो गया, बिजी हो गया और उसी तरह थोड़ा सा वो डांस अब डिफिसल हो जाएगा। कई बच्चे में अपने आप इट इज देयर इंटरेस्ट, नो लॉन्गर पेरेंट्स इंटरेस्ट, माताजी ने कहा पिताजी ने कहा की बात नहीं है, उसको आता है कि मैं इसको पसंद कर रही हूँ, आई लाइक इट।
0: तो मुझे लगता है जब वो अपनी पसंद से होता है तभी वो एक ऐसे शिखर पे पहुंचता है जब देश उसको मान्यता देने लगता है, जब विदेश देश हर तरह उस चीज की मतलब सम्मान की दृष्टि से उसको देखा जाता है। अगर वो किसी के दबाव में किया जा रहा है तो वो किसी परफॉर्मेंस स्टेज तक ही रहता है, वो एक ऐसा कला नहीं बनता जिसको लोग आदर और सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, जिसे भारत के श्रेष्ठ सम्मान में से सम्मान दिया जा रहा है। चूंकि मीनाक्षी चित्रंजन जी ने अपने कला को अपनी रीति से अपनाया, किसी के कहने से नहीं, शुरुआत भले माता पिता ने किया, गुरु के आदेश और निर्देश में उन्होंने शुरू किया, लेकिन जब उनके दिल के कोने ने देख लिया कि इस पूरे जगह में केवल नृत्य का ही वास है, तब उन्होंने उस नृत्य को इतने आगे परचम तक पहुंचाया जहां पर उनका नाम और भरतनाट्यम का नाम एक होने लगा और भारत सरकार ने वर्ष 2008 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। जब ये सम्मान आपको मिल रहा था, तब आपको वो छोटी बच्ची मीनाक्षी जो जाती थी सीखने के लिए और जिसका 9 वर्ष की आयु में पहली बार डेब्यूट हुआ, और जब 2008 में आपको पद्मश्री मिला, तो इस पूरे श्रृंखला को अगर आपको किसी मेटाफर में या किसी उदाहरण के तौर पर समझाना पड़े तो कैसे समझाएंगे, क्या आपका अनुभव रहा होगा?
1: पद्मश्री मुझे मिला, मीनाक्षी सभानायकम चित्तरंजन को पद्मश्री दिया गया, मगर उसका कारण मैं नहीं हूँ। मैं एक, it is a physical form that is done it. उसका कारण है मेरे गुरुजी, माताजी, पिताजी, जो जो सैक्रिफाइस वो करे होंगे तब मैं बच्ची थी, तुमने मुझे याद भी नहीं है क्या किया होगा
0: जी।
1: वो जो किया, मेरे रसिका, मेरे ऑडियंसेस जो आकर मुझे वो मोटिवेशन दिया कि आप जो कर रहे हैं अच्छा है, ये सब लोगों की पद्मश्री है। वो मैंने उसको रिसीव कर दिया, मेरी थी कि आपने जो कहा ना, जब हमें कुछ काम करना पसंद है हमको वो मेहनत नहीं लगेगा। बोलते हैं ना, बेस्ट जॉब इज इफ यू विल डू इट इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग पेड, पे इज द एडिशनल बोनस यू आर गेटिंग if you are doing something you like very much, like अभी लोग पूछते हैं तुम कैसे अपने घर चलाती हो, बच्चों को देखती हो, आज पोता पोती को भी देखती हूँ, सबको देखती हूँ कैसा, तो मैं कहती हूँ जो जब मैं अंदर जाकर नाचने लगती हूँ मैं उसे उतना पसंद करती हूँ, मुझे ये मेहनत नहीं सोचती हूँ। इट इज फॉर मी रिलैक्सेशन
0: जी।
1: उसके बाद मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं टायर्ड हो गई हूँ, नहीं।
0: ये आपका आराधना है जहाँ से आपको शक्ति मिल रही है।
1: हाँ।
0: तो ये नृत्य आपके लिए केवल नृत्य नहीं, आपकी उपासना है, आपकी आराधना है, जहाँ से आपको ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, और फिर उसको वो अपने जीवन में आप डालते हैं। आपके क्लास में, आप चूंकि शिक्षिका है इसलिए मैं बार बार आपके शिक्षण की तरफ जाता हूँ, एक समाज की एक मान्यता, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि भाई एक टाइम था जब लड़कियों के नृत्य करने पे लोगों को खराब लगता था, ब्रिटिशर्स से पहले भी मुगल काल में भी ऐसा था कि केवल किसी एक प्रांत या किसी एक समाज के हिस्से को ही नृत्य से जोड़ा जाता था, बाकी किसी को कहते थे भद्र घर की लड़कियां जो है वो नृत्य नहीं करती, गाना भी नहीं गाती, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा खुला। लेकिन आज यही रुकावट जो है आपको देखने को मिलेगा जेंडर्स में, लड़कियां ही डांस करती हैं, लड़के डांस नहीं करते, लड़के डांस करेंगे तो कुछ और टाइप का डांस करेंगे, भरतनाट्यम, कथक, ये लड़कों को नहीं शोभता, ऐसा सुनने को बहुत मिलता है, और लड़कों के अंदर में भी ये होता है कि ये तो लड़कियों का काम है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
1: हाँ, ये बहुत सही बात है। एक टाइम था कि बहुत लड़कियां ही इसमें आती थी, वेरी फ्यू मेल डांसर्स,
0: जबकि आपके गुरुजी खुद पुरुष थे।
1: पुरुष थे मगर वो एक दिन भी खड़ा होकर नाचना नहीं किया। हमारे गुरुजी ऐसे थे कि वो बैठकर अपने वो डंडे से जो हम रिदम करते हैं ना, उसके साथ ही हमें सिखाया था, एक दिन भी उठकर हमको दिखाया नहीं।
0: ये तो कमाल है, फिर आप सीखे कैसे?
1: आप ऐसा है कि क्लास में हमसे जो पहले सीख रहे थे हम उनको देख रहे थे ना। वो एक शिक्षक थी और वो जो कहते थे हमें मालूम जाता था कि क्या करना चाहिए। वो लोग, वो मास्टर्स ऐसे थे, वो डांसर्स नहीं थे, वो डिफरेंस है। आजकल का डिफरेंस ये है कि सभी गुरुओं डांसर्स हैं, क्योंकि वो पंडित जी अभी चली गई, उनके बच्चे सब ना डांस में नहीं है। मेरे गुरुजी के लड़के सब गवर्नमेंट जॉब या कहीं जॉब पे, कोई भी वो डांस नहीं। और जैसे हम लोग जो उनके स्टूडेंट्स थे अभी हम सिखा रहे हैं, सो हम है जो परफॉर्मर कम टीचर।
0: मीनाक्षी जी इतने एक दुर्लभ सुनने जैसे और एक कठिन सुनने जैसे विद्या की बात कर रही, जहाँ पर जो गुरु है वो खुद नहीं करके दिखा रहे, वो केवल आपको निर्देश दे रहे हैं, और गुरु के साथ आप इतने कनेक्टेड हैं कि उनके निर्देश को आप ऑटोमेटिकली मान पा रहे हैं और आपके सामने जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको आप फॉलो कर रहे हैं। ऐसा शिक्षण आज के जमाने में आपको कहीं नहीं मिलने वाला, यही मीनाक्षी जी हमें बता रही हैं। जी मीनाक्षी जी आगे बताइए।
1: वही वही बात है। और दूसरा बात ये है कि टुडे सीन भरतनाट्यम में और शैली में भी बहुत सारे लड़के बहुत अच्छे कर रहे हैं।
0: कला को किसी जाति से, किसी जेंडर से, किसी लिंग से जोड़ना ये हमारी बेवकूफी है, क्योंकि कला का कोई लिंग नहीं होता, उसका कोई जाति नहीं होता, वो ईश्वर की देन है। उसे उस रूप से आत्मसात करने में ही हमारा और हर एक का भला है। जब हम उसको जज करने लगते हैं कि ये खाना पकाना लड़कियों का काम है, ये करना लड़कों का काम है, तो ये दिखाता है कि हम कितने अनभिज्ञ हैं सत्यता से और वास्तविकता से। जहाँ नृत्य के देवता नटराज हैं, जो कि एक पुरुष देवता है, वहाँ हम ये नहीं कह सकते कि नृत्य जो है वो पुरुषों के लिए नहीं है या किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है। मीनाक्षी जी अगला सवाल है कि भारत का ये जैसे कार्यक्रम का नाम है यशस्वी भारत, आप विदेश भी गए हैं और विदेश में जाकर के आपने भारत के सभ्यता का प्रदर्शन किया है, तो वहाँ के रिएक्शन से आपको क्या महसूस होता है कि हमारा भारत यशस्वी किन किन कारणों से है?
1: Definitely, I mean, our civilization, our history, we are the oldest and the culture, the dance, music, our scriptures, literature, Vedas, math, the whole world admires us for what we have given our Bharat, India, what it has been and what civilization, what all it has given to the world. I think they respect and they are aware of this pride of India. And according to me, it is our richest wealth. That is why we must somehow preserve it. Mm. We must keep it. And how to preserve? We have to transfer it to the next generation. So that is what I keep saying. All the people who are good in anything, whether music, dance, sports, in education, the more you educate the next generation, you can keep this pride of India secure.
0: Alive. भारत की धरोहर को अगर बचाना है तो उसे आगे पास ऑन करना पड़ेगा, अपने पास रखने से नहीं होगा। और संस्कृति को आगे बढ़ाना हमारा एक नागरिक होने के नाते भी और एक मनुष्य होने के नाते भी हमारे एक कर्तव्य है। आज हम बात कर रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम में आदरणीय मीनाक्षी चित्रंजन जी से, जो की भारत की एक अद्भुत विख्यात नृत्यांगना है भरतनाट्यम शैली, जिन्हें उनके नृत्य के प्रति समर्पण भाव के लिए, नृत्य के द्वारा उन्होंने समाज में जो बदलाव लाया है उसके लिए भारत सरकार ने 2008 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हैं और हम जानना चाहेंगे मीनाक्षी जी से, अगर मान लीजिए आपको एक जादुई छड़ी दे दी जाए तो आप क्या करना चाहेंगे?
1: आई वुड वॉन्ट टू रिमूव द सफरिंग ऑफ आवर पीपल।
0: लोगों के अंदर की जो व्यथा है, दुख है, उसको आप हटाना चाहेंगे।
1: But I want everybody to be happy.
0: बहुत सुंदर विचार है मीनाक्षी जी का कि जादुई छड़ी मिले तो मैं हर व्यक्ति के दिल से दुख को हटाना चाहूंगी। लोग चाहे अमीर हो ना हो उससे मतलब नहीं, लेकिन खुश जरूर हो ये चाहिए। यही है दोस्तों, देखिए हमारे भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा उदाहरण कि वो भले भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि हर कोई भरतनाट्यम सीखे, वो ये चाहते हैं कि हर कोई सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः का उनका भाव है।
1: If you are not sukhi, you cannot do what you are doing well.
0: जो आप अच्छा कर रहे वो भी नहीं कर सकते अगर आप सुखी नहीं है। तो जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है वो हमें बांध के नहीं रखती कि केवल अपनी विधा का ध्यान रख, वो हमें आध्यात्मिक बना देती है, अंदर से हमें ऊंचा बना देती है। इसलिए वो भले भरतनाट्यम की नृत्यांगना, लेकिन भरतनाट्यम का नहीं सोच रही, वो पूरे जनमानस के जीवन का सोच रही हैं। ये धरोहर है हमारे भारतीय संस्कृति की। जाते जाते मीनाक्षी जी आपसे हम खेलना चाहेंगे एक रैपिड राउंड, जिसमें हम करेंगे आपसे एक सवाल जिसका जवाब आपको एक शब्द में देना होगा या एक वाक्य में देना होगा।
1: बहुत एग्जाम हो रहा है अभी।
0: मैं समझता हूँ, खैर है तो ये रेडियो शो, लेकिन इसमें हमारे दोस्त जो है आपके अभिनय को नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब यूट्यूब पे हम डालें वीडियो को तो अभिनय को जरूर वो देख पाएंगे। ले आप चाहे तो अभिनय के द्वारा भी इसका जवाब दे सकते हैं। तो पहला सवाल है आपसे, शांति क्या है?
1: अंदर का पीस। बाहर नहीं है, अंदर है।
0: शांति
1: अंदर से, अंदर है। हमें वहीं पर ढूंढना चाहिए।
0: तो दोस्तों, अगर आप शांति ढूंढते हुए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं तो अंदर जाने के लिए कह रही है मीनाक्षी जी, सुख क्या है?
1: सुखिनो भवन्तु।
0: जब सब सुखी हो उसमें सुख है। संतुष्टता क्या है?
1: जब हमारे डिजायर को कंट्रोल करें,
0: इच्छा पर कंट्रोल नियंत्रण, ये सुख हो? ये संतुष्टता है। बहुत सुंदर।
1: कंटेंटमेंट
0: संतुष्टता। शिक्षा क्या है?
1: शिक्षा इज नॉलेज,
0: ज्ञान।
1: अज्ञान को जो रिमूव करता है वही शिक्षा है।
0: तो अंधेरा समझ लीजिए जैसे कि रोशनी, अंधेरे को जो हटाता है वो शिक्षा है। सेवा क्या है?
1: सर्विस। ऐसा करना चाहिए जिससे जो हमसे लेता है उसको हम छोटा ना समझे। ऐसा करना चाहिए जैसे हमें लगता है कि हमको उसने एक वर दिया है कि हम ये कर सकते हैं।
0: वाओ, ये तो बहुत ऊंची बात कही मीनाक्षी जी ने कि सेवा वो है जहाँ पर आप जिनकी सेवा कर रहे हैं उन्हें छोटा ना समझें। आप ऐसा समझें कि उनकी वजह से आपको सेवा का एक वरदान मिला है। तो सेवा जिनके प्रति कर रहे हैं उनको ऊंचा देखना, ऊंची नजर से देखना, ये वास्तविक सेवा है। ये बहुत सुंदर जवाब था मीनाक्षी जी। भारत क्या है? मैंने देखा आपकी आंखों में एक चमक आ गई। भारत क्या है?
1: भारत वैकुंठ है।
0: भारत वैकुंठ है जहाँ सर्व सुख है,
1: जहाँ देवर देवियां देवा सब यहाँ परेड कर किए हैं, जहाँ भगवान सब यहाँ आ गए हैं।
0: जी, भारत वैकुंठ है। आखिरी सवाल और आखिरी से पहला सवाल, भरतनाट्यम क्या है?
1: भरतनाट्यम उसका नाम में ही है। भरतनाट्यम है हा भावा रा रागा ता ताड़ा, जिसमें भावा रागा और ताड़ा जुड़ा है वही नाट्यम है। ये तीनों उसमें है।
0: भरतनाट्यम में भाव राग ताल तीनों है तभी वो भरतनाट्यम है। लेकिन अगर भरतनाट्यम को आपको किसी उदाहरण से देना हो, जैसे भरतनाट्यम आपके लिए अगर आप उसको एक मेटाफराइज करें या उसको आप एक पर्सोनिफाई करें तो क्या है भरतनाट्यम आपके लिए?
1: भरतनाट्यम हम कहते हैं भरतनाट्यम, आप उसको ट्रांसलेट कर दीजिए, उसमें ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी अ फीस्ट फॉर द आईज फॉर द इयर्स फॉर द माइंड एंड फॉर द सोल।
0: भरतनाट्यम आंखों के लिए भोजन होना चाहिए, कानों को सुनने के लिए मधुर होना चाहिए, मस्तिष्क के लिए बुद्धि के लिए चर्निंग अच्छा भोजन होना चाहिए और आत्मा को सुख देने वाला होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपके लिए भरतनाट्यम एक अनुभव है।
1: क्या कहते हैं, ये नाट्य योगा है।
0: योग है, बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल कठिन है लेकिन मैं समझता हूँ आप इसका जवाब जरूर दे देंगे, मीनाक्षी चित्रंजन कौन है?
1: एक पिक मिट्टी का एक स्पिक है बस, और क्या है।
0: लेकिन उस छोटे से कण के बगैर पूरा धरती नहीं बन सकता, तो वो कण भी अपने आप में यूनिक है और ये भारत का एक ऐसा कण है जिस कण को लोग अपने माथे पे लगाते हैं। तो ऐसे धरती के कण को मीनाक्षी जी के शब्दों में हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमारे साथ समय व्यतीत किया। आज आपने हमें अपने नृत्य शैली से भी अवगत कराया लेकिन उसके अंदर जो छुपी हुई रहस्य है, जो कि शिक्षादायी है, जो कि आध्यात्मिक बातें हैं, उनसे भी आपने हमें और हमारे श्रोताओं को अभिभूत किया। मीनाक्षी जी, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सफल जीवन के लिए और आपके द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे इतने सारे बच्चों के लिए जो भी भरतनाट्यम के शिक्षार्थी हैं, हमारी तरफ से, रेडियो मधुबन के सब परिवार की तरफ से एवं रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं की तरफ से दिल से शुभकामनाएं हैं।
1: आपने मेरे जीवन का ओवर 50 साल का जीवन को बहुत अच्छी तरह से हमारे अंदर से बाहर निकाला। आपके प्रश्न सब बहुत बहुत नॉलेजेबल और क्या बोलते हैं ना, वर्थवाइल थे, जिसके कारण मैं भी इतना बात कर सकती थी। तो आपको भी मेरा धन्यवाद एंड सभी सुनने वालों को नमस्कार।
0: दोस्तों, अब तक आप सुन रहे थे आज के हमारे कार्यक्रम के मेहमान मीनाक्षी चित्रंजन जी को। यशस्वी भारत कार्यक्रम हर बार आपके बीच में एक ऐसे मेहमान को लेकर के आता है जिसने भारत के क्राउन में, उसके ताज में एक नगीना ऐड किया है और वो नगीना वो खुद होते हैं दोस्तों, क्योंकि वो अपने जीवन के द्वारा भारत को यशस्वी बनाने का व्रत आगे बढ़ा रहे होते हैं। मीनाक्षी जी से बात करते हुए हमें कई चीजों का अनुभव हुआ, मैं समझता हूँ आपने भी उन चीजों का अनुभव किया है। हमें जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये एपिसोड। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे एक और रतन के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। रेडियो मधुबन, जय हिंद जय भारत।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का स्वागत है। भारतीय संगीत के मुख्य रूप से तीन भेद किए जाते हैं, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत। आज तक हमने संगीत के बारे में बहुत कुछ सुना भी, मगर आज संगीत में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए उत्सव के आधार पर भजन। भजन ये सुगम संगीत की एक शैली है। इसका आधार शास्त्रीय संगीत या लोक संगीत हो सकता है, लेकिन मूल रूप में यह किसी देवी या देवता की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है। सामान्य रूप से उपासना की सभी भारतीय पद्धतियों में इसका प्रयोग किया जाता है। भजन मंदिरों में भी गाए जाते हैं। कुछ विख्यात भजन रचनाकारों की नामावली में मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास जैसे अनेक रचनाकार होकर गए हैं। सामान्य रूप से उपासना की सभी भारतीय पद्धतियों में भजनों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए आज हम आगे श्यामली जी से भजन के बारे में सुनते हैं। श्यामली जी, रेडियो मधुबन में संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ, मैं भी सबको प्रणाम करती हूँ।
0: गीत संगीत में भजन का ज्यादा प्रयोग होता है।
1: हाँ,
0: या कहो देवी माँ की आरती गाई जाती है।
1: हाँ जी,
0: तो आज हम भजन के बारे में आपसे सुनना चाहेंगे।
1: भजन की जो मेन पॉइंट है यह है भक्ति।
0: अच्छा।
1: भक्ति जैसे उसके ऊपर आधारित होता है। तो जैसे भजन आम जनता में हिंदी भाषा में ज्यादा होता है
0: जी,
1: जो सब जनता समझ सकते हैं। और ये जो भक्ति रस की जो गीत है ऑडियंस के सामने अगर प्रेजेंट करेंगे वो ज्यादा अपनाएंगे। इसमें मधुरता, उसका जो सौंदर्यता होता है, सुर की जो लयकड़ी होता है बहुत सुंदर, उसका ताल के ऊपर ये आधारित ज्यादा होता है। इसमें इसका अलग महत्व आ जाते हैं।
0: माना ज्यादातर भजन में तो देवी देवताओं की महिमा, उनकी उपासना ही होती
1: है। ऐसे कोई बात नहीं, भजन में ज्यादा होता है कृष्ण की जो गीत होता है, ज्यादा से ज्यादा गिरिधारी लाल या कृष्ण की हरी या भजन श्याम घनश्याम इसके ऊपर ज्यादा आधारित होता है।
0: ओके।
1: जैसे सूरदास की भजन में हम देखते हैं उसको आँख तो नहीं थे, सूरदास जी के आँख नहीं थे, लेकिन वो हरि बिना नहीं चलते थे। उसका हर जगह में हरि का नाम ज्यादा प्रयोग होता है। ब्रह्मानंद जी का भी घनश्याम ज्यादा होता है। मीरा भजन में गिरिधारी लाल ज्यादा होता है, मीरा के प्रभु गिरिधारी नागर ऐसे ज्यादा प्रयोग होता है। तो भजन की एक स्पेशल मैं कह सकती हूँ कि हर भजन के लास्ट में या प्रथम जो भजन रचयिता होता है
0: जी,
1: उसका नाम प्रयोग होता है।
0: अच्छा।
1: तब जाके पता चलता है ये भजन किसका है,
0: पूरे भजन में उनका नाम आ जाते हैं।
1: तब हम जान सकते हैं कि मीरा की है या ब्रह्मानंद की है, कंवर जी का है या सूरदास जी का है।
0: अच्छा।
1: ये हम जान सकते हैं।
0: हर भजन उनकी पहचान देता है।
1: जी। तो ज्यादा से ज्यादा देवी देवता की ज्यादा नहीं है, ज्यादा कृष्ण जी का ज्यादा महत्व है सबके।
0: अच्छा।
1: पास ज्यादा प्यारा है ना, किशन जी तो सबको प्यारा है,
0: बाल गोपाल
1: है। बाल गोपाल
0: जी। तो आज आप हमें भजन में और आगे क्या बताना चाहेंगे?
1: आज पहले हम एक मीरा की भजन, क्योंकि मीरा भजन में अच्छा। सबसे फेमस है मीरा बाई का जो भजन है, मीरा भजन जो है
0: जी,
1: तो मीरा भजन हम सुनाते हैं।
0: वो तो श्याम की दीवानी।
1: हाँ, श्याम की दीवानी। जैसे देखो उसको जो पहचान है ज्यादा,

0: एक ही लाइन में मैं बता सकती हूँ कि ये गिरिधारी जो लाल है उसको तो दीवानी थे
1: जी,
0: लास्ट तक वो गिरिधारी का ऊपर ही प्रेम ये किया
1: हमारा
0: है।
1: पूरा जीवन ही भले गृहस्थ में रही मगर फिर भी श्याम के नाम कर दिया।
0: हाँ, वही बात है। तो हर जगह में मीरा की नाम है, भजन लाए हैं मीरा की भजन। थोड़ा मैंने प्रेजेंट किया कैसे मीरा की भजन होते हैं
1: जी।
0: ठीक है, तो हम शुरू करते हैं।

0: सच में आपने जैसे बताया कि मीरा जी के भजन की तो बात ही निराली है।
1: आपने देखा इतना भक्ति प्रेम, निष्काम प्रेम, जैसे एकदम दीवानी हो गए उसकी प्रेम से, एकदम पागल जैसी
0: जी।
1: इसलिए तो मीरा की भजन इतना फेमस है, सबको मुंह में फिरते हैं।
0: भावना के आधार पर उस भजन की भाषा भी हो गई है ना। श्यामली जी, इसी के साथ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में भी हम सुनाएंगे अपने श्रोता मित्रों को ऐसा ही प्यारा सा भजन। पुनः हम लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में, आप हमारे साथ बने रहिए। फिर से हम भजन के बारे में और जानकारी देने के लिए जल्द पधारेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक में आपने एक मीठा से भजन का आनंद लिया होगा। आज हम आगे भी आपको भजन के बारे में ही जानकारी देना चाहेंगे और उस जानकारी को लेकर आए हैं श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में पुनः ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
1: हाँ जी, अभी एक भजन सुनाते हैं।
0: अच्छा,
1: ब्रह्मानंद जी की।
0: मगर उसके पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ।
1: बताइए
0: कि मैंने कहीं सुना है कि ये जो भजन, ये जो रचना है संगीत में, खास मैंने बताया सुगम संगीत की, तो वो सुना है राग ताल नियमों से स्वतंत्र एक आकर्षित रचना जो भावानुकूल शब्दों द्वारा ये गाई जाती है।
1: हाँ जी, ये तो सही है कि वे एकदम अलग से ढंग से होता है ना, ज्यादा इंसान के मन छू लेते हैं
0: जी।
1: भजन है,
0: उनकी भावनाओं को प्रदर्शित करते,
1: जादूगर की काम करते हैं एकदम। तुरंत कोई भजन करते हैं तो सब आके बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही हम सुनाते हैं ब्रह्मानंद की जो भजन है
0: जी।
1: आप सुनोगे तब पता चलेगा। ठीक है,
0: ओके।

0: श्यामली जी, ये भी बहुत सुंदर भजन, मगर उसके साथ मैं आपसे ये भी जानकारी लेना चाहूंगी, हमारे श्रोता मित्रों के मन में भी ये शायद प्रश्न उठता होगा कि ये जो भजन है उसमें कोई स्पेशल राग का ही भजन होता है या सभी रागों में भजन बन सकते हैं?
1: नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन तब भी कुछ कुछ राग होता है, जैसे भैरवी भैरव के ऊपर ज्यादा होता है, या आहिर भैरव, या शाम के जी इवन की राग के ऊपर भी बहुत सारे भजन है, या जैसे हमने पहले ही हमने किया है रामदासी मल्लार
0: जी,
1: ज्यादा से ज्यादा ऐसे राग के ऊपर बेस करके ये होता है, राग की
0: स्पेसिफिक उसके ऊपर कोई नहीं, सभी राग में ये भजन हो सकते हैं।
1: अच्छा। अगर कोई भी गा सकते हैं, अच्छा से सुर से गा सकते हैं तो।
0: और ताल कौन सा?
1: वो ज्यादा से ज्यादा दादरा और कहरवा भी ऊपर।
0: अच्छा, दादरा और कहरवा ताल में ही ये ज्यादातर होते हैं। अच्छा, और आगे आज आप हमें क्या सुनाने वाले?
1: आगे अभी सूरदास की भजन जो है बहुत सुंदर है, सब जानते हैं
0: जी,
1: वो भी एक सुनाती हूँ कैसे होता है।

0: सही कहा गया है कि भजन ये ईश्वर का गुणगान करने या प्रार्थना के लिए ही भजन की रचना की जाती है।
1: हाँ जी,
0: है ना।
1: हाँ एकदम सही बोला है आपने।
0: तो श्यामली जी, आज हमारे श्रोता मित्रों को तो आपने भजन भजन और भजन करके भगवान को याद करने पर मजबूर कर दिया।
1: हाँ जी,
0: और जाते जाते भी मुझे लगता है आप फिर से कोई अच्छा सा भजन ही सुना देंगे।
1: हाँ, हम क्या करेंगे, तुलसीदास की भजन, इसमें रामचंद्र जी का भी उल्लेख है ना, रामनवमी मतलब रामचंद्र जी, इसलिए लता जी का एक फेमस भजन है, ठुमक अच्छा। चले थे रामचंद्र।
0: वाह, बहुत बढ़िया,
1: मैं कोशिश कर रही हूँ। ठीक है।

0: बहुत बढ़िया,
1: थैंक यू.
0: आज के तो सारे एपिसोड में ऐसे लगता है भजन संध्या हो गई.
1: क्योंकि देखिए हर भजन में शेष भाग में जो जो लास्ट में जो लिरिक्स बताया गीत किया है तो उसमें सबका जितना भजनकार जो रचयिता जो है
0: उसका नाम है. जी, इसलिए जी.
1: है कि हम जान सकते हैं किसका क्या भजन है, कौन सा भजन है.
0: जी जी. श्यामली जी, अब समय देता है हमको इजाजत, लेकिन जाते जाते आप और हम रेडियो मधुबन की ओर से सभी संगीत प्रेमी मित्रों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे. सभी को नवरात्रि की एवं आने वाले त्योहार दशहरे की भी हार्दिक शुभकामनाएं. ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे. और आप अगर हमसे संगीत के बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए. हमारा नंबर है 9494151415. फिर से रिपीट करती हूँ, 9414151415. इसी के साथ फिर मिलेंगे. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. रेडियो मधुबन

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे उषा। आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम हिंसा को नो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो हम सब की जिंदगी में गहरे असर छोड़ सकता है, जेंडर आधारित हिंसा और घरेलू हिंसा। ये एक विशेष महिला और पुरुषों के बीच हो रही आपसी असमानता जिसमें विशेषकर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के बारे में है, जिसे खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। आज ये विषय क्यों हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए सुनते हैं एक रेडियो नाटक जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे आसपास हो रही घटनाओं पर आधारित है।

0: घड़ी घड़ी चार पड़ोसन खड़ी खड़ी बाता बनावे घड़ी घड़ी।
1: अरे देख देख कांता, लक्ष्मी का मिजाज, चार चार बेटियां पर घमंड तो एड़ो करे, जाने बेटिया कोनी बेटाएं।
2: सही कह रही तू, मोट की छोरी ने तो अत्री बिगाड़ रखी कि आखा गांव में फटपटो लेन दौड़ती परे, वो छोरे की नैन पेंट शूट पेरे हैं।
3: छोरा की नैन बॉयकट रखे, आदमी का सारा काम छोरी करावे, पंचायत में जानो वे कि राशन पानी लाड़ो वे, दवा खाने जानो वे कि भले छोटी बेनिया के स्कूल को काम वे तो भी।
4: अरे एकदम देखने नाम कड़ाई माँ बापरो जदी था पड़ी।
5: अरे चुप चुप, वह देख लक्ष्मी आ रही है।
6: अरे कई बात है, आज तुम्हारी सारी सहेलियां एक साथ में।
3: लक्ष्मी आओ मारी सातन आओ, आज तो तू घनी खुश लाग रही है, अणी खुशी को राज।
6: खुशी की तो बात है।

0: आज तो
1: दीपक आपकी सैलरी रहेगी 35,000 और कविता आपकी सैलरी रहेगी 25,000। इज इट ओके?
2: सर ये अंतर क्यों है जब हम दोनों का काम एक ही है, पढ़ाई भी एक है, इंटरव्यू भी एक ही रहा, फिर सैलरी में अंतर क्यों?
1: क्योंकि दीपक लड़का है, महिलाओं की अपेक्षा पुरुष लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अक्सर पुरुष लोग छुट्टियां कम रखते हैं, महिलाएं ज्यादा छुट्टियां रखती हैं। जैसे कुछ दिनों बाद आपकी शादी हो जाएगी, फिर प्रेगनेंसी वगैरह वगैरह, कभी क्या कभी क्या, लेकिन पुरुष लोग ऐसा नहीं करते हैं इसीलिए।
2: पर सर मैं भी तो उतना ही काम करती हूँ, लॉजिकल टेस्ट में तो मुझे उनसे अधिक मार्क्स मिले हैं। रही बात शादी की, सर क्या गारंटी है कि मेरी शादी इसी साल होगी? अगर होगी भी तो हो सकता है मैं इसी शहर में शादी कर लूं। सर जेंडर आधारित रूढ़िवादिता से आपका ये भेदभाव सही नहीं है सर।
1: कविता तुम सही कह रही हो, मुझे जेंडर के आधार पर ऐसा सोचना नहीं चाहिए, मुझे आपकी मेहनत और काबिलियत के अनुसार ही सैलरी देनी चाहिए। मैं अभी डॉक्यूमेंट्स में बदलाव करता हूँ।
2: थैंक यू सर।
3: स्वागत है आप सभी का फिर से हमारा और आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम हिंसा को नौ में, जहां पर हम लिंग आधारित हिंसा और घरेलू हिंसा के बारे में जानने की कोशिश की है। हम आशा करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और आपने इसमें से कुछ नया भी सीखा होगा। दोस्तों लक्ष्मी जैसे लोग हमारे जीवन के हर मोड़ पर मिलते हैं। अगर थोड़ा और गौर करेंगे तो हो सकता है हमारा घर, परिवार और दफ्तर के आसपास ही होंगे। इन लोगों को हमारी तरफ से एक हौसला की आवश्यकता है, क्योंकि वो कुछ अच्छा और समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। दोस्तों आज के इस विषय को बेहतर समझने के लिए स्वागत करते हैं हमारी एक्सपर्ट का और समझेंगे इनके द्वारा लिंग आधारित और घरेलू हिंसा में अंतर क्या है।
4: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हिंसा के नो इस कार्यक्रम में हम हर बार एक नए मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम जिस विषय पे बातचीत करने वाले हैं वो है जेंडर बेस्ड वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि घरेलू हिंसा और लिंग आधारित हिंसा। दोस्तों हमें मदद करने के लिए, समझ को बढ़ाने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं सुलेखा जी। आप 1998 से फेमिनिस्ट लीडर के तौर पे महिला समाख्या, इंसाफ एंड एक्शन इंडिया ऐसी संस्थाओं के साथ आप काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। वर्तमान में आप कैंपेन कोऑर्डिनेटर हैं बेटी जिंदाबाद कैंपेन का एक्शन इंडिया के संस्था में। तो स्वागत करते हैं सुलेखा जी को। नमस्ते मैम।
5: नमस्ते। लिंग आधारित हिंसा गर्भ में से ही महिलाओं के साथ शुरू हो जाता है। जब कोई भी महिला गर्भ धारण करती है तो सबसे पहले परिवार और समाज की उम्मीद उसके बेटा होने की चाहत को रखने लगता है और वहीं से हिंसा शुरू हो जाती है। देखा जाए तो गर्भ से ही कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जेंडर भेदभाव शुरू हो जाता है, लड़का की चाहत, लड़के की चाहत। उसके बाद जन्म के समय खुशी, फिर परवरिश में देखा जाता है, उसके दूध पिलाने से लेकर के और उसके देखभाल तक की गैप्स को हम देखते हैं। हर पल लड़की और लड़का में भेदभाव होता है, चाहे उसके खान पान को लेकर हो, चाहे उसकी परवरिश को लेकर के हो, चाहे उसके खिलौने को लेकर हो। फिर आगे जैसे जैसे वो किशोरावस्था तक बढ़ती है तो उसके पढ़ाई लिखाई पर भी, वो कौन सा साइड में पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगी और साइंस पढ़ेगी या कॉमर्स पढ़ेगी, ये परिवार तय करता है। जबकि लड़का लड़की को खुद तय करना चाहिए कि हमारा भविष्य क्या होगा। वही जब वो किशोरावस्था से ऊपर जाती है 16-17 साल से, वहां लड़की के प्रति शादी की चिंता परिवार वालों को सताने लगती है, और जबकि लड़के के प्रति उसके रोजगार को लेकर के। तो इस तरीके से हर जगह जन्म से लेकर के और मरते दम तक जेंडर बेस्ड वायलेंस होता रहता है। एक महिला की जिंदगी बचपन जवानी और बुढ़ापा तीन पापे टिकी है, पिता पति पुत्र। एक इंसान होने के नाते, एक महिला होने के नाते उसे हर जगह एक मर्द के अनुसार चलना पड़ता है, और कितने बच्चे पैदा करना है, फैमिली प्लानिंग करनी है कि नहीं करनी है, वो एक औरत के हाथ में नहीं होता है, उसके शरीर पर खुद का हक नहीं होता है। इस तरीके से एक औरत की जिंदगी बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक तीन पापे गुजरती है, और ये बहुत बड़ा वायलेंस है। कहीं ना कहीं एक औरत वहीं पर खत्म हो जाती है एक दूसरे के हाथ में, उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं रहता है। इसके अलावा जेंडर बेस्ड वायलेंस हमारे परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है, श्रम विभाजन में भी होता है। कृषि में महिलाएं 80% काम करती, महिलाएं किसान कौन है आपके नजर में भी, अगर हम किसान सब कहेंगे तो एक किसान पुरुष ही नजर आएगा। तो काम हर जगह महिलाओं से लिया जाता है और उसका दाम नहीं तय होता। तो इस तरीके से देखा जाए तो हर जगह महिला पुरुष को डिवाइड किया गया है, और ऊंचा पद पैसा सम्मान वाली जगह पर पुरुष हावी हैं, और जहां पर उनका काम की वैल्यू का दाम कम से कम और कहीं तो मान्यता ही नहीं, जैसे महिला किसान मानते ही नहीं महिला किसान। तो ये बहुत बड़ा खुद के काम की वैल्यू एक महिला ही नहीं समझ पाती, क्योंकि समाज ने उसे स्थापित नहीं किया, पर बदलेगा। हम महिलाओं ने उस पर बोलना और समझना, अपने काम को गिनना, अपने काम को महत्व समझना शुरू किया है, परिवर्तन आएगा, एकदम धीरे धीरे आएगा। उसी तरीके से घरेलू हिंसा देखा जाए तो घरेलू हिंसा एक गर्भवती महिला के साथ शुरू होता है
4: जी।
5: जेंडर भेदभाव, जेंडर आधारित हिंसा गर्भ में शुरू होता है कि लड़का चाहिए लड़की चाहिए, और घरेलू हिंसा एक गर्भवती महिला के साथ शुरू होता है कि तुमने बेटा जन्म नहीं दिया, तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, तुम्हारी शक्ल देखने से सुबह खराब हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या नाम है, शादी का, दूसरी शादी का वो देना कि तू तो बेटा दे ही नहीं सकती, घर से निकाल देना, खर्चा ना देना, बच्ची होने पर उसको छोड़ देना, इस तरीके की चीजें। और साथ साथ घरेलू हिंसा कई तरीके का होता है। घरेलू हिंसा घर एक छत के नीचे रहने वाले, चाहे वो पति हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो प्रेमी हो, लिव इन में भी लोग रहते हैं। अगर एक प्रेमी भी घरेलू हिंसा करता है, एक तो मानसिक हिंसा, हमारे सामने ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां औरत ने लगातार बच्चे हुए, उसकी हालत बहुत खराब हुई, हम लोगों ने उसे कहा कि आप कोई फैमिली प्लानिंग टेक्निक अपनाओ, तुम्हारी ही जिंदगी बर्बाद हो रही। आशा वर्कर ने उसे दिया और उसने अपनाया, उसके पति को कहीं पता चल गया, इतनी पूरी तरीके से पीटा, मतलब 6 महीने हॉस्पिटल में थी। फैमिली प्लानिंग में सारी विधियां सरकार ने औरतों के लिए बनाई है, एक विधि केवल पुरुष के लिए बनाई, और उसको भी अपनाने के लिए सरकार पुरुषों को तैयार नहीं करा पा रही है, बात करने की हिम्मत नहीं है हेल्थ वर्करों का। एक पुरुष से जाएगा और बोले कि आप अपनी क्या नाम है फैमिली प्लानिंग के लिए ये सुविधा को अपना सकते हैं, इतना जबरदस्त कंट्रोल है सत्ता की।
3: तो सुना दोस्तों हमारी एक्सपर्ट को लिंग आधारित और घरेलू हिंसा पर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का हमारा ये मकसद था कि आप सभी को जागरूक कर सके और इस समस्या के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। यदि आप या आपके आसपास किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी है जो इस समस्या का शिकार हो रहा है तो कृपया उनकी मदद करने का प्रयास जरूर करें। आपका एक छोटा सा कदम महत्वपूर्ण हो सकता है और उनकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। हमारा लक्ष्य है समाज में जेंडर समानता की दिशा में कदम बढ़ाना और हर किसी को सुरक्षित और समृद्ध जीवन जीने का अधिकार दिलाना। तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हैं एक गीत की ओर, आप सुनिए ये गीत और मैं आरजे ऊषा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
0: सपनों पूरों

0: मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी दोस्तों हम ले आए हैं कार्यक्रम नई दुनिया नया जमाना, और नई दुनिया नया जमाना में हर बार हम कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो नए जमाने को बनाने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए भी दिलचस्प लोग हैं क्योंकि उनके अंदर एक कमाल का जज्बा है जो उनके मुंह पर आने वाले हर चैलेंज को, हर मुसीबत को वो कुछ ऐसे देखते हैं जैसे ये एक अपॉर्चुनिटी है, और वास्तविकता में यही चीज हम सबको खास बनाती भी है। एडवर्सिटी हमारे सामने जितने आए, उन मुश्किल घड़ियों में भी हम उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें, उसके प्रॉब्लम के अंदर से कुछ सॉल्यूशन ढूंढ कर निकल आए, ये हमारी सोच से, हमारे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से होता है। और रेडियो पर इस कार्यक्रम को जब हम ले आते हैं तो यही कोशिश हमारी भी होती है कि हम ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं जो समस्या नहीं पर समस्या के अंदर समाधान को खोजें, जो प्रश्नों के अंदर उत्तरों को खोजें, और जहां सारे लोग परेशानियों की तरफ अपनी आंखें उठा रहे हो तो वहां पर ये परेशानियों से हटकर जवाबों की तरफ अपना रुख ले जाएं। और हमारी इसी कोशिश में हम जानते हैं कि हर हफ्ते कुछ ऐसे लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो नई दुनिया बनाने के प्रयास में हैं। आखिर नई दुनिया क्या है दोस्तों? नई दुनिया सिर्फ हमारी बदली हुई विचारधारा है जिससे ये दुनिया बदल सकती है। आरजे शुभा और आरजे श्री, हम दोनों आपके साथ आ चुके हैं इस हफ्ते नई दुनिया नया जमाने में। आरजे शुभा, आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आरजे श्री आपका। एंड जैसे आपने कहा कि हर हफ्ते हम नए गेस्ट के साथ जुड़ते हैं, कोशिश करते हैं जानने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं हमारे प्रकृति के लिए और नई दुनिया नया जमाना लाने के लिए वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसे आज हमारे साथ दो विशिष्ट अतिथि हैं, आरती गुप्ता मैम और चिंटू यादव जी। आरती गुप्ता मैम WWF के साथ जुड़ी हुई हैं, वेब क्यूरेटर हैं शिमला से, और चिंटू यादव जी हैं जो माउंट आबू से हमारे बीच हैं और आप सभी उनको जानते हैं। और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
3: ओके, WWF एक संस्था है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे उसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है, और मैं जैसे आपने कहा कि मैं शिमला से हूँ, तो मेरे पास जो कारोबार है वो हिमाचल स्टेट का है। और WWF का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो पहले इसका नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था, बट अब क्योंकि हम लोग नॉट ओनली वाइल्ड लाइफ बट हम बहुत सारे और मुद्दों पे भी काम कर रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, वेटलैंड्स, इसलिए वो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर उसका नाम कर दिया गया। और हिमाचल में भी ये ऑलमोस्ट 20 साल से ऊपर हो गया है कि स्टेट का एक विंग खुला था जहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। तो इसका बेसिकली WWF एक कंजर्वेशन सोसाइटी है जो वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन में काम करती थी, बट वाइल्ड लाइफ के साथ साथ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक स्टैंड अलोन चीज़ तो है नहीं, अगर आप देखें तो वाइल्ड लाइफ पर्यावरण जो है वो आदमी, जानवर, पेड़ पौधे सब ही पर्यावरण बनाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के मद्देनज़र रखते हुए हम कम्युनिटीज़ के साथ और स्कूल के बच्चों के साथ, WWF का ये सारा काम है, अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना, स्कूल के बच्चे हो गए, कॉलेज के बच्चे हो गए, कम्युनिटीज़ हो गई, कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं अपने वाइल्ड लाइफ का सब मिलकर और जानकर, ये WWF का काम है। तो कहीं भी हिमाचल हो या पहाड़ हो या नदी हो, आपके जैसे कंजर्वेशन कर रहे हैं, हार्डकोर कंजर्वेशन फ्रॉम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन है आपका, राइनोज पे कंजर्वेशन है आपका, रिवर डॉल्फिन्स पे है, टर्टल्स पे है, तो हर टीम अपनी अपनी जगह कार्यरत है और अपनी अपनी जगह काम कर रही है। बट हिमाचल में हम बेसिकली अगर देखें तो हम कम्युनिटीज़ और

0: फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कम्युनिटीज के साथ, स्कूली बच्चों के साथ, सबके साथ मिलके कंजर्वेशन का काम करते हैं।
1: बहुत ही सुंदर बात आपने बताई आरती जी। जैसे एक व्यक्ति के बारे में अगर मैं पूछूं कि एक व्यक्ति आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझना चाहता है,
2: आरती जी वो श्री जी कहना चाह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर किसी व्यक्ति को समझना है तो वो कैसे समझ सकता है कि वर्ल्ड जो WWF काम कर रहा है, तो उसकी थोड़ा और क्लैरिटी के साथ वो समझ सकता है।
0: ओके, सो WWF जो संस्था है वो हार्डकोर, आपको समझाएं हम अगर, तो वो हार्डकोर स्पीशीज के साथ भी काम करते हैं जिसमें बहुत साइंटिफिक काम होता है, आपका रिसर्च होता है, चाहे वो टाइगर्स हो गए, स्नो लेपर्ड्स हो गए, एंड साइंटिस्ट होते हैं, इसमें टीम्स होती हैं जहाँ पे ये पाए जाते हैं जीव जंतु, उन्हीं इलाकों में वो रहते हैं, इनको स्टडी करते हैं और इनके ऊपर इनका संरक्षण का काम करते हैं। जबकि जैसे हम लोग हैं स्टेट्स में हैं, तो हम स्टेट्स की टीम थोड़ी अलग रहती है, एक है जो आपकी स्पीशीज की टीम है वो हार्डकोर स्पीशीज काम करती है, जो स्टेट्स की टीम है वो अवेयरनेस और कम्युनिटीज के साथ मिल के सोशल सेक्टर में काम करती है। तो है वाइल्ड लाइफ का ही विंग बट अलग अलग भागों में बटा हुआ है। एक हार्डकोर साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के साथ मिलके हम काम करते हैं जिसमें हम स्कूली बच्चे हो गए, कॉलेज के बच्चे हो गए, यूनिवर्सिटीज के हो गए, और साथ में हम जो कम्युनिटीज रिजर्व तो उसमें हम जागरूकता तो फैलाते ही फैलाते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ का मेन खत्म होने का कारण ऑब्वियसली इंसान ही है, तो इंसानों को कैसे ये समझ आए कि हम वननेस इन वाइल्ड लाइफ, जैसे मैन एंड एनवायरनमेंट का वननेस की हम बात करते हैं, तो हम मिलकर कैसे रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें उनका हंटिंग करना है, क्योंकि आज तक तो हम साथ में मिलते आए हैं, मिलके रहते आए हैं, बट क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि एक तरफ तो हमारी जरूरतें हैं जिसमें हम बोलेंगे कि हमें आगे बढ़ना है और डेवलपमेंट करनी है, बट दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ है जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ के साथ आपके पेड़ पौधे हैं जिनके बिना शायद हमारा गुजारा हो नहीं सकता, और वो कोरोना से बेटर हमें कोई समझा नहीं सकता था। तो इस तरह से हमारी डिफरेंट टीम्स होती हैं, बच्चे इसमें वॉलंटियर्स भी बन सकते हैं, बिकॉज एक ऑनलाइन अगर आप जाएंगे तो वॉलंटियर फॉर्म भर के स्कूली बच्चे हैं या बड़े हैं या कोई भी जो इसमें सहयोग देना चाहता है वो वॉलंटियर भी बन सकता है। साथ में इसमें जो हम प्रॉपर लेते हैं वो इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, अगर कोई इसमें आना चाहे तो। इंटर्नशिप फिर आपको स्टेट ऑफिस के पास एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि आप इसमें इंटर्नशिप करना चाहते हैं। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, हर लैंडस्केप अलग सिखाता है, पहाड़ अलग है, मरीन लाइफस्टाइल अलग है, केरला में कुछ और होगा, असम में कुछ और होगा, तो इसमें बहुत सारा स्कोप भी है अगर कोई चाहे तो इसमें अंदर आना, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है बिकॉज आप ग्रास रूट्स के साथ डायरेक्टली इन टच रहते हैं।
2: हाँ जी, और जैसे मैम कि अभी अभी हमने वन्य जीव सप्ताह भी मनाया,
0: जी जो वन्य सप्ताह होता है वो शायद हम सब जानते हैं वो क्यों मनाते हैं, क्योंकि एक तरह से जो हम साल भर नहीं करते वो हम दिनों के माध्यम से करते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो गया या वर्ल्ड वेटलैंड डे हो गया, तो इसी तरह से एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के लिए जो ये वाइल्ड लाइफ वीक आता है जो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है, वो एक तरह से एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच पाएँ और समझा पाएँ कि हमें वाइल्ड लाइफ को क्यों कंजर्व करना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952 में किया था शुरू, तो इसके माध्यम से हम हर दिन अलग एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें कॉम्पिटिशन्स हो गए, आपके ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स हो गए, फिर हमने मान लीजिए फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन हो गया, लिख कुछ आप ऐसे लिख सकते हैं, कुछ अपने विचार लिख सकते हैं, फिर एक साइकिलिंग इवेंट था जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ कराया था जो रिजर्व एरिया के अंदर था, वो भी जागरूकता फैलाने का था। उसी तरह अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ही पोंग डैम में, हिमाचल में पोंग डैम है, वहाँ बर्ड रिंगिंग का कार्यक्रम रखा है जिसमें चिड़ियों को टैग करेंगे और ना साल भर बाद फिर उसको स्टडी करेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कार्यक्रम है स्कूल के बच्चों के माध्यम से ऑनलाइन, अब क्योंकि हमारे यहाँ जैसे चल रहा है हर घर पाठशाला, एक सरकारी स्कूल के बच्चे जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एंड ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से है, तो उसमें हम फन एक्टिविटीज़ से, जैसे आज सैटरडे है तो वो मस्ती की पाठशाला में हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखेंगे जो बच्चे घर बैठे बैठे उसमें भाग ले सकते हैं और कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ के बारे में समझें जानें। ये हम माध्यम देखते हैं, वेबिनार्स हो गए, आपके गूगल टॉक्स हो गई, इसके माध्यम से हम ये जागरूकता फैलाते हैं। और इस साल तो इसलिए अलग था क्योंकि बाहर निकल के आप बर्ड वॉचिंग नहीं कर सकते, बाहर जाके आप ट्रेल्स पे नहीं जा सकते, तो जो घर बैठे हम, जैसे मान लीजिए डिफरेंट पेड़ पौधे आपके घर के आसपास क्या है, उसी के ड्राइंग कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और कौन सी चिड़िया आती हैं वो भी जान सकते हैं। सो सिर्फ ऑब्जर्वेशन, आंख और कान खुले रखने की बात है, पर्यावरण और कुछ नहीं मांगता।
1: जी, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही आरती जी। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा क्योंकि जो हमारे साथी जुड़े हैं, हमारे साथ जो प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत बार उनको लगता है कि एनवायरमेंटलिस्ट बहुत बढ़िया काम कर रहे होते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बातें होती हैं उनकी, मगर हम हमेशा इस कार्यक्रम के दौरान ये जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्या बातें हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो आपने अपने लाइफ में की हैं, जो सिंपली हम अपने लाइफ में भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ऐसे कुछ चार पांच बातें आप हमारे दोस्तों के साथ शेयर कर सकें कि ये सिंपल चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए हो, पर्यावरण के लिए हो, या जो भी ऐसे।
0: सी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तो हम नाम दे देते हैं, देखिए हम सब कंजर्वेशन अपने लेवल पे हर कोई करता है, सिर्फ जागरूक होने की बात है। और वो कहना कि वो तो चलिए एक प्रोफेशन हो गया, बट हर इंसान अब सांस लेता है, आंख झपकता है, तो ये चीजें हम कर रहे हैं। वैसे ही जो कंजर्वेशन की बात है वो हमें करते रहना चाहिए, ये मतलब ये नहीं कि आप डिफाइन करेंगे कि हमें कंजर्वेशन करना है या हमें ये बचाना है, बिकॉज वो हमारे लिए इतना जरूरी है। हवा है वो हमें साफ चाहिए, हम सांस ले रहे हैं तो उसको बचाने की तो बात ही नहीं आती है, वो जरूरत है हमारी। तो सिमिलरली हम जैसे आंख झपकते हैं, हम सोचते नहीं, हम करते हैं, वो होता है, वो बहुत नेचुरल है। तो वही कंजर्वेशन के लिए भी है कि अगर हम इंसान हैं तो हमारा भी हक बनता है कि हम कहीं ना कहीं जिस जहां से बड़े हुए, उत्पन्न हुआ, मैं पहाड़ में पली बड़ी, पहाड़ में ही काम कर रही हूँ, बाय चॉइस है, ये नहीं कि नीचे बड़े शहर में नहीं आके काम कर सकते, बट नौकरी नौकरी होती है। बट अगर आप छोटी से भी स्तर पे अगर आप काम करें, मतलब छोटी जगह में रहने का फायदा ये है कि आप थोड़ा सा भी अच्छा अगर काम करेंगे तो वो नजर आता है, दिखता है, सबसे बड़ी बात ये है। और वो छोटे छोटे आपके सहयोग, लोगों का, दोस्तों का, जागरूकता होना, और किस तरह से हम जब पले बड़े थे, छोटे थे, तो क्या हालत तब थी और अब क्या है, बहुत फर्क पड़ गया है उससे अब तक ऐसी चीजों में। तो अपनी तरफ से छोटे छोटे प्रयास जो हम करते हैं, बच्चे पढ़ते आते हैं, लाइट स्विच ऑफ कर दो, पानी का नल बंद कर दो, ये अपने आप समझ आना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये कोई समझा नहीं सकता, ये हमारा एक तरह से जरूरत है। वो ठीक है, अब लाइट है तो आप बोलेंगे ऑफ कर दें, बिना लाइट के भी तो पहले लोग रहते थे, तो कितनी मुश्किलों से लोगों ने काटा है, और 200 साल 500 साल से हमारी ये ह्यूमन रेस चलती आ रही है और डेवलपमेंट भी होती रह रही है। बट डेवलपमेंट के साथ आप कैसे छोटे छोटे स्तर पे अपने एफर्ट्स कर सकते हैं, अपने आसपास सफाई रखना हो गया, अपने आसपास आपके कितनी चिड़ियां थी जो आपने कभी चलते फिरते नजर भी नहीं मारी होगी कि हमारे आसपास होती है, ध्यान भी नहीं दिया होगा, कितने पौधे थे जो मर गए, रोड आ गए, खत्म हो गए पौधे, पहले कच्चे रोड होते थे अब पक्के हो गए, कितनी जगह से पानी निकलता था, नेचुरल वाटर होता था, वो भी खत्म हो गया। तो ये चीजें अगर आप ऑब्जर्व करें फिर आप तह तक पहुंचे, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े वननेस के साथ रहते थे पर्यावरण के साथ। आप देखिए चप्पल पहन के कोई पानी के सोर्स के पास नहीं जाता था, अब क्या है जूते पहने और चल दिए, तो वो संरक्षण था, साफ था, कोई सीमेंट से अपने नदी नालों को पक्का नहीं करता था क्योंकि सीमेंट की मियाद सिर्फ 50 साल है, वो चूना मिट्टी और पत्थर से करते थे और वो 200 साल तक भी आपके पानी के सोर्स जिंदा थे। तो एक जो समझ थी पुराने लोगों में जो शायद अब गुम होती जा रही है, उसको कहीं ना कहीं समझना, कि अब हम बच्चे होते हैं तो हम बच्चों को बोलते नहीं करना, बट रीजन नहीं देते क्यों नहीं करना, अगर उनको समझाया जाए क्यों, तो वो समझ आ जाएगा जो शायद हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समझाते आए थे आज तक, और उसकी वजह से हम आज यहाँ हैं। बट हमारी जेनरेशन ने, अब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, जो 200 साल में क्लाइमेट चेंज हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, वो हमने 50 साल में कर दिया, हम इतने मॉडर्न और इतने फास्ट हैं। तो इसको समझने की जरूरत है कि हमने ही शुरू किया है, हमें ही सोल्यूशन ढूंढना है, और सोल्यूशन हमारे बड़े बुजुर्गों को सबको पता था, जो हम अब योग से योगा हो गया और फिर हम वापस योग करने जा रहे हैं, तो वो चीज़ समझें ये नहीं कि हम मतलब कोई साइंटिस्ट होना है, मैं बहुत बड़ी इंसान हूँ, मैं तो एक तुच्छ सी प्राणी हूँ जो अपना कार्य कर रहे हैं, थोड़ा आंख कान जैसे मैंने बोला खुले रखें, आसपास देखें, ऑब्जर्व करें और एक्शन लें, क्योंकि हम बातें खूब करते हैं बट हम काम नहीं करते. अगर हम छोटे छोटे चीज़ों से के माध्यम से भी करेंगे, समझेंगे कि बुजुर्गों के इतने ताल क्यों बचे थे, बारिश क्यों होती थी, तो क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है बट हम अपनी अपनी जगह में चेंज ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते. तो मेरे ख्याल से मानना है कि कोई एनवायरमेंटलिस्ट और कोई इतना बड़ा नाम की ज़रूरत नहीं है. हम सब अपनी जगह पे एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं. जब तक हम अपने सोच समझ के एफर्ट कर रहे हैं अपने आसपास को बचाने के लिए, तब तक सब बचा है. जिस दिन हम ये छोड़ देंगे उस दिन आप देख ही रहे हैं हो क्या रहा है. तो हम जड़ों से दूर होते जाएंगे तो यही होगा. तो डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, ये नहीं कि नहीं, बट या एक बैलेंस जरूरी है. जी
1: जी ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं है या हम चीजों को नहीं जानते. हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत ही सोच समझ कर इन चीजों के ऊपर काम किया है, ऐसा आप कहते हैं. आपने ये भी कहा कि डेवलपमेंट भी जरूरी है, बट कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट हम देखने को मिलता है.
0: एब्सोल्युटली,
1: जो पुराने जनरेशन का विजडम था वो हमारे तक नहीं मिला या फिर हमारे आगे की पीढ़ी तक वो नहीं मिल रहा है. इसके लिए कोई भी वजह क्यों ना हो, आप क्या देखती हैं कि ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं कि हम अपने इस विजडम को आगे के जनरेशन तक के लिए पहुंचाएंगे.
0: सबसे पहली बात जो मुझे खटकती है वो ये है कि हमारा अपना बड़े बुजुर्गों से एक कनेक्ट खत्म हो गया है. तो अगर आप शुरुआत करने के लिए, हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं बट अगर हम घर से ही शुरुआत करें, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम, तो अगर आप घर में ही देखें तो आप उनसे ही अगर समझना, बच्चे घर में बैठे हैं कहानियां सुनाते थे, कितनी सारी कहानियां सुनाते थे, तो कहानी में भी एक सीख जुड़ी होती थी कहीं ना कहीं. तो वो सीख के माध्यम में हमारे पुराने गीत हैं, गाँव के गीत होते हैं जिसमें चिड़िया पौधे पत्तों के बारे में ही बात करते हैं. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हम घर से शुरू कर सकते हैं, कॉन्शियसली समझ सकते हैं. आई नो शहरों में थोड़ा डिफिकल्ट है बट इतना मुश्किल भी नहीं है. दादा दादी नाना नानी घर में हैं, उनसे समझें कि कैसे होता था, कैसे रहता था. ठीक है, हम वापस उन तौर तरीकों पे नहीं जा सकते बट जब हम बाहर हों तो शायद वो चीज़ें फॉलो कर सकते हैं. क्योंकि एक जैसे हम बोलते हैं पहाड़ में एटिकेट्स होते हैं, माउंटेन एटिकेट्स होते हैं, कि आप बातें कम करें, एक लाइन में चलें, एक के पीछे एक चलें, आप का आन खुले रखें, क्योंकि आपको नेचर ही सिग्नल देती है. मान लीजिए बारिश आने वाली है या तूफान आने वाला है या बर्फ़ पड़ने वाली है. अब बर्फ में, अब बहुत सारी बर्फ़ पड़ी है, आप खूब ज़ोर से चिल्ला के हु हल्ला बात कर रहे हैं, म्यूज़िक लगा रहे हैं, तो एवलांच भी आ सकता है. तो बहुत सारी ऐसी वननेस की बातें जहां होती हैं कि हमें पर्यावरण की तरफ थोड़ा कॉन्शियस होना है. सो ये तो हो गई कि पहाड़ों की बातें हो गई कि आप बाहर जा रहे हैं, थोड़ा कॉन्शियसली चल रहे हैं, सोर्सेस को गंदा नहीं कर रहे हैं, कहीं कूड़ा नहीं फेंक रहे हैं, क्योंकि कितना साफ करेंगे. पहाड़ में तो आसान है ना, यहाँ तो झाड़ू लगाया और नीचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया. बट आप ये नहीं जानते कि वही सारा कूड़ा कचरा कहाँ मिल रहा है, वो पानी में मिल रहा है और वही पानी आगे किसी को पीने के लिए जा रहा है. तो अगर आप थोड़ा सा जहाँ भी रहते हैं अपने लेवल पे थोड़ा बड़े बुजुर्गों से समझें और फिर ये देखें कि आज की हालत क्या है और फिर हर का एफर्ट करने का अलग तरीका रहता है. तो कोई लिखने के माध्यम से करता है, कोई बातचीत के माध्यम से करता है और कोई करने के माध्यम से करता है. ये नहीं कि नहीं कर रहे हैं, दिखता हो ना दिखता हो बट आप अपना एफर्ट पक्का डाल सकते हैं. चाहे घर में थोड़ा छोटा आपने गार्डन बनाया है उसके माध्यम से कर रहा है कोई कोई, ठीक है. ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है.
1: जी, आखिरी चीज आपसे पूछना चाहता हूँ आरती जी, जैसे अगर एक मैसेज है जो आप हमारे यंगस्टर्स के लिए देना चाहें, जो हमारे सुनने वाले हैं, एक चीज जो आज से उनको करना है, one thing that they could change from today onwards, वो क्या चीज होगी?
0: One thing that they should pledge as a torch bearers of the future, I would say be very conscious as to आप क्या कर रहे हैं. ये नहीं किसी ने आपसे कहा इसलिए, आप इसलिए करें, जो भी एफर्ट करें अपने स्तर पे जो भी करें वो इसलिए करें क्योंकि आप करना चाहते हैं एंड यू वांट टू मेक अ डिफरेंस. चाहे आप पेड़ लगाएं, तो पेड़ आप एक दिन लगाते हैं उसके बाद पूरा साल भर भूल जाते हैं कि मैंने पेड़ लगाया था. ऐसा ना करें, आप जाएं तो उसको एटलीस्ट 3 साल तक आप कहीं ना कहीं उसका नर्चर करें और देखें वो पेड़ से, मतलब छोटी सी कलम से पेड़ बने. तो इस तरह से ये एक छोटा सा माध्यम था. चाहे आप पानी बचा रहे हैं, हम बहुत सारे भाषण तो बहुत देते हैं, बट करने पे आने पे हर इंसान का अपना कॉल है. तो आई वुड से प्लेज बी कॉन्शियस कि जो भी आप कर रहे हैं आप उसको आगे निभाएंगे. ये नहीं कि किसी ने कहा तो आपने आज के लिए कर दिया और फिर भूल गए. सो वो कॉन्शियसनेस से अगर आएगा तो आप यू विल लिव विद इट. तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता उस चीज को. सो एफर्ट्स आर योर ओन. आई मीन आई एम नो पर्सन टू टेल कि आप ऐसे कीजिए. वो आपको खुद डिसाइड करना है. द डिसीजन हैज टू बी योर्स. बट क्योंकि हम हवा यहीं से लेते हैं, हमारा जीवन नेचर से है, तो प्लीज थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए. नहीं तो नेचर, हम 100 साल लगाएंगे खत्म करने में, नेचर एक दिन में खत्म कर देगी. सो या
2: जी. एंड थैंक यू सो मच मैम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे श्रोताओं को साथ ही साथ दर्शकों को भी आपने काफी कुछ जानकारी. एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
0: थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू जी.
2: तो आरती गुप्ता मैम हमारे साथ जुड़ी हुई थी और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया कि कैसे WWF काम करती है, साथ ही साथ नेचर क्या है, एनवायरमेंट क्या है. और हम बड़ी बड़ी बातें ना करें लेकिन छोटे छोटे जो काम है उसे हम करते रहें तो हम जल्दी परिवर्तन को ला सकते हैं. जैसे श्री उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन में पॉल्यूशन लाने में हमने बहुत जल्दी जल्दी किया ये कार्य को, हमारे पूर्वजों से भी बहुत फास्ट तरीके से. तो ऐसे भी हम अच्छे काम भी करें तो ऐसे भी हम प्रकृति का ख्याल रख सकते हैं. जी श्री.
1: जैसे मैं अभी आरती जी से सुन रहा था तो बहुत सारी अच्छी बातें मेरे को सुनने को मिली. कहीं ना कहीं हम अपने पुराने जनरेशन के पास जो विजडम थी, जो समझ थी, उस समझ को अपने जनरेशन तक आगे नहीं लेके आ पाए. और बीच में ये जो डेवलपमेंट के नाम पे जो हमने गड़बड़ियां की, इसकी वजह से आज बहुत नुकसान हमें देखने को मिल रहा है. और वो अभी भी कहते हैं कि हमें कोई ज्यादा देर नहीं की है, हमें सिर्फ वापस उन चीजों को सीखना है और उन चीजों को करना है. और वो चीज जो हम सदियों से करते आए हैं, ये जो वननेस की फीलिंग है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सारा विश्व एक परिवार है. ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये जानवरों के लिए, पशु पंछियों के लिए, ये सारी धरती हमारा घर है. जब हम इस भावना से चीजों को करने के लिए, हमारे साथ एक और यंग फ्रेंड है, एक यंग एनवायरमेंटलिस्ट है जो पर्यावरण के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक और सजग है, और हमारे लोकल है जो हमारे ही क्षेत्र में रहते हैं और हमारे क्षेत्र में उन्होंने काम भी किया है. तो उनका परिचय शुभा जी कराएंगे.
2: जी बिल्कुल. चिंटू यादव, हम माउंट आबू में आप रहते हैं और आए दिन पेपर में हम सुनते हैं और पढ़ते हैं और देखते भी हैं कि चिंटू यादव जी ने आज ये वाला सांप पकड़ा और उसे रेस्क्यू किया, जंगल में छोड़ दिया. आज भालू के लिए वो कुछ कर रहे हैं तो कल जो जंगल में अन्य प्राणी हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं. लेकिन ये जो उनका जो लक्ष्य है और जो वो काम कर रहे हैं वो बचपन से कर रहे हैं, तो उनसे ही जानेंगे हम कि कहाँ से प्रेरणा आई उनको और अभी तक उन्होंने क्या किया है और आगे क्या करने वाले हैं. चिंटू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नई दुनिया नया जमाना इस प्रोग्राम के अंतर्गत.
3: तो मैंने ये काम बचपन से स्टार्ट कर दिया था. करीबन मैं होऊंगा 6 या 7 साल का, तब से मैंने इन चीजों में काम करना चालू कर दिया. ऐसा था कि पहले यहाँ पे कई लोग सांपों को देख के तुरंत उनको मारना और बाहर निकाल देना, डरना, काफी लोगों में डर था इस चीजों के लिए. तो मैं चाहता था कि अब ये छोटे से सांप होते हैं, इनको अगर लगती है, लोग एक साथ 5-5, 6-6 लोग एक साथ इतने छोटे से जीव के ऊपर डंडे मारना और उनको पत्थरों से मारना, फिर उसको मार के उसको जला देना, तो ये कई समय से देखते आ रहा था. बट वही था कि इनको कितना दर्द होता होगा, कैसा लगता होगा. फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इनको बचाऊं, इनको पकड़ के और सुरक्षित जंगल में ले जाके छोड़ूं तो इनकी जान बच सकती है और लोगों को जागरूक करूं कि इन्हें मारे नहीं, इन्हें बचाए. तो एक बार ऐसा हुआ था कि कई 5-6 जने मिलकर एक सांप को मार रहे थे रेंजर से. तो मैंने उनको बोला कि इसे मारो मत, एक छोटा जीव है. मैंने आपको अगर कोई एक जना भी कोई लकड़ी से मारता है तो आपको कितना पेन होता है. मैंने, वो तो छोटा सा जीव है तो उसको कितना पेन होता होगा. तो बोले जहरीला है, काट जाएगा, मर जाएगा. मैंने तो मैंने बोला वो आप उसको छेड़ोगे तो वो आपको काटेगा. अगर जब तक आप उसको रास्ते में नहीं आओगे, उसको छेड़े हुए नहीं तो वो आपको नहीं काटने होंगे. और ऐसा नहीं कि सभी सांप जहरीले हैं, आप सोचते हैं कि ये सांप जहरीले हैं उसको भी मार दो, वो सांप जहरीले, आपको सबसे पहले पहचान होनी चाहिए। और पहचान नहीं है तो हम हर स्कूल कॉलेजों में जाके डेमो भी करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। तो उस समय मैंने उस छोटे से सांप को पकड़ा और उसके बीच में उस डंडा उन्होंने मारा था तो बीच में घाव हो गया था, तो उसको मैंने लेके, और इतनी समझ नहीं थी तो घर की ट्यूब और वो लेके उसको लगा रहा करा काफी, बट एक दो दिन रखा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। फिर मैंने सोचा कि अब लोगों को मैं बोलूं कि सांप आया तो मुझे बुलाओ, मैं पकड़ूंगा उसको, सुरक्षित जंगल में छोड़ूंगा। तो लोग बोलते थे कि तेरे को काट जाएगा, तू मर जाएगा, बोले जहरीला। मैंने जो मेरे को होगा होगा, बट मैं उनको बचाऊंगा। ऐसे करते करते मैंने पहले मोहल्ले से स्टार्ट किया, मोहल्ले में कहीं भी सांप आता तो मुझे बुलाने आते और मैं उनको रेस्क्यू करके तुरंत सेफली जंगल में ले जाके रिलीज करता था। ऐसे ऐसे करके माउंट आबू के हर एक कोने में लोगों को पता चलने लग गया कि भाई ये सांप को पकड़ता है सुरक्षित और जंगल में छोड़ता है। तो बोले फिर हम आ रहे क्यों, हम चिंटू को बुलाएंगे और ये सुरक्षित पकड़ेगा और जंगल में छोड़ देगा। लगभग ऐसा करते करते लगभग 2007 के अंदर WII से अपने आए थे भालू रिसर्च पे रिसर्च करने। जैसे मैं भी सांपों के बारे में इतना जानता नहीं था, बस मैं उनको बचाना था, जीव है उनको दर्द होता है इसलिए उनको बचाना चाहता था। फिर WII से कुछ लोग आए थे जिनके पास मैं रहा, काफी ट्रेनिंग मिली वहां से, और हमने भालू इसको भी करा है, जैसे कॉलरिंग करते थे हम भालू को पकड़ कर उसको कॉलरिंग करते और फिर ट्रांसमीटर देकर उसे चेक करते थे कहाँ पे रह रहा है, क्या खा रहा है, उसके हर चीज के बारे में हम कंप्लीट करते थे। तो वहां से भी मेरे को काफी नॉलेज मिला सांपों के बारे में और जानकारियां मिली। ऐसे ऐसे करते करते मैंने चीज को और बढ़ावा करा कि लोगों के अंदर और जागरूक करूँ, लोग सांपों को मारना कम करें। ऐसे ऐसे करते करते मैंने लोगों को आबू रोड में पता चला। अब आबू रोड में लोगों को पता चला तो लोग मुझे वहां से काबू में कॉल करते थे, मैं तुरंत यहाँ रेस्क्यू करने आता था और मैं अकेला नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने सोचा अपने को आबू भी रेस्क्यू करना पड़ता है और आबू भी रेस्क्यू करना पड़ता है, तो मुझे लगा कि मुझे टीम बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे करते करते मैंने अपने कजन भाई को, एक है छोटा सा बेबी, छोटा ही था बहुत, झूले में यानी चल भी नहीं पाता था उस दिन, जो उस समय से मैं उसको इतना ट्रेन कर रहा हूँ, उनके मम्मी पापा भी बोलते थे कि भले छोटा सा बच्चा है, भले उसको सांप पकड़ा रहे, कट जाए काट जाएगा या चलेगी। मैंने नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं जब तक हूँ साथ में कुछ नहीं होने वाला। उसको इतना ट्रेन कर दिया, आज माउंट आबू में मैं आबू रोड ले रहा हूँ, बट वो माउंट आबू में कोई भी रेस्क्यू आता तो वो तुरंत जाके रेस्क्यू कर लेता है, और वो अभी होगा 10 से 12 साल का। और मैं आबू रोड का जो भी रेस्क्यू होता है मैं आबू रोड में चला हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ साथ साथ, जैसे आपने देखा होगा माउंट आबू में पहले जो गर्मी थी वो कोई जानता नहीं था कि गर्मी क्या होती है आबू आबू में, माउंट आबू के वो इसलिए था क्योंकि पहले जो आप पहाड़ देखते हो वो अभी भी बारिश के अंदर अगर हरा होता है तो लाल टेना होती है, झाड़ियां होती, और पहले वो पहाड़ ढके रहते थे सिर्फ पेड़ों से, बड़े बड़े पेड़ों से, जिससे चट्टाने ठंडक ठंडी रहती थी छाया की वजह से पूरे दिन, और ठंडा वो ही रहता था। और अभी ऐसा हो गया कि लोगों ने काफी पेड़ों को काट दिया है, कई ऐसा हो गया कि माउंटेनियरिंग वाले एक ट्रैक में से 4 ट्रैक निकाल देते, तो लकड़ी काटने वाले सोचते कि इधर भी कहीं रास्ता है तो वो भी उधर घुस जाते हैं और वहां जाके नया पेड़ काटते, फिर देखते हैं अलग पेड़ तो ये भी काट दो। तो ऐसे ऐसे करके जंगल धीरे धीरे कटता गया है और अब चट्टाने सब खुल गई, ओपन हो गई है, अब वो पूरे दिन तपती है और आपको वो फिर गर्म भाप देखती है जिससे ये पूरा तापमान गर्म हो जाता है और लोगों को आबू में भी अब एसी की जरूरत पड़ने लग गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वहां पे जैसे अभी कई बार अभियान लगाया लोगों ने कि एक दिन में 1-6 लाख पेड़ लगाएंगे, कोई बोलता है 1 लाख पेड़ लगाएंगे, 1 लाख पेड़ लगाने से कोई मतलब नहीं है। एक पेड़ लगाओ उसको बड़ा करो तो लगता है कि आपने 1 लाख पेड़ बड़े कर लिए। ये चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप चीजों को करो। फिर दूसरा है कि हम रेस्क्यू फ्री सेवा ही करते, जैसे लोगों को कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे से कोई चार्ज लेगा, जैसे मेरे को आप बुलाते को लगता है कि हमारे चार्ज लेगा, बोले कौन बुलाए, बोले मार दो उस को। तो मैं यहाँ तक भी बताते जाता हूँ कि हम फ्री सेवा करते हैं, जब भी कॉल करोगे तो हम खुद आते हैं वहां रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित जंगल में छोड़ देते हैं। और ऐसा नहीं कि हमने जिससे उसको आबू रोड से रेस्क्यू किया और उसको माउंट ले जाके छोड़ दे, ऐसा नहीं होता, उसको 2 से 3 किलोमीटर की रेंज के अंदर हमने छोड़ना होता है क्योंकि उनकी भी फैमिली है, उनके भी घर बार होते हैं, इसलिए हमें उनको 1 या 2 से 3 किलोमीटर के रेंज के अंदर हमें छोड़ना होता है।
2: जी, एक सवाल है चिंटू जी आपके लिए।
4: ठीक है,
2: आपके लिए एक सवाल है, वेदांत जी ने पूछा है। वो कहते हैं कि भैया आप सांपों के बहुत करीब रहे हैं, और तो आपको उनसे क्या सीखने को मिलता है, क्योंकि हर एक प्राणी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं।
3: जीव भी ये चाहता है।

0: कि इंसानों से वो दूर रहना पसंद करता है। जैसे कोई भी जानवर हो, सांप ले लो, कोई भी भालू ले लो, ये इंसानों को कभी पसंद नहीं करते या इंसानों से दूर रहना पसंद नहीं करते। तो मैं एक सिंपल आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आप भालू के घर में घुस रहे हो, जंगल में जा रहे हो, भालू आप अटैक कर रहा, आप उन्होंने जगह पर भालू ने अटैक कर दिया, आप उसके घर में गए हो तो उसने अटैक किया, आपके घर में भालू आ जाता था, आप बोलता मैं घर में भालू आ गया, भालू आ गया, शोर शराबा करते भगाने को करते। तो वही चीज वहां पे भी होती है कि अपने उनके घर में घुसते और वो अपने को अटैक करते हैं, तो वही है कि अपने से ज्यादा वो डरते। तो हमें उनको सेफली पकड़ना है और उन्हें महसूस होना चाहिए कि जैसे मैं रेस्क्यू करता हूँ, उन्हें महसूस होता है कि मुझे ये इंसान नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज मुझे सांप पकड़ते पकड़ते 10 से 12 साल हो गए, बाकी पहले जब 1-2 साल तक शुरुआत का जब मेरे को पहले बहुत बाइट करे, काफी फेस पे, नोज पे, ये सब बाइट करे हुए मेरे, और शरीर पर बहुत बाइट कर चुके, पर पॉइजनस अभी तक एक बाइट नहीं किया है। हाँ, पॉइजनस पे एक जैसे कोबरा आता है, उसने पॉइजन डाला था, पर डालता है कि नहीं डालता वो अपने को पता कैसे चलता है, वो भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। जैसे कोबरा कभी आपको बाइट करता है, होता वो पॉइजनस है, जहरीला होता है, कोबरा कभी बाइट करता है आपको, बाइट करके अगर छोड़ देता है, सीधा बाइट करा और आपको छोड़ दिया, तो उसने पॉइजन कभी नहीं डाला। कोबरा कभी बाइट करके अगर वो ताकत लगा के मुड़ जाता है, तो समझो उसने पॉइजन आपके शरीर में डाल दिया। और वो पॉइजन अपने लिए नहीं होता है, वो भी उसकी खुराक के लिए होता है, उसको शिकार पकड़ना होता है। कितना बड़ा, अगर उसने शिकार पकड़ा, उसको अगर आराम से नहीं खा पा रहा है, तो उसके अंदर भी वो जैसे सुई की पॉइंट होती है, उससे भी कम, इसके पास 5 से 6 बूंद होती है पॉइजन की, तो 5 से 6 बूंद में से भी सुई की एक कण अगर आप डुबोते हो, इतना पॉइंट वो उसमें डालता है, ताकि वो थोड़ा अधमरा हो जाए और उसको आराम से वो खा सके।
1: बिल्कुल, पहले तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि ये पेशेवर तरीके से काम नहीं करते हैं, एक वॉलंटियर के रूप में काम करते हैं चिंटू जी, और इसके लिए कोई पैसा नहीं लेते, बट उनको एक शौक है कि प्राणियों के प्रति एक सहानुभूति की भावना है कि भाई हर एक जीव है, उसे जीने का अधिकार है, और इससे इन्होंने जो छोटी कोशिश की है। अक्सर मैं सुनता आता था कि कोई सांप पकड़ता है या कोई ऐसा एनिमल रेस्क्यू करता है तो उसके अंदर ही कोई विशेष स्किल होती है या फिर उसके ऊपर कोई ऐसे कृपा होती है, किसी की आशीर्वाद होता है जिसकी वजह से वो काम करते हैं। बट ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने खुद से इंटरेस्ट लेके चीज किया और खुद बहुत बार बाइट्स भी खुद उनको हुए, बट फिर भी उन्होंने इस काम को नहीं छोड़ा और वो अपने नेफ्यू को भी ये काम सिखा रहे हैं। जैसे शुभा जी बंदरों की बात कर रहे थे, चिंटू जी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम लोग देखते हैं आते जाते रास्ते में, देखते हैं बंदर बैठे होते हैं और बंदरों को टूरिस्ट खाना खिलाते हैं, कभी बिस्किट के पैकेट्स फेंक देते हैं। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि बिस्किट के पैकेट्स चलती गाड़ी में से फेंक दिया जाता है और बंदर उसे पकड़ने के लिए उतर जाते हैं पेड़ों से नीचे, और पीछे से एक और गाड़ी आ जाती है, और फिर बंदर, आप क्या देखते हैं, क्या कर रहे हैं कि बंदरों को भी खाना मिले? इस अच्छी भावना से ही हम कर रहे हैं, बट कहीं कहीं हमारा काइंडनेस भी बहुत ही नुकसानदायक हो जाता है, काइंडनेस किल्स हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या कहते हैं, क्या सही हमारा अप्रोच होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ के प्रति हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए, या हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए जब हम वाइल्ड लाइफ से इंटरेक्ट करते हैं?
0: आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये तो कई बार मैं खुद देख चुका हूँ। सीजन में तो कई, चलो लोग उनको बिस्किट या पैकेट या फल फ्रूट कुछ भी डाल के खिला के जाते हैं, वो माना मैंने देखा, बहुत अच्छा, चलो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी अच्छा काम है, खिला रहे, ठीक है। बट ऑफ सीजन आता है, जैसे ट्रैफिक कम हो जाता है, तो आपने नोट किया अगर लोकल इंसान जाते हैं, जैसे कहीं आते जाते हैं तो वॉमिट कर देते हैं रोड के ऊपर, बीच रोड में, तो बंदर वो वॉमिट भी खाता है, वो देख के इतना बुरा लगता है, यानी दिमाग काम नहीं करता। और इस चीज को लेके हमने कई बार टूरिस्ट को भी, हमने उनकी गाड़ी से चाबी निकाल के उनको बोला कि हम आपकी कंप्लेन कर रहे हैं, हम आपको नीचे जाके फॉरेस्ट ऑफिस में आपको पकड़वाएंगे। तो कई बार तो हमारे ऊपर भी पैसेंजर हैवी हो गए, और ये फिर हमने उनको कई बार प्यार से समझा, वो बोले कि हमारे को इतने बिस्किट के पैकेट लाए, हम इनको खिलाएंगे, बोले पुण्य का काम है। मैंने, अच्छा आप पुण्य का काम मानते हो, मैंने आज आप इसको खिला रहे हो, ठीक है, कल आज ये टाइम पे खिला रहे, कल फिक्स इसी टाइम पे रोज खिलाने आओगे, तो आज आप खिलाओ उसको, मैं मना नहीं करूंगा, रोकूंगा नहीं, रोज इसी टाइम पे आप इसको खिलाने आते हो, वो आपकी आस लगा के बैठेगा, आप उसको डेली अगर खिलाने आते हो ये टाइम पे, तो मैं आपको परमिशन देता हूँ और आप खिलाओ, तो पुण्य का काम मानता हूँ। आप मैंने आज आ रहे हो, आज एक दिन खिला रहे हो, और वो कल आस लगा के बैठेगा, वो आपको अच्छा लगेगा, आपको बदुआ मिलेगी उसकी जगह, तो आप बोल रहे, सोच रहे हो कि पुण्य मिलेगा एक दिन खिला के, पर आप गलत सोच रहे हो कि आपको पुण्य मिलेगा, वो गलत है। आप बीच रोड पे भी उसे खाना फेंक रहे हो, अनशन तरीके से उसको खाना फेंक के दे रहे हो, तो ये चीज आपको सोचना है कि मैं तो ये कहता हूँ कि आपको जानवर से दूर रहना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ बहुत दूर रहना चाहिए जानवर से, उनको उनके अंदर ही रहना चाहिए। पहले मैं 2001 के अंदर समथिंग आसपास मैं आबू से नीचे आना जाना रहता था मेरा। तब मैं देखता था कि वहां पे एक बंदर नहीं दिखते थे, और रहते भी थे तो कभी पेड़ पौधे और ये पत्ता वही सब खाने का। पर अब वो सब सिर्फ गाड़ियों की वेट करते हैं कि गाड़ी आएगी, गाड़ी रुकेगी, हम उनको खाना देंगे। और कई बार ऐसा कि गाड़ी रुकते ही वो समझ जाते हैं कि हम आपको कुछ देंगे खाने। तो ये बंदरों को नुकसानदायक है। जैसे अपना जो मीठा, ये जो बिस्किट या कुछ भी ऐसी नमकीन वमकीन ये सब चीजें दे रहे हो, उनको एक बीमारी होती है शरीर के अंदर, अपने आप पैदा होती है। मैं आपको फोटोज भी है मेरे पास, कई बार मैंने रेस्क्यू भी करे ऐसे। यानी साल में एक बार ऐसी बीमारी होती है, पूरा शरीर में बड़े बड़े पपोले टाइप हो जाते, एकदम फट जाती है स्किन, और सब जगह ब्लड दिखता है, खून खून खून दिखता है, ब्लड पूरा, और चल नहीं पाते, हाथ काम नहीं कर पाते। तो उनको इन चीजों से बहुत नुकसान है। तो इसलिए उनके लिए कुदरत ने बना रखा है खाने पीने का, लिए जंगल के अंदर सब कुछ है उनके लिए। अगर आप उनकी आदत नहीं बिगाड़ोगे तो वो जंगल में ही रहेंगे, और वहीं पे उनका खाने पीने का सब कुछ है। तो हम लोग गलत है कि हमने अपना वो समझ के, पुण्य समझ के कि बिस्किट खिला दो, वो खिला दो, तो ये चीज मैं बहुत गलत मानता हूँ, बहुत गलत है।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने कही। आप क्योंकि वाइल्ड लाइफ के साथ जुड़कर काम करते हैं, तो फिर इस बात की समझ बहुत सारे लोगों तक तो पहुंचेगी ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि मैं तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में इतना कोई ज्यादा मेरी समझ नहीं थी, बट जो कॉमन सेंस के हिसाब से मैं सोचता था, उसके हिसाब से मुझे लगता था कि हम बंदरों के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इससे उल्टा नुकसान हो रहा है। आरती जी भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, और वो भी इस चीज को
2: जी
1: जो लोग शुभा जी
2: जी आरती मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है।
3: हाँ, थैंक यू। आई एम सॉरी मैं आपके बीच में कूद पड़ी हूँ। जैसे ये बंदरों की बात कर रहे थे, शिमला बहुत फेमस है बंदरों के लिए, और यहाँ भी सिमिलर प्रॉब्लम है। लोग बहुत गाड़ियों से आते हैं, नीचे प्लेन से आते हैं, खाना ब्रेड डबल रोटी वगैरह फेंकते रहते हैं। बट कहीं ना कहीं हमारी, जैसे ये चिंटू साहब कह रहे थे, और आई कंप्लीटली अग्री कि वी आर टू ब्लेम फॉर दैट, बिकॉज हम उन्हें इजी एक्सेस टू फूड है, और जब इजी एक्सेस टू फूड है तो वो हेल्दी हैं, हेल्दी हैं और वो मल्टीप्लाई भी डबल करते हैं। तो जब वो जंगलों में रहते थे, जंगलों में पेड़ पौधे खाएंगे या जैसे भी गुजर बसर करते थे, तो एक कंट्रोल्ड मैनर में उनका कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड मैनर था। बट अब क्योंकि खाना अच्छा है, अब आधे से ज्यादा बीमारियां, या आधे से ज्यादा हम बोलते हैं लेपर्ड का अटैक हो गया सिटी में, तो लेपर्ड का अटैक होना या बंदरों का अटैक होना या कुत्तों का अटैक होना इज इजी एक्सेस टू फूड। क्योंकि ये यही नहीं है कि लोकल लोग अपना कूड़ा ढंग से फेंक नहीं रहे हैं, वो लोकल गार्बेज भी जो आपके लोकल बिन्स हैं वो भी भरे पड़े हैं, और बंदर तो इंटेलिजेंट है, कहीं ना कहीं वो खोल भी लेता है ढक्कनों को, कूड़ेदान के ढक्कन को खोल के खाना भी खाएगा। तो सिमिलरली उस एरिया में आपके कुत्ते भी बहुत होंगे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इजी एक्सेस टू फूड टू डॉग्स। बट देन रिमेम्बर कि इजी एक्सेस टू फूड टू डॉग्स है, बट डॉग्स के साथ आते हैं हमारे यहाँ तो लेपर्ड जाते हैं, क्योंकि लेपर्ड के लिए कुत्ता खाना है। तो ये एक विशेष साइकिल है जिसका हम ही एक रूट कॉज है। और बंदरों को जो इजी एक्सेस टू फूड है, चाहे टूरिस्ट के माध्यम से हो, चाहे हमारे कूड़े दानों से हो, आप देखना कोरोना चलते क्योंकि सफाई इतनी थी, आपने अगर नोटिस किया हो, पता नहीं माउंट आबू में कैसा था, बट हिमाचल में शिमला में खासकर बहुत सारी जो बंदरों की कॉलोनीज थी जिसमें 30 से 35 बंदर रहते हैं, वो शिफ्ट कर गई थी क्योंकि कूड़ा ही नहीं था खाने के लिए। लोग घरों से तो कुछ डाल नहीं रहे थे, मैक्सिमम लोग गांव चले गए थे। तो शहर में ऐसा ना कूड़ेदान है, और जैसे ही दुकानें खुलती थी घंटा 2 घंटे के लिए, उसके बाद सफाई हो जाती थी। तो धीरे धीरे जो पर्टिकुलर कॉलोनीज एक एक इलाके में रहती थी वो जंगलों की तरफ चली गई थी। तो इसका सोल्यूशन बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं था, इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा था कि अगर हम कंट्रोल करेंगे अपनी आदतें तो जानवर अपने आप, बिकॉज जानवर तो जानवर है। अगर हम बोल रहे हैं लेपर्ड हमारे इलाके में आ रहा है, लेपर्ड के इलाके में हम गए हैं क्योंकि हमने वहां घर बना दिए, तो वो बेसिकली तो रास्ता तो उसी का था, बट आ हम गए हैं। तो हम ब्लेम वाइल्ड लाइफ को करते हैं कि बंदरों का आतंक बढ़ रहा है। आफ्टर ऑल वो हमारे पूर्वज थे, तो इंटेलिजेंट तो है ही, तो आतंकी तो वो भी हमसे ही सीखे हैं, एंड दैट्स व्हाट द रूट कॉज ऑफ इट। सो मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। तो इसलिए समझदारी इसी में है कि प्लीज आप खुद ही ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। वो जानवर है,

0: को कुछ ठीक करने की जरूरत है, कुछ एक्शंस में ले आने की जरूरत है, वापस उस विजडम को यूज करने की जरूरत है कि हम सब एक हैं और एक परिवार से जुड़े हैं, ये धरती हमारा घर है, ये याद रखने की जरूरत है। और अगर इन चीजों को समझकर, समझदारी के साथ, समझबूझ के साथ अगर हम छोटी छोटी चीजें करेंगे, छोटे छोटे बदलावों से एक नया बदलाव आएगा, एक नई दुनिया आएगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नई दुनिया नए जमाने में। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक की हम सेलिब्रेशन में कर रहे थे और आज पर्यावरण संरक्षण में हमने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में बात की। शुभा,
1: थैंक यू सो मच श्री, और सभी दर्शकों का और सभी मित्र जो सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो मधुबन पर, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर से रात्रि 10 बजे पुनः प्रसारण आप रेडियो मधुबन पर सुन पाएंगे। फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।

शांतिरंतरिक्षः शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्मा शांतिः सर्वः शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

0: श्यामली रोज बच्चों के हाथ में मोबाइल देख परेशान हो जाती। सोचती कैसे इन्हें इनसे छुटकारा दिलाया जाए। स्कूल से आकर मोबाइल पर गेम खेलने लग जाना, कहीं बैग फेंका, कहीं ड्रेस, तो कहीं मोजे पटके, और बस मोबाइल हाथ में। वो सोच में पड़ गई कि एक हमारा बचपन था जहां शाम का इंतजार खेलने के लिए करते थे। सितौलिया, गिल्ली डंडा, बैडमिंटन और दौड़ में तो हमेशा मैं ही जीतती थी। शाम होते ही घर से सारे बच्चे बाहर ही खेलते दिखते थे। श्यामली ने सोचा कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा, और उसने सोच लिया कि आगे क्या करना है। अगली सुबह श्यामली ने फटाफट अपना काम निपटाया। खाना वगैरह से फुर्सत होकर फिर उसने कॉलोनी की अपनी सभी फ्रेंड्स को फोन किया।
1: आज शाम को आप सभी अपने पतिदेव के साथ अपनी ही कॉलोनी के पार्क में जरूर आइए। चाय और नाश्ते का इंतजाम भी है, हमें इंतजार रहेगा।
0: बस फिर क्या था, सभी शाम को पार्क में पहुंच गए। सभी का श्यामली से यही सवाल था कि हुआ क्या जो तुमने अचानक इस तरह से हम सभी को बुलाया। श्यामली ने कहा, अरे हाँ हाँ बताती हूँ भाई, पहले आप लोग चाय वगैरह तो लीजिए, फिर आराम से बात करते हैं। सभी बहुत खुश लग रहे थे क्योंकि ऐसा कम ही होता था कि सभी एक साथ आपस में मिले। तभी रीना बोली, अरे अब तो बताओ श्यामली कि एक साथ सभी को क्यों बुलाया। श्यामली ने कहा, ओके ओके अभी बताती हूँ, ये बताइए कि आप सभी की शामें कैसे गुजरती हैं। सोसाइटी के सभी पुरुषों का एक ही जवाब था कि ऑफिस से आने पर थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर थोड़ा मोबाइल पर चैटिंग वगैरह कर लेते हैं। और सभी फीमेल्स का कहना था कि शाम को थोड़ा नाश्ता वगैरह बनाकर घर के हम सभी लोग नाश्ता करते हैं और फिर अपनी व्हाट्सएप पर फ्रेंड से चैटिंग चलती रहती है। श्यामली ने सभी की बात समझ ली थी। उसने तुरंत सभी से कहा, क्या आप सभी चाहते हैं कि बच्चों का मोबाइल से ध्यान हटे और वो थोड़ा खेलें, शाम को घर से बाहर निकलें, दोस्तों से मिले जुले, हम लोगों के साथ समय बिताएं। हाँ हाँ क्यों नहीं चाहेंगे, हम सभी तो बहुत परेशान हैं इस बात से कि बच्चे मोबाइल छोड़ते ही नहीं। श्यामली ने कहा, उन्हें सुधारने के लिए पहले हमें सुधरना होगा, हमें मोबाइल से किनारा करना होगा, क्योंकि बच्चे तो हम बड़ों से ही सीखते हैं ना। अब सभी शांत हो गए। सभी को शायद अपनी गलती का एहसास हो रहा था और श्यामली की बात सभी को अच्छे से समझ भी आ गई थी, और सभी एक साथ बोल पड़े, बताइए अब हम सभी को क्या करना होगा। श्यामली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसने बहुत धीमी आवाज में सभी को अपना प्लान समझा दिया, और प्लान सुनते ही सभी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। और इसके बाद श्यामली ने बहुत ही उमंग से कहा, ओके तो कल से हम सभी की शाम यहां होगी। सभी तैयार थे, कल का वादा ले अब सभी खुशी खुशी अपने घर को चले गए। दूसरे दिन जब शाम हुई तो चाय नाश्ते के बाद श्यामली ने सूट पहना, दुपट्टे को कमर से बांधा, और इसी तरह श्यामली ने अपने पति को भी टी शर्ट और लोअर पहना अपना अपना बैडमिंटन उठाया। बेटा बहुत तेज से यह सब देख रहा था। वो सोच में पड़ गया कि आज ये मां पापा को क्या हुआ, कहां की तैयारी कर रहे हैं। उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, आप लोग कहां जा रहे हो। श्यामली ने कहा, बेटा गेम खेलने। अरे पर कैसे, मोबाइल तो आपके हाथ में है नहीं, तो गेम कैसे खेलेंगे। श्यामली के पति ने कहा, बेटा हम मोबाइल में नहीं, नीचे खेलने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं और अगर तुम आना चाहो तो पार्क में आ जाओ, लेकिन लॉक करके आना। अब बेटे से रहा नहीं जा रहा था। थोड़ी देर तो वो मोबाइल पर गेम खेलता रहा और फिर वो भी लॉक करके पार्क में आ गया। देखा तो सभी बच्चे भी नीचे थे और सबके मम्मी पापा भी, क्योंकि कॉलोनी के हर घर में श्यामली के घर की तरह ही माहौल था। आखिर सभी बच्चे पार्क में आ गए थे। बच्चे अपने बड़ों को खेलते देख बहुत खुश हो रहे थे, और अब उनसे भी नहीं रहा गया, प्लीज माँ हमें भी खेलना है, पापा हमें भी खेलना है ना प्लीज, बस यही आवाजें आ रही थी। फिर क्या था, सभी यही तो चाहते थे। अब वो समा बंध गया था। शाम को जो पार्क सुनसान पड़ा रहता, आज उसमें अलग ही रौनक आ गई थी। अब तो रोज ही बच्चे शाम को एक दूसरे को आवाज लगाकर पार्क में पहुंच जाते। श्यामली का बेटा विभोर बोला,
2: माँ मैं जा रहा हूं खेलने नीचे, आप लोग भी जल्दी आ जाओ, मुझे मुझे सौरभ को हराना है। माँ पापा जल्दी आओ ना।
0: मोबाइल पर श्यामली के सभी लोगों को थैंक्स के फोन आते जा रहे थे। श्यामली के पति ने श्यामली का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, श्यामली मुझे तुम पर गर्व है। आज तुमने हमारे ही नहीं कई परिवारों के रिश्तों की डोर मजबूत की है। श्यामली की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, आपके बगैर मेरा ये कर पाना बहुत मुश्किल था। आपका सहयोग ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। शुक्रिया। तभी विभोर की आवाज आई,
2: माँ पापा जल्दी आओ ना, अंकल आपको बुला रहे हैं।
0: दोनों ने अपना बैडमिंटन उठाया और नीचे पार्क की ओर चल दिए। दोस्तों आप सुन रहे थे डॉक्टर मनीषा गुप्ता की लिखी कहानी परिवर्तन। कहने को तो ये कहानी है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये गंभीर इशारा है। आज तक के अनुभव के हिसाब से हम ये तो समझ ही गए हैं कि बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, बल्कि वो करते हैं जैसा वो हमें करते ऑब्जर्व करते हैं। हम अगर चाहते हैं कि हमारा या बच्चों का भविष्य सुनहरा बने, परिवारों में पहले जैसे खुशी और आनंद हो, तो एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, एंटरटेनमेंट के ये सारे मीडियम, ये हमारा सहारा नहीं, हमारी सच्ची खुशी मिलजुल कर बैठने में है, मिलजुल कर वक्त बिताने में है। रही बात एंटरटेनमेंट की, तो आपस में खेलकर, घर से बाहर निकलकर, फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके खूब एंटरटेन हुआ जा सकता है। कमेंट्स करके बताएं कि आप कब इस परिवर्तन की शुरुआत करने जा रहे हैं, और हां शेयर जरूर करें, ताकि अच्छे विचार और परिवर्तन की बयार एक हद तक न रह जाए, सभी तक एक श्रेष्ठ विचार जरूर पहुंचे। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। जीवन कौशल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जीवन कौशल कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग विषय को लेकर आपके साथ जुड़ते हैं। पिछली बार हमने कुछ मशीन लर्निंग की बातें की थी और आज हम लोग बातें करेंगे उससे ही थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन डाटा साइंटिस्ट के बारे में। जी हाँ साथियों, करियर इन डाटा साइंटिस्ट आज का हमारा विषय है। आज की डिजिटल दुनिया में डाटा को बहुत ही अच्छी तरह से देखा जाता है। हर सेकंड मोबाइल, सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, एप्लीकेशन हो, मशीनें हो या सेंसर के माध्यम से भारी मात्रा में डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। इस डेटा को समझकर व्यवसाय, सरकारें, स्वास्थ्य और शिक्षा और लगभग हर उद्योग बेहतर निर्णय ले रहे हैं और इसे प्रोसेसिंग का नया तरीका होता है। इस डाटा को प्रोसेस करने का उसको कहते हैं डाटा साइंटिस्ट। जी हाँ, और ये डाटा साइंटिस्ट करता क्या है वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और इनका काम ही ये होता है कि वो जो गणितज्ञ है या संज्ञा की है, प्रोग्रामर है, बिजनेस समझ को मिलाकर डेटा का एक विश्लेषण करता है जिससे भविष्य की भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं और बड़े स्तर पर बदलाव ला सकते हैं। तो ये है सार में डाटा साइंटिस्ट क्या है। तो चलिए, क्या करता है ये थोड़ी देर में जानते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर जीवन कौशल कार्यक्रम मेरे साथ यानी आरजे रमेश के साथ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ। आज हम लोग बातें करने वाले हैं डाटा साइंटिस्ट के बारे में, डेटा वैज्ञानिक जिसको कहा जाता है। एक वैज्ञानिक जो डेटा साइंटिस्ट है उनकी रोज़मर्रा की जो जिम्मेवारियां है क्या करता है इस पर बात करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि उनको जो भी डाटा मिल रहा है जहाँ से भी मिल रहा है उसको एक जगह पे स्टोर करके रखना, कलेक्ट करके रखना। जैसे विभिन्न सूत्रों से, जैसे अलग अलग जैसे डाटाबेस होते हैं, एपीआई है, वेबसाइट है, मशीनें हैं, क्लाउड है, ये सारे जगह से डाटा इकट्ठा करना। दूसरा आता है डेटा साफ़ करना, डेटा क्लीनिंग, कच्चे डेटा को त्रुटि मुक्त, सुसंगठित और विश्लेषण योग्य बनाना। जो चीज़ें मिक्स पड़ी हुई है उसको एक तरह से कह सकते हैं हम लोग, जैसे घर के अंदर कूड़ा कचरा होता है तो उसको जब हम लोग दिवाली में साफ़ करते हैं तो क्लीन करके फिर से उसको सही करके सही जगह पे रखते हैं। कई बार चीज़ें यूज़ करते करते इधर उधर हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो ऐसे में डेटा क्लीनिंग करके उन्हें त्रुटि मुक्त करके विश्लेषण योग्य बनाया जाता है। तीसरी बात आती है एनालिसिस, यानि विश्लेषण करना। अब देखना है कि कोई डाटा उनके पास आ गया, कोई गीत आ गया, कोई स्क्रिप्ट आ गया, कोई इमेज आ गया, कोई कुछ कंटेंट आ गया, कोई कुछ मैकेनिज्म वाली कुछ चीज़ें उसके बारे में लिखा हुआ आया, तो ऐसे पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है, इसकी बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उसके बारे में सोचना कि ये कौन जगह पर किस पैटर्न वाला चीज़ है। फिर आता है चौथा, जहाँ पर मॉडल बनाना, यानी मशीन लर्निंग मॉडल, भविष्यवाणी करने वाले मॉडल तैयार करना। पांचवी बात आती है विजुअलाइजेशन, डेटा को चार्ट, ग्राफ, डैशबोर्ड के रूप में आसान तरीके से दिखाना। छठवीं बात आती है बिजनेस टीम को सुझाव देना, डेटा आधारित निर्णयों से कंपनी की रणनीति तय करना। तो साथियों, समझ गए होंगे हमारे विद्यार्थी मित्र कि डाटा साइंटिस्ट करता क्या है। चलिए, कई बार होता है कि हमें पता भी होता है लेकिन विस्तार से जब हम सुनते हैं तो समझ में आता है। इस क्षेत्र में जो आपको स्किल्स चाहिए, करना अलग बात है लेकिन उसके लिए आपको स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक आपके पास वो स्किल नहीं होगा तो आप वो काम नहीं कर सकते। जैसे समझो, मेरे पास बहुत सारे वीडियोज़ हैं लेकिन मुझे वीडियो एडिटिंग का नॉलेज नहीं होगा तो मेरे पास वीडियोज़ हो के भी फ़ायदा क्या है ना। तो हमें वीडियो एडिटिंग का अगर नॉलेज होता है, स्किल है मेरे पास, वो कला है कि मुझे किसी भी चीज़ को, वीडियोस को एडिट करना आता है, कट करना है, पेस्ट करना है, या उसको कुछ चेंज करना है, उसका कलर इफेक्ट देना है, इसमें वॉइस डालना है, ये सारी चीज़ें मेरे कौशल में है, तो मैं किसी भी तरह के कोई भी वीडियो कलेक्शन जो है मेरे लिए वो आवश्यक हो जाता है और मैं उसे एक अच्छा जो है प्रोडक्ट बना के मार्केट में रख सकता हूँ। तो इसी तरह डाटा साइंटिस्ट को भी कलेक्शन तो हो गया डाटा लेकिन उसको कैसे यूज़ करना, ये कौशल है। अब आती है यहाँ पर कौशल की बात में, सबसे पहला आता है गणित और संख्या की, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स की गहरी समझ। दूसरी बात आती है प्रोग्रामिंग की, अधिकतर पाइथन या आर का उपयोग होता है। पाइथन में पंडास, नंपे, स्किकिट, लर्न, ट्रांसफर फ्लो आदि लाइब्रेरी ज़रूरी है। और तीसरी बात आती है डेटा विजुअलाइजेशन, जिसमें आपको अलग अलग टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे पावर बी आई, टैबलू, मैट डॉट लिब, शीबॉन। और चौथी बात आती है मशीन लर्निंग, यहाँ पर क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, एनएलपी, डीप लर्निंग जैसे टेक्निक। पांचवी बात आती है क्रिटिकल थिंकिंग एंड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, डेटा से उपयुक्त निष्कर्ष निकालना और बिजनेस को समझना। तो ये सारा स्किल है जो आपको एक डाटा साइंटिस्ट के रूप में काम करना हो तो इनको सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, समझ गए होंगे कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपके कभी कभी समझ से बाहर भी हो सकते हैं लेकिन इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना समझ लें कि ये चीज़ें इस फील्ड में आती हैं, ये कौशल ज़रूरी है
ये आपके समझ में होना चाहिए, तो आप इस पर उस तरीके से सोचना शुरू करेंगे, काम करना शुरू करेंगे, है ना। तो आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए। आप सुना है रेडियो मधुबन पर जीवन कौशल कार्यक्रम को, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग बातें कर रहे हैं डेटा वैज्ञानिक के बारे में और क्या कौशल चाहिए वो हमने आपको बता दिया, क्या स्किल्स चाहिए वो हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं डेटा वैज्ञानिक कहाँ काम करते हैं, है ना। आप सोच रहे होंगे कि चलिए हमने सीखा समझा पढ़ लिया, लेकिन अब हमें काम किस जगह पे करना है। वैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर एक डाटा साइंटिस्ट काम करता है और लगभग इनकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि आईटी सेक्टर या सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियाँ। दूसरा है ई कॉमर्स कंपनियाँ। ई कॉमर्स में आता है ये बिजनेस प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। तो आपको तो पता ही है अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियाँ ई कॉमर्स में आती हैं और ये ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा देती है। यहाँ पर भी एक डाटा साइंटिस्ट का बहुत ज़रूरत होती है। तीसरा है बैंकिंग सेक्टर में और वित्तीय संस्थान में, जो फाइनेंस का काम करते हैं, लोन देते हैं, लोन रीपे करते हैं, ऐसे संस्थान में भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वहाँ पर भी डाटा साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है। और आता है स्वास्थ्य और मेडिकल रिसर्च में, जहाँ पर मरीजों का बीमारियों पर रिसर्च हो या फिर उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई बात हो, तो वहाँ पर भी एक डाटा जो है कलेक्ट करना होता है। अगर आपके पास डाटा हो किसी व्यक्ति का और वो बीमार हो जाता है, मेडिकल से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके पास हो उनकी, तो आप आसानी से कम टाइम में उसको अच्छी सुझाव दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी डाटा साइंटिस्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और डाटा साइंटिस्ट के आधार पर भी आजकल जो है AI मॉडल जोड़कर बहुत अच्छी सटीक दवाइयों का भी या फिर इसमें ऑपरेशंस का या फिर कोई भी जो सलूशन है वो इसमें से निकलता है। फिर आता है सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र, यहाँ पर भी आपका बहुत ज़रूरी है। और ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं, वहाँ पर भी काम आते हैं। एजुकेशन सेक्टर और रिसर्च संस्थान में भी आपका बहुत ज़्यादा डाटा साइंटिस्ट का वर्कआउट होता है। तो विश्व भर में ये सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला करियर है साथियों, और आने वाले 20-30 सालों में इसकी मांग बढ़ती रहेगी, बढ़ती जा रही है। तो एक रोड मैप की बात मैं करूं तो एक डाटा वैज्ञानिक को साइंटिस्ट का जो मार्ग है वो सबसे पहला स्टेप आता है आपको किसी भी फील्ड में, बीटेक में, BSc में या फिर किसी भी अन्य क्षेत्र में ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी। दूसरा आता है स्किल डेवलपमेंट। ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं जैसे प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप वाले, वहाँ पर आप कुछ समय तक अपना समय दें, इससे आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। तीसरा स्टेप आता है प्रोजेक्ट्स ले लीजिए, शुरुआत में छोटे प्रोजेक्ट्स ले लीजिए, मशीन लर्निंग का ले लीजिए, डाटा एनालिसिस का ले लीजिए, NLP ले लीजिए, डीप लर्निंग वाला ले लीजिए। तो ये प्रोजेक्ट्स छोटे छोटे काम करके आप बड़ा काम करने के लिए सक्षम होते हैं। चौथी बात आती है पोर्टफोलियो और GitHub। अपने प्रोजेक्ट को ऑनलाइन साझा करने का आपको तरीका आना चाहिए। पांचवी बात आती है इंटर्नशिप या जॉब शुरू करें। एंट्री लेवल जॉब जैसे कि डाटा एनालिटिक, बिजनेस एनालिटिक, ML इंजीनियरिंग, जूनियर डाटा साइंटिस्ट, इन सभी के साथ जुड़कर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ जानकारी हमने दी है, और आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात कर रहे थे हम लोग करियर ऑप्शन के बारे में, खास करके डेटा वैज्ञानिक के बारे में, डाटा साइंटिस्ट के बारे में। तो आइए एक बहुत ही सुंदर आपको कहानी सुनाने वाला हूँ एक डाटा साइंटिस्ट की। एक आरव नाम का व्यक्ति था बिहार में। बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था। गांव में इंटरनेट भी ठीक से नहीं चलता था उस समय, लेकिन आरव की जिज्ञासा बहुत थी। स्कूल में वह गणित में बहुत तेज था। इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद उसे पता चला कि दुनिया डेटा से चल रही है। कॉलेज के दिनों में उसने अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से घंटों बैठकर पाइथन, स्टैटिस्टिक और मशीन लर्निंग सीखी। उसके पास महंगा लैपटॉप भी नहीं था, लेकिन उसने साधारण मशीन में छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया था। उसने एक मॉडल बनाया जो बारिश की भविष्यवाणी कर सकता था। ये प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ महीने बाद उसे गूगल से इंटरव्यू कॉल आया। इंटरव्यू में आरव ने छोटे लेकिन असरदार प्रोजेक्ट देखकर टीम प्रभावित हुई। आज आरव गूगल में डाटा साइंटिस्ट है और अपने गांव के छात्रों को ऑनलाइन मुफ्त क्लास देता है। आप समझ रहे होंगे कि उनकी कहानी ये बताती है कि डाटा साइंटिस्ट प्रतिभा और मेहनत का खेल है, संसाधनों का नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात सीखने को मिलता है साथियों, अगर आप तो की जिज्ञासा पढ़ाई में है, कुछ गहरा समझ के साथ आप पढ़ाई करते हैं, विश्लेषण के साथ पढ़ाई करते हैं, रिसर्च मोड पे आप पढ़ाई करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे ही इस तरह की सोच लेकर अगर आप पढ़ाई पढ़ते हैं तो डाटा साइंटिस्ट बनना बहुत आसान आपके लिए होगा, जैसे आरओ के लिए हुआ। तो आइए इससे जुड़ी हुई एक और सुंदर कहानी मैं आपको बताता हूँ आदिति की। आदिति की जीवन यात्रा भी बड़ी मुश्किल थी। आदिति शादी के बाद मुंबई में एक गृहिणी बनकर गई थी। दिन का अधिकांश समय घर के कामों में निकल जाता था, लेकिन उन्हें नई तकनीक सीखने का बड़ा शौक था। उनके पति ने उन्हें डाटा साइंटिस्ट का एक ऑनलाइन कोर्स करने की सलाह दी। आदिति ने रोज सिर्फ 3 घंटे निकालकर सीखना शुरू किया और वो पाइथन से लेकर मशीन लर्निंग तक सब सीख गई। उन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट बनाया, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, जो नेटफ्लिक्स की तरह फिल्में सुझाता रहता है। ये प्रोजेक्ट देखकर एक स्टार्टअप ने उन्हें इंटर्नशिप का मौका दिया। कुछ महीनों के भीतर अदिति एक फुल टाइम डेटा साइंटिस्ट बन गई। आज अदिति महिलाओं के लिए एआई सिखाने के ऑनलाइन कार्यक्रम चलाती हैं। उनकी कहानी बताती है कि सीखने की शुरुआत कभी भी की जा सकती है, उम्र, स्थिति या जिम्मेवारियाँ बाधा नहीं बनती है। तो इसलिए मैंने कहा कि अदिति की कहानी बिल्कुल अलग है और हम सब के लिए प्रेरणादायी, क्योंकि हम भी अपने काम से फुर्सत हो तो हम बस मोबाइल में लग जाते हैं, लेकिन कुछ सीखने का मन कभी नहीं बनाते हैं। तो आज से आप मोबाइल के बजाय आपको सीखने का मन बनाइए और मोबाइल से ही सीखिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए, है ना। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, और सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

0: मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं। कार्यक्रम सुन रहे हैं हम करियर ऑप्शन जीवन कौशल, और आज हमने बातें की डाटा साइंटिस्ट के बारे में। कहानियां मुझे बड़ी अच्छी लगी, आशा करूंगा कि आपको भी उनसे मोटिवेशन मिला होगा, खास करके अदिति की कहानी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और डाटा साइंटिस्ट का भविष्य को अगर देखें तो ये AI रोबोटिक और ऑटोमेशन के बढ़ते इस्तेमाल के कारण डाटा साइंटिस्ट की मांग कई गुना बढ़ गई है। साथियों, 2030 तक दुनिया में 1 करोड़ से ज़्यादा डाटा प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होगी, तो आप सोचिए कि आपको क्या करना है। भारत में भी ये 5 उच्च वेतन वाले करियर में गिना जाता है, और साथ ही साथ डाटा साइंटिस्ट का करियर केवल तकनीकी ज्ञान पर आधारित नहीं है, बल्कि रचनात्मक भी है, समस्या समाधान भी है, और भविष्य को समझने की क्षमता पर भी टिका हुआ है। अगर आप गणित, कंप्यूटर और विश्लेषण में रुचि रखते हैं तो ये करियर आपके लिए गोल्डन अवसर है। आरओ और अदिति जैसे अनगिनत उदाहरण साबित कर सकते हैं कि सही दिशा, अभ्यास और निरंतर मेहनत से कोई भी व्यक्ति दुनिया के इस सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली करियर में सफलता हासिल कर सकता है। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि आप भी घर बैठे इन चीज़ों को सीख सकते हैं जैसे अदिति ने सीखा, और आप उस तरीके से सीखें ताकि आपको थोड़ा सा गहराई से समझे और आराम से टाइम ले, तो आप भी एक अच्छा डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आप

बहुत सारे जगह पे आप जो है काम कर सकते हैं। गृहिणी हो तो गृहिणियों के लिए शायद आप डाटा साइंटिस्ट कलेक्शन कुछ ऐसा डाटा कलेक्ट कीजिए जहाँ से आपको जो है आसानी से कुछ चीज़ें प्रोडक्ट बनाने में हेल्प मिल सके, खाना बनाने में हेल्प मिल सके या घर की सजावट में हेल्प मिल सके। तो ये भी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उस गहराई से आप सोच के देखिएगा। तो चलिए, आप सभी को बहुत ही सुंदर करियर के बारे में हमने बताया डाटा साइंटिस्ट का, तो फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और विद्यार्थी मित्रों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले शनिवार को एक नए एपिसोड में एक नए विषय को लेकर। तब तक आप बने रहिए। सलाम नमस्ते खम्मा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हम। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार सभी सुनने वालों को, और आज फिर से एक नए गेस्ट के साथ, एक युवा चेहरे के साथ हमारे साथ हैं वैष्णवी। आपका फेवरेट प्रोग्राम है जुनून, फिर से एक जुनूनी हमारे साथ। जुनून क्यों होना चाहिए, ये जुनून वैष्णवी को कहां से आया, आइए सुनते हैं वैष्णवी की कहानी। और आप हमें सुन रहे हैं 107.8 FM पे माउंट आबू की वादियों में, और हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन पर पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आप हमें लाइव सुन सकते हैं। हमारे साथ वैष्णवी जी हैं, और वैष्णवी जी जयपुर से आती हैं, एक यंग ग्रेजुएट हैं, परंतु इनके अंदर एक जुनून है, और वो जुनून कहाँ से आया आइए उनसे जानते हैं। वेलकम वैष्णवी जी हमारे प्रोग्राम जुनून में।
2: नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं रेडियो मधुबन और शरद सर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया अपने दो शब्द रखने के लिए, और मुझे बताने के लिए कि मुझ में जुनून कहाँ से आया। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ, और मेरे में ये जुनून आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत मैंने अपने पापा से ये जुनून लिया है, कि माय फादर रविशंकर धाबाई, उन्होंने मुझे मोटिवेट करा कि आपको ये सोशल एक्टिविस्ट या सोशल सर्विस में जाना चाहिए, आपको सोसाइटी के प्रति आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, कोई भी ऐसी चीज़ करें जिससे कि सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो या सोसाइटी का बेटरमेंट हो, जिससे कि सोसाइटी एक साथ यूनाइटेड होके आगे बढ़ सके। तो मैं रेडियो मधुबन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। जी सर, शरद सर।
1: जी जी जी जी, जुनून तो आपके अंदर आ गया, और आपने बताया कि आपके पिताजी ने आपको मोटिवेट किया इसके लिए। निश्चित रूप से हमारे आसपास और परिवार में ही कोई ऐसा होता है जिसको देखकर हम आगे प्रेरणा लेते हैं, और आपने वो प्रेरणा अपने फादर से ली।
2: जी तो
1: सर। वो जुनून आपके फैमिली से आपको मिला है, परंतु हम ये जानना चाहेंगे कि वो जुनून क्या है और आप क्या कर रहे हैं।
2: सर, जुनून मेरा यही काम है कि मुझे एनवायरनमेंट में अपना एक रोल निभाना है। जैसे मैंने काफ़ी ट्री प्लांटेशन करे हैं, और मैंने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिनमें मैं मोटिवेट करती हूँ कि हमें क्यों ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, ऐसे ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो कि जिससे कि हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके, और अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो अच्छी डेवलपमेंट होगी। तो इसी सोच के साथ मैं थोड़ा एनवायरनमेंट में अपना भागीदारी निभा रही हूँ। जी सर।
1: जी, एनवायरनमेंट को लेकर आप जो क्लाइमेट चेंज की परिस्थितियां बनी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आप हमारे जयपुर की ग्रेटा थंबर्ग हैं, राइट?
2: जी सर।
1: तो मैं वैष्णवी से पूछना चाहूंगा कि आप शहर में क्या देख रहे हैं अभी, जयपुर में क्या बदलाव आपने देखा है, और जयपुर के एनवायरनमेंट को लेकर कौन से ट्रीज हैं जो आपको लगते हैं कि सूटेबल हैं?
2: सर, काफी ऐसे ट्रीज हैं जैसे कि हमें नीम के पेड़ लगाने चाहिए हैं, और मैंगो के ट्रीज हो गए, या टीक वुड हो गया, या फिर अशोका के पेड़ हो गए। काफ़ी सारे ऐसे पेड़ हैं जो कि हमें मदद करते हैं एक अच्छे एनवायरनमेंट की, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो।
1: जी,
2: ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जिससे कि हमारा अभी जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे तो उतना ही हमें टेम्परेचर कम मिलेगा, और गर्मी जो अभी जितना 50 डिग्री तक जाता है वो कम रहेगा। तो ये बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं पेड़ पौधे जो होते हैं।
1: जी। निश्चित रूप से, आप जयपुर में आपका जन्म हुआ है, तो आपने जयपुर को देखा है बदलते हुए, तो जयपुर का जो वेजिटेशन है या जयपुर की हरियाली है, उसमें आपको कुछ लगा कि क्या

0: से राजधानी शेप ले रही है अभी
1: जी सर, इम्प्रूव हो रहा है कहीं ना कहीं, बहुत हद तक इम्प्रूव हो रहा है, और बाकी और भी ऐसे चीज़ें अभी करनी है जिससे कि और इम्प्रूव हो, धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है
0: जी
1: जी सर।
0: तो मेन बात ये है कि जुनून कहाँ से आता है, ऐसा क्या हो जाता है कि हम कोई चीज पकड़ लेते हैं, मैं वो मानसिक प्रक्रिया को समझना चाह रहा हूँ कि वो आपकी क्या समझ बनी है, कि आपको ऐसी कभी फीलिंग नहीं आती कि मेरा समय क्यों वेस्ट कर रही हूँ, भाई मैं कुछ इस समय में कुछ बिजनेस कर लूँ मैं, है ना, ऐसा। तो वो जुनून एकदम से कहाँ से आ जाता है, वो मानसिक प्रक्रिया क्या होती है, वो केमिकल लोचा जिसे कहते हैं दिमाग में, तो वो क्या है?
1: ये सर बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि ये लोचा कहाँ से आया है। तो सर ऐसा ये बात है कि अभी हम जैसे एनवायरनमेंट का यही नहीं है कि हम रिसोर्सेज ही यूज करे जाए और बस पढ़ाई करी जिसमें मैंने पी डिप्लोमा करा, तो उसमें मैंने यही पढ़ा कि आप रिसोर्सेज तो यूज ले रहे हैं सोसाइटी की, तो आप वापस क्या दे रहे हैं उसको, आप जैसे एनवायरनमेंट को वापस क्या दे रहे हैं, यही नहीं कि आप रिसोर्सेज यूज करे जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप वापस भी दें, यही नहीं कि आप यूज़ ही करे जाएँ, उसका एक्सप्लॉइट ही करे जाएँ और वापस कुछ ना दें, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इससे हमें भी ऐसा नहीं है कि हमें भी आगे जाके अच्छा ही फ्यूचर मिलेगा, हम ही अभी प्लांटेशन करेंगे तो आगे जाके अच्छा ही, हम हमारे लिए भी अच्छा ही होगा, सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा। तो एक यही मेरा पार्ट है कि भाई हमें वापस भी देना चाहिए।
0: निश्चित रूप से हमें वापस देना चाहिए, अगर हम कुछ ले रहे हैं तो हमें वापस देना चाहिए, तभी बैलेंस हो पाएगा। और आप तो बिजनेस पढ़ के आए हैं तो बैलेंस शीट में बैलेंस होना जरूरी है, राइट?
1: जी
0: तो
1: सर।
0: मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आप ये काम कैसे करते हैं, मतलब क्या आपको चैलेंजेस आते हैं और क्या आप तक कर चुके हैं, अभी आपके क्या लक्ष्य आप पूरे कर चुके हैं और क्या भविष्य में सोचते हैं?
1: जी सर, मेरा यही है कि अभी जैसे मैंने अभी मेरे आसपास के एरिया में भी प्लांटेशन करा है, कम्युनिटी पार्क्स हो गए, इनमें हो गए, तो मैंने उधर जाके प्लांटेशन करा है। बाकी मेरा यही फ्यूचर गोल है कि मुझे बड़े वास्ट एरिया में प्लांटेशन करना है और एनवायरनमेंट के प्रति वर्क करना है। और अभी कम एरिया है तो मेरा यही गोल है कि आगे और आगे हद तक आगे जाके कई और एरियाज में बढ़ूँ मैं, आगे जाके और आगे काम करूं। चैलेंजेस यही है कि ट्रीज को अभी उनके केयर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, आगे जाके जैसे कोई कई जगह देखभाल नहीं कर पाते हैं। जी सर।
0: हाँ नहीं, आप आराम से रखें अपनी बात। जी देखिए, चैलेंजेस आपको निश्चित रूप से, आपको पेड़ों को पौधों को पाने में भी चैलेंजेस आता होगा, बड़ी संख्या में पेड़ों और पौधों को लगाने के लिए आपको एक टीम चाहिए होती है, तो वो टीम को मोबिलाइज करना भी एक चैलेंज है। तो इन सारे विषयों पे आप आराम से अपनी बात रख सकते हैं। जी जी वैष्णव
1: जी सर, जैसे आपने अभी पॉइंट रखा कि पेड़ों को पानी की बहुत जरूरत होती है, तो यही एक चीज है कि जैसे अभी हमने प्लांटेशन कर दिया तो आगे जाके इतनी केयर नहीं कर पाते हैं, सब जगह जाना इम्पॉसिबल है, तो ज्यादा से ज्यादा यही है कि अभी टीम बड़ी करके और फिर उनको डेप्यूट करना कि भाई आप इधर की देखभाल करें, आप इधर की देखभाल ये करें, ऐसे करके सर मेरा ये पॉइंट है। जी,
0: आप शहर के अपने निवास के आसपास के जो गार्डन्स हैं उनको आप मैनेज कर रहे हैं, राइट?
1: जी।
0: तो पब्लिक गार्डन्स जो आपके घर के आसपास हैं, तो चूंकि आप विद्याधरनगर में रहते हैं और एक वो इलाका काफी ऑर्गेनाइज वेल डेवलप्ड इलाका है और काफी सारे गार्डन्स हैं, पब्लिक गार्डन्स की सहेज रखना, उनकी हरियाली को मेंटेन रखना भी एक अपने आप में एक मिशन है, राइट?
1: जी,
0: आपकी टीम में अभी कितने युवा हैं आपके साथ?
1: सर अभी इतना वास्ट ग्रुप नहीं है, करीबन 10-11 पीपल है जो कि अपने अपने एरिया में कर रहे हैं, कोशिश प्रयास कर रहे हैं।
0: जी, कोई आपने प्लेटफॉर्म तैयार किया है इसके लिए या आप सोशल मीडिया पे कैसे कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ?
1: व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं सब, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक के थ्रू भी कर लेते हैं।
0: जी,
1: ऐसे ग्रुप बनाए हुए हैं।
0: जी, तो सोशल मीडिया का आप उपयोग कर रहे हैं इसके लिए?
1: जी सर।
0: क्या लक्ष्य है आपके भविष्य में?
1: सर लक्ष्य यही है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाए आगे की जनरेशन के लिए भी और हमारे लिए भी, ताकि हम इजीली रह सके और एक अच्छा डेवलपमेंट हो सके। अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा तो अच्छा डेवलपमेंट होगा। अगर हमारे पास एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा तो हमारा माइंड स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें हम हमारे आसपास के जो भी एरिया है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांटेशन करें अपने आसपास के एरिया में, जिससे कि हमारा एक अच्छा एनवायरनमेंट बन सके और हम सब एक साथ मिलके हमारे एनवायरनमेंट को, एक जहां भी हम रह रहे हैं उसको एक अच्छा और सुखद जीवन बना सके। जी सर।
0: नहीं बिल्कुल, आपको एक मिशन अगर आपने चुना है तो उस मिशन के ऊपर आपको एक लंबी यात्रा करनी है जी। तो आपके क्या लक्ष्य हैं भविष्य को लेकर और अपनी पढ़ाई के बीच में कैसे संतुलन करते हैं इसको लेकर?
1: जी सर, करते हैं, थोड़ा बहुत टाइम निकालते हैं, पढ़ाई भी अपनी जगह है और ये चीज भी अपनी अपनी जगह है, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों ही अपनी जगह अपनी अपना रोल प्ले करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सर जैसे मैं ऐसे डेज बना रखे हैं कि भाई सैटरडे संडे इधर ही काम करना है, या जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ये करूँ चीज। जी सर।
0: तो अपने पापा को भी साथ लेके जाते हैं, अपनी फैमिली को भी लेके जाते हैं साथ में?
1: जी सर। यस सर।
0: बहुत बढ़िया। और हम तो युवाओं से बात करते रहते हैं और युवाओं से मैं जब बात करता हूँ तो मैं युवाओं को कहता हूँ कि 5 घंटे अपना स्व अध्ययन और 5 घंटे की स्टडीज और 5 घंटे का सोशल वर्क अगर कोई युवा करता है तो उस युवा को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी फिलॉसफी है जिसको लेकर मैं युवाओं के साथ बात करता हूँ कि आप 5 घंटे वॉलंटियरिज्म और 5 घंटे अपनी स्टडीज के बीच में अगर आप बैलेंस बनाएंगे अपनी लाइफ में तो आप निश्चित रूप से आप बहुत कुछ कर पाएंगे। क्या ये बात सही है, आप इससे सहमत हैं?
1: सर बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आपने बहुत ही अच्छी बात रखी कि 5 घंटे अपनी पढ़ाई और 5 घंटे आप सोसाइटी को दे, बहुत ही जरूरी चीज है, दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं और मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। आपने वो बोला बिल्कुल, हमें आज युवा ही आगे देश को आगे बढ़ा सकता है, तो बहुत ही युवा एक अहम रोल प्ले करते हैं। वो सभी से गुजारिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा अपनी किसी भी नहीं सोशल सर्विस, यही नहीं कि भाई आप पेड़ ही लगाएं, और भी काफी सारे ऐसे हेल्थ सेक्टर में हो गया या एजुकेशन सेक्टर में हो गया। सर मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, आपने जो रखा कि 5 घंटे आप पढ़ाई में दें या एजुकेशन में दें और 5 घंटे आप सोशल सर्विस में दें, 5-5 रूल बहुत ही सही आपने बात रखी, मैं आपसे सहमत करती हूँ। और मैं सभी युवाओं से ये विनती करती हूँ कि भाई आप अपने सोसाइटी के प्रति भी कुछ रोल निभाएं, ये बहुत ही जरूरी चीज है। और मेरा यही कहना है कि भाई किसी भी जिसमें भी आपको लगता है कि पैशन है, जिसमें भी आपको लगता है कि मैं एनवायरनमेंट के प्रति कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या फिर एजुकेशन में कुछ कर सकती हूँ या स्किल्स दे सकती हूँ जो कि अनप्रिविलेज्ड हैं उनको मैं स्किल्स प्रोवाइड कराऊंगी या कराऊंगा, तो आप वो कराएं या फिर हेल्थ में कुछ उनको फैसिलिटीज दें। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी सबसे कि आप जो भी बनता हो सोशल सर्विस में आप वो जरूर करें, जिससे कि आप अपना सोसाइटी का ही अपलिफ्टमेंट होगा, उन्हीं का ही डेवलपमेंट होगा। जी सर।
0: निश्चित रूप से हमको 360 डिग्री डोमेन में काम करने की जरूरत है और 360 डिग्री में हमारा एनवायरनमेंट भी है, हमारी सोसाइटी भी है, हमारा स्किल भी है, हमारा कैरियर भी है और हमारी फैमिली भी है। तो इन 360 डिग्री पे ही के सभी आयामों पे हमें काम करने की जरूरत है, तभी हम एक सशक्त देश बना पाएंगे और हमारे युवाओं का अपना खुद का भी जीवन बेहतर कर पाएंगे। और आजकल 360 डिग्री का ही मूल्यांकन है, आप कॉर्पोरेट में जब आप जाएंगे तो HR मैनेजर जो है वो आपकी बॉस की रिपोर्टिंग से अलग हट के आजकल 360 डिग्री अप्रेजल का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि आपके क्लाइंट आपके बारे में क्या कहते हैं, आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, आपके जो दोस्त हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और इसके साथ साथ आपके नीचे का स्टाफ और आपके कलीग्स क्या आपके बारे में सोचते हैं। उस 360 डिग्री पर अप्रेजल जब होता है तभी उस एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलता है। तो ये एक बदलता हुआ दौर है, तो इस दौर की सभी चुनौतियों को देखते हुए हम लोग भी साथ में काम कर रहे हैं। तो वैष्णवी हम ये जानना चाहेंगे कि आपके कॉलेज ने आपको या आपके जहाँ पढ़ रहे थे तो वहाँ भी क्या आपको इस बारे में कुछ सपोर्ट या मोटिवेशन मिल रहा था या वहाँ पर किस तरह का माहौल रहा?
1: जी सर मिल रहा था, जैसे हमने अभी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करा तो उसमें काफ़ी हमें सपोर्ट मिला। जैसे हमें कॉलेज में भी मोटिवेट करते थे कि भाई आप अपना कुछ भी भागीदारी निभाएं सोसाइटी के प्रति, कुछ भी जैसे छोटे मोटे पेड़ हो गए हमसे लगवाया करते थे कॉलेज में, हमसे प्लांटेशन उधर भी करवाई गई है। तो ऐसा नहीं है, कॉलेज भी एक मोटिवेटिंग पार्ट था हमारे लिए और उन्होंने भी काफ़ी हमें हद तक मोटिवेट करा कि आप कुछ भी स्किल्स और दूसरे जो भी अनप्रिविलेज्ड हैं उनको स्किल्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ रोल बताएं कि स्किल्स कितनी ज़रूरी है आज के समय में। तो ऐसा नहीं है, कॉलेज ने भी बहुत हद तक हमें मोटिवेट करा और उनका एक पार्ट रहा है, इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है इस चीज़ में।
0: जी सर, कोई नई लर्निंग आपको इन दिनों में एनवायरनमेंट को लेकर कोई समझ बनी है? आप क्लाइमेट चेंज के बारे में आप क्या जान रहे हैं, आपका क्या मानना है उसके बारे में?
1: जी सर, काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है, काफ़ी हद तक लोगों में जागरूकता आ रही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करने चाहिए। काफ़ी हद तक चेंजेस आ रहे हैं, जयपुर में भी काफ़ी हद तक प्लांटेशन हो रहे हैं अलग अलग जगह, काफ़ी लोगों में मानसिकता में चेंजेस आ रहे हैं।
0: क्लाइमेट चेंज के बारे में आप क्या समझते हैं?
1: क्लाइमेट चेंज ये है कि भाई जो भी हम ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको हम, जो कि हमारी ओजोन लेयर को अफेक्ट कर रही है, तो हम उसको कम करें और जिससे कि हमारा ही फ्यूचर अच्छा होगा।
0: जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे दोस्तों के साथ बात करता हूँ कि एसी का जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री से नीचे ना लेके जाएं, और जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा, मेरे फ्रेंड्स को देखा, वो एसी भी ऑन कर लेते हैं 18 डिग्री टेम्परेचर कर लेते हैं और ऊपर से ब्लैंकेट भी यूज कर लेते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई जब आप ब्लैंकेट यूज कर रहे हैं तो फिर आप एसी को ठंडा क्यों करने की जरूरत क्या है, आप एसी को 24-25 तक रख सकते हैं अगर आपको ठंड लग रही है तो ब्लैंकेट यूज कर रहे हैं तो। और फिर ये भी है कि अगर आप 29 डिग्री पे एसी सेट कर लेते हैं और आप फैन यूज करते हैं एसी के साथ में, तो फैन जो है वो एसी, फैन और एसी का कॉम्बिनेशन जो है, फैन एसी के टेम्परेचर को और लोअर ले आता है, रूम के टेम्परेचर को और लोअर ले आता है, मतलब कि 5 डिग्री का और आपका लोअर हो जाएगा। अगर आपने 25 डिग्री पे अगर आपका एसी है तो आपको 20 डिग्री का फील कराएगा अगर साथ में आप फैन का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हमें यूथ के साथ ले जाने की जरूरत है या उनसे इस बारे में बात करने की जरूरत है, या हमारी फैमिली गॉसिप में भी हम किसी की इधर उधर की लैग पुलिंग करने की बजाय ज़्यादा बेहतर है कि हम इस तरह के साइंटिफिक ट्रिक्स पे बात करें कि हम अपनी लाइफ को और हमारी ऊर्जा जो है हमारे देश की उसको हम कैसे बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। खैर, तो आप ये बताएं कि जो पौधों को जुटाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे, बहुत मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग हो गया है आजकल। मैंने पिछले दिनों जुलाई अगस्त के महीने में पौधों को सोर्स करने की नर्सरीज में ट्राई किया, पता लगा कि सब सारे पौधे जा चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि मतलब प्लांटेशन बड़ी संख्या में हो रहा है और सर नर्सरीज में उतने पौधे नहीं बन पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कुछ युवाओं को आगे आके कुछ नई नर्सरीज डेवलप करनी चाहिए जहां से हम रीजनेबल रेट्स पे बड़ी संख्या में पौधे हर साल जो हमें जरूरत पड़ती है प्लांटेशन के लिए वो हम कर सकें?
1: जी सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपने जैसे बोला ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पौधों को सोर्स करना, तो बेसिकली ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप नर्सरी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, वहाँ पे पौधे पाए जाए, मिलते नहीं हैं, रीजनेबल रेट पे नहीं मिलते हैं, और हम नर्सरी में जाएं तो हमें पौधे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपने जैसे कहा कि नर्सरी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए और उसमें पौधे मिलें, सबसे मेन तो यही है कि जिससे कि ट्री प्लांटेशन में आगे जुट सके हम।
0: जी सर, आप टेक सेवी हैं और इस बार तो राजस्थान सरकार ने अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है हेलो राजस्थान का, और उस टैग पे पेड़ों को जियो टैगिंग करके ही प्लांटेशन करना है, तो क्या आपका क्या अनुभव रहा उस एप्लीकेशन के साथ में? उसमें कुछ बदलाव की जरूरत लगती है आपको या उसमें लगता है कि हाँ नहीं ठीक है वो उपयोगी है एप्लीकेशन युवाओं के हिसाब से?
1: सब मेरे हिसाब से तो सही लगा मुझे, मैंने एक दो पेड़ों के करे हैं जियो टैगिंग, तो मुझे काफी हद तक सही लगा। एक दो बार फोटो अपलोड होने में दिक्कत आई थी थोड़ी, बाकी तो जहाँ तक मैंने यूज करा तो मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं आई।
0: तो ये एक ऑथेंटिक तरीका है ना?
1: जी सर, ऑथेंटिक है काफी हद तक, अगर सही रूप में करा जाए तो ऑथेंटिक है।
0: आप एक राष्ट्रीय युवा अवार्डी हैं, कैसा अनुभव रहा आपका? आप किस साल आपको ये पुरस्कार दिया गया?
1: नहीं सर, आई एम नॉट इन नेशनल यूथ अवार्डी, आई अप्लाइड फॉर इट।
0: अरे, यू अप्लाइड फॉर इट, ओके।
1: बट
0: नहीं, अच्छा, ओके, यू अप्लाइड फॉर इट, बट यू आर ट्राइंग फॉर इट, राइट? बढ़िया बढ़िया, आप लगातार आप ऐसे ही प्रयास करते रहे। आपकी आगे की भविष्य की क्या योजना है?
1: सर, योजना यही है कि मैं अपने एनवायरनमेंट को कुछ दे पाऊँ या सोसाइटी को कुछ वापस दे पाऊँ। मेरा मोटिव यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा फील्ड में मैं काम कर पाऊँ और कुछ, मतलब मैं सोसाइटी के प्रति कुछ अपना भागीदारी निभा पाऊँ, यही है सर मेरा मोटिव अभी का।
0: वंडरफुल। तो वैष्णवी जी, आप ऐसे ही काम करते रहें और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आप हरियाणा राजस्थान एप्लीकेशन को देखिएगा, इसमें हम और क्या बदलाव कर सकते हैं वो उन बदलावों की के लिए सरकार को भी सजेस्ट करिएगा और हम तक भी पहुंचाइएगा। और रेडियो मधुबन के साथ आप जुड़े रहिए, आपको शुभकामनाएं।
1: सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके मार्गदर्शन में मैं ये काम करती रहूंगी, आपका मार्गदर्शन बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू वैष्णवी आप जुड़ने के लिए। और श्रोताओं, जो हमसे देर से जुड़े, वे जाने कि हमारे साथ आज थी वैष्णवी धवाई, जो जयपुर से आती हैं और एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और प्लांटेशन और क्लाइमेट चेंज को लेकर सजग युवा हैं और अपना अपनी भूमिका को लेकर जागरूक हैं और लगातार प्लांटेशन कर रही हैं। ऐसे ही आप सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारा फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM, रेडियो मधुबन। नमस्कार, मैं RJ शरद।

0: मधुबन रेडियो के इस कार्यक्रम जुनून में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट शरद। आज हम लोग एक नई शख्सियत, नए जुनूनी के साथ फिर से आए हैं। आज हमारे साथ हैं एक युवा चेहरे जयदीप पांचाल। जयदीप अपने गांव और अपने शहर में क्या कर रहे हैं और इनका क्या जुनून है, आइए जयदीप से जानते हैं। जयदीप, आपको की जीवन की यात्रा में आपने सामुदायिक सेवा को चुना या आपने कुछ इनोवेटिव चीजें की और उसके फलस्वरूप आपको राजस्थान सरकार ने 2025 का यूथ आइकन पुरस्कार भी दिया, लेकिन जुनून कार्यक्रम में हम लोग आपके जीवन और आपके जुनून के कारण को समझने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। पुरस्कार तो सरकारों की तरफ से आते जाते रहते हैं, है ना। तो जयदीप, हम ये जानना चाहेंगे कि आप की यात्रा क्या है, पहले तो अपने बचपन के बारे में बताएं, फिर हम आपसे जानेंगे कि अब आप क्या करते हैं। जी जयदीप।
1: सर, मेरा नाम जयदीप पांचाल है और मैं अलवर जिले के राजगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव पूर्णला का रहने वाला हूं। बेसिकली मेरा जो शुरुआत की जो प्रारंभिक शिक्षा रही है वो जो ग्रामीण स्तर पे राजकीय महाविद्यालय से हुई है। सर, हमारे जो गांव का परिवेश है वो थोड़ा फॉरेस्ट एरिया वाला है, क्योंकि हमारे गाँव के समीप ही सरिस्का टाइगर रिजर्व की जो सीमा है हमारे गाँव से ही लगती हुई है। तो ऐसे करते हुए हमने शुरुआत से ही कम संसाधनों में रहते हुए हमारी जो शिक्षा है उसको आगे बढ़ाया। तो हमने अक्सर देखा कि हमारे जो आसपास के गांव है या फिर जो हमारा गांव है वहां पे लोग शिक्षा के प्रति इतने जागरूक नहीं थे। तो जब मैंने कॉलेज की, उसके बाद मैंने देखा कि लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए और इसके लिए कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो तब से मैंने फिर अपना जो सोशल वर्क है, कम्युनिटी वर्क है, तब से स्टार्ट किया।
0: जी, हम उस पर आते हैं, लेकिन पहले हम जयदीप फिर से वहीं शुरुआत करते हैं कि आपके स्कूल में आप कहाँ पढ़ रहे थे और आपके पेरेंट्स किस प्रकार से आपको गाइड कर रहे थे, ये हम जानना चाहेंगे।
1: जी सर। सर, शुरुआती शिक्षा मेरी, जैसे कि मैंने बताया कि गाँव में ही राजकीय माध्यमिक विद्यालय से स्टार्ट हुई थी। तो ग्रामीण स्तर पर हमारे आसपास के 6 गांवों में सिर्फ एक स्कूल था, तो वहीं पर रह के हमने जो उच्च माध्यमिक स्तर की जो पढ़ाई है जो पूरी कंप्लीट वहीं से की। उसके उपरांत हमारे वहां पे कस्बा पड़ता है तहसील राजगढ़, वहां से स्नातकोत्तर किया। उसके बाद में एमए हिस्ट्री वहीं से किया मैंने, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ से। तो शुरुआत से ही मैं जो शहर की जो आबोहवा है और जो शहर का वातावरण उससे दूर रहा, और ग्रामीण स्तर पर रहने का फ़ायदा ये मिला कि जो बाहर की जो चीज़ें उनको देखने की उत्सुकता शुरू से बनी रही। तो इसी को ध्यान में रखते जब बाहर निकले और देखा तो फिर सोचा कि जो अपना गांव है, अपने जो ग्रामीण परिवेश है उसको भी हमको डेवलप करना चाहिए। तो इसके लिए फिर हमने वहाँ पे ग्रामीण लेवल पे अपने काम स्टार्ट किया।
0: पिछले दिनों जो सरकार की तरफ से युवा आइकन पुरस्कार है वो आपको मिला, लेकिन फिर से वही बात है कि वो एक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अभी जो आपको जिस कैटेगरी में वो पुरस्कार मिला वो कैटेगरी क्या थी और आपने क्या नवाचार उसमें किया और कैसे वो यात्रा शुरू हुई, उसकी बात अब शुरू करते हैं।
1: जी सर, अभी हाल ही में युवा दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार ने राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड से मुझे नवाजा गया है। ये भी राजस्थान सरकार की इसी साल की पहल है कि जो युवा कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि और भी युवा आगे बढ़े। तो इसकी शुरुआत मेरी हुई थी 2019 में। कोविड काल से पूर्व हम गांव में कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे, तब हमने देखा कि हमारे आसपास शिक्षा को बढ़ाने के लिए लोगों को इसके प्रति जागरूक करना होगा, क्योंकि जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्र है और वहाँ पे लोग नशे या तंबाकू सेवन जैसी आदतों से भी घिरे हुए थे। तो वो क्या करते थे कि जो उनका जो कीमती पैसा होता था वो अपने बच्चों की पढ़ाई में न लगाकर वो उनको अपने नशे आदि के लिए उनका यूज़ करते थे। तो हमने फिर अपने जो ग्रामीण स्तर है वहीं से एक शुरुआत की और नशे की आदत से उनका छुड़वाने के लिए हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम और जो लोकल जो रिसोर्स पर्सन होते हैं उनके साथ कोलैब करके एक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया। जिससे कि हमने जो हमारी जो ग्राम पंचायत है कोंडला उसको 2020 के अंदर पूरी पंचायत को टीबी से मुक्त कराने में सफलता हासिल की। तो इससे ये हुआ कि हमारे जो आसपास के लोग हैं उन्होंने नशे को छोड़ा और जो अपना कीमती पैसा है वो बच्चों की पढ़ाई में लगाना स्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि जब लोग तो जागरूक हो गए हैं पढ़ाई के लिए, पर हमारे वहाँ पे उचित संसाधन नहीं थे जिनके माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके, तो और एक माहौल की कमी थी, तो उसको क्रिएट करने के लिए हमने कुछ कम्युनिटी लाइब्रेरीज की हमारे यहाँ पे लोकलिटी में स्थापना की। तो उसके लिए हमने सीमित संसाधनों में रहते हुए जो हमारे रिसोर्सेज थे उनको आकलन किया और देखा कि हम सीमित संसाधनों में रहते हुए क्या कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारे आसपास के क्षेत्र में सबसे पहले हमने लोगों को जोड़ा, इसके लिए हमने एक टीम बनाई, यूथ टीम कोंडला, इसको हमने नेहरू युवा केंद्र संगठन के एक यूथ क्लब के रूप में रजिस्टर करवाया। उसके बाद में एक टीम बनाकर तहसीलदार विद्युत से मिले, फिर हमने देखा कि हमारे गांव में के आसपास जैसे सभी गांव में सामुदायिक भवन कम्युनिटी हॉल सरकार के द्वारा बनाए गए होते हैं, परंतु उनमें कोई सुविधाएं नहीं होती और वो बिना काम के गांव में पड़े रहते हैं। तो हमने देखा और सभी ने सलाह करके हम उन कम्युनिटी सेंटर्स को हमने सरपंच से और जो ग्राम पंचायत की समिति होती है उससे हमने लिया और उनको एक लाइब्रेरी सेंटर कम ट्यूशन सेंटर के रूप में डेवलप किया। तो हम क्या करते थे कि जो पहले तो स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, उसके बाद में स्कूल से जब छूट के वो अन्य प्रकार के क्रियाकलापों में व्यस्त होते थे जिनसे उनकी शिक्षा में अवरुद्ध होता था, तो हम उनको कम्युनिटी सेंटर पे उनको इकट्ठा करते, उनको फ्री ट्यूशन क्लासेस, उनको कैरियर गाइडेंस आदि देकर उनको एक लाइब्रेरी के रूप में वहाँ पे बैठाते, जो स्कूल के बाद में बच्चे वहाँ पे आने लगे। तो ये पहल हमारी काम लाई और फिर धीरे धीरे और जगह के लोग भी हमसे जुड़ते गए और इस प्रकार से हमने अपना काम आगे बढ़ाया।
0: जी नहीं, बेहतरीन, आपने अपनी पूरी जर्नी को बहुत संक्षेप में रखा है, लेकिन मैं आपसे फिर से वही जानना चाहूँगा कि इतना सब कुछ करने के लिए टीम चाहिए होती है और कम्युनिटी सर्विस करने के लिए आप टीम बनाना

0: आवश्यक है। तो आपकी जो टीम है वो आपने कैसे बनाई और आपके युवा मंडल में कौन कौन से सदस्य थे, ये मैं जानना चाहूँगा। जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जानना चाह रहे होंगे कि ये खूबसूरत आवाज किस युवा की है। तो हमारे साथ हैं जयदीप पांचाल जी, दुनिया के की नक्शे पे अपनी छाप छोड़ने वाले राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का से के पास के गांव से हैं। टुंडला इनके गांव का नाम है, जैसा जयदीप ने बताया। अब टुंडला की तस्वीर कैसे बदली है उस पर बात करेंगे। और ये वो जुनूनी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हित को बाद में रखा और सोचा कि मैं कैसे अपने गांव को बेटर बनाऊंगा, और अब जब मेरा गांव बेटर हो जाएगा तो मेरा जीवन तो अपने आप ही बेटर होना है। यही एक रिश्ता है जो जुनूनी व्यक्ति समझता है, लेकिन समाज के बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते, इस समीकरण को, इस राज को वो नहीं समझ पाते कि ये सबसे बड़ा राज है जीवन का, कि आप कैसे दुनिया को बदलते हुए अपने आप अपना निर्माण करते हैं। और यही निर्माण की प्रक्रिया में हमारे युवा जयदीप पांचाल हैं, जो अभी राज्य स्तर पर पहुंचे हैं, निश्चित रूप से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने काम के माध्यम से पहुंचेंगे, क्योंकि ये राज इन्होंने जान लिया है और ये राज है जुनून का। तो हम जुनून की बात कर रहे हैं, जुनून में इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। तो जशोदा हमसे देर से जुड़े हैं, आप सुन रहे हैं मधुबन रेडियो और मधुबन रेडियो के 107.8 FM पर आपका स्वागत है। तो जयदीप जी।
1: जी सर।
0: हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि आपने कैसे संगठन बनाया। तो संगठन बनाने की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है, वही फाउंडेशन है। तो वो संगठन बनाने में क्या समस्याएं आपको आई और परिवार ने आपको सहयोग किया कि नहीं किया?
1: जी सर, मैं आपको बताना चाहूँ कि बचपन में जब मैं गांव में रहता था तो मेरे जो दादाजी थे वो गांव के पोस्ट मास्टर थे, तो इस वजह से जो गांव की एक चौपाल के रूप में पोस्ट ऑफिस को जाना जाता था, और वहाँ पे सभी गांव के गणमान्य लोग आते रहते थे, तो पूरा जो माहौल था वहाँ पे सामाजिक रूप से समृद्ध था। तो फिर बाद में जब मैंने 2019 में टीम बनाने का सोचा तो इसके बारे में हमने थोड़ी जानकारी मुहैया की, तो देखा कि नेहरू युवा केंद्र संगठन जो युवाओं को जो सोशल सामाजिक कार्य से जुड़ना चाहते हैं उनका एक यूथ क्लब वो बनाते हैं, तो हमने भी उनके साथ जुड़कर एक यूथ क्लब अपना वहाँ पे बनवाया। तो इसमें सबसे पहले फिर हमने देखा कि इसमें कौन कौन जुड़ सकते हैं, तो जो समान रोशनी रखने वाले जो हमारे आसपास के युवा थे हमने उनको जोड़ा। उसके अलावा हमने ऐसे युवाओं को भी जोड़ा जो राजकीय सेवा और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और उनको काफ़ी हद तक सफलता मिल गई थी परंतु उनकी ज्वाइनिंग नहीं आई थी, तो ऐसे लोगों को भी हमने अपने क्लब में जोड़ा। तो से हुआ ये कि वो जो युवा है उनको पढ़ाई का काफ़ी अनुभव था, तो वो हमारे जो निःशुल्क ट्यूशन क्लासेस थी उनमें वो पढ़ाने का भी काम कर लिया करते थे। ऐसे करके हमने कम से कम 15 से 20 लोगों की टीम बनाई। फिर उसके साथ में हमने देखा कि जो कोई भी काम करने के लिए फंड्स की आवश्यकता होती है, तो हमने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप के थ्रू, और जो गांव में लोग रहते थे उनसे हमने खुद जाके रूबरू हुए और उनके हमारे टीम के बारे में बताया, हमारे गोल्स के बारे में बताया। तो धीरे धीरे जब अगर आप कोई भी काम यदि पूरी ईमानदारी और नेक दिल से करते हो तो लोग आपके साथ अवश्य जुड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा करते करते हमारे गांव के बहुत सारे व्यक्ति हैं और आसपास के गांव के हैं जो सरकारी सेवा में पहले से ही कार्यरत थे और अच्छे अच्छे पदों पे थे, तो हमने उनको अपने टीम के बारे में बताया तो वो भी हमसे कनेक्ट हुए। फिर हमने लाइब्रेरी के लिए उनको बताया कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके किसी बच्चे का या फिर किसी दोस्त का या फिर स्वयं का कभी जन्मदिन आता है तो आप उसको जन्मदिन भी मनाइए, परंतु आप 1100 रुपये की राशि गाँव के सरकारी स्कूल या फिर लाइब्रेरी में आप डोनेट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से अपन गाँव में संसाधन विकसित कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते हमारे पास करीब 80,000 की हमको शुरुआत में सहायता मिली, उससे हमने लाइब्रेरी सेटअप करने में उसको यूज़ किया। तो धीरे धीरे करते करते हमारा ये जो मिशन है वो स्टार्ट हुआ।
0: बहुत बढ़िया, तो ये से एक शुरुआत थी। तो संगठन में आपने जैसा बताया कि आपने कुछ पढ़ने वाले, कुछ खेलने वाले और कुछ ऐसे बच्चे जो जिनको दिशाहीन थे उनको आपने साथ में युवाओं को लिया और आप एक संगठन बनाया। तो संगठन ये किस नाम से काम कर रहा था और इस संगठन का नाम क्या है?
1: सर, हमको उस टाइम ज़्यादा अनुभव नहीं था तो इसलिए हमने टीम का नाम यूथ टीम कोंडला ऐसे ही कुछ रखा था। परंतु बाद में अभी थोड़े दिन पहले हमने उसको एक एनजीओ के रूप में भी करवाया, सरिस्का इंडिया फाउंडेशन। तो अभी उसके साथ मिलकर हम पूरे सरिस्का टाइगर रिजर्व एरिया में धीरे धीरे हम एक्टिविटीज को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जब आपने सरिस्का इंडिया फाउंडेशन के नाम से आप बता रहे हैं कि जंगल को लेकर भी आप संवेदनशील थे और आप वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को लेकर भी आप संवेदनशील थे, आपने अपनी बातचीत में कई बार उस संदर्भ में बात की है।
1: जी सर।
0: तो मानवीय गतिविधियों का क्या प्रभाव जंगल पे पड़ रहा है यदि?
1: सर, मानवीय गतिविधियों का डेफिनेटली काफी बुरा प्रभाव जंगल पे पड़ रहा है। मैं हमारे वहीं के जंगल के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूँगी, हमारे जो जंगल है, एक तो हमारा जो अलवर जिला है दिल्ली NCR में आता है
0: जी,
1: उसके अलावा जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वहाँ पे सर पहले तांबे की भी काफी खदानें थी
0: जी,
1: और के अलावा संगमरमर जो पत्थर निकलता है उसके भी काफी खदानें। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसके माध्यम से अगर भारत में यदि कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य है तो उसके 1 किलोमीटर के दायरे में आप कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं कर सकते
0: जी।
1: तो वहाँ पे उस कमर्शियल एक्टिविटी बंद होने के कारण कम से कम 100 से 120 खाने खदानें हैं जो बंद हुई थी, परंतु अभी नेताओं ने या फिर पॉलिटिशियंस ने मिलकर उन नियमों में कुछ बदलाव करवाकर दोबारा उन खानों को शुरुआत करवाना वो चाह रहे हैं। तो इससे काफ़ी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उन पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि जो फूड चेन होती है वो प्रभावित होती है। फूड चेन प्रभावित होने से जो हमारी फसलें हैं वो बर्बाद होती है, जो किसान है वो फसलें बहुत मेहनत से उगाता है तो वो सर उस पर काफी कुप्रभाव पड़ता है
0: जी। तो आप क्या संगठन ने क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया है कि आप इन खानों को रुकवाएंगे या आप इस प्रकार का एक्टिविज्म करना चाह रहे हैं?
1: सर, अभी फिलहाल हमारा संगठन है जो सरिस्का इंडिया फाउंडेशन है, तो अभी हम जागरूकता और जो ऐसे छोटे मोटे क्रियाकलाप है उनके प्रति अभी हम काम कर रहे हैं कि जो सरिस्का के आसपास के क्षेत्र हैं उसमें जो खाद्य श्रृंखला नहीं टूटे उसके लिए अभी हम काम कर रहे हैं, जिससे कि हम जो सरकारी स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं उनके साथ मिलके उनको ये जागरूक कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से अपने आसपास के जो वन्य क्षेत्र हैं उनको बचाने के लिए काम कर सकते हैं। जैसे सर एक आइडिया बताऊँ आपको, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि अमूमन यदि सांप दिख जाता है किसी को तो वो उसको मारने के लिए ही प्रेरित होता है, उसको मार के ही मतलब उसको वहाँ पे भगाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों में जागरूकता की कमी है कि ये सांप जहरीला है या फिर ये जहरीला नहीं है। ये जैसे एक सांप होता है जो चूहों को खाता है, तो वो सांप हमारे खेतों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। यदि वो खेतों में से चूहों को खाएगा तो उससे चूहे ख़त्म होंगे और खेतों में फसल अच्छी होती है। इसके अलावा बहुत सारी तितलियाँ होती हैं जो अंकुरण के लिए आवश्यक होती हैं, काफ़ी बर्ड्स होते हैं तो वो भी हमारे जो खाद्य श्रृंखला के लिए काफ़ी ज़रूरत है, हम इसके लिए वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा राजस्थान सरकार का एक अभी उन्होंने युवा साथी केंद्र एक संस्था स्थापित की है जो प्रत्येक संभाग पे है, जो युवाओं को मेंटरशिप का काम करती है जिसके माध्यम से वो कैरियर काउंसलिंग और मानसिक रूप से युवाओं को कैसे समृद्ध किया जा सकता है उसके प्रति कार्य कर रही है। तो हम उस सेंटर के साथ मिलकर और जो फॉरेस्ट विभाग है वन विभाग की टीम के साथ मिलकर अभी सर जन जागरूकता का काम करते हैं
0: जी। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर आप समन्वय और सहयोग के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने गांव की ही नहीं अपने परिवार और अपने स्वयं की भी तस्वीर हो पाएंगे, जीवन को नई राह दे पाएंगे। और यही युवाओं को सामुदायिक सेवा के माध्यम से सीखना चाहिए और देश की युवा नीति भी यही कहती है कि हम सामुदायिक सेवा के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। खैर, तो इस पूरी प्रक्रिया में आपने ये सारी बात अपने बताई, लेकिन मेरा एक सवाल मन में रह गया, आपने जब पुस्तकालय बनाया तो आपने कौन कौन सी पुस्तकें लाइब्रेरी में आपने रखी और कैसे उनका चुनाव किया ये मैं जानना चाहूँगा। अब पुस्तकालय का नाम क्या है?
1: सर, पुस्तकालय का नाम हमने स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय रखा है और उसमें हमने ये वहाँ पे किया है कि व्यवस्था उसमें अभी जैसे हर पुस्तकालय का हमने एक जैसे क्लास मॉनिटर होता है वैसे मॉनिटर हमने वहाँ पे रखा है। तो वो ये काम करता है कि आप वो जो भी वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो या तो वो छोटी क्लासेस के होते हैं या फिर कंपटीशन की जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो होते हैं, तो हमने

0: थी, बहुत सारी किताबें हैं जिनको हमने चूज़ किया कि उनको जो सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सभी को समान रूप से कायम आ सकें। इसके अलावा जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो स्वयं की किताब लाते हैं और वहाँ पे रखते हैं। उसके अलावा हमने एक पहल और की है कि जो राज्य के सेवाओं में जो छात्र या फिर जो प्रतियोगी हैं वो चले जाते हैं, उसके बाद जो उनके वहाँ पे किताबें बचती हैं तो वो उसको उस पुस्तकालय में डोनेट कर देते हैं। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे काफी किताबों का संग्रह हो जाता है
1: जी। तो आपके जो पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय का खुलने का और बंद होने का समय क्या रखा है आपने?
0: सर, काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दिन के समय पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो वो दिन में काम भी होते हैं। तो हमारी पुस्तकालय एवरेजन सुबह 7 बजे से खुलती है और शाम को 7 बजे तक चलती है। इसके अलावा हम जो वो बच्चे होते हैं, क्योंकि पुस्तकालय में काफ़ी कीमती सामान भी होता है तो करीब, और छात्र संख्या भी थोड़ी अब बढ़ी है तो दिन में एक साथ सभी का बैठ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो काफ़ी ऐसे जो बड़े बच्चे होते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि उनको हम रात को भी वहाँ पे आने का एक्सेस देते हैं। एक तो उससे सुरक्षा बढ़ जाती है और दूसरा रात में आने से वो अपना बिना रुकावट के वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो सर देखा जाता है कि अमूमन वो 24 घंटे ही खुली रहती है हमारी लाइब्रेरी में।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मधुबन रेडियो का आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून। तो जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वो हमें सुन रहे हैं 107.8 FM पर, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन मधुबन रेडियो, और हमारे साथ हैं आज एक युवा जुनूनी जयदीप पांचाल। तो जयदीप अपनी यात्रा के बारे में बहुत विस्तार से बता रहे हैं और हम उनसे समझना चाह रहे हैं कि वे दुनिया को खूबसूरत बनाने के बारे में कैसे योजना बना रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। तो जयदीप, हम ये जानना चाहेंगे जो आपका संगठन है, डेफिनेटली आपने बनाया है उसको सरिस्का इंडिया फाउंडेशन, तो सरिस्का इंडिया फाउंडेशन जो आपकी एक यंग टीम है वो कैसे काम को आगे बढ़ा रही है?
0: जी सर, अभी हम सर मेनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोलैब में काम कर रहे हैं, तो उनकी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो आती रहती हैं, उसके अलावा हमारे भी कुछ आइडियाज़ होते हैं तो हम उनके साथ डिस्कस करते हैं। फॉरेस्ट टीम से ACF सर, CCF, ODFO सर हमारे साथ काफ़ी, क्योंकि वो भी यूथ ही हैं तो उनके साथ काम करने में थोड़ा ठीक रहता है। उसके अलावा राजस्थान यूथ बोर्ड का भी हमें प्रॉपर सहयोग मिल रहा है, और नेहरूया केंद्र जो अभी माई भारत के रूप में जाना जा रहा है तो माई भारत के साथ भी हम कोलैब करके काफ़ी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हमारे क्षेत्र में करवा रहे हैं। अभी माई भारत के थ्रू कुछ ELPs भी आई हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम्स, तो उनके साथ भी हम मिलकर ELPs के माध्यम से अपने जो यूथ हैं उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं।
1: जी, आप बता पाएंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम क्या है? मैं अपने श्रोताओं को भी थोड़ा सा बताता हूँ। एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम सेवा से सीखे या कहें कि अनुभव से सीखे एक कार्यक्रम है जो भारत सरकार ने डिजाइन किया है और पूरी दुनिया में युवाओं को आगे लाने के लिए इस प्रकार की इस प्रक्रिया को बेहतर समझा गया है। और इसका मकसद ये है कि युवा अलग अलग छोटे छोटे कार्य करते हुए प्रशासन के साथ, कॉरपोरेट के साथ, समाज के साथ सीखें, और चूंकि अनुभव से सीखने की प्रक्रिया को ही रियल माना गया है सीखने की दुनिया में, कि आप कुछ करके ज़्यादा बेहतर सीख पाते हैं, और फिर उसको मालूम चलता है उस युवा को उस प्रक्रिया में कि ये कार्य मेरे लिए बना है और इस कार्य को मैं ज़िंदगी भर अपना सकता हूँ, और इस काम को करने के लिए मेरे ज़िंदगी का मकसद जो है इसी काम से सिद्ध होता है, या मुझे ये कार्य अच्छा लगता है, मैं इसको बिना थके कर सकता हूँ। तो ऐसी समझ उसकी बन सके और वो सही उम्र में सही कार्य को चुन पाए, या कहें कि अपनी पसंद का कार्य चुन पाए, या कहें अपनी प्रवृत्ति या अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य को चुन पाए, उस पेशे को चुन पाए, ऐसा इस कार्यक्रम का मकसद है। और ELP कार्यक्रम से युवा शक्ति को भी एक नई ऊर्जा मिलती है। इस सारी संभावना को देखते हुए भारत सरकार ने ELP प्रोग्राम जारी किया है, और कोई भी युवा माय भारत पोर्टल पर, भारत सरकार के मेरा युवा भारत पोर्टल पर जाकर इस प्रक्रिया से जुड़ सकता है। तो जयदीप ने चूंकि इस विषय को छेड़ा है तो मैंने भी इस पर अपनी बात रखी है। तो जयदीप, आप ये बताएं आपका क्या अनुभव रहा ELP कार्यक्रम के साथ और आपके युवाओं का क्या रुझान है, बताएं।
0: सर, हमारे क्षेत्र में हमने युवाओं को जब माय भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया तो हमारे क्षेत्र में युवाओं को इसके प्रति काफ़ी अधिक रुचि थी, तो एक समय ऐसा भी आया जब पूरे देश में सबसे अधिक

0: रजिस्ट्रेशन हमारे अलवर डिस्ट्रिक्ट से थे, तब हमने देखा कि हमारे यहाँ ELP प्रोग्राम्स काफ़ी चलाने चाहिए, तो हमने जो लोकलिटी में जो यूथ है उनसे कंसिडर किया कि हमको आपको किस क्षेत्र में सीखना है। तो उन्होंने बताया कि एक तो हमको जैसे पुलिस विभाग के साथ उनके कार्य जो करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में उनके साथ मिलकर काम करना है, तो हमने पुलिस विभाग के साथ में मिलकर ELP प्रोग्राम एक सेटअप किया। उसके अलावा जो राजकीय अस्पताल होते हैं तो उसमें भी हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं, उनको हमने वहाँ पे एनरोल करवाया और वो हॉस्पिटल में किस प्रकार से काम होता है, किस प्रकार से लोगों की वहाँ पे सेवा की जा सकती है, तो वहाँ पे अभी वो ELP प्रोग्राम्स हमारे यहाँ चल रहे हैं।
1: जी, मैं आपको बताऊँ कि ELP कार्यक्रम के माध्यम से मेरे जिले करौली जहाँ पर मैं कार्यरत हूँ वहाँ पर भी एक नया अनुभव ये रहा कि जिस अस्पताल में मैंने कुछ महिला हमारी वॉलंटियर्स को, युवा महिला वॉलंटियर्स को संलग्न किया, तो मैंने देखा कि वहां पर महिला चिकित्सकों का अभाव था और वहां के लेबर रूम में महिला चिकित्सक ना होने के कारण जो गर्भवती महिलाएं जो थी वो अपने डिलीवरी के लिए या कहें कि अपने जच्चा बच्चा के इलाज के लिए नहीं आ रही थी, और या कहें कि अपने डिलीवरी के लिए उस अस्पताल को नहीं चुन रही थी और वो जयपुर या किसी और बने बड़े शहर में जाने का प्रयास कर रहे थे जिससे कि उनके जीवन में खर्चीलापन आ रहा था। तो जब हमने हमारे वॉलंटियर्स को वहाँ पर डिप्यूट किया तो एक महीने के अंदर ये रुझान आया कि मालूम चला कि महिला प्रसूताओं की संख्या वहाँ पर बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे मदद के लिए, हमारे सहयोग के लिए यहाँ पर महिला स्टाफ अवेलेबल है, जबकि वो हमारे वॉलंटियर्स थे। और हमारे ELP कार्यक्रम के माध्यम से, चिकित्सक के माध्यम से युवाओं को जानने को मिला कि कौन कौन से ऐसे बचाव हैं, कौन कौन सी ऐसी दवाइयां हैं या किस प्रकार के टेस्ट हैं या क्या देखरेख करना चाहिए जच्चा बच्चा को, तो ये सब संभावनाएं भी हमारे वॉलंटियर्स के माध्यम से उन परिवारों में पहुंची जिन परिवारों में जागरूकता की कमी सामान्यतः रह जाती है, और उस जागरूकता की कमी के कारण बच्चा कम उम्र में या तो विकलांग या फिर कमजोर हो जाता है। और आपको तो मालूम ही है करौली और कुछ देश के हमारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं का जो विकास है, शारीरिक विकास है, वो देश के स्टैंडर्ड मानकों से कम है, जो कि हम पोषण भी कह सकते हैं। तो किस प्रकार की प्रक्रिया से बचाव करने में ELP कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा योगदान है, तो ऐसा ही कुछ रुझान हमारा है जो मैंने आपसे साझा किया। और अलवर में भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नए प्रयास होते रहे होंगे, कुछ ऐसी बात जो आपके युवा संगठनों के माध्यम से आपने सीखी, ये आपके जीवन के आगे का मकसद क्या है और आप क्या सोचते हैं इस पर भी प्रकाश डाले हैं जयदीप जी।
0: जी सर, सर मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी जो राजस्थान सरकार है वो एक यूथ डेलीगेशन भेज रही है जापान के लिए, तो अभी उसमें एप्लीकेशन आए हैं, अभी हमारा PPT प्रेजेंटेशन हुआ था SMS स्टेडियम में, तो फिलहाल तो अभी उसमें मेरा जाना क्या है, आगे देखते हैं क्या रहता है। तो वहाँ पर जो मेरा जो PPT प्रेजेंटेशन का विषय था कि एम्पावर यूथ, एम्पावर राजस्थान, तो उसके माध्यम से मेरी एक पहल आगे भविष्य में ये रहेगी कि हम किस प्रकार अपने राजस्थान के युवाओं को स्किल करके उनको सशक्त बनाकर 2047 तक किस प्रकार से हम भारत को एक विकसित राष्ट्र का दर्जा दिलवाने में अपन किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। तो अभी आने वाले भविष्य में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर मेरा जो फोकस एरिया है वो रहेगा।
1: नहीं, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 2047 तक हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाए, तो इस विकसित राष्ट्र की प्रक्रिया में हमें अभी से हमारे समाज के, जैसे आपने बताया कि हमने बच्चों को जागरूक किया, पढ़ने के लिए मोटिवेट किया, अब आप सोचिए कि जो बच्चा अगर आज स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाता है वो नहीं पढ़ पाता है, तो निश्चित रूप से जो बच्चा आज 5 साल का है वो 2047 में 30-40 साल का होगा और वो नहीं पढ़ पाएगा, आज ड्रॉप आउट हो गया है तो वो बच्चा उस समय भी निरक्षर होगा, तो हमारा 2047 का सपना जो है वो टूट जाएगा। तो हमारा एक भी व्यक्ति हमारा निरीक्षर ना रहे, ये 2047 में विकसित होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मानक है, और तो हमें आज ही सभी बच्चों को विद्यालय में पढ़ाना सुनिश्चित करना होगा और उनको एक अच्छी शिक्षा देनी होगी अगर हमें 2047 का सपना पूरा करना है, अन्यथा ये सपना पूरा करना मुश्किल होगा। तो इस प्रक्रिया में आपने बताया कि हम भी सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सरिस्का और आसपास के इलाके में कुछ ना कुछ प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे आगे की क्या प्रक्रिया है। जापान तो आप निश्चित रूप से जाएंगे ही, वो तो राजस्थान सरकार आप जैसे युवाओं को लेकर जाती है और ये यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम से ही हम सीखते हैं। और आपको बताऊं कि जयदीप, हमारे आज़ादी के आंदोलन में भी इस यूथ एक्सचेंज का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब हमारे लीडर्स जो जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन को लड़ा है वो जब यूरोप गए, अमेरिका गए, तब उनको मालूम चला, चाहे उसमें लाला हरदयाल हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे बाबा साहब हो, जो भी लोग इस आंदोलन में जुड़े रहे उनको मालूम चला कि दुनिया को में कैसे जिया जाता है, युवाओं को कैसे पढ़ने के लिए 24 आवर लाइब्रेरी मिलती है, कैसे उसको कसरत और व्यायाम के लिए खेल के मैदान मिलते हैं, कैसे वो अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकता है, वो बाल विवाह से मुक्त है, है ना, तो किस प्रकार के जो सामाजिक कुरीतियों से वो दूर है, तो उसको किस प्रकार से फ्रीडम और स्वतंत्रता मिलती है। तो जब हमारे युवा बाहर गए जो ये क्रांतिकारी थे, तो उनको मालूम चला कि दुनिया में कैसे जिया जाता है, कि दुनिया में कैसे मानक है, हमारे स्टैंडर्ड हैं, क्या सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, तब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, हमें भी आज़ादी का आंदोलन करना है और हमें अपने देश को हमारे हाथों में लेके ऐसे ही विकसित बनाना है। तो तभी यूथ एक्सचेंज की संकल्पना को मजबूती मिली और यही यूथ एक्सचेंज है। इसी यूथ एक्सचेंज के माध्यम से हम, भारत सरकार चाहती है या राजस्थान सरकार चाहती है, अलग अलग राज्य सरकार चाहते हैं कि हमारे युवा विदेशों में जाएं और सीखें। निश्चित रूप से जब आप जापान जाएंगे तो दुनिया के एक विकसित राष्ट्र में जब जाएंगे तो आपको 2047 के लिए एक विजन मिलेगा, तो वो मौका आपको मिले, ऐसी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन हम आपसे चलते चलते ये जानना चाहेंगे, ऐसा कोई सवाल जो मैं आपसे पूछना भूल गया हूं और आपको लगता है कि आप बताना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, वो बताएं। और एक बार आप, हम ये भी आपने एक विषय रखा कि एम्पावर यूथ एम्पावर राजस्थान, तो उसकी संकल्पना क्या है, उस पर आप चाहें तो 2 से 5 मिनट आराम से आप विस्तार से हमें बताएं, हमारे श्रोताओं को।
0: सर, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना है कि जब भारत आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करें तब भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाए, तो अभी 2025 चल रहा है और 2047 तक आते आते हमारे पास अभी 22 वर्ष का समय है, तो बात करके अपने यूथ को, क्योंकि हमारी जो युवा शक्ति है वो अभी माननीय मंत्री राजस्थान सरकार कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी ने कहा था कि जो राजस्थान की जो युवा शक्ति है वो 65% जो युवा है जो राजस्थान की कुल जनसंख्या में है, तो अभी हम उनको स्किल्स के माध्यम से उनको जागरूक करके और उनको आगे बढ़ाकर अपन विकसित राष्ट्र का, विकसित भारत का सपना पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि भारत में हर साल करीब 2 मिलियन यूथ जो काम में आता है, जो रोजगार के लिए आगे आता है, परंतु उनमें से देखा जाता है कि 2% से भी कम हैं जो उस जॉब के लिए रेडी रहते हैं और जॉब के लिए स्किल रहते हैं। अगर भारत को 2047 तक सर विकसित बनाना है तो करीबन 15 बिलियन हमको स्किल लेबर की ज़रूरत है, तो इसके लिए हमको स्किल के लिए और युवाओं को प्रेरित करना होगा। सर, ऐसी कुछ कुछ सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जिनके माध्यम से अगर युवाओं को रोजगार स्किल किया जाए तो वो छोटे छोटे अपने रोजगार स्थापित कर खुद को उत्थान कर सकते हैं और धीरे धीरे वो अपने राष्ट्र को विकसित कर सकते हैं।
1: तो इस एम्पावर यूथ और एम्पावर राजस्थान में आपने बताया कि आप सॉफ्ट स्किल्स के माध्यम से करेंगे, लेकिन ये सॉफ्ट स्किल्स युवाओं तक पहुंचेंगे कैसे? आपने जैसा बताया कि आप एम्पावर यूथ और एम्पावर राजस्थान कार्यक्रम में सॉफ्ट स्किल्स के माध्यम से राजस्थान के विकास में कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट स्किल्स युवाओं तक आप कैसे पहुंचाएंगे?
0: हाँ सर, जैसे कि हम एक डेटा देखते हैं कि जो चाइना है आजकल विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आता है, तो चाइना में एक सेंटर होता है गांव में ग्रामीण स्तर पर, टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, तो उसमें क्या होता है कि ऐसी जो जो छोटी छोटी सॉफ्ट स्किल्स जैसे अपना रेज्यूमे बनाना, इंटरव्यू प्रेजेंट करना, उसके अलावा इंग्लिश कम्युनिकेशन और ये काफ़ी जो स्किल्स होती हैं उनके बारे में सिखाया जाता है। तो अपने अभी जब जो राजस्थान का 2025 का बजट आया था, तो उस बजट में पूरे राज्य से युवाओं को भी मुख्यमंत्री महोदय ने वहाँ पर बुलाया था, तो मेरा वहाँ पर एक सुझाव था कि प्रत्येक ग्राम में एक ऐसे सेंटर की स्थापना की जानी चाहिए जिसके माध्यम से युवाओं को कनेक्ट किया जाए, उनको शिक्षा के प्रति पढ़ाए, उनको खेलों का वहाँ पे व्यवस्था हो, उसके साथ ये खेल मैदान की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि यदि युवा स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, तो वो एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकेगा। साथ में वहाँ पे उनको एक कम्युनिटी, वहाँ पे ऐसे ब्लॉक स्तर पर स्किल सेंटर्स की व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ पे युवाओं को पहचान कर, चिन्हित कर उन स्किल सेंटर्स के वहाँ पे भेजा जाए और उनको सॉफ्ट स्किल्स या फिर जो भी टेक्निकल स्किल्स हैं वो प्रोवाइड कर उनको सशक्त बनाने का प्रयास किया जाए।
1: बहुत बढ़िया। तो क्या आपने इस टीवीटीसी पर क्या क्या सुविधाएं और अवेलेबल होती हैं, और आपने ये टीवीटीसी का कॉन्सेप्ट जो बताया है चाइना का, क्या आप अपने गांव में इसकी स्थापना के बारे में सोच रहे हैं और आपने कैसे इसको रिसोर्सेज जुटाएंगे इसके लिए? आप
0: सर अभी शुरुआती स्टेज में प्रिपेयर किया था, उनको हमने थोड़ा गाइडेंस देके, एक कोर्स होता है सर MSW सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर, तो वो करवाया। उसके बाद हमने उनको एक काफ़ी NGO होते हैं जो अभी स्किल के ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो जैसे ही एक अंबुजा फाउंडेशन है, उसके साथ ही एक आयुष्मान फाइनेंस बैंक है, उनका फाउंडेशन है। तो सर हमारा एक अभी वॉलंटियर है, वो जयपुर का जो आयुष्मान का स्किल सेंटर है, तो वहाँ पर सर अभी वो वर्क कर रहा है। तो हम ऐसे युवाओं को चिन्हित करते हैं जिनको स्किल्स की आवश्यकता है, उसके बाद उन युवाओं को उन सेंटर्स के ऊपर भेजते हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे जो सरकारी स्तर पर ऐसे स्किल सेंटर्स की कमी है, तो हम उस सेंटर पे उनको भेजते हैं। वहाँ पर सर एक नॉमिनल 2500 रुपये की फीस बच्चे से लेते हैं, और उसमें 50 दिन का एक स्किल जो भी उनके इंटरेस्ट के हिसाब से होता है, वो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं उसमें, तो उन स्किल्स को उनको सिखाते हैं, और उसके बाद में उनको एक रोजगार के रूप में युवाओं को जोड़ते हैं, उनको रोजगार प्रोवाइड करवाते हैं। धीरे धीरे करके अभी हमने 20 से 30 युवाओं को वहाँ पे भेजा है, और वो अभी रोजगार भी उनको मिला है। तो ऐसा करके हम यदि सभी लोग प्रयास करें तो ऐसा करके धीरे धीरे बदलाव हो सकता है
1: जी। तो चलते चलते कोई आपका संदेश हमारे युवाओं के लिए और सुनने वालों के लिए हो तो बताएं यदि।
0: सर युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है और अपने देश को विकसित करना है, तो पॉजिटिव वे में रहते हुए नेक दिल से काम करते रहें और नशे आदि लतों से दूर रहें, क्योंकि नशा खुद के साथ साथ परिवार और समाज को भी खाता है। तो सभी चीज़ों से दूर रहते हुए अपने देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित होकर कार्य करते रहें
1: जी। तो श्रोताओं आप सुन रहे थे हमारा आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून, और जुनून में थे हमारे साथ आज जयदीप पंचाल फ्रॉम अलवर सरिस्का के पास कुंडला गांव से। और चलते चलते बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ना आप हमें थका पाएंगे ना आप हमें हरा पाएंगे, रोक सको तो रोक लो, आंधी अपनी गति से आ रही है। थैंक यू वेरी मच, सुनने वालों को मेरा सलाम नमस्कार, ओम शांति।

0: दीदी के लिए जोर से ताली बजाओ। कितने दूर से आपके पास आए हैं, है ना? तो आज रेडियो मधुबन इस कार्यक्रम को लेकर जब मेरा गांव मेरा अंचल कार्यक्रम को लेकर पहुंचा मोरथला नाम, तो यहाँ पर जब आबरूड आते हैं मोरथला मूंगथला आमथला बहुत सारा थला है, लेकिन आज मूंगथला में पहुंचे खुशी लग रहा है क्योंकि रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा और सामुदाय के लिए प्रस्तुतिकरण होता है। हमें खुशी है आसपास गांव और अंचल में जो गतिविधि, जो संस्कृति है, जो कला है, जो भावना है, जो भाव है, जो आस्था है, उसको लेकर आगे बढ़ते, तो आज एक मंच सभी माताओं को मिलेगा क्योंकि मनरेगा जो कि रोजगार गारंटी सरकार ने देता है, सभी गांव में कोई पलायन नहीं करे, गांव छोड़ के नहीं जाए, अपना गांव में रहकर हाथ में काम करे और गांव को हरा भरा करे, और खासकर जब बारिश होता है वो पानी को रोकने के लिए तालाब बना देते माताओं के पास इतना शक्ति, तो आज शक्ति सेना के लिए जोर से ताली बजाओ भाई। आज तो मनोरंजन का साथ साथ हाथ में काम और मन में राम, है ना, शिव राम को ध्यान करते हैं और शिव का भजन अभी सुन रहे थे। शिव मेरा साजन है और हम सब आत्माएं सजनिया है, तो हमारा साथ और एक माता भी गीत गाएंगे, है ना, गाएंगे मेला में आएंगे, तो पहले सुनते हैं एक हमारा मेट जी उपस्थित है, मेट को बिना बस सरपंच का बिना एक काम अधूरा होता है, मेट जी हमारा इस कार्यक्रम को सजाएंगे। जब हमने उसका रिपोर्ट देखा है उसको रिपोर्ट, तो बोला अरे ये तो हमारा स्कूल में जो ये भाई आए थे और हम थे, हमारा दोस्त भी इस किताब में देखे, तो मेट जी को स्वागत करते, मेट के लिए ताली बजाओ भाई, हमारा कार्यक्रम को सजाएंगे। मेट जी आपको स्वागत करते हैं, मेट जी अपना बात को रखेंगे, गीत नहीं गाना आओ, तो हमारा मैट जी के लिए ताल जोर से नहीं बजा इसलिए बोलो वो नहीं आ रहे भाई, मैट हमारा, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैट, अपना परिचय दीजिए और खासकर आप कहाँ तक पढ़ाई किया, जो किताब आप देखे हैं सामुदायिक आवाज, जो किताब हम रिपोर्टिंग किए हैं, तो उसमें आप जब देख रहे थे, मैंने अभी देख रहा हूँ क्योंकि, तो खासकर हमारा मैट को स्वागत करते, मैट अपना परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम शकुंतला है और मैं मोरसला गांव से हूँ।
0: और कहाँ तक पढ़ाई की है शकुंतला जी?
1: मैंने 12th पास की और अब उस कॉलेज में हूँ।
0: अरे वाह कॉलेज, आज कौन बोलता है हमारा छोकरिया कम है, आज तो छोकरा को भी आगे जाने नहीं देंगे, और छोकरिया के पास बहुत सारा विशेषता है, हमारा शकुंतला इस कार्यक्रम को सजाएंगे क्योंकि वो मैट भी है, पढ़ाई भी करती है और सबको पढ़ाता भी है, पढ़ाती है तुम सबको? अरे जो आप पढ़ा नहीं है अभी तो पढ़ा देंगे, कभी जरूरत पड़ा उनको पढ़ाना है, ठीक है, ज्ञान का चीज तो पढ़ा सकते हैं ना, आत्मज्ञान दे सकते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप पढ़ाई किए, और जब किताब देखते हैं वो किताब से आपको क्या, जो सामुदायिक आवाज पहला जो कम्युनिटी आवाज हम रिकॉर्डिंग उसको किताब छापा था उसमें देख रहे थे,
1: मैंने कुछ नहीं पढ़ा नहीं।
0: और क्या चित्र देखा आपका, गाँव का चित्र देखा?
1: वही देखा था मैं, गाँव का चित्र जिसमें मेरे क्लासमेट थे, सबका नाम था अंदर, सरपंच
0: का नाम क्या है?
1: लक्ष्मण जी राणा।
0: लक्ष्मण जी राणा के लिए भाई ताली बजाओ जोर से, हमारा सरपंच जी भी सुन रहा है क्योंकि उनका परमिशन बिना काम नहीं होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद एक आदिवासी लोकगीत सुनेंगे, हमारा माताएं बैठे तो उनका दिल का आवाज सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

Thank you.

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। आदिवासी गीत में जो भोलापन, जो शुद्धता देखने को मिलता है, हर जैसे भाकर क्षेत्र में जाते हैं, चाहे निचलागढ़ हो, चाहे उपला खेजड़ा, पावा, दैत्र, सभी जगह में जाते, ऐसे आदिवासी गीत में बहुत मजा आता है। और भले समझ में आता है कि नहीं आता, लेकिन उनका जो संगठन पूरा अनुशासन में बैठते हैं और पूरा खुशी से गाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक प्रस्तुति सुनाएगी बहन हमारा, और उनका आवाज को रोक नहीं पा रही है, क्योंकि एक का बाद हमारा श्रोता मित्र भी बोल रहे, भाई और एक गीत हो जाए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रस्तुति पुनः और एक गीत होगी। हमारा मैट को तो जितना धन्यवाद दे कम होगा, क्योंकि मैट का तत्वावधान में सभी को एकत्रित कर दिए। कोई बाजा नहीं, कोई साज नहीं, फिर भी आदिवासी गीत में जो मिठास है आज तो सबको मीठा बना दिए। और एक गीत होगी। हमारा बहन तो पूरा छुप कर बैठी है, लेकिन छुप कर ही सब गीत गाते हैं, तो और एक गीत होगी।
1: ताली बजा।

0: क्या नाम है बहन का?
1: सविता।
0: सविता के लिए जोर से ताली बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: DJ Long।
1: बोले माताओं की सुंदर रूप में अपना बात को रखे हैं। चलिए और एक रुक, आप लोग बात करेंगे तो रेडियो।
2: अरे ये बात है,
1: सुनो, ये रेडियो में जा रहा है ना, रिकॉर्डिंग में, इसलिए कोई बात नहीं करना, क्योंकि ये कार्यक्रम प्रसारण आकाशवाणी में जाएगा, रेडियो कम्युनिटी जैसे देखा है ना दीदी। तो चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते, हमें बहुत खुशी मिल रही है। इस तरह गांव और अंचल में हम जब जाते हैं, सबसे मिलते हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे माताएं, चाहे बहन, स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी और मनरेगा। आज मनरेगा का आवाज सुनने को मिला, क्योंकि माताएं छाया में आते हैं और छाया में काम करते, आराम से सरकार को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस तरफ कोई पलायन नहीं करे गांव छोड़ के, अपना गांव में ही काम करे। और जो भी गांव को हरा भरा करने के लिए पानी हो, चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे जल को संरक्षण करने में मदद करते हैं, और ये माताओं के पास तो विशेषता है। तो एक गीत तो सुने शिव का, और एक गीत सुनेंगे, क्योंकि हम तो हमारे आवाज को यहीं पर रोकने के लिए मन नहीं कर रहा, और एक गीत हमको सुनने के लिए इच्छा हो रही है। और एक कोई भी हो, चाहे कृष्ण का भजन हो, कन्हैया का, बांसुरी वाला हो, चाहे राम का हो, कोई भी गीत, कन्हैया का गीत हो जाए, लेकिन अल्प विराम का बाद।

पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हमें बहुत खुशी है, आज तो उनका आवाज सुनने को मिलेगा। चलिए एक कन्हैया लाल की बोलो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, बोलो जोर से, जय कन्हैया हाथी घोड़ा पाल की। चलिए इस माध्यम से एक कृष्ण कन्हैया का भजन होगा। हमारा माताएं बहन को नमस्ते करते हैं, राम राम करते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में उनका रेडियो है, ये रेडियो खुद का आपके रेडियो है, आपके द्वारा और आपके लिए, थेमरो रेडियो थेमरो लिए थेमरो वास्ते आज इस प्रस्तुति सुनेंगे शुरू।

सही बात, कितना सुंदर और प्यार से दिल से हमारा माताएं गीत गाए। माताएं का नाम तो मैंने पूछा नहीं, बहुत नाम तो गुप्त रखना चाहते हैं, लेकिन ये मोरथला का आवाज है, भले वो नाम नहीं बताए लेकिन मैं नाम को धन्यवाद देता हूँ, भले उनका नाम हम गुप्त रखते हैं क्योंकि वो माताएं थोड़ा डरते हैं हमारा नाम का प्रचार प्रसार हो जाएगा फिर हमारा भाई लोग बोलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, सभी को नाम का साथ एक एक का नाम मैंने ले रहा हूँ, सभी को धन्यवाद देते हैं, किसको छोड़ना नहीं चाहिए, सभी को भजन मंडली में सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, और ये मोरथला का आवाज जो दिल आस्था और विश्वास भक्ति में ओत प्रेत होकर कन्या कृष्ण भगवान तक पहुंचाए, तो इसलिए सभी को धन्यवाद देते हैं। रुकते हैं यहीं पर एक विराम के साथ, लेकिन राम को कौन भूल पाएगा, कृष्ण जब हुआ तो राम का भी तो होना चाहिए ना, शिव का हुआ कृष्ण का हुआ और कौन बचा, हनुमान भी है, हनुमान का भी गीत सुनते हैं, हनुमान का गीत हो जाए चाहे राम का एक गीत हो जाए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो नाराज हम नहीं करना चाहेंगे भगवान को, एक हनुमान का गीत हो चाहे गणगौर का हो चाहे शादी ब्याह में भी गीत गाते हैं, होली का गीत हो, होली में गीत गाते हैं माताएं, होली में, बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: चलिए अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चल रहे हैं और ये सामुदायिक आवाज सामुदायिक तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन हमेशा तत्पर रहता है। तो आज नाड़ी में जो आए तो माताओं का आवाज का सस भक्ति भावना में और एक आदिवासी गीत जो कि पहाड़ का गोद में बसा हुआ गांव है, एक आदिवासी गीत सुनते हमारा बहन जी से।
1: टेम्पो वालू डीजे आवे ने आया के मेरो जोई पासी आवने आया लीली पीली लाइटो लागे ने आया हेवारा जोई पासी आवने आया जावा दे
0: नहीं तो और कोई भी गीत विदाई गीत गाओ घने कितने गीत है लीला मौर्या मौर्या लीला मौर्या
1: नीरे मरे लीला मौर्या गेम गुगरी वाजे रे मरे लीला मौर्या कुणते मोरो बापो रे में गुगरी वाजे कुणते मोरो बापो बारे मेघ मोमा गे में गुगरी वाजे बारे मेघ मोमा गे में गुगरी रेम रे लीला मोरिया गे में गुगरी वाजे रेम रे
2: तो क्या ना थोड़ा गीत मनो नहीं आओ
0: गाओ बस लास्ट देखो पंखा भी आपको मिल रहा है क्या
2: चाहिए
0: सत्य युग में राजा रानी को ऐसे पंखा करते हैं लेकिन हमारे कितना अच्छा है उनके लिए ये राजा रानी बन गया बोले ना रानी हमारा गाओ गाओ गाओ जल्दी गाओ भाई बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे और किसी बात को लेकर। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। अच्छा धन्यवाद सभी, अपने के लिए खुद के लिए जोर से ताली बजाओ भाई, खुद के लिए जोर से ताली बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: चले कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हैं। हमें इस कार्यक्रम में हमारा फाइटर सक्सेस सिस्टम आए हैं, जो कि वो भी कुछ देने के लिए है। क्या देंगे और उनका क्या लक्ष्य है हमारे रेडियो कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं। मैम आपको स्वागत करते हैं। ये कम्युनिटी रेडियो है, कम्युनिटी के लिए करते हैं, क्योंकि उनके पास जो भावना है, भाव है, उनका जो तकलीफ है, जेंडर को लेकर हो, मेंटालिटी को लेकर, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। मानसिकता जो लोग का है उसको बदलाव करने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो आप इस कार्यक्रम को सजाएंगे, आपको स्वागत करते हैं। और खासकर ट्रांसफॉर्मिंग मेंटालिटी इन जेंडर, क्या कहना चाहिए, आप अपना परिचय दीजिए।
3: मेरा नाम पीहू राजपुरोहित है, मैं सिरोही जिले से हूँ। वैसे मैं मतलब एक हेल्थ सेक्टर में काम करती हूँ आयुर्वेद के। जैसे कि आपने बताया कि मतलब जो इनका माइंडसेट है कि भाई जेंडर को लेके, तो वो चीज है कि वैसा नहीं होता है। अगर माइंडसेट हम देखो, खुद पे एक तो भरोसा होना चाहिए सारी, अगर काम को लेके हो, हर एक फील्ड वर्क हो या कोई भी हो, अपने ऊपर एक बार को बिलीव है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो उसमें लड़का या लड़की या कोई भी जेंडर मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं अपनी बात

0: करती तो अगर मैंने भी सोचा होता कि मैं लड़की हूँ बाहर कैसे जाऊँ काम करने के लिए तो मैं नहीं जा पाती। आज मैं आउट ऑफ कंट्री भी जाती हूँ, सभी जगह पे मैं घूमती रहती हूँ और हेल्थ के बारे में हम सबको जानकारी देते हैं कि हमारा एक मतलब ये मिशन है कि अगर हम हेल्थ के बारे में लोगों को समझाएंगे तो लोगों की जो हेल्थ है आज की तारीख में सबको पता है कि बीमारी कितनी बढ़ रही है, तो उसको लेके आप मतलब सिक्योर हो जाओ कि क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सारी चीजें। और आज जैसे कि हम हॉस्पिटल की दवाइयां लेते हैं कहीं पे लेते हैं, सबको पता है कि साइड इफेक्ट होता है, तो हम आयुर्वेद के ऊपर काम करते हैं कि अगर आप आयुर्वेद यूज करोगे तो आने वाले टाइम में जो बीमारी आ रही है वो आपके अंदर नहीं आएगी। हमारा मेन मकसद यही रहता है। और मेंटेलिटी की बात करें तो आपके ऊपर वो रहता है कि आप क्या सोचते हो और क्या समझते हो, बस यही चीज है।
1: एक मन ऑडियंस से आपको एक सवाल है, जब आप पुरुष नाम सुनते हैं, चाहे लड़का हो, चाहे पापा हो, चाहे दादा हो, घर में जो परिवार में रहते हैं, तो लड़की का सोच क्या होता है?
0: वो मतलब लड़की की सोच की बात करूँ तो एक वो डर होता है उनके मन में कि यार क्या मतलब चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन चीज है कि आपकी मेंटालिटी क्या कहती है, भाई हो, बाप हो या कोई अदरवाइज पर्सन क्यों ना हो, उसको लेके आपका माइंडसेट एकदम सही होना चाहिए। आगे वाला कैसा है कैसा नहीं कोई मैटर नहीं करता, आप कैसे हो मेन चीज वही रहती है, ये चीज है।
1: आपका शुभ नाम बताए?
0: पीहू राजपुरोहित।
1: पीहू, पीहू के लिए जोर से ताली बजाना चाहिए। और पीहू इतना सुंदर रूप में आपने बताया, इक्वालिटी को लेकर जब हम बात करते हैं, जैसे दोनों को बराबर चाहते हैं, अभी क्या है पुरुष के पास ज्यादा सत्ता रहता है, पावर, जिसका चलते बहन तो आपने आगे बढ़कर आया, तुमको देखकर सभी लड़कियां ऐसे आगे बढ़े, क्योंकि इतना दूरस्थ जगह जहाँ की भाकर क्षेत्र है पूरा, वहां पर भी अपना सेवा दे रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा चैलेंज आता है, लेकिन भाई लोग के लिए कोई चैलेंज नहीं, बहन के लिए चैलेंज आता है, फिर भी इतना हिम्मत उमंग कहाँ से मिली?
0: मुझे देखो वैसे तो मेरे मतलब घर से तो मिली है, मम्मी पापा से ही, कि वो हमेशा मेरे को रोक टोक नहीं करते हैं। उनका बिलीव है कि अगर लड़की बाहर जाके काम करेगी तो कुछ ना कुछ करेगी। और मेन चीज ये है कि मेरे को खुद पे भरोसा था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अगर मेरे अंदर टैलेंट है, मैं अगर देखो पैदा इसलिए होता है कि कुछ ना कुछ अपना मकसद होता है, बाकी तो दुनिया में आते और जाते भी है, लेकिन मेरा मकसद है कि लाइफ में कुछ करना और मेरे साथ साथ मैं उन लोगों को भी कुछ दे सकती हूँ अच्छी लाइफ, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी।
1: सही बात, मैंने इस एरिया में बहुत देखा, राजपुर जो पूरे थे थोड़ा एजुकेटेड होता है और थोड़ा घर में कुछ रेस्ट्रिक्शन बराबर देखते हैं, एक बगान का दो फूल है भगवान ने दिया, लड़का हो चाहे लड़की, छोकरा हो चाहे छोकरी हो, सबका बराबर अधिकार। लेकिन कहीं कहीं समाज में देखने को मिलता है पितृसत्ता, जो पेट्रियटिक कहते हैं, जिसमें पुरुष जब नाम सुनते हैं, अरे पुरुष के पास सब कुछ है, उसका चाबी तो उनके पास है, कुछ भी पूछना होगा तो उनसे पूछ कर लेना पड़ता, मम्मी भी उसके पास, पापा सब देते हैं, इसका जो भावना है, जो मेंटेलिटी है, उसको हम बदलाना है ना, मेंटेलिटी नहीं होना, सबको बराबर होना। आपका क्या विचार प्यू मेंटेलिटी के ऊपर में, जो कि पुरुष को लेकर?
0: मुझे तो ये लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि मतलब पुरुष है तो उसके पास सब कुछ है। आज की तारीख में अगर देखो, आज युद्ध हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, ठीक है, तो उसमें लेडीज ही थी जिन्होंने ये सारी चीजें की, तो मुझे लगता है कि आपको भरोसा होना चाहिए कि लेडीज मतलब ये नहीं है कि चार दीवारी में बंद रहना और घर का काम करना, मुझे लगता है कि आपको आगे बढ़ के सारी चीजें करनी चाहिए। और आपके घर में अगर लड़की है तो उनको ये डरा के मत रखो आप कुछ नहीं कर सकते, उनको है ना आप भरोसा दिलवाओ कि आप सब कुछ कर सकते हो, तभी वो आगे बढ़ के कुछ ना कुछ कर पाएंगे। बाकी तो देखो आपकी मेंटेलिटी है कि आप क्या सोचते हो, बाकी आप उनको भेजो कहीं ना कहीं काम है तो अपॉर्चुनिटी को अपनाओ और बाहर कहीं ना कहीं भेजो उनको, तो उनकी मेंटेलिटी है वो बड़ी हो जाएगी और सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। बस इतना ही कहना चाहूंगी, बस आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, सजाया हमारा कार्यक्रम को, और सबका गाना व सबका भावना को लेकर गुलदस्ता बन गया रेडियो प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद पीयू को और सभी बहन माताओं को, और हमारा बहन भी आज इस कार्यक्रम को। बहन जी आपको क्या लगा ये प्रोग्राम के बाद?
2: बहुत सुंदर वातावरण है और माताओं का जो मिलन है, इतना उमंग उत्साह के साथ सेवा कर रहे, उसके साथ साथ जो आध्यात्मिक चर्चा हुई उससे भी और उमंग उत्साह चार चांद लग गई, और हम लोगों को भी बहुत बड़ा सौभाग्य मिला इस संगठन में आके अपना समय देने के लिए। ओके, ओम शांति।
1: आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये था कम्युनिटी रेडियो, कम्युनिटी का आवाज, कम्युनिटी के लिए, फॉर द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी और बाय द कम्युनिटी, जैसे हमारा पीयू और हमारा सभी माताएं इस कार्यक्रम को गीत का माध्यम से, भजन का माध्यम से सुंदर में सजाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधर आ, भाई क्या पहुँचा दोगे? हैं भाई कहाँ पहुँचा दोगे? भाई मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। भाई सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे। हैं भाई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? भाई जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: सभी सुनने वालों को नमस्कार। मेरा नाम शरद त्रिपाठी, आपका होस्ट शरद आपके साथ, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और आपको तो मालूम ही है ना, मन की आंखों से में हम लेकर आते हैं उन व्यक्तियों को जिनके जो शारीरिक चुनौती से संघर्ष कर रहे हैं, परंतु उन्होंने समाज के सामने एक मिसाल कायम की है और लोगों को बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं। और उसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं आज एक बेहतरीन आवाज और बेहतरीन नाम, देश के गुजरात के नर्मदा जिले से। नर्मदा आप जानते हैं ना, फेमस है हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, हमारे देश के महान नेता सरदार पटेल की स्टैच्यू जहां पर स्थापित की गई है। उसके कुछ दूरी पर ही से ही एक गांव है, उस गांव का नाम आइए जानते हैं। और हमारे साथ हैं उस जगह से आने वाले जय पटेल। तो जय, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: जी नमस्ते।
0: जय, आपके गांव का नाम बताइए ना।
1: हाँ, मेरे गांव का नाम है धानपुर।
0: जी धानपुर। जी
1: यस,
0: बहुत बढ़िया। और धानपुर के जय पटेल हमारे साथ हैं। तो जय, आपकी कहानी थोड़ी सी हमें शुरुआत से बताइए। और हमें मालूम चला बातचीत में कि आप विजुअली चैलेंज व्यक्ति हैं और आप स्वयं ही एक वॉलंटियर, एक स्वयं सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। आप एक स्वयं सेवी संस्था के पदाधिकारी भी हैं। तो
1: बिल्कुल।
0: आपकी कहानी थोड़ी शुरुआत से बताइए ना, कैसे ये शुरुआत हुई वॉलंटियरिज्म की।
1: तो सबसे पहले मैं सभी भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मेरा नाम जय पटेल है, मैं गुजरात स्टेट के राजपिपला शहर से बिलोंग करता हूं और मैंने इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 2022 से की है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट एनजीओ है जो डिसेबिलिटी के लिए कार्यरत है और 2022 से पहले कोई भी डिसेबिलिटी के लिए एनजीओ वर्किंग में नहीं था, जो हमने स्टार्टअप किया है। और इस एनजीओ का प्रेसिडेंट एंड फाउंडर मैं खुद ही हूँ। मेरी एनजीओ का नेम है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन और मेरे साथ में जुड़े हुए हैं राजपिपला स्टेट के प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल जी। इनका मुझे जहां जहां पे भी सपोर्ट की जरूरत रहती है वहां वहां पे मुझे सपोर्ट मिलता रहता है और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रही है। और मैंने टोटल एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में किया है और मैं स्टैंडर्ड 10th में था तब से ये सेवा किए कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। बट मेरी कॉलेज फिनिश होने के बाद मैंने ये लीगली एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किया और एनजीओ को आगे बढ़ा रहा हूँ। और सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि ब्लाइंड लोगों में जो टैलेंट छिपा है वो नॉर्मल लोगों तक पहुंचे और ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग समझे, जाने और पहचाने, जिसे ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग रिस्पॉन्स दे।
0: जी, तो जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM माउंट आबू की वादियों से, और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजपिपला से जय पटेल। मैं आपसे ये पूछ रहा था जय, कि आपने जीवन की शुरुआत के बारे में हमें बताया, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आपको क्या और किस प्रकार की दिव्यांगता है।
1: देखो, मेरे को ब्लाइंडनेस तो बाय बॉर्न ही थी, पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद मुझे राइट आई में थोड़ा थोड़ा विजन था और लेफ्ट आई तो टोटली ब्लाइंडनेस में ही थी, बाय बॉर्न ही। सो मोतियाबिंद का ऑपरेशन मैंने मध्य प्रदेश के इंदौर में करवाया डॉक्टर हाड़िया के पास। इसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी रोशनी आई और मैंने एजुकेशन के लिए नॉर्मल लोगों के साथ में मैंने अभ्यास मेरा स्टार्टअप किया और मैंने टोटली एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में फिनिश किया। मैंने बीए ग्रेजुएशन किया है और परेशानी तो बहुत आई लेकिन इसका सामना करते करते मैंने ग्रेजुएशन तक पहुंचा। और अभी मेरी कोशिश ये है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन के माध्यम से मुझे जो प्रॉब्लम एजुकेशन में हुई है वो मेरे भाइयों एवं बहनों को आगे जाके ना हो, इस दिशा में हम लोग कार्य करना चाहते हैं।
0: जी, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। और आपने नॉर्मल स्कूलिंग की है और ये तो आपको तो मालूम ही है कि ब्लाइंड व्यक्तियों के क्षेत्र में या डेवलपमेंट के क्षेत्र में इस बारे में बहुत चर्चा होती रहती है कि किस प्रकार से पढ़ाई की जाए या नॉर्मल स्कूलिंग की जाए या इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन किया जाए या ब्लाइंड व्यक्तियों के विशेष स्पेशल स्कूल में पढ़ाई की जाए, इस संबंध में
1: बिल्कुल
0: डिबेट बनी हुई है। परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग अब इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपने
1: बिल्कुल
0: भी बात पहले ही कर ली। तो राजपीपला की तस्वीर जो है वो किस प्रकार की है, क्या राजपीपला के चैलेंजेस हैं या नर्मदा जिले में क्या चैलेंजेस आप देखते हैं एज अ सोशल सेक्टर डेवलपमेंट सेक्टर वॉलंटियर?
1: देखो, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया पड़ता है, सो इधर जो डिसेबल लोग हैं वो बहुत ही गरीबी सीमा के भीतर जीते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमें ये लाभ मिलता है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हमने जब से एनजीओ स्टार्टअप की है 2022 से, तब से लेके आज तक हमने 500 डिसेबल लोगों को बस पास, ट्रेन पास, पेंशन योजना, सभी सरकारी अलग अलग जो लाभ मिलते हैं वो सबको हमने घर घर जाके पहुंचाए। और अवेयरनेस के रिगार्डिंग हम लोग 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का सेलिब्रेशन पिछले 3 सालों से कर रहे हैं और इस साल भी होने वाला है। बहुत बढ़िया।
0: आप अपनी बात रख रहे थे, आप बता रहे थे कि आपने कुछ 500 जमा दिव्यांग व्यक्तियों को आपने मदद पहुंचाई है और आपकी
1: यस,
0: संस्था का विजन क्या है, थोड़ा साझा करेंगे इसलिए पटेल जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल। हमारा संस्था का ये है कि सभी लोग एजुकेशन के दिशा में तो सभी लोग काम कर रहे हैं, पर मेरी जो एनजीओ है, मतलब हम सबकी जो ये एनजीओ बनाई गई है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन, ये दिव्यांगों के भविष्य के लिए काम करेगा और खास तौर पे दिव्यांगों की रोजगारी के अनुसार ये संस्था काम करेगी। दिव्यांगों को रोजगार प्रॉपरली दिलाना, सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि दिव्यांग को एक प्रॉपरली प्लेटफॉर्म मिले और जिसमें ब्लाइंड कैटेगरी आगे जाए और इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलने से उनका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और
0: जी
1: एक रेसिडेंसी ये एरिया बनाना चाहते हैं नर्मदा राजपिपला शहर में, जिसे कि सभी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को लाभ मिल सके और इधर रह के ही ये लोग रोजगारी पाए और एक ही जगह पे वो लोग रह के आनंद से उनका जीवन गुजार सके, इस दिशा में मैं काम करना चाहता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत ड्रीम है।
0: जी जी हाँ, इसे कम्युनिटी लिविंग कहते हैं और ये कम्युनिटी लिविंग के विचार को लेकर भी एक डिबेट है डेवलपमेंट सेक्टर में कि किस प्रकार से दिव्यांग व्यक्ति समूह में रह सकते हैं और एक रेजिडेंशियल
1: बिल्कुल
0: टाउनशिप अपने लिए प्लान कर सकते हैं। सरकार की मुझे कोई विशेष नीति इस बारे में दिखती नहीं है कम्युनिटी लिविंग फॉर डिसेबल
1: हाँ,
0: पर्सन, तो आप इस नतीजे तक कैसे पहुंचे कि हमें एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या रेजिडेंशियल कॉलोनी बनानी चाहिए जहां पर डिसेबल्ड व्यक्ति साथ में रहे?
1: इसके लिए हमें सरकार तो मदद करेगी कि नहीं करेगी ये मेरे को अभी आइडिया नहीं है, बट जो नॉर्मल लोग, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको कनेक्ट करके ये अच्छा कार्य को हम स्टार्टअप जरूर कर सकते हैं।
0: जी
1: और ये हमारी बातचीत के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी हमारी संस्थान मतलब दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन की कार्य, सेवा किया कार्य से खुशी मिल रही है, तो ये लोग हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं और इस सेवा के कार्य को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं।
0: जी आपने क्या प्लान किया है और इसके अतिरिक्त और क्या अभी तक संस्था के अचीवमेंट रहे हैं?
1: अभी तक संस्था के अचीवमेंट की बात की जाए तो हम लोग पिछले 3 सालों से जो टैलेंट शो कर रहे हैं, इसमें अलग अलग सिटीज से हम लोग ब्लाइंड को बुलाते हैं और उनका टैलेंट शो रखते हैं। और अभी रिसेंटली हमारा प्रोग्राम हुआ था वडोदरा में ब्लाइंड टैलेंट शो, जिसमें हमने मध्य प्रदेश इंदौर से ब्लाइंड लोगों की 10 लोगों की टीम बुलाई थी और 400 नॉर्मल लोगों के सामने ब्लाइंड लोगों को प्रेजेंट किया था, जो प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुली हुआ था।
0: जी
1: और
0: जी
1: इससे पहले हमने किया था 19 जनवरी को इंदौर में किया था, वो भी बहुत सक्सेसफुली रहा था। वहाँ पे 75 टोटली ब्लाइंड लोगों को हमने मौका दिया था, सिंगिंग, मेमिक्री, कॉमेडी, डांस, सब कुछ इंक्लूड। और पिछले साल हमने किया था बॉम्बे मलाड में जो कार्यक्रम हमारा, वो भी सक्सेसफुली रहा था, जिसमें सिंगिंग कंपटीशन रखी गई थी। और अब हम लोग बहुत बड़े लेवल पे ये कंपटीशन रखना जा रहे हैं और वो अभी डेट जब फाइनल होगी वो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे।
0: आपको क्या लगता है कौन कौन लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ।
1: मेरे साथ अभी फिलहाल तो राजपिपला स्टेट के जो राजा है मानवेंद्र सिंह गोहिल, वो हमारे एनजीओ को प्रेजेंट कर रहे हैं, सभी जगह पे प्रमोट कर रहे हैं, और उनका अच्छा खासा सपोर्ट मुझे मिल रहा है, और डिसेबल के लिए वो बहुत ही एक्टिव पर्सन है।
0: जी, ये बढ़िया है। रॉयल फैमिली तो हमें हमेशा सहयोग करती रही है, और हमें तो
1: बिल्कुल
0: लगता है कि हम भी कुछ इस दिशा में स्वयं भी कुछ कर पाए, तो सहयोग जो है, या जो किसे कहते हैं कि सिनर्जी जो है, वो साथ में बन जाती है। और
1: बिल्कुल, हम सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो सभी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत ही एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, है ना।
0: जी, तो आप किस प्रकार की प्रतिभाएं देख रहे हैं हमारे दिव्यांग साथियों में?
1: मुझे देख सभी सेक्टर से मेरे साथ में दिव्यांग मतलब ब्लाइंड लोग जुड़े हुए हैं। अभी बॉम्बे से बात कर ले तो बॉम्बे में मेरा एक मित्र है, उसका नाम है तुषार गोसर, जो कच्छी जैन है और टोटली ब्लाइंड है, और 21 प्रकार के मरी मसाला खुद बनाता है और खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है।
0: जी
1: और दो तीन लोग ऐसे हैं कि जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो खुद भी टोटली विजुअली इम्पेयर्ड है।
0: जी
1: और ऐसे ऐसे मेरे साथ में अलग अलग सिटीज से, अलग अलग स्टेट से लोग विजुअली इम्पेयर्ड और हैंडीकैप जो भी हो गए वो लोग जुड़े हैं।
0: जी
1: बिल्कुल
0: और आपको लगता है ना, हमारे एक ये माना जाता है कि भाई अगर आप ब्लाइंड व्यक्ति हैं तो मास्टर बन जाइए, लेकिन बदलते दौर में बहुत सारे नए प्रोफेशंस आए हैं जिसमें हमारे दिव्यांग साथी झंडे गाड़ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या चाहे
1: बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी
0: स्पोर्ट्स का
1: सेक्टर
0: क्षेत्र।
1: देख लो, अभी कोई भी सेक्टर देख लो, चाहे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, अस्पताल हो, कुछ भी हो गया, सभी जगह पे ब्लाइंड लोग अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे।
0: जी, तो आपकी
1: बिल्कुल
0: संस्था कैसे उन साथियों का सहयोग कर रही है टैलेंट शो के अतिरिक्त?
1: टैलेंट शो जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक बजट फिक्स होता है, वो बजट के बारे में हम लोग सबको डिस्कशन करते हैं, फिर हमारे साथ में जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं, और इससे कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है उनको भी रोजगारी प्रोवाइड हो, और एक प्रकार देखा जाए तो रोजगारी का ही ये लक्ष्य है। क्योंकि देखो सिंगिंग करते करते कोई किसी को रोजगारी तो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कराता है ना। सो हमारे एक विजन है कि एक ब्लाइंड टैलेंट तो होगा ही होगा, साथ में उनका रोजगारी का भी आयोजन हो सकता है। हम लोग इस प्रकार से प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं।
0: नहीं, ये तो मानना होगा कि नई टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारे नए बदलाव भी हुए हैं,
1: बिल्कुल
0: और सभी समाज के अलग अलग वर्गों से लोग जो है वो भी दिव्यांगता के बारे में जान रहे हैं, लेकिन
1: जान
0: हमें
1: रहे हैं।
0: भी जी हमें भी बहुत सारी चीजें उनसे साथ साझा करने की जरूरत है। खास तौर पर डॉक्टर्स के साथ भी एक प्रयास करने की जरूरत है कि डॉक्टर्स जो है इलाज करते समय क्लिनिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के बारे में भी मरीजों के साथ बात करें, और उनको बता
1: बिल्कुल
0: दें कि अब इसका इलाज संभव नहीं है, जितना हो सकता था उतना बेस्ट हो गया, अब आप भटकना छोड़िए और इस
1: बिल्कुल
0: बच्चे का पुनर्वास की तैयारी करिए। तो क्यों नहीं
1: बिल्कुल, वही
0: कभी
1: वही वही काम इधर इधर वही
0: अवेयरनेस
1: काम,
0: कैंपेन प्लान किया जाए जय पटेल जी?
1: बिल्कुल हम लोग अवेयरनेस कैंपिंग ही प्लान कर रहे हैं, और आपके दिमाग में भी अगर कुछ आता है तो हमें श्योरली बताना, हम लोग साथ में मिलके बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे, और डिसेबल को हम आगे ले जाने में मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं मेरा संपूर्ण जीवन ये दिव्यांगों के लिए समर्पित कर रहा हूँ।
0: जी
1: क्योंकि देखो मेरे को जॉब भी मिल सकती है, लेकिन मैंने जॉब को स्किप किया है, मुझे सिर्फ दूसरे की सेवा ही करनी है, बस ये मेरा मानना है।
0: जी सोचता हूँ जो
1: और
0: हमसे
1: नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया है, सो पेरेंट्स को भी पता नहीं है ना कि क्या हमारे बच्चे को कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं, तो हम लोग पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं और उनको प्रॉपरली रेडी करते हैं कि आपका बच्चा भी बहुत आगे जा सकता है, इसलिए हम काउंसलिंग करके उनको भी आगे ले जा रहे हैं,
0: आपके
1: और
0: काम जी
1: अधिकतर अधिकतर हमें सफलता भी मिली है।
0: आपके काम के दौरान कुछ ऐसी कहानियों को साझा करिए ना, जिन्होंने जो सफलता की कुछ कहानियां हों, दो या तीन कहानियां जो आप साझा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, दो टोटली विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल है जो सूरत से बिलोंग करती है, एक का नाम है वृष्टि वेकरिया और एक है मनस्वी मकवाना, जो
0: जी
1: बहुत ही बेहतरीन सिंगिंग करती है। इनको एक बार मैंने इधर मेरा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैंने उन लोगों को स्थान दिया और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया। तब से लेके आज तक उन लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम दे दिए और आज ये दोनों लड़कियां बहुत ही आगे जा चुकी है।
0: जी
1: बिल्कुल, और ये बहुत ही बढ़िया सिंगिंग भी कर रही है और इनका सूरत में आज जाना माना नाम बन चुका है।
0: जी हम लोग राजस्थान की धरती से आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, माउंट आबू से, और राजस्थान से भी कुछ प्रतिभाओं से आपका परिचय हो तो बताइए ना।
1: राजस्थान में शायद मेरा एक एनजीओ से मेरा संपर्क हुआ था, बट अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। झालावाड़ के पास में है ना कोई एनजीओ एक?
0: जी खैर,
1: हाँ
0: कोई
1: बस।
0: बात नहीं। और आपकी जीवन की यात्रा में कुछ ऐसे अनुभव, जो खट्टे मीठे अनुभव हों, जो आप हमसे साझा करना चाहें मन की आंखों से कार्यक्रम में हमारे।
1: बिल्कुल, देखो मैं पढ़ाई करते समय मुझे स्टैंडर्ड 8 में आया ना, तब प्रिंसिपल की एक कंप्लेंट आई थी कि आपका बच्चा लिख नहीं रहा है, मौखिक जवाब दे रहा है लेकिन लिख नहीं रहा है। सो मेरे पेरेंट्स थोड़े अपसेट हो गए। सो मैंने मैंने पेरेंट्स को बोला कि भाई नहीं, ये मैं लिख नहीं सकता हूँ बट मैं मौखिक जवाब तो दे सकता हूँ, तो मैं मेरा एजुकेशन कंटिन्यू करूँगा। पेरेंट्स ने प्रिंसिपल से बात की और प्रिंसिपल ने फिर मेरी पोजीशन को समझा और फिर मुझे फुल्ली सपोर्ट किया और मुझे स्कूलिंग से लेके कॉलेजेस तक बहुत ही, चाहे वो प्रिंसिपल हो प्रोफेसर हो, सबका मुझे बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ है। ये जो मैंने सेवा का कार्य आरंभ किया है ये मैंने मेरे नाना जी के पास से सीखा था।
0: जी
1: बिल्कुल, वो मध्य प्रदेश इंदौर से बिलोंग करते हैं।
0: हाँ, एक हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे आसपास के माहौल में ही हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है और
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हमारे
1: बिल्कुल, ऐसा
0: रास्ते।
1: ही
0: जी
1: मेरे साथ में हुआ है।
0: मैं वही जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा विस्तार से बताइए ना उस व्यक्ति के बारे में।
1: हाँ, उनका, मेरे नाना जी का नाम है शिवलाल भाई पटेल। वो बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्य में अग्रसर रहते हैं। और मैं जब से, मतलब ये माना जाए कि मेरा बचपन जो है वो उनकी नजर के सामने ही गुजरा है, तो मेरे को ये आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उनके गुण मेरे में आए और इनके विचारों को मैंने पकड़ के रखा तो आज इस लेवल तक मैं पहुंच चुका हूं।
0: जी
1: और उनके पास से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और अभी भी मेरा सीखने का जारी है। अभी मैंने सब कुछ नहीं हासिल किया है, अभी 0.1% ही हासिल किया है
0: आपकी
1: मैं।
0: संस्था जो है आपकी, और कौन से नए कार्यक्रम प्लान कर रही है जिससे कि हम दिव्यांग मित्रों की मदद कर सकें।
1: बिल्कुल, और हम लोग एक इवेंट एक प्लान कर रहे हैं जो ऑल ओवर इंडिया से सभी ब्लाइंड भाइयों एवं बहनों को एक बढ़िया स्नेह मिलन कराने का एक कोशिश कर रहे हैं। स्नेह मिलन,
0: जी
1: क्योंकि हमें सभी ब्लाइंड लोगों से एक परिचय हो, ब्लाइंड लोग किस फील्ड में काम कर रहे हैं ये इनका परिचय हो, और 10 से 15 ऐसे ब्लाइंड लोगों को जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो अच्छी पोजीशन पे है, उनको हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं, ताकि दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं देखने वाले वो लोग देख के थोड़े से इंस्पायरिंग हो और ब्लाइंड लोगों को रिस्पॉन्स अच्छी तरह से करे, और ब्लाइंड लोग भी जो लोग लाइफ में हिम्मत हार गए हैं वो लोग फिर से दोबारा मैदान में दौड़ने की एक छोटी सी कोशिश करें। ये हमारा अभी का प्लान आउट चल रहा है, लेकिन ये कब होगा ये फाइनलाइज नहीं है, लेकिन करेंगे ये डेफिनेटली।
0: जी
1: और सभी कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम को कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए, ये सब कुछ प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल मेरे साथ में रहते हैं। हम दोनों मिलके एक अच्छी सी इवेंट प्लान करते हैं।
0: जी निश्चित रूप से प्रिंस मानवेंद्र का सहयोग आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
1: और मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर्स और ये सबका भी मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरे फादर का नाम है नीलेश पटेल और मदर का नाम है माया पटेल।
0: जी इस पूरे कार्य योजना में सबसे ज्यादा सहयोग आपको कौन करता है डेली? आपकी जो दिनचर्या है या जो बहुत सारा जो काम है डे टू डे का, उसमें कौन आपको सहयोग करता
1: मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर्स
0: है? अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: मेरी मदर।
0: जी, तो क्या वो भी आपके साथ एनजीओ में जुड़े हुए हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहेगा तब तक एनजीओ तो ओपन नहीं कर सकते ना। टफ लेवल की बात है ना एनजीओ ओपन करना भी।
0: जी
1: पहले तो फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और मुझे मेरी पूरी फैमिली बहुत ही सपोर्टेबल है, मतलब
0: जी
1: पूरी तरह से कोऑपरेट करती है मेरी फैमिली।
0: आपने एक डिबेट चलता है आजकल की ब्रेल को सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, आपका क्या मानना है इस बारे में?
1: वैसे देखा जाए तो सीखना जरूरी तो है, पर आज टेक्नोलॉजी की इतनी बढ़ चुकी है ना टेक्नोलॉजी, सो किसी को ब्रेल नहीं भी आएगा ना तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मेरे को खुद ब्रेल नहीं आता है क्योंकि मैंने स्कूलिंग और कॉलेज साइटेड लोगों के साथ में की है, तो आप भी समझ सकते हो कि मेरे को ब्रेल नहीं ही आता होगा, पर मेरा ब्रेल से कोई विरोध नहीं है। बट हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है और आगे भी बहुत कुछ देने वाली है टेक्नोलॉजी, सो हमें घबराने की जरूरत नहीं है।
0: जी मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि इस पूरे भागम भाग भरी जिंदगी में अभी एक्सेसिबिलिटी भी एक चैलेंज है, और एक्सेसिबिलिटी को लेकर बहुत सारे कैंपेन चलाए गए हैं। आपके जिले नर्मदा में क्या परिस्थितियां हैं? आपने आपकी संस्था उस बारे में क्या कर रही है?
1: हमारी संस्था के द्वारा एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी बहुत सब कुछ अवेयरनेस के रिगार्डिंग कार्यक्रम होते रहते हैं, और सभी स्कूल कॉलेजेस में भी कार्यक्रम होते रहते हैं ताकि वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी पता चले कि ब्लाइंड लोग इस फील्ड में वर्कआउट कर रहे हैं, सो वो लोग भी समझ पाए।
0: आप लोग भी जानते हैं, जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और हमारे साथ हैं आज के गेस्ट जय पटेल। जय पटेल नर्मदा जिले से आते हैं और अपनी स्वयं की एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, और साथ में उनका मकसद है कि डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए एक कम्युनिटी हाउसिंग डेवलप की जाए और कम्युनिटी हाउसिंग के माध्यम से उनकी चुनौतियों को कम किया जाए। वे स्वयं भी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, परंतु देखिए ना उनका हौसला कि उन्होंने अपनी दृष्टिबाधिता को अपने आड़े नहीं आने दिया और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं अकेले ही, लेकिन उनके साथ हैं वहां के प्रिंस नर्मदा जिले से, उनके वहां के राज परिवार का सहयोग ले रहे हैं, और अपने पेरेंट्स की जिंदगी के बारे में उन्होंने बताया कि वो भी उनको सहयोग कर रहे हैं। तो आपकी आगे की क्या प्लानिंग है जय पटेल जी?
1: आगे की प्लानिंग यही है कि इस एनजीओ को मैं बहुत आगे ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूँ, और मतलब मुझसे जितना भी हो सके उतनी हेल्प डिसेबल लोगों के लिए करना चाहूंगा।
0: जी मन की आंखों के से कार्यक्रम में निश्चित रूप से हम हमेशा ही एक दिव्यांग व्यक्ति से मिलते हैं, और आज आज जय से मुलाकात हुई है, और जय बता रहे हैं कि वे वॉलेंट्री सेक्टर के माध्यम से कम्युनिटी के लिए भी हेल्प करना चाहते हैं और एक आउटरीच ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग को लेके बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स मैं देखता हूँ दिव्यांग व्यक्तियों की, आपका क्या मानना है उसके लिए? क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे हम हर जिले में कंप्यूटर सेंटर बना सकते हैं और दिव्यांग व्यक्तियों को कंप्यूटर सीखने के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े, तो क्या ये पॉसिबिलिटी संभव है हमारे देश में?
1: बिल्कुल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से 20 टोटली ब्लाइंड लोगों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी हुई है, 20 लोगों को, और वो भी बहुत ही सक्सेसफुली रहा था। और क्यों हम नहीं कर सकते, सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी स्टेट में हम लोग कर सकते हैं ताकि सभी विजुअली इम्पेयर्ड को इनका फायदा हो और उनके ही जिले में उनको प्रॉपर शिक्षण मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए, ये करना चाहिए और ये हम लोग भी करेंगे। हाँ
0: हाँ, इसके लिए कुछ योजना तो बनानी होगी ना, लेकिन
1: बिल्कुल, योजना बनानी होगी। मैंने आपको बोला ना पहले रेसिडेंसी हो जाएगा ना, इसके बाद में सभी प्रकार की ट्रेनिंग उपलब्ध की जाएगी, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग हो गई, संगीत का हो गया, रोजगार के रिगार्डिंग हो गया, सब कुछ ट्रेनिंग एक ही जगह पे हम लोग प्रोवाइड कराएंगे ताकि सबको अलग-अलग जगह पे ना जाना पड़े, और उनको
0: कम्युनिटी हाउसिंग,
1: व्यवस्था व्यवस्था इस प्रकार से देंगे क्योंकि उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल की परेशानी ना आए, उनके पेरेंट्स भी हमारे रेसिडेंसी पे छोड़ने आए, ऐसे हम बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स हमारे पे ट्रस्ट करें, ऐसा हम डेवलप करना चाहते हैं।
0: हाँ कम्युनिटी हाउसिंग आप कहाँ प्लान कर रहे हैं? नर्मदा में प्लान कर रहे हैं?
1: यस, नर्मदा राजपिपला।
0: कैसी दिखती होगी ये कम्युनिटी हाउसिंग, क्या होगा इसमें विशेष?
1: सभी जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि ब्लाइंड लोगों के लिए हॉस्टल बना रहे हैं। हम लोग हॉस्टल नहीं बना रहे, हम लोग बोल रहे हैं सभी डिसेबल लोगों के लिए एक घर बना रहे हैं। हॉस्टल नहीं, इसे घर का दर्जा दिया जाएगा, और जिनका कोई नहीं है इनका हम एक आधार बनेंगे।
0: जी, कितने
1: बिल्कुल,
0: लोगों की आवास की व्यवस्था होगी यहाँ पर?
1: अभी वो तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मेरा ड्रीम है कि बड़ी बिल्डिंग बने और 70 to 80 रूम बने, जिसे बहुत बढ़िया बिल्डिंग हो और बहुत ही अच्छा एक्सेसिबल हो और सभी
0: ये आप
1: डिसेबल लोगों के लिए।
0: राजपीपला में प्लान कर रहे हैं?
1: राजपिपला में प्लान कर रहे हैं हम लोग, राजपिपला और वडोदरा के बीच में, मतलब
0: जी, नर्मदा और बड़ोदरा लगते हुए जिले हैं दोनों।
1: बिल्कुल नजदीक है। मेरे घर से वडोदरा 70 किलोमीटर,
0: जी,
1: 70 75। यस
0: बेहतरीन बातचीत रही जय पटेल जी आपके साथ। और आप कुछ कहानियां हमसे साझा करना चाहें तो बताइए ना, कुछ सफलता की कहानियां, कुछ ऐसी बातें जो हम हमारे श्रोताओं तक ले जा सकते हैं।
1: हाँ, देखो मैंने बहुत सारे कार्य किए, मैं सेवा किए कार्य में बहुत सारी जगह पे इन्वॉल्व रहा हूँ। तो मेरा सूरत में भी सम्मान हुआ है, मुंबई में भी हुआ है, और रिसेंटली अभी मारुति सुजुकी शोरूम के बारे में आपने सुना होगा, सो नेक्सा शोरूम के यहाँ भी मेरा सम्मान हुआ, और उसमें मुझे चीफ गेस्ट में बुलाया था, और रिबिंग कटिंग भी मेरे हाथ से ही उन लोगों ने करवाई थी, और मुझे सम्मानित भी किया, और कॉलेज कार के दरमियान भी मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ है।
0: जी,
1: बिल्कुल
0: मुझे लगता है ना कि हम लोग ये सारा जो प्लान कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नया करने की आवश्यकता है
1: बिल्कुल,
0: और लोगों से जुड़ने की
1: लोगों
0: आवश्यकता है।
1: के कनेक्ट, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ हो, ऐसी हम एक आवश्यकता रखते हैं, और आप भी हमारे कार्य में शामिल होगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और आपके साथ में आज बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
0: जी, मुझे भी अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और मन की आपको किसी टीम आपके साथ है हमेशा, और आप इसी प्रकार से कार्य करते रहें। हम
1: बिल्कुल,
0: आपको हमेशा आपके साथ हैं और आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से।
1: खास तौर पे मैं मन की आंखों की पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और खास तौर पे कृष्णा दीदी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कृष्णा दीदी ने हमारे डिसेबल लोगों के लिए बहुत कुछ किया, और ये बहुत ही अच्छा सोच रहे, तो ये रेडियो स्टेशन का जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया है, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है।
0: बिल्कुल जय पटेल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। कोई ऐसी बात जो हम पूछना भूल गए हों और आपको लगता है कि नहीं, वो बात मन की आंखों से के कार्यक्रम में आनी चाहिए थी, तो आप हमें बताइए ना प्लीज।
1: वैसे तो मैंने आपको सब कुछ मेरा बता दिया है, और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर के रूप में भी काम कर रहा हूँ, और सिंगर एंड कीबोर्ड प्लेइंग भी खुद कर रहा हूँ,
0: जी
1: और मेरा जहाँ पे भी कार्यक्रम रहता है वो नॉर्मली साइटेड स्कूलिंग में ही होता है, कॉलेजेस में होता है, जो नॉर्मल बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको ही हम लोग मोटिवेट करते हैं, और ब्लाइंड को भी मोटिवेट करते हैं, और मेरी इवेंट जो भी प्लान होती है ना, वो बहुत ही एक्साइटेड बात है। आप सुनना, मैं जहाँ पे भी इवेंट प्लान करता हूँ वो आदमी से मैं डायरेक्टली प्रोग्राम में ही मिलता हूँ। इससे पहले हम लोग फोन से कांटेक्ट करते हैं, मैं गूगल से कांटेक्ट करता हूँ और कांटेक्ट निकल के उनसे बात करता हूँ, और मेरा प्रेजेंटेशन करता हूँ, फिर वो लोग रेडी हो जाते हैं, और फिर हमारा कार्यक्रम होता है, उसी दिन हमारी मुलाकात उस आदमी से होती है जो हमें सहयोग कर रहा है। ये मेरी स्पेशलिटी है कि मैं किसी को कभी, मतलब मेरे से अनजान भी है तो इससे बात करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, और फिर जिस दिन प्रोग्राम रहता है उसी दिन हमारी उनसे आमने सामने मुलाकात होती है, और हमें अच्छा खासा सहयोग भी प्राप्त होता है, भले ही हम लोग ना मिले हो। और अभी
0: जी
1: हमारी चंडीगढ़ में भी बातचीत चल रही है, उनसे भी मैं अभी मिला नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही बड़े लेवल पे एक इवेंट प्लान कर रहे हैं उनके साथ में मिलकर।
0: जी तो मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, मन की आंखों से टीम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको देती है। और श्रोताओं, आप सुन रहे थे आपका फेवरेट रेडियो प्रोग्राम मन की आंखों से, 107.8 FM रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मेरे प्यारे से श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और आप पहचान रहे होंगे एक जानी पहचानी आवाज, इस शो का होस्ट शरद त्रिपाठी। और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। मुझे किसी ने पूछा कि क्या आपने दुनिया को देखा है, तो मैंने उनको कहा हाँ देखा है, पर मेरी मन की आंखों से। और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.0 लाया है एक नया मेहमान। और हमारे मेहमान का नाम है सचिन सिंह जाधवन, जो आते हैं देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की पूर्वी सीमा से लगे हुए करौली जिले से। करौली एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, और वहां से आने वाले हमारे एक आज के नेत्रहीन साथी हैं, दृष्टिबाधित साथी हैं, सचिन सिंह जाधवन। सचिन, स्वागत है आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार।
0: सचिन, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी भाषण प्रतियोगिता में, और आप उस भाषण प्रतियोगिता के विनर थे, और मुझे मालूम भी नहीं चला कि आप दृष्टिबाधित हैं। लेकिन वो मेरे लिए एक नया अनुभव था। आप आए और चुपचाप आए, बिना किसी जद्दोजहद के आपने अपना एक शानदार भाषण दिया, और आप उस प्रतियोगिता के विनर रहे, वो मुझे आज भी याद है। तो सचिन, इस समस्या और चुनौती के बावजूद, या मैं कहूं कि शारीरिक चुनौती के बावजूद, आप यहां तक कैसे पहुंचे उसको जानना है। तो पहले आते हैं आपके बचपन पर। तो ये चुनौती आपको कैसे प्राप्त हुई और कैसे आप इससे उभरे?
1: जी सर, धन्यवाद। जी सर, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अभी आप मेरे बारे में जो आपने बताया वो सिर्फ एक समस्या को बताया है कि जो मुझे आंखों की समस्या है उसके साथ में ही एक हड्डियों की गंभीर समस्या है जिसका नाम है ऑस्टियोपेट्रोसिस, जिसके कारण से अगर हम गलती से भी चेयर से भी यदि गिर जाते हैं तो उसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं। और अब तक कम से कम 25 से 30 फ्रैक्चर मेरे बॉडी में हो चुके हैं, जिसके 4-5 तो मैं ऑपरेशन करवा चुका हूँ। ये एक गंभीर समस्या है जिससे पार पाना, मैं कहूंगा कि जो आंखों की समस्या है उससे भी कहीं कठिन समस्या है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि बचपन की मैं बात करूं तो जिस उम्र में, जो उम्र खिलौनों की होती है, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में मस्त रहते हैं, उस उम्र में मेरे फ्रैक्चर्स हो जाते थे और मैं प्लास्टर से ग्रसित रहता था। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे बॉडी में सबसे जो पहला फ्रैक्चर था वो महज 3 साल की आयु में, जिस समय बच्चा सिर्फ खिलौने पकड़ना सीखता है, धीरे धीरे चलना सीखता है, उस समय मैं किसी की गोद से गलती से गिर गया था। उस समय मेरे फ्रैक्चर हो गया था और मुझे प्लास्टर लग गया। कभी कभी तो ऐसा समय आया कि मैं साल में 8-8, 9-9 महीने फ्रैक्चर्स रहते थे, प्लास्टर्स रहते थे, ना कहीं खेलना ना कहीं जाना, क्योंकि कभी एक प्लास्टर कटा आप कहो कि वो दूसरा में लग जाती थी, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग है सर वो बहुत ही चंचल दिमाग है। आज तो मैं समझ सकता हूँ कि मुझे ये करना है, यहाँ नहीं जाना है, किंतु जब बच्चा दूसरे बच्चे को देखेगा कि आम बच्चे खेल रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, तो उसका भी मन करेगा, वो इतना परिपक्व नहीं होता है। तो सर जो बचपन रहा है वो काफी चुनौतियां पूर्ण रहा है, लेकिन मेरी जो इच्छा शक्ति रही वो हमेशा यही रही कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यानी कि जब उद्देश्य बना लिए हैं जीवन में, अपन को एक जीवन को सार्थक जीवन बनाना है और देश और समाज के लिए कुछ करना है, तो मैं यहां तक जो पहुंचा हूं वो बहुत ही जद्दोजहद करके या बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ आया हूं। और जो बचपन रहा है वो लोगों का बचपन सुखद रहता है, किंतु मेरे साथ में जो समस्याएं थी और जो बचपन मेरा था वो मैं नहीं कहूंगा कि इतना खुशहाल बचपन रहा जो कि एक आम बच्चे से उम्मीद की जाती है।
0: जी सचिन, आपकी बात सुन के तो मैं भी अभी भावुक हो रहा हूं, लेकिन भावनाओं से आगे निकल जाने की यात्रा ही इंसान की यात्रा है। तो इस डबल चुनौती, या कहें कि दोहरी चुनौती के साथ आप आ रहे हैं, और हम तो एक हड्डी के फ्रैक्चर को जब झेलते हैं तो हमें मालूम है कि कितना पेनफुल होता है। और आपने इस कम उम्र में, आप बता रहे हैं कि आपने दर्जनों फ्रैक्चर अब तक आप अपने जीवन में देख चुके हैं, तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप इस दोहरी चुनौती के साथ में, जो आपकी डिसेबिलिटी है, जो आपकी दृष्टिबाधिता है, उसके साथ में आपके स्कूल का जीवन कैसा रहा, और आप कैसे रिहैबिलिटेशन, मतलब पुनर्वास, एक महत्वपूर्ण है। शारीरिक चुनौती होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उस व्यक्ति को पुनर्वास करने का अवसर मिला कि नहीं। तो आपको पुनर्वास करने के लिए किस प्रकार के लोगों के सहयोग मिला, परिवार का सहयोग कैसे मिला, आपके विद्यालय के अध्यापकों ने क्या इस बारे में चर्चा की, थोड़ा इस बारे में बताइए ना,
1: जी
0: खासतौर पर
1: सर,
0: प्राइमरी
1: मैं
0: एजुकेशन, खासतौर पर प्राइमरी एजुकेशन।
1: जी जी सर मैं प्रारंभ से प्रारंभ करता हूँ कि एक जो दृष्टिबाधित बच्चे से, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत है, किंतु जब उस समय, और हम जो आते हैं वो एक छोटे शहर से आते हैं, यहाँ पर इतने अवसर नहीं मिल सकते क्योंकि इतने कंप्यूटर से या इतना टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है। तो हमें जब कोई शिक्षा के बारे में बोलता था तो कुछ लोग तो पहले ऐसे भी थे, मुझे ध्यान है, वो कहते थे तो भाई अब बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे कुछ ढोलक वगैरह सीख लो तो जीवन यापन हो जाएगा। मैंने उनसे भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है, उनका कहना भी उनकी जगह सही है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती थी तो सिर्फ एक चीज थी कि आप ब्रेल लिपि सीख लो, उससे वो जो डॉट्स होती हैं उससे आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो कुछ जीवन यापन हो जाएगा, आपको कुछ बेसिक एजुकेशन मिल जाएगी। लेकिन जब ब्रेल लिपि का सवाल आता था तो घर वालों के डर एक ही था कि यदि आंखों की समस्या हो तो छूट सकता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहां पे, जो स्कूल्स भी चल रहे हैं। किंतु हम एक बार गए एजुकेशन के लिए तो उन्होंने कहा कि यदि इनको आंखों की समस्या होती तो हम इनको हमारे यहाँ पर रखते और इनको प्राइमरी एजुकेशन देते। किंतु इनके साथ समस्याएं दूसरी भी है कि यदि गलती से भी किसी बच्चे को जो और रह रहे हैं उनको भी नहीं दिख रहा है, गलती से किसी बच्चे से ये टच हो गए या टकरा गया तो इनके तो फ्रैक्चर हो जाएंगे और घर वालों में लगेंगे 24 घंटे से ज्यादा। तो उन्होंने मुझे साफ तौर पर मना किया, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, जितना भी होता है आप इनको घर पर ही रिहेबिलिटेट करें और इनको जो एजुकेशन दे सकते हैं वो घर पर ही दें, हम इसके लिए माफी चाहते हैं। तो एक हमारी आशा खत्म हो चुकी थी बिल्कुल कि अब तो उन्होंने भी मना कर दिया एजुकेशन के नाम पे, तो हम तो जीरो हो गए थे उधर फ्रैक्चर्स के, तो घर वालों के भी दिमाग में नहीं था। फिर हमारे शहर में एक वीणा मेमोरियल जो संस्थान है उनके काफी कॉलेजेस स्कूल चलते हैं, तो वो पहले चलता था, उनमें एक प्रिंसिपल आई थी, श्री योगिता मैडम थी जयपुर से। वो एक दिन मुझसे मिलने आए तो उन्होंने मुझसे कहा, ऐसे ही बात की, तो उन्होंने हमारी फैमिली को कन्विंस किया कि देखो हम सब लोग इनका सपोर्ट करेंगे, हम सब लोग इनको अलग बैठाएंगे, आग हाथ पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन आप इनको घर से बाहर निकालो। उन्होंने कहा जब तक ये घर को नहीं छोड़ेंगे ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ कुछ नहीं पढ़ेंगे वहां पे बैठेंगे। तो घर वालों की तो मन में नहीं थी, लेकिन तब तक मैं भी समझने लगा था और मुझे पढ़ाई की तो इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आई थी, लेकिन ये था कि यार दुनिया के दोस्त होते हैं, सब लोग बाहर जाते हैं, अपनी जिंदगी क्या है, खाया पिया और सो गई। तब तो फोन भी नहीं था जो दुनियादारी से पता चलता, तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगा। तो मैं गया, पहले तो लगभग 15 दिन गया वहां पे बैठा, तो मैं तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ समझ में, मेरी जो माताजी ने जो प्रारंभिक शिक्षा दी, जैसे गिनती सिखाना है, ANR 12 खेड़ी, ये ABCD ये सब सिखाना है, या कुछ मतलब जो वर्बल एजुकेशन वो दे सकते थे वो मुझे दी उनने, क्योंकि ब्रेल लिपि तो उनको नहीं आती थी जो मुझे सिखाएं, और टेक्नोलॉजी थी नहीं हमारे यहाँ पे कि हम टेक्नोलॉजी सीख सके, तो ओरल एजुकेशन उन्होंने मुझे दी। फिर मैं वहां पे गया तो कुछ दिनों तक तो मैं रोता था, क्योंकि वो बोल रहे हैं, एक टीचर जा रहे हैं दूसरे टीचर आ रहे हैं, बोल रहे हैं ना मैं नोट्स बना रहा हूँ ना मैं बैठा हूँ। आप एक बच्चे जो सिर्फ घर पे खाने और सोने से फुर्सत नहीं है, वो बच्चा के कोई और उद्देश्य नहीं है जीवन में, वो बच्चा सिर्फ 8 घंटे बैठा है, तो उसकी यात्रा आप समझ सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैं बैठूंगा। मैं वहां पे 15 दिन बैठा, 20 दिन बैठा, फिर क्या है कि पहले वो मुझे ले गए थे कि अब मेरी क्या एज भी हो गई थी, मैं पढ़ने नहीं गया था। वो उनने कहा कि यार जब एजुकेशन देनी है अब इसको नर्सरी में बिठाएं तो भी कोई मतलब नहीं है, कि जाके ये 20 साल की उम्र पे जाके 10वीं करेगा, तो वो भी एक चुनौती थी। तो उन्होंने मुझे पहली बार बैठाया सेकंड क्लास में, एक मैडम थी बहुत अच्छी, उन्होंने माँ की तरह ख्याल रखा मेरा। फिर मैं 2 दिन सेकंड क्लास में बैठा तो मुझे लगा कि यार बड़ा बहुत बेसिक एजुकेशन दी हुई है और जो माता जी ने भी दिया हुआ है, तो क्यों ना हम एक क्लास और आगे जाएं। तो फिर मैं गया थर्ड क्लास में, तो सर थर्ड क्लास में मेरा सिर्फ वही था कि जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, टिफिन खोला, लंच हो गए, टिफिन खाया, और एक आदमी बस में आके बैठा गया, घर पे आके लोगों ने उतार लिया, मेरा ऐसे ही चला, कुछ नहीं था, बस मैं जो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। फिर मैं थर्ड क्लास में पढ़ा, लेकिन क्या है कि मुझे पढ़ने की, क्योंकि मैं पढ़ाई से वंचित रहा तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा था कि कुछ तो करना है, बस पढ़ना तो है, मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि ना तो मैं खेल सकता, ना मैं क्लब जा सकता, ना मैं कुछ कर सकता, करौली छोटा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं थे, तो मैंने कहा अब तो पढ़ना है। तो मैं सुनता था वो क्या बता रहे हैं, तो जितना सुन के मैं ले पाता था। फिर मैंने 12th के एग्जाम हुए, उसमें मेरी ठीक ठाक अंक आए जो औसत क्लास में आते हैं, जबकि मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए और लिखने वाला दूसरा लिया, एक बच्चे से और से लिखवाए थे। तो फिर घर वालों को टीचर्स को लगा कि यार थोड़ा बहुत कर सकता है, एजुकेशन दे रहे हैं, तो क्यों ना इसको एक क्लास और जंप करवाई जाए। तो मैंने 5th क्लास में पहुंचा डायरेक्ट में। अब वो सर मुझे दिक्कत नहीं है, पहले तो मैं 1 साल तो थर्ड क्लास के बच्चों के साथ एडजस्ट किया मैंने, अब मैं सर 5th क्लास में गया तो वहां तो मतलब पूरा सीन ही बदल गया। एक तो स्टैंडर्ड बढ़ गया पढ़ाई का, और उसमें बच्चे नहीं मिले, मैं तो कोई ना मेरे से बात करे ना कोई मुझे बिठाए, टीचर बैठा जाए, मैं वहीं बैठा हूँ अकेला और बस टीचर चल रही है। लेकिन अब अपन मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है, तो यहाँ पे समाज की भी जरूरत पड़ती है। तो हमने धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई, बच्चों से शुरुआत की, तो कुछ लोग मुझे समझ पाए, कुछ लोगों ने तो मुझे हमेशा नेग्लेक्ट किया कि यार ये तो ऐसा ही, अपना एडजस्ट नहीं होगा इसके साथ, लेकिन कुछ लोग समझ पाए तो मेरी उनके साथ कंपनी बनी। फिर मैं वहां पे धीरे धीरे पढ़ा, फिर मैं 5th क्लास और जो 6th क्लास मैंने वहां पे 2 क्लास पढ़ी बच्चों के साथ, और धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। सिक्स क्लास में हमने एक जब जैसे क्या है कि फिजिक्स के वो हिस्ट्री सोशल पॉलिटिकल साइंस और हमारे में सेंट्रल बोर्ड का था ही एजुकेशन जो मैंने ली है स्कूलिंग, सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हुई है। तो सर वहाँ पे सिक्स क्लास में मैं आया तो और सिलेबस ब्रॉड हो गया, वहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी ऐसी चीज़ें साइंस पढ़ाने लग गए, ईबीएस खत्म हो गई। तो हमको लगा कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो फिर हमारे एक वेस्ट बंगाल से टीचर है मैं पंकज यादव सर, अभी नहीं है वो थे पहले, अभी यहाँ से जा चुके हैं, तो उनको हमने घर पे हायर किया। तो वो मुझे घर पे पढ़ाने आते थे, तो वो भी मुझे ओरल एजुकेशन दे रहे हैं, यदि वो लिखें तो मैं नहीं पढ़ पाऊं, और ब्रेल उनको आती नहीं ना कंप्यूटर, तो वो सिर्फ मुंह से बोल के सिखा रहे हैं वो। तो वो आए फिर सिक्स क्लास में, धीरे धीरे मुझे लगा, तो मैंने वहां पे और बेहतर अपने आप को किया थोड़ा सा। मैंने कहा आप समझ में आ रहा है सर से पूछना, यहाँ पे मेरे भैया भी हैं बड़े भैया, मैं उनसे भी पूछता था, जो घर में मिल रहा है उससे पूछ रहा हूँ। माता जी को इंग्लिश नहीं आती तो उनसे हिंदी की किताब पढ़वा रहा हूँ कि आप हिंदी सुना सकते हो, हिंदी तो सुनाओ। तो ऐसे चीजें चली मुझे, हालांकि इस दौरान मैथ्स में काफी दिक्कत आई, पर एक टीचर जो हमने हायर किए थे उनने मुझे काफी सहयोग किया। फिर ऐसा लगा कि यार अब फिफ्थ सिक्स पढ़ लिए तो क्यों ना एक क्लास और जंप करवाएं। तो सर मैंने सेवंथ क्लास जंप किया, अब मैं पहुंचा हूँ एट्थ में। अब मैं डायरेक्ट एट्थ में गया, तो एक तो सिलेबस बढ़ रहा है एक साल का, आप अंतर समझ सकते हैं कि जब स्कूलिंग में एक साल की जो सिलेबस है वो कैसे कवर करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है वो करना, क्योंकि पहले और वो भी मेरे कंडीशन में। तो सर वहां पे हमारे साथ एक तो वही समस्या पहले वाली कि वहां पे नई कंपनी, कोई बच्चा एक्सेप्ट ना करे, बच्चे को दिख नहीं रहा है, कौन मुझे लेके जाएगा, कौन लेके आएगा, कौन वॉशरूम ले जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो एक दो महीने तो एडजस्ट करने में चली गई। फिर मैं एट्थ क्लास में गया, फिर एक उसी दौरान एक हमारे हुआ था, मैं बोलता अच्छा था, मुझे बोलने का

0: में एक इमेज बदली, बच्चों ने सोचा कि यार कुछ चीज नहीं है लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो किसी के पास नहीं है। तो फिर मुझसे उन्होंने दोस्ती बढ़ाई और हाथ बढ़ाया, तो सर मेरी दोस्ती सबसे बढ़ गई। फिर आती है 9th क्लास, 8th क्लास में बढ़िया उत्तीर्ण हो गया मैं। फिर 9th क्लास आई तो सर 9th क्लास में ये होता है कि SST और ये सब तो थी, पर अब यहाँ पे साइंस के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब अलग कर दिए इन्होंने, अलग अलग हो गई, बाइफरकेशन हो गया इनका। और फिजिक्स में चले कैलकुलेशन और ये इक्वेशंस चलते हैं, उसमें डेरिवेशंस होते हैं। तो मैथ्स में मैं शुरू से ही इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मैथ्स क्या है कि देख के करनी पड़ती है। तो फिर भी मैंने जद्दोजहद की और सर मैं 9th निकला, थोड़ा थोड़ा मेरा फेमिलियर हुआ इनसे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। फिर मैंने 10th क्लास में पहुंचा मैं। तो सर हमारी तो क्या है कि कोई गिनती थी नहीं, क्योंकि लोग एक्स्ट्रा क्लास जा रहे हैं, ट्यूशन चल रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज लिए हुए हैं। लेकिन मैं अपने वो कछुए की गति से चलता रहा, सब लोगों का सहयोग मिला। टीचर से हमने, प्राचार्य महोदय से रिक्वेस्ट की थी, और हमारे स्कूल ने भी इतना अच्छा मुझे कॉपरेट किया कि कभी किसी चीज की कमी, मतलब मैं खड़ा हो जाता था, मुझे हमेशा आगे बैठाया उन्होंने, कभी नहीं कहा। बच्चों का रोटेशन चलता था लेकिन मेरी सीट हमेशा फिक्स थी, हालांकि मैं कभी देख नहीं पाता था लेकिन जो बोर्ड पे पढ़ा रहे थे वो सुनता था मैं। तो हमने उनसे इतना सा निवेदन किया कि सर जब भी कोई टीचर जैसे फ्री हो तो इसको एक आधा पौना घंटा स्कूल में अलग दे दिया करे 10th क्लास में जाके, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब क्या है क्लास में तो वो उनके हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे वो उतना लिख नहीं रहे, ओरली बताए। तो थोड़ा थोड़ा पॉसिबल हुआ जितना हमने अलग अलग टीचर्स को, जो जो फ्री होते थे, तो उनने हमका व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया। सर सेंट्रल बोर्ड ये CBSE में जब रिजल्ट आता है 10th का, तो सर जो अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट थे उनकी परसेंट कम रहती है, और आश्चर्यजनक मेरी परसेंट बन जाती है 89%। अब सर धीरे धीरे मेरी स्कूलिंग, मेरी एक तरीके से इमेज और बन गई कि ना तो लड़के ने नोट्स, अब मैं, मुझे ये था कि यदि टीचर पढ़ा रहा है मैंने अभी नहीं सुना तो मुझे बाद में पढ़ाने वाला कोई नहीं है, जब तो यूट्यूब, मेरे पास पर्सनल फोन भी नहीं था, मैं पढ़ूंगा कैसे। तो मैं उसको इतना ध्यान से पढ़ता था, और लिखने की यदि मैं अच्छा बोल लेता था तो विचारों का आदान प्रदान अच्छा था। और CBSE का नियम है कि यहाँ पे फैक्ट पे बात कम करते हैं, ये कॉन्सेप्ट पे बात ज्यादा होती है। तो जो जितना भी मुझे आता था वो मैं उसको अच्छे से लिखना, अब राइटर किया हमने, वो भी 9th क्लास का था, तो उसने मेरी बातों को अच्छे से लिखा, तो सर मेरी बनती है 89% फिक्स। अब सर जो मेरे से अच्छे थे पढ़ने वाले, उन बच्चों की भी इतनी अच्छी परसेंट नहीं बनी। मैं उस समय 3rd रैंक पे रहा था पूरे स्कूल में। मैं कहूंगा कि सर कुछ बच्चे तो TC लेकर चले गए, कि स्कूल ने कुछ ना कुछ फेवर किया, इस बच्चे को दिखता नहीं, इसकी इतनी परसेंट कैसे बनी, हमारी क्यों नहीं बनी,
1: आपने
0: ऐसी भी फीलिंग आई उनकी।
1: अपनी
0: फिर सर
1: शारीरिक चुनौती से उनको मानसिक
0: हाँ,
1: चुनौती
0: मानसिक चुनौती दे दी मैंने, तो उनको उस चीज में मतलब एक तरीके से
1: दे
0: डेरोगेटरी फील हुआ, तो उनने
1: दी।
0: TC भी ले ली, दो तीन
1: जबकि
0: बच्चे थे,
1: हमारा
0: किसी चक्कर
1: उद्देश्य
0: नहीं
1: नहीं,
0: के।
1: जबकि हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं था।
0: मेरा ऐसा नहीं था, लेकिन सर वो दुनिया अलग तरह से ले जाती है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें।
1: बचपन से ही लेती है ना।
0: हाँ, फिर सर हम आए 11th क्लास में, तो अब मैंने कहा साइंस लूँ तो वही दिक्कत कि उसमें देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर मुझे लोगों ने प्रोत्साहित किया कि यार आप अच्छा बोल लेते हो, विचार अच्छे आदान प्रदान करते हो, आपको अच्छी नॉलेज है, आप लो आर्ट्स। तो सर मैंने 11th में आर्ट्स ली, वहां पे हमारी मैडम थी अनीता मैडम, तो वो बहुत अच्छा बच्चों को रखती है, एकदम माँ की तरह रखा था उन्होंने। मैंने ली हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। सर मैं अच्छे से पढ़ता, अब मेरी हालत ये हो गई कि 11th में हम कम ही बच्चे थे, अब उन बच्चों को कोई समस्या होती तो मैं इतना अच्छे से पढ़ लेता कि वो किताब पढ़ के मुझे सुनाते, उसका मैं उनको अर्थ समझाने लग गया, वो टीचर से नहीं समझते थे, और मुझे इसमें मजा आने लग गया। मुझे शुरू से जो जिस चीज को किसी को समझाने में, बताने में, बातों को, उसमें मजा आता है। तो अब होता क्या था कि मैं टीचर से पढ़ लेता था, वो भी पढ़ते थे, उनको कम समझ में आता था, वो किताब लाते थे, वो एक सेंटेंस पढ़ते थे, मैं उनको समझाता था, वो दूसरा पढ़ते थे। अब उनको फायदा हो रहा है कि बढ़िया फ्री में टीचर मिल गया, टीचर तो बार बार नहीं पढ़ाएगा ये, तो मतलब जब तक स्कूल में 8 घंटे फ्री मिल गया हमको, बढ़िया। और मुझे फायदा ये हुआ कि सर मेरी पूरी NCERT रिवाइज हो गई उससे। अब वो पढ़े, मुझे लगभग लगभग बुक याद हो गई। इस तरीके से मैंने 11th की, 11th में बहुत अच्छा रहा। फिर हम आ गए 12th में, तो 12th में भी सर यही सिलसिला चलता रहा। मॉडर्न हिस्ट्री आ गई इंडिया की, इंडियन हिस्ट्री आ गई, इधर अपने ये कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स आ गई, और यहाँ पे नई नई चीज सीखने को मिली मुझे, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी मिली, कोल्ड वॉर एरा, ये सारी चीजें, तो इसमें इंटरेस्ट आता था। इधर बच्चे मेरे से पूछते थे, वो पढ़ते थे, तो मुझे NCERT याद सी हो गई। तो सर 12th में जाते जाते तो मुझे ऐसा हो गया कि मैंने प्रिंसिपल से, सर से कहा, सर मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, आप लोगे नहीं, NCERT इतने अच्छे तरीके से याद होंगे कि जो टीचर पढ़ा रहा है आपके, आप यदि मुझे मौका दो तो शायद बच्चों को उससे अच्छी तरीके से मैं समझा सकूं। उनने कहा कि आप तो बहुत अच्छी तरीके से, आप पढ़ो और आप हमको रिजल्ट दो पहले। सर मैंने पूरी श्रद्धा से तैयारी करी और मेरी बनी 90.20% क्लास 12th आर्ट्स में। सर मैंने तो दोबारा सरप्राइज कर दिया सबको, और उसके बाद क्या है कि सरप्राइज मैंने कर दिया, फिर मेरी स्कूलिंग खत्म हो गई। फिर

0: मेरे एक पीटीईटी का एग्जाम दिया, यहाँ पे बीए प्लस बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 ईयर का। उसमें सर मैंने कॉलेज टॉप किया, मतलब मेल में कॉलेज टॉप किया था मैंने, और वैसे पूरे कॉलेज में मैं आया था सेकंड नंबर पे। उससे हमको बीड़ा मेमोरियल कॉलेज मिला, जिनका स्कूल चलता है उनका ही हायर स्टडीज के लिए कॉलेज है, तो वो घर से कॉलेज मिल गया मुझे। उसके बाद मैंने कॉलेज में दाखिला लिया। फिर आपके जो भी ये युवा दिवस के कॉम्पिटिशन हुए, उसमें आपका जो हुआ था विकसित भारत के लिए, उसमें मैं जिले में प्रथम आया। एक गहलोत सरकार के टाइम पे हुआ था अपना ये विकसित राजस्थान 2030, उसमें मैं गया था ऐसे, तो मैं उसमें आया थर्ड रैंक पे डिस्ट्रिक्ट में। तो
1: जी
0: सर ऐसे जो भी 2-3 कार्यक्रम और हुए, युवा दिवस पे आपने मुझे सम्मानित करवाया था आपके माध्यम से सांसद महोदय से, तत्कालीन सांसद महोदय से, तो इन
1: जी
0: चीजों ने ऐसा बूस्टअप किया। फिर मैं धीरे धीरे, ये प्रोग्राम है, आप सब लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप इनमें ज्वाइन करो, तो मैं यहाँ पर जाने लगा। तो आज मैं ऐसा खड़ा हुआ हूँ कि मुझे प्रोग्राम में जाने में, भाषण देने में, इन सब में मजे आते हैं। मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, साथ ही में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, और आगे भी मैं अपनी जो मेहनत की है उसको ऐसे ही बरकरार रखना चाहूंगा जैसे अभी रखी है। और यहाँ तक की जर्नी तो कुछ स्कूलिंग की तो इस प्रकार रही थी, संक्षेप में मैंने बताया आप।
1: जी सचिन, डेफिनेटली बचपन से लेकर एक हायर एजुकेशन तक आने में नेगलेक्ट या कहें कि डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कदम कदम पर फेस करते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपके सामने से उठ के चला जाए, और या फिर जैसा आपने बताया कि एक कोने में आप खड़े हैं तो खड़े ही रह जा रहे हैं 2-2 घंटे तक, कोई आपको अटेंड ही नहीं करने आ रहा, कोई ये भी पूछने नहीं आ रहा कि तू तू भाई भूखा है कि तू
0: जी
1: कुछ
0: जी
1: खाएगा कि नहीं खाएगा। इन परिस्थितियों में हम लोग स्कूलों से निकल कर यहाँ तक पहुंचते हैं, तो ये एक
0: जी
1: लंबी कहानी है और ये तो हमने देखा है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने अपने दो टीचर्स को अपने जीवन में अप्रिशिएट किया और उन टीचर्स की बदौलत आप यहाँ पर हैं, और आंखें नहीं होते हुए भी आप मन की आंखों से आज आप काम कर रहे हैं और एक अच्छा मुकाम आपका जीवन में निश्चित रूप से बनेगा। तो सचिन,
0: जी
1: ये तो डेफिनेटली आपने कहा, और लेकिन दो 9th-10th में एलजेब्रा और फिजिक्स की समस्या है, वो आपने कैसे फेस की वो बताइए थोड़ा सा।
0: जी सर, मैं थोड़ा सा वो बताना चाहूंगा। आपने सर इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हमेशा दिल में दर्द रहा इस चीज का, कि इतनी
1: जी
0: मेहनत करने के बाद भी शायद मैं एक एरिया ऐसा है वहां पे उतना अपना 100% नहीं कर पा रहा हूँ। तो
1: जी
0: सर सीबीएसई में हमारे सिस्टम चालू हुआ था कि आपको क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी है, बेसिक मैथ्स लेनी है। वो कुछ
1: जी
0: भगवान की दया ऐसी थी कि शायद मेरे टाइम पे चालू हुआ था वो, तो सर
1: जी
0: अपन तो मैथ्स में कर नहीं पा रहे थे, तो मैंने तो बेसिक मैथ्स लिया। तो एक तो उसका स्टैंडर्ड जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह उनका डाउन हुआ था, और मैंने सर उनको टीचर लिख के, मुझे मतलब टीचर बता रहा है ये लिख रहा हूँ, वो मुझे बता रहा है, मैं बता रहा हूँ सर फॉर्मूले वगैरह याद करके। और एक
1: जी
0: तरीके से उसमें मैंने उतना अच्छा नहीं किया, पर जितनी बराबर ले सकता था उतनी मैंने ली। फिर राइटर को बताया कि इसमें ये फॉर्मूला लगाओ, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ लगेगा, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। और इतना वो बढ़िया था, मतलब थोड़ा जो राइटर था वो भी, कि वो मेरी बात समझ पा रहा था कि फॉर्मूला लग गया, अब मैं उसको बता रहा हूँ इसको सॉल्व करो। तो वो हर चीज मेरे से ये नहीं पूछ रहा था कि इसमें प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, क्योंकि मैंने उसको फॉर्मूला बता दिया, उसको इक्वेशन बता दी, तो उससे वो सॉल्व कर ले आ रहा था। तो मेरे मैथ्स में एक मीडियम मार्क्स आए थे, और
1: जी नहीं, निश्चित रूप से वो एक चुनौती है, वो एक चुनौती।
0: मैंने जो इसकी जो कमी पूर्ति थी वो मैंने इंग्लिश, हिंदी, साइंस जैसे, बायोलॉजी जैसे, इन विषयों में पूरी की, तो वो परसेंट वहां पे अच्छी बनी थी।
1: तो आपकी कहानी से मालूम चलता है कि आपकी कहानी में आपको कोई जो शैक्षिक बदलाव किए गए हैं, करिकुलम में जो बदलाव किए जाते हैं नेत्रहीन व्यक्ति के लिए, या शैक्षिक उसका जो परिदृश्य है बिल्कुल अलग होता है, उसको सपोर्ट सिस्टम जिस तरह का मिलना चाहिए, जिस प्रकार की टेक्निकल बदलाव उसको मिलने चाहिए, वो आपको कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक मानवीय आपके एक शिक्षक का भावुक सहयोग और आपकी आगे जीवन जीने की जिज्ञासा जो है उसने आपको यहाँ तक पहुंचाया है मुझे लगता है। और करौली जैसे जिले में हम ये सब शैक्षिक बदलाव या कहें कि जो तो नई तकनीक आई है वो ना होते हुए भी आपने जो सफलता पाई है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, और मैं कहूं कि अब तो बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, विज्ञान फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई हमारे दिव्यांग बच्चे, हमारे दृष्टिबाधित बच्चे बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, खासतौर पे गणित और तो इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में तो उन्होंने झंडा काट दिया है नया, और लोगों के सामने जो जो समस्या आपने पैदा की ना अपने पियर ग्रुप के सामने, वो कुछ वैसी वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज और आईआईटीज में कर रहे हैं। तो वो सारे बदलाव करने की आवश्यकता होती है, शायद आपको बदलाव मिले होते तो शायद आप गणित में से 100 आप भी ला रहे होते हैं, लेकिन खैर वो जो भी आपके साथ हुआ के बारे में तो आप चर्चा ही की जा सकती है या कहें उस पर एक विचार ही किया जा सकता है, लेकिन भविष्य में आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको देता हूँ। लेकिन चलते चलते मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके आगे के क्या प्लान्स हैं, और विकसित भारत 2047 को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बात कर रहे हैं, तो आप कैसा विकसित भारत देखना चाहते हैं आप मन की आंखों से?
0: जी सर, सर आप इस जो 2 प्रश्न हैं इनका मैं एक एक करके जवाब दूंगा। पहला तो कि ये मेरे आगे क्या प्लान है, तो सर मैं अभी कर रहा हूँ आरएएस की तैयारी कर रहा हूँ स्प्रिंग बोर्ड से। अब आपने कहा कि उस समय मुझे बदलाव नहीं मिले, किंतु जब मैं जैसे 12वीं क्लास में आया फिर मैं थोड़ा थोड़ा फोन से फेमिलियर हुआ, तो वहां पे यूट्यूब वगैरह का हेल्प मुझे मिली थी 12th क्लास से, फिर ग्रेजुएशन में मिली। अब ग्रेजुएशन में भी समस्या ये आई कि मैं पढ़ा इंग्लिश मीडियम से, हमारे करौली में इंग्लिश मीडियम का कोई कोर्स वगैरह नहीं है, तो ये सारी चीजों से समस्या थी। अब हाल ही में क्या है कि जो यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो मैं ऑनलाइन स्प्रिंग बोर्ड से कोर्स ले रहा हूं और मेरी ग्रेजुएशन की वो चल रही है, मैं परीक्षा दे रहा हूं। अभी मेरा प्लान है कि मैं आरएएस जैसी सेवाओं में जाऊं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसी सेवाओं में जाऊं, उससे मैं कुछ एग्जाम्पल सेट करूं, मैं दिखाऊं कि मुझे क्या समस्याएं थी, उनका समाधान कैसे हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे किसी को बताऊंगा तो शायद मुझे कोई उतना सीरियसली लेगा नहीं, क्योंकि मेहनत से ज्यादा लोग परिणाम देखते हैं, मेहनत तो शायद कुछ ही लोग देख पाते हैं, छुपी हुआ है तो परिणाम देखते हैं। तो अभी मेरी ये है, और साथ ही में मेरा ये है कि ये तो एक जो जॉब लेनी है या जॉब लगना है, अपने आप को समाज सेवा के लिए तैयार करना है, उसके साथ ही मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोगों को अपने विचारों से प्रेरित करूं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जाऊं, बड़ी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी से मिलूं, जिससे कि अपनी भी पर्सनैलिटी डेवलप हो और अपने और भी बौद्धिक विकास कर सकूं। दूसरा ये है कि 2047 में मैंने विकसित भारत में कई बार प्रोग्राम में मैंने सहयोग, जो एक प्रतिभागी के रूप में सहयोग किया है, मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जो भारत किसी भी प्रकार की बंधनों से मुक्त हो, जो भारत रूढ़िवादी मानसिकता से मुक्त हो, जिसमें कि ये लड़की है इसकी ये मानसिकता है, ये बाहर जाएगी, ये तो दिव्यांग है, इसको ऐसा, ये काम उसके लिए थोड़ी बना है। तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं कि साहब जितने आप ओलंपिक्स में मेडल लेके आ रहे हैं, उससे ज्यादा भारत पैरा ओलंपिक्स में ला रहा है मेडल। तो इस पे ये चीजें हमारे को सोचने वाली बात है कि हम ओलंपिक्स में जो नहीं कर पा रहे वो हमारे भाई पैरा ओलंपिक्स में कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है।
1: निश्चित रूप से, निश्चित रूप से हमारी
0: और मैं चाह रहा हूं कि हम
1: परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस उन सो कॉल्ड सकलांगों के मुकाबले 3 गुना है वो पैरालंपिक के अंदर।
0: आप देखिए सर पैरा ओलंपिक्स में मेडल देखिए, और हम जो नॉर्मल लेके आ रहे हैं ओलंपिक्स में उनके मेडल देखिए। तो
1: जी, मुझे तो हंसी आ रही है
0: हाँ,
1: सकलांग लोगों पर आज।
0: तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा समा मतलब एक इंक्लूजन की फीलिंग आए, यहाँ पे एक्सक्लूजन ना हो, मैं सोसाइटी में इंक्लूजन की फीलिंग बनाए। सो एवरीबडी शुड बी इंक्लूडेड, नो बेस्ड, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर, नॉट इवन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, क्रीड, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, लैंग्वेज, आजकल ये लैंग्वेज का भी बड़ा चल रहा है। तो यदि इंडिया को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनाना है तो इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली तो काम करना पड़ेगा, हमको सोशली और एजुकेशनली भी बहुत कुछ अचीव करने की आवश्यकता है अभी, क्योंकि हमको यदि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेरा मानना यह कि ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बन रही है और हमको ऐसा सिस्टम लाएं कि हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट याद ना करें कि 1857 में क्या हुआ था, हम ये भी समझें कि 18 में हम पे लोगों ने राज क्यों किया था, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे और शायद हम आज भी उससे मुक्त नहीं हो। तो मैं चाह रहा हूं कि इस मानसिकता को छोड़ के आगे बढ़ें, सब लोग कंधे से कंधा मिलाएं, सबका साथ सबका विकास वाली मानसिकता पर काम करें, और अवश्य ही यदि हम वो कहते हैं कि शोले भी सर्द होंगे, हौसलों में उड़ान होगा, दुनिया सलामी देगी, कदमों में आसमान होगा, और वो दिन दूर नहीं जब फिर से विश्वगुरु मेरा ये हिंदुस्तान होगा।
1: डेफिनेटली हमारा देश जो है विश्व गुरु फिर से हिंदुस्तान होगा। बहुत शानदार सचिन, लेकिन चलते चलते कुछ हल्की फुल्की बात भी आपसे करने का मन हो रहा है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे हास्यास्पद चीजें हमारे साथ हो जाती है, हमारी दृष्टि
0: जी
1: बाधित पर चलते हुए। छोटा सा
0: जी
1: इंसिडेंस जो किसी के साथ हुआ, मतलब वो ऐसा था कि किसी ने उनको कहा कि भी मैं नीचे आ रहा हूँ आपकी बिल्डिंग पर
0: जी
1: और मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए ऊपर आने में। तो
0: जी
1: उन सज्जन ने उनके लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड भेज दिए
0: जी
1: उनको
0: सर
1: लेके आने के लिए। और सिक्योरिटी गार्ड आए और उन्होंने कुछ ना पूछा ना ताछा, सीधे दोनों कंधों से उठाया और उसको लिटरली हैंगिंग पोजीशन में ऊपर वापस
0: यही यही
1: गए।
0: चीज
1: तो बेसिकली क्या है कि भाई वो इंसान चल तो सकता है ना। या कई बार आप
0: जी
1: देखेंगे कि आपसे लोग पूछे, आपसे नहीं पूछेंगे कि आप खाओगे या ये चाय पियोगे क्या, आपके पड़ोस में जो खड़ा है आपके परिवारजन उससे पूछेंगे कि ये
0: जी
1: चाय पीते हैं क्या। अरे भाई साहब, मैं देख नहीं सकता लेकिन मैं
0: जी
1: लेकिन सुन सकता हूँ और आपकी बात का जवाब दे सकता हूँ आज कि मैं चाय पीना पसंद करूंगा या नहीं। तो कोई ऐसी हास्यास्पद स्थिति आपके साथ पैदा हुई हो थोड़ा बताइए ना चलते
0: एक बार
1: चलते।
0: हुई थी सर, एक हमारे स्कूल में ही हुआ था ये, कि एक हमारे टीचर थे केमिस्ट्री के स्कूल में, उस समय मैं उस क्लास में नहीं था कि वो हमको क्लास नहीं लेते थे, मैं शायद थर्ड फोर्थ थर्ड की बात है शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो एक ऐसे ही बाहर लोग बैठे थे, गर्मी लग रही थी, तो वहां पे चेयर पड़ी थी, मैं भी चेयर पे बैठा हुआ था, किसी ने बैठा दिया। एक टीचर आते हैं, उनको मेरे बारे में पता नहीं था, पर उनको ऐसा पता था कि इसको देखता नहीं है, तो वो बोल रहे थे किसी उन मतलब उनको कैसा है कि चेयर पे बैठा हुआ था, सामने एक बाउंड्री थी तो बच्चे बाउंड्री पे बैठ जाते थे, मैं वैसे ही चेयर पे बैठा था, मुझे इतना पता भी नहीं था, डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा मतलब भी पता नहीं था। तो उनको चेयर चाहिए थी, तो उनने कहा, एक लड़के को बुलाया दूर से कि इधर आना, फिर के इनको बोल के एक बार इनसे कहो कि ये चेयर पे से उठ जाए और ये थोड़ा बाउंड्री बैठ जाए तो मैं बैठ जाऊं। मैंने थोड़ी देर बाद कहा, मैंने कहा सर ये बात तो आप मुझे भी बोल सकते थे, उस लड़के को बुला के उससे बोलने क्या बात थी इसमें। तो वो कह रहे हैं नहीं हमको क्या पता नहीं था, थोड़ा डर लग रहा था। तो मैंने मुझे बड़ा हंसी आया, मैंने कहा क्या बात है आपको मेरे से डर लग रहा है।
1: हाँ, तो लोगों को बताना पड़ता है कि दिव्यांग इज नॉट डेविल्स, वी आर फ्रेंड्स।
0: तो ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ।
1: जी, हमें डेविल्स बताने की कोशिश लोग शुरू से ही करते हैं, तो हम उनको
0: जी
1: बताते हैं वी आर नॉट डेविल्स एंड वी आर नॉट ड्रेकुलास, वी आर योर
0: जी
1: फ्रेंड्स, लेस डायलॉग
0: जी
1: विद अस।
0: जी
1: आज हमारी अच्छी बातचीत हुई, एक अच्छा डायलॉग हमारे बीच में हुआ सचिन। और
0: जी
1: श्रोताओं,
0: जी
1: आप जो हमसे लेट जुड़े वे जान लें, हमारे साथ थे सचिन सिंह जादौन जो करौली जिले से आते हैं। सचिन एक ग्रेजुएट हैं और दिव्यांग व्यक्ति हैं, दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, और आप हमें सुन रहे थे आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर। और जो लोग माउंट आबू की वादियों से जुड़े हुए हैं वे हमें सुन रहे थे हमारे एफएम बैंड 107.8 पर। और इसके साथ साथ आप हमें सुन सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन। श्रोताओं, एक अच्छी बातचीत और एक शानदार प्रोग्राम मन की आंखों को से में हम फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही शानदार ताकतवर साहसी प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, नमस्कार।
0: अरे

0: ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: प्रकृति परमात्मा की रची हुई सबसे अद्भुत कलाकृति है। यह मानव को मिला ऐसा अनमोल उपहार है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हरे भरे वृक्ष, स्वच्छ नदियां, निर्मल वायु, पर्वत और वन्य जीव, ये सभी प्रकृति की अमूल्य देन हैं, जो हमें जीवन, ऊर्जा और आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन आज मानव की बढ़ती आवश्यकताओं और लापरवाही के कारण प्रकृति के संसाधन तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं। जंगल कट रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाली पीढ़ियों को प्रकृति की सुंदरता केवल तस्वीरों में ही देखने को मिलेगी। विश्व प्रकृति दिवस हमें यह संदेश देता है कि प्रकृति केवल हमारी आवश्यकता नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। आइए हम सभी एक पेड़ लगाएं, जल बचाएं प्रदूषण कम करें और प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लें, क्योंकि प्रकृति बचेगी तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा।

0: प्रकृति पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा है और प्रकृति के उपहार हैं हवा, पानी, आकाश, जमीन, जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे, ये सब तोहफे हैं प्रकृति के और ये सब मिलाकर पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं, इसलिए कहा गया है प्रकृति का उपहार संभालो, हरियाली का दीप जलाओ। इसकी सुरक्षा हेतु पिछले कई दशकों से सजग प्रयास किए जा रहे हैं और कई कदम उठाए जा रहे हैं। जल, वायु, भूमि, इन सब को स्वच्छ, साफ, सुंदर रखना भी हमारा फर्ज है। ऊर्जा को बचाना भी अनिवार्य है। पेड़ों की बेरहमी से कटाई हो रही है, जिसको रोकना हमारा फर्ज है। बहुत ही नुकसानदायक वातावरण बनते जा रहे हैं इसके चलते। तो आइए हम मानव प्रजाति की सुरक्षा के लिए इन सब को सुरक्षित रखें और हम सब एक दूसरे के जीवन को बचाएं।
1: प्रकृति परमात्मा की रची हुई सबसे अद्भुत कलाकृति है। यह मानव को मिला ऐसा अनमोल उपहार है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हरे भरे वृक्ष, स्वच्छ नदियां, निर्मल वायु, पर्वत और वन्य जीव, ये सभी प्रकृति की अमूल्य देन हैं, जो हमें जीवन, ऊर्जा और आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन आज मानव की बढ़ती आवश्यकताओं और लापरवाही के कारण प्रकृति के संसाधन तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं। जंगल कट रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाली पीढ़ियों को प्रकृति की सुंदरता केवल तस्वीरों में ही देखने को मिलेगी। विश्व प्रकृति दिवस हमें यह संदेश देता है कि प्रकृति केवल हमारी आवश्यकता नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। आइए हम सभी एक पेड़ लगाएं, जल बचाएं प्रदूषण कम करें और प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लें, क्योंकि प्रकृति बचेगी तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा।

नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड. और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

प्रकृति की बाहों में है चैन की पनाह, चलो बचाएं इसे, यही है हमारी मंजिल, यही है हमारा लक्ष्य। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर शुरू हो चुका है हम सबका मनपसंद कार्यक्रम गुलदस्ता, और इस कार्यक्रम में आज हम विशेष पर्यावरण पर बातें कर रहे हैं, क्योंकि कल हम सभी ने मनाया पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस पर जोर शोर से सभी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की, पर मुझे व्यक्त करने के लिए आज ही समय मिल रहा है, तो क्यों ना एक नई ऊर्जा के साथ शामिल हो जाएं इस कार्यक्रम में। पर्यावरण है हमारी शान, पर्यावरण है हमारी शान, इसमें ही बसते हैं हमारे प्राण। जी हाँ, इसमें ही बसते हैं हमारे प्राण, पेड़ पौधे हैं इसके गहने, जो देते हैं हमें जीवन के रहने। आओ मिलकर कसम खाएं, आओ मिलकर कसम खाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, कूड़ा कचरा न फैलाएं, धरती को सुंदर बनाएं और धरती को सुंदर सजाएं। सो फ्रेंड्स, आप सब शामिल हो जाइए आज के कार्यक्रम में सुंदर से सुंदर गीत सुनने के लिए और सुंदर बातों को समाने के लिए।

मैं गीत सागर रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

देखा साथियों कैसे चांदनी, बारिश, गीत और घटाएं हम पे मेहरबान हो रहे थे, क्योंकि जब प्रकृति सुंदर, साफ और स्वच्छ होती है तब वो खिलखिलाती है। दोस्तों, जब किसी गीत में प्रकृति का वर्णन होता है तो हमारा मन उस ओर खींचा चला जाता है। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम गुलदस्ता में हम पर्यावरण की खूबसूरती पर ध्यान दे रहे हैं और इसको सुरक्षित रखने के लिए भी हम एक दूसरे से कह रहे हैं। प्रकृति ने क्या दिए हमें, पेड़ दिए, पवन दिए, नदी, तालाब, झरने दिए, सागर दिए, समुद्र दिए, प्रकृति ने हमें कई रंग दिए और इस रंग को सुरक्षित रखने का दायित्व, परम कर्तव्य हम सभी का है, ताकि हम इसे स्वच्छ, साफ, सुंदर रख सकें, समृद्ध बनाए रख सकें और इस धरोहर को अगली पीढ़ी तक सुरक्षित सौंप सकें। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

समय प्रति समय रेडियो मधुबन पर पर्यावरण को बचाने हेतु, प्रकृति को सुरक्षित रखने हेतु बहुत सारे कार्यक्रम होते आए हैं और ये कार्यक्रम बहुत इंस्पिरेशनल होते हैं। तो आज हमने भी उन कार्यक्रमों से इंस्पायर्ड होके आपके लिए लेकर आई हूँ यह मीठा सा कार्यक्रम, जिसमें हम शामिल किए हैं प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी बातें और गीत। एक कविता हमने सुनी, स्वरबद्ध किया हुआ कविता, जिसमें पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए, नदियों, झरनों, तालाबों को स्वच्छ रखने के लिए कहा गया था। सुनाना अपने ध्यान से, और उसके बाद हमने अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए एक इंग्लिश सॉन्ग भी प्रस्तुत किया छोटे बच्चों के लिए। आज का कार्यक्रम सभी के लिए है, बड़ों के लिए, घर में जो महिलाएं दिन रात कार्य करती रहती हैं उनके लिए भी ये अवेयरनेस हेतु एक कार्यक्रम है। और आज के कार्यक्रम में आप सब शामिल हो चुके होंगे। रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता, और मैं हूँ आपकी मीठी सहेली स्वर्णलता।

प्रकृति पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा है और प्रकृति के साथी तो आप जान ही गए होंगे, और भी कुछ साथी हैं। प्रकृति ने हमें वन दिए, कानन दिए, फल फूल जीवन दिए, स्वच्छ वायु का उपहार दिया, मनुष्य को जीवन दान दिया। कहते हैं पेड़ पौधों से चारों ओर हरियाली का दृश्य देखते ही बनता है। यह जो हरियाली का दृश्य है वो आँखों के लिए भी बहुत सुखद होता है। नदियों का पानी जब अपना रास्ता तय करते हुए सागर की ओर चलते हैं तो उसकी जो यात्रा है वह भी सबको मन भावन लगती है, सबको प्यारी लगती है नदी की यात्रा। पेड़ों से जब मंद मंद बयार चारों तरफ फैल जाते हैं तो सभी को प्रसन्न कर देते हैं। तो ऐसे प्राकृतिक दृश्य सौंदर्य को देखने के लिए हम सब चले जाते हैं, कई बार हिल स्टेशन या कई ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहां पर प्रकृति का सानिध्य हो। तो आज हम आसपास जो है प्रकृति को विलुप्त होते हुए देख रहे हैं, आइए ना इसे बचाएं।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। और आज के कार्यक्रम में हम प्रकृति के सौंदर्य पर प्रकृति को बचाने हेतु कई गीत सुन रहे हैं, और इन सभी गीतों में एक ही लक्ष्य है कि हम इन्हें प्रदूषित होने से बचाएं। आइए हम अपने पृथ्वी को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से बचाएं, मुक्त करें और सभी को खिलखिलाते हुए देखें। प्रकृति के जो विभिन्न साथी हैं, वह मुस्कुराते रहें और खुशहाल जीवन जिएं। तभी तो हम मानव भी खुशी से जी सकते हैं पृथ्वी पर, है ना। पृथ्वी भी तो हमारा घर है ना। इस घर में ही तो हमारा घर है। तो अभी हमने दो गीत बैक टू बैक सुने, एक हिंदी में था और दूसरा गीत हमने बंगाली में सुना। यह भी नेचर लवर के लिए बहुत सुंदर गीत था। तो आइए अब स्वर्णलता को इजाजत दीजिए। आपके लिए जाते जाते आ रहा है एक कहानी, ट्री पर। ट्री अपने बारे में कुछ कह रहा है और फिर एक गीत सुनेंगे। तो इन्हीं दो बैक टू बैक पेशकश के साथ स्वर्णलता को इजाजत दीजिए। और जाते जाते आपके लिए दो लाइन कहना चाहूंगी। हरी भरी वादियां, सुंदर ये नजारे, कल कल बहते झरने मन को प्यारे, चहकते परिंदे लहराती हवाएं, धरती की गोद में जीवन मुस्काए, फूलों की खुशबू नदियों की कलकल, हरियाली से महके ये दुनिया पल पल, आओ मिलकर इसे सुरक्षित बनाएं, प्रकृति के रंगों को और निखराएं। तो आज स्वर्णलता को इजाजत दीजिए। फिर मिलूंगी अगले सप्ताह एक नए बेजोड़ विषय के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: पर्यावरण संरक्षण जागरूकता पर एक लघु बाल नाटक, बोलता पेड़। दो लकड़हारे लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाते हैं। जब वे एक पेड़ को काटते हैं तो पेड़ बोलता है, अरे अरे भाई, तुम लोग मुझे क्यों काट रहे हो? एक लकड़हारे ने आश्चर्य से इधर उधर देखते हुए कहा, कोई हमसे कुछ बोल रहा है क्या? दूसरा लकड़हारा, मुझे तो यह पेड़ ही बोलता हुआ लग रहा है। पेड़ फिर से बोला, हाँ, यह मैं ही हूं जिसे तुम लोग काटने जा रहे हो। पहले लकड़हारे ने कहा, अरे यह पेड़ तो सचमुच में बोल रहा है। दूसरे लकड़हारा ने कहा, हाँ, इसके पहले तो हमने आज तक कभी किसी पेड़ को कभी बोलते नहीं सुना। पेड़, तुम्हें क्या लगता है कि हम पेड़ों में जीवन नहीं होता? तुम हमें काटते हो तो हमें कष्ट नहीं होता? तुम क्या सोचते हो कि हम हमेशा तुम मनुष्यों के अत्याचार को चुपचाप ऐसे ही सहन करते रहें? पहला लकड़हारा, हमने भला तुम पर ऐसा कौन सा अत्याचार किया है? पेड़, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम सबने मिलकर अपने मतलब के लिए हमारे पूरे हरे भरे परिवार को एक एक कर नष्ट कर दिया है। अब इधर मैं संयोग से अकेला बचा हूं तो मुझे भी आज काटने के लिए आ गए। दूसरे लकड़हारे ने कहा, लेकिन लकड़ियां बेचना तो हमारा काम है, हम लकड़ी न बेचे तो फिर जिएंगे कैसे? पेड़ बोला, तुम्हें सिर्फ अपने जीवन की पड़ी है मूर्ख, ये नहीं सोच रहे हो कि जब इस धरती पर हम पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फिर तुम मनुष्य भी एक दिन जीवित नहीं रह सकते हो। पहला लकड़हारा, यह तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पेड़ ने कहा, देखो, हम पेड़ पौधों की वजह से ही यह धरती आबाद है, तुम्हें साफ सुथरा पर्यावरण मिलता है। जिस दिन हम नहीं रहेंगे उस दिन धरती वीरान हो जाएगी और यहाँ रहने वाले सारे जीव जंतु भी विलुप्त हो जाएंगे। जिस तरह दूसरे ग्रहों पर जीवन नहीं है, वैसे ही एक दिन इस पृथ्वी से भी जीवन नष्ट हो जाएगा। दूसरे लकड़हारे ने कहा, वह भला कैसे?

पेड़ ने बताया, देखो पेड़ पौधों की वजह से सभी जीव जंतुओं को भोजन, पानी और शुद्ध हवा मिलता है। हमारी संख्या में कमी होने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है और आज ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं पैदा हो रही है। दोनों चुपचाप उसकी बातों को सुनकर एक दूसरे का मुंह देखते हैं। पेड़ ने आगे कहा, पेड़ पौधों को काटने के अलावा मनुष्य और भी न जाने कितने अत्याचार इस धरती पर कर रहा है। वह अपनी मिट्टी, वायु, जल इत्यादि पर्यावरण के घटकों को दिन प्रतिदिन प्रदूषित करता जा रहा है। हम पेड़ पौधों का परिवार मिलकर इस असंतुलन को ठीक करने का प्रयास करते हैं। हम तो जब तक जीते हैं तब तक तुम्हारी भलाई का काम करते हैं, पहले लकड़हारे ने कहा। लेकिन लकड़ियां काटने वाले एक हम ही तो अकेले नहीं है, हम नहीं काटेंगे तो कोई दूसरा आकर तो काटेगा। पेड़ बोला, पर्यावरण की रक्षा करना किसी एक का काम नहीं, बल्कि यह सभी का दायित्व तो है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने आज तक जीवन में कितने पेड़ काटे होंगे? दूसरे लकड़हारे ने सोचकर कहा, वह तो हमें याद नहीं। पेड़, अच्छा चलो यह बताओ कि आज तक तुमने कितने पेड़ लगाए होंगे? दोनों लकड़हारे सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, पेड़ तो हमने कभी लगाए ही नहीं। पेड़ ने पूछा, क्यों? पहला लकड़हारा, क्योंकि पेड़ लगाना हमारा काम नहीं, हम तो सिर्फ उन्हें काटने का काम जानते हैं। पेड़ बोला, जब सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे तब क्या काटोगे? दूसरा लकड़हारा बोला, हमने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, इतना बड़ा जंगल है, सारे पेड़ कैसे खत्म हो जाएंगे? पेड़ ने कहा, जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं और औद्योगिकरण का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे जंगल भी सिमटते जा रहे हैं। धरती से वन और वन्य जीव लुप्त हो रहे हैं। आज जंगलों को विस्तार देने की जरूरत है, न कि उन्हें काटकर छोटा करने की। नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब वर्षा की कमी और धरती के बढ़ते तापमान से यहाँ आने वाली पीढ़ियों का संकट, आने वाली पीढ़ियों का जीवन घोर संकट में पड़ जाएगा। पहला लकड़हारा, देखो पेड़ भाई, हम तो ठहरे एक साधारण और अनपढ़ लकड़हारे, इतनी गुरु गंभीर बातें तो हमारी समझ में आती नहीं। अब जब तुम इतना बोल रहे हो तो यह भी बता दो कि अब हम क्या करें। पेड़ बोला, प्रायश्चित। दूसरा लकड़हारा, क्या? पेड़ ने कहा, देखो मैं ये बात सिर्फ तुमसे ही नहीं बल्कि धरती के हर प्राणी से कह रहा हूं कि तुमने आज तक पर्यावरण का जितना भी नुकसान किया है उसकी भरपाई तो संभव नहीं है, लेकिन अब से भी यदि तुम संभल जाओ और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर उनकी रक्षा करने का संकल्प लो तो भविष्य में धरती पर जीवन के मंडराते हुए खतरे को टाला जा सकता है। पेड़ ने आगे समझाते हुए कहा, देखो मुझे ये तो पता है कि मानव की आने वाली पीढ़ियां काफी तेज होंगी, लेकिन पर्यावरण की अवहेलना कर और प्रकृति की पुकार को अनसुना कर कोई भी पीढ़ी कभी सुखी होकर नहीं जी सकती। इसलिए समय रहते सभी को थोड़ा रुककर सोचने की और अपने पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक होगी प्रकृति की रक्षा तभी तक होगी जीवन की सुरक्षा।

0: मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी दोस्तों हम ले आए हैं कार्यक्रम नई दुनिया नया जमाना, और नई दुनिया नया जमाना में हर बार हम कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो एक नए जमाने को बनाने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए भी दिलचस्प लोग हैं क्योंकि उनके अंदर एक कमाल का जज्बा है जो उनके मुंह पर आने वाले हर चैलेंज को, हर मुसीबत को वो कुछ ऐसे देखते हैं जैसे ये एक अपॉर्चुनिटी है, और वास्तविकता में यही चीज हम सबको खास बनाती भी है। एडवर्सिटी हमारे सामने जितने आए, उन मुश्किल घड़ियों में भी हम उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें, उसके प्रॉब्लम के अंदर से कुछ सोल्यूशन ढूंढ कर निकल आए, ये हमारी सोच से, हमारे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से होता है। और रेडियो पर इस कार्यक्रम को जब हम ले आते हैं तो यही कोशिश हमारी भी होती है कि हम ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं जो समस्या नहीं और समस्या के अंदर समाधान को खोजें, जो प्रश्नों के अंदर उत्तरों को खोजें, और जहां सारे लोग परेशानियों की तरफ अपनी आंखें उठा रहे हो तो वहां पर ये परेशानियों से हटकर जवाबों की तरफ अपना रुख ले जाएं। और हमारी इसी कोशिश में हम जानते हैं कि हर हफ्ते कुछ ऐसे लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो नई दुनिया बनाने के प्रयास में हैं। आखिर नई दुनिया क्या है दोस्तों? नई दुनिया सिर्फ हमारी बदली हुई विचारधारा है जिससे ये दुनिया बदल सकती है। आरजे शुभा और आरजे श्री, हम दोनों आपके साथ आ चुके हैं इस हफ्ते नई दुनिया नया जमाने में। आरजे शुभा, आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आरजे श्री आपका। एंड जैसे आपने कहा कि हर हफ्ते हम नए गेस्ट के साथ जुड़ते हैं, कोशिश करते हैं जानने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं हमारे प्रकृति के लिए और नई दुनिया नया जमाना लाने के लिए वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसे आज हमारे साथ दो विशिष्ट अतिथि हैं, आरती गुप्ता मैम और चिंटू यादव जी। आरती गुप्ता मैम WWF के साथ जुड़ी हुई हैं, कोऑर्डिनेटर हैं शिमला से, और चिंटू यादव जी हैं जो माउंट आबू से हमारे बीच हैं और आप सभी उनको जानते हैं। और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
3: ओके, WWF एक संस्था है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे उसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है, और मैं जैसे आपने कहा कि मैं शिमला से हूँ, तो मेरे पास जो कारोबार है वो हिमाचल स्टेट का है। और WWF का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो पहले इसका नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था, बट अब क्योंकि हम लोग नॉट ओनली वाइल्ड लाइफ बट हम बहुत सारे और मुद्दों पे भी काम कर रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, वेटलैंड्स, इसलिए वो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर उसका नाम कर दिया गया। और हिमाचल में भी ये ऑलमोस्ट 20 साल से ऊपर हो गया है कि स्टेट का एक विंग खुला था जहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। तो इसका बेसिकली WWF एक कंजर्वेशन सोसाइटी है जो वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन में काम करती थी, बट वाइल्ड लाइफ के साथ साथ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक स्टैंड अलोन चीज़ तो है नहीं, अगर आप देखें तो वाइल्ड लाइफ पर्यावरण जो है वो आदमी, जानवर, पेड़ पौधे सब ही पर्यावरण बनाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के मद्देनज़र रखते हुए हम कम्युनिटीज़ के साथ और स्कूल के बच्चों के साथ WWF का ये सारा काम है, अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना, स्कूल के बच्चे हो गए, कॉलेज के बच्चे हो गए, कम्युनिटीज़ हो गई, कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं अपने वाइल्ड लाइफ का सब मिलकर और जानकर, ये WWF का काम है। तो कहीं भी हिमाचल हो या पहाड़ हो या नदी हो, आपके जैसे कंजर्वेशन कर रहे हैं, हार्डकोर कंजर्वेशन फ्रॉम स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन है आपका, राइनोज पे कंजर्वेशन है आपका, रिवर डॉल्फिन्स पे है, टर्टल्स पे है। तो हर टीम अपनी अपनी जगह कार्यरत है और अपनी अपनी जगह काम कर रही है, बट हिमाचल में हम बेसिकली अगर देखें तो हम कम्युनिटीज़ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कम्युनिटीज़ के साथ, स्कूली बच्चों के साथ, सबके साथ मिलकर कंजर्वेशन का काम करते हैं।
1: बहुत ही सुंदर बात आपने बताई आरती जी। जैसे एक व्यक्ति के बारे में अगर मैं पूछूं कि एक व्यक्ति आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझना चाहता है,
2: आरती जी, वो श्री जी कहना चाह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर किसी व्यक्ति को समझना है तो वो कैसे समझ सकता है कि वर्ल्ड जो WWF काम कर रहा है, तो उसकी थोड़ा और क्लैरिटी के साथ वो समझना चाहते हैं।
3: ओके, सो WWF जो संस्था है वो हार्डकोर, आपको समझाएं हम अगर, तो वो हार्डकोर स्पीशीज के साथ भी काम करते हैं जिसमें बहुत साइंटिफिक काम होता है, आपका रिसर्च होता है, चाहे वो टाइगर्स हो गए, स्नो लेपर्ड्स हो गए, एंड साइंटिस्ट होते हैं, इसमें टीम्स होती हैं जहाँ पे ये पाए जाते हैं जीव जंतु, उन्हीं इलाकों में वो रहते हैं, इनको स्टडी करते हैं और इनके ऊपर इनका संरक्षण का काम करते हैं। जबकि जैसे हम लोग हैं स्टेट्स में हैं, तो हम स्टेट्स की टीम थोड़ी अलग रहती है, एक है जो आपकी स्पीशीज की टीम है वो हार्डकोर स्पीशीज काम करती है, जो स्टेट्स की टीम है वो अवेयरनेस और कम्युनिटीज के साथ मिलके सोशल सेक्टर में काम करती है। तो है वाइल्ड लाइफ का ही विंग बट अलग अलग भागों में बटा हुआ है। एक हार्डकोर साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के साथ मिलके हम काम करते हैं जिसमें हम स्कूली बच्चे हो गए, कॉलेज के बच्चे हो गए, यूनिवर्सिटीज के हो गए, और साथ में हम जो कम्युनिटीज रिजर्व एरिया, तो उसमें हम जागरूकता तो फैलाते ही फैलाते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ का मेन खत्म होने का कारण ऑब्वियसली इंसान ही है, तो इंसानों को कैसे ये समझ आए कि हम वननेस इन वाइल्ड लाइफ, जैसे मैन एंड एनवायरनमेंट का वननेस की हम बात करते हैं, तो हम मिलकर कैसे रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें उनका हंटिंग करना है, क्योंकि आज तक तो हम साथ में मिलते आए हैं, मिलके रहते आए हैं, बट क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि एक तरफ तो हमारी जरूरतें हैं जिसमें हम बोलेंगे कि हमें आगे बढ़ना है और डेवलपमेंट करनी है, बट दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ है जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ के साथ आपके पेड़ पौधे हैं जिनके बिना शायद हमारा गुजारा हो नहीं सकता, और वो कोरोना से बेटर हमें कोई समझा नहीं सकता था। तो इस तरह से हमारी डिफरेंट टीम्स होती हैं, बच्चे इसमें वॉलंटियर्स भी बन सकते हैं, बिकॉज एक ऑनलाइन अगर आप जाएंगे तो वॉलंटियर फॉर्म भर के स्कूली बच्चे हैं या बड़े हैं या कोई भी जो इसमें सहयोग देना चाहता है वो वॉलंटियर भी बन सकता है। साथ में इसमें जो हम प्रॉपर लेते हैं वो इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, अगर कोई इसमें आना चाहे तो। इंटर्नशिप फिर आपको स्टेट ऑफिस के पास एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि आप इसमें इंटर्नशिप करना चाहते हैं। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, हर लैंडस्केप अलग सिखाता है, पहाड़ अलग है, मरीन लाइफस्टाइल अलग है, केरला में कुछ और होगा, असम में कुछ और होगा, तो इसमें बहुत सारा स्कोप भी है अगर कोई चाहे तो इसमें अंदर आना, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है बिकॉज आप ग्रास रूट्स के साथ डायरेक्टली इन टच रहते हैं।
2: हाँ जी, और जैसे मैम कि अभी अभी हमने वन्य जीव सप्ताह भी मनाया,
3: जी जो वन्य सप्ताह होता है वो शायद हम सब जानते हैं वो क्यों मनाते हैं, क्योंकि एक तरह से जो हम साल भर नहीं करते वो हम दिनों के माध्यम से करते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो गया या वर्ल्ड वेटलैंड डे हो गया, तो इसी तरह से एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के लिए जो ये वाइल्ड लाइफ वीक आता है जो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है, वो एक तरह से एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच पाएँ और समझा पाएँ कि हमें वाइल्ड लाइफ को क्यों कंजर्व करना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952 में किया था शुरू, तो इसके माध्यम से हम हर दिन अलग एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें कॉम्पिटिशन्स हो गए, आपके ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स हो गए, फिर हमने मान लीजिए फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन हो गया, लिख कुछ आप ऐसे लिख सकते हैं, कुछ अपने विचार लिख सकते हैं, फिर एक साइकिलिंग इवेंट था जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ कराया था जो रिजर्व एरिया के अंदर था, वो भी जागरूकता फैलाने का था। उसी तरह अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ही पोंग डैम में, हिमाचल में पोंग डैम है, वहाँ बर्ड रिंगिंग का कार्यक्रम रखा है जिसमें चिड़ियों को टैग करेंगे और ना साल भर बाद फिर उसको स्टडी करेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कार्यक्रम है स्कूल के बच्चों के माध्यम से ऑनलाइन, अब क्योंकि हमारे यहाँ जैसे चल रहा है हर घर पाठशाला, एक सरकारी स्कूल के बच्चे जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एंड ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से है, तो उसमें हम फन एक्टिविटीज़ से, जैसे आज सैटरडे है तो वो मस्ती की पाठशाला में हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखेंगे जो घर बच्चे घर बैठे बैठे उसमें भाग ले सकते हैं और कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ के बारे में समझें जाने। ये हम माध्यम देखते हैं, वेबिनार्स हो गए, आपके गूगल टॉक्स हो गई, इसके माध्यम से हम ये जागरूकता फैलाते हैं। और इस साल तो इसलिए अलग था क्योंकि बाहर निकल के आप बर्ड वॉचिंग नहीं कर सकते, बाहर जाके आप ट्रेल्स पे नहीं जा सकते, तो जो घर बैठे हम, जैसे मान लीजिए डिफरेंट पेड़ पौधे आपके घर के आसपास क्या है उसी के ड्राइंग कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, और कौन सी चिड़िया आती हैं वो भी जान सकते हैं. सो सिर्फ ऑब्जर्वेशन, आंख और कान खुले रखने की बात है, पर्यावरण और कुछ नहीं मांगता.
1: जी, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही आरती जी. मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारे साथी जुड़े हैं, हमारे साथ जो प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत बार उनको लगता है कि एनवायरमेंटलिस्ट बहुत बढ़िया काम कर रहे होते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बातें होती हैं उनकी. मगर हम हमेशा इस कार्यक्रम के दौरान ये जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्या बातें हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो आपने अपने लाइफ में की हैं, जो सिंपली हम अपने लाइफ में भी फॉलो कर सकते हैं. अगर ऐसे कुछ चार पांच बातें आप हमारे दोस्तों के साथ शेयर कर सकें कि ये सिंपल चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए हो, पर्यावरण के लिए हो, या जो भी ऐसे.
3: सी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तो हम नाम दे देते हैं. देखिए, हम सब कंजर्वेशन अपने लेवल पे हर कोई करता है, सिर्फ जागरूक होने की बात है. और वो कहना कि वो तो चलिए एक प्रोफेशन हो गया, बट हर इंसान अब सांस लेता है, आंख झपकता है, तो ये चीज़ें हम कर रहे हैं. वैसे ही जो कंजर्वेशन की बात है वो हमें करते रहना चाहिए. ये मतलब ये नहीं कि आप डिफाइन करेंगे कि हमें कंजर्वेशन करना है या हमें ये बचाना है, बिकॉज वो हमारे लिए इतना ज़रूरी है. हवा है वो हमें साफ चाहिए, हम सांस ले रहे हैं, तो उसको बचाने की तो बात ही नहीं आती है, वो ज़रूरत है हमारी. तो सिमिलरली हम जैसे आँख झपकते हैं, हम सोचते नहीं, हम करते हैं, वो होता है, वो बहुत नेचुरल है. तो वही कंजर्वेशन के लिए भी है कि अगर हम इंसान हैं तो हमारा भी हक बनता है कि हम कहीं ना कहीं जिस जहां से बड़े हुए, उत्पन्न हुआ, मैं पहाड़ में पली बड़ी, पहाड़ में ही काम कर रही हूँ, बाय चॉइस है, ये नहीं कि नीचे बड़े शहर में नहीं आके काम कर सकते, बट नौकरी नौकरी होती है. बट अगर आप छोटी से भी स्तर पे अगर आप काम करें, मतलब छोटी जगह में रहने का फायदा ये है कि आप थोड़ा सा भी अच्छा अगर काम करेंगे तो वो नजर आता है, दिखता है, सबसे बड़ी बात ये है. और वो छोटे छोटे आपके सहयोग, लोगों का, दोस्तों का, जागरूकता होना, और किस तरह से हम जब पले बड़े थे, छोटे थे, तो क्या हालत तब थी और अब क्या है, बहुत फर्क पड़ गया है उससे अब तक ऐसी चीजों में. तो अपनी तरफ से छोटे छोटे प्रयास जब हम करते हैं, बच्चे पढ़ते आते हैं, लाइट स्विच ऑफ कर दो, पानी का नल बंद कर दो, ये अपने आप समझ आना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये कोई समझा नहीं सकता, ये हमारा एक तरह से जरूरत है. वो ठीक है, अब लाइट है तो आप बोलेंगे ऑफ कर दें, बिना लाइट के भी तो पहले लोग रहते थे, तो कितनी मुश्किलों से लोगों ने काटा है. और 200 साल 500 साल से हमारी ये चल ह्यूमन रेस चलती आ रही है और डेवलपमेंट भी होती रह रही है. बट डेवलपमेंट के साथ आप कैसे छोटे छोटे स्तर पे अपने एफर्ट्स कर सकते हैं, अपने आसपास सफाई रखना हो गया, अपने आसपास आपके कितनी चिड़ियां थी जो आपने कभी चलते फिरते नजर भी नहीं मारी होगी कि हमारे आसपास होती है, ध्यान भी नहीं दिया होगा, कितने पौधे थे जो मर गए, रोड आ गए, खत्म हो गए पौधे, पहले कच्चे रोड होते थे अब पक्के हो गए, कितनी जगह से पानी निकलता था, नेचुरल वाटर होता था, अब वो भी खत्म हो गया. तो ये चीजें अगर आप ऑब्जर्व करें, फिर आप तह तक पहुंचे, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े वननेस के साथ रहते थे पर्यावरण के साथ. आप देखिए, चप्पल पहन के कोई पानी के सोर्स के पास नहीं जाता था, अब क्या है, जूते पहने और चल दिए, तो वो संरक्षण था, साफ था. कोई सीमेंट से अपने नदी नालों को पक्का नहीं करता था, क्योंकि सीमेंट की मियाद सिर्फ 50 साल है, वो चूना मिट्टी और पत्थर से करते थे, और वो 200 साल तक भी आपके पानी के सोर्स जिंदा थे. तो एक एक जो समझ थी पुराने लोगों में, जो शायद अब गुम होती जा रही है, उसको कहीं ना कहीं समझना. कि अब हम बच्चे होते हैं तो हम बच्चों को बोलते नहीं करना, बट रीजन नहीं देते क्यों नहीं करना. अगर उनको समझाया जाए क्यों, तो वो समझ आ जाएगा जो शायद हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समझाते आए थे आज तक, और उसकी वजह से हम आज यहाँ हैं. बट हमारी जेनरेशन ने, अब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, जो 200 साल में क्लाइमेट चेंज हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, वो हमने 50 साल में कर दिया. हम इतने मॉडर्न और इतने फास्ट हैं. तो इसको समझने की ज़रूरत है कि हमने ही शुरू किया है, हमें ही सोल्यूशन ढूंढना है. और सोल्यूशन हमारे बड़े बुजुर्गों को सबको पता था, जो हम अब योग से, योगा हो गया और फिर हम वापस योग करने जा रहे हैं, तो वो चीज़ समझें. और ये नहीं कि हम मतलब कोई साइंटिस्ट होना है या मैं बहुत बड़ी इंसान हूँ, मैं तो एक तुच्छ सी प्राणी हूँ जो अपना कार्य कर रहे हैं. थोड़ा आंख कान, जैसे मैंने बोला, आप खुले रखें, आसपास देखें, ऑब्जर्व करें और एक्शन लें. क्योंकि हम बातें खूब करते हैं बट हम काम नहीं करते. अगर हम छोटे छोटे चीज़ों से के माध्यम से भी करेंगे, समझेंगे कि बुजुर्गों के इतने ताल क्यों बचे थे, बारिश क्यों होती थी. तो क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, बट हम अपनी अपनी जगह में चेंज ला सकते हैं. क्यों नहीं ला सकते? तो मेरे ख्याल से मानना है कि कोई एनवायरमेंटलिस्ट और कोई इतना बड़ा नाम की जरूरत नहीं है. हम सब अपनी जगह पे एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं. जब तक हम अपने सोच समझ के एफर्ट कर रहे हैं अपने आसपास को बचाने के लिए, तब तक सब बचा है. जिस दिन हम ये छोड़ देंगे उस दिन आप देख ही रहे हैं हो क्या रहा है. तो हम जड़ों से दूर होते जाएंगे तो यही होगा. तो डेवलपमेंट भी जरूरी है, ये नहीं कि नहीं, बट या एक बैलेंस जरूरी है. जी
1: जी ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं है या हम चीजों को नहीं जानते. हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत ही सोच समझ कर इन चीजों के ऊपर काम किया है, ऐसा आप कहते हैं. आपने ये भी कहा कि डेवलपमेंट भी जरूरी है, बट कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट हम देखने को मिलता है. जो पुराने जनरेशन का विजडम था वो हमारे तक नहीं मिला या फिर हमारे आगे की पीढ़ी तक वो नहीं मिल रहा है. इसके लिए कोई भी वजह क्यों ना हो, आप क्या देखती हैं कि ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं कि हम अपने इस विजडम को आगे के जनरेशन तक के लिए पहुंचाएं?
3: सबसे पहली बात जो मुझे खटकती है वो ये है कि हमारा अपना बड़े बुजुर्गों से एक कनेक्ट खत्म हो गया है. तो अगर आप शुरुआत करने के लिए, हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं बट अगर हम घर से ही शुरुआत करें, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम, तो अगर आप घर में ही देखें तो आप उनसे ही अगर समझना. बच्चे घर में बैठे हैं, कहानियां सुनाते थे, कितनी सारी कहानियां सुनाते थे, तो कहानी ने में भी एक सीख जुड़ी होती थी कहीं ना कहीं. तो वो सीख के माध्यम में हमारे पुराने गीत हैं, गाँव के गीत होते हैं जिसमें चिड़िया पौधे पत्तों के बारे में ही बात करते हैं. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हम घर से शुरू कर सकते हैं, कॉन्शियसली समझ सकते हैं. आई नो शहरों में थोड़ा डिफिकल्ट है बट इतना मुश्किल भी नहीं है. दादा दादी नाना नानी घर में हैं, उनसे समझें कि कैसे होता था, कैसे रहता था. ठीक है, हम वापस उन तौर तरीकों पे नहीं जा सकते बट जब हम बाहर हों तो शायद वो चीज़ें फॉलो कर सकते हैं. क्योंकि एक जैसे हम बोलते हैं पहाड़ में एटिकेट्स होते हैं, माउंटेन एटिकेट्स होते हैं, कि आप बातें कम करें, एक लाइन में चलें, एक के पीछे एक चलें, आप कान खुले रखें. क्योंकि आपको नेचर ही सिग्नल देती है. मान लीजिए बारिश आने वाली है या तूफान आने वाला है या बर्फ़ पड़ने वाली है. अब बर्फ़ में, अब बहुत सारी बर्फ़ पड़ी है, आप खूब ज़ोर से चिल्ला के हु हल्ला बात कर रहे हैं, म्यूज़िक लगा रहे हैं, तो एवलांच भी आ सकता है. तो बहुत सारी ऐसी वंडर्स की बातें जहां होती हैं कि हमें पर्यावरण की तरफ थोड़ा कॉन्शियस होना है. सो ये तो हो गई कि पहाड़ों की बातें हो गई कि आप बाहर जा रहे हैं, थोड़ा कॉन्शियसली चल रहे हैं, सोर्सेस को गंदा नहीं कर रहे हैं, कहीं कूड़ा नहीं फेंक रहे हैं. क्योंकि कितना साफ करेंगे, पहाड़ में तो आसान है ना, यहाँ तो झाड़ू लगाया और नीचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया. बट आप ये नहीं जानते कि वही सारा कूड़ा कचरा कहाँ मिल रहा है, वो पानी में मिल रहा है और वही पानी आगे किसी को पीने के लिए जा रहा है. तो अगर आप थोड़ा सा जहाँ भी रहते हैं अपने लेवल पे थोड़ा बड़े बुजुर्गों से समझें और फिर ये देखें कि आज की हालत क्या है और फिर हर का एफर्ट करने का अलग तरीका रहता है. तो कोई लिखने के माध्यम से करता है, कोई बातचीत के माध्यम से करता है और कोई करने के माध्यम से करता है. ये नहीं कि नहीं कर रहे हैं, दिखता हो ना दिखता हो बट आप अपना एफर्ट पक्का डाल सकते हैं. चाहे घर में थोड़ा छोटा आपने गार्डन बनाया है उसके माध्यम से कर रहा है कोई कोई, ठीक है. ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है.
1: जी, मैं एक आखिरी चीज आपसे पूछना चाहता हूँ आरती जी. जैसे अगर एक मैसेज है जो आप हमारे यंगस्टर्स के लिए देना चाहें, जो हमारे सुनने वाले हैं, एक चीज जो आज से उनको करना है, वन थिंग दैट दे कुड चेंज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, वो क्या चीज होगी?
3: One thing that they should pledge as a torch bearers of the future, I would say be very conscious as to aap kya kar rahe hain. Ye nahi kisi ne aapse kaha isliye. Aap isliye karein, jo bhi effort karein, apne star pe jo bhi karein, wo isliye karein kyunki aap karna chahte hain and you want to make a difference. Chahe aap ped lagayein, to ped aap ek din lagate hain, uske baad pura saal bhar bhul jate hain ki maine ped lagaya tha. Aisa na karein. आप जाएं तो उसको एटलीस्ट 3 साल तक आप कहीं ना कहीं उसका नर्चर करें और देखें वो पेड़ से, मतलब छोटी सी कलम से पेड़ बने. तो इस तरह से ये एक छोटा सा माध्यम था. चाहे आप पानी बचा रहे हैं, हम बहुत सारे भाषण तो बहुत देते हैं बट करने पे आने पे हर इंसान का अपना कॉल है. तो आई वुड से प्लेज बी कॉन्शियस कि जो भी आप कर रहे हैं आप उसको आगे निभाएंगे. ये नहीं कि किसी ने कहा तो आपने आज के लिए कर दिया और फिर भूल गए. सो वो कॉन्शियसनेस से अगर आएगा तो आप यू विल लिव विद इट. तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता उस चीज को. सो एफर्ट्स आर योर ओन. आई मीन आई एम नो पर्सन टू टेल कि आप ऐसे कीजिए. वो आपको खुद डिसाइड करना है. द डिसीजन हैज टू बी योर्स. बट क्योंकि हम हवा यहीं से लेते हैं, हमारा जीवन नेचर से है, तो प्लीज थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए. नहीं तो नेचर, हम 100 साल लगाएंगे खत्म करने में, नेचर एक दिन में खत्म कर देगी. सो या
2: जी. एंड थैंक यू सो मच मैम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे श्रोताओं को साथ ही साथ दर्शकों को भी आपने काफी कुछ जानकारी. एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
3: थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू जी.
2: तो आरती गुप्ता मैम हमारे साथ जुड़ी हुई थी और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया कि कैसे WWF काम करती है, साथ ही साथ नेचर क्या है, एनवायरमेंट क्या है. और हम बड़ी बड़ी बातें ना करें लेकिन छोटे छोटे जो काम है उसे हम करते रहें तो हम जल्दी परिवर्तन को ला सकते हैं. जैसे श्री उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन में पॉल्यूशन लाने में हमने बहुत जल्दी जल्दी किया ये कार्य को, हमारे पूर्वजों से भी बहुत फास्ट तरीके से. तो ऐसे भी हम अच्छे काम भी करें तो ऐसे भी हम प्रकृति का ख्याल रख सकते हैं. जी श्री.
1: जैसे मैं अभी आरती जी से सुन रहा था तो बहुत सारी अच्छी बातें मेरे को सुनने को मिली. कहीं ना कहीं हम अपने पुराने जनरेशन के पास जो विजडम थी, जो समझ थी, उस समझ को अपने जनरेशन तक आगे नहीं लेके आ पाए. और बीच में ये जो डेवलपमेंट के नाम पे जो हमने गड़बड़ियां की, इसकी वजह से आज बहुत नुकसान हमें देखने को मिल रहा है. और वो अभी भी कहते हैं कि हमें कोई ज्यादा देर नहीं की है, हमें सिर्फ वापस उन चीजों को सीखना है और उन चीजों को करना है. और वो चीज जो हम सदियों से करते आए हैं, ये जो वननेस की फीलिंग है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारा विश्व एक परिवार है. ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये जानवरों के लिए, पशु पंछियों के लिए, ये सारी धरती हमारा घर है. जब हम इस भावना से चीजों को करेंगे हमारे साथ एक और यंग फ्रेंड है, एक यंग एनवायरमेंटलिस्ट है जो पर्यावरण के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक और सजग है और हमारे लोकल हैं, जो हमारे ही क्षेत्र में रहते हैं और हमारे क्षेत्र में उन्होंने काम भी किया है. तो उनका परिचय शुभा जी कराएंगे.
2: जी बिल्कुल. चिंटू माउंट आबू में आप रहते हैं और आए दिन पेपर में हम सुनते हैं और पढ़ते हैं और देखते भी हैं कि चिंटू यादव जी ने आज ये वाला सांप पकड़ा और उसे रेस्क्यू किया, जंगल में छोड़ दिया. आज भालू के लिए वो कुछ कर रहे हैं तो कल जो जंगल में अन्य प्राणी हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं. लेकिन ये जो उनका जो लक्ष्य है और जो वो काम कर रहे हैं वो बचपन से कर रहे हैं, तो उनसे ही जानेंगे हम कि कहाँ से प्रेरणा आई उनको और अभी तक उन्होंने क्या किया है और आगे क्या करने वाले हैं. चिंटू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है नई दुनिया नया जमाना इस प्रोग्राम के अंतर्गत.
4: तो मैंने ये काम बचपन से स्टार्ट कर दिया था, करीबन मैं होऊंगा 6 या 7 साल का, तब से मैंने इन चीजों में काम करना चालू कर दिया. ऐसा था कि पहले यहाँ पे कई लोग सांपों को देख के तुरंत उनको मारना और बाहर निकाल देना, डरना, काफी लोगों में डर था इस चीजों के लिए. तो मैं चाहता था कि अब ये छोटे से सांप होते हैं, इनको अगर लगती है, लोग एक साथ 5-5, 6-6 लोग एक साथ इतने छोटे से जीव के ऊपर डंडे मारना और उनको पत्थरों से मारना, फिर उसको मार के उसको जला देना, तो ये कई समय से देखते आ रहा था. बट वही था कि इनको कितना दर्द होता होगा, कैसा लगता होगा. फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इनको बचाऊ, इनको पकड़ के और सुरक्षित जंगल में ले जाके छोड़ू तो इनकी जान बच सकती है और लोगों को जागरूक करूं कि इन्हें मारे नहीं, इन्हें बचाए. तो एक बार ऐसा हुआ था कि कई 5-6 जने मिलकर एक सांप को मार रहे थे रेंजर से, तो मैंने उनको बोला कि इसे मारो मत, एक छोटा जीव है. मैंने आपको अगर कोई एक जना भी कोई लकड़ी से मारता है तो आपको कितना पेन होता है, मैंने वो तो छोटा सा जीव है तो उसको कितना पेन होता होगा. तो बोले जहरीला है, काट जाएगा, मर जाएगा. मैंने तो मैंने बोला वो आप उसको छेड़ोगे तो वो आपको काटेगा, अगर जब तक आप उसको रास्ते में नहीं आओगे उसको छेड़ोगे नहीं तो वो आपको नहीं काटने वाला. और ऐसा नहीं कि सभी सांप जहरीले, आप सोचते कि ये सांप देखो उसको भी मार दो, वो सांप देखो. आपको सबसे पहले पहचान होनी चाहिए और पहचान नहीं है तो हम हर स्कूल कॉलेजों में जाके डेमो भी करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं. तो उस समय मैंने उस छोटे से सांप को पकड़ा, उसके बीच में उस डंडा उन्होंने मारा था तो बीच में घाव हो गया था, तो उसको मैंने लेके और इतनी समझ नहीं थी तो घर की ट्यूब और वो लेके उसको लगा रहा करा काफी, बट 1-2 दिन रखा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई. फिर फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बोलूं कि सांप आया तो मुझे बुलाओ, मैं पकड़ूंगा उसको, सुरक्षित जंगल में छोड़ूंगा। तो लोग बोलते थे कि देखो काट जाएगा, तू मर जाएगा, बोले जहरीला। मैंने जो मेरे को होगा होगा, पर मैं उनको बचाऊंगा। ऐसे करते करते मैंने पहले मोहल्ले से स्टार्ट किया, मोहल्ले में कहीं भी सांप आता तो मुझे बुलाने आते और मैं उनको रेस्क्यू करके तुरंत सेफली जंगल में ले जाके रिलीज करता था। ऐसे ऐसे करके माउंट आबू के हर एक कोने में लोगों को पता चलने लग गया कि भाई ये सांप को पकड़ता है सुरक्षित और जंगल में छोड़ता है। तो बोले फिर हम आ रहे क्यों, हम चिंटू को बुलाएंगे और ये सुरक्षित पकड़ेगा और जंगल में छोड़ देगा। लगभग ऐसा करते करते मैं 2007 के अंदर WII से अपने आए थे भालू रिसर्च पे रिसर्च करने। जैसे मैं भी सांपों के बारे में इतना जानता नहीं था, बस मैं उनको बचाना था, जीव है उनको दर्द होता है इसलिए उनको बचाना चाहता था। फिर WII से कुछ लोग आए थे जिनके पास मैं रहा, काफी ट्रेनिंग मिली वहां से और हमने भालू इसको भी कराया, जैसे कॉलरिंग करते थे हम भालू को पकड़कर, उसको कॉलरिंग करते और फिर ट्रांसमीटर लेकर उसे चेक करते थे कहाँ पे रह रहा है, क्या खा रहा है, उसके हर चीज के बारे में हम कंप्लीट करते थे। तो वहां से भी मेरे को काफी नॉलेज मिला सांपों के बारे में और जानकारियां मिली। ऐसे ऐसे करते करते मैंने चीज को और बढ़ावा करा कि लोगों के अंदर और जागरूक करूँ, लोग सांपों को मारना कम करें। ऐसे ऐसे करते करते मैंने लोगों को आबू रोड में पता चला। अब आबू रोड में लोगों को पता चला तो लोग मुझे वहां से आबू में कॉल करते थे, मैं तुरंत यहाँ रेस्क्यू करने आता था और मैं अकेला नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने सोचा अब मेरे को आबू भी रेस्क्यू करना पड़ता है और आबू में भी रेस्क्यू करना पड़ता है, तो मुझे लगा कि मुझे टीम बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे करते करते मैंने अपने कजन भाई को, एक है छोटा सा बेबी, छोटा ही था बहुत, झूले में यानी चल भी नहीं पाता था उस दिन, जो उस समय से मैं उसको इतना ट्रेन कर रहा हूँ। उनके मम्मी पापा भी बोलते थे कि बोले छोटा सा बच्चा है, बोले उसको सांप पकड़ा रहे, कर जाए काट जाएगा या चलेंगे। मैंने नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं जब तक हूँ साथ में कुछ नहीं होने वाला। उसको इतना ट्रेन कर दिया, आज माउंट आबू में मैं आबू रोड ले रहा हूँ, बट वो माउंट आबू में कोई भी रेस्क्यू आता तो वो तुरंत जाके रेस्क्यू कर लेता है। और वो अभी होगा 10 से 12 साल का, और मैं आबू रोड का जो भी रेस्क्यू होता है मैं आबू रोड में चलाता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ साथ साथ, जैसे आपने देखा होगा माउंट आबू में पहले जो गर्मी थी वो कोई जानता नहीं था कि गर्मी क्या होती है आबू में, माउंट आबू में। वो इसलिए था क्योंकि पहले जो आप पहाड़ देखते हो वो अभी भी बारिश के अंदर अगर हरा होता तो लाल टेना होती, झाड़ियां होती, और पहले वो पहाड़ ढके रहते थे सिर्फ पेड़ों से, बड़े बड़े पेड़ों से, जिससे चट्टानें ठंडी रहती थी छाया की वजह से पूरे दिन, और ठंडा वो ही रहता था। और अभी ऐसा हो गया कि लोगों ने काफी पेड़ों को काट दिया है, कई ऐसा हो गया कि माउंटेनिंग वाले एक ट्रैक में से 4 ट्रैक निकाल देते हैं, तो लकड़ी काटने वाले सोचते हैं कि इधर भी कई रास्ता है तो वो भी उधर घुस जाते हैं और वहां जाके नया पेड़ काटते हैं, फिर देखते हैं अलग पेड़ तो बोले ये भी काट दो। तो ऐसे ऐसे करके जंगल धीरे धीरे कटता गया है और अब चट्टाने सब खुल गई, ओपन हो गई है, अब वो पूरे दिन तपती है और आपको वो फिर गर्म भाप देखती है जिससे पूरा तापमान गर्म हो जाता है और लोगों को आबू में भी अब एसी की जरूरत पड़ने लग गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वहां पे जैसे अभी कई बार अभियान लगाया लोगों ने कि एक दिन में 1-6 लाख पेड़ लगाएंगे, कोई बोलता है 1 लाख पेड़ लगाएंगे। 1 लाख पेड़ लगाने से कोई मतलब नहीं है, एक पेड़ लगाओ उसको बड़ा करो तो लगता है कि आपने 1 लाख पेड़ बड़े कर लिए। ये चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप चीजों को करो। फिर दूसरा है कि हम रेस्क्यू फ्री सेवा ही करते हैं, जैसे लोगों को, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे से कोई चार्ज लेगा, जैसे मेरे को आबू रोड बुलाते इनको लगता है कि हमारे से चार्ज लेगा, बोले कौन बुलाए, बोले मार दो उसको। तो मैं यहाँ तक भी बताते जाता हूँ कि हम फ्री सेवा करते हैं, जब भी कॉल करोगे तो हम खुद आते हैं वहाँ रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित जंगल में छोड़ देते हैं। और ऐसा नहीं कि हमने जिससे उसको आबू रोड से रेस्क्यू किया और उसको माउंट ले जाके छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। उसको 2 से 3 किलोमीटर की रेंज के अंदर हमने छोड़ना होता है क्योंकि उनकी भी फैमिली है, उनके भी घर बार होते हैं, इसलिए हमें उनको 1 या 2 से 3 किलोमीटर के रेंज के अंदर हमें छोड़ना होता है।
3: जी, एक सवाल है चिंटू जी आपके लिए। आपके लिए एक सवाल है, वेदांत जी ने पूछा है। वो कहते हैं कि भैया आप सांपों के बहुत करीब रहे हैं और तो आपको उनसे क्या सीखने को मिलता है, क्योंकि हर एक प्राणी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। जी
4: जी भी ये चाहता है कि इंसानों से वो दूर रहना पसंद करता है, जैसे कोई भी जानवर हो, सांप ले लो, कोई भी भालू ले लो, ये इंसानों को कभी पसंद नहीं करते या इंसानों से दूर रहना पसंद नहीं करते। तो मैं एक सिंपल आपको बताता हूँ, जैसे मान लो आप भालू के घर में घुस रहे हो, जंगल में जा रहे हो, भालू आपका अटैक कर रहा है, भालू ने अटैक कर दिया, आप उसके घर में गए तो उसने अटैक किया, आपके घर में भालू आ जाता था, आप बोलता मैं घर में भालू आ गया, शोर शराबा करते बगाली को करते, तो वही चीज वहां पे भी होती है कि आपने उनके घर में घुसते और वो अपने को अटैक करते, तो वही है कि अपने से ज्यादा वो डरते, तो हमें उनको सेफली पकड़ना है और उन्हें महसूस होना चाहिए कि जैसे मैं रेस्क्यू करता हूँ उन्हें महसूस होता है कि मुझे ये इंसान नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज मुझे सांप पकड़ते पकड़ते 10 से 12 साल हो गए, बाकी पहले जब 1-2 साल तक शुरुआत का जब मेरे को पहले बहुत बाइट करे, काफी फेस पे नोज पे ये सब बाइट करे हुए मेरे और शरीर पे बहुत बाइट कर चुके, पर पॉइजनस अभी तक एक बाइट नहीं किया है। हाँ पॉइजनस पे एक जैसे कोबरा आता है उसने पॉइजन डाला था, पर डालता है कि नहीं डालता वो अपने को पता कैसे चलता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। जैसे कोबरा कभी आपको बाइट करता है होता है वो पॉइजनस है, जहरीला होता है, कोबरा कभी बाइट करता है आपको बाइट करके अगर छोड़ देता है, सीधा बाइट करा और आपको छोड़ दिया तो उसने पॉइजन कभी नहीं डाला। कोबरा कभी बाइट करके अगर वो ताकत लगा के मुड़ जाता है तो समझो उसने पॉइजन आपके शरीर में डाल दिया, और वो पॉइजन अपने लिए नहीं होता है वो भी उसकी खुराक के लिए होता है, उसको शिकार पकड़ना होता है, कितना बड़ा अगर उसने शिकार पकड़ा उसको अगर आराम से भी खा पा रहा है तो उसके अंदर भी वो जैसे सुई की पॉइंट होती है उससे भी कम, इसके पास 5 से 6 बूंद होती है पॉइजन की, तो 5 से 6 बूंद में से भी सुई की एक कण अगर आप डुबोते हो इतना पॉइंट वो उसमें डालता है ताकि वो थोड़ा अधमरा हो जाए और उसको आराम से वो खा सके।
1: बिल्कुल, पहले तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि ये पेशेवर तरीके से काम नहीं करते हैं, वॉलंटियर के रूप में काम करते हैं चिंटू जी, और इसके लिए कोई पैसा नहीं लेते, बट उनको एक शौक है कि प्राणियों के प्रति एक सहानुभूति की भावना है कि भाई हर एक जीव है उसे जीने का अधिकार है, और इससे इन्होंने जो छोटी कोशिश की है। अक्सर मैं सुनता आता था कि कोई सांप पकड़ता है या कोई ऐसा एनिमल रेस्क्यू करता है तो उसके अंदर ही कोई विशेष स्किल होती है या फिर उसके ऊपर कोई ऐसे कृपा होती है, किसी की आशीर्वाद होता है जिसकी वजह से वो काम करते हैं, बट ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने खुद से इंटरेस्ट लेके चीज किया और खुद बहुत बार बाइट्स भी खुद उनको हुए, बट फिर भी उन्होंने इस काम को नहीं छोड़ा और वो अपने नेफ्यू को भी काम सिखा रहे हैं। जैसे शुभा जी बंदरों की बात कर रहे थे, चिंटू जी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम लोग देखते हैं आते जाते रास्ते में देखते हैं बंदर बैठे होते हैं और बंदरों को टूरिस्ट खाना खिलाते हैं, कभी बिस्किट के पैकेट्स फेंक देते हैं। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि बिस्किट के पैकेट्स चलती गाड़ी में से फेंक दिया जाता है और बंदर उसे पकड़ने के लिए उतर जाते हैं पेड़ों से नीचे और पीछे से एक और गाड़ी आ जाती है और फिर बंदर। आप क्या देखते हैं, क्या कर रहे हैं कि बंदरों को भी खाना मिले? इस अच्छी भावना से ही हम कर रहे हैं, बट कहीं कहीं हमारा काइंडनेस भी बहुत ही नुकसानदायक हो जाता है, काइंडनेस किल्स हो जाता है, तो ऐसे में आप क्या कहते हैं, क्या सही हमारा अप्रोच होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ के प्रति हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए या हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए जब हम वाइल्ड लाइफ से इंटरेक्ट करते हैं?
4: आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये तो कई बार मैं खुद देख चुका हूँ। सीजन में तो कई चलो लोग उनको बिस्किट या पैकेट या फल फ्रूट कुछ भी डाल के खिला के जाते हैं, वो माना मैंने देखा बहुत अच्छा, चलो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी अच्छा काम है खिला रहे, ठीक है। बट ऑफ सीजन आता है जैसे ट्रैफिक कम हो जाता है तो आपने नोट किया अगर लोकल इंसान जाते हैं जैसे कहीं आते जाते हैं तो वॉमिट कर देते हैं रोड के ऊपर बीच रोड में, तो बंदर वो वॉमिट भी खाता है, वो देख के इतना बुरा लगता है यानी दिमाग काम नहीं करता। उस चीज को लेके हमने कई बार टूरिस्ट को भी हमने उनकी गाड़ी से चाबी निकाल के उनको बोला कि हम आपकी कंप्लेंट कर रहे हैं, हम आपको नीचे जाके फॉरेस्ट ऑफिस में आपको पकड़वाएंगे, तो कई बार तो हमारे ऊपर भी पैसेंजर हैवी हो गए और ये फिर हमने उनको कई बार प्यार से समझाया, वो बोले कि हमारे को इतने बिस्किट के पैकेट लाए हम इनको खिलाएंगे, बोले पुण्य का काम है। मैंने अच्छा आप पुण्य का काम मानते हो, मैंने आज आप इसको खिला रहे हो ठीक है, कल आज ये टाइम पे खिला रहे हो, कल फिक्स इसी टाइम पे रोज खिलाने आओगे तो आज आप खिलाओ उसको, मैं मना नहीं करूंगा रोकूंगा नहीं, रोज इसी टाइम पे आप इसको खिलाने आते हो वो आपकी आस लगा के बैठेगा, आप उसको डेली अगर खिलाने आते हो ये टाइम पे तो मैं आपको परमिशन देता हूँ और आप खिलाओ, तो पुण्य का काम मानता हूँ। आप मैंने आज आ रहे हो आज एक दिन खिला रहे हो और वो कल आस लगा के बैठेगा, वो आपको अच्छा लगेगा, आपको बदुआ मिलेगी उसकी जगह, तो आप बोल रहे सोच रहे हो कि पुण्य मिलेगा एक दिन खिला के, आप गलत सोच रहे हो कि आपको पुण्य मिलेगा, वो गलत है। आप बीच रोड पे भी उसे खाना फेंक रहे हो, अनशन तरीके से उसको खाना फेंक के दे रहे हो, तो ये चीज आपको सोचना है कि मैं तो ये कहता हूँ कि आपको जानवर से दूर रहना ही चाहिए, मैं तो कहता हूँ बहुत दूर रहना चाहिए जानवर से, उनको उनके अंदर ही रहना चाहिए थी। पहले मैं 2001 के अंदर समथिंग आसपास मैं आबू से नीचे आना जाना रहता था मेरा, तब मैं देखता था कि वहां पे एक बंदर नहीं दिखते थे और रहते भी थे तो कभी पेड़ पौधे और ये पत्ता वही सब खाने का, पर अब वो सब सिर्फ गाड़ियों की वेट करते हैं कि गाड़ी आएगी, गाड़ी रुकेगी, हम आपको खाना देंगे। और कई बार ऐसा कि गाड़ी रुकते ही वो समझ जाते कि हम आपको कुछ देंगे खाने, तो ये बंदरों को नुकसानदायक है। जैसे अपना जो मीठा है, जो बिस्किट या कुछ भी ऐसी नमकीन नमकीन ये सब चीजें दे रहे हो, उनको एक बीमारी होती है शरीर के अंदर अपने आप पैदा होती है। मैं आपको फोटोज भी है मेरे पास, कई बार मैंने रेस्क्यू भी करे ऐसे, यानी साल में एक बार ऐसी बीमारी होती है, पूरा शरीर में बड़े बड़े पपोले टाइप हो जाते, एकदम फट जाती है स्किन और सब जगह ब्लड दिखता है, खून खून खून दिखता है, ब्लड पूरा, और चल नहीं पाते, हाथ काम नहीं कर पाते, तो उनको इन चीजों से बहुत नुकसान है। तो इसलिए उनके लिए कुदरत ने बना रखा है खाने पीने का लिए, जंगल के अंदर सब कुछ है उनके लिए। अगर आप उनकी आदत नहीं बिगाड़ोगे तो वो जंगल में ही रहेंगे और वहीं पे उनका खाने पीने का सब कुछ है। तो हम लोग गलत है कि हमने अपना वो समझ के, पुण्य समझ के कि बिस्किट खिला दो, वो खिला दो, तो ये चीज मैं बहुत गलत मानता हूँ, बहुत गलत है।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने कही। आप क्योंकि वाइल्ड लाइफ के साथ जुड़कर काम करते हैं तो फिर इस बात की समझ बहुत सारे लोगों तक तो पहुंचेगी ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में इतना कोई ज्यादा मेरी समझ नहीं थी, बट जो कॉमन सेंस के हिसाब से मैं सोचता था उसके हिसाब से मुझे लगता था कि हम बंदरों के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इससे उल्टा नुकसान हो रहा है। आरती जी भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो भी इस चीज को
3: जी
1: जो लोग शुभा जी
2: जी आरती मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत।
3: हाँ, थैंक यू। आई एम सॉरी मैं आपके बीच में कूद पड़ी हूँ। जैसे ये बंदरों की बात कर रहे थे, शिमला बहुत फेमस है बंदरों के लिए और यहाँ भी सिमिलर प्रॉब्लम है। लोग बहुत गाड़ियों से आते हैं, नीचे प्लेन से आते हैं, खाना ब्रेड डबल रोटी वगैरह फेंकते रहते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी, जैसे ये चिंटू साहब कह रहे थे, और आई कंप्लीटली अग्री कि वी आर टू ब्लेम फॉर दैट, बिकॉज हम उन्हें इजी एक्सेस टू फूड है, और जब इजी एक्सेस टू फूड है तो वो हेल्दी हैं, हेल्दी हैं और वो मल्टीप्लाई भी डबल करते हैं। तो जब वो जंगलों में रहते थे, जंगलों में पेड़ पौधे खाएंगे या जैसे भी गुजर बसर करते थे, तो एक कंट्रोल्ड मैनर में उनका कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड मैनर था। बट अब क्योंकि खाना अच्छा है, अब आधे से ज्यादा बीमारियां या आधे से ज्यादा, हम बोलते हैं लेपर्ड का अटैक हो गया सिटी में, तो लेपर्ड का अटैक होना या बंदरों का अटैक होना या कुत्तों का अटैक होना इज इजी एक्सेस टू फूड, क्योंकि ये यही नहीं है कि लोकल लोग अपना कूड़ा ढंग से फेंक नहीं रहे हैं, वो लोकल गार्बेज भी जो आपके लोकल बिन्स हैं वो भी भरे पड़े हैं, और बंदर तो इंटेलिजेंट है, कहीं ना कहीं वो खोल भी लेता है ढक्कनों को, कूड़ेदान के ढक्कन को खोल के खाना भी खाएगा। तो सिमिलरली उस एरिया में आपके कुत्ते भी बहुत होंगे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इजी एक्सेस टू फूड टू डॉग्स। बट देन रिमेम्बर कि इजी एक्सेस टू फूड टू डॉग्स है, बट डॉग्स के साथ आते हैं हमारे यहाँ तो लेपर्ड जाते हैं, क्योंकि लेपर्ड के लिए कुत्ता खाना है। तो ये एक विशेष साइकिल है जिसका हम ही एक रूट कॉज है, और बंदरों को जो इजी एक्सेस टू फूड है, चाहे टूरिस्ट के माध्यम से हो, चाहे हमारे कूड़ेदानों से हो, आप देखना कोरोना चलते क्योंकि सफाई इतनी थी, आपने अगर नोटिस किया हो, पता नहीं माउंट आबू में कैसा था, बट हिमाचल में शिमला में खासकर बहुत सारी जो बंदरों की कॉलोनीज थी जिसमें 30 से 35 बंदर रहते हैं, वो शिफ्ट कर गई थी क्योंकि कूड़ा ही नहीं था खाने के लिए। लोग घरों से तो कुछ डाल नहीं रहे थे, मैक्सिमम लोग गांव चले गए थे, तो शहर में ऐसा ना कूड़ेदान है, और जैसे ही दुकानें खुलती थी घंटा 2 घंटे के लिए, उसके बाद सफाई हो जाती थी। तो धीरे धीरे जो पर्टिकुलर कॉलोनीज एक एक इलाके में रहती थी वो जंगलों की तरफ चली गई थी। तो इसका सोल्यूशन बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं था, इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा था कि अगर हम कंट्रोल करेंगे अपनी आदतें तो जानवर अपने आप, बिकॉज जानवर तो जानवर है। अगर हम बोल रहे हैं लेपर्ड हमारे इलाके में आ रहा है, लेपर्ड के इलाके में हम गए हैं क्योंकि हमने वहां घर बना दिए, तो वो बेसिकली तो रास्ता तो उसी का था, बट आ हम गए हैं। तो हम ब्लेम वाइल्ड लाइफ को करते हैं कि बंदरों का आतंक बढ़ रहा है, आफ्टर ऑल वो हमारे पूर्वज थे तो इंटेलिजेंट तो है ही, तो आतंकी तो वो भी हमसे ही सीखे हैं, एंड दैट्स व्हाट द रूट कॉज ऑफ इट। सो मुझे सिर्फ इतना ही कहना था, तो इसलिए समझदारी इसी में है कि प्लीज आप खुद ही ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। वो जानवर है, दिमाग तो आपके पास ज्यादा है, तो या जी, थैंक यू।
2: थैंक यू एंड बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद चिंटू जी आपका भी, आप दोनों हमारे साथ आज जुड़े और नई दुनिया नए जमाना इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपने अपने विचार भी शेयर किया, साथ ही साथ अपने अनुभव जो काम आप कर रहे हैं वो भी आपने शेयर किया। जी श्री,
1: तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों दोस्तों का और हमारे सभी सुनने वाले दोस्तों का। और हमें एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन मिला है कि अभी भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम बदल सकते हैं, उसको बदल कर वापस हम एक नई दुनिया एक नया जमाना ले आ सकते हैं। अगर हमें कुछ करना है तो बस हमारी सोच को कुछ ठीक करने की जरूरत है, कुछ एक्शंस में ले आने की जरूरत है, वापस उस विजडम को यूज करने की जरूरत है कि हम सब एक हैं और एक परिवार से जुड़े हैं, ये धरती हमारा घर है, ये याद रखने की जरूरत है। और अगर इन चीजों को समझ कर समझदारी के साथ समझबूझ के साथ अगर हम छोटी छोटी चीजें करेंगे, छोटे छोटे बदलावों से एक नया बदलाव आएगा, एक नई दुनिया आएगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नई दुनिया नए जमाने में। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक की हम सेलिब्रेशन में कर रहे थे और आज पर्यावरण संरक्षण में हमने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में बात की। शुभ,
2: थैंक यू सो मच श्री, और सभी दर्शकों का और सभी मित्र जो सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो मधुबन पर, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर से रात्रि 10 बजे पुनः प्रसारण आप रेडियो मधुबन पर सुन पाएंगे। फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।

शांतिरंतरिक्षः शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्मा शांतिः सर्वः शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

0: श्यामली रोज बच्चों के हाथ में मोबाइल देख परेशान हो जाती। सोचती कैसे इन्हें इनसे छुटकारा दिलाया जाए। स्कूल से आकर मोबाइल पर गेम खेलने लग जाना, कहीं बैग फेंका, कहीं ड्रेस, तो कहीं मोजे पटके, और बस मोबाइल हाथ में। वो सोच में पड़ गई कि एक हमारा बचपन था, जहां शाम का इंतजार खेलने के लिए करते थे। सितौलिया, गिल्ली डंडा, बैडमिंटन और दौड़ में तो हमेशा मैं ही जीतती थी। शाम होते ही घर से सारे बच्चे बाहर ही खेलते दिखते थे। श्यामली ने सोचा, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा, और उसने सोच लिया कि आगे क्या करना है। अगली सुबह श्यामली ने फटाफट अपना काम निपटाया। खाना वगैरह से फुर्सत होकर फिर उसने कॉलोनी की अपनी सभी फ्रेंड्स को फोन किया।
1: आज शाम को आप सभी अपने पतिदेव के साथ अपनी ही कॉलोनी के पार्क में जरूर आइए। चाय और नाश्ते का इंतजाम भी है, हमें इंतजार रहेगा।
0: बस फिर क्या था, सभी शाम को पार्क में पहुंच गए। सभी का श्यामली से यही सवाल था कि हुआ क्या जो तुमने अचानक इस तरह से हम सभी को बुलाया। श्यामली ने कहा, अरे हाँ हाँ बताती हूँ भाई, पहले आप लोग चाय वगैरह तो लीजिए, फिर आराम से बात करते हैं। सभी बहुत खुश लग रहे थे, क्योंकि ऐसा कम ही होता था कि सभी एक साथ आपस में मिले। तभी रीना बोली, अरे अब तो बताओ श्यामली कि एक साथ सभी को क्यों बुलाया। श्यामली ने कहा, ओके ओके अभी बताती हूँ, ये बताइए कि आप सभी की शामें कैसे गुजरती हैं। सोसाइटी के सभी पुरुषों का एक ही जवाब था कि ऑफिस से आने पर थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर थोड़ा मोबाइल पर चैटिंग वगैरह कर लेते हैं। और सभी फीमेल्स का कहना था कि शाम को थोड़ा नाश्ता वगैरह बनाकर घर के हम सभी लोग नाश्ता करते हैं, और फिर अपनी व्हाट्सएप पर फ्रेंड से चैटिंग चलती रहती है। श्यामली ने सभी की बात समझ ली थी। उसने तुरंत सभी से कहा, क्या आप सभी चाहते हैं कि बच्चों का मोबाइल से ध्यान हटे और वो थोड़ा खेलें, शाम को घर से बाहर निकलें, दोस्तों से मिले जुलें, हम लोगों के साथ समय बिताएं। हां हां क्यों नहीं चाहेंगे, हम सभी तो बहुत परेशान हैं इस बात से।

0: कि बच्चे मोबाइल छोड़ते ही नहीं।
1: श्यामली ने कहा, उन्हें सुधारने के लिए पहले हमें सुधरना होगा, हमें मोबाइल से किनारा करना होगा, क्योंकि बच्चे तो हम बड़ों से ही सीखते हैं ना। अब सभी शांत हो गए। सभी को शायद अपनी गलती का एहसास हो रहा था और श्यामली की बात सभी को अच्छे से समझ भी आ गई थी और सभी एक साथ बोल पड़े, बताइए अब हम सभी को क्या करना होगा। श्यामली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसने बहुत धीमी आवाज में सभी को अपना प्लान समझा दिया और प्लान सुनते ही सभी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। और इसके बाद श्यामली ने बहुत ही उमंग से कहा, ओके, तो कल से हम सभी की शाम यहां होगी। सभी तैयार थे। कल का वादा ले अब सभी खुशी खुशी अपने घर को चले गए। दूसरे दिन जब शाम हुई तो चाय नाश्ते के बाद श्यामली ने सूट पहना, दुपट्टे को कमर से बांधा और इसी तरह श्यामली ने अपने पति को भी टी शर्ट और लोअर पहना अपना अपना बैडमिंटन उठाया। बेटा बहुत तेज से यह सब देख रहा था। वो सोच में पड़ गया कि आज ये मां पापा को क्या हुआ, कहां की तैयारी कर रहे हैं। उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, आप लोग कहां जा रहे हो। श्यामली ने कहा, बेटा गेम खेलने।
2: अरे पर कैसे, मोबाइल तो आपके हाथ में है नहीं, तो गेम कैसे खेलेंगे।
1: श्यामली के पति ने कहा, बेटा हम मोबाइल में नहीं, नीचे खेलने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं और अगर तुम आना चाहो तो पार्क में आ जाओ, लेकिन लॉक करके आना।
0: अब बेटे से रहा नहीं जा रहा था। थोड़ी देर तो वो मोबाइल पर गेम खेलता रहा और फिर वो भी लॉक करके पार्क में आ गया। देखा तो सभी बच्चे भी नीचे थे और सबके मम्मी पापा भी, क्योंकि कॉलोनी के हर घर में श्यामली के घर की तरह ही माहौल था। आखिर सभी बच्चे पार्क में आ गए थे। बच्चे अपने बड़ों को खेलते देख बहुत खुश हो रहे थे और अब उनसे भी नहीं रहा गया। प्लीज माँ हमें भी खेलना है, पापा हमें भी खेलना है ना प्लीज, बस यही आवाजें आ रही थी। फिर क्या था, सभी यही तो चाहते थे। अब वो समा बंध गया था। शाम को जो पार्क सुनसान पड़ा रहता, आज उसमें अलग ही रौनक आ गई थी। अब तो रोज ही बच्चे शाम को एक दूसरे को आवाज लगाकर पार्क में पहुंच जाते। श्यामली का बेटा विभोर बोला,
3: मां मैं जा रहा हूं खेलने नीचे, आप लोग भी जल्दी आ जाओ, मुझे सौरभ को हराना है। मां पापा जल्दी आओ ना।
1: मोबाइल पर श्यामली के सभी लोगों को थैंक्स के फोन आते जा रहे थे। श्यामली के पति ने श्यामली का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, श्यामली मुझे तुम पर गर्व है, आज तुमने हमारे ही नहीं कई परिवारों के रिश्तों की डोर मजबूत की है। श्यामली की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, आपके बगैर मेरा ये कर पाना बहुत मुश्किल था, आपका सहयोग ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, शुक्रिया। तभी विभोर की आवाज आई,
3: मां पापा जल्दी आओ ना, अंकल आपको बुला रहे हैं।
1: दोनों ने अपना बैडमिंटन उठाया और नीचे पार्क की ओर चल दिए। दोस्तों आप सुन रहे थे डॉक्टर मनीषा गुप्ता की लिखी कहानी परिवर्तन। कहने को तो ये कहानी है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये गंभीर इशारा है। आज तक के अनुभव के हिसाब से हम ये तो समझ ही गए हैं कि बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें कहते हैं, बल्कि वो करते हैं जैसा वो हमें करते ऑब्जर्व करते हैं। हम अगर चाहते हैं कि हमारा या बच्चों का भविष्य सुनहरा बने, परिवारों में पहले जैसे खुशी और आनंद हो, तो एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, एंटरटेनमेंट के ये सारे मीडियम, ये हमारा सहारा नहीं, हमारी सच्ची खुशी मिलजुल कर बैठने में है, मिलजुल कर वक्त बिताने में है। रही बात एंटरटेनमेंट की, तो आपस में खेलकर, घर से बाहर निकलकर फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके खूब एंटरटेन हुआ जा सकता है। कमेंट्स करके बताएं कि आप कब इस परिवर्तन की शुरुआत करने जा रहे हैं, और हां शेयर जरूर करें ताकि अच्छे विचार और परिवर्तन की बयार एक हद तक न रह जाए, सभी तक एक श्रेष्ठ विचार जरूर पहुंचे। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम साहब, कैसे हैं? सब ठीक ठाक तो हैं? घर में बाल बच्चे? बहुत अच्छी बात है, बस कुशल मंगल रहे। चलिए, आपकी प्रभा पंडिताइन आपका प्रोग्राम पंडिताइन में पेश कर रहे हैं आज का प्रोग्राम, और शुरू करते हैं सकारात्मकता से। सकारात्मक सोच न केवल सबसे अच्छा होने की उम्मीद रखता है, लेकिन ये स्वीकार करने के बारे में भी है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। विश्व नाटक कल्याणकारी है, तो हमेशा का सोचिएगा, गुजर जाएगा ये दौर भी दोस्त, गुजर जाएगा ये दौर भी दोस्त, जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ही न ठहरी तो गम की क्या औकात है। चिड़िया जब जीवित रहती है तब वो कीड़े मकोड़े को खाती है, लेकिन वही चिड़िया जब मर जाती है तब कीड़े मकोड़े उसको खा जाते हैं। इसलिए ये बात का ध्यान रखें कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं। कभी किसी का अपमान मत करो, कभी किसी को कम मत आंको। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन समय तुमसे भी शक्तिशाली है। एक पेड़ से लाखों माचिस की तीलियां बनाई जा सकती है, पर माचिस की एक तीली लाखों पेड़ जला सकती है। कोई चाहे कितना भी महान काहे न हो जाए, पर कुदरत कभी भी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। वर्तमान का कटु सत्य आपके समय का जरा इस पर आप गौर जरूर करना, और ऐसी स्थिति से जरूर बचना जिस घर में बड़ों को छोटों से डर लगने लग जाए, उस घर में समझ लेना कि कलयुग प्रवेश कर चुका है। आपसे करबद्ध प्रभा पंडिताइन निवेदन करती है कि कभी भी अपने घर में ऐसी छवि मत बनाना जिससे कि तुम्हारे ही घर का पूज्य पुरुष तुमसे ही डरने लगे और वो तुमसे अपने मन की बात न कह सके। यदि ऐसी छवि तुमने बना ली है तो खुद का ही विश्लेषण कर समझ लेना कि तुम कितना ही धर्म करना, एक दिन तुम्हारा पतन निश्चित है। ईश्वर न्यायाधीश है खुद का विश्लेषण करने का तरीका। अगर आपकी ओर एक उंगली उठे तो समझना कि आपका अपमान, अगर अंगूठा का इजहार हो तो समझना आप कामयाबी की ओर है। अंगूठे से उंगली मिले तो समझना आपके कार्य लाजवाब है। यही तो हमारी जिंदगी का हिसाब है कि नहीं? अगर वाकई में आप अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, बेशक पांव फिसल जाए पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। कहे कि ठोकर खाकर जो इंसान गिर जाए वो उठ जाता है, लेकिन नजरों से गिरा हुआ इंसान कभी नहीं उठ पाता। चिंता कहीं ना करो, चिंता कभी ना करो, चाहे सारा जमाना आपके खिलाफ हो, लेकिन चलो उही मार्ग पर जो सत्य और मानवता का मार्ग हो। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं, और तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है, हमारी सोच को नहीं। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं खुद है। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, है कि नहीं? और एक बात जरूर याद रखें, माफ करें, दिल साफ करें। हम सभी से जाने अनजाने में न जाना कितना गलतियां होती है, किंतु गलती का एहसास होना अर्थात अपने गलत कर्म का भान होना और गलती के लिए माफ़ी मांग लेना उस गलती के बोझ को समाप्त कर देता है। गलती होना वास्तव में गलती तो है पर इतनी बड़ी नहीं, परंतु अपनी गलती को महसूस न करना ये उससे भी भारी गलती है। महसूस नहीं किया तो स्वयं के बदलने के द्वार बंद हो जाते हैं और वही गलती बार बार दोहराई जाती है। तो क्या करिएगा, समझ गए? तो सच्चे दिल से माफी मांगने का अर्थ है कि हम उस गलती को इतनी गहराई से महसूस करें कि दोबारा कभी भी किसी के भी साथ वो गलती ना दोहराएं। अगर एक व्यक्ति बदला लेकर दूसरे को नीचे दिखाना चाहता है तो ये प्रयास में वो खुद भी नीचे उतर जाता है, और दूसरी ओर क्षमा करके व्यक्ति स्वयं भी ऊंचा उठता है और सामने वाले को भी ऊंचा उठने की प्रेरणा देता है। यदि चित्त में ईर्ष्या घृणा द्वेष की अग्नि धधक रही है तो वो चित्त को भारी कर देती है। तो सदा याद रखिएगा, ऐसा बोझिल मन भगवान के किस काम का जो पहले से ही भरा है।
भगवान उसमें और का भरेंगे। इसलिए प्रतिदिन अपनी गलती के लिए क्षमा मांगकर और दूसरों की गलती के लिए क्षमा देकर मन को खाली अबस कर लीजिए, तभी शांति के सागर परमात्मा की शांति की किरणें अंदर प्रवेश करेगी। अपने शरणागत जीव को प्रभु हर प्रकार के अनिष्ट से बचा लेते हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि प्रभु आश्रित जीव के जीवन में कभी कौरव कष्ट ही नहीं आता हो। सच बात तो ये है कि प्रभु आश्रित जीव धर्म पथ का अनुगमन करता है, और जो धर्म पथ का अनुगमन करता है उसकी राह कभी भी आसान नहीं होती। ये प्रभु शरणागति की महिमा ही तो है कि दुर्गम परिस्थितियों में भी शरणागत के मन में एक विश्वास और एक सकारात्मकता सदैव बनी रहती है, और वो ये कि मेरे प्रभु मेरे साथ ही हैं, फिर मैं चिंता काहे करूं। और उनका ये विश्वास ही उन्हें पांडवों की तरफ बड़े से बड़े विघ्न से भी लड़ने का आत्मबल प्रदान कर देता है। जौन प्रकार एक अबोध बालक निर्भय होकर सर्प के संग खेलने लग जाता, सांप के संग, और अग्नि में भी हाथ डालने लग जाता है, वो नहीं जानता कि इसमें मेरा तनिक भी अहित होने वाला है। मगर उसके माता पिता अच्छे से जानते हैं कि किसमें उनके बालक का हित है और किसमें अहित। इसी प्रकार हम जीव को भले ही नहीं पता हो कि किसमें उसका हित है और किसमें अहित, फिर भी वो प्रभु को सब कुछ पता है।

और माता पिता की भांति ही माँ जानकी और प्रभु राम अपने शरणागत की रक्षा करते हैं और उनको हर प्रकार के अनिष्ट से भी बचा लेते हैं। प्रभु शरणागति अथवा धर्म के मार्ग पर आपको कष्ट जरूर हो सकता है, मगर आपका अहित कभी नहीं हो सकता। ये बात गांठ में बांध लीजिए। आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य है, लेकिन ये असंभव को भी संभव कर देते हैं। एक तस्वीर देखी हम, बहुत बूढ़ा व्यक्ति है और एक छोटा सा बच्चा उसको माथे पे चूम रहा है। एक अपने आने वाले कल को और एक अपने गुजरे हुए कल को, यही जीवन का चक्र है। तो क्या समझे, ये आसमान में उड़ने वाले परिंदों, ए आसमान में उड़ने वाली परिंदों, कुछ तो दुआ करो खुले आसमान की, कुछ तो दुआ करो खुले आसमान की। इस पिंजरे का दर्द क्या होता है, अब समझ चुका है आज का इंसान भी। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। बुरे में अच्छा ढूंढो तो कोई बात बने, अच्छे में बुराई ढूंढना तो ये दुनिया का रिवाज है। कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरे की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं, दूरी हो जाती है। ध्यान रहे कि चुभ जाती हैं बातें कभी कभी, चुभ जाती हैं बातें कभी कभी और लहजे मार जाते हैं। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ गैरों से ज़्यादा हम अपनों से ही हार जाते हैं। आप सब तो दुनिया में रहते हैं, बहुत कटु अनुभव से जिंदगी के इस पड़ाव तक पहुँचे होंगे, फिर भी कई बार मन में आता है कि बात भी कह दें तो कहीं लगी हो चोट तो उस पर थोड़ा सा मरहम का काम हो जाएगा। कई बार आप अपने जीवन से असंतुष्ट होते हैं, पर दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपके जैसा जीवन जीने की चाह रखते हैं। तो आज से क्या करिएगा, अपने जीवन से संतुष्ट रहें। हमारे पास परमात्मा जी ने जो दिया है लाखों करोड़ों लोगों से बहुत अच्छा दिया है। ये दुनिया नहीं चलती अगर 5 स्त्रियां हर पुरुष के जीवन में नहीं होती। कौन कौन सी? माँ, बहन, बहू, बेटी या पत्नी। चालाक बनकर तो किसी को केवल कुछ देर तक ही मोहित किया जा सकता है, परंतु जहाँ दिल जीतने की बात आती है वहाँ तो केवल सरल और सहज होना ही जरूरी होता है। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। कई बार एक चुप्पी कई भ्रमित दूषित वातावरण को सुगम कर सही दिशा प्रदान कर देती है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास किसी दूसरे की चुगली करता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी भी किसी और के सामने चुगली करता होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान अपनी भूल में से भी बहुत कुछ सीख सकता है। सबको शुभ भावना शुभकामना के गिफ्ट देने वाली अपने आप को भाग्य विधाता मास्टर भाग्य विधाता समझे, देखिए आपका जीवन कितना खुश मिजाज होगा। माटी का संसार है खेल सके तो खेल, माटी का संसार है खेल सके तो खेल, बाजी रब के हाथ में है पूरा विज्ञान उसके आगे है फेल। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और उसका सिमरन दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। तो आज से क्या करिएगा, समझ गए होंगे ना? अरे कहा नहीं समझेंगे, परमा पंडित आइन के साथ 12 साल सुन सुन सुन के तो अब हमसे भी ज्यादा समझदार हो गए हैं। चलिए यही बात पर एक गीत व सुन लेते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। सुनिएगा मीठा सा गीत, के बाद फिर आपसे बतियाते हैं।

भाई एक पते की बात बताए रहे हैं। हमेशा दूसरे से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखें। काहे कि दूसरों से उम्मीदें बहुत दुख देती है, जबकि स्वयं से उम्मीद बहुत कुछ प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर रहें और स्वयं पर विश्वास रखें तो आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे। जीवन का सती ही है, मनुष्य जैसे सोचता है वैसे ही गुण कर्म स्वभाव वाला बनता जाता है। यदि मनुष्य श्वास श्वास परमात्मा का गुण, उनका दिव्य कर्म तथा उनकी संपत्ति की याद में रहे तो वो भी दिव्य मन दिव्य बुद्धि वाला बन जाता है। एक राजपूत कोई निश्चय और याद होने के कारण कि वो राजकुमार है, स्वभावतः खुशी साहस धन खुमारी रहती ही है। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्यात्मा निश्चय पूर्वक मनन करती है, मैं तो सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं तो त्रिलोकीनाथ परमात्मा का बच्चा हूँ, सारा ब्रह्मांड का स्वामी का बालक हूँ, तो ऊकी मस्ती आनंद अतीन्द्रिय सुख और शक्ति के अनुभव का पारावार नहीं रहता। परमात्मा हर वक्त आपके साथ है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो आपको कब कहाँ और कैसे कैसे बचाता है, लेकिन आप फिर भी उसको कोई मौका मिलता है तो गिला शिकवा करने से नहीं चूकते। एक बात मन में बैठा लीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है और जिसमें निश्चित आपकी ही कोई भलाई छिपी हुई है। इसलिए हर तरह का अभिमान और जिद छोड़कर जो भी कुछ हो रहा है उसे खुशी खुशी से स्वीकार करें। दया और कृपा इका सागर होने के नाते वो कभी भी आपको दुख नहीं देता। कौन? परमात्मा जी, गॉड जी। अभी तो दुखों से छुटकारा पाने का राह जरूर दिखाता है। प्रभु ही हमारे सच्चे हितैषी हैं। प्रभु को पाने का एक ही लक्ष्य बनाए, जीवन की सार्थकता यही में है। आप बरसों से अपने आप को कोसते आ रहे हैं पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब आप खुद का समर्थन करने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। अब केवल समाधान होंगे, समस्या नहीं। सदा स्मृति रहे कि आप कौन हैं, एक शांत स्वरूप और वरदानी आत्मा है। जीवन का सत्य ये भी है कि मिनट घंटे दिन माह वर्ष बदल सकते हैं, लेकिन हमारे किए अच्छे बुरे नहीं बदलते। का कर्म बुरे काम पीछा करते ही रहते हैं, अच्छे काम बचाते ही रहते हैं। आज मनुष्य जीवन के बुनियादी व नैतिक सत्यों से अवगत है परंतु इन पर अमल नहीं ना करता। इनमें जीवन में सरलता नहीं आ पाती और जो सरल नहीं होगा उसमें परमात्मा की साधना नहीं कर सकता। राजयोग सहज राजयोग की साधना के लिए मन बुद्धि का सरल और सहज होना जरूरी है, जो कि सत्य आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति व इसका मनन करने से ही संभव है। तो क्या करिएगा, संतुष्टता दिलाता है योग, जो कि कई जन्मों तक संस्कारों में समाई रहती है। मानव जीवन पुण्य और पाप का मिश्रण है। अज्ञान और दुर्ज्ञान से पाप उत्पन्न होता है और सद्ज्ञान से पुण्य उत्पन्न होता है। कर्मों से संस्कार बनते हैं, संस्कार ही से ही गुण बनते हैं, गुण से प्रकृति बनती है, प्रकृति से सृष्टि बनती है और सृष्टि ही शरीर है। भला या बुरा, रुग्ण या स्वस्थ, सुंदर या कुरूप, स्पष्ट है कि मनुष्य का जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका शरीर बनता है। जन्मों जन्मों से संचित कर्मों का प्रतिफल ही शरीर है। शरीर ही वो फल है जो प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। सत्कर्म से सुफल और दुष्कर्म से कुफल प्राप्त होता है। वर्तमान शरीर पुराने सांस्कृतिक परिवेश का फल है। कर्मों के फल भोग सुनिश्चित होते हैं, उनसे कोई बच नहीं ना सकता। कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है, देव मानव दैत्य सभी को। जीवन में सब कुछ एक निवेश की तरह ही होता है। प्रेम, समय, साथ, खुशी, सम्मान और अपमान, जितना जितना हम दूसरों को देते जाएंगे, समय आने पर एक दिन वो ब्याज सहित हमें अवश्य वापस मिलने वाला है। कभी दुख के क्षणों में अपने को अलग थलग पाओ तो एक बार आत्मनिरीक्षण अवश्य कर लीजिएगा कि कब जब अब
जब मेरे अपनों को अथवा समाज को मेरी जरूरत थी तो मैं उन्हें अपना समय दे पाया था। कहा कि हम दूसरे से तो बहुत अपेक्षा रखते हैं, लेकिन कहा हम दूसरों को कुछ दे पाए थे? कहा किसी के दुख में मैं कभी सहभागी बन पाया था? आपको अपने प्रति दूसरों के उदासीन व्यवहार का कारण स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। कभी जीवन में अकेलापन महसूस होए लगे और आपको अपने आसपास कोई दिखाई न दे जिससे मन की दो चार बात करके मन को हल्का किया जा सके, तो आपको एक बार पुनः आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। क्या आपकी उपस्थिति कभी किसी के अकेलेपन को दूर करने का कारण बन पाई थी अथवा नहीं? अपने आप चिंतन कीजिएगा, आपको अपने एकाकी जीवन का कारण स्वयं समझ आ जाएगा। श्रीमद् भागवत जी की कथा में हम लोग गाते हैं कि देवी द्रौपदी ने वासुदेव श्री कृष्ण को एक बार एक छोटे से चीर का दान किया था और समय आए पर आवश्यकता पड़ने पर विधि द्वारा वही चीर देवी द्रौपदी को साड़ियों के भंडार के रूप में लौटाया गया। सुना है ना आप सबने? तो अच्छा बुरा, मान अपमान, समय साथ, दुख सुख के जो कुछ भी आपके द्वारा बांटा जाएगा देर से सही, मगर एक दिन आपको दोगुना होकर मिलेगा जरूर, इतना ही है। तो आपको डिसाइड करे कहा है, कहा दे कहा है, वही लौट के आने वाला है। सूर्योदय के लिए सूर्य को अंधेरे से, हरियाली के लिए वसंत को पतझड़ से, और गंगा स्वरूप होने के लिए एक नाले को कंकर पत्थरों से टकराना अथवा लड़ना ही होता है। ठीक इसी प्रकार बेहतरीन व अच्छे दिनों के लिए मनुष्य को बुरे दिनों से अवश्य लड़ना पड़ता है, अथवा तो बुरे दिनों का सामना करना ही पड़ता है। प्रभु श्री राम ने लंका को जीता, मगर जीतने से पहले कितनी कितनी विषमताओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आप सब तो जानते हैं ना। पांडवों ने महाभारत युद्ध जीता अवश्य, मगर उसके मूल में भी अनगिनत कठिनाइयां और विपत्तियां ही छुपी हुई हैं। निसंदेह जीवन यात्रा ऐसी ही है। यहाँ पर किसी चीज को वृक्ष बनने के लिए एक लंबी अवधि तक सर्वप्रथम जमीन में मिट्टी के नीचे दबना होता है। समय आने पर वो बीज अंकुरित तो हो जाता है, मगर उसके बाद भी कभी तीखी धूप तो कभी कड़ाके की सर्दी का सामना करते हुए न जाने काका विषमताएं अपने ऊपर झेलनी पड़ती है। यही तो जीवन है, यही तो प्रकृति है। धीरे धीरे वो बढ़ने जरूर लगता है, मगर यहाँ भी पग पग पर उसकी डगर आसान नहीं होती है। कभी आंधी, कभी तूफान, कभी ओलावृष्टि, तो कभी अतिवृष्टि का सामना करते हुए वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष का रूप ले चुका होता है। अब कभी अपने पत्तों द्वारा, कभी अपनी टहनियों द्वारा, कभी अपनी लकड़ियों द्वारा, कभी अपनी शीतल छांव द्वारा, तो कभी अपने मधुर फलों द्वारा परोपकार और परमार्थ करके एक वंदनीय और सम्मानित जीवन जी पाता है। याद रखिएगा, दिन बुरे हो सकते हैं मगर जीवन नहीं। धैर्य, साहस, सावधानी और प्रसन्नता का कवच परिस्थितियों को भी आपका दास बना सकता है। जो डटेगा वही टिकेगा और वही बढ़ेगा। समझ गए? तुम सिर्फ अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। हमारा पहला मंदिर ये कोई और नहीं बल्कि हमारा शरीर है। हम इंसानों को भगवान की अवधारणा सिखाई जाती है, सही या गलत। हम गायों के घर आने तक बहस कर सकते हैं, ये हमारी दुनिया का एक सच है। कुछ लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, दूसरों को विश्वास करना सिखाया गया है और वे इसका धार्मिक रूप से पालन करते हैं। इस मुद्दे पर हमारा मत अलग है। हमारा पहला मंदिर हमारा शरीर है, हमारी आत्मा हमारा देवता है, ईश्वर का अंश है। हम प्रार्थना करने के लिए अपनी आत्मा के साथ संरेखित करते हैं। जो लोग इस प्रक्रिया से, कर्मकांड से गुजरते हैं, वो मुझसे सहमत नहीं हो सकते। हमें पृथ्वी पर अपनी यात्रा के दौरान अपनी आत्मा को अपने शरीर में रखना है। इस मंदिर के रख रखाव के लिए केवल श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे महान आकार में बनाए रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता है। रोजाना व्यायाम से हमारा शरीर चमकता है और आलस्य से सुस्त हो जाता है। हमें ईंट और पत्थर के मंदिर को भी बनाए रखना चाहिए, लेकिन हमें पहले अपना
पहला मंदिर बनाए रखना चाहिए। काहे कि मंदिर के माध्यम से हम सर्वशक्तिवान की प्रार्थना करते हैं। तो का समझे आज से का करिएगा, समझ गए ना। खुद को बदलने का आसान तरीका है स्वीकारना। जौन समय हम गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं उही समय परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। माना कि फूल की सुंदरता पंखुड़ियों से होती है, परंतु यदि फूल की धुरी ही खराब हो जाए तो पंखुड़ियां टिक नहीं पाएगी। इसी प्रकार हमारा जीवन का विभिन्न संबंध संपर्क जीवन रूपी पुष्प की सुंदर पंखुड़ियां हैं, परंतु ये सब आपके जुड़ी है। यदि आप संपूर्ण संतुष्ट व स्वस्थ नहीं तो ये सब भी मुरझा जाएगी। अतः जीवन से सब अंगों को संवारने से पहले स्वयं का वास्तविक रूप संवारना बहुत आवश्यक है। ये सही है कि जरूरतें इंसान को एक दूसरे से जोड़ के रखती है, लेकिन जब तक आपस में व्यवहारिक सरलता सहजता नहीं होती, जरूरतें भी संबंध की पकड़ को ढीली कर देती है। लाइफ में हर समस्या के अंदर उपहार अवश्य होता है, इसलिए कभी समस्या का सामना भी करना पड़े तो निराश नहीं होना चाहिए। का पता जो अंत हम अपेक्षित कर रहे हो अंत उससे भी अधिक सुंदर हो। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने के गुण का अनुभव करें और सदैव आशावादी रहें। हमें नेकी करने के बदले में कुछ पाने की आस नहीं रखना चाहिए, इससे आपका किया पुण्य घट जाता है। नेकी कर दरिया में डाल, अर्थात नेक कर्म करके दरिया में बहा देना, उसे किसी को पता ना चले। एक हाथ से दे तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। कहे कि जितना चुपचाप दिया जाए उतना ही अच्छा है, जिसे पता चलना होगा उसे खुद ही पता चल जाएगा। ऐसा दान ही वास्तव में शुद्ध होता है। इससे ही दानी व्यक्ति प्रसन्नचित होता है, उसके अंदर एक फैलाव आता है, प्रेम से भरपूर हो जाता है, वास्तविक आनंद की महसूसता होती है। जबकि अधिकांशतः लोग कुछ देते हैं तो उसके पीछे सोचते हैं कि हमें प्रशंसा मिलेगी, नाम मनसान बढ़ेगा, प्रसिद्ध होंगे, लेकिन ये दान नहीं ना है। ये भाव हमें बोझ उत्पन्न करता है, अहंकार बढ़ाता है। परमात्मा पर पूर्ण भरोसा, अपने कर्मों पर विश्वास, सकारात्मक सोच के साथ सदैव खुश रहना, ये सारी बातें आपकी आंतरिक ऊर्जा को निरंतर गतिशील और बढ़ावा देती है। तो क्या करिएगा, जान गए ना। चलिए ही बात पर एक गीत और सुन लेते हैं, के बाद फिर आपसे बताती है। सुनिएगा गीत, छोटा सा विराम ले रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं।

जल शक्ति है, जल जीवन है, जल है तो कल है। आइए सुनते हैं रेडियो मधुबन पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी क्या कहते हैं।

0: सामान्यतः हमारे परिवारों में क्या होता है, कोई बच्चा अगर एक्सट्रावेगेंट हो जाता है तो बहुत सारा खर्चा करने लगता है, तो क्या कहते हैं कि जो है पैसे को पानी की तरह बाहर है, मतलब पानी को हमने ऐसा मान लिया है कि इसका कोई मोल नहीं है। अब हमको इस मिथक को तोड़ करके समाज के मन में इस बात को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि पानी को पैसे की तरह बचा करके काम में लेना है। और अगर हम इसके लिए कामयाब हो जाएंगे तो हमारे देश में जितने प्रकृति ने संसाधन दिए हैं आने वाले कई शताब्दियों तक हम देश को जल समृद्ध बनाए रख सकें।
1: रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे थे जल है तो जीवन है, जल बचाएं जीवन बचाएं।
2: देखिए भाई, जिंदगी के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रहे हैं। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो, चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो, दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो, कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। और जब ऐसा आप करिएगा तो देखिएगा अपने आप रास्ते खुलते हैं कि नहीं। ये एक ऐसा युग चल रहा है जिसमें धर्म के नाम पर लड़ने को सभी तैयार हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कौनो तैयार नहीं है। हमें ये बात पर ध्यान देकर पड़ेगा। हसरत पूरी ना हो तो ना सही, ख्वाहिश करना कोई गुना तो नहीं है। चिंता ने चिता से मुस्कराते हुए ये कहा, तू मुर्दों को जलाती है, मैं जिंदों को। कितनी अच्छी बात है ना, चिंता इंसान को जीते जी जलाती है और चिता तो कहती है कि मैं मुर्दों को जलाती हूँ और तू जिंदों को। किरदार शिद्दत से निभाइए जिंदगी में, कहानी तो एक दिन सभी को बनना ही है। जब चले जाएंगे तो कहानी ही ना बन जाएगी, और कहाँ याद करेंगे लोग, जैसे कहानी में कोई पात्र को याद करते हैं ऐसे कभी कभार आपको याद करेंगे। आपका कद नहीं, आपकी विनम्रता आपको बड़ा बनाती है। बड़ा हुआ तो का हुआ, जैसे पेन खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा पर काहे में है, आपकी लंबाई चौड़ाई में नहीं, विनम्रता में। समय बहरा है, कभी किसी को नहीं सुनता, समय बहरा है कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। ये बात को भी ध्यान रखिएगा। दिल से साफ रहोगे तो बहुत लोगों के खास रहोगे, ये बात भी बहुत पते की है। मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियाँ भी जरूरी है। कई बार बहुत सच्चाई से भी का हो जाता है, मन उदास हो जाता है। कभी कभी गलत फहमी भी जी लिया करिएगा भाई, वो भी बहुत सुख देती है। सूर्योदय की हर्षित बेला पर आपको सभी को हम बहुत याद करते हैं और कहते हैं, गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। बस जीवन में कुछ ऐसा ही है, समझ गए ना। एक उम्र होती है जब सिर्फ रूप रंग महत्वपूर्ण होता है, एक उम्र होती है जब विचार महत्वपूर्ण होते हैं, और एक उम्र के बाद सिर्फ साथ महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं। अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन है, ये बात को भी याद रख लीजिएगा, नहीं तो छोटी छोटी बात में उबलते पानी की तरह भाप बन के उड़ गए। बस जिंदगी तो, और चाहेंगे ही लोग भी चाहेंगे कि ऐसी आप बलबला जाएं और हवा बन के भाप बन के उड़ जाएं। धैर्यता, शांति, विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। कहे कि उसके बगैर ना तो प्रेम संभव है ना तो प्रार्थना। हमेशा खुश रहा करिए। कहे कि खुशियों का संबंध दौलत से नहीं, दिल से होता है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं जीवन का दस्तूर है और हर कोई इसका मुक्त भोगी है। बात करूं तो बहस, चुप रहूं तो घमंड, आजकल हमारी जिंदगी कुछ ऐसी ही चल रही है। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके हर तकलीफों का ब्रह्मास्त्र है। जीवन एक विद्यालय है, इसमें कठिनाइयां, परीक्षा और समय शिक्षक का काम करते हैं। तो भैया परीक्षा में पास होए का है तो वो तो समझ के जीना होगा। अच्छे जरूर बनिए लेकिन साबित करने में अपना समय मत गवाइए। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए कि नहीं? कहे कि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाए के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते में आते जाते लोग पूछ ही लेते हैं, है कि नहीं? दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो। कहे कि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। अभी उत्तम लोग संकट आए तो भी शुरू किया हुआ काम नहीं छोड़ते। आपका जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए परीक्षाएं आएगी, लेकिन आप उन परीक्षाओं को देखकर अपना काम, अपना लक्ष्य मत छोड़िए। और हमेशा याद रखिए, क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर समाप्त होता है। इससे बचिएगा और जितना बचिएगा उतना अच्छा रहेगा। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या फिर रिश्ता। ये कौन कह रहा है पता है? अब्दुल कलाम जी कहे रहे, जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। आपको तय करना है क्या करे कहा है। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। ये उन वजहों को पकड़ पकड़ के लाता है जो बेवजह है। खुपरिया में कोनो बात हो गई होगी छोटी मोटी, लेकिन बार बार वही याद कर करके आपका सामने समस्या बना लेता है। वजन तो सिर्फ हमारी इच्छाओं का है, बाकी जिंदगी बिल्कुल हल्की फुल्की है। इच्छाओं को कम कर दीजिए, जिंदगी वैसे ही हल्की है। इच्छा ही तो इंसान को अच्छा नहीं बनने देता, और ही चाहिए और ही चाहिए और ही चाहिए। अरे चुपचाप बैठ जाइए ना, भगवान जौन दिया उसमें संतुष्ट रहिए, अपने आप जीवन में शांति रहेगी। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा आसान कोई काम नहीं, स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, देखिएगा भाई अपने आप आपकी जिंदगी में हर कुछ वैसा ही घटित होगा जैसे आप चाहते हैं। लेकिन उसके लिए फिर जो कहा कि इन बातों को जरूर याद रखिएगा। छोटी छोटी बात कहते हैं लेकिन आप सब तो समझते हैं ना इन छोटी बातों में कितना गहरा अर्थ होता है। और जो इस बात को समझ ले तो उसने सब कुछ समझ लिया, और जिसने सब कुछ समझ लिया तो अपने आप जीवन उसका तो बेहतर हुई भी करेगा ना। और यही तो पर्व पंडितान आप सबके लिए दुआएं करती है। तो देखिए भाई, जब भी कोई समस्या आए तो ये तीन काम करें। समस्या का सामना करें, उससे लड़ो और समस्या को समाप्त करो। आत्मशक्ति पर विश्वास करें और आप ये कर सकते हैं। मन कमजोर तो परिस्थिति समस्या, मन स्थिर तो परिस्थिति चुनौती, और मन मजबूत तो परिस्थिति अवसर। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोनो बाहर से खूबसूरत आता है तो कोई भीतर से। इस तरह मुस्कुराने की आदत डालिए कि परिस्थिति भी आपको परेशान कर करके थक जाए, और जाते जाते जिंदगी भी मुस्कुरा कर बोले आपसे मिलकर खुशी हुई, है कि नहीं? यदि फूल को भगवान के गले की माला बनना है तो उसे अपने पेट में सुई की नोक से छेद करवाना ही पड़ेगा। सोने के टुकड़े को यदि भगवान के गले का हार बनना है तो उसे भट्टी में गलना ही पड़ेगा। और चंदन को भगवान के माथे पर लगना है तो उसे पत्थर पर घिसना ही पड़ेगा। उही प्रकार यदि मनुष्य को धर्म पर चलना है तो उसे कठिनाइयां सहते हुए त्याग के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। अर्थात हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना या सहन भी करना पड़ेगा। ईश्वर को पाना चाहते

0: खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। अच्छे जीवन का आकलन ना ही अंग्रेजी बोलने से, ना ही अच्छे कपड़े पहनने से और ना ही ठाट बाट वाली जीवन शैली से होता है, बल्कि अच्छे जीवन का आकलन तो ये है कि कितने लोगों के चेहरे खिलते हैं जब वो आपका नाम सुनते हैं। तो देखिए, छोटी छोटी बात है लेकिन ही जीवन को हमारे श्रेष्ठ बनाती है। त्याग और नाश, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्वयं की इच्छा से किसी वस्तु अथवा पदार्थ को छोड़ना त्याग, तथा स्वयं की इच्छा ना होते हुए किसी वस्तु अथवा पदार्थ का छूट जाना नाश कहलाता है। प्रकृति का अपना एक शाश्वत नियम है और वो यही कि मान पद प्रतिष्ठा वैभव कुछ भी और कहीं भी यहाँ शाश्वत नहीं रहता। ये दुनिया प्रकृति का नियम है, हर चीज परिवर्तन होती है। सूर्य सुबह अपने पूर्ण प्रकाश के साथ उदय होता है और शाम होते होते उसका प्रकाश क्षीण होने लगता है, और दिन में प्रचंड प्रकाश फैलाने वाला वही सूर्य अस्तांचल में कहीं अपनी रश्मियों को छुपा लेता है। रात्रि को चंद्रमा अपनी शीतलता बिखेरता है, मगर वो भी सुबह होते होते कहीं प्रकृति के उस विराट आंचल में छुप सा जाता है, सदा कुछ भी नहीं रहने वाला। इसलिए बांटना सीखिए, चाहे प्रेम हो, सम्मान हो, समय हो, खुशी हो, धन हो अथवा कोई अन्य वस्तु। जिन फलों को वृक्ष मारा बांटा नहीं जाता, जिन फलों को वृक्ष द्वारा बांटा नहीं जाता, एक समय उन फलों में अपने आप सड़न आने लगती है और उस सड़कर वृक्ष को भी दुर्गंध युक्त कर देते हैं। यही प्रकार समय आने पर प्रकृति द्वारा सब कुछ स्वतः ले लिया जाएगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप बांटकर अपने यश और कीर्ति की सुगंधि को बिखेरना चाहते हैं या संभाल कर संग्रह और आसक्ति की दुर्गंध को रखना चाहता है। आपकी अपनी इच्छा है, आप जैसा चाहे। दो हाथ से हम 10 लोगों को भी नहीं हरा सकते, परंतु दो हाथ जोड़कर करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। शांति एवं स्थिर दिमाग जीवन की प्रत्येक लड़ाई का ब्रह्मास्त्र है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है दिल। अगर उस आप नहीं तो चमकता चेहरा कौन काम का। होड़ करनी है तो संस्कारों की करो। फैशन का कहा है, वो तो आती है जाती है। जो स्नेह हमें दूसरों से मिलता है वो हमारे चरित्र का ही एक तोहफा है। ज्ञान का मनन, चिंतन और ईश्वरीय सेवाएं ही हमारे पुण्य का खाता बढ़ाती हैं, जिससे संस्कारों में परिवर्तन के लिए हमें हिम्मत और उल्लास मिल जाता है और परिवर्तन संभव हो जाता है। कहते हैं कि जीवन में जो कुछ करो, जितना मर्जी धन खर्च करो, सबसे सहयोग लो वो, पर जीवन से मुसीबतें तब तक समाप्त नहीं होती जब तक हमारा स्वयं का अंदर व्यवस्थित नहीं है। काहे कि ध्यान रहे कि हमारे अंदर का अस्त व्यस्त होना ही इस जीवन की हर समस्या का मूल कारण है। इसलिए हमें सर्वप्रथम स्वयं को ही भीतर से व्यवस्थित करने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। पीड़ा सारी मिट गई, लिया जो प्रभु का नाम, गजब कृपा है आपकी परम परमेश्वर भगवान। हर नई सुबह नए जीवन के समान होती है, इसलिए बच्चा बनकर हर सुबह का मजा ले। दिन में एक ईमानदार नौजवान की तरह पूरी मेहनत से काम करें और सायंकाल में एक समझदार बुजुर्ग और शांत चित संत की भांति पूरे दिन में किए कर्मों का मनन करें। कहते हैं कि जन्म के समय मात्र सांसें होती हैं, नाम नहीं, और मृत्यु के समय केवल नाम होता है, सांसें नहीं। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ध्यान रहे कि अपनी सोच को ऊंचा करने मात्र से ही हर बड़ी चीज छोटी दिखने लग जाती है। काहे कि ऊंचाई से हर चीज छोटी लगती है। तो आइए हम अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाए, यही बात पर चलिए गीत सुन लेते, फिर और समय बचा तो बतियाएंगे।
1: है धर्म का मूल, पाप मूल है अभिमान। तुलसी दे आमत सोड़िए रे, जब लग घट में प्राण।

कितना मजबूत होगा वो इंसान जो अंदर से टूटकर भी दुनिया के सामने हंसता है ना बात। फिर से कहते हैं, मेहनत उसकी लाठी है, मजबूत उसकी काठी है। मेहनत उसकी लाठी है, मजबूती उसकी काठी है, विकास की वो नींव है, उसका जीवन सीख है। जिनकी गैर मौजूदगी में हर मंजिल दूर है, जो आपके ख्वाबों को पूरा करता वो मजदूर है। क्यों ना आज से हम भी कड़ी मेहनत कर अपने और दूसरों के ख्वाबों को पूरा करें। भाषा मानव का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। त्याग और प्रेम के पथ पर चलकर मूल न कोई हारी, हिम्मत से पतवार संभालो, फिर कैसे रहेगा दूर किनारा। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसा, हम रोए ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। कहते हैं कि हर कोशिश में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन ये भी सत्य है कि हर सफलता का कारण भी निर्विघ्न कोशिश ही होती है। ध्यान रहे कि दूसरों पर भरोसा करते समय होशियार रहिएगा, क्योंकि देखने में फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसको महत्व आप दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोनो महत्व ही ना हो। कैसा है जिंदगी का तेरा ये फलसफा, एक इंसान के इस दुनिया में आने की खबर तो सबको पहले से ही हो जाती है, मगर जाने की खबर उसके चले जाने के बाद ही पता चलती है। इसलिए धन्यवाद करें उस सृष्टि रूपी रचनाकार परमात्मा का, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना ऐसे अद्भुत तरीके से की है कि हर इंसान अंतिम समय तक जीने की राह पर अग्रसर रहता है। कहते हैं कि एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले ही आ जाती है, पर जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं आती। ध्यान रहे कि बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है ये जिंदगी भी पता नहीं अगले ही पल कौन सा पैगाम ले आए। इसलिए हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। चिंता संत के जीवन में भी होती है और चिंता संसारी के जीवन में भी होती है, मगर दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क भी होता है, और वो ये कि संत परमार्थ के लिए चिंतित रहता है और संसारी स्वार्थ के लिए। संसारी स्वयं के लिए चिंतित रहता है तो संत समष्टि के लिए चिंतित रहता है। संत और संसारी के बीच का जो भेद होता है वो कर्मगत नहीं अपितु भावगत होता है। दोनों में बाह्य स्थिति का नहीं अपितु अंतः स्थिति का भेद होता है। संसारी भी क्रोध करता है और संत भी क्रोध करता है। संसारी लोभ करता है और संत में भी लोभ देखने को मिल जाता है। संसारी भी अर्जन करता है और संत भी अर्जन करता है, और तो और संसारी अगर संग्रह करता है तो संत भी संग्रह करता है, मगर दोनों में क्रिया भेद शून्य होने के बावजूद भी भावों में जमीन और आसमान जैसा अंतर निहित होता है। प्रकृति का नियम है कि खाना जो हम खाते हैं एकाद दिन के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। पानी जो हम पीते हैं 2-4 घंटे के अंदर शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। हवा जो हम सांस लेते हैं कुछ सेकंड में ही बाहर वापस निकल जानी चाहिए, वरना हम मर ही जाएंगे। लेकिन कुछ नकारात्मक बातें जैसे कि घृणा, गुस्सा, ईर्ष्या आदि आदि, जिनको हम अपने अंदर दिनों, हफ्तों, महीने और सालों तक रखे रहते हैं, यदि इन नकारात्मक विचारों को समय समय पर अपने अंदर से नहीं निकालेंगे एक दिन निश्चित ही हम मानसिक रोगी बन जाएंगे। मनमानियां तो बचपन में होती थी जनाब, अब तो हर बात पर मन को ही मारना पड़ता है कि नहीं। अब अंत में यही कहेंगे, मीठा झूठ बोलने से लाख गुना बेहतर है कि कड़वा सच बोल दिया जाए। ऐसा करने पर हमें सच्चे दुश्मन भले ही मिल जाएंगे, परंतु झूठे दोस्तों से मुक्ति मिल जाएगी। पुरानी कहावत है कि जाहिल के साथ तख्त पर बैठने से बेहतर है किसी ज्ञानी के साथ फर्श पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि क्रोध, पछतावे,
चिंता और कुरन में अपना समय बर्बाद ना करें। ये जीवन दुखी होने के लिए बहुत छोटा है, परंतु यदि खुश और मस्त रहें तो इस जीवन में सुख भी अपार मिलते हैं। ये कड़वा सत्य है लेकिन सही भी है। जीवन में आजमा कर देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जीवन की यात्रा आरामदायक हो तो अपेक्षाओं के सामान को कम करें, संतुष्ट मनी बन संतुष्टता का अनुभव करें। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं न ही उधार लिए जा सकते हैं, इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दे जो आपको महत्व देते हैं। इतनी इस बात याद रख लीजिए, बाकी तो सब कुछ ठीक है। रिश्ता चाहे कोई हो, एक बात पक्की है, जिनसे हम आशा करते हैं वही जिंदगी का तमाशा करते हैं। और जब ये बात समझ आ जाएगी तो आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई चाहकर भी आपको आपके लक्ष्य से दूर ना कर पाए। दवा सिर्फ दवा की बोतलों और गोलियों में नहीं होती। व्यायाम दवा है, सुबह की सैर दवा है, उपवास दवा है, चिकित्सा दवा है, परिवार के साथ भोजन करना दवा है, हंसी और हास्य भी दवा है, गहरी नींद भी एक दवा है, एक दोस्त का साथ मिल जाना दवा है, हमेशा खुश रहना ही दवा है, सकारात्मकता ही दवा है, नियमित योग करना भी दवा है, कुछ मामलों में मौन और एकांत दवा है, और एक अच्छा दोस्त एक अचूक दवा की दुकान है। चलिए ही के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। चल रहा

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल। सहयोग की ईंटों से सफलता बनाएंगे, सफलता बनाएंगे। पूरा करेंगे जो हुआ शुरू।

0: राम राम भी रतन राम राम।
1: अरे राम राम भाई कंचन आओ राम राम
0: भाई। और भाई घना दिना में मिला आपा
1: है? और एक घना दिन वे गया कंचन मने तो थारी याद आ रही एक गर्मी अतरी लाग रही आज लाइटा देखे तो बंद।
0: हाँ जा रही है रा रही है जा रही है रा रही है आंख मिचोनी चल रही है।
1: बिल्कुल सही क्यों कंचन लाइटा बंद है और मैं देखे हो भाई कहीं नहीं तो गीत तो सुनो गर्मी लाग रही और जेठ महीना को गीत चाल रहे हो।
0: जेठ महीना को गीत चल रहे हो भाई जेठ भी देख कतरी गर्मी पड़े।
1: अरे भाई वो कहे सियाला में ठंड नहीं लागे तो सियालो कसो
0: सियालो कसो
1: और उनाड़ा में गर्मी नहीं लागे तो उनाड़ो कसो। तो उनाड़ा में तो गर्मी लागे भले आप गर्मी गर्मी करता जावा खेर सियाला की बात ही अलग है कंचन। सियाला में तो आप ठंड ठंड करता ही कतरो ही तो काम कर ला।
0: हाँ और सुहा भी जावे।
1: हाँ वो कहे कतरो ही खाला कतरो ही पेर ला कतरो ही ओढ़ लान कतरो ही काम कर ला
0: सब चीज जच है।
1: हाँ सब चीज जच है पर उनाड़ा में तो भाई कई करो अब कपड़ा तो पहनना ही पड़े कहीं आप पहनना में सियाला में आप दो दो तीन तीन स्वेटर पहन ला साल ओढ़ला काम हो जावे। पर उनाड़ा में तो देखो पतला पतला कॉटन का कपड़ा पहना तो ही गर्मी पसीना और टपक तो ही रहे।
0: जितना घिसा और जितना पुराना हुए और जितना हड़को हुए सस्तो हुए वो ही जमे गर्मी में तो।
1: हाँ और पुराना देखा आपा नया कपड़ा भी नहीं पहरा पर आपा दो ही सहेलियां मिली नहीं ना आपा आपस में बात करा अपना श्रोता बंधु तो लड़ ही गए बस कंचन और रतन का ही मल जावे माने भूल जावे।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं
1: तो अपना सगला श्रोता बंधु रो स्वागत करा हा गावरी बातें कार्यक्रम में आप सुन रहे रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM
1: सुनता रहो
0: मुस्कुराता रहो।
1: तो देख भाई कंचन नव तपो बनुस खत्म हुए 25 मई नव तपो लाग्यो तो 3 तारीख ने खत्म हुआ।
0: सही बात
1: मतलब नव तपो यानी कि अति गर्मी
0: अति गर्मी
1: अति गर्मी जो आपनो सहनी नहीं वे
0: सहनी नहीं हुआ
1: तो अतरी गर्मी तो एकदम तो ठीक नहीं वह एकदम तो ठंडक नहीं हो वे
0: एकदम ठंडक नहीं हुआ। और देख भी नव तपो को भी काई महिमा है कतरो बाको वर्णन करा आपा वतरो ही कम है।
1: सही बात है
0: नव तपो नहीं हो तो काई है कि संस्कृत में मैंने एक श्लोक याद आ रहे है कि नव तपो नहीं होता तो उंदरा ही उंदरा हो जाता।
1: अच्छा
0: हाँ क्योंकि भाई नव तपा का ये है कि यान का जो बैक्टीरिया है यान का जो छोटा मोटा जीव जंतु है जो पर्यावरण की दृष्टि से चोखा कोनी वह सबने खत्म कर दे वह।
1: हाँ हाँ बिल्कुल
0: है? जो अच्छा नहीं है तो भाई वाने खत्म कर दे वह। और यान भी मान ले कि भी नव तपा नहीं हुए तो मैंने तो कही है बैठी बैठी ने घड़ा ही एक दार्शनिक भी विचार आई जावे मारे दिमाग में।
1: हाँ।
0: मैं सोचू कि यहाँ बात तो अपने जीवन में आई समस्या और परिस्थिति पे भी तो लागू होवे कि अगर परिस्थिति और समस्या नहीं आवे तो कही है कि खुरापात घनी सूझ जावे कही परिस्थिति में आप वापस सावधान हो जावे।
1: सही बात है बिल्कुल।
0: तो
1: मौसम मौसम को काम तो करे ही है
0: काम तो कर रही
1: है। अनिवास मैं तो क्यों जो भी मौसम आवे भी को स्वागत करो
0: स्वागत करो। सही बात
1: और घबराना नहीं हिम्मत तो काम लेना।
0: हाँ फसल नहीं पके नव तपा नहीं हुआ तो
1: हाँ
0: फसल पकवा की दृष्टि से भी बहुत महत्व।
1: सियाला में ठंड पड़नी जरूरी है नहीं तो गेहूं नहीं पाके
0: गेहूं नहीं पाके
1: तो उनाड़ा में गर्मी लागो जरूरी है कहीं तो फसल पाकती भाई
0: वही तो भाई प्रकृति में जो तरह तरह का फूल है बाकी ग्रोथ नहीं हो तो नव तपा को भी आप ही एक महिमा तो है भाई।
1: सही बात है। थोड़क मने यू याद आयो नो तपा देखो भयंकर गर्मी तो लागे ही है।
0: हाँ।
1: पर ये रोहिणी नक्षत्र का दौरान या रचना जेठ की आग उगले।
0: हाँ। सही बात है।
1: हाँ।
0: जेठ तो यान तो पूरा गर्मी महीनो है पण कही है कि ए नव तपा यानी विशेष दिन हुआ।
1: हाँ हाँ
0: हाँ
1: बिल्कुल जिमे भीषण गर्मी लागे
0: भीषण गर्मी लागे। हाँ। और बार निकड़नो भी आपनो मुश्किल हो जावे क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जावे।
1: सही है
0: क्योंकि सीधी सीधी जो है सूर्य की किरणा पड़े तो भाई स्किन डिजीज और कई तरह की दिमागी बीमारियां स्ट्रेस बढ़ जावे
1: कतरी समस्या हो जावे अगर आप ध्यान नहीं रखा तो हेजा की बीमारियां हो जावे।
0: हाँ।
1: और जैसे सियाला में घना ठंड लागे तो कतरा जानवर खत्म हो जावे इंसान भी खत्म हो जावे जाके रेवा को मकान नहीं होवे तो गर्मी में भी यही हाल है।
0: गर्मी में भी यही हाल है
1: पर यूं कहवे भाई 12-4 बजे तक तो वेवती कोशिश आप बचन रहो सूर्य की किरणाओं कि भाई घर में या ठंडक में बैठन ही काम करो
0: बस बस
1: पचे 4 बजे बाद थोड़े थोड़े 4 बजे बाद भी एकदम तो कम नहीं हुए पर थोड़े हल्के हल्के कम हो जावे गर्मी तो एक समय जरूरी है तो 4 बजे बाद निकलो। अरे मने याद आवे एक बार दादी सा हा जो पहले तो कटे इतनी गर्मी लागती तो ही कहता अरे भर दोपहर में कटे जा रही है, भर दोपहर में आराम करो घर में
0: भाई। और आपा होता टाबर
1: हाँ,
0: और तो कटे टिकोनो बहुत मुश्किल होते
1: टिकता ही नहीं आपा, एक दूसरा का अटे छुट्टी वेती नहीं, कहते तुम्हारा अटे मैं थारा अटा जाती
0: थारा अटा जाऊं। और मने भी याद आ रही है मारे नाना सा कही हो तो कि पहले तो आपा घर क्या होता एक दो कमरा पाछे फिर आगे यान, और जो बारे बार को बैठक होती वो नाना जी की।
1: हाँ।
0: नाना जी बीच दरवाजे के माचो डाल लेता।
1: अरे कंचन यह बात तो तुमने वास्तव में याद दिला दीदी कि पहले का बड़ा बुजुर्ग कई हुए था कहते वे पोल के बरांडा में वटे इस वहां को आसन बेतो वहां का तख्तो वहां को माचो वटी ढुलोड़ो हो तो कौन आ रहा कौन जा रहा हैंग ठापड़ जाती वाने
0: ठापड़ जाती। और मैं कही है कि गर्मी की छुट्टियां ही होती है और सब 15-20 टावर में सब सगड़ा इकट्ठा हो, नाना जी तो सोचता कि भी सब चलो टावर अंदर है और मैं बीच में माचो डाल रखी हूँ तो कोई भी टावर बाहर नहीं जा सी, पर नीचे रेंगन रेंगे
1: याद आवे मने बिल्कुल असे चुप क्यों जाता कर ठाई नहीं पड़वा देता
0: काई बचपन वो बोलो है
1: वो कहे मैं बड़ा बुजुर्ग भले कतरो भी ध्यान रखे टाबर भी टाबर गिरी तो करे ही करे
0: टाबर गिरी तो करे ही करे
1: वो कहे बच्चा किन्ने कहे एक जगह पे वे अगर स्थिर वेन बैठ जावे तो बच्चा कहवा भी नहीं
0: बस बस
1: चंचली होवे बच्चा तो
0: फिर थोड़ी दूरी आम का पेड़ होता बठे चढ़नो और जामन तोड़ना सेतु तोड़ना ये सब में लग गया रहता बस
1: सही है। पहला तो देखो डाला आप खींच खींचन डालिया के लटक जाता केरी तोड़वा का वास्ते डालिया के लटक लटक दूसरा हाथ कोशिश करता केरी अपना टूट जावे हाथ पहुंच जावे
0: सही बात
1: पड़ता ही हा डरता ही हा घर में आन कहता ही नहीं
0: हाँ पहले देखो आजकल तो थोड़ो से गिरा है कि फ्रैक्चर हो जावे
1: हाँ
0: पहले तो अच्छो खान पान हो अच्छी एक्सरसाइज होती शरीर की मजबूत बन ही जाता
1: मजबूत बनता। देखो पहले को कही है खान पान आज तो फल फ्रूट ड्राई फ्रूट घना ही मिल रहा जो महंगाई बढ़ रही है जो लोगा के खावा की कमी नहीं पहले कटे हाँ ड्राई फ्रूट और फल फ्रूट पर जो खाता शुद्ध खाता
0: हाँ सात्विक होता
1: हाँ शुद्ध होता वहां में कोई केमिकल नहीं कहीं नहीं और छोरा छोरी तो हाँ और कटी पग में चप्पल पेरी नहीं पेरी दौड़ता रहता तो एक्यूप्रेशर तो वैसा नहीं
0: होता ब्लड सर्कुलेशन या नहीं होता तो वो सब कही है अरे जठे रहनो वो भी गोबर से लिपेड़ो घर होता ठंडा
1: हाँ, वो ठंडा करे
0: इम्यूनिटी भी बढ़ाता।

0: जब नंगे पैर आप चल रहे हैं तो कहिए कि कई बार इम्यूनिटी भी बढ़े।
1: हाँ बिल्कुल, आज भी आपा देखा पहाड़ी क्षेत्र में बच्चा बच्ची जो रहता है वे बिना चप्पल चलता हुए यदि आपने कतरो आश्चर्य होवे को हो या पहाड़ी क्षेत्र में कसान चल रहा
0: कसान चल रहा हाँ।
1: जबकि आपा तो बिल्कुल जूता वगैरह चाल ही नहीं सका। अपनो बचपन भी याद आवे आपने कि बचपन में आपने भी चप्पल का ठिकाना नहीं बता, घर में चिल्लाता रहता रे चप्पला पेरो चप्पला पेरो और आपा चप्पल वगैरह ही भाग जाता।
0: वे भी समय आ एक अलग ही टाइप का।
1: बिल्कुल, आज आपा भी अपना टाबर ने लड़ा अरे चप्पल तो पेरो, पर कदी कदी अपनो बचपन याद आवे तो मने लागे कि नहीं नहीं थोड़ा रेवा दो बिना चप्पल भी चालवा दो।
0: सही बात है, सही
1: हर तरह को अनुभव जरूरी है,
0: हर तरह को अनुभव जरूरी है और प्रकृति से जुड़ा ना तो प्रकृति भी आपने सपोर्ट करे।
1: बिल्कुल, आज आपने माउंट आबू की बात करा, ठीक है सियाड़ा में कतरी ठंड पड़े ऊपर है पर तो रोज रेवा वाला तो रेवे ही है
0: चार हाँ। चार बजे उठन कई जना तपस्या भी करे।
1: हाँ तपस्या ही करे, काम भी करे। और अत्र पेरे उड़े भी कोनी
0: हाँ।
1: तो वाने देखन मने आश्चर्य लागे याने ठंड नहीं लागे
0: हाँ। तो वही है की आदत हो जावे,
1: आदत होगी और आपा रेवा नीचे
0: तो देख माउंट में और आबू रोड में कोई बहुत दूरी तो है कोनी
1: हाँ।
0: पर जब माउंट आबू वाला आबू रोड में आवे नी मारे तो कई रिश्तेदार है तो वाने कहिए कि आप आते ही घबराहट हो जाओ
1: हाँ, बेचैनी लागे अरे बाप रे गर्मी में आ गया
0: बेचैनी हो जावे
1: तो वे आश्चर्य करे ये गर्मी में क्या रहे, आपा ने आश्चर्य ये ठंड में क्या रहे

0: है?
1: अरे तेको नहीं पता क्या, इसमें पता है लोग धुए में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुए में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर का माय तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

0: सखी चाला यो मौसम है सुहावनो।
1: वाह भाई वाह, बहुत अच्छो गीत लाग्यो मने। ओ मौसम है सुहावनो, और बस गर्मी में तो नदी पे नावा की, चाहे तू मने ले जा या नहीं ले जा वो बात दूसरी है, पर बात भी मने चौकी लागी।
0: सही बात है, बिल्कुल नदी में नहाऊं एक बार तो गर्मी खत्म हो जावे।
1: खत्म हो ही जावे।
0: तो अपना सगला श्रोता बंधुरो पाछो स्वागत करा है गावरी बातें कार्यक्रम में। आप सुन रहे रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM,
0: सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो।
0: तो कंचन देखो, एक तो जेठ महीनो उपरु पुरुषोत्तम महीनो चाल रहो, जेने आप अधक मास भी कहवा। तो अधक मास को तो एक अपनो ही महत्व है।
1: बिल्कुल,
0: पूजा पाठ भक्ति सब बढ़ जावे,
1: सब बढ़ जावे। तो और देख अपना समय में पुराना लोग तो और भी ज्यादा करता।
0: हाँ है? बिल्कुल, और आज की नई जनरेशन भी गणो कर रही है कंचन।
1: अच्छा
0: जी, क्या जी क्या पे तू मंदिर में चालन देख। ओहो, मंदिर में तो भीड़ ही भीड़, आखो महीनो हो गयो, यो एंड आ रहे हो अभी तो।
1: अच्छा
0: हाँ, ये तो पांचवा दिन चल रहा है अधक मास का, 8-10 दिन और रहा बस।
1: 8-10 दिन
0: हाँ, पुष्कर जान देख तू, द्वारका जी में जान देख तू, तीर्थ स्थान में नदी जटे है बटे जान देख तू, भक्ता की भीड़ है।
1: भीड़
0: और अपना आबू सेहरा माई ने कही जटे मंदिर बनियोड़ा है बटे भी भक्त लोग रोज जावे।
1: बिल्कुल,
0: भले यूं जावे कि नहीं जावे, पर अधक मास में रोज जाई, घंटों घंटों सेवा पूजा करी, जल चढ़ाई महादेव जी के। हाँ। और खूब भक्ति करी। हाँ। तो यो एक पुरुषोत्तम महीनो भी वही गजब ही है। यू उतरी गर्मी है लेकिन लोग बाग गर्मी ने भी भूल गया।
1: हाँ देखो भी लगन लाग जावे, नहीं
0: लगन लाग
1: जाए, वे सब चीजा साइड की चीजा।
0: बिल्कुल,
1: भक्ति में भी एक रस है।
0: हाँ।
1: वो आनंद जब मिल जावे, झरझर करके पानी बहवे, तो अपनी गर्मी स्वतः ही
0: गायब हो जावे। अब देख कंचन, मारे कालीज फोन आयो कि भैया अधक मास चल रहे हो, जो चुंदड़ी मनोरथ कर रहा।
1: अच्छा।
0: तो आप क्या आनो है? मैंने कहा चुंदड़ी मनोरथ में कई करो या बता दो मने। तो
1: सही है।
0: तो बोले कि देखो पुरुषोत्तम महीनो की दो वहाँ तो 13 जोड़ा जिमा वहाँ 13 जोड़ा, तो 7 जोड़िया महलन एक लारे काम कर रही।
1: अच्छा।
0: तो 100 जोड़ा जिमा रे।
1: हाँ।
0: 2-3 जैसे बेन बेटिया ने नी टाड़े पे एक लुम्बिया को भी अलग करे असान करन 100 जोड़ा जिमा रे। तो पुरुष लोगा ने तो नारियल और 101 रुपया दी, और महिलाओं के लिए सबके लिए चुंदड़ी लेना आया। हाँ, और घर की बहन बेटिया ने भी बुलाई, और बाकी घर वाला तो है ही है, घर परिवार वाला तो बाकी 100 जोड़ा 7 जना महलन। हाँ, भेड़ा में। तो मैं क्यों, तो बहुत बढ़िया कर रहे थे कि नहीं आनी मस्त। हाँ। थोड़ा माखो दान पुण्य निकले,
1: बस ज्ञान को बहाना सु आपा सु दान पुण्य हो जाए।
0: हाँ, तो मैं क्यों और कई करो। तो बोले कि अभिषेक करा, हवन करा, और 7 ब्राह्मणा ने भी जिमावा, और वाने भी मतलब यू दक्षिणा देवा, और बाकी तो जोड़ा वाने भी गणया। अब 100 जोड़ा है तो 100 जोड़ा में थोड़ा 7 ब्राह्मण भी गण लीदा। हाँ, बाकी एक जने 13 जोड़ा के वे तो वो तो रिश्तेदारी में पगई भेजा वे।
1: हाँ।
0: पर वे कह रहा है थोड़ा पचे जो माँ का व्यवहार वाला वे वाने जोड़ा में गणा, नहीं तो थोड़ा माँ जी माँ वा आनी वास्ते आओ थाने भी यो ठाट देखनो है। तो भजन कीर्तन सब है। तो या पूनम गी जदि पूनम पे वे किदो हो तो बुलाया।
1: हाँ।
0: तो मैं पूनम पे ही कटे हटे।
1: हाँ।
0: तो आसान भी को महत्म है पुरुषोत्तम महीना को, वसानी दान पुण्य बढ़ जावे। और देख कंचन, अगर कोई जोड़ा जिमा दीदा ठीक है भाई, एक बार हर साल तो नहीं जिमाई। तो एक जनी कह रही मैं तो हर साल थोड़ी ना जिमाऊ, अब गए साल जोड़ा जिमाया, आनी साल में 35 मालपा देऊ तो मंदिर में रखू।
1: हाँ, तो सही है, अपनी अपनी श्रद्धा भावना की। हाँ, मैंने भी याद आ रहा है कि भाई हाँ, जैसे पंडित लोगों ने आपा मटका देता।
0: हाँ।
1: तरबूज दे रहा था, फल फ्रूट है मटका के अंदर डाल।
0: हाँ।
1: तो साथ में साड़ी वगैरह।
0: हाँ।
1: ये सब अपनी अपनी श्रद्धा और भावना के साथ।
0: हाँ, अबे वे जोड़ा जिम्मा रहा। हाँ। सब आप आपकी इच्छा वे जिस कह रहे, कोई मंदिर में पुजारी और पुजारी जी की वाइफ ने वाने साड़ी पहरा दे, पुजारी जी ने कपड़ा दे दे,
1: कपड़ा दे दे।
0: हाँ, और वे क्या भाई मुझे 35 मालपा एक तपेली चढ़ा दे, तपेली में 35 मालपा रख, 101 रुपया रख, मैं तो मंदिर में ये चढ़ा रही
1: हूँ।
0: तो मतलब खूब आपने चीजा जानवा मिले, देखो कई कई कर रहा है।
1: बस बस बस, और भी दान पुण्य का ये भी एक तरीका हो सका।
0: हाँ, ये भी तरीका हो गया। बाकी तो जेठ महीनो है तो कोरा कलश्या जल का भरन तो मंदिर में रखे ही रखे हरे की
1: और
0: एकादशी का दिन विशेष।
1: बस मैं तो ज्ञान कहूँ कि भाई और वो बहुत बड़ा पुण्य है।
0: हाँ ये तो पुण्य है ही है,
1: वो बहुत बड़ा पुण्य है क्योंकि देख भाई गर्मी में तपता आदमी ने काई चाहिए पानी, पक्षी ने काई चाहिए परिंदा।
0: हाँ हाँ तो आजकल पक्षी के लिए परिंदा घना लटकारिया लोग बात हवा कटी झावा को काम पड़ो समाज में। समाज में क्रिकेट को गेम हो ठीक है मैच हो क्रिकेट का मैच सब खेल खेलन जो पब्लिक का कि आजकल तो क्रिकेट को मैच हुए कई भी आपको समाज भेलो हुए खानो पीनो सब बटी वे तो खानो पीनो खादा बात पाचा जो गेट उबाने निकलवा लग गया तो एक एक कुंडो हरेक ने दीदो। हरेक ने एक एक कुंडो
1: एक एक कुंड
0: ताकि
1: याद रवे।
0: हाँ
1: और वो लगावे ही लगावे
0: लगावे ही लगावे क्योंकि
1: कई बार कई हुए कि भाई देख पीसा तो घना हुआ है घर में।
0: हाँ
1: कुण जावे कुण लावे जिसके मन में भावना है मान लो कि तू और मैं हूँ।
0: हाँ
1: आपा घर में बैठा है आपा सोचता ही रह जावा।
0: हाँ और
1: लावणो है लावणो
0: है और समय निकल जावे
1: और समय निकल जावे और यान जब हाथ में ही आ जावे तो भाई कोई शायद ही यान को।
0: हाँ पचे तो लटका भी रियो
1: मन को कि भी नहीं लगा।
0: हाँ पचे तो जैसी व्यवस्था है वनी अनुसार आप आपके रखी जाए और परेवड़ा के पानी देवी जाए।
1: अब देख थारी बात में से मने भी बात याद आ कि आबू रोड के मायने एक व्यापारी है जो 2,000-2,500 टंकिया बनवाई सीमेंट की ऑर्डर देन और जगह जगह जगह पे वे लोगों ने कह दिया दुकान पे जाए जिन्हें भी भाई गाय के वास्ते टंकी चाहिए वो वटे से उठा लो जिन्हें भी गाय की टंकी चाहिए वे वटे से ले लो और बीच में ही मार्केट की रख दी। तो दिक्कत रो पुण्य कमाना।
0: हाँ बिल्कुल आज देखो इंसान तो मुंडो मांगन ले ले वे भूख लागी प्यास लागी पर ये जानवर है जो बेचारा अबोलिया जानवर है अब ये की कापू मांगे
1: बस बस बस
0: तो बहुत अच्छो पुण्य को काम की दो। तो एड़ा भी घना लोग है जो कहीं कहीं पुण्य करता रहे पर कंचन अबे जावा को भी टाइम हो गया है आपने तो भाई यार गर्मी तो लागती रही मौसम मौसम को काम करी पर आपने तो अपनो काम करना ही पड़ी।
1: सही बात।
0: तो भाई चला और आपा मिला अगली बार आवजे भाई राम राम
1: राम राम भाई राम राम।
0: आप सुन रहे रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM
0: सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो।

बाल संसार सुनिए हर शनिवार दोपहर 12:30 पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चे शिक्षक और माता पिता एक साथ जुड़कर सीखें और खेलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बाल संसार की। तो फिर इंतजार किस बात का? हर शनिवार दोपहर 12:30 पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार सुने और अपने परिवार के साथ एक यादगार पल बिताएं। सुनिए, मुस्कुराइए और सीखिए बाल संसार।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज हम लोग बात करेंगे विशेष बाल मन पर, यानी बाल संसार पर। जी हाँ, बच्चों का एक यूनिक संसार होता है और हम सभी भी बच्चों के संसार को देखकर खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, और कभी हम भी इसी तरह थे ये हमें याद करके बेहद सुकून महसूस होता है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है बाल संसार, इस कार्यक्रम के हमारे विशेष मेहमान जिन्होंने इस कार्यक्रम की कल्पना की है, अजय शुक्ला जी, एजुकेशनिस्ट शिक्षाविद हमारे साथ हैं और काफ़ी किताबें भी लिखे हैं और लोगों को जो है अपने मन की संवेदनाओं को समझने में मदद करते हैं। तो आज उनका मन हुआ कि हम बाल मन के बारे में समझते हैं, ताकि शिक्षाविद होने के नाते बच्चों के साथ जुड़कर, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूली एजुकेशन उनको मिल रहा है, चाहे पहली क्लास में हो, दूसरी क्लास में हो, या इवन आजकल तो किंडर केजी है ना, ये सारी चीज़ें भी चलती हैं। तो बच्चों को जो है शिक्षित करने के लिए, जैसे ही पैदा होता है बच्चा सीखना शुरू कर देता है, हम सिखाना शुरू कर देते हैं और उसके हर एक बदलाव को हम एंजॉय करते हैं और खुशी फील करते हैं। तो आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए अजय जी से मैं स्वागत करना चाहूँगा। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय भाई जी।
0: कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल कुशल मंगल, आनंद पूर्वक हूँ।
0: बाल संसार इस प्रोग्राम में आप बच्चों के मन के बारे में बात करने वाले हैं, तो ऐसा क्यों आपने सोचा, बाल मनोविज्ञान के बारे में आप क्यों सोच रहे हैं? बड़ों का मनोविज्ञान भी तो सोचना पड़ेगा आपको।
1: बहुत अच्छी विषय वस्तु है, और चूंकि आपसे कई बार विभिन्न विषयों पर चर्चा होती रहती है और मानवीय संवेदनाओं को लेके आपकी मनस्थिति काफ़ी संजीदगी भरी होती है, संचेतना से युक्त होती है, चिंतनशील होती है, तो ये सब बातें भी कई बार एक अच्छे वातावरण को जन्म देती हैं। और जैसा भी आपने कहा भी कि क्यों हम बाल मन की ही शुरुआत करना चाहते हैं, क्यों नहीं हम बड़ों के ऊपर बात करते हैं, तो देखिए बड़ों के साथ में एक मैच्योरिटी वाला पॉइंट होता है भाई जी, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बड़े तो अपने समाधान के लिए थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके समाधान की स्थिति में चले जाते हैं, लेकिन बच्चे होते हैं वो हेजिटेट करते हैं, थोड़ा सा उनको संकोच होता है, और जो इनिशिएटिव पावर होती है वो उतनी नहीं होने के कारण वो कई बार अपने प्रश्नों के साथ में मन महसूस के रह जाते हैं। और मनोविज्ञान ये कहता है कि केवल देखने में या ऑब्जर्वेशन करने में या परीक्षण करने में हमको लगता है कि हम बाल मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, जबकि एक सामान्य मनुष्य को हम अगर

0: संपूर्ण उनकी परिकल्पना को देखने का प्रयास करें तो एक सामान्य इंसान के अंदर बाल मन हमेशा मौजूद रहता है। वो मैच्योरिटी के लेवल पर या ईगो स्टेट के लेवल पर हम देखें तो चाइल्ड ईगो हो सकता है, एडल्ट ईगो हो सकता है। तो ये चाइल्ड ईगो और एडल्ट ईगो दोनों ही मिलके जीवन को गतिशील करने का प्रयास करते हैं, और ऐसे में हम केवल बाल मन की बात नहीं कर रहे, बल्कि बाल मन के माध्यम से बड़ों के अंदर भी खुशियों को समेटने का एक माध्यम हम देने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम कहें कि बच्चे अगर प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं या सुबह सुबह बड़े अगर घूमने जा रहे हैं और उस समय यूनिफॉर्म में बच्चों को जब देखते हैं वो और उनकी खुशी को देखते हैं, स्कूल चलने के उनके जो एक आनंद के परिवेश को देखते हैं, तो खुश होते हैं कि काश ये हमारा जीवन होता और हमारा था भी पहले जीवन। जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताया, और आशा करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस पर हम बात कर रहे हैं बाल संसार के बारे में, बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में बातें करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जितना हम बच्चों के मनोविज्ञान को समझेंगे उतना हम अपने मनोविज्ञान को या अपने मन को भी हम ठीक कर सकते हैं या अपने मन को भी बेहद सुंदर और सुखद अनुभूति करा सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि बच्चों का मन जो है, ऐसे कहा जाता है कि भाई बच्चे तो भगवान के रूप है, मासूमियत है उनमें, कोमलता है उनमें, शीतलता है, लेकिन आजकल देखा गया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे उधम भी हो जाते हैं, तो ये इसको कैसे हम लोग समझें?
0: बहुत अच्छी बात आपने कहा, और ये बिल्कुल सही है कि पहले ज़माने में जब आप लोगों के स्वरूप को हम देखते थे या समझते थे तो बड़े बच्चों को बड़े अच्छे ढंग से आकर्षित कर लेते थे, और बच्चों को वो चेष्टा करते थे कि हम गोद में ले लें, उनको स्नेह प्यार दें, और बच्चे बड़े सरल तरीके से उनके पास में आ भी जाते थे। अभी जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है उसमें देखने में आ रहा है कि वो बालमन तो कहीं गुम हो गया है, कुछ मैच्योरिटी जल्दी डेवलप हो गई है, और वो मैच्योरिटी डेवलपमेंट होने के कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक बात कहूँ कि एक प्लेग्राउंड में मैं मूव कर रहा हूँ और एक बच्चा है जो अपने पिता के साथ जाड़े के समय में क्रिकेट खेलने का प्रयास कर रहा है, कई बार वो वॉलीबॉल खेलने में अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो उस स्थिति में ये पूरी प्लेइंग मोड एक साथ नहीं होता है। तो बच्चे ने क्या प्रयास किया कि अपने पिता के पास में वो एक बॉल है और वो गोल करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पिता ने हर बार उस बॉल को रोक लिया। लेकिन पिता ने उस बच्चे की तरफ जब बॉल लेके गया तो उस समय पिता सफल हो गए गोल करने में, तो बच्चे ने एकदम झुंझलाते हुए कहा कि पिताजी ये बॉल है, अब कल से मैं ग्राउंड में नहीं आने वाला हूँ। तो वहां पर उनके अंदर एक विद्रोह पैदा हुआ कि मेरा बच्चा है, इसको मैं तैयार करके लेके आता हूँ, उसको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं? तो बच्चे के पिता से मैंने सहज रूप से कहा, चूंकि मैं इस विषय पर कार्य करता हूँ तो आपसे विनम्र निवेदन है कि एक दो गोल इस बच्चे के द्वारा जब ये बच्चा करने आता है तो हो जाने दें आप। तो कहते हैं कि हो जाने दें, इसका मतलब हमने बोला उस मन को वो नम होना चाहता है, लेकिन हम उस मन को मन पर ही रोक देंगे और उसको बार बार ये बताने की चेष्टा करेंगे कि आपको बहुत मेहनत लगेगी, तो वो हार की फीलिंग करेगा। तो थोड़ा सा उसको जीत का स्वाद आप कराइए और आप देखेंगे कि ये बच्चा फिर अभी तो जाड़े में आ रहा है, आपके साथ 12 महीने ये जुड़ने का प्रयास करेगा। तो इस मन के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील होने की जरूरत है, इसको एकदम डिनाई मत करिए, इसको एकदम दुख मत प्रदान करिए। दुख प्रदान करना आप चाहते नहीं है, अनजाने में हो रहा है आपसे, आपको लगता है कि बच्चा गोल कर रहा है और मैं तो इसको रोक लूंगा, लेकिन वो बच्चा तो शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम ही नहीं है कि उस गोल को रोक पाए आप जब उसको गोल करने जाएंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि आपके और बच्चे के बीच में जो संवाद है, जो स्नेह है, प्यार है, उसमें कठोरता व्याप्त नहीं हो। जी,
1: तो बच्चों के साथ जब भी जुड़े तो कोमलता से, सरलता से जुड़े, ताकि बच्चा जो है अपने आप को अच्छा महसूस करे और वो आगे बढ़ने का जो खुशी है उसको मिले और उस खुशी से वो और आगे बढ़ सकेगा और उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा आपने ये भाव बताया, और मुझे लगता है कि इस तरह के भावनाओं को अगर हम लोग समझें तो जीवन का जो गहरा असर है वो हम लोग एक संवेदनाओं के साथ जुड़ने के लिए हमें कोमलता की ज़रूरत है, मासूमियत की ज़रूरत है, और उस अबोधपन में कुछ सीखने सिखाने का जो भाव है वो शायद आपको बहुत जल्दी जो है महसूस होगा, और आप उसे डांट डपाट के अगर सिखाना शुरू करेंगे हो सकता है कि बच्चा कर भी ले, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी जो सीखने की जो मासूमियत था जी, जो जिज्ञासा थी, वो शायद मर ना जाए। ये बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हम सभी को इस बात का ध्यान रखना है। और आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत की तरफ। आप सुना है रेडियो 107.8 FM पर बाल संसार। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, बच्चे मन के सच्चे हैं। तो आइए इस गीत के साथ ही

0: बच्चे मन के सच्चे हैं, इस तरह की चीजें जो है बच्चों के साथ जुड़ी गई है। तो ये इसकी भावनाएं क्या है, ये कैसे संभव है और उन चीजों को क्यों भगवान के साथ जोड़ा गया?
1: बहुत अच्छी बात आपने कहा, और निश्चित तौर पर जब ये गीत सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा जीवन बचपन के सानिध्य में हो गया है और वही फीलिंग्स, वही भावनाओं के साथ में खेलना, अपने भावों को सहज करना, सरल करना आसान हो जाता है, क्योंकि मन और या अंतर मन से जब ये बात निकलती है कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, तो ये ईश्वर के साथ में जुड़ने का जो भाव है गीत में वो इस बात का संकेत है कि बच्चों के पास में एक सहज मन और सच्चाई से युक्त हुआ क्रिएशन होता है। और वो जब निष्पक्षता के फ्रेमवर्क में होते हैं तो कई बार बड़े भी जब किसी उलझन में हो जाते हैं तो उस स्थिति में बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा बेटा ये बताओ कि इस समस्या का हल क्या है, और बच्चे जब निष्पक्षता से उस बात के समाधान के लिए कोशिश करते हैं तो कई बार हमारा मन खिल उठता है, हमें लगता है कि नहीं, जो आज बात निकल के आई है वो निष्पक्ष है। तो ये जो निष्पक्षता है, सच्चाई से युक्त जो बात है, यही बड़ों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। और बड़ों को जब अपनी इथिकल वैल्यूज़ में स्वयं को कन्वर्ट करना होता है तो फिर उन्हें याद आता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, थी भी, है भी और भविष्य में भी रहेगी। तो वो जो ईमानदारीपूर्ण व्यवहार है या छल कपट रहित जो बिहेवियर है, निस्वार्थता की जो फीलिंग है, उनके प्रति जो अटैचमेंट क्रिएट करता है या हमें लगता है कि उनके साथ जुड़ जाना चाहिए, घुल मिल जाना चाहिए, खेलना चाहिए, या वो कि अगर प्ले मोड में हैं तो हम भले ही बड़े हो गए हैं लेकिन मन से तो एक बार हम उनके साथ में जुड़ ही जाते हैं और ये फील करते हैं कि वाकई में जो बच्चों का संसार है, बच्चों का जीवन है, ये जो नव जीवन है और नव जो कलियां हमारे साथ में खिल रही हैं या बाल हृदय की गहराइयों में समाज की भावी और श्रेष्ठतम कल्पनाएँ छिपी हुई हैं, तो उन्हें भी हम पुनः जीने का प्रयास करते हैं या जीना चाहते हैं। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि कोई बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती है तो उनको समझाने के लिए बच्चों को कई बार माता पिता जो है डांट डपाट करते हैं, नहीं सुनता है तो मार भी देते हैं, तो ऐसे बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करें, आप क्या सोचते हैं?
1: बड़ी अच्छी पहल आप करते हैं कि नहीं प्रश्नों के माध्यम से, और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि आपने एक बात रखी कि कई बच्चे थोड़ा सा शरारती हैं, उधम करते हैं, मेरे सामने भी ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। तो मैं बड़ों से ही कहता हूँ कि अगर इनको हम मैच्योरिटी की चिप इनके अंदर स्थापित कर देते हैं तो ये सदा अगर गंभीर रहते हैं तो जो आपके घर का वातावरण है, जो चहलकदमी है या थोड़ा सा हल्ला बोल होता है तो उसका जब अभाव होगा तो उसको ढूंढने के लिए आप कहाँ जाएंगे? तो जब ये बात मैं के सामने रखता हूं तो कहते हैं नहीं, हमारे बच्चों को आप चंचल ही रहने दो या थोड़ी इनकी शरारत हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा को लेके जब हम काम करेंगे तो उनके सारे विचारों को लेके, भावनाओं को लेके, और ये बताने का प्रयास होगा कि भाई इन इन एक्टिविटीज़ से आपके माता पिता को कष्ट होता है, और जब उनको रियलाइज हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएंगे, और जब चेंज हो जाएंगे और स्कूल से आएंगे और जब वो हल्ला नहीं मचाएंगे, शोरगुल नहीं करेंगे तो आपको लगेगा हमारे बच्चे हमने जन्म दिया और वो सुख उठा नहीं पा रहे हैं। तो एक बार हम इस बात का भी मूल्यांकन करें कि जब हम बच्चे थे तो क्या बिल्कुल बचपन से लेकर और बड़े होने तक हम गंभीर ही रहे, या गंभीरता का आवरण अगर हम ओढ़ के चलते हैं तो उनका बचपन नहीं छिन जाएगा। तो बच्चों को बच्चों की शरारतों के साथ में रहने दें। हाँ, उसमें यह है कि उन्हें यह समझाने का प्रयास करें कि कैसे और किस समय वो किसी बिहेवियर को अंजाम देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, इस पर जरूर उनसे चर्चा हो सकती है और इट मे बी पॉसिबल कि वो थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन भी करें, लेकिन पूरा का पूरा बचपन हम छीन के और उनको एक गंभीर मनुष्य बनाने की अगर चेष्टा करते हैं तो ये हो सकता है कि कुछ मेंटल डिसऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उनको जब इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारे खेल कूद से या हमारे उद्यम से माता पिता या पड़ोसी को बहुत पीड़ा हो रही है तो वो अपने आप में गंभीर होने का प्रयास करेंगे, लेकिन उस समय जो मनोभाव होंगे और उस मनोभाव का जो वेग होगा उसको हम अगर रोकते हैं तो उनके अंदर जो एक आनंद की क्रिया उमड़ रही है, क्योंकि उस समय जब वो खेल कूद रहे हैं तो उस समय उनको नहीं लगता है कि समाज को कोई क्षति पहुंचा रहे हैं। हम ये है कि कुछ वातावरण में परिवर्तन कर सकते हैं, उनको एक ग्राउंड की उपलब्धता करा सकते हैं, उनके साथ खेलने जा सकते हैं, उनको कुछ गेम्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें उनको दिलवा सकते हैं, उनके मन को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी मन स्थिति में जो आनंद या भाव विभोर क्रिएट हो रहा है उसको रोकने का या उसको दमन करने का प्रयास करते हैं तो ये हो सकता है कि वो अपने बचपन से तो पलायन कर जाएं, वो माता पिता के प्रति भी अपना एक नया दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं और अपने आप को उनसे अलग करने की चेष्टा भी कर सकते हैं जी।

0: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है, लेकिन अब ऐसे सिचुएशन में हमें उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए ये इम्पोर्टेंट रह जाता है, और कई बार ये चीज़ें जो है संभव नहीं हो पाता, तो क्या किया जाए, क्या टेक्निक है?
1: बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारे पास में जो विकल्प हैं, क्योंकि दुनिया में कहा गया है कि मैनेजमेंट के सिद्धांत का जब हम अवलोकन करते हैं तो उसमें एक बात निकल के आती है कि हमारे पास में संकल्प क्या क्या हैं और विकल्प क्या क्या हैं। लेकिन इसको अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमको लगता है कि हमारे पास में संकल्प भी श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र होना चाहिए और विकल्प भी हमारे पास में श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र होना चाहिए। तो अगर इन तीन मानदंडों को लेकर हम चलते हैं तो बालमन इस बात को स्वीकार कर लेता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में न्याय किया जा रहा है, क्योंकि न्याय की अपेक्षा तो वो करता है, क्योंकि न्याय को अपने शब्दों में वो देखे तो निष्पक्षता की श्रेणी में रखता है और वो सोचता है कि हमारे माता पिता हमारे प्रति एक संवेदनशील दृष्टिकोण को अपना रहे हैं और जब वो बातचीत करते हैं तो फिर वो तय करता है कि कोई बात नहीं, हम इन एक्टिविटीज़ को करेंगे और इसको हम नहीं करेंगे। अर्थात वो धीरे धीरे उसका मन जो है वो बालमन है और वो बालमन डूज और डोंट डूज, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बीच में एक समानांतर रूप से मूल्यांकन भी करता है और एक विभाजन भी करता है। और धीरे धीरे जब वो मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है तो माता पिता को ये कहना पड़ता है कि बहुत कम समय में बेटा आपने इन सब चीज़ों को मैनेज कर लिया और अब आपकी एक्टिविटीज़ से हमको दुख नहीं होता है बल्कि सुख पहुंचता है। तो बच्चे ने कहा कि आपने हमको एक खुला आसमान दिया, हमें उड़ने के लिए आकाश दिया और हमारे माता पिता आप हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ही हमारे माता पिता होना चाहिए, क्योंकि आपने एक स्पेस दिया हमको अपनी बात रखने का, अपनी भावनाओं को साझा करने का, और अब हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम आपके साथ में घुल मिलके और बड़े आनंदपूर्वक जीवन जी सकते हैं। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें जो है थोड़ा सा संवेदनशील होकर हमें भी समझना पड़ेगा, और कई बार जो है वेट एंड सी वाला काम कर जाता है, थोड़ा सा रुक के अगर आप बच्चों को अलग सा समझाते हैं तब भी हो सकता है कि बातें ठीक हो जाए, और कभी कभी बच्चा जो है एक्स्ट्रा केयर भी चाहता है तो उसको एक्स्ट्रा केयर करके अगर आप उसको अकेले में इस बात का एहसास कराएंगे, जब उसका मन सुनने के काबिल हो, वो शांत हो, रिसीवर के रूप में आपके सामने है, तो मुझे लगता है कि यह ज़्यादा बेटर होगा। बहुत अच्छी बात आपने बताया। तो चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश क्या देना चाहेंगे आखिरी में।
1: हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये जो भी बातचीत हो रही है निश्चित तौर पर बच्चों के लिए हितकारी है और बड़ों को भी उन्हें मैनेज करना या उनके साथ में संबंध दीर्घकालीन तक बनाए रखना बड़ा आसान होगा। और उसके लिए जैसा आपने कहा कि एक्स्ट्रा केयरिंग, जैसे बच्चों को जब पढ़ाई में कमजोरी होती है तो हम लोग एक्स्ट्रा कोचिंग लगाते हैं, तो ऐसे ही स्नेह और प्यार का संबल बढ़ाना होगा। और जो आपने एक शब्द कहा केयरिंग, तो केयरिंग के साथ में हमें अच्छी नर्चरिंग भी करना पड़ेगा, अच्छी पेरेंटिंग भी करना पड़ेगा, और अच्छी नर्चरिंग और पेरेंटिंग जब होगी तो नेचुरली हमारे और उनके बीच में एक लविंग सिचुएशन क्रिएट होगी, स्नेह और प्यार का स्तर हमारा बढ़ता जाएगा और यही हमारे और बच्चों के बीच में संवाद स्थापित करने में, या जिसे हम एडजस्टमेंट कह सकते हैं, और वो भी क्रिएटिव एडजस्टमेंट वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि संवाद के माध्यम से बच्चों और बड़ों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा और वो हमारे जीवन में बाधक नहीं बल्कि साधक होंगे और हमारी पूरी यात्रा में कहीं ना कहीं वो सहभागी बन जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।
0: अजय जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। बच्चों का इस जो मन है उस पर हमने बातें की और बच्चों का मनोविज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस एपिसोड के माध्यम से। आगे और भी एपिसोड्स इस तरह के सीरीज़ में हम लोग सुनेंगे जहां पर बच्चों का पूरा संसार, पूरा जगत को हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सामने रखें और बच्चों की बातों के साथ साथ बच्चों के मनोविज्ञान को ठीक से समझना और उसको सुलझे और सुलझाने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी अपने बच्चों के साथ बड़े मासूमियत के साथ, प्रेम से और पूरे हृदय से आप जुड़े रहें। तो कहा जाता है कि भाई जो चीज़ें आप दिल से करते हैं और बच्चों की एक सेवा समझ के उनको अगर आप करते हैं तो आपको भी उसका जो है तनाव नहीं रहेगा। अगर आप करना ही है, मजबूरी से करते हैं तो तनाव रहता है, तो वो तनाव रहित अगर आप करेंगे तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, बच्चों की सेवा के लिए मुझे भगवान ने इस बच्चे को मेरे पास भेजा है, तो सीधी सीधी आपकी जो मनस्थिति बहुत ही बदल जाएगी और आप अच्छा कर पाएंगे बच्चों के साथ और बच्चे भी आपके साथ बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार कर पाएंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: सभी सुनने वालों को नमस्कार। मेरा नाम शरद त्रिपाठी, आपका होस्ट शरद आपके साथ, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और आपको तो मालूम ही है ना, मन की आंखों से में हम लेकर आते हैं उन व्यक्तियों को जिनके जो शारीरिक चुनौती से संघर्ष कर रहे हैं, परंतु उन्होंने समाज के सामने एक मिसाल कायम की है और लोगों को बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं। और उसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं आज एक बेहतरीन आवाज और बेहतरीन नाम, देश के गुजरात के नर्मदा जिले से। नर्मदा आप जानते हैं ना, फेमस है हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, हमारे देश के महान नेता सरदार पटेल की स्टैच्यू जहां पर स्थापित की गई है। उसके कुछ दूरी पर ही से ही एक गांव है, उस गांव का नाम आइए जानते हैं। और हमारे साथ हैं उस जगह से आने वाले जय पटेल। तो जय, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: जी नमस्ते।
0: जय, आपके गांव का नाम बताइए ना।
1: हाँ, मेरे गांव का नाम है धानपुर।
0: जी धानपुर। जी
1: यस।
0: बहुत बढ़िया। और धानपुर के जय पटेल हमारे साथ हैं। तो जय, आपकी कहानी थोड़ी सी हमें शुरुआत से बताइए। और हमें मालूम चला बातचीत में कि आप विजुअली चैलेंज व्यक्ति हैं और आप स्वयं ही एक वॉलंटियर, एक स्वयं सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। आप एक स्वयं सेवी संस्था के पदाधिकारी भी हैं। तो
1: बिल्कुल।
0: आपकी कहानी थोड़ी शुरुआत से बताइए ना, कैसे ये शुरुआत हुई वॉलंटियरिज्म की।
1: तो सबसे पहले मैं सभी भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मेरा नाम जय पटेल है। मैं गुजरात स्टेट के राजपिपला शहर से बिलोंग करता हूं और मैंने इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 2022 से की है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट एनजीओ है जो डिसेबिलिटी के लिए कार्यरत है, और 2022 से पहले कोई भी डिसेबिलिटी के लिए एनजीओ वर्किंग में नहीं था, जो हमने स्टार्टअप किया है। और इस एनजीओ का प्रेसिडेंट एंड फाउंडर मैं खुद ही हूँ। मेरी एनजीओ का नेम है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन, और मेरे साथ में जुड़े हुए हैं राजपिपला स्टेट के प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल जी। इनका मुझे जहां जहां पे भी सपोर्ट की जरूरत रहती है वहां वहां पे मुझे सपोर्ट मिलता रहता है, और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रही है। और मैंने टोटली एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में किया है, और मैं स्टैंडर्ड 10th में था तब से ये सेवा किए कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। बट मेरी कॉलेज फिनिश होने के बाद मैंने ये लीगली एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किया और एनजीओ को आगे बढ़ा रहा हूँ। और सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि ब्लाइंड लोगों में जो टैलेंट छिपा है वो नॉर्मल लोगों तक पहुंचे और ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल

0: जाने और पहचाने, जिसे ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग रिस्पॉन्स दे।
1: जी, तो जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.9 FM माउंट आबू की वादियों से, और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजपिपला से जय पटेल। मैं आपसे ये पूछ रहा था जय, कि आपने जीवन की शुरुआत के बारे में हमें बताया, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आपको क्या और किस प्रकार की दिव्यांगता है।
0: देखो, मेरे को ब्लाइंडनेस तो बाय बॉर्न ही थी, पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद मुझे राइट आई में थोड़ा थोड़ा विजन था, और लेफ्ट आई तो टोटली ब्लाइंडनेस में ही थी, बाय बॉर्न ही। सो मोतियाबिंद का ऑपरेशन मैंने मध्य प्रदेश के इंदौर में करवाया डॉक्टर हाड़िया के पास। इसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी रोशनी आई, और मैंने एजुकेशन के लिए नॉर्मल लोगों के साथ में मैंने अभ्यास मेरा स्टार्टअप किया, और मैंने टोटली एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में फिनिश किया। मैंने बीए ग्रेजुएशन किया है, और परेशानी तो बहुत आई, लेकिन इसका सामना करते करते मैंने ग्रेजुएशन तक पहुंचा। और अभी मेरी कोशिश ये है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन के माध्यम से मुझे जो प्रॉब्लम एजुकेशन में हुई है वो मेरे भाइयों एवं बहनों को आगे जाके ना हो, इस दिशा में हम लोग कार्य करना चाहते हैं।
1: जी, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है, और आपने नॉर्मल स्कूलिंग की है, और ये तो आपको तो मालूम ही है कि ब्लाइंड व्यक्तियों के क्षेत्र में या डेवलपमेंट के क्षेत्र में इस बारे में बहुत चर्चा होती रहती है कि किस प्रकार से पढ़ाई की जाए या नॉर्मल स्कूलिंग की जाए या इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन किया जाए या ब्लाइंड व्यक्तियों के विशेष स्पेशल स्कूल में पढ़ाई की जाए। इस संबंध में डिबेट बनी हुई है, परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग अब इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और आपने कुछ बात पहले ही कर ली। तो राजपिपला की तस्वीर जो है वो किस प्रकार की है, क्या राजपिपला के चैलेंजेस हैं, या नर्मदा जिले में क्या चैलेंजेस आप देखते हैं एज अ सोशल सेक्टर डेवलपमेंट सेक्टर वॉलंटियर?
0: देखो, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया पड़ता है, सो इधर जो डिसेबल लोग हैं वो बहुत ही गरीबी सीमा के भीतर जीते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमें ये लाभ मिलता है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हमने जब से एनजीओ स्टार्टअप की है 2022 से, तब से लेके आज तक हमने 500 डिसेबल लोगों को बस पास, ट्रेन पास, पेंशन योजना, सभी सरकारी अलग अलग जो लाभ मिलते हैं वो सबको हमने घर घर जाके पहुंचाए। और अवेयरनेस के रिगार्डिंग हम लोग 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का सेलिब्रेशन पिछले 3 सालों से कर रहे हैं, और इस साल भी होने वाला है। बहुत बढ़िया,
1: आप अपनी बात रख रहे थे, आप बता रहे थे कि आपने कुछ 500 जमा दिव्यांग व्यक्तियों को आपने मदद पहुंचाई है, और आपकी संस्था का विजन क्या है, थोड़ा साझा करेंगे जय पटेल जी?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारा संस्था का ये है कि सभी लोग एजुकेशन के दिशा में तो सभी लोग काम कर रहे हैं, पर मेरी जो एनजीओ है, मतलब हम सबकी जो ये एनजीओ बनाई गई है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन, ये दिव्यांगों के भविष्य के लिए काम करेगा, और खास तौर पे दिव्यांगों की रोजगारी के अनुसार ये संस्था काम करेगी, दिव्यांगों को रोजगार प्रॉपरली दिलाना। सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ताकि दिव्यांग को एक प्रॉपरली प्लेटफॉर्म मिले, और जिसमें ब्लाइंड कैटेगरी आगे जाए, और इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलने से उनका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और एक रेसिडेंसी एरिया बनाना चाहते हैं नर्मदा राजपिपला शहर में, जिसे कि सभी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को लाभ मिल सके, और इधर रह के ही ये लोग रोजगारी पाए, और एक ही जगह पे वो लोग रह के आनंद से उनका जीवन गुजार सके, इस दिशा में मैं काम करना चाहता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत ड्रीम है।
1: जी जी हाँ, इसे कम्युनिटी लिविंग कहते हैं, और ये कम्युनिटी लिविंग के विचार को लेकर भी एक डिबेट है डेवलपमेंट सेक्टर में कि किस प्रकार से दिव्यांग व्यक्ति समूह में रह सकते हैं और एक रेजिडेंशियल टाउनशिप अपने लिए प्लान कर सकते हैं। सरकार की मुझे कोई विशेष नीति इस बारे में दिखती नहीं है कम्युनिटी लिविंग फॉर डिसेबल पर्सन, तो आप इस नतीजे तक कैसे पहुंचे कि हमें एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या रेजिडेंशियल कॉलोनी बनानी चाहिए जहां पर डिसेबल्ड व्यक्ति साथ में रहे?
0: इसके लिए हमें सरकार तो मदद करेगी कि नहीं करेगी ये मेरे को अभी आइडिया नहीं है, बट जो नॉर्मल लोग अच्छे अच्छे लोग हैं उनको कनेक्ट करके ये अच्छा कार्य को हम स्टार्टअप जरूर कर सकते हैं।
1: जी
0: और ये हमारी बातचीत के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी हमारी संस्थान मतलब दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन की कार्य सेवा किया कार्य से खुशी मिल रही है तो ये लोग हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं और इस सेवा के कार्य को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं।
1: जी आपने क्या प्लान किया है, और इसके अतिरिक्त और क्या अभी तक संस्था के अचीवमेंट रहे हैं?
0: अभी तक संस्था के अचीवमेंट की बात की जाए तो हम लोग पिछले 3 सालों से जो टैलेंट शो कर रहे हैं इसमें अलग अलग सिटीज से हम लोग ब्लाइंड को बुलाते हैं और उनका टैलेंट शो रखते हैं। और अभी रिसेंटली हमारा प्रोग्राम हुआ था वडोदरा में ब्लाइंड टैलेंट शो जिसमें हमने मध्य प्रदेश इंदौर से ब्लाइंड लोगों की 10 लोगों की टीम बुलाई थी और 400 नॉर्मल लोगों के सामने ब्लाइंड लोगों को प्रेजेंट किया था जो प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुली हुआ था।
1: जी
0: और
1: जी
0: इससे पहले हमने किया था 19 जनवरी को इंदौर में किया था वो भी बहुत सक्सेसफुली रहा था। वहाँ पे 75 टोटली ब्लाइंड लोगों को हमने मौका दिया था सिंगिंग मेमिक्री कॉमेडी डांस सब कुछ इंक्लूड। और पिछले साल हमने किया था बॉम्बे मलाड में जो कार्यक्रम हमारा वो भी सक्सेसफुली रहा था जिसमें सिंगिंग कंपटीशन रखी गई थी। और अब हम लोग बहुत बड़े लेवल पे ये कंपटीशन रखना जा रहे हैं और वो अभी डेट जब फाइनल होगी वो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे।
1: आपको क्या लगता है कौन कौन लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ?
0: मेरे साथ अभी फिलहाल तो राजपीपला स्टेट के जो राजा है मानवेंद्र सिंह गोहिल वो हमारे एनजीओ को प्रेजेंट कर रहे हैं सभी जगह पे प्रमोट कर रहे हैं और उनका अच्छा खासा सपोर्ट मुझे मिल रहा है और डिसेबल के लिए वो बहुत ही एक्टिव पर्सन है।
1: जी, बढ़िया है। रॉयल फैमिली तो हमें हमेशा सहयोग करती रही है, और हमें तो
0: बिल्कुल
1: लगता है कि हम भी कुछ इस दिशा में स्वयं भी कुछ कर पाए तो सहयोग जो है, या जो किसे कहते हैं कि सिनर्जी जो है, वो साथ में बन जाती है। और
0: बिल्कुल हम सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो सभी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत ही एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं है ना।
1: जी, तो आप किस प्रकार की प्रतिभाएं देख रहे हैं हमारे दिव्यांग साथियों में?
0: मुझे देख सभी सेक्टर से मेरे साथ में दिव्यांग मतलब ब्लाइंड लोग जुड़े हुए हैं। अभी बॉम्बे से बात कर ले तो बॉम्बे में मेरा एक मित्र है उसका नाम है तुषाल गोसर जो कच्छी जैन है और टोटली ब्लाइंड है और 21 प्रकार के मरी मसाला खुद बनाता है और खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है।
1: जी
0: और 2-3 लोग ऐसे हैं कि जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं वो खुद भी टोटली विजुअली इम्पेयर्ड है।
1: जी जी
0: और ऐसे ऐसे मेरे साथ में अलग अलग सिटीज से अलग अलग स्टेट से लोग विजुअली इम्पेयर्ड और हैंडीकैप जो भी हो गए वो लोग जुड़े हैं। बिल्कुल
1: और आपको लगता है ना, हमारे एक ये माना जाता है कि भाई अगर आप ब्लाइंड व्यक्ति हैं तो मास्टर बन जाइए, लेकिन बदलते दौर में बहुत सारे नए प्रोफेशंस आए हैं जिसमें हमारे दिव्यांग साथी झंडे गाड़ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: चाहे
0: कोई भी
1: स्पोर्ट्स का
0: सेक्टर देख
1: क्षेत्र।
0: लो अभी कोई भी सेक्टर देख लो चाहे बैंकिंग हो गया रेलवे हो गया अस्पताल हो कुछ भी हो गया सभी जगह पे ब्लाइंड लोग अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे।
1: जी, तो आपकी
0: बिल्कुल
1: संस्था कैसे उन साथियों का सहयोग कर रही है टैलेंट शो के अतिरिक्त?
0: टैलेंट शो अब जब हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक बजट फिक्स होता है वो बजट के बारे में हम लोग सबको डिस्कशन करते हैं फिर हमारे साथ में जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं और इससे कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है उनको भी रोजगारी प्रोवाइड हो और एक प्रकार देखा जाए तो रोजगारी का ही ये लक्ष्य है क्योंकि देखो सिंगिंग करते करते कोई किसी को रोजगारी तो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कराता है ना। सो हमारे एक विजन है कि एक ब्लाइंड टैलेंट तो होगा ही होगा साथ में उनका रोजगारी का भी आयोजन हो सकता है। हम लोग इस प्रकार से प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं।
1: नहीं, ये तो मानना होगा कि नई टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारे नए बदलाव भी हुए हैं,
0: बिल्कुल
1: और सभी समाज के अलग अलग वर्गों से लोग जो है वो भी दिव्यांगता के बारे में जान रहे हैं, लेकिन
0: जान
1: हमें
0: रहे हैं
1: भी जी हमें भी बहुत सारी चीजें उनसे साथ साझा करने की जरूरत है। खास तौर पर डॉक्टर्स के साथ भी एक प्रयास करने की जरूरत है कि डॉक्टर्स जो है इलाज करते समय क्लिनिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के बारे में भी मरीजों के साथ बात करें, और उनको बता
0: बिल्कुल
1: दें कि ये अब इसका इलाज संभव नहीं है,

0: देखो जॉब भी मिल सकती है, लेकिन मैंने जॉब को स्किप किया है, मुझे सिर्फ दूसरे की सेवा ही करनी है, बस ये मेरा मानना है।
1: स्वतंत्र जो
0: और
1: हमसे
0: नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया है, सो पेरेंट्स को भी पता नहीं है ना कि क्या हमारे बच्चे को कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं, तो हम लोग पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं और उनको प्रॉपरली रेडी करते हैं कि आपका बच्चा भी बहुत आगे जा सकता है, इसलिए हम काउंसलिंग करके उनको भी आगे ले जा रहे हैं,
1: आपके
0: और
1: काम जी
0: अधिकतर हमें सफलता भी मिली है।
1: आपके काम के दौरान कुछ ऐसी कहानियों को साझा करिए ना, जिन्होंने जो सफलता की कुछ कहानियां हों, दो या तीन कहानियां जो आप साझा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। दो टोटली विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल है जो सूरत से बिलोंग करती है, एक का नाम है वृष्टि वेकरिया और एक है मनस्वी मकवाना, जो
1: जी
0: बहुत ही बेहतरीन सिंगिंग करती है। इनको एक बार मैंने इधर मेरा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैंने उन लोगों को स्थान दिया और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, तब से लेके आज तक उन लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम दे दिए और आज ये दोनों लड़कियां बहुत ही आगे जा चुकी है।
1: जी
0: बिल्कुल, और ये बहुत ही बढ़िया सिंगिंग भी कर रही है और इनका सूरत में आज जाना माना नाम बन चुका है।
1: हम लोग राजस्थान की धरती से आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, माउंट आबू से, और राजस्थान से भी कुछ प्रतिभाओं से आपका परिचय हो तो बताइए ना।
0: राजस्थान में शायद मेरा एक एनजीओ से मेरा संपर्क हुआ था, बट अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। झालावाड़ के पास में है ना कोई एनजीओ एक?
1: जी खैर
0: हाँ बस।
1: कोई बात नहीं, और आपकी जीवन की यात्रा में कुछ ऐसे अनुभव जो खट्टे मीठे अनुभव हों जो आप हमसे साझा करना चाहें मन की आंखों से कार्यक्रम में हमारे।
0: बिल्कुल, देखो मैं पढ़ाई करते समय मुझे स्टैंडर्ड 8 में आया ना, तब प्रिंसिपल की एक कंप्लेंट आई थी कि आपका बच्चा लिख नहीं रहा है, मौखिक जवाब दे रहा है लेकिन लिख नहीं रहा है। सो मेरे पेरेंट्स थोड़े अपसेट हो गए, सो मैंने मैंने पेरेंट्स को बोला कि भाई नहीं, ये मैं लिख नहीं सकता हूँ बट मैं मौखिक जवाब तो दे सकता हूँ, तो मैं मेरा एजुकेशन कंटिन्यू करूँगा। पेरेंट्स ने प्रिंसिपल से बात की और प्रिंसिपल ने फिर मेरी पोजीशन को समझा और फिर मुझे फुल्ली सपोर्ट किया और मुझे स्कूलिंग से लेके कॉलेजेस तक बहुत ही, चाहे वो प्रिंसिपल हो प्रोफेसर हो, सबका मुझे बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ है। ये जो मैंने सेवा का कार्य आरंभ किया है ये मैंने मेरे नाना जी के पास से सीखा था।
1: जी
0: बिल्कुल, वो मध्य प्रदेश इंदौर से बिलोंग करते हैं।
1: हाँ, एक हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे आसपास के माहौल में ही हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है और
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हमारे
0: बिल्कुल, ऐसा
1: रास्ते।
0: ही
1: जी
0: मेरे साथ में हुआ है।
1: मैं वही जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा विस्तार से बताइए ना उस व्यक्ति के बारे में।
0: हाँ, उनका मेरे नाना जी का नाम है शिवलाल भाई पटेल, वो बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्य में अग्रसर रहते हैं, और मैं जब से, मतलब ये माना जाए कि मेरा बचपन जो है वो उनकी नजर के सामने ही गुजरा है, तो मेरे को ये आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उनके गुण मेरे में आए और इनके विचारों को मैंने पकड़ के रखा तो आज इस लेवल तक मैं पहुंच चुका हूं,
1: जी
0: और उनके पास से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और अभी भी मेरा सीखने का जारी है। अभी मैंने सब कुछ नहीं हासिल किया है, अभी 0.1% ही हासिल किया है
1: आपकी
0: मैं।
1: संस्था जो है आपकी, और कौन से नए कार्यक्रम प्लान कर रही है जिससे कि हम दिव्यांग मित्रों की मदद कर सकें।
0: बिल्कुल, और हम लोग एक इवेंट एक प्लान कर रहे हैं जो ऑल ओवर इंडिया से सभी ब्लाइंड भाइयों एवं बहनों को एक बढ़िया स्नेह मिलन कराने का एक कोशिश कर रहे हैं, स्नेह मिलन,
1: जी
0: क्योंकि हमें सभी ब्लाइंड लोगों से एक परिचय हो, ब्लाइंड लोग किस फील्ड में काम कर रहे हैं ये इनका परिचय हो, और 10 से 15 ऐसे ब्लाइंड लोगों को जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो अच्छी पोजीशन पे है, उनको हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं, ताकि दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं देखने वाले वो लोग देख के थोड़े से इंस्पायरिंग हो और ब्लाइंड लोगों को रिस्पॉन्स अच्छी तरह से करे, और ब्लाइंड लोग भी जो लोग लाइफ में हिम्मत हार गए हैं वो लोग फिर से दोबारा मैदान में दौड़ने की एक छोटी सी कोशिश करें। ये हमारा अभी का प्लान आउट चल रहा है, लेकिन ये कब होगा ये फाइनलाइज नहीं है, लेकिन करेंगे ये।

0: डेफिनेटली।
1: जी
0: और सभी कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम को कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए, ये सब कुछ प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल मेरे साथ में रहते हैं। हम दोनों मिलके एक अच्छी सी इवेंट प्लान करते हैं।
1: जी निश्चित रूप से प्रिंस मानवेंद्र का सहयोग आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
0: और मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर्स और ये सब का भी मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरे फादर का नाम है नीलेश पटेल और मदर का नाम है माया पटेल।
1: जी इस पूरे कार्य योजना में सबसे ज्यादा सहयोग आपको कौन करता है? डेली आपकी जो दिनचर्या है या जो बहुत सारा जो काम है डे टू डे का, उसमें कौन आपको सहयोग करता है?
0: मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर्स
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: मेरी मदर।
1: जी, तो क्या
0: हाँ
1: वो भी आपके साथ एनजीओ में जुड़े हुए हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहेगा तब तक एनजीओ तो ओपन नहीं कर सकते ना। टफ लेवल की बात है ना एनजीओ ओपन करना भी।
1: जी जी
0: सो पहले तो फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और मुझे मेरी पूरी फैमिली बहुत ही सपोर्टेबल है, मतलब पूरी तरह से कोऑपरेट करती है मेरी फैमिली।
1: आपने एक डिबेट चलता है आजकल की ब्रेल को सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, आपका क्या मानना है इस बारे में?
0: वैसे देखा जाए तो सीखना जरूरी तो है, पर आज टेक्नोलॉजी की इतनी बढ़ चुकी है ना टेक्नोलॉजी, सो किसी को ब्रेल नहीं भी आएगा ना तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मेरे को खुद ब्रेल नहीं आता है क्योंकि मैंने स्कूलिंग और कॉलेज साइटेड लोगों के साथ में किए, तो आप भी समझ सकते हो कि मेरे को ब्रेल नहीं ही आता होगा। पर मेरा ब्रेल से कोई विरोध नहीं है, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है और आगे भी बहुत कुछ देने वाली है टेक्नोलॉजी, सो हमें घबराने की जरूरत नहीं है।
1: जी हाँ, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि इस पूरे भागम भाग भरी जिंदगी में अभी एक्सेसिबिलिटी भी एक चैलेंज है, और एक्सेसिबिलिटी को लेकर बहुत सारे कैंपेन चलाए गए हैं। आपके जिले नर्मदा में क्या परिस्थितियां हैं? आपने आपकी संस्था उस बारे में क्या कर रही है?
0: हमारी संस्था के द्वारा एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी बहुत सब कुछ अवेयरनेस के रिगार्डिंग कार्यक्रम होते रहते हैं, और सभी स्कूल कॉलेजेस में भी कार्यक्रम होते रहते हैं ताकि वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी पता चले कि ब्लाइंड लोग इस फील्ड में वर्कआउट कर रहे हैं, सो वो लोग भी समझ पाए।
1: आप लोग भी जानते हैं, जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और हमारे साथ हैं आज के गेस्ट जय पटेल। जय पटेल नर्मदा जिले से आते हैं और अपनी स्वयं की एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, और साथ में उनका मकसद है कि डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए एक कम्युनिटी हाउसिंग डेवलप की जाए और कम्युनिटी हाउसिंग के माध्यम से उनकी चुनौतियों को कम किया जाए। वे स्वयं भी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, परंतु देखिए ना उनका हौसला कि उन्होंने अपनी दृष्टिबाधिता को अपने आड़े नहीं आने दिया और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं अकेले ही, लेकिन उनके साथ हैं वहां के प्रिंस नर्मदा जिले से, उनके वहां के राज परिवार का सहयोग ले रहे हैं, और अपने पेरेंट्स की जिंदगी के बारे में उन्होंने बताया कि वो भी उनको सहयोग कर रहे हैं। तो आपकी आगे की क्या प्लानिंग है जय पटेल जी?
0: आगे की प्लानिंग यही है कि इस एनजीओ को मैं बहुत आगे ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूँ, और मतलब मुझसे जितना भी हो सके उतनी हेल्प डिसेबल लोगों के लिए करना चाहूंगा।
1: जी मन की आंखों के से कार्यक्रम में निश्चित रूप से हम हमेशा ही एक दिव्यांग व्यक्ति से मिलते हैं, और आज आज जय से मुलाकात हुई है, और जय बता रहे हैं कि वे वॉलंटरी सेक्टर के माध्यम से कम्युनिटी के लिए भी हेल्प करना चाहते हैं और एक आउटरीच ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग को लेके बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स मैं देखता हूँ दिव्यांग व्यक्तियों की, आपका क्या मानना है उसके लिए? क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे हम हर जिले में कंप्यूटर सेंटर बना सकते हैं और दिव्यांग व्यक्तियों को कंप्यूटर सीखने के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े, तो क्या ये पॉसिबिलिटी संभव है हमारे देश में?
0: बिल्कुल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से 20 टोटली ब्लाइंड लोगों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी हुई है, 20 लोगों को, और वो भी बहुत ही सक्सेसफुली रहा था। और क्यों हम नहीं कर सकते, सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी स्टेट में हम लोग कर सकते हैं ताकि सभी विजुअली इम्पेयर को इनका फायदा हो और उनके ही जिले में उनको प्रॉपर शिक्षण मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए, ये करना चाहिए और ये हम लोग भी करेंगे।
1: हाँ, इसके लिए कुछ योजना तो बनानी होगी ना, लेकिन
0: हाँ बिल्कुल, योजना बनानी होगी। मैंने आपको बोला ना, पहले रेसिडेंसी हो जाएगा ना, इसके बाद में सभी प्रकार की ट्रेनिंग उपलब्ध की जाएगी, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग हो गई, संगीत का हो गया, रोजगार के रिगार्डिंग हो गया, सब कुछ ट्रेनिंग एक ही जगह पे हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ताकि सबको अलग अलग जगह पे ना जाना पड़े, और उनको
1: कम्युनिटी
0: व्यवस्था व्यवस्था इस प्रकार से देंगे क्योंकि उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल की परेशानी ना आए। उनके पेरेंट्स भी हमारे रेसिडेंसी पे छोड़ने आए, ऐसे हम बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स हमारे पे ट्रस्ट करें, ऐसा हम डेवलप करना चाहते हैं।
1: कम्युनिटी हाउसिंग आप कहाँ प्लान कर रहे हैं? नर्मदा में प्लान कर रहे हैं?
0: यस, नर्मदा राजपिपला।
1: कैसी दिखती होगी ये कम्युनिटी हाउसिंग? क्या होगा इसमें विशेष?
0: सभी जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि ब्लाइंड लोगों के लिए हॉस्टल बना रहे हैं, हम लोग हॉस्टल नहीं बना रहे, हम लोग बोल रहे हैं सभी डिसेबल लोगों के लिए एक घर बना रहे हैं, हॉस्टल नहीं, इसे घर का दर्जा दिया जाएगा, और जिनका कोई नहीं है इनका हम एक आधार बनेंगे।
1: जी,
0: बिल्कुल,
1: कितने लोगों की आवास की व्यवस्था होगी यहाँ पर?
0: अभी वो तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मेरा ड्रीम है कि बड़ी बिल्डिंग बने और 70 to 80 रूम बने, जिसे बहुत बढ़िया बिल्डिंग हो और बहुत ही अच्छा एक्सेसिबल हो और सभी
1: जी, आप
0: डिसेबल लोगों को।
1: राजपीपला में प्लान कर रहे हैं?
0: राजपिपला में प्लान कर रहे हैं हम लोग, राजपिपला और वडोदरा के बीच में, मतलब
1: जी, नर्मदा और वडोदरा लगते हुए जिले हैं दोनों।
0: बिल्कुल नजदीक है, मेरे घर से वडोदरा 70 किलोमीटर, सेवेंटी
1: जी,
0: सेवेंटी फाइव यस।
1: बेहतरीन बातचीत रही जय पटेल जी आपके साथ। और आप कुछ कहानियां हमसे साझा करना चाहें तो बताइए ना, कुछ सफलता की कहानियां, कुछ ऐसी बातें जो हम हमारे श्रोताओं तक ले जा सकते हैं।
0: हाँ देखो, मैंने बहुत सारे कार्य किए, मैं सेवा किए कार्य में बहुत सारी जगह पे इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मेरा सूरत में भी सम्मान हुआ है, मुंबई में भी हुआ है, और रिसेंटली अभी मारुति सुजुकी शोरूम के बारे में आपने सुना होगा, सो नेक्सा शोरूम के यहाँ भी मेरा सम्मान हुआ, और उसमें मुझे चीफ गेस्ट में बुलाया था, और रिबिंग कटिंग भी मेरे हाथ से ही उन लोगों ने करवाई थी, और मुझे सम्मानित भी किया, और कॉलेज कार के दरमियान भी मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ है।
1: जी,
0: बिल्कुल
1: मुझे लगता है ना कि हम लोग ये सारा जो प्लान कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नया करने की आवश्यकता है
0: बिल्कुल,
1: और लोगों से जुड़ने की आवश्यकता है।
0: लोगों के कनेक्ट, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ हो, ऐसी हम एक आवाज सत्य रखते हैं, और आप भी हमारे कार्य में शामिल होंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और आपके साथ में आज बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
1: जी, मुझे भी अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और मन की आपको किसी टीम आपके साथ है हमेशा, और आप इसी प्रकार से कार्य करते रहें। हम
0: बिल्कुल,
1: आपको हमेशा आपके साथ हैं और आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से।
0: खास तौर पे मैं मन की आंखों की पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और खास तौर पे कृष्णा दीदी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, कृष्णा दीदी ने हमारे डिसेबल लोगों के लिए बहुत कुछ किया, और ये बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, तो ये रेडियो स्टेशन का जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया है, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है।
1: बिल्कुल जय पटेल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। कोई ऐसी बात जो हम पूछना भूल गए हों और आपको लगता है कि नहीं, वो बात मन की आंखों से के कार्यक्रम में आनी चाहिए थी, तो आप हमें बताइए ना प्लीज।
0: वैसे तो मैंने आपको सब कुछ मेरा बता दिया है, और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर के रूप में भी काम कर रहा हूँ, और सिंगर एंड कीबोर्ड प्लेइंग भी खुद कर रहा हूँ,
1: जी
0: और मेरा जहाँ पे भी कार्यक्रम रहता है वो नॉर्मली साइटेड स्कूलिंग में ही होता है, कॉलेजेस में होता है, जो नॉर्मल बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको ही हम लोग मोटिवेट करते हैं, और ब्लाइंड को भी मोटिवेट करते हैं, और मेरी इवेंट जो भी प्लान होती है ना, वो बहुत ही एक्साइटेड बात है, आप सुनना, मैं जहाँ पे भी इवेंट प्लान करता हूँ वो आदमी से मैं डायरेक्टली प्रोग्राम में ही मिलता हूँ, इससे पहले हम लोग फोन से कांटेक्ट करते हैं, मैं गूगल से कांटेक्ट करता हूँ और कांटेक्ट निकल के उनसे बात करता हूँ और मेरा प्रेजेंटेशन करता हूँ, फिर वो लोग रेडी हो जाते हैं और फिर हमारा कार्यक्रम होता है, उसी दिन हमारी मुलाकात उस आदमी से होती है जो हमें सहयोग कर रहा है। ये मेरी स्पेशलिटी है कि मैं किसी को कभी, मतलब मेरे से अनजान भी है तो इससे बात करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, और फिर जिस दिन प्रोग्राम रहता है उसी दिन हमारी उनसे आमने सामने मुलाकात होती है और हमें अच्छा खासा सहयोग भी प्राप्त होता है भले ही हम लोग ना मिले हो। और अभी हमारी चंडीगढ़ में भी बातचीत चल रही है, उनसे भी मैं अभी मिला नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही बड़े लेवल पे एक इवेंट प्लान कर रहे हैं उनके साथ में मिलकर।
1: ठीक, तो मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं मन की आंखों से टीम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको देती है। और श्रोताओं, आप सुन रहे थे आपका फेवरेट रेडियो प्रोग्राम मन की आंखों से, 107.8 FM रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मेरे प्यारे से श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और आप पहचान रहे होंगे एक जानी पहचानी आवाज, इस शो का होस्ट शरद त्रिपाठी। और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। मुझे किसी ने पूछा कि क्या आपने दुनिया को देखा है, तो मैंने उनको कहा हाँ देखा है, पर मेरी मन की आंखों से। और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.0 लाया है एक नया मेहमान। और हमारे मेहमान का नाम है सचिन सिंह जाधवन, जो आते हैं देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की पूर्वी सीमा से लगे हुए करौली जिले से। करौली एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और वहां से आने वाले हमारे एक आज के नेत्रहीन साथी हैं, दृष्टिबाधित साथी हैं, सचिन सिंह जाधवन। सचिन, स्वागत है आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार।
0: सचिन, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी भाषण प्रतियोगिता में और आप उस भाषण प्रतियोगिता के विनर थे, और मुझे मालूम भी नहीं चला कि आप दृष्टिबाधित हैं। लेकिन वो मेरे लिए एक नया अनुभव था। आप आए और चुपचाप आए, बिना किसी जद्दोजहद के आपने अपना एक शानदार भाषण दिया और आप उस प्रतियोगिता के विनर रहे, वो मुझे आज भी याद है। तो सचिन, इस समस्या और चुनौती के बावजूद, या मैं कहूं कि इस शारीरिक चुनौती के बावजूद, आप यहां तक कैसे पहुंचे उसको जानना है। तो पहले आते हैं आपके बचपन पर। तो ये चुनौती आपको कैसे प्राप्त हुई और कैसे आप इससे उभरे?
1: जी सर, धन्यवाद। जी सर, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अभी आप मेरे बारे में जो आपने बताया वो सिर्फ एक समस्या को बताया है कि जो मुझे आंखों की समस्या है उसके साथ में ही एक हड्डियों की गंभीर समस्या है जिसका नाम है ऑस्टियोपेट्रोसिस, जिसके कारण से अगर हम गलती से भी चेयर से भी यदि गिर जाते हैं तो उसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं। और अब तक कम से कम 25 से 30 फ्रैक्चर मेरे बॉडी में हो चुके हैं, जिसके 4-5 तो मैं ऑपरेशन करवा चुका हूँ। ये एक गंभीर समस्या है जिससे पार पाना, मैं कहूंगा कि जो आंखों की समस्या है उससे भी कहीं कठिन समस्या है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि बचपन की मैं बात करूं तो जिस उम्र में, जो उम्र खिलौनों की होती है, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में मस्त रहते हैं, उस उम्र में मेरे फ्रैक्चर्स हो जाते थे और मैं प्लास्टर से ग्रसित रहता था। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे बॉडी में सबसे जो पहला फ्रैक्चर था वो महज 3 साल की आयु में, जिस समय बच्चा सिर्फ खिलौने पकड़ना सीखता है, धीरे धीरे चलना सीखता है, उस समय मैं किसी की गोद से गलती से गिर गया था। उस समय मेरे फ्रैक्चर हो गया था और मुझे प्लास्टर लग गया। कभी कभी तो ऐसा समय आया कि मैं साल में 8-8, 9-9 महीने फ्रैक्चर्स रहते थे, प्लास्टर्स रहते थे, ना कहीं खेलना ना कहीं जाना, क्योंकि कभी एक प्लास्टर कटा आप कहो कि वो दूसरा में लग जाती थी, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग है सर वो बहुत ही चंचल दिमाग है। आज तो मैं समझ सकता हूँ कि मुझे ये करना है, यहाँ नहीं जाना है, किंतु एक जब बच्चा दूसरे बच्चे को देखेगा कि आम बच्चे खेल रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, तो उसका भी मन करेगा, वो इतना परपक नहीं होता है। तो सर जो बचपन रहा है वो काफी चुनौतियां पूर्ण रहा है, लेकिन मेरी जो इच्छा शक्ति रही वो हमेशा यही रही कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यानी कि जब उद्देश्य बना लिए हैं जीवन में, अपन को एक जीवन को सार्थक जीवन बनाना है और देश और समाज के लिए कुछ करना है, तो मैं यहां तक जो पहुंचा हूं वो बहुत ही जद्दोजहद करके या बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ आया हूं। और जो बचपन रहा है वो लोगों का बचपन सुखद रहता है, किंतु मेरे साथ में जो समस्याएं थी और जो बचपन मेरा था वो मैं नहीं कहूंगा कि इतना खुशहाल बचपन रहा जो कि एक आम बच्चे से उम्मीद की जाती है।
0: जी सचिन, आपकी बात सुन के तो मैं भी अभी भावुक हो रहा हूं, लेकिन भावनाओं से आगे निकल जाने की यात्रा ही इंसान की यात्रा है। तो इस डबल चुनौती, या कहें कि दोहरी चुनौती के साथ आप आ रहे हैं, और हम तो एक हड्डी के फ्रैक्चर को जब झेलते हैं तो हमें मालूम है कि कितना पेनफुल होता है। और आपने इस कम उम्र में, आप बता रहे हैं कि आपने दर्जनों फ्रैक्चर अब तक आप अपने जीवन में देख चुके हैं, तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप इस दोहरी चुनौती के साथ में, जो आपकी डिसेबिलिटी है, जो आपकी दृष्टिबाधिता है, उसके साथ में आपके स्कूल का जीवन कैसा रहा और आप कैसे रिहैबिलिटेशन, मतलब पुनर्वास, एक महत्वपूर्ण है। शारीरिक चुनौती होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उस व्यक्ति को पुनर्वास करने का अवसर मिला कि नहीं। तो आपको पुनर्वास करने के लिए किस प्रकार के लोगों के सहयोग मिला, परिवार का सहयोग कैसे मिला, आपके विद्यालय के अध्यापकों ने क्या इस बारे में चर्चा की, थोड़ा इस बारे में बताइए ना,
1: जी
0: खासतौर पर
1: सर,
0: प्राइमरी
1: मैं
0: एजुकेशन, खासतौर पर प्राइमरी एजुकेशन।
1: जी जी सर, मैं प्रारंभ से प्रारंभ करता हूं कि एक जो दृष्टिबाधित बच्चे से, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत है, किंतु जब उस समय, और हम जो आते हैं वो एक छोटे शहर से आते हैं, यहाँ पर इतने अवसर नहीं मिल सकते क्योंकि इतने कंप्यूटर से या इतना टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है। तो हमें जब कोई शिक्षा के बारे में बोलता था तो कुछ लोग तो पहले ऐसे भी थे, मुझे ध्यान है, वो कहते थे तो भाई अब बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे कुछ ढोलक वगैरह सीख लो तो जीवन यापन हो जाएगा। मैंने
0: जी
1: उनसे भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है, उनका कहना भी उनकी जगह सही है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती थी तो सिर्फ एक चीज थी कि आप ब्रेल लिपि सीख लो, उससे वो जो डॉट्स होती हैं उससे आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो कुछ जीवन यापन हो जाएगा, आपको कुछ बेसिक एजुकेशन मिल जाएगी। लेकिन जब ब्रेल लिपि का सवाल आता था तो घर वालों के डर एक ही था कि यदि आंखों की समस्या हो तो छूट सकता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहां पे, जो स्कूल्स भी चल रहे हैं। किंतु हम एक बार गए एजुकेशन के लिए तो उन्होंने कहा कि यदि इनको आंखों की समस्या होती तो हम इनको हमारे यहाँ पर रखते और इनको प्राइमरी एजुकेशन देते। किंतु इनके साथ समस्याएं दूसरी भी है कि यदि गलती से भी किसी बच्चे को जो और रह रहे हैं उनको भी नहीं दिख रहा है, गलती से किसी बच्चे से ये टच हो गई या टकरा गया तो इनके तो फ्रैक्चर हो जाएंगे और घर वालों में लगेंगे 24 घंटे से ज्यादा। तो उन्होंने मुझे साफ तौर पर मना किया, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, जितना भी होता है आप इनको घर पर ही रिहेबिलिटेट करें और इनको जो एजुकेशन दे सकते हैं वो घर पर ही दें, हम इसके लिए माफी चाहते हैं। तो एक हमारी आशा खत्म हो चुकी थी बिल्कुल कि अब तो उन्होंने भी मना कर दिया एजुकेशन के नाम पे, तो हम तो जीरो हो गए थे उधर फ्रैक्चर्स के, तो घर वालों के भी दिमाग में नहीं था। फिर हमारे शहर में एक वीणा मेमोरियल जो संस्थान है उनके काफी कॉलेजेस स्कूल चलते हैं, तो वो पहले चलता था, उनमें एक प्रिंसिपल आई थी, श्री योगिता मैडम थी जयपुर से। वो एक दिन मुझसे मिलने आए तो उन्होंने मुझसे कहा, ऐसे ही बात की तो उन्होंने हमारी फैमिली को कन्विंस किया कि देखो हम सब लोग इनका सपोर्ट करेंगे, हम सब लोग इनको अलग बैठाएंगे, आग हाथ पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन आप इनको घर से बाहर निकालो। उन्होंने कहा जब तक ये घर को नहीं छोड़ेंगे ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ कुछ नहीं पढ़ेंगे वहां पे बैठेंगे। तो घर वालों की तो मन में नहीं थी, लेकिन तब तक मैं भी समझने लगा था और मुझे पढ़ाई की तो इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आई थी, लेकिन ये था कि यार दुनिया के दोस्त होते हैं, सब लोग बाहर जाते हैं, अपनी जिंदगी क्या है, खाया पिया और सो गई। तब तो फोन भी नहीं था जो दुनियादारी से पता चलता, तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगा। तो मैं गया, पहले तो लगभग 15 दिन गया वहां पे बैठा, तो मैं तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ समझ में, मेरी जो माताजी ने जो प्रारंभिक शिक्षा दी जैसे गिनती सिखाना है, ANR 12 खेड़ी, ये ABCD ये सब सिखाना है, या कुछ मतलब जो वर्बल एजुकेशन वो दे सकते थे वो मुझे दी उनने, क्योंकि ब्रेल लिपि तो उनको नहीं आती थी जो मुझे सिखाएं, और टेक्नोलॉजी थी नहीं हमारे यहाँ पे कि हम टेक्नोलॉजी सीख सके, तो ओरल एजुकेशन उन्होंने मुझे दी। फिर मैं वहां पे गया तो कुछ दिनों तक तो मैं रोता था, क्योंकि वो बोल रहे हैं, एक टीचर जा रहे हैं दूसरे टीचर आ रहे हैं, बोल रहे हैं ना मैं नोट्स बना रहा हूँ ना मैं बैठा हूँ। आप एक बच्चे जो सिर्फ घर पे खाने और सोने से फुर्सत नहीं है, वो बच्चा के कोई और उद्देश्य नहीं है जीवन में, वो बच्चा सिर्फ 8 घंटे बैठा है तो उसकी यात्रा आप समझ सकते हैं। लेकिन
0: जी
1: मैंने कहा कि नहीं मैं बैठूंगा। मैं वहां पे 15 दिन बैठा, 20 दिन बैठा, फिर क्या है कि पहले वो मुझे ले गए थे कि अब मेरी क्या एज भी हो गई थी, मैं पढ़ने नहीं गया था। वो उन्होंने कहा कि यार जब एजुकेशन देनी है अब इसको नर्सरी में बिठाएं तो भी कोई मतलब नहीं है कि जाके ये 20 साल की उम्र पे जाके 10वीं करेगा, तो वो भी एक चुनौती थी। तो उन्होंने मुझे पहली बार बैठाया सेकंड क्लास में, एक मैडम थी बहुत अच्छी, उन्होंने माँ की तरह ख्याल रखा मेरा। फिर मैं 2 दिन
0: जी
1: सेकंड क्लास में बैठा तो मुझे लगा कि यार बड़ा बहुत बेसिक एजुकेशन दी हुई है और जो माताजी ने भी दिया हुआ है, तो क्यों ना हम एक क्लास और आगे जाएं। तो फिर मैं गया थर्ड क्लास में, तो सर
0: जी
1: थर्ड क्लास में मेरा सिर्फ वही था कि जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, टिफिन खोला, लंच हो गई, टिफिन खाया और एक आदमी बस में आके बैठा गया, घर पे आके लोगों ने उतार लिया, मेरा ऐसे ही चला, कुछ नहीं था, बस मैं जो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। फिर मैं थर्ड क्लास
0: जी
1: में पढ़ा, लेकिन क्या है कि मुझे पढ़ने की, क्योंकि मैं पढ़ाई से वंचित रहा तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा था कि कुछ तो करना है, बस पढ़ना तो है, मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि ना तो मैं खेल सकता, ना मैं क्लब जा सकता, ना मैं कुछ कर सकता, करौली छोटा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं थे, तो मैंने कहा अब तो पढ़ना है। तो मैं सुनता था वो क्या बता रहे हैं, तो जितना सुन के मैं ले पाता था। फिर मैंने 12th के एग्जाम हुए, उसमें मेरी ठीक ठाक अंक आए जो औसत क्लास में आते हैं।

0: जबकि मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, और लिखने वाला दूसरा लिया एक बच्चे से और से लिखवाए थे। तो फिर घर वालों को, टीचर्स को लगा कि यार थोड़ा बहुत कर सकता है, एजुकेशन दे रहे हैं, तो क्यों ना इसको एक क्लास और जंप करवाई जाए। तो मैंने 5th क्लास में पहुंचा डायरेक्ट में। अब सर मुझे दिखता नहीं है, पहले तो मैं 1 साल तो 3rd क्लास के बच्चों के साथ एडजस्ट किया मैंने, अब मैं सर 5th क्लास में गया तो वहां तो मतलब पूरा सीन ही बदल गया। एक तो स्टैंडर्ड बढ़ गया पढ़ाई का, और उसमें बच्चे नहीं मिले, मैं तो कोई ना मेरे से बात करे ना कोई मुझे बिठाए, टीचर बैठा जाए मैं वहीं बैठा हूँ अकेला, और बस टीचर चल रही है। लेकिन अब अपन मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है, तो यहाँ पे समाज की भी जरूरत पड़ती है। तो हमने धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई, बच्चों से शुरुआत की, तो कुछ लोग मुझे समझ पाए, कुछ लोगों ने तो मुझे हमेशा नेग्लेक्ट किया कि यार ये तो ऐसा ही, अपना एडजस्ट नहीं होगा इसके साथ। लेकिन कुछ लोग समझ पाए तो मेरी उनके साथ कंपनी बनी, फिर मैं वहां पे धीरे धीरे पढ़ा। फिर मैं 5th क्लास और जो 6th क्लास मैंने वहां पे 2 क्लास पढ़ी बच्चों के साथ, और धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। सिक्स क्लास में हमने एक, जब जैसे क्या है कि फिजिक्स केम वो हिस्ट्री सोशल पॉलिटिकल साइंस, और हमारे में सेंट्रल बोर्ड का था ही एजुकेशन जो मैंने लिए है, स्कूलिंग सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हुई है। तो सर वहां पे 6th क्लास में मैं आया तो और सिलेबस ब्रॉड हो गया, वहां पे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी ऐसी चीजें साइंस पढ़ाने लग गए, ईबीएस खत्म हो गई। तो हमको लगा कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो फिर हमारे एक वेस्ट बंगाल से टीचर है, मैं पंकज यादव सर अभी नहीं है, वो थे पहले, अभी यहाँ से जा चुके हैं, तो उनको हमने घर पे हायर किया। तो वो मुझे घर पर पढ़ाने आते थे, तो वो भी मुझे ओरल एजुकेशन दे रहे हैं, यदि वो लिखें तो मैं नहीं पढ़ पाऊं, और ब्रेल उनको आती नहीं ना कंप्यूटर, तो वो सिर्फ मुंह से बोल के सिखा रहे हैं वो। तो वो आए फिर 6th क्लास में, धीरे धीरे मुझे लगा, तो मैंने वहां पे और बेहतर अपने आप को किया थोड़ा सा। मैंने कहा आप समझ में आ रहा है सर से पूछना, यहाँ पे मेरे भैया भी हैं बड़े भैया, मैं उनसे भी पूछता था, जो घर में मिल रहा है उससे पूछ रहा हूँ। माता जी को इंग्लिश नहीं आती तो उनसे हिंदी की किताब पढ़वा रहा हूँ कि आप हिंदी सुना सकते हो, हिंदी तो सुनाओ। तो ऐसे चीजें चली मुझे, हालांकि इस दौरान मैथ्स में काफी दिक्कत आई, पर एक टीचर जो हमने हायर किए थे उनने मुझे काफी सहयोग किया। फिर ऐसा लगा कि यार अब 5th 6th पढ़ लिए तो क्यों ना एक क्लास और जंप करवाएं। तो सर मैंने 7th क्लास जंप किया, अब मैं पहुंचा हूँ 8th में। अब मैं डायरेक्ट 8th में गया तो एक तो सिलेबस बढ़ रहा है 1 साल का, आप अंतर समझ सकते हैं कि जब स्कूलिंग में 1 साल की जो सिलेबस है वो कैसे कवर करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है वो करना, क्योंकि पहले, और वो भी मेरे कंडीशन में। तो सर वहां पे हमारे साथ एक तो वही समस्या पहले वाली कि वहां पे नई कंपनी, कोई बच्चा एक्सेप्ट ना करे, बच्चे को दिख नहीं रहा है कौन मुझे लेके जाएगा, कौन लेके आएगा, कौन वॉशरूम ले जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो 1-2 महीने तो एडजस्ट करने में चली गई। फिर मैं 8th क्लास में गया, फिर एक उसी दौरान एक हमारे हुआ था, मैं बोलता अच्छा था, मुझे बोलने का शुरू से शौक था, चाहे मुझे छोटी जगह मिली। हमारे यहाँ पे लोक गायन शैली होती है, होली पे ख्याल वगैरह जो राजस्थानी की गायन शैली है, शायद आप उससे परिचित होंगे। मैं यहाँ पे बहुत अच्छा गाता था, तो सब लोग मुझे गाने के लिए बुला लेते थे पहले, तो तब से मेरी झिझक निकल गई बिल्कुल बोलने की। तो एक हुआ सर यहाँ पे डिबेट कंपटीशन हुआ था हिंदी दिवस पे, कि अंग्रेजी और हिंदी कुछ इस तरीके की भाषाओं पे के उस पर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। तो 8th क्लास और 9th क्लास का हुआ था सर, उसमें मैं चला गया था, तैयारी तो कुछ नहीं थी क्योंकि नोट्स वगैरह बना नहीं सकता था। तो उसमें सर मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हमारी टीम ने 9th क्लास को हरा दिया। सर मेरी उस समय से स्कूल में एक इमेज बदली, बच्चों ने सोचा कि यार कुछ चीज नहीं है लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो किसी के पास नहीं है। तो फिर मुझसे उन्होंने दोस्ती बढ़ाई और हाथ बढ़ाया, तो सर मेरी दोस्ती सबसे बढ़ गई। फिर आती है 9th क्लास, 8th क्लास में बढ़िया उत्तीर्ण हो गया मैं। फिर 9th क्लास आई, तो सर 9th क्लास में ये होता है कि SST और ये सब तो थी, पर अब यहाँ पे साइंस के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब अलग कर दी इन्होंने, अलग अलग हो गई, बाइफरकेशन हो गया इनका। और फिजिक्स, में चले कैलकुलेशन और ये इक्वेशंस चलते हैं, उसमें डेरिवेशंस होते हैं। तो मैथ्स में मैं शुरू से ही इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मैथ्स क्या है कि देख के करनी पड़ती है। तो फिर भी मैंने जद्दोजहद की, और सर मैं 9th निकला, थोड़ा थोड़ा मेरा फेमिलियर हुआ इनसे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। फिर मैंने 10th क्लास में पहुंचा मैं। तो सर हमारी तो क्या है कि कोई गिनती थी नहीं, क्योंकि लोग एक्स्ट्रा क्लास जा रहे हैं, ट्यूशन चल रहे हैं, और नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज लिए हुए हैं। लेकिन मैं अपने वो कछुए की गति से चलता रहा, सब लोगों का सहयोग मिला, टीचर से हमने प्राचार्य महोदय से रिक्वेस्ट की थी, और हमारे स्कूल ने भी इतना अच्छा मुझे कॉपरेट किया कि कभी किसी चीज की कमी, मतलब मैं खड़ा हो जाता था, मुझे हमेशा आगे बैठाया उन्होंने, कभी नहीं कहा। बच्चों का रोटेशन चलता था लेकिन मेरी सीट हमेशा फिक्स थी, हालांकि मैं कभी देख नहीं पाता था लेकिन जो बोर्ड पे पढ़ा रहे थे वो सुनता था मैं। तो हमने उनसे इतना सा निवेदन किया कि सर जब भी कोई टीचर जैसे फ्री हो तो इसको एक आधा पौना घंटा स्कूल में अलग दे दिया करे 10th क्लास में जाके, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब क्या है क्लास में तो वो उनके हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे वो उतना लिख नहीं रहे, ओरली बताएं। तो थोड़ा थोड़ा पॉसिबल हुआ जितना हमने अलग अलग टीचर्स को, जो जो फ्री होते थे, तो उनने हमका व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया। सर सेंट्रल बोर्ड ये सीबीएसई में जब रिजल्ट आता है 10th का, तो सर जो अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट थे उनकी परसेंट कम रहती है, और आश्चर्यजनक मेरी परसेंट बन जाती है 89%।
1: जी
0: अब सर धीरे धीरे मेरी स्कूलिंग, मेरी एक तरीके से इमेज और बन गई कि ना तो लड़के ने नोट्स, अब मैं, मुझे ये था कि यदि टीचर पढ़ा रहा है मैंने अभी नहीं सुना तो मुझे बाद में पढ़ाने वाला कोई नहीं है, जब तो यूट्यूब, मेरे पास पर्सनल फोन भी नहीं था, मैं पढ़ूंगा कैसे। तो मैं
1: जी
0: उसको इतना ध्यान से पढ़ता था, और लिखने की यदि मैं अच्छा बोल लेता था तो विचारों का आदान प्रदान अच्छा था। और सीबीएसई का नियम है कि यहाँ पे फैक्ट पे बात कम करते हैं, ये कॉन्सेप्ट पे बात ज्यादा होती है। तो
1: जी
0: जो जितना भी मुझे आता था वो मैं उसको अच्छे से लिखना, अब राइटर किया हमने, वो भी 9th क्लास का था, तो उसने मेरी बातों को अच्छे से लिखा, तो सर मेरी बनती 89% फिक्स।
1: जी
0: अब सर जो मेरे से अच्छे थे पढ़ने वाले, उन बच्चों की भी इतनी अच्छी परसेंट नहीं बनी, मैं उस समय 3rd रैंक पे रहा था पूरे स्कूल में। मैं कहूंगा कि सर कुछ बच्चे तो टीसी लेकर चले गए, कि स्कूल ने कुछ ना कुछ फेवर किया, इस बच्चे को दिखता नहीं इसकी इतनी परसेंट कैसे बनी, हमारी क्यों नहीं बनी,
1: जी
0: ऐसी भी फीलिंग आई उनकी।
1: आपने अपनी
0: फिर सर
1: शारीरिक चुनौती से उनको मानसिक
0: हाँ,
1: चुनौती
0: मानसिक चुनौती दे दी मैंने, तो उनको इस चीज में मतलब एक तरीके से
1: दे दी।
0: डेरोगेटरी फील हुआ, तो उनने
1: जी,
0: टीसी भी ले ली, दो तीन
1: जबकि
0: बच्चे तो
1: हमारा
0: टीसी चक्कर
1: उद्देश्य
0: नहीं
1: नहीं,
0: गए।
1: जबकि हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं था। जी
0: मेरा ऐसा नहीं था, लेकिन सर वो दुनिया अलग तरह से ले जाती है, तो
1: हाँ,
0: अब मैं क्या कर सकता हूँ
1: बचपन
0: इसमें।
1: से ही, मतलब बचपन से ही लेती है ना। जी
0: हाँ, फिर सर हम आए 11th क्लास में, तो अब मैंने कहा साइंस लूं तो वही दिक्कत कि उसमें देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर मुझे लोगों ने प्रोत्साहित किया कि यार आप अच्छा बोल लेते हो, विचार
1: जी
0: अच्छे आदान प्रदान करते हो, आपको अच्छी नॉलेज है, आप लो आर्ट्स। तो सर मैंने 11th में आर्ट्स ली, वहां पे हमारी मैडम थी अनीता मैडम, तो वो बहुत अच्छा बच्चों को रखती है, एकदम माँ की तरह रखा था उन्होंने। मैंने ली हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी।
1: जी
0: सर मैं अच्छे से पढ़ता, अब मेरी हालत ये हो गई कि 11th में हम कमी बच्चे थे, अब उन बच्चों को कोई समस्या होती तो मैं इतना अच्छे से पढ़ लेता कि वो किताब पढ़ के मुझे सुनाते, उसका मैं उनको अर्थ समझाने लग गया, वो टीचर से नहीं समझते थे, और
1: जी
0: मुझे इसमें मजा आने लग गया।
1: जी
0: मुझे शुरू से जो जिस चीज को किसी को समझाने में, बताने में, बातों को, उसमें मजा आता है। तो अब होता
1: जी
0: क्या था कि मैं टीचर से पढ़ लेता था, वो भी पढ़ते थे, उनको कम समझ में आता था, वो किताब लाते थे, वो एक सेंटेंस पढ़ते थे, मैं उनको समझाता था, वो दूसरा पढ़ते थे। अब उनको फायदा हो रहा है कि बढ़िया फ्री में टीचर मिल गया, टीचर तो बार बार नहीं पढ़ाएगा ये, तो मतलब जब तक स्कूल में 8 घंटे फ्री मिल गया हमको, बढ़िया। और मुझे
1: जी
0: फायदा ये हुआ कि सर मेरी पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो गई उससे।
1: जी
0: अब वो पढ़े, मुझे लगभग लगभग बुक याद हो गई। इस तरीके से मैंने 11th की, 11th में बहुत अच्छा रहा। फिर हम आ गए 12th में, तो 12th में भी सर यही सिलसिला चलता रहा। मॉडर्न हिस्ट्री आ गई इंडिया की, इंडियन हिस्ट्री आ गई, इधर अपने ये कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स आ गई, और यहाँ पे नई नई चीज सीखने को मिली मुझे, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मिली, कोल्ड वॉर एरा, ये सारी चीजें, तो इसमें इंटरेस्ट आता था। इधर बच्चे मेरे से पूछते थे, वो पढ़ते थे, तो मुझे एनसीईआरटी याद सी हो गई। तो सर 12th में जाते जाते तो मुझे ऐसा हो गया कि मैंने प्रिंसिपल से, सर से कहा, सर मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, आप लोगे नहीं, एनसीईआरटी इतने अच्छे तरीके से याद होंगे कि जो टीचर पढ़ा रहा है आपके, आप यदि मुझे मौका दो तो शायद बच्चों को उससे अच्छी तरीके से मैं समझा सकूं। उनने कहा कि आप तो बहुत अच्छी तरीके से, आप पढ़ो और आप हमको रिजल्ट दो पहले। सर मैंने पूरी श्रद्धा से तैयारी करी और मेरी बनी 90.20% क्लास 12th आर्ट्स में। सर मैंने तो दोबारा सरप्राइज कर दिया सबको, और उसके बाद क्या है कि सरप्राइज मैंने कर दिया, फिर मेरी स्कूलिंग खत्म हो गई। फिर मैंने एक पीटीईटी का एग्जाम दिया, यहाँ पे BA+ BEd इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 ईयर का, उसमें सर मैंने कॉलेज टॉप किया, मतलब मेल में कॉलेज टॉप किया था मैंने, और वैसे पूरे कॉलेज में मैं आया था 2nd नंबर पे। उससे हमको बीड़ा मेमोरियल कॉलेज मिला, जिनका स्कूल चलता है उनका हायर स्टडीज के लिए कॉलेज है, तो वो घर से कॉलेज मिल गया मुझे। उसके बाद मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, फिर आपके जो भी ये युवा दिवस के कंपटीशन हुए, उसमें आपका जो हुआ था विकसित भारत के लिए, उसमें मैं जिले में प्रथम आया, एक गहलोत सरकार के टाइम पे हुआ था अपना ये विकसित राजस्थान 2030, उसमें मैं गया था ऐसे, तो मैं उसमें आया 3rd रैंक पे डिस्ट्रिक्ट में। तो
1: जी
0: सर ऐसे जो भी 2-3 कार्यक्रम और हुए, युवा दिवस पे आपने मुझे सम्मानित करवाया था आपके माध्यम से, सांसद महोदय से, तत्कालीन सांसद महोदय से, तो इन
1: जी
0: चीजों ने ऐसा बूस्टअप किया। फिर मैं धीरे धीरे, ये प्रोग्राम है, आप सब लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप इनमें ज्वाइन करो, तो मैं यहाँ पे जाने लगा। तो आज मैं ऐसा खड़ा हुआ हूँ कि मुझे प्रोग्राम में जाने में, भाषण देने में, इन सब में मजे आते हैं, मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, साथ ही में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, और आगे भी मैं अपनी जो मेहनत की है उसको ऐसे ही बरकरार रखना चाहूंगा जैसे अभी रखी है। और यहाँ तक की जर्नी तो कुछ स्कूलिंग इस प्रकार रही थी, संक्षेप में मैंने बताया आप।
1: जी सचिन, डेफिनेटली बचपन से लेकर एक हायर एजुकेशन तक आने में नेगलेक्ट या कहें कि डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कदम कदम पर फेस करते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपके सामने से उठ के चला जाए, और या फिर जैसा आपने बताया कि एक कोने में आप खड़े हैं तो खड़े ही रह जा रहे हैं 2-2 घंटे तक, कोई आपको अटेंड ही नहीं करने आ रहा, कोई ये भी पूछने नहीं आ रहा कि तू तू भाई भूखा है कि तू
0: जी
1: कुछ
0: जी
1: खाएगा कि नहीं खाएगा। इन परिस्थितियों में हम लोग स्कूलों से निकलकर यहाँ तक पहुंचते हैं, तो ये एक
0: जी
1: लंबी कहानी है और ये तो हमने देखा है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने अपने दो टीचर्स को अपने जीवन में अप्रिशिएट किया और उन टीचर्स की बदौलत आप यहाँ पर हैं, और आंखें नहीं होते हुए भी आप मन की आंखों से आज आप काम कर रहे हैं और एक अच्छा मुकाम आपका जीवन में निश्चित रूप से बनेगा। तो सचिन,
0: जी
1: ये तो डेफिनेटली आपने कहा, और लेकिन दो 9th-10th में एक एलजेब्रा और फिजिक्स की समस्या है, वो आपने कैसे फेस की वो बताइए थोड़ा सा।
0: जी सर, मैं थोड़ा सा वो बताना चाहूंगा। आपने सर इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हमेशा दिल में दर्द रहा इस चीज का कि इतनी
1: जी
0: मेहनत करने के बाद भी शायद मैं एक एरिया ऐसा है वहां पे उतना अपना 100% नहीं कर पा रहा हूँ। तो
1: जी
0: सर सीबीएसई में हमारे सिस्टम चालू हुआ था कि आपको क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी है, बेसिक मैथ्स लेनी है। वो कुछ
1: जी
0: भगवान की दया ऐसी थी कि शायद मेरे टाइम पे चालू हुआ था वो। तो सर
1: जी
0: अपन तो मैथ्स में कर नहीं पा रहे थे, तो मैंने तो बेसिक मैथ्स लिया। तो एक तो उसका स्टैंडर्ड जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह उनका डाउन हुआ था, और मैंने सर उनको टीचर लिख के, मुझे मतलब टीचर बता रहा है ये लिख रहा हूँ, वो मुझे बता रहा है, मैं बता रहा हूँ सर फॉर्मूले वगैरह याद करके। और एक
1: जी
0: तरीके से उसमें मैंने उतना अच्छा नहीं किया, पर जितनी बराबर ले सकता था उतनी मैंने ली। फिर राइटर को बताया कि इसमें ये फॉर्मूला लगाओ, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ लगेगा, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। और इतना वो बढ़िया था, मतलब थोड़ा जो राइटर था वो भी, कि वो मेरी बात समझ पा रहा था कि फॉर्मूला लग गया, अब मैं उसको बता रहा हूँ इसको सॉल्व करो। तो वो हर चीज मेरे से ये नहीं पूछ रहा था कि इसमें प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, क्योंकि मैंने उसको फॉर्मूला बता दिया, उसको इक्वेशन बता दी, तो उससे वो सॉल्व कर ले जा रहा था। तो मेरे मैथ्स में एक मीडियम मार्क्स आए थे, और
1: जी नहीं, निश्चित रूप से वो एक चुनौती है, वो एक
0: मैंने
1: चुनौती।
0: जो इसकी जो कमी पूर्ति थी वो मैंने इंग्लिश, हिंदी, साइंस जैसे, बायोलॉजी जैसे इन विषयों में पूरी की, तो वो परसेंट वहां पे अच्छी बनी थी।
1: तो आपकी कहानी से मालूम चलता है कि आपकी कहानी में आपको कोई जो शैक्षिक बदलाव किए गए हैं, करिकुलम में जो बदलाव किए जाते हैं नेत्रहीन व्यक्ति के लिए, या शैक्षिक उसका जो परिदृश्य है बिल्कुल अलग होता है, उसको सपोर्ट सिस्टम जिस तरह का मिलना चाहिए, जिस प्रकार की टेक्निकल बदलाव उसको मिलने चाहिए, वो आपको कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक मानवीय आपके एक शिक्षक का भावुक सहयोग और आपकी आगे जीवन जीने की जिज्ञासा जो है उसने आपको यहाँ तक पहुंचाया है मुझे लगता है। और करौली जैसे जिले में हम ये सब शैक्षिक बदलाव या कहें कि जो तो नई तकनीक आई है वो ना होते हुए भी आपने जो सफलता पाई है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और मैं कहूं कि अब तो बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई हमारे दिव्यांग बच्चे या हमारे दृष्टिबाधित बच्चे बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, खासतौर पे गणित और तो इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में तो उन्होंने झंडा काट दिया है नया। और लोगों के सामने जो जो समस्या आपने पैदा की ना अपने पियर ग्रुप के सामने, वो कुछ वैसी वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज और IITs में कर रहे हैं। तो वो सारे बदलाव करने की आवश्यकता होती है, शायद आपको बदलाव मिले होते तो शायद आप गणित में से 100 आप भी ला रहे होते हैं। लेकिन खैर, वो जो भी आपके साथ हुआ के बारे में तो आप चर्चा ही की जा सकती है या कहें उस पर एक विचार ही किया जा सकता है, लेकिन भविष्य में आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको देता हूँ। लेकिन चलते चलते मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके आगे के क्या प्लान्स हैं, और विकसित भारत 2047 को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बात कर रहे हैं, तो आप कैसा विकसित भारत देखना चाहते हैं आप मन की आंखों से?
0: जी सर, सर आप इस जो दो प्रश्न हैं इनका मैं एक एक करके जवाब दूंगा। पहला तो कि ये मेरे आगे क्या प्लान है, तो सर मैं अभी कर रहा हूँ RAS की तैयारी कर रहा हूँ स्प्रिंग बोर्ड से। अब आपने कहा कि उस समय मुझे बदलाव नहीं मिले, किंतु जब मैं जैसे 12वीं क्लास में आया, फिर मैं थोड़ा थोड़ा फोन से फेमिलियर हुआ, तो वहां पे यूट्यूब वगैरह का हेल्प मुझे मिली थी 12th क्लास से। फिर ग्रेजुएशन में मिली, अब ग्रेजुएशन में भी समस्या ये आई कि मैं पढ़ा इंग्लिश मीडियम से, हमारे करौली में इंग्लिश मीडियम का कोई कोर्स वगैरह नहीं है, तो ये सारी चीजों से समस्या थी। अब हाल ही में क्या है कि जो यदि मैं वर्तमान की बात करूं, तो मैं ऑनलाइन स्प्रिंग बोर्ड से कोर्स ले रहा हूं, और मेरी ग्रेजुएशन की वो चल रही है, मैं परीक्षा दे रहा हूं। अभी मेरा प्लान है कि मैं RAS जैसी सेवाओं में जाऊं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसी सेवाओं में जाऊं, उससे मैं कुछ एग्जाम्पल सेट करूं, मैं दिखाऊं कि मुझे क्या समस्याएं थी, उनका समाधान कैसे हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे किसी को बताऊंगा तो शायद मुझे कोई उतना सीरियसली लेगा नहीं, क्योंकि मेहनत से ज्यादा लोग परिणाम देखते हैं। मेहनत तो शायद कुछ ही लोग देख पाते हैं, छुपी हुआ है तो परिणाम देखते हैं। तो अभी मेरी ये है, और साथ ही में मेरा ये है कि ये तो एक जो जॉब लेनी है या जॉब लगना है, अपने आप को समाज सेवा के लिए तैयार करना है, उसके साथ ही मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोगों को अपने विचारों से प्रेरित करूं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जाऊं, बड़ी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी से मिलूं, जिससे कि अपनी भी पर्सनैलिटी डेवलप हो और अपने और भी बौद्धिक विकास कर सकूं। दूसरा ये है कि 2047 में मैंने विकसित भारत में कई बार प्रोग्राम में मैंने सहयोग, जो एक प्रतिभागी के रूप में सहयोग किया है, मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जो भारत किसी भी प्रकार की बंधनों से मुक्त हो, जो भारत रूढ़िवादी मानसिकता से मुक्त हो, जिसमें कि ये लड़की है, इसकी ये मानसिकता है, ये बाहर जाएगी, ये तो दिव्यांग है, इसको ऐसा, ये काम उसके लिए थोड़ी बना है, तो मैं ये
1: जी
0: भी कहना चाह रहा हूँ, मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि साहब जितने आप ओलंपिक्स में मेडल लेके आ रहे हैं उससे ज्यादा भारत पैरा ओलंपिक्स में ला रहा है मेडल। तो
1: जी
0: इस पे ये चीजें हमारे को सोचने वाली बात है कि हम ओलंपिक्स में जो नहीं कर पा रहे वो हमारे भाई पैरा ओलंपिक्स में कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है।
1: निश्चित रूप से, निश्चित रूप से हमारी
0: और मैं चाह रहा हूं कि हम
1: परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस उन सो कॉल्ड सकलांगों के मुकाबले 3 गुना है वो पैरालंपिक के अंदर।
0: आप
1: जी
0: देखिए सर पैरा ओलंपिक्स में मेडल देखिए और हम जो नॉर्मल लेके आ रहे हैं ओलंपिक्स में उनके मेडल
1: जी
0: देखिए। तो
1: जी मुझे तो हंसी आ रही है
0: हाँ,
1: सकलांग लोगों पर आज।
0: तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा समा मतलब एक इंक्लूजन की फीलिंग आए,
1: जी
0: यहाँ पे एक्सक्लूजन ना हो, मैं सोसाइटी में इंक्लूजन की फीलिंग बनाए। सो
1: जी
0: एवरीबडी शुड बी इंक्लूडेड, नो बेस्ड नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर, नॉट इवन बेस्ड ऑन कास्ट रिलीजन क्रीड जेंडर एबिलिटी डिसेबिलिटी लैंग्वेज। आजकल ये लैंग्वेज का भी बड़ा चल रहा है। तो यदि इंडिया को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनाना है तो इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली तो काम करना पड़ेगा। हमको सोशली और एजुकेशनली भी बहुत कुछ अचीव करने की आवश्यकता है अभी,
1: जी
0: क्योंकि हमको यदि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेरा मानना यह कि ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बन रही है और हमको ऐसा सिस्टम लाएं कि हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट याद ना करें कि 1857 में क्या हुआ था। हम
1: जी
0: ये भी समझें कि 1857 में हम पे लोगों ने राज क्यों किया था, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे और शायद हम
1: जी
0: आज भी उससे मुक्त नहीं हो। तो
1: जी
0: मैं चाह रहा हूँ कि इस मानसिकता को छोड़ के आगे बढ़ें, सब लोग कंधे से कंधा मिलाएं, सबका साथ सबका
1: जी
0: विकास वाली मानसिकता पर काम करें। और अवश्य ही यदि हम वो कहते हैं कि शोले भी सर्द होंगे, हौसलों में उड़ान होगा, दुनिया सलामी देगी, कदमों में आसमान होगा, और वो दिन दूर नहीं जब फिर से विश्वगुरु मेरा ये हिंदुस्तान होगा।
1: डेफिनेटली हमारा देश जो है विश्व गुरु फिर से हिंदुस्तान होगा। बहुत शानदार सचिन, लेकिन चलते चलते कुछ हल्की फुल्की बात भी आपसे करने का मन हो रहा है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे हास्यास्पद चीजें हमारे साथ हो जाती है, हमारी दृष्टि
0: जी
1: बाधित पर चलते हुए। छोटा सा
0: जी
1: इंसिडेंस जो किसी के साथ हुआ, मतलब वो ऐसा था कि किसी ने हमको कहा कि भी मैं नीचे आ रहा हूँ आपकी बिल्डिंग पर
0: जी
1: और मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए ऊपर आने में। तो उन
0: जी
1: सज्जन ने उनके लिए 2 सिक्योरिटी गार्ड भेज दिए
0: जी
1: उनको
0: सर
1: लेके आने के लिए, और सिक्योरिटी गार्ड आए और उन्होंने कुछ ना पूछा ना ताछा, सीधे दोनों कंधों से उठाया और उसको लिटरली हैंगिंग पोजीशन में ऊपर वापस
0: यही यही चीज
1: गए। तो बेसिकली क्या है कि भाई वो इंसान चल तो सकता है ना, या कई बार आप
0: जी
1: देखेंगे कि आपसे लोग पूछे, आपसे नहीं पूछेंगे कि आप खाओगे या ये चाय पियोगे क्या, आपके पड़ोस में जो खड़ा है आपके परिवारजन उससे पूछेंगे कि ये चाय
0: जी
1: पीते हैं क्या। अरे भाई साहब मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं
0: जी
1: लेकिन सुन सकता हूँ और आपकी बात का जवाब दे सकता हूँ आज कि मैं चाय पीना पसंद करूंगा या नहीं। तो कोई ऐसी हास्यास्पद स्थिति आपके साथ पैदा हुई हो थोड़ा बताइए ना चलते
0: एक बार
1: चलते।
0: हुई थी सर, एक हमारे स्कूल में ही हुआ था ये कि एक हमारे टीचर थे केमिस्ट्री के स्कूल में। उस समय मैं उस क्लास में नहीं था कि वो हमको क्लास नहीं लेते थे, मैं शायद थर्ड फोर्थ थर्ड की बात है शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो
1: जी
0: एक ऐसे ही बाहर लोग बैठे थे, गर्मी लग रही थी तो वहां पे चेयर पड़ी थी, मैं भी चेयर पे बैठा हुआ था, किसी ने बैठा दिया। एक टीचर आते हैं, उनको मेरे बारे में पता नहीं था पर उनको ऐसा पता था कि इसको देखता नहीं है। तो वो बोल रही थी किसी उन मतलब उनको कैसा है कि चेयर पे बैठा हुआ था, सामने एक बाउंड्री थी तो बच्चे बाउंड्री पे बैठ जाते थे। मैं वैसे ही चेयर पे बैठा था, मुझे इतना पता भी नहीं था, डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा मतलब भी पता नहीं था। तो
1: जी
0: उनको चेयर चाहिए थी तो उनने कहा, एक लड़के को बुलाया दूर से कि इधर आना, फिर के इनको बोल के एक बार इनसे कहो कि ये चेयर पे से उठ जाए और ये थोड़ा बाउंड्री बैठ जाए तो मैं बैठ जाऊं। मैंने थोड़ी देर बाद कहा, मैंने कहा सर ये बात तो आप मुझे भी बोल सकते थे, उस लड़के को बुला के उससे बोलने क्या बात थी इसमें। तो वो कह रहे हैं नहीं हमको क्या पता नहीं था, थोड़ा डर लग रहा था। तो मैंने मुझे बड़ा हंसी आया, मैंने कहा क्या बात है आपको मेरे से डर लग रहा है। हाँ,
1: हाँ तो लोगों को बताना पड़ता है कि दिव्यांग इज नॉट डेविल्स, वी आर फ्रेंड्स।
0: तो ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ।
1: जी, हमें डेविल्स बताने की कोशिश लोग शुरू से करते हैं, तो हम उनको
0: जी
1: बताते हैं वी आर नॉट डेविल्स एंड वी आर नॉट ड्रेकुलास, वी आर योर
0: जी
1: फ्रेंड्स, लेस डायलॉग
0: जी
1: विद अस।
0: जी
1: सो आज हमारी अच्छी बातचीत हुई, एक अच्छा डायलॉग हमारे बीच में हुआ सचिन। और
0: जी
1: श्रोताओं
0: सर
1: आप जो हमसे लेट जुड़े वे जान लें, हमारे साथ थे सचिन सिंह जादौन जो करौली जिले से आते हैं। सचिन एक ग्रेजुएट हैं और दिव्यांग व्यक्ति हैं, दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, और आप हमें सुन रहे थे आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर। और जो लोग माउंट आबू की वादियों से जुड़े हुए हैं वे हमें सुन रहे थे हमारे एफएम बैंड 107.8 पर, और इसके साथ साथ आप हमें सुन सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन। सो श्रोताओं एक अच्छी बातचीत और एक शानदार प्रोग्राम मन की आंखों को से में हम फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही शानदार ताकतवर साहसी प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया,
0: ओम
1: नमस्कार।
0: शांति। वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ मास्टर्स ऑफ चेंज। चेंज इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस एंड चेंज इज इनएविटेबल। द हार्डर इट विल गेट इफ वी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट चेंज।
2: So it becomes very easy for us if we accept change and then we grow through it. And to make it easy for us, today we have with us Brother Golu from Germany. Welcome, brother. How are you doing?
3: I'm fine, thank you. Very good.
2: You're from Germany, but now since 27 years, you're living in Madhuban. So you are a Madhuban Nivasi now. Madhuban in Mount Abu.
3: Yeah, when I came in contact with the Brahma Kumaris in 84, I could not imagine that I will sort of end up in India. But somehow it happened when I came first time to India in 85. It was very interesting because it was like feeling coming home.
2: Oh.
3: And as a small child, I had the funny feeling that I'm born in the wrong time, in the wrong country, with the wrong parents. So I went to my mom and said, what went wrong? And of course, my mom thought I'm crazy because she said, everything is all right. Mm-hmm. And when I came to India, I could feel that feeling home, feeling secure, you know. And those days, India was quite different. Even Delhi was a very peaceful, calm city, you know, very less traffic, a lot of bicycle rickshaws and so on.
2: Yeah.
3: And I went first to a bazaar and I felt coming home. And then I came to Mount Abu and was overwhelming feeling of belonging and coming back home, you know. So it was quite interesting coming back to India.
2: Yeah. What was the reason that you came to India? For work?
3: I joined BK. I took the course in 84. Okay. And then 85, first time you come to meet the seniors, to meet Baba's program and so on, and take spiritual experience.
2: Right.
3: So it was basically this coming as a first timer of Brahma, become a Brahma Kumar, first time coming to India.
2: Right.
3: And it was a very special experience, you know, like everything was new and was not new in a way, you know. It was something fresh, but it was also imprinted in an old memory. And that's the concept also of reincarnation, that you might have been at some places in a life before and you just touch base.
2: Yeah, yeah. So let's rewind and let's ask you that, how did the meditation journey start? How did you take the course? Were you religious from the start or did spirituality come natural to you?
3: Actually, I'm grown up in a religious family. My mother, she was quite active in the church and I was with the Christian Boy Scouts, you know.
2: Oh.
3: We were not that much interested in the Christian stuff. We were more interested to go in the forest and do camping and mischief, you know, like all the youngsters.
2: Yeah.
3: But we were sort of brought up, I would say, with high morals and values and ethics. And when I was about 15, 16, I thought there must be some deeper purpose in life. I always thought something is behind it.
2: Mm.
3: And I felt also that the world is heading in a bad direction. In those days, we had something called acid rain in Germany in the 80s. Because of all the soot from the power stations, the rain became a little bit acidity and harmed the trees and the forest. So people were concerned about nature.
2: Yeah.
3: And at the same time, there was Cold War going on.
2: Yeah.
3: And Germany was still divided in East and West. And we had a big army in the East and big army in the West. And they were all confronting each other. So it was like a feeling of something may happen.
2: Yeah.
3: You know, so I thought there must be a way out and there must be some hidden secret somewhere and some supreme teacher must be somewhere. So I started searching and when I was then I completed high school. Then when I was 19, I went to Jamaica on a, you know, getting out of youth traveling, going somewhere, came back and started an apprenticeship as a builder. And like an engineering education. And in the middle of that, then I started searching for truth, for supreme teacher. And suddenly I came in contact with the Brahma Kumaris.
2: Wow.
3: And made the course. And then after 1 year came to Madhuban. And, you know, that's how it all started.
2: Oh, nice. So we've also been an advisor of solar energy to BKs since a long time now. You started solar power here. So led us through that journey. I mean, how it all started, how did you feel the need for it? And
3: in the beginning, of course, you're attracted by the spirituality and by finding the supreme being, God, and being attracted to the idea of a cyclicity of time and that a beautiful new age is coming. That was like the big attraction in the beginning, which actually brought me into the Brahma Kumaris. And then after some time, you think, okay, what can I do, you know, practically in terms of service and how can I help the community or the people around us? And when you come to India, you see deforestation going on and the poverty also of the people. And I thought, okay, what can be done? And I thought, why not to bring renewable energies here to the Brahma Kumaris? And we brought some small solar cells in the beginning, or some solar toys, you know, like a car with a solar plate which drives by itself with a battery. And everybody was very interested how these things work and function. And then slowly, slowly, we set up a small solar system. Then I came in contact with the German government, and we did a small research project with the German Development Agency, GIZ. And when we got this Gyanser Rover complex, our Dadi Prakashmani was asking, Dadi Komarka was asking, every country should build a little house. So I said, why not? And I came in contact with a German engineer, an architect, and I built a little house called Solar House Backside in Gyanser Rover. The first building, and then another building, that's the Golden Meditation Dome. This was the second building in Gyanser Rover. And then I started living here, and then I thought, okay, let's bring solar technology to this coming up campus here. So we built a solar steam cooking system, which provides 600 kilograms of steam every day. And we supply that steam to the kitchen, so your food is probably partly cooked by the energy of sun. Wow. By the way, the system is now being replaced. It's 27 years old, and we are right now in the middle of planning and procurement and all this, and very, very soon we have to demolish and build a new one. So we started to bring solar technology to the Brahma Kumaris, and for the institution on larger scale, then we set up 5 kilowatt systems for the centers with the help of the Australian government, and then we got more funding from the German government, and we set up 200 kilowatt system in Om Shanti Retreat Center, then big solar steam cooking system in Shantivan, and then India One solar power station, 1 megawatt solar thermal power station in Shantivan also, where we got funding from the German government and from the Indian government. It was an 80 crores project, so massively big, and took us 10 years from the idea until completion, so it took quite a long time.
2: Right.
3: So we started all these activities in order to develop technology, share it also with other people, and also bring benefit to the institution, and to demonstrate that a clean mind also means to use technology in an efficient and clean way, in a clean manner.
2: Right.
3: And so it was very important for us to demonstrate that also practically. And we have also created an environmental initiative, and I go to the UN climate conferences. Yeah. I was just in December in Sharm el-Sheikh.
2: Yeah.
3: And we have been since Copenhagen to the last 10 climate conferences, or 12 conferences. And people are amazed. We are a spiritual organization, but we are also one of the biggest institutional user of solar energy in India. And we are a recognized research center with the government. So people are amazed that we're doing these things also practically.
2: Right.
3: So it's a very good combination on one side to be spiritual, live in harmony with the spiritual laws, and parallel to that, live in harmony with
2: in
3: nature.
2: The environment.
3: And in the environment. Become a protector also of the environment. So that's a very nice combination, and I like very much to work in that field.
2: Yeah, that's the true meaning of being spiritual, isn't it?
3: Sort of, yeah. Yeah.
2: You live in harmony with the environment, because the environment has given us so much. It's only we can, if we can give it back, then it's...
3: Well, it's so to say, it's the platform on which we are living, and if we destroy it, there is a... we're sort of cutting the tree, the branch on which we're sitting ourselves right at the moment, you know. The news from the climate front are not very good, you know. And I just had a discussion with a friend here. We had this sudden heat phase just 3 days ago. Suddenly the weather flipped. Normally you have in February, March, you have this transition period towards the spring, and then the summer kicks in somewhere in March. But just... couple of days ago, it just made cling, and we had 28, 30 degrees in daytime here in Mount Abu, which is pretty high for this time of the year. So that's also part of climate change. No?
2: Correct. Do you think we are heading in the right direction, though, in terms of saving the climate?
3: Saving the climate, well, the latest news are not so encouraging in terms of battling climate change. Climate change is happening already, and we are supposed to reduce in a very big way our carbon emissions within the next years. But right now the global trend is upwards. So it means all the countries, they say, oh yeah, we need a bit more coal, we need a bit more this, we need a bit more that. We do some solar, but it's not enough to shift the trend. In addition, we have now this war going on between Ukraine and Russia, and so a lot of investment, a lot of funds are diverted into this war effort, and they are missing then on the renewable energy, on this transition towards clean technology. So right now it doesn't look that bright, and UN president gives warnings, the scientists are giving warning, they say, hey, we have only a couple of years, otherwise it will be very difficult to avoid almost a collapse of our civilization. So, as you said rightly in the introduction, we are in a very high-speed transformation, and everything is shaken, and the foundation of the world has to be scrutinized, and what is not sustainable, what is not right, what is not good, what is not just, that has to go and has to transform. So that we can see right now.
2: Correct. Correct. And also you mentioned that you were in contact with Prakash Muni Dadi and all the senior Dadis also. You came so early to Madhuban. So if you can share some experiences that you have had with them, which you remember.
3: One time for our solar project with Dadi Janki, I said to Dadi, Dadi, I have some problems. There is no money and we have a big bunch of bills and account department says we don't have money. And Dadi smiled and says, don't worry, Dadi will help. And she helped. She organized some funds. And a week later, account department called me and says, bring the bills, we can pay to you. So I had this kind of experience. I had also subtle experiences that I had problems in some projects. And Dadi says she will send Sakash, means energy in the morning. And at 4 o'clock, I just felt this boost of energy. So Dadis were so powerful. Wow. Their drishti and their vision and their mindset was so strong that they really had a visible impact into situations, and they could resolve it just by their vision. I had many times this experience, very sweet experiences also. One time we went to Baba's room and Dadi Kumaka, a small group like five foreigners, and we were sitting in Baba's room in Pandapavan, and then Dadi said, you see, and on this bed, Brahma Baba was sitting, and then she was sitting like Brahma Baba, and then she said, and I was going in front of him, and then she took one foreigner, and I took the hand of Baba, and then Baba left the body, you know? And she played for us the whole scene, and we were all like, and suddenly the atmosphere changed, and it was like life scene, you know. We saw Dadi was there, and she said, and I was sitting holding Brahma Baba's hands, and he left the body, you know. And suddenly the body was gone, the soul was gone, and I had the hands of a corpse. It's quite an amazing experience. Yeah. So if you're lucky and you come early, you had this kind of interactions, you know, many beautiful interactions also with Bab Dada, you know. So many nice messages and meetings, and I feel very fortunate that I came in the mid-80s first time.
2: Right.
3: Because in those days, Brahma Kumaris was like a small family.
2: Yeah.
3: And you came to Madhuban, to the courtyard, and there were like 2, 3, 4, 5 Dadis sitting there, or Dada Vishwaratta, Anand Kishore, Babuji, you know, they were just sitting there, hello. And they were knowing you after some time, you know. And by name, it was more very, very familiar, you know.
2: Right.
3: Now Brahma Kumaris has expanded beyond what we could imagine.
2: Yeah.
3: We're now quite a big organization and so many people are there, you know.
2: And what did you think made them so strong, Dadis, and the lifestyle that they... Why can't we do such a thing, like if we want
3: to? We can do such a thing, but you know, in the days of the Dadis, they were learning also to renunciate the old world. And they were going through quite rigorous times, you know, when the Yagya was formed, it was just the end of the Second World War. So there was a lot of disruption. Many families left what was then Pakistan. And so the world was in quite a turmoil. So Dadis learned to detach themselves from the world. And they had a long time of tapasya, where they just did meditation and a lot of experience. And Baba said in the beginning, the system was in such a way that many souls had visions and they went in trance, you know. And something which is very, very convincing is if you see it or you experience it, that's
2: correct.
3: Most convincing, you know. It's much more than words or books or anything. Experience is number one. And they had a lot of practical experiences. You know, they were granted.
2: Yeah.
3: And that made them strong. And it was a small, compact family, you know, of many, many seniors, of many powerful souls together with Brahma Baba. And then they all together moved from then Pakistan to here, to Mount Abu.

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

ओम शांति। आज है 7 जून 2026 और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 मार्च 2010 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा बच्चों को पूर्वज और पूज्य रूप में देख रहे हैं। बाप दादा कहते हैं कि बच्चे कल्प वृक्ष को सामने ले आओ। आप पूर्वज आत्माओं का स्थान कहाँ है? झाड़ के जड़ में भी है और तने में भी है, दोनों जगह पर है। और जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष के टाल टालियां व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। पूर्वज के साथ पूज्य भी है। जैसे बाबा कहते ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, तो उनके साथ आप साथी बच्चे भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो, पूर्वज हो, पूज्य हो। और बाबा कहते हैं मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, इतने ऊंची दृष्टि से बाबा हम बच्चों को देखते हैं। फिर बाबा कहते सारे वृक्ष के आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं के तरफ आकर्षण है। जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, जैसे कि शक्तियों द्वारा, वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा उन्हों की पालना करने वाले हो। जड़ों से ही तो सारे वृक्ष को शक्ति प्राप्त होती है, तो बाबा कहते हैं आप उन्हों की शक्तियों द्वारा ही पालना करने वाले हो। आजकल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी है, पुकार रही है अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो, ओ क्षमा के सागर पूर्वज हमें पालना दो। बाबा कहते जो अन्य धर्म वाली आत्माएं भी है तो वृक्ष के टाल टालियां होने के कारण वह भी आपको उसी नजर से देखते हैं। उन्हों के भी पूर्वज आप ही हो। आप जब मिलते हो तो यह समझते हो कि यह हमारे ही वृक्ष की टाल टालियां हो, तो बाबा कहे उनका भी आकर्षण आपके तरफ है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म में उनको फीलिंग आती है, जैसे आपको भी ये फीलिंग आनी चाहिए कि भले ये दूसरे धर्म की टाल टालियां हैं लेकिन ये हमारे ही वृक्ष की टाल टालियां हैं। अपनेपन का अनुभव उन आत्माओं को भी हो रहा है और होना है, आगे और ज्यादा होना है। अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी, तो स्वयं को उस नशे में रहना है। जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे ही अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष के टाल टालियां और पत्तों की पालना करना, लास्ट पत्ते तक हरेक की पालना करना। दूसरा बाबा कहे पूज्य भी हो, तो पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। देखो सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की पूजा, नियम प्रमाण, आरती होना, भोग लगना, ऐसी किसकी भी नहीं होती है। कायदे प्रमाण कीर्तन होता है। ड्रामा में आप जैसा पूजन और गायन किसी का भी नहीं है। बाप दादा ऐसी आप पूज्य और पूर्वज आत्माओं को देख कितना खुश होते हैं। बाप के दिल से बार बार यही गीत बजता, कौन सा? वह मेरे सर्व वृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं वाह। बाप दादा आप सभी बच्चों को जो आपका स्वमान है
बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने का वही रूप देखना चाहते हैं। अभी बाबा हमारा वही स्वरूप, संपन्न और संपूर्ण स्वरूप देखना चाहते हैं। सभी बच्चे पुरुषार्थ बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन सदा शब्द हर एक को अपने पुरुषार्थ में ऐड करना है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन सदा पुरुषार्थ में ये शब्द जरूर ऐड करना है। बाप दादा ने देखा कि बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी अभी अपने राज्य में चले, अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी करनी है। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि सारा समय अपने को कोई ना कोई सेवा में बिजी रखो। सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह है, ये भी बाबा देखते हैं, लेकिन और एक बात पर विशेष अटेंशन खिंचवाते, सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर तीनों सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो, और कर्मणा अर्थात अपने संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में तीन सेवा इकट्ठी करो। क्यों बाबा कहते हैं एक ही समय में तीनों सेवा इकट्ठी करो? तो सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, तभी सेवा का फल मिलेगा, संतुष्टता और खुशी, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी। सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं, साथी और वायुमंडल सभी संतुष्टता के वाइब्रेशन में हो। सेवा के सफलता की तीन बातें विशेष सुनाई थी बाबा ने, कौन सी? कि सेवा अर्थात निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, और तीसरा निर्मल वाणी। तो भाव, भावना और स्वभाव, निमित्त भाव, निर्माण भावना, नम्रता की भावना हो, और निर्मल वाणी वाला स्वभाव हो, ये सभी साथ साथ सेवा में है तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट, और जिन्हों की सेवा की वह भी आगे बढ़ते जाएंगे। निमित्त भाव वाले बाप के तरफ संबंध जोड़ेंगे, अगर निमित्त भाव नहीं तो बाप के नजदीक इतना नहीं आएंगे। सेवा करते हो तो ये चेक करो कि भाव, भावना और स्वभाव ठीक रहा। सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त होना, खुशी प्राप्त होना, साथ साथ सेवा की सफलता है संतुष्टता और खुशी का फल दोनों साथ साथ प्राप्त होना। आज से किसी को भी एक तो बाबा के आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है उस रूप में देखो। तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती है वह नहीं होगी। यह जो अभी संगठन में रुकावट आती है वह रुकावट खत्म हो जाएगी। हर एक को आत्म रूप में देखो, लेकिन ओरिजिनल संस्कार के साथ देखो। बाबा कहते ये ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है, परिवार की बहुत महिमा है, ये ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता, और इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में कभी नहीं मिलता। परिवार की भी विशेषता को जानना और परिवार में चलना एक महान सब्जेक्ट है। फिर बाबा कहते हैं इस ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय, और निश्चय में चारों बातें, बाप दादा, साथ में नॉलेज में, ड्रामा में, परिवार में, सभी में निश्चय हो। निश्चय बुद्धि हो तो सहज पुरुषार्थी बन जाते हैं। जैसे बाप दादा में निश्चय है, ऐसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। अगर चारों ही बातों में मजबूत नहीं है तो विघ्न आते हैं।
विघ्नों को पार करने में अटेंशन देना पड़ता है। इसलिए परिवार की पहचान, परिवार से प्यार, एक दो को समझना ये बहुत आवश्यक है। तो पूर्वज हो, पूज्य हो, तो यह बातें भी अपने में या साथियों में लानी है। ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य है दुआएं देना, दुआएं लेना। फिर सीजन की लास्ट मुरली होने कारण बाप दादा सभी बच्चों को होमवर्क भी देते हैं कि आत्मा के जो निजी संस्कार है, संबंध में जब आओ और दृष्टि में उसी दृष्टि से देखो कि यह जो विघ्न पड़ते हैं जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है, तो उसका कारण यही है कि निजी संस्कार से नहीं देखते हैं, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से नहीं देखते। तो अभी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे तो बातें समाप्त हो जाएगी। सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है, ब्राह्मण परिवार का एक एक सदस्य का फर्ज है शुभ भावना शुभकामना देना और शुभ भावना शुभकामना लेना। कहां कहां बाबा कहते संगठन में कभी कभी पर दर्शन, पर चिंतन और पर मत के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अभी इन तीनों पर को काट दो, एक पर रखो और वह है पर उपकार। ब्राह्मणों का स्वभाव है पर उपकारी। अपना स्वमान सदा यही याद रखो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का स्वमान ही है पर उपकारी। लास्ट में बाबा ने कहा, रोज रात को सोने से पहले, बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मिल देखो और पोता मिल देना है। अपने बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना और बाप की याद में सो जाना। बाप के रूप में सारा पोता मिल सच्ची दिल का दे दिया तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सच्ची दिल पर साहब राजी हो जाएगा। तो बाप दादा ने आज कहा कि आपके भक्त भी पुकार रहे हैं, हर एक अपने इष्ट को पुकार रहे हैं, भक्त आपके भी है क्योंकि जड़ में बैठे हो, पूर्वज हो, तो आपका सकाश का पाठ है। अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ, जितना बिजी रहेंगे उतना निर्विघ्न रहेंगे। तो सारे कल्प का आधार अभी की सेवा का फल है, चाहे पुजारी बनेंगे चाहे राज्य अधिकारी बनेंगे, दोनों का आधार अभी की सेवा, अभी की अवस्था, अभी का बोल, अभी का संबंध संपर्क है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज के मुरली का शीर्षक है, पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रह मनसा द्वारा सर्व की पालना करो, पूरे वृक्ष को सकाश दो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाबा चारों ओर पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। पूर्वज आत्माएं अपने को समझते हो ना? पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? पूर्वज आत्माएं पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? अपने झाड़ को सामने लाओ, कल्प वृक्ष को बाबा कहे सामने लाओ, उसमें देखो आपका स्थान कहाँ है। जानते हो कि आप पूर्वजों का स्थान जड़ में है, झाड़ के जड़ में भी है, तना में भी है, दोनों जगह है, जड़ में भी है, तना में भी है। तो जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पालना मिलती है। तो आप इस सारे वृक्ष के ताल तालियां व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो। सारे वृक्ष के ताल तालियां तो क्या, पत्तों सहित सबकी पालना करने वाले, कैसे पालना करते हैं? सकाश देने वाले पूर्वज हो। पूर्वज के साथ पूज्य भी हो।
तना द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है। तो अपने को सारे वृक्ष को सकाश देने वाले अनुभव करते हो? पूछते बाबा, सारे वृक्ष को हम सकाश देने वाले स्वयं को अनुभव करते हो? नशा रहता है कि हम पूर्वज सर्व आत्माओं रूपी टाल टालियां या पत्तों को सकाश दे रहे हैं? ये नशा भी स्वयं में है। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, तो उनके आप साथी बच्चे भी, ब्रह्मा बाबा के साथी बच्चे भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। आज एक नया टाइटल बाबा ने दे दिया कि मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। सारे वृक्ष के आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं के तरफ आकर्षण है। आप पूर्वज आत्माएं उन्हों की पालना शक्तियों द्वारा करते हैं। सारे वृक्ष की लास्ट पत्ते तक की पालना शक्तियों के द्वारा करते हो। जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, तो बाप ने कैसे की? शक्तियों द्वारा की। वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा ही उन्हों की पालना करने वाले हो। बाबा भी नशा चढ़ाते हैं हम बच्चों को कि आप भी पूर्वज बन सबकी पालना शक्तियों द्वारा करने वाले हो। आजकल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी है, पुकार रही है अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो, ओ क्षमा के सागर पूर्वज हमें पालना दो। बाबा कहते हरेक पुकार रहे हैं। तो यह आवाज अब पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रहा है। अनुभव करते हो कि हम ही पूर्वज है? सारे वृक्ष में देखो, जो अन्य धर्म वाली आत्माएं भी है, तो वृक्ष में टाल टालियां होने के कारण वह भी आपको उसी नजर से देखते हैं। दूसरे धर्म वाली आत्माएं भी उसी नजर से देखते हैं। उन्हों के भी पूर्वज आप ही हो। कोई भी धर्म वाली आत्माओं से आप जब मिलते हो, तो ये समझते हो कि यह भी हमारे ही वृक्ष की टाल टालियां हैं, इसी कल्प वृक्ष की टाल टालियां हैं। वह भी जब आपसे मिलते हैं तो समझते हैं कि ये अपने हैं। अगर हम उस भावना से मिलेंगे तो वह भी समझेंगे कि यह अपने हैं। अपनेपन का अनुभव उन आत्माओं को भी हो रहा है और होना है, आगे चल करके और भी होना है। तो इतना नशा, इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आता है, वह चिल्ला रहे हैं रहम करो। तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। सभी आत्माओं की शक्तियों द्वारा ही पालना करनी है। उन्हों को आवश्यकता है। जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे, उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। वैसे भी देखो, किसी की भी पालना लौकिक में भी बड़ों से होती है। वही उन्हों के शरीर के खाने पीने पढ़ाई जो सोर्स ऑफ इनकम है, उनका प्रबंध करते हैं, बड़े ही तो करेंगे। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष के टाल टालियों और पत्तों की पालना करना। बाबा कहे जैसे बाबा ने की है, हमारा कार्य है हमें भी टाल टालियां पत्तों की पालना करना है। ऐसा उमंग
आप पूर्वज आत्माओं को आता है, नशा है। फिर बाबा के पूज्य भी हो तो पूर्वज होकर के हमें सबकी शक्तियों द्वारा पालना करनी है। फिर बाबा कहे पूज्य भी हो, देखो सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा होती है, उतनी पूजा कोई भी महात्मा धर्म पिता की नहीं होती। आपकी पूजा नियम प्रमाण, आरती होना, भोग लगना, ऐसी किसकी भी नहीं होती है। गायन देखो, आपका कायदे प्रमाण कीर्तन होता है। कायदे प्रमाण कीर्तन होता है, किसी का भी ऐसे गायन नहीं होता। तो आप पूर्वज के साथ पूज्य भी हो, ड्रामा में आप जैसा पूजन और गायन किसी का भी नहीं है। हमारे जैसा पूजन और गायन किसी का भी नहीं है, ऐसे पूज्य है। बाप दादा ऐसी आप पूज्य और पूर्वज आत्माओं को देख कितना खुश होते हैं। तो पूर्वज भी है, पूज्य भी है। बाप के दिल में बार बार यह गीत बजता है, कौन सा? वह मेरे सर्व वृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं वाह। तो आजकल बाप दादा आप सभी बच्चों को जो आपका स्वमान है, बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने का वही रूप देखने चाहते हैं। उसके लिए एक बात बच्चों को ध्यान में रखनी है। कौन सी बात? हाँ, बाबा देखना चाहते हरेक को संपन्न संपूर्ण स्वरूप में। और उसके लिए एक बात बच्चों को ध्यान में रखनी है, कौन सी? बाप दादा ने देखा कि सभी बच्चे पुरुषार्थ बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन सदा शब्द हर एक को अपने पुरुषार्थ में ऐड करना है, अटेंशन देना है। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि जैसे बाप दादा आप सभी बच्चों को श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा के रूप में देखते हैं, वैसे आप अपने को भी ऐसे स्वमानधारी समझते हो? पूछते बाबा। जैसे बाबा हमें देखता है, वैसे हम स्वयं को भी समझते हैं? बाप दादा ने देखा कि बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी अभी अपने राज्य में चले, अब घर जाना है। यह भी गीत मन में गाते रहते हैं, अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी करनी है। इसके लिए बाप दादा ने पहले ही कहा कि सारा समय अपने को कोई ना कोई सेवा में बिजी रखो। बाप दादा ने देखा सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं। तीव्र गति में आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए बाबा विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर तीन सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, सेवा करते समय मनसा द्वारा पहले सब आत्माओं को सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो, और कर्मणा द्वारा अर्थात अपने संबंध संपर्क द्वारा चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो कि उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। कर्मणा अर्थात अपने संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ में हो।
एक समय में तीन सेवा इकट्ठी करो। क्यों? क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती है कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए। तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो, कर सकते हो। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और कर्मणा अर्थात